0: रही है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जोर शोर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा रही है।
1: राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, एक किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो।
2: उस पे SIT का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी। हाईकोर्ट के ने जो SIT का गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही, सख्त से सख्त।
3: राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती हुई, चोरी क्या हुई, डकैती हुई। वो कमेटी होम मिनिस्ट्री ने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस पर भी अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि ये भगवादारियों में जो चोर बैठे हुए थे उन्होंने क्यों डकैती की।
0: संसद के बाहर विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा, तो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से चंदा चोरी पर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ कैश चढ़ावा, गहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र सरकार को ही देना होगा। इस पर खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस भी हो गई।
4: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से देखा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय जांच,
5: ये भाई ये लीडर भाई ये सब कह रही है, ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय।
0: किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है।
5: कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं, ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, मानते नहीं
0: है। खड़गे ने सवाल किया कि ED, CBI और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। जीजू ने कहा कि राम विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, उसके बाद सरकार से जवाब मांगे। आज तक ब्यूरो।
6: यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया तो विधानसभा पार्टी के विधायक सचिन यादव को सीएम योगी का फोटो लेकर विरोध करना भारी पड़ गया। सदन के अंदर हुए हंगामे के चलते स्पीकर ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया है।
7: मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। सचिन आप उधर मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
8: हमारी ये सरकार
7: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकालूंगा।
9: आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चहावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री योगी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। क्यों हंगामा बरपा, क्यों समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर स्पीकर आग बबूला हो गए, आज आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा और इस्तीफे के बाद पहली बार चंपत राय नजर आए। चंपत राय इन दिनों अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। साधु संतों से चंपत राय की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची। नई एसआईटी टीम ने क्या क्या किया आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम की।
10: हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहां सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें।
9: मानसून सत्र के दूसरे दिन आज भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक अंदाज दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में भाषण शुरू किया, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर शोर मचाया। विपक्ष शोर मचाता रहा और सीएम बोलते रहे,
11: नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी, लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही, इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
9: मामला तब बिगड़ा जब समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। विधायकों के हाथों में पोस्टर थे, एक पोस्टर को लेकर स्पीकर सतीश महाना आग बबूला हो गए।
7: आप उसको नीचे करिए, सचिन आप उसको मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
8: करिए।
7: प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकालूंगा
8: के साथ।
7: आप मुख्यमंत्री जी के फोटो आप ले सकते हैं, आप सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। यू कैन नॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकाल दिया। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। इनको सचिन को बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे आप, चलिए बाहर। इनके साथ जो भी लगेंगे मैं सबको निकाल दूंगा, नहीं, इट्स नॉट अलाउड, ये इस बात में इजाजत नहीं देता हूँ।
9: समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
11: ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जान बूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है, इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
9: विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन ये साफ है कि समाजवादी पार्टी चहावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है।
8: दोनों मिक्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है आप विश्वास रखिए मुख्यमंत्री पर, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन ना दूध का पता है आज के समय में और ना पानी का पता है। नृपेंद्र मिश्रा जो इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और अध्यक्ष हैं उसके निर्माण समिति के, आप इनसे जब इन्होंने क्या कहा कि ये खुली डकैती है, डाका डालने का काम हुआ है।
12: देखिए, ये लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, काश गंभीरता दिखाते, काश मुद्दों पर बात करते, विधानसभा के भीतर जाते, तथ्यों के साथ बात करते, पर क्योंकि तथ्य है नहीं, मुद्दे है नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार शानदार काम कर रही है, बहुत सारे प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं, तो जब मुद्दे नहीं है तो अब आपको OTT पर जाने की जरूरत नहीं है। और काश ये गंभीर राजनीति करते, अगर ये गंभीर राजनीति करते तो ये बताते कि आज उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से योगी जी कहां पर लेकर आए।
9: चढ़ावा चोरी के मुद्दे से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है, तो विपक्ष के हंगामे के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय भी अयोध्या में एक बार फिर एक्टिव हैं। वो साधु संतों से मिल रहे हैं।
13: पिछले 3-4 दिनों में चंपत राय ने आधा दर्जन से ज्यादा मठों में अपनी हाजिरी लगाई है और संतों से बंद कमरे में मुलाकात की है। इसके मायने क्या हैं? क्या अब अयोध्या से उनके चला चली की बेला है? क्या वो अयोध्या छोड़कर अब यहाँ से जा रहे हैं, या फिर अपनी सफाई उन संतों को पेश कर रहे हैं जो पहले के दौर में उन्हें कहीं ना कहीं उनसे नाराज रहते थे।
9: दूसरी तरफ बैंक लॉकर्स में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए गए गहनों की जांच भी SIT ने शुरू कर दी है। SIT अब लॉकरों में रखे सोने चांदी के गहनों का सत्यापन करेगी।
14: SIT को ये भी शक है कि इन आभूषणों के जरिए भी हेराफेरी की गई है जो रामलला को चढ़ाए गए हैं। अब ऐसे में SIT की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है जहां पर बैंक को भी दायरे में लिया जाएगा। तो ये साफ हो गया है कि अब SIT एक एक करके हर क्रम पर आगे बढ़ रही है और उनकी जांच बढ़ा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
6: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने डेप्यूटी CM सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाते हुए उन्हें गूंगी गुड़िया करार दे दिया। उसके बाद NCP कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर जबरदस्त हंगामा करते हुए सपकाल से माफी मांगने की मांग की है। अब महायुति ने सपकाल के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया है, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। विवाद बढ़ने पर सपकाल ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट किसी व्यक्ति विशेष पर निजी टिप्पणी नहीं था।
15: साल 1966 और उसके बाद भी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को संसद में चुप्पी के लिए कई बार गूंगी गुड़िया कहकर निशाना साधा था। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी गई। अब यही गूंगी गुड़िया का सियासी शोर महाराष्ट्र में सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने महाराष्ट्र की पहली डिप्टी CM और NCP सुप्रीमो सुनीत्रा पवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंगी गुड़िया करार दे दिया, जिसके बाद NCP कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस मुख्यालय में हमला बोल दिया।
16: गूंगी गुड़िया बोल के टीका टिप्पणी की है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक महिला उप मुख्यमंत्री के प्रति, सुनेत्रा वहिनी अजीत पवार के प्रति कितना मन के अंदर द्वेष है, ये प्रकट होता है। आज कुछ दिन नहीं हुए उनको उप मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसे प्रसंग में वो उप मुख्यमंत्री बनी है, जब अजीत दादा अपने में से जाने के बाद वो सारा दुख झेल के आज उपमुख्यमंत्री बनके वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में लगी है, और ये सेवा उनको दिखती नहीं है लेकिन उनको गूंगी गुड़िया बोल के कहा जाता है।
15: उस समय सपकाल किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी सपकाल माफी मांगो इस्तीफा दो के नारों से कांग्रेस दफ्तर गूंज उठा। मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।
17: एनसीपी जो है आक्रामक होती हुई नजर आई, और मुंबई कांग्रेस का जो तन्ना हाउस में कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर उन्होंने जाकर प्रदर्शन किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तभी एनसीपी कार्यकर्ता अंदर गए और उन्होंने वहां पर जोरदार घोषणाबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई। और फिलहाल ये जो मुंबई कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। एनसीपी द्वारा जो कांग्रेस द्वारा जो वक्तव्य किया गया है उसका विरोध किया गया है और कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि ये टिप्पणी जो है उसको पॉजिटिव तरीके में लिया जाए। और इंदिरा गांधी जी को भी यही कह के संबोधित किया गया था, लेकिन तब कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी थी, उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया था। सुनेत्रा पवार जी को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन एनसीपी जो है वो अपनी माफी की मांग पर अड़ी हुई है।
15: हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सपकाल गुंगी गुड़िया वाले बयान पर माफी नहीं मांगते पूरे राज्य में एनसीपी का आंदोलन जारी रहेगा।
17: एनसीपी कार्यकर्ताओं को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में लाया गया है, यहां पर उनको डिटेन किया गया है। कांग्रेस द्वारा सुनेत्रा पवार पर इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई है। आप देख सकते हैं पुलिस बल ज्यादा बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर दिखाई दे रही है।
18: उनको माफी मांगने के लिए तैयार करेंगे हम, वो हर्षवर्धन सकपाल को बोलेंगे और उनको हम राजीनामा के लिए रेडी करेंगे ही करेंगे, नहीं तो हमारा पूरा बॉम्बे में क्या पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन होगा।
19: वेड़ आल्यानंतर चौक उत्तर दिन मी, वेड़ आल्यानंतर चौक उत्तर दिन मी।
15: वही एनसीपी शरद गुट के फायर ब्रांड विधायक रोहित पवार ने पूरे विवाद पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी को गुंगी गुड़िया कहा गया था तो उन्होंने अपने काम से आलोचकों को जवाब दिया था।
20: इंदिरा गांधी जी को गूंगी बुढ़िया कोई लोग वहां पे कहते थे, जब उनको वहां पे संधि दी गई या उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं बना। मतलब सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो होगा तो नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया है।
15: मामला गर्माया तो सपकाल को सफाई देने आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि गूंगी गुड़िया कोई असंसदीय शब्द नहीं है।
21: अशा वेळेस हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणं म्हणजे चूप बसणं, आणि तशी भूमिका ही त्यांनी त्या ठिकाणी निभावल्याच्या अनुषंगानं गुंगी गुडिया हा शब्दप्रयोग त्या ठिकाणी केलेला आहे। गुंगी गुडिया ही शिवे आहे का, गुंगी गुडिया हा अपशब्द आहे का, गुंगी गुडिया हा काही अनपार्लमेंटरी विषय आहे का, नाही, हे एक वर्णन आहे आणि ते वर्णन जसं जसं तो शब्द आहे अगदी तशाच स्वरूपामध्ये हा उपमुख्यमंत्री यांच्यावर तो अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने बसलाय।
15: बताया जा रहा है कि सुनीत्रा पवार गार्जियन मिनिस्टर के तौर पर बीड जिले के दौरे पर गई थी। वहां उन्होंने प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो सिर्फ बैठकों के बारे में जानकारी देंगी, दूसरे मुद्दों या विवादों पर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देंगी। उधर एनसीपी माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रही, इधर कांग्रेस भी अपने रुख पर अड़ गई है।
17: कांग्रेस जो है अपने स्टेटमेंट पर कायम है और उनका कहना है कि इस टिप्पणी को जो है इस संबोधित जो संबोधन किया गया है सुनीत्रा पवार जी को गूंगी गुड़िया कहकर उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। फिलहाल एनसीपी ने कांग्रेस का कार्यालय जो है तन्ना हाउस में वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, कोलाबा पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच की तकरार कहां जाती है।
15: सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी सपकाल के खिलाफ गुंगी गुड़िया बयान पर आक्रामक अंदाज में दिखे। मायावती ने सपकाल के इस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़कर विपक्ष की मुसीबत बढ़ा दी है।
22: मला असं वाटतं की अतिशय खालच्या स्तरावर हे उतरलेले आहे। मुळामध्ये यांना कुठलाही रिस्पॉन्स मिळत नाही, कोणी विचारत नाही, त्यामुळे न्यूज मध्ये येण्याकरता अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे. बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीनं यांची कारवाई चाललेली आहे. आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे हे आता आपल्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे.
1: अरे उनकी बुद्धी भ्रष्ट हो गई है, मती भ्रष्ट हो गई है. ये केवल सुनेत्राताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है. और जरूर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगी हमारी माता बहने. और इसलिए उनकी निंदाजनक बयान पे उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए.
15: सुनीत्रा पवार पर दिए इस बयान के बाद एनसीपी कार्यकर्ता सभी जिलों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं.
2: सत्ताधारी और विपक्ष के बीच का ये संघर्ष और अधिक तीव्र होने वाला है. बस सवाल इतना ही है कि क्या जनता के सही सवालों से इससे ध्यान भटकेगा, और क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का जो स्तर है वो और नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से जनता के हितों के प्रश्न जो है वो नहीं सुलझते, बल्कि इससे सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है और सवालों से ध्यान भटकाया जाता है. कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक.
6: अमेरिका के टेक्सस में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता का भव्य संगम देखने को मिला है, जहां 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ श्रीमद भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया.

0: और इसी के साथ यहाँ वक्त हो जाए एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

संसद में आज भी हंगामे के आसार। इंडिया गठबंधन के दलों का आज गांधी मूर्ति से प्रेरणा स्थल तक विरोध मार्च। तीन अहम मांगों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश। धारा 370 खत्म होने के 7 साल पूरे हुए। आज पीडीपी का पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी मनाएगी ब्लैक डे। किए गए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। यूपी विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम। चंदे की रसीद मांगने वाले स्पीकर के बयान पर ओवैसी ने उठाए सवाल। पूछा, क्या आप कोई आस्था के आधार पर चोरी को चोरी नहीं कह सकता। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर घमासान। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब। बैकफुट पर आए। और झारखंड में 12वें दिन भी जारी है छात्रों का प्रदर्शन। सोरेन सरकार जागी। सीएम बोले, संवैधानिक दायरे में होगा इंसाफ। बीजेपी मानसून सत्र में चर्चा की मांग करेगी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बजे हैं और देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर की, वो ये कि संसद में जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और आज भी विपक्षी दल सरकार को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के दल आज गांधी मूर्ति से लेकर संसद परिसर में प्रेरणा स्थल तक मार्च करने की तैयारी में है। यानी सड़क से लेकर संसद तक हंगामा और संसद परिसर में आज विपक्षी दल मार्च करेंगे। इस दौरान विपक्ष 3 अहम मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के शामिल होने की भी संभावना है। दरअसल विपक्ष की 3 अहम मांगे हैं, वो क्या आपको बता दें। पहला, छात्रों पर हाल ही में यानी 20 जुलाई को जो संसद मार्च हुआ था उसमें पुलिस बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह सदन के भीतर बयान दें। दूसरी मांग क्या है, दूसरी मांग ये कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सदन के दोनों पटल पर चर्चा होनी चाहिए। और तीसरा, जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दे। अनुच्छेद 370 खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और तब सरकार ने कहा था कि ये मांग एक समय पर उसे पूरा जरूर किया जाएगा। तो अब इन 3 बड़ी मांगों को लेकर के विपक्ष हंगामे पर है। पहले हमने सड़क पर हंगामा देखा और अब सदन में आज मार्च करने की तैयारी में। तो पहली मांग क्या, आपको ये भी बता देते हैं। संसद परिसर में जब विपक्ष का मार्च होगा तो उनकी पहली मांग ये है कि छात्रों पर जो पुलिस की कार्यवाही हुई, आंसू गैस के गोले चले, पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उसको लेकर के गृहमंत्री सदन में जवाब दें, लोकसभा में, राज्यसभा में जवाब दें। संसद पर फिर विपक्ष के मार्च की दूसरा मुद्दा यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर भी लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी मांग ये कि जम्मू कश्मीर को अब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और इस मांग को लेकर के, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी भी आज सभी 20 जिलों में प्रदर्शन करने जा रही है। ये दल 370 और 35A को हटाने की 7वीं बरसी पर प्रदर्शन करने वाले हैं। 7 साल पहले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था, 35A को हटा दिया गया था और उसके एक दिन पहले भी श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने कैंडल मार्च किया। आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी है, इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े किए गए हैं।
1: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर सियासत तेज है। फैसले के विरोध में श्रीनगर में नारे लग रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने इस प्रदर्शन के दौरान आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग दोहराई है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी कल श्रीनगर में विरोध मार्च निकालने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस वालों से उनकी कहासुनी भी हुई।
2: हम यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। जो पुलिस वाले हैं आप देख रहे हैं, हमें यहाँ रोक रहे हैं पोलो व्यू में। वी आर ट्राइंग, शी इज मैन हैंडलिंग मी, नेहा जैन मैम, यू मैन हैंडलिंग मी, बैक ऑफ। आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ, जंतर मंतर में। वी आर कश्मीरीज, वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट।
1: 370 के खिलाफ पीडीपी ने मोर्चा खोला है तो दूसरी ओर पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी काला दिवस मनाने की तैयारी की। दिल्ली में मंगलवार को एक कार्यक्रम में मौजूद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर से किया वादा पूरा करना चाहिए।
3: इंडिया नीड्स टू वेक अप नाउ, नॉट टुमारो, नाउ। अनलेस वी यूनाइटेडली फाइट द डिक्टेटोरियल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, वी आर नेवर गोइंग टू मेक इंडिया ग्रेट, रिमेंबर।
1: एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी विरोध प्रदर्शन को तैयार है तो दूसरी ओर बीजेपी 370 को लेकर आज के दिन पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न मनाने जा रही है। आज के प्रदर्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ हाई अलर्ट मोड में है। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो।
0: उधर संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी लगातार गूंज रहा है। संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ, अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। राज्यसभा में अयोध्या राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस हुई। विपक्ष अब संसद में चढ़ावा चोरी पर अड़ गया है तो सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद न चलने देने के लिए जानबूझकर हंगामा कर रहा है।
4: चढ़ावा चोरी का चक्कर, सरकार और विपक्ष में टक्कर। चढ़ावा चोरी पर हंगामा, संसद में विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा। संसद के बाहर चढ़ावा चोरी का प्रदर्शन, संसद के अंदर तीखी बहस,
5: इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह आपसे,
4: खड़गे और किरण रिजिजू राम मंदिर पर भिड़े, सियासी शोले भड़के, मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष की लड़ाई चढ़ावा चोरी पर आई। संसद के मानसून सत्र को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा ना हुआ हो और संसद स्थगित ना हुई हो।
5: सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
4: पहले नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के संसद चलो मार्च पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने कोहराम मचाया, तो अब अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ी हुई है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए। इसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई और पूरे विपक्ष ने पोस्टर बैनर लेकर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर हंगामा मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बीच में प्रियंका गांधी हैं और विपक्षी सांसदों ने पूरा घेरा बना रखा है और बड़ा सा बैनर लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सवाल कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीच में विपक्ष ने एक दान पेटी रखी हुई है जिसमें बारी बारी से चंदा डाला जा रहा है। एक साइड में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी और लाल तख्तियों के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।
6: हम लोग मकर द्वार पर हैं और मकर द्वार पे आप कुछ इस तरीके से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पे आप देखिए दाई तरफ से लेकर अमित शाह जवाब दो से लेके उसके अलावा तमाम ये पोस्टर और बैनर आपको नजर।
4: यही नहीं, संसद के मकर द्वार के पास समाजवादी पार्टी दान पेटी लेकर बैठ गई और डिंपल यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी वहां मौजूद रही। आप देख सकते हैं कि कैसे डिंपल यादव दान पेटी से चढ़ावे की गिनती कर रही हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना साध रही है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जोर शोर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा रही है।
7: राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, एक किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो।
8: उस पे SIT का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी। हाई कोर्ट के ने जो SIT का गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही सख्त से सख्त।
9: तो राम मंदिर में चोरी हुई डकैती हुई। वो कमेटी होम मिनिस्ट्री ने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस पर भी अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि ये भगवादारियों में जो चोर बैठे हुए थे उन्होंने क्यों डकैती की।
4: संसद के बाहर विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा, तो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से चंदा चोरी पर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ कैश चढ़ावा, गहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र सरकार को ही देना होगा। इस पर खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस भी हो गई।
10: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी चरण में बताइए ईडी सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच
11: ये भाई लीडर ऑपोजिशन तय कर रही है। ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर। आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन करके जिनको जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय।
4: किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है।
12: कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं। ये लोग और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है।
4: खड़गे ने सवाल किया कि ईडी सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि राम विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, उसके बाद सरकार से जवाब मांगे। आज तक ब्यूरो।
0: तो राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सिर्फ संसद में नहीं गूंज रहा है बल्कि यूपी विधानसभा में भी चढ़ावा चोरी को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधानसभा पार्टी के विधायक सचिव यादव को सीएम योगी का फोटो लेकर विरोध करना भारी पड़ गया। सदन के अंदर हुए हंगामे के चलते स्पीकर ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया।
13: मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। सचिन आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
14: हमारी ये सरकार
13: नॉट अलाउड टू डू दैट प्लीज आप सुनिए आई विल नॉट मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
4: उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री योगी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। क्यों हंगामा बरपा, क्यों समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर स्पीकर आग बबूला हो गए, आज आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा और इस्तीफे के बाद पहली बार चंपत राय नजर आए। चंपत राय इन दिनों अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। साधु संतों से चंपत राय की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची। नई एसआईटी टीम ने क्या क्या किया आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम की।
15: हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया
14: और हम यहाँ सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें।
4: मानसून सत्र के दूसरे दिन आज भी चहावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक अंदाज दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में भाषण शुरू किया, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर शोर मचाया। विपक्ष शोर मचाता रहा और सीएम बोलते रहे,
15: नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी, लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही, इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
4: मामला तब बिगड़ा जब समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। विधायकों के हाथों में पोस्टर थे, एक पोस्टर को लेकर स्पीकर सतीश महाना आग बबूला हो गए।
16: आप उसको नीचे करिए, सचिन आप उस मुख्यमंत्री जी की फोटो को नीचे
15: करिए।
16: प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा
15: के साथ।
16: आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं, आप सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। यू कैन डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकाल दिया, ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे आप, चलिए बाहर। इनके साथ जो भी लगेंगे मैं सबको निकाल दूंगा, नहीं, इट्स नॉट अलाउड, ये इस बात में इजाजत नहीं देता हूँ।
4: समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
15: ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जान बूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है, इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
4: विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन ये साफ है कि समाजवादी पार्टी चहावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है।
17: पानी दोनों मिक्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है आप विश्वास रखिए मुख्यमंत्री पर, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, लेकिन न दूध का पता है आज के समय में और न पानी का पता है। नृपेंद्र मिश्रा जो इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और अध्यक्ष हैं उसके निर्माण समिति के, आप इनसे जब इन्होंने क्या कहा कि ये खुली डकैती है, डाका डालने का काम हुआ है।
18: देखिए, ये लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, काश गंभीरता दिखाते, काश मुद्दों पर बात करते, विधानसभा के भीतर जाते, तथ्यों के साथ बात करते, पर क्योंकि तथ्य है नहीं, मुद्दे है नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार शानदार काम कर रही है, बहुत सारे प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं, तो जब मुद्दे नहीं है तो अब आपको ओटीटी पर जाने की जरूरत नहीं है। और काश ये गंभीर राजनीति करते, अगर ये गंभीर राजनीति करते तो ये बताते कि आज उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से योगी जी कहां पर लेकर आए।
4: चढ़ावा चोरी के मुद्दे से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है, तो विपक्ष के हंगामे के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय भी अयोध्या में एक बार फिर एक्टिव हैं। वो साधु संतों से मिल रहे हैं।
19: पिछले 3-4 दिनों में चंपत राय ने आधा दर्जन से ज्यादा मठों में अपनी हाजिरी लगाई है और संतों से बंद कमरे में मुलाकात की है। इसके मायने क्या हैं? क्या अब अयोध्या से उनके चला चली की बेला है? क्या वो अयोध्या छोड़कर अब यहाँ से जा रहे हैं, या फिर अपनी सफाई उन संतों को पेश कर रहे हैं जो पहले के दौर में उन्हें कहीं ना कहीं उनसे नाराज रहते थे।
4: दूसरी तरफ बैंक लॉकर्स में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए गए गहनों की जांच भी एसआईटी ने शुरू कर दी है। एसआईटी अब लॉकरों में रखे सोने चांदी के गहनों का सत्यापन करेगी।
20: एसआईटी को ये भी शक है कि इन आभूषणों के जरिए भी हेराफेरी की गई है जो रामलला को चढ़ाए गए हैं। अब ऐसे में एसआईटी की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है जहां पर बैंक को भी दायरे में लिया जाएगा। तो ये साफ हो गया है कि अब एसआईटी एक एक करके हर क्रम पर आगे बढ़ रही है और उनकी जांच बढ़ा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: चंदा चोरी पर यह हल्ला, विपक्ष का हंगामा, एक बात तो साफ लग रहा है कि यूपी में अब एक माहौल बनने लगा है, क्योंकि जनवरी फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन एक और भी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिससे आपको लगेगा कि यूपी चुनाव के मुहाने पर खड़ी है। अब यूपी में सरकार को मदरसों की याद आ रही है। सीएम योगी ने यूपी में मदरसों की डिग्री पर हंटर चलाया तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि मदरसे चाहे कहीं का भी हों, वो आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री हैं।
4: सीएम योगी ने यूपी के मदरसों पर नया हंटर चलाया है। जी हां, योगी सरकार अब मदरसों की ओर से दी जाने वाली कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पर रोक लगाने जा रही है। जी हां, अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक ही पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पीजी की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। यूपी कैबिनेट में मदरसे को लेकर बड़े फैसले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें पारित होने वाले 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का भी है।
21: तो ये करें क्या, हवा खराब हो चुकी है। आंतरिक सर्वे इन लोगों ने खुद ही कराया, 100 के आसपास सिमट रहे हैं। तो सत्ता जब जाने लगती है तो बौखलाहट में क्या कर दिया जाए, वो एक उसी का शगुफा है, जो चाहे बोले।
4: योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री देना

0: है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक ही पढ़ाई करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अब इन्हें यूजीसी से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा, लेकिन मदरसों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हां, केशव मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है।
1: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
2: मानसिक रोगी है, ये मानसिक रोगी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी ये हिंदू मुसलमान अब चलने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, जैन जी समझा चुके हैं इन्हें।
3: अगर एक भी आतंकवादी निकला तो उसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं में तालीम दी जाती है। सरकार को चाहिए कि उन्हें आईटीआई की परमिशन दे। सरकार अपने वोटों के एजेंडे को नफरत फैलाने का काम कर रही है और ये
4: मुद्दों को भटकाकर असली मुद्दों से हटना इनकी साजिश है। हमेशा ऐसी बात करकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अब गुमराह नहीं होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
0: ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्राथमिक स्कूल बंद करने से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गिराने और अब मदरसों में डिग्री की पढ़ाई बंद करना सरकार की सिर्फ नाकामी छिपाने की कोशिश है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: संसद में आज भी हंगामे के आसार। इंडिया गठबंधन के दलों का आज गांधी मूर्ति से प्रेरणा स्थल तक विरोध मार्च। तीन अहम मांगों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश। धारा 370 खत्म होने के 7 साल पूरे हुए। आज पीडीपी का पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी मनाएगी ब्लैक डे। किए गए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। यूपी विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम। चंदे की रसीद मांगने वाले स्पीकर के बयान पर ओवैसी ने उठाए सवाल। पूछा, क्या आप कोई आस्था के आधार पर चोरी को चोरी नहीं कह सकता। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर घमासान। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब। बैकफुट पर आए। और झारखंड में 12वें दिन भी जारी है छात्रों का प्रदर्शन। सोरेन सरकार जागी। सीएम बोले, संवैधानिक दायरे में होगा इंसाफ। बीजेपी मानसून सत्र में चर्चा की मांग करेगी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है ब्राजील के साओ पोलो से। एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से भयंकर तबाही हुई है। यह मामला साओ पोलो के बाहरी इलाके का है। वहां केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, उसके शोले आसमान छूते दिखाई दिए। आग ये देखिए, आग इतनी भयावह है कि पूरे इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। भीषण आग के कारण लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों को आसपास के घरों से करीब 150 निवासियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सॉल्वेंट्स, पॉलिएस्टर, रेजिन बनाने वाली जो कंपनी है, आग पर काबू पाने के लिए लगभग 30 फायर टेंडर्स को लगाना पड़ा। आप सोचिए, रेजिन की गाड़ियां जहां पर पॉलिएस्टर बन रहा है, तो अपने आप में ये बहुत ज्वलनशील होते हैं और ऐसे में आग को बढ़ावा मिला। ये देखिए कितनी दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। ये घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस फैक्ट्री के आसपास जो रिहायशी इलाकों में है, वहां से लगभग 150 लोगों को खाली करना पड़ा, वहां से हटाया गया। 30 से ज्यादा फायर टेंडर्स को वहां पर लगाया गया और पूरे इलाके में दहशत का माहौल। आप सोचिए कि जिस जहां पर पॉलिएस्टर, रेजिन या ऐसी चीजें बनती हैं, उनमें आखिर स्थिति कैसी होती होगी, कितना भयानक मंजर होता होगा। इन तस्वीरों को आप देखें कि जलने के लिए इतनी बड़ी फैक्ट्री है। अब ये देखिए कितनी भयानक लगते हैं। अब आप सोचिए, ब्राजील का साओ पोलो का इलाका, और ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। जहां पर आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया है और उसके किनारे वो लोगों के घर हैं। जैसे आग पकड़ी, क्योंकि उसमें जो फायर, जो केमिकल्स हैं, वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होते हैं और इसी के चलते वहां धमाके सुनाई दिए और पूरे बाद पूरा का पूरा इलाका इसकी चपेट में आ गया। और इसके ठीक आगे ये जो आप जंगल देख रहे हैं जहां पर पेड़ पौधे हैं, तो ऐसे में, और ये इंडस्ट्रियल यूनिट है जो कूलेंट और इसके अलावा केमिकल स्टॉक है, इसकी वजह से आग के गुबार, आग के गुबार इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो बेहद ज्वलनशील केमिकल्स हैं वो इसकी चपेट में, और उसके बाद धुएं का गुबार, आग के गोले में पूरा इलाका तपता। अगर समय रहते हुए वहां से लोगों को खाली नहीं किया जा सकता, तो इस घटना में मारे जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी। दर्जनों फायर टेंडर्स को यहां पर लगाना पड़ा। इलाका देखिए, ये कम से कम 5 से 6 हजार स्क्वायर फीट का जो पूरा इलाका, वहां से शुरुआत हुई और उसके बाद देखते देखते लगभग 20 से 25 हजार। यहां पर देखिए ये सारे कूलेंट के जो स्टॉक होते हैं, ये आग जब बढ़ती है उसके साथ फैक्ट्री का हर एक इलाका उसकी चपेट में आता है। यानी 20 से 25 हजार स्क्वायर फीट का जो पूरा इलाका है वो उसकी चपेट में आया। धमाके सुने गए, उसके साथ आग फैलती चली गई। तो आसपास के रिहायशी इलाकों में जो लोग थे, उसी के साथ जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उन सबको वहां से हटाना पड़ा और इसी के बाद जो है आग पर काबू पाया गया। ये देखिए कितनी दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं। और उसी के साथ साथ जैसे स्टॉक में वहां पर धमाके होते रहे, आग बढ़ती गई, दर्जनों फायर टेंडर्स को लगाया गया। साओ पोलो की यह घटना है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि आग बुझाने के बाद भी यह भी कोशिश होगी कि कहीं पर अगर कोई और विस्फोटक सामग्री हो सकती है, ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जिससे आग बढ़े, तो आसपास की दूसरा जो आसपास का आग इंडस्ट्रियल इलाका देख रहे हैं, ये बढ़ने ना पाए। तो ब्राजील के साओ पोलो का इलाका, बेहद गंभीर घटना। अब आप देखिए उसके बाद 150 लोग जो आसपास में, तो उन्हें तुरंत निकालना पड़ा। और कैसे दूसरे हिस्सों में देखा जा सकता है, आग लगातार बढ़ती जा रही थी। फायर ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। और जैसा हम लगातार आपको एक खबर दिखाते हैं कि दिल्ली के अलावा झारखंड में भी एक जंतर मंतर है, तो उस जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है रांची में। परीक्षा में धांधली को लेकर जेपीएससी के खिलाफ मोर्चा जो खुला है, आज इस प्रदर्शन का 12वां दिन है। हेमंत सोरेन सरकार के सामने अब चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस मुद्दे को सदन में उठाने का फैसला कर चुकी है। तो झारखंड में यानी 6 अगस्त से कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी, जो कि झारखंड विधानसभा में विपक्ष में है, इस मामले को लेकर सोरेन सरकार को घेरेगी, चर्चा की मांग करेगी। तो झारखंड में जो परीक्षा को लेकर के मामला है, उसको लेकर के 12 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं।
1: वी आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रेंज टाइम इन आवर कंट्री। स्टूडेंट्स आर ऑन द स्ट्रीट इन सिवियर पेन। दे डोंट हैव वर्क। They are asking for fairness in exams. They are asking for an education system that works.
2: छात्र बीजेपी शासन पर सवाल उठाकर सड़कों पर उतरे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री को घेरते, और छात्र अगर कांग्रेस गठबंधन शासित राज्य में सरकार की नीति पर सवाल करते हैं तो बीजेपी राहुल गांधी की चुप्पी पर प्रश्न करती है।
3: आप देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा।
2: राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में कांग्रेस के युवा और छात्रों से जुड़े कार्यक्रम गूंज में जाने वाले हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि रांची में 12 दिन से प्रदर्शन करते छात्रों की मांग वाली गूंज राहुल गांधी कब सुनेंगे?
3: कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही।
2: नीट पेपर लीक के पीड़ित छात्रों से राहुल गांधी मिलते हैं, अच्छी बात। लेकिन 2 अगस्त को कर्नाटक के विजयपुरा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की ओमार शीट का नंबर और सवालों का नंबर बेमेल होने, प्रश्न पत्र तय समय से देर से बांटने जैसे आरोपों पर जब छात्र गुस्सा करते हैं तो फिर बीजेपी और जेडीएस कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खड़गे को घेरती है, इस्तीफा मांगती है। तो कर्नाटक के मंत्री खड़गे के जवाब पर क्या राहुल गांधी ध्यान देंगे?
4: जेडीएस डिमांड दैट यू रिजाइन फ्रॉम योर।
5: या आई विल रिजाइन, लेट देम फर्स्ट 25 डेज लेट देम गो ऑन हंगर स्ट्राइक, देन इफ दे डोंट कंट्रोल वी विल डू वन लाठी चार्ज एंड देन आई विल रिजाइन, जस्ट लाइक हाउ दे डिड फॉर दिस थिंग।
3: कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर अहंकार से प्रियंका खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया। जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी राहुल जी पूरी तरह से चुप है।
2: यानी कुल मिलाकर सियासत ये कि छात्रों को भी मेरा राज तेरा राज, मेरा शासन तेरा शासन दोनों तरफ बांट दिया गया, जहां रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ 12 दिन से प्रदर्शन जारी है, मांग अब तक इनकी नहीं सुनी गई।
6: जेपीएससी और जेएसएससी में जो लार्ज स्केल करप्शन है और इनका जो आरोप है कि सीटें बेच दी जाती है, आम बच्चे जो तैयारी करते हैं वो टकटकी लगाए बैठे रह जाते हैं, नौकरी कोई और ले जाता है, पैसे वाले को नौकरी मिल जाता है। अब ये आर पार की लड़ाई के मूड में है और दिन रात इसी तरह से इस टेंट के अंदर नारेबाजी होते रहती है।
7: जब तक तत्काल प्रभाव से हाल के दिनों में जेपीएससी और जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई है सरकार रद्द करे, और सरकार स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है स्टेट के लिए एक कानून बनाए कि जो भी व्यक्ति इस तरह के पेपर लीक में संलिप्तता पाई जाती है उसको 15 दिन के अंदर पास ट्रायल करके फांसी का सजा होगा, उससे नीचे नहीं होगा।
4: जेपीएससी की एग्जाम में जो गड़बड़ी पाई गई है ये पहली बार नहीं है, ये झारखंड राज्य में फर्स्ट जेपीएससी से लेकर 14वीं जेपीएससी तक हर जेपीएससी गड़बड़ी में ही पाई गई है। लेकिन ये वर्तमान सरकार वही कह रही है जैसे पूर्व सरकार बच्चों को बुड़बक बनाई कि हम सीआईडी का जांच लगाते हैं।
2: 12 दिन से रांची में चलते प्रदर्शन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। मांग है कि 14वीं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा रद्द हो और सीआईडी की जगह सीबीआई से धांधली की जांच कराई जाए।
8: सीआईडी हो गया, उस पे विश्वास हो ही नहीं पा रहा, तो सरकार के ऊपर क्या ही विश्वास करके करेंगे, होगा तो ही विश्वास कर पाएंगे, क्या कि विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार तो सीआईडी को जांच करने दे देता है, सीआईडी तो जांच करके देता है, सरकार का वो तोता है, जो चाहेगा वही करवाएगा। हम लोग को एक ही उम्मीद है कि सीबीआई को सौंप दे ये चीज।
9: जो लड़ाई का जो साहस है वो छात्रों के बीच में और बढ़ा है, और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे।
10: सरकार के आंख भी है, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है उसका उत्तर का हमें इंतजार है, और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे।
11: वो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी हैं और इसके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए, झारखंड सरकार इसी पे काम कर रही है।
12: पिछले 15-20 दिन से लगातार झारखंड धूप गर्मी बरसात सबों में हमारे बच्चे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं जा रहा है। दूसरा जो सवाल है कि यदि जेपीएससी के चेयरमैन के ऊपर आपने रेड डाला, उसका इस्तीफा हो, तो जो उसके मेंबर्स हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं, उनकी पत्नी भी उसकी मेंबर है, इन लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है?
2: छात्रों के मुद्दे पर दो बातें अब तक की राजनीति में देखने को मिलती आ रही। छात्र अगर बीजेपी शासित राज्य के होंगे तो विपक्ष को बहुत जोर से छात्रों का मुद्दा याद आता है, सरकार चुप्पी साधती। छात्र अगर विपक्ष शासित राज्य के होंगे तो विपक्ष के मुंह में दही जम जाता है, बीजेपी कहती है अब तुम बोलो, मुद्दा राजनीति नहीं जवाबदेही होनी चाहिए। और विपक्ष को अगर बीजेपी शासित राज्य में जवाबदेही चाहिए तो जवाबदेही का वो मॉडल अपने शासन वाले राज्य में भी दिखाना होगा।
0: उधर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाया है, उन्हें गूंगी गुड़िया करार दे दिया है, जिसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर जमकर हंगामा किया, सपकाल से माफी मांगने की मांग की। अब महायुति ने सपकाल के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया है।

0: साल 1966 और उसके बाद भी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को संसद में चुप्पी के लिए कई बार गूंगी गुड़िया कहकर निशाना साधा था। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी गई। अब यही गूंगी गुड़िया का सियासी शोर महाराष्ट्र में सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सरकाल ने महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम और एनसीपी सुप्रीमो सुनीत्रा पवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंगी गुड़िया करार दे दिया, जिसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस मुख्यालय में हमला बोल दिया।
1: गूंगी गुड़िया बोल के टिका टिप्पणी की है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक महिला उप मुख्यमंत्री के प्रति, सुनेत्रा वहिनी अजीत पवार के प्रति कितना मन के अंदर द्वेष है, ये प्रकट होता है। आज कुछ दिन नहीं हुए उनको उप मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसे प्रसंग में वो उप मुख्यमंत्री बनी है जब अजीत दादा अपने में से जाने के बाद वो सारा दुख झेल के आज उप मुख्यमंत्री बन के वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में लगी है। और ये सेवा उनको दिखती नहीं है, लेकिन उनको गूंगी गुड़िया बोल के कहा जाता है।
0: उस समय सपकाल किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी सपकाल माफी मांगो इस्तीफा दो के नारों से कांग्रेस दफ्तर गूंज उठा। मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।
2: एनसीपी जो है आक्रामक होती हुई नजर आई और मुंबई कांग्रेस का जो तन्ना हाउस में कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर उन्होंने जाकर प्रदर्शन किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तभी एनसीपी कार्यकर्ता अंदर गए और उन्होंने वहां पर जोरदार घोषणाबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और फिलहाल ये जो मुंबई कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। एनसीपी द्वारा जो कांग्रेस द्वारा जो वक्तव्य किया गया है उसका विरोध किया गया है और कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि ये टिप्पणी जो है उसको पॉजिटिव तरीके में लिया जाए। और इंदिरा गांधी जी को भी यही कह के संबोधित किया गया था, लेकिन तब कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी थी, उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया था। सुनेत्रा पवार जी को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन एनसीपी जो है वो अपनी माफी की मांग पर अड़ी हुई है।
0: हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सपकाल गूंगी गुड़िया वाले बयान पर माफी नहीं मांगते पूरे राज्य में एनसीपी का आंदोलन जारी रहेगा।
2: एनसीपी कार्यकर्ताओं को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में लाया गया है, यहां पर उनको डिटेन किया गया है। कांग्रेस द्वारा सुनेत्रा पवार पर इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई है। आप देख सकते हैं पुलिस बल ज्यादा बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए यहां पर पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहां पर दिखाई दे रही है।
3: उनको माफी मांगने के लिए तैयार करेंगे
4: हम, वो हर्षवर्धन सकपाल को बोलेंगे और उनको हम राजीनामा के लिए रेडी करेंगे ही करेंगे, नहीं तो हमारा पूरा बॉम्बे में क्या पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन होगा।
5: वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी, वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी।
0: वही एनसीपी शरद गुट के फायर ब्रांड विधायक रोहित पवार ने पूरे विवाद पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा गया था तो उन्होंने अपने काम से आलोचकों को जवाब दिया था।
6: इंदिरा गांधी जी को गूंगी बुढ़िया कोई लोग वहां पे कहते थे, जब उनको वहां पे संधि दी गई या उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं बना। मतलब सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो होगा तो नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया।
0: मामला गरमाया तो सपकाल को सफाई देने आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि गूंगी गुड़िया कोई असंसदीय शब्द नहीं है।
7: अशा वेळेस हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणं म्हणजे चूप बसणं आणि तशी भूमिका ही त्यांनी त्या ठिकाणी निभावल्याच्या अनुषंगानं गुंगी गुड़िया हा शब्दप्रयोग त्या ठिकाणी केलेला आहे। गुंगी गुड़िया ही शिवे आहे का, गुंगी गुड़िया हा अपशब्द आहे का, गुंगी गुड़िया हा काही अनपार्लमेंटरी विषय आहे का, नाही, हे एक वर्णन आहे आणि ते वर्णन जसं जसं तो शब्द आहे अगदी तशा स्वरूपामध्ये हा उपमुख्यमंत्री यांच्यावर तो अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने बसलाय।
0: बताया जा रहा है कि सुनीत्रा पवार गार्जियन मिनिस्टर के तौर पर बीड जिले के दौरे पर गई थी। वहां उन्होंने प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो सिर्फ बैठकों के बारे में जानकारी देंगी, दूसरे मुद्दों या विवादों पर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देंगी। उधर एनसीपी माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रही, इधर कांग्रेस भी अपने रुख पर अड़ गई है।
2: कांग्रेस जो है अपने स्टेटमेंट पर कायम है और उनका कहना है कि इस टिप्पणी को जो है इस संबोधित जो संबोधन किया गया है सुनीत्रा पवार जी को गूंगी गुड़िया कहकर उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। फिलहाल एनसीपी ने कांग्रेस का कार्यालय जो है तन्ना हाउस में वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, कुलाबा पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच की तकरार कहां जाती है।
0: सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी सपकाल के खिलाफ गुंगी गुड़िया बयान पर आक्रामक अंदाज में दिखे। मायावती ने सपकाल के इस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़कर विपक्ष की मुसीबत बढ़ा दी है।
8: मला असं वाटतं की अतिशय खालच्या स्तरावर हे उतरलेले आहे। मुळामध्ये यांना कुठलाही रिस्पॉन्स मिळत नाही, कोणी विचारत नाही, त्यामुळे न्यूज मध्ये येण्याकरता अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे। बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीनं यांची कारवाई चाललेली आहे। आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे हे आता आपल्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे।
9: अरे उनकी बुद्धी भ्रष्ट हो गई है, मती भ्रष्ट हो गई है। ये केवल सुनेत्राताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है। और जरूर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगी हमारी माता बहनें, और इसलिए उनकी निंदाजनक बयान पे उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
0: सुनीत्रा पवार पर दिए इस बयान के बाद एनसीपी कार्यकर्ता सभी जिलों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
10: सत्ताधारी और विपक्ष के बीच का ये संघर्ष और अधिक तीव्र होने वाला है। बस सवाल इतना ही है कि क्या जनता के सही सवालों से इससे ध्यान भटकेगा, और क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का जो स्तर है वो और नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से जनता के हितों के प्रश्न जो है वो नहीं सुलझते, बल्कि इससे सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है और सवालों से ध्यान भटकाया जाता है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
11: और बात करेंगे मौसम की। पहाड़ों पर मानसूनी तबाही मचाई दिखाई दे रही है, तो सबसे बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है। कई जगहों से फ्लैश फ्लड की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
12: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है उसे इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बीच नाला पूरे उफान पर है, लहरें घरों के किनारों को छूती हुई तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कुदरत के रौद्र रूप को देखकर लोग बेहद डरे हुए हैं। दिलों में खौफ है कि कहीं सैलाब का प्रहार उनके मकान को ही नुकसान न पहुंचा दे।
13: मौसम विभाग ने कहा है कि ये सिलसिला जो है एक हफ्ता और जारी रहेगा, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी जा सकती है। कहां पर ये फटेगा, कहां फ्लश फ्लड आएगा, तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही इसका जो इलाज है कि लोग सतर्क रहे।
12: अब बांदीपुरा की ही एक और तस्वीर को देखिए। लहरें किस तरह उफनाई हुई हैं और हाहाकार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। कई इलाके भी इन लहरों के जद में आ रहे हैं। राजौरी का हाल भी कुछ ऐसा ही है, फ्लैश फ्लड से यहाँ भी खतरा बढ़ा हुआ है। तमाम जगहों पर घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। गुरेज के पोरकबल इलाके में बादल फटने के बाद कुछ लोग लहरों के बीच फंस गए और कई मवेशी बह गए। वहीं पहलगाम में अचानक आई बाढ़ ने सड़क के कई हिस्सों को बहा दिया है, जिससे पहलगाम का संपर्क प्रभावित हो गया है। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन बारिश के बीच इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।
11: तो बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: होता है कुंडली में शाप का दोष? कुंडली में शाप कैसे पैदा होता है? क्या है कुंडली में शाप की समस्या और कैसे करें सावन में इसका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

संसद में आज भी हंगामे के आसार। इंडिया गठबंधन के दलों का आज गांधी मूर्ति से प्रेरणा स्थल तक विरोध मार्च। तीन अहम मांगों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश। धारा 370 खत्म होने के 7 साल पूरे हुए। आज पीडीपी का पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी मनाएगी ब्लैक डे। किए गए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। यूपी विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम। चंदे की रसीद मांगने वाले स्पीकर के बयान पर ओवैसी ने उठाए सवाल। पूछा, क्या अब कोई आस्था के आधार पर चोरी को चोरी नहीं कह सकता। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर घमासान। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब। बैकफुट पर आए। और झारखंड में 12वें दिन भी जारी है छात्रों का प्रदर्शन। सोरेन सरकार जागी। सीएम बोले, संवैधानिक दायरे में होगा इंसाफ। बीजेपी मानसून सत्र में चर्चा की मांग करेगी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष हो सकते हैं, बहुत सारे शाप हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई शाप है, कोई दोष है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सावन के महीने में आप अपनी कुंडली के शापों का, दोषों का नाश कर सकते हैं। आज बात करेंगे सावन में शापों का कैसे होगा नाश। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 8:42 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 9:18 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शाप होता क्या है और आम जीवन में शाप को कैसे समझा जाएगा। देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए दुष्कर्मों के कारण उसे लंबे समय तक इसका फल भोगना पड़ता है। कभी कभी ये फल इतना कठोर होता है कि ये जन्म जन्मांतर तक पीछा करता रहता है। जब आपके द्वारा दुष्कर्मों के फल का कारण और निवारण पता ना हो तो इसको शाप कहते हैं। जैसे इस जीवन में आप बहुत ज्यादा कठिनाइयां भोग रहे हो तो ये पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव हो सकता है और इसको शाप कहा जाता है। दुनिया में तमाम तरीके के शाप होते हैं जो अलग अलग कारणों से पैदा हो जाते हैं।

सारे शाप ऐसे होते हैं जो अलग अलग कारणों से इस जीवन में आपके साथ बने रहते हैं। शाप कैसा भी हो और कोई भी हो, भगवान शिव के अलावा शाप का निवारण कोई नहीं कर सकता। भावी में टी सके त्रिपुरारी, बिना भगवान शिव के आपके शापों का निवारण नहीं हो सकता। शाप पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और सावन के पावन महीने में कौन सा उपाय करें जिससे विशेष लाभ हो। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

की बाधाएं दूर होंगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आप किन लक्षणों से जानेंगे, कैसे जानेंगे कि आपके जीवन में शाप का प्रभाव है? लक्षण क्या हैं? अगर कुंडली में राहु की स्थिति खराब हो, राहु की स्थिति निगेटिव हो, तो शाप समझना चाहिए। कुंडली में अगर सूर्य और राहु का संबंध बने तो भी इसको पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव यानी शाप समझना चाहिए। चंद्रमा और राहु का संबंध अगर कुंडली में है तो ये भी शाप का एक कारण बनता है। कुंडली में शनि के साथ अगर राहु का संबंध हो तो ये भी एक प्रबल दोष है, प्रबल शाप का कारण बनता है। राहु अगर कुंडली के आठवें स्थान में बैठा हो, राहु कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हो तो जीवन में शाप होता है, उसकी संभावना बनती है। हाथ के बीचों बीच में अगर तिल हो तो पूर्व जन्म के कर्मों की छाया इस जीवन पर होती है और शाप जैसी स्थितियां जीवन में बन जाती हैं। शाप के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

तो होगा, काम की रुकावट दूर होगी, यात्रा पर जा सकते हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, करियर में समस्या हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दीपिका ने हमें लिखा है, इंदौर मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 4 मई 1993 का जन्म है, शाम को 6:55 जन्म स्थान है इंदौर। दीपिका कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दीपिका, अभी भी थोड़ा सा समय है आपके विवाह होने में। ज्यादातर संभावना विवाह की 2027 में बनती है, जून 2027 से दिसंबर 2027 का एक अच्छा समय है। इस समय में आपके विवाह की संभावना बन रही है, लेकिन जब भी विवाह करिए एक बार कुंडली मिला लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि शाप अपने आप आपकी कुंडली में आ जाते हैं, अपने आप जीवन में प्रभाव डालते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके कर्म जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जीवन में शाप आपको मिल जाता है। किस प्रकार के कर्म को करने से शाप मिलने की संभावना बनती है? अपने दायित्वों को अगर आप ठीक तरीके से नहीं निभाते, जिसकी वजह से लोगों को कष्ट होता है, तो जीवन में शाप की संभावना बन जाती है। बिना आवश्यकता के, बिना जरूरत के अगर आप हरे वृक्ष कटवाकर अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं तो ये भी शाप का कारण बनता है। बिना विशेष जरूरत के हरे पेड़ कटवाना शाप का बड़ा कारण होता है। अगर आप गर्भपात करते हैं या करवाते हैं, विशेष रूप से स्त्री गर्भ की हत्या करते हैं, तो ये महापाप है और इसका शाप भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अपनी पत्नी या पति के साथ या मित्र के साथ अगर आप छल करते हैं, उनको धोखा देते हैं, तो जीवन में एक बड़ा शाप
आपके पास आ सकता है और ये बड़ा शाप आपको जीवन में मुश्किल में डाल सकता है। अगर आप अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानते, अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं और अपने गुरु का अपमान करते हैं तो ये महापाप है। इसका प्रभाव इस जन्म में और अगले जन्म में शाप के रूप में आपको झेलना होगा। गुरु आपको हर तरह की मुश्किल से, हर तरह के शाप से बचा सकते हैं, लेकिन जब आप अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानते तो शाप आपके पीछे लग जाता है और पूरे जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है। शाप पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, विवाह आपका तय हो सकता है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा, काम की अधिकता रहेगी, आंखों का थोड़ा ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर आपके कर्मों की वजह से जाने अनजाने आपके जीवन में शाप आ गया तो इसका निवारण क्या है, इसको दूर कैसे करें। अगर आपने अपने दायित्व ठीक से ना निभाए हों तो आगे से अपने दायित्व ठीक तरह से निभाइएगा। सावन में अस्पताल में दवाइयां बांटिए और जितना संभव हो रोगियों की सेवा करिए। अगर आपने हरे वृक्ष कटवाए हैं तो सावन में लंबी आयु तक रहने वाले बहुत सारे वृक्ष लगवाइए, पीपल, बरगद, नीम, आम, इसके बहुत सारे पौधे आपको सावन में लगाने चाहिए। अगर गर्भपात किया या करवाया है
स्त्री गर्भ को हटाया है तो किसी ज्योतिर्लिंग में या शिवालय में जल और बेलपत्र अर्पित करिए और जितना संभव हो शिव अपराध क्षमा स्तोत्र, शिव अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ करिए। निर्धन लड़कियों के विवाह की जिम्मेदारी लीजिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बालिकाओं का विवाह करवाइए। अगर आपने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की है तो गुरु से नियमित रूप से क्षमा याचना करिए और दूसरे लोगों को ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाइए। याद रखिए कि अगर आपकी कुंडली में शाप है तो वो आपके कर्मों से और भगवान शिव की कृपा से ही दूर हो सकता है। आपके अपने शुभ कर्मों से और भगवान शिव की कृपा से इस तरह के पाप और शापों का नाश होगा। अब आपको बताते हैं एक ऐसे मंत्र के बारे में जिसको आपको रोज सुबह और रोज शाम को पढ़ना चाहिए। इस मंत्र को पढ़ने से पापों का प्रायश्चित होता है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा, श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम, श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम, विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इस श्लोक में कहा गया है हाथ से, पैर से, नेत्र से, वाणी से जो भी पाप या अपराध हुए हैं, आंखों से जो अपराध हुए हैं, जो मुझे ज्ञात हैं, जो मुझे ज्ञात नहीं हैं, ऐसे जो भी अपराध हुए हैं, हे प्रभु, हे भगवान शिव, मेरे उन अपराधों और पापों को क्षमा कीजिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सावन के महीने में पवित्र नदियों से ला करके शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा पाई जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था और उससे सबसे पहले विष निकला था और उसका पान भगवान शिव ने किया था। विष का पान करने से शरीर में गर्मी और उग्रता पैदा हुई, जिसको शांत करने के लिए भगवान शिव के भक्तों ने उनको जल चढ़ाकर शीतलता प्रदान की थी। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि सावन के महीने में पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर 3, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 4, धन लाभ के उत्तम योग हैं। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 9, दुर्घटनाओं से सावधान रहिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की आरती करिएगा। आपके कार्यों में जो रुकावट आ रही है, जो बाधा चली आ रही है, वो बाधा दूर होगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि हर कार्य में सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। कन्या राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज सप्तमी तिथि है। आज आप अपने दोषों को दूर कर सकते हैं और इसके लिए आज शिव जी को दूर्वा और जल अर्पित करिएगा, आपके जीवन के दोष दूर होंगे। सावन का पावन महीना चल रहा है तो आपको बताते हैं कि सावन के महीने के अचूक उपाय क्या हैं सावन सूत्र में। अगर आपको या परिवार में किसी को भी बुरी आदतों से छुटकारा पाना है तो जल में दूर्वा डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करिए, पूरे सावन में अर्पित करिए और सावन के बाद शनिवार को अर्पित करिए। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

संसद के मानसून सत्र में आज भी हंगामे के आसार। छात्रों के मुद्दे सहित तीन मांगों पर अमित शाह के बयान पर अड़ा विपक्ष। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन की तैयारी। कांग्रेस, एसपी, डीएमके, टीएमसी समेत कई दल शामिल होंगे। आज भी यूपी विधानसभा में हंगामे के आसार है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। चढ़ावा चोरी पर भी गतिरोध जारी है। विपक्ष बहस की मांग कर रहा है। योगी सरकार ने कहा बहस की जरूरत नहीं। एसआईटी जांच जारी। यूपी में चुनाव से पहले एसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आज जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने आयोजित किया। अखिलेश यादव करेंगे पुष्पांजलि। संसद परिसर में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। कहा उन्हें माफ करने वाले कौन होते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा छात्र सड़कों पर हैं, बहुत दर्द में हैं। दूसरी तरफ पीएम जो उन्हें माफ कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। बोले आरएसएस की सोच के पीछे बहुत खतरनाक विभाजनकारी विचार काम कर रहा है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा आरएसएस हमारा इतिहास नहीं बदल सकता। बागपत दौरे पर आज होंगे राहुल गांधी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मदरसा शिक्षा पर योगी सरकार का फैसला, कामिल फाजिल डिग्री की मान्यता खत्म होगी। धार के भोशाला विवाद पर एससी में सुनवाई, आज सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों का पक्ष सुनेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुए चुनावों को पूरी तरह दिखावा करार दिया। दिल्ली के जंतर मंतर हिंसा को लेकर के सूत्रों की खबर की एफआईआर में आपराधिक साजिश की धारा भी लगाई गई है। बांकीपुर उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा बीजेपी के सभी समीकरण ध्वस्त हुए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुमित्रा पवार पर कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का हमला, सोशल मीडिया पर अभद्र शब्द का इस्तेमाल। एनसीपी कार्यकर्ता विरोध में सड़क पर उतरे, कांग्रेस दफ्तर में जोरदार हंगामा किया। उप मुख्यमंत्री सुमित्रा पवार ने कांग्रेस की अभद्र टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उचित समय आने पर करारा जवाब दिया जाएगा। सीएम फडणवीस ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि खबरों में बने रहने के लिए राजनीति महाराष्ट्र की संस्कृति में निचले स्तर पर जाने वाले पहली बार देखने को मिले। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी महिलाओं के अपमान से जोड़कर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को अपनी टिप्पणी पर शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में जाहिर की समय सीमा फिर बढ़ाई गई, अब 17 अगस्त तक चलेगा बूथ स्तर पर घर घर सत्यापन। प्रारूप मतदाता सूची 24 अगस्त के बाद प्रकाशित होगी, जबकि दावे और आपत्तियां 24 अगस्त से 23 सितंबर तक स्वीकार की जाएंगी। पीएम मोदी का फेसबुक हटाए जाने के मामले को लेकर के केंद्र सरकार ने मेटा को संबंध दिया है। नेताओं और वीआईपी अकाउंट पर गलत कार्रवाई का जवाब मांगा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बनाने वाले बयान की निंदा की। केशव मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए मदनी ने इसे आजादी के इतिहास, भारतीय संविधान का भी अपमान बताया। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष डीएमके उदयनिधि स्टालिन 8 घंटे तक पूछताछ के बाद रिहा हुए। पुलिस ने मैंने आतंकवादी जैसा सुलूक किया, उन्होंने आरोप लगाया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का धारा 370 हटाए जाने के साथ ही वर्षगांठ से एक दिन पहले श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि हम इस रात को कभी भूल नहीं सकते, हमारी पार्टी अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग करती रहेगी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी विरोध मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। धारा 370 हटाए जाने के विरोध में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी विरोध प्रदर्शन करेगी। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ हाई अलर्ट मोड में। केंद्र सरकार का भगोड़े अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का केंद्र सरकार पर हमला, बोले 40,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़ों को कब लाएंगे वापस। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के एक बयान को लेकर के तीखे प्रतिक्रिया दी, कहा सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि विधानसभा की गरिमा से जुड़ा सवाल है। ओवैसी ने महाना पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या अपराध को अपराध कहने से पहले अपने धर्म का हलफनामा देना होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विवाद के बाद ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपतरा पहली बार सामने आए, जगतगुरु परमहंस आचार्य के अयोध्या न छोड़ने की अपील पर सहमति जताई। यूपी के संभल में सांसद पप्पू यादव के विरोध में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, गांधी चौक पर पुतला फूंका। जेपीएससी को लेकर के छात्र आंदोलन 12वें दिन जारी है, देशभर से मिल रहा है समर्थन। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने 3 गिरफ्तारियां और की। हेमंत सोरेन ने भी पहली बार छात्रों के आंदोलन पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा जेपीएससी मामले में सरकार के पैनी नजर है, समय आने पर इसका फैसला लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने छात्र आंदोलन को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखा, कहा परीक्षा की सीबीआई जांच हो। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने एक बार फिर सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन को सरकार अनसुनी कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के बीच चेहलुम जुलूस को लेकर के पुलिस का अलर्ट, कांवड़ यात्रा चेहलुम जुलूस साथ साथ निकालने के लिए 2 भागों में बांटी गई सड़क। पुलिस ने सड़क के बीच में 10-10 फीट ऊंचे टेंट के पर्दे लगवाए, यात्रा और जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस तैनात की गई है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेल में रजत पदक जीतकर लौटे वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह का जोरदार स्वागत हुआ, अमृतसर हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत।
गीता के श्लोकों की ध्वनि से गूंजा अमेरिका के टेक्सस का डल्लास। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने श्रीमद भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया। मैसूर के अवधूत दत्त पीठाधीश श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। अमेरिका के आध्यात्मिक मिशन को 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जोरदार बारिश से हालात बिगड़े। मुख्य बस स्टैंड के टापू बन जाने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से आफत आई है। सिरमौर नेशनल हाईवे पर 50 से 60 साल पुराना पुल बंद ढह गया। बंगाल के पश्चिम बर्धवान में बारिश से पानी हुआ कबाड़ी मार्केट। जल निकासी मांग को लेकर मजदूरों की हड़ताल। बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने आज के लिए सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारी बारिश के कारण अंडरपास मुख्य बाजार जलमग्न हो गया। सड़कों पर भारी जल भराव। उत्तराखंड में कलसी चक्राता मार्ग भूस्खलन से बंद हो गया है। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा से आया खौफनाक वीडियो फंती नदी के बीच जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को बच्चे मजबूर। गुजरात के गिर में सोमनाथ में समंदर तट पर 5 लड़के पानी में डूबे। 3 को स्थानीय मछुआरों ने सुरक्षित बचा लिया। नासिक में नदी पर बने अस्थायी लकड़ी के पुल से संतुलन बिगड़ने के कारण नदी में बह गया एक आदमी। बाढ़ के कारण पहले भी 4 बार पुल बह चुके हैं। राजस्थान के करौली में जलभराव से हालात बिगड़े। पक्के रास्तों के अभाव में लोग घुटनों तक पानी में जा रहे हैं। बिहार के वैशाली में रास्ते को लेकर के 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। पुलिस प्रशासन के सामने ही दोनों पक्ष भिड़ गए। देहरादून में चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। धनबाद के कतरास में जोरदार धमाका हुआ। धरती फट गई। आधा दर्जन जमीन दोज हो गए। राजस्थान के अलवर में नशे की हालत में 25 फीट ऊंचे ऐतिहासिक गुंबद पर चढ़ा एक युवक आधे घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट देकर खुद ही नीचे उतर गया। मथुरा में जन्माष्टमी से पहले खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। 5,000 किलोग्राम से भी ज्यादा मिलावटी पेड़ा जब्त किया गया। एनएमआरसी ने एंथ्रियम प्राइवेट लिमिटेड को गंभीर सुरक्षा उल्लंघन, मेट्रो की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर नोटिस भेजा। चतरा में सनसनीखेज मामला सामने आया। नाबालिग छात्रा के अपहरण दुष्कर्म के बाद आरोपी ग्रामीणों ने पीट पीट कर हत्या की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान कर देने वाली घटना का वीडियो सामने आया। मॉल में फूड आउटलेट पर काम करने वाली युवती को पीटते नजर आई युवा। पालघर में आपस में मनसे के कार्यकर्ता भिड़ गए। मारपीट में पूर्व शहर अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के आजमगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। बिजली के खंभे से टकराकर डीजल से भरा टैंकर पलट गया। कन्नौज से शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का ऐसा वीडियो सामने आया। सरकारी स्कूल में क्लासरूम में शिक्षक सोते दिखे, बच्चे मोबाइल देखने में मगन थे। सूरत में 3 फुट गहरे गड्ढे में बाइक गिरने से युवक की मौत हो गई। हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। गुजरात के मेहसाणा में नाबालिग ने गाड़ी से आंगन में बैठे 3 लोगों को कुचल दिया। 2 की मौत, कार पर नियंत्रण खोने की वजह से हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बुजुर्ग की दिन दहाड़े हत्या हुई। मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी सहित 3 को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। हैदराबाद में दिल दहलाने वाले वारदात हुए। सनकी युवक ने दिन दहाड़े पीछा करके व्यापारी की बेरहमी से हत्या की। अमृतसर पुलिस ने एक्शन लेते हुए ISI समर्थित 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। 9 आरोपी गिरफ्तार कर दिया। बड़ा हादसा टल गया। उड़ीसा के रायगढ़ में रैगिंग को मारपीट किया चौंकाने वाला मामला सामने आया। रैगिंग की शिकायत करने पर सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को बुरी तरह पीटा। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्कर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शिमला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 6 करोड़ के ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच महिलाओं ने प्रधान के पति को कॉलर पकड़कर कार्यालय से निकाला। पश्चिम यूपी के हापुड़ में 85 लाख रुपए के लूट के मामले में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। हरिद्वार के हर की पौड़ी में उमड़ा कांवड़ियों का जन सैलाब। गंगा स्नान और जल भरने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे। बोलबम के जयकारों से गूंज उठा गया पूरा इलाका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों का सम्मान किया, फूलों के साथ स्वागत किया। बिहार के भोजपुर के रहने वाले सरकारी शिक्षक रवि कुमार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ 9.15 सेकंड में ASZ लिखकर बने दुनिया के सबसे तेज अल्फाबेट राइटर। लद्दाख में जनगणना को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भव्य मैराथन का आयोजन किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम उपलब्धि। देशभर में 50 लाख से ज्यादा घरों तक लगाए गए रूफटॉप सोलर सिस्टम। यमन के समुद्री क्षेत्र के पास भारतीय जहाज MSV फैजे नूरे आलिया पर बड़ा हमला हुआ। अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आने के बाद समंदर में डूबा जहाज। ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर ओमान से बात की, कहा सकारात्मक बातचीत रही है। ईरान अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीद बढ़ी है, कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा। कूटनीतिक समाधान की कोशिशें अभी भी जारी हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के शहर में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला हुआ। 5 लोगों की मौत हुई, 1 नागरिक घायल। यूक्रेन के सुमी समेत कई शहरों पर रूस का भीषण हमला, 3 लोगों की मौत हुई।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंद बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: The Congress government in the center got rid of its own government because of a series of killings in Punjab, including many prominent people. So things had gone really bad in Punjab.
4: Congress party was trying to say that Akalis have to be defeated. You must not allow some other faction of the Akalis to prop up so that votes are divided.
5: They created this Frankenstein called Bhindranwala.
6: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन ने पांचवी इकॉनमी बनने के लिए दौड़ रही हुकूमत को जगाकर न सिर्फ मंत्री का इस्तीफा दिलाया बल्कि परीक्षा व्यवस्था के बारे में सोचने को भी मजबूर किया है। उसी आंदोलन ने दूर झारखंड में भी नौजवानों के बीच बदलाव और इंसाफ की उम्मीद का दिया जलाया। लेकिन इसी बीच जब एक तरफ संघ के तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज शख्स जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को संविधान विरोधी बताते हैं, दूसरी तरफ संघ प्रमुख उन्हीं जेन जी से बातचीत करना चाहते हैं और तीसरी तरफ झारखंड में चल रहे आंदोलन को बीजेपी इंसाफ की जंग बताती है, तो सवाल खड़े होते हैं, क्या देश में आज नौजवानों की आवाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है? क्या जेन जी को संविधान परस्त और संविधान विरोधी करार दिया जा रहा है? और क्या जेन जी के मुद्दों को नजरअंदाज करके सियासत की जा सकती है? जवाब है नहीं। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद अपने मंत्रियों को जेन जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो संघ प्रमुख भी अब जेन जी से मुलाकात करना चाहते हैं। खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अब जेन जी से मुलाकात कर उनसे बातचीत करना चाहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई के नीता मुकेश अम्बानी कल्चरल सेंटर में 14 से 29 साल के जेन जी और 13 साल की जेन अल्फा के साथ मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के इस कार्यक्रम में देश के 100 से ज्यादा शहरों से 2000 से ज्यादा हाई स्कूल के विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। दरअसल जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश में ये विमर्श पैदा किया जा रहा है कि सीजेपी के आंदोलन में शामिल जेन जी दो तरह के थे, जिसमें एक वाजिब जेन जी था और दूसरा देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा जेन जी। और इसी भटकाव को रोकने के लिए अब संघ प्रमुख देश के नौजवानों से मुलाकात और रابطہ कायम करना चाहते हैं। जिस संस्था के कार्यक्रम में संघ प्रमुख की नौजवानों से मुलाकात होगी और इसके प्रेसिडेंट बताते हैं कि ऐसी मुलाकातों का मकसद क्या है। उधर अभिजीत दीप की ऐसी पहल का स्वागत तो करते हैं, लेकिन जेन जी से बात करने के लिए युवा चेहरे की जरूरत भी बताते हैं। और गौर करने की बात ये कि 6 अगस्त को संघ प्रमुख की जेन जी से मुलाकात के पहले 5 अगस्त को अभिजीत दीप की अपनी पार्टी की बैठक में संगठन के विस्तार, भविष्य की रणनीति और पार्टी के रोड मैप पर भी चर्चा करने वाले हैं।

0: जंतर मंतर पर जेंजी के जिस आंदोलन ने सरकार को खबरदार किया, जिस आंदोलन की वजह से सड़क से संसद पर सरकार को घेरने की कोशिश अब भी हो रही है, जिसकी वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसे लेकर आरएसएस की तरफ से जो बयान आया है उससे इस मुद्दे पर नए सिरे से सियासी टकराव होना तय माना जा रहा है।
1: हे आंदोलन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातला एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेला आंदोलन आहे।
0: या तो लिमे आरएसएस के सर सह कार्यवाह पद के हिसाब से आरएसएस में तीसरे बड़े पद पर बैठे नेता, इतने बड़े पद पर बैठे आरएसएस के नेता अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन देश विरोधी और संविधान विरोधी कहेंगे तो विवाद तय है।
1: हे आंदोलन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातला एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेला आंदोलन आहे, या अर्थाने बघा। अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन, या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे, या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे।
0: महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के सर सह कार्यवाह ने ये बातें कही और हिदायत दी कि इसे सिर्फ राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए।
1: कि विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे, पण ही युवा शक्ती कशी पाहिजे, कुठले संस्कार पाहिजे, कुठली स्वप्न पाहिजे, कुठली गीत पाहिजे त्यांच्या ओठी, हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला, म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बीजेपी या अँगलनी हे बघू नका।
0: छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पहले ही सरकार पर हमलावर, लेकिन आरएसएस की तरफ से आए इस ताजा बयान विपक्ष को हमले का नया मौका दे दिया।
2: छात्रों को एंटी नेशनल कहते हुए इन्हें शर्म नहीं आती? बच्चों को, नौजवानों को, इस देश के भविष्य को एंटी नेशनल बता रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है?
3: देश के बच्चे देश की सरकार के खिलाफ देश की राजधानी की सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहां नागपुर में जाकर करेंगे, यहीं ना करेंगे? ये क्या बदतमीजी है आरएसएस की? संघ वालों को कहो थोड़े दिन चुप रहे, उसी में उनका फायदा है, सरकार आने दो हमारी, बता देंगे इनको।
0: आरएसएस की तरह ही बीजेपी के पूर्व सांसद जो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे, रमेश विधूड़ी, इन्होंने भी अब जेंजी के आंदोलन को लेकर नया विवादित बयान दिया है।

0: संसद में आज भी हंगामे के आसार। इंडिया गठबंधन के दलों का आज गांधी मूर्ति से प्रेरणा स्थल तक विरोध मार्च। तीन अहम मांगों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। धारा 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे आज। पीडीपी का पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी मनाएगी ब्लैक डे। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। यूपी विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम। चंदे की रसीद मांगने वाले स्पीकर के बयान पर ओवैसी ने उठाए सवाल। पूछा, क्या अब कोई आस्था के आधार पर चोरी को चोरी नहीं कह सकता। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर भी घमासान। डिप्टी सीएम सुमित्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब। बैकफुट पर आए। झारखंड में 12वें दिन भी जारी है छात्रों के प्रदर्शन पर। अब यागी सोरेन सरकार, सीएम बोले संवैधानिक दायरे में होगा इंसाफ। बीजेपी मानसून सत्र में चर्चा की करेगी मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: सुबह के 8 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। 8 बजे सुपर 8 बुलेटिन में कई अहम खबरें हम आपको दिखाएंगे। संसद में आज क्या होने वाला है, विपक्ष की नई रणनीति क्या है, आपको यह भी दिखाएंगे कि 370 हटाए जाने के 7 साल बाद आखिर कहां प्रदर्शन होने वाले हैं। बुलेटिन में यह भी बताएंगे कि महबूबा ने केंद्र के खिलाफ क्यों मोर्चा खोला है। आरएसएस पर राहुल गांधी ने हमला क्यों किया, यह भी दिखाएंगे। साथ ही खबर, यूपी विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर जारी, घमासान की भी होगी। और आगे बात करेंगे अखिलेश के मिशन यूपी की। क्राइम की भी ऐसी खबरें दिखाएंगे जो कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। बुलेटिन में आगे आपको यह भी बताएंगे कि कहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। सबसे पहले खबर संसद में जारी गतिरोध की। आज भी विपक्षी दल सरकार को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का यह तीसरा सप्ताह है और तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहने के आसार हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दल आज गांधी मूर्ति से संसद परिसर में प्रेरणा स्थल तक मार्च करने की तैयारी में हैं। इस दौरान विपक्ष तीन अहम मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगा। प्रदर्शन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के भी शामिल होने की संभावना है। तो आखिर यह हंगामा है क्यों, विपक्ष आखिर वो तीन ऐसी कौन सी मांगे हैं जिस पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते ये गतिरोध बरकरार। अब आपको ये भी बताते हैं कि तीन ऐसी मांगे। पहला मांग क्या है, पहली मांग कि छात्रों पर हर हाल में पुलिस के बल प्रयोग को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह सदन के भीतर जवाब दें, बयान दें। दूसरी मांग क्या है आपको भी बता देते हैं। संसद परिसर में विपक्ष मार्च की दूसरी मांग यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सदन के दोनों सदनों में बहस होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके। इसी के अलावा तीसरी मांग क्या है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। आपको याद हो 7 साल पहले जब धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद सरकार ये कहती रही कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो मांग अब इस पर भी आगे बढ़ी है। लेकिन ये मांग सिर्फ अब सदन में सीमित नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ पीडीपी भी सभी 20 जिलों में आज प्रदर्शन करने जा रही है। यह प्रदर्शन, ये तमाम धारा 370 हटाए जाने, 35A को हटाने की इस 7वीं बरसी पर करने वाले हैं। 7 साल पहले हटाए गए अनुच्छेद 370, 35A को लेकर एक दिन पहले भी श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने कैंडल मार्च किया। अब आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी है, इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
2: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर सियासत तेज है। फैसले के विरोध में श्रीनगर में नारे लग रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने इस प्रदर्शन के दौरान आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग दोहराई है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी कल श्रीनगर में विरोध मार्च निकालने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस वालों से उनकी कहासुनी भी हुई।
3: हम यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। जो पुलिस वाले हैं आप देख रहे हैं, हमें यहाँ रोक रहे हैं पोलो व्यू में। वी आर ट्राइंग, शी इज मैन हैंडलिंग मी, नेहा जैन मैम, यू आर मैन हैंडलिंग मी, बैक ऑफ। आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ, जंतर मंतर में। वी आर कश्मीरीज, वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट।
2: 370 के खिलाफ पीडीपी ने मोर्चा खोला है, तो दूसरी ओर पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी काला दिवस मनाने की तैयारी की। दिल्ली में मंगलवार को एक कार्यक्रम में मौजूद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर से किया वादा पूरा करना चाहिए।
4: इंडिया needs to wake up now. Not tomorrow. Now. Unless we unitedly fight the dictatorial policies of the government, we are never going to make India great. Remember.
5: एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी विरोध प्रदर्शन को तैयार है, तो दूसरी ओर बीजेपी 370 को लेकर आज के दिन पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न मनाने जा रही है। आज के प्रदर्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ हाई अलर्ट मोड में है। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो।
0: साल 2019 5 अगस्त, ये वही दिन था जब अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया। 7 साल पहले आज के दिन क्या क्या अहम फैसले हुए थे उसे भी आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 370 35A को हटाया गया, 7 साल अब इसके पूरे हो गए। बड़े फैसले क्या था, उसका असर क्या था? 5 अगस्त 2019 की वो तारीख थी जब सरकार ने सदन में एक बिल ला करके इसको निरस्त कर दिया गया था। संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया था। आपको वो तारीख, वो दिन याद होगा, जमकर हंगामा हुआ था। गुलाम नबी आजाद का वो बयान आया था और उसी दिन जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म हो गया था। उस एक फैसले का असर क्या हुआ था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख और कारगिल को मिलाकर के एक और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर को विधानसभा मिली, लद्दाख कारगिल को बिना विधानसभा एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। लेकिन अब खबर आपको दिखाएंगे राहुल गांधी की, जिन्होंने छात्र आंदोलन का हवाला देते हुए कहा है कि आज देश अजीब दौर से गुजर रहा है, छात्र सड़कों पर हैं, वो तकलीफ में है। और इस दौरान उन्होंने आरएसएस को एक खतरनाक विचारधारा भी बताया है।
6: वी आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रेंज टाइम इन आवर कंट्री। स्टूडेंट्स आर ऑन द स्ट्रीट इन सिवियर पेन। दे डोंट हैव वर्क। They are asking for fairness in exams. They are asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. And behind the thinking of the Prime Minister, and behind the thinking of his colleagues, and particularly the RSS, is a very dangerous and caustic idea. The idea that this country is not an expression of the many.
0: और अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। खबर यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की। इस दौरान भी शोर शराबा हुआ। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के संसद में शोर है, तो लखनऊ में भी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इसकी सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी लगातार चढ़ावा चोरी पर बहस की मांग कर रही है। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया।
7: यूपी विधानसभा के 4 दिनों के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सियासत तेज है। अब तक चली कार्यवाही में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा है, उससे एक बात तो साफ है कि आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव जारी रहेगा। मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना चाहा। अन्य विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए और सरकार से जवाब मांगा।
8: आज समाजवादी पार्टी के लोगों को ये पूछना चाहते एक करोड़ लोगों के आस्था को चोट पहुंचाने का काम हुआ, मंदिर में चोरी हुई, तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर कोई हिंदू मुसलमान से जुड़ा मामला होता तो अब तक लोग जो जेल चले जाते। आज कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जनता को मूर्ख बनाना चाहते?
9: सरकार को जो एक चढ़ावा दिया है भगवान के नाम पर, वो समूचे देश ने दिया है। और अगर उस चढ़ावे की चोरी हुई है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस जनता की आवाज बन के हम सरकार से सवाल पूछे। सरकार सवाल से बच चुकी है।
7: ऐसे हमलों के बाद यूपी विधानसभा में घमासान तेज है। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में किसी भी साधु संत पर आरोप नहीं है।
10: इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया।
7: लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है। स्पीकर सतीश महाना ने चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन तनातनी बरकरार है। हंगामे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ सदन में हंगामा करना, शोर शराबा करना और बाधा डालना है तो उसे अपना नाम बदल कर हल्ला गुल्ला पार्टी रख लेना चाहिए।
11: सदन में सार्थक चर्चा करिए, ये नहीं करना चाहते क्योंकि ये एक राम भक्त होने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम इन्होंने किया। इन्होंने सरयू जी के नदी को राम भक्तों के खून से लाल कर दिया। ये जो है कहते हैं कि वहाँ राम जी का अस्तित्व नहीं है, वहाँ पर बाबरी मस्जिद है और वो न चंदा दिए न उसमें तो सहयोग किए न दर्शन किए और चंदा चोरी का हिसाब मांग रहे हैं।
7: अब यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में 2 दिन बचे हैं, ऐसे में फिलहाल तनातनी जारी रहने की पूरी संभावना है। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: तो तनातनी मंगलवार को भी दिखी, क्योंकि मंगलवार को यूपी विधानसभा में स्पीकर सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के विधायकों को फटकार लगाई। चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे विधायकों को महाना ने फटकारते हुए कहा कि आप लोगों में से किसी ने अगर चंदा दिया है तो जरा रसीद लेकर के आ जाइए, देखते हैं किसकी कितनी चोरी हुई है। इस बयान को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर निशाना साधा और सवाल उठाया। ओवैसी ने पूछा, अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सतीश महाना ये कह रहे हैं कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया अगर उन्होंने चंदा दिया है तो रसीद दिखाएं, तब देखेंगे कि उनका पैसा चोरी हुआ या नहीं, तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है बल्कि विधानसभा की गरिमा का है। ओवैसी ने लगे हाथ ये भी पूछ लिया कि क्या अब कोई चुनी हुई विधानसभा का सदस्य अपनी आस्था के आधार पर चोरी को चोरी भी नहीं कह सकता। महाना ने पूछा कि जिसकी रसीद है लेके आइए, देखेंगे कितनी चोरी हुई। तो वैसी ने निशाना साधा कि आप अध्यक्ष पद की गरिमा पर हैं, क्या धर्म देख करके, ये देख करके कि आपकी आस्था है, आपने चंदा दिया है, तभी आप अपराध को अपराध कहेंगे, तभी आप चोरी को चोरी कहेंगे? क्या आप हत्या को हत्या, डकैती को डकैती कहने से पहले लोगों को अपने मजहब का हलफनामा देना होगा? तो वैसी ने जिस सतीश महाना के बयान को लेकर के सवाल उठाए हैं, आपको पहले वो बयान भी सुनवा देते हैं।
12: मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद देकर आ जाए भाई यहां पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहां जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे, एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था तब, पैदा भी नहीं हुए थे जब तब।
0: अगर सियासत में कोई शेर लिखता तो यह जरूर पूछ लेता कि आखिर हंगामा क्यों बरपा है, कहीं चुनाव तो नहीं है। तो अब खबर यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। इस कड़ी में आज लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर अखिलेश यादव का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी पीडीएस से आगे देखते हुए अब ब्राह्मणों के साथ संपर्क कार्यक्रम कर रही है। पार्टी इस कोशिश में जुटी है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों और अन्य उच्च जाति के मतदाताओं तक पहुंचा जाए। इस कार्यक्रम में राज्यभर से लगभग 20,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम से पहले अखिलेश आज सुबह 10:30 बजे जनेश्वर मिश्रा जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचकर सुबह 11:30 बजे जनेश्वर मिश्रा की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। चलिए अब खबर रांची की, जो इस वक्त छात्रों के प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। छात्र परीक्षा में धांधली को लेकर जेपीएससी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे छात्रों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। इसे लेकर हेमंत सोरेन सरकार के सामने चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस मुद्दे को झारखंड विधानसभा में यानी सदन में उठाने का फैसला कर चुकी है। झारखंड में कल से यानी 6 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और अब जानकारी ये है कि बीजेपी इस मामले को लेकर के सोरेन सरकार को सदन में घेरेगी, चर्चा की मांग करेगी, सीबीआई की जांच करवाने का दबाव डालेगी।
13: रांची में छात्रों का ये मोर्चा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ है, लेकिन यही छात्र शिबू सोरेन की पहली बरसी पर उनकी तस्वीरों के साथ नारेबाजी करते नजर आए। ये छात्र जेपीएससी के विरोध में हेमंत सोरेन सरकार की अनदेखी से नाराज हैं। कई परीक्षाओं में धांधली के आरोप लग चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों के बाद भी अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब इनका कहना है कि
14: झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो, भर्ती परीक्षाओं को भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से मुक्त कर पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
3: सरकार से हमारी अपील रहेगी कि आप जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करें, क्योंकि हम इसी राज्य के नागरिक हैं और अगर नागरिक को आपसे गुहार लगाना पड़ रहा है तो सर हमारा ये दुर्भाग्य है कि आप हमारे सत्ता पे बैठे हैं।
15: जो जिन्होंने सपना रचा था झारखंड के लिए, वो उसमें हेमंत सोरेन जी जरूर काम करें और न्याय विद्यार्थियों को न्याय मिल सके और जो भी धांधलियां हैं सारी चीज पे एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सके और एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जेपीएससी और जेसीसी में हो पाए।
14: भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन की रफ्तार तेज है। आंदोलन के 12वें दिन आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में युवा अभिभावक एवं समर्थक पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने भी राज्य सरकार को घेरने की तैयारी तेज कर ली है। 6 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी इस मुद्दे को सदन में उठा सकती है। उससे पहले ही मुख्यमंत्री भरोसा दे रहे हैं।
16: जिस तरीके से दिन रात एक करकर लगे हुए उसका उत्तर का हमें इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत कराएं।
14: छात्र रांची में डटे हुए हैं। वो तब तक प्रदर्शन से हटने को तैयार नहीं जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: तो रांची में छात्र परीक्षा में धांधली को लेकर के डटे हुए हैं, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की आज बड़ी रणनीतिक बैठक होने जा रही है। आज और कल 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। देशव्यापी अभियान पर अपने भविष्य को लेकर के सीजेपी चर्चा करेगी। हालांकि अभिजीत दिपके ने ये तो कहा था कि कोई राजनीतिक पार्टी शुरू नहीं होगी, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, लेकिन 2 दिनों के मंथन में भविष्य की रणनीति, झारखंड में चल रहे प्रदर्शन को समर्थन से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी।
17: एक ऐतिहासिक जीत हुई है युवाओं की, एंड उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये जो मूवमेंट है ये कहाँ जाएगा, किस राह पे जाएगा। तो उसी के बारे में, उसके बारे में चिंतन करने के लिए, उस चीज़ के बारे में एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम लोग सारे आज आए हैं औरंगाबाद। यहाँ पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2 दिन का मीटिंग है, कल और परसों होगा, एंड उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे इस मूवमेंट को ग्रास रूट पे कैसे ले जाए, क्योंकि बहुत सपोर्ट है हम लोगों का ग्राउंड पे, एंड हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनके पास हम लोग जाए, उनके दुख दर्द पीड़ा हम लोग समझे, एंड उनके लिए एक अच्छा, युवाओं के लिए एक अच्छा सा एजेंडा लाए हम लोग।
0: एक खबर हैदराबाद से, जहां एक शख्स की बेरहमी से 20 सड़क पर सरेआम हत्या कर दी गई। कातिल ने सबके सामने धारदार हथियार से उस पर तब तक वार किए जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। सबसे हैरानी बात करने वाली पता है, लोग इस पूरी घटना के चश्मदीद बने रहे लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं गया।
18: हाथ में धारदार हथियार लिए इस सनकी कातिल के सिर पर खून सवार था, तभी वो ताबड़तोड़ हमले करता रहा। एक युवक बीच सड़क पर हमले में बेहद जख्मी होकर गिर चुका था, फिर भी हमला पर उसके कंधे और सिर पर उस धारदार हथियार से वार करता रहा। हैवानियत और बर्बरता की हदें पार करने वाली ये वारदात हैदराबाद की है। सौदाबाद पुलिस स्टेशन इलाके में 35 साल के कपड़ा व्यापारी को कातिलों ने सबकी आंखों के सामने मार डाला। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम फासी अहमद था, जो सिंगरेनी कॉलोनी का रहने वाला था। हमले से कुछ समय पहले ही वो मुंबई से लौटा था। उस पर धारदार हथियार लिए कातिलों ने इस व्यस्त सड़क पर व्यापारी का पीछा किया और फिर धारदार हथियार से उसका खून कर दिया। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन पीड़ित को बचाने की बजाय वो लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। कुछ महिलाएं रोती चीखती रहीं, उसे बचाने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन किसी ने भी आरोपी का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई।
19: अफसोस इस बात का है कि आमिर की उम्र करीब 35-37 साल है और उनको माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं। अब आप ये सोचिए, इस तरीके से दरिंदगी अगर फैलते जाएगी तो कैसे होगा? आज उनके 8 बच्चों को कौन पालेगा? ये कोई चीज़ सोचते नहीं है, सिर्फ जहालत से ये काम लेते हैं।
18: हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हत्या के पीछे की वजह क्या है। पुलिस ने इस कांड को लेकर हत्या का मामला दर्ज किया है, साथ ही दोषियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच चल रही है। अब्दुल बशीर, हैदराबाद, आज तक।
0: और खबर मानसून तबाही की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर अचानक बाढ़ आ गई है। कल केलर इलाके में बाढ़ के गंभीर हालात दिखे। सैलाब की वजह से एक निर्माणाधीन पुल तबाह हो गया। इसका असर आसपास के इलाकों पर भी दिखा। चारों ओर बाढ़ की वजह से जनजीवन ठप हो गया। इलाके खासकर पश्चिम हिमालय क्षेत्र और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में इस समय लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। ये केलर शोपियां की तस्वीरें हैं। अचानक से फ्लैश फ्लड, बादल फटने की घटना, जिसके बाद ही देखिए क्या नदी नाले सब कुछ सैलाब में तब्दील होते चले गए। एक बड़ी खबर ब्राजील के साओ पोलो से आ रही है। एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से तबाही हुई है। मामला साओ पोलो के बाहरी इलाके का है। केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, उसके शोले आसमान छूते दिखाई दिए। आग इतनी भयावह थी कि पूरे इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। भीषण आग के कारण लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों को आसपास के घरों से करीब 150 निवासियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सॉल्वेंट्स, पॉलिएस्टर, रेजिन बनाने वाली कंपनी थी जिस पर आग लगी। काबू पाने के लिए दमकल की दर्जनों गाड़ियों को लगाना पड़ा। केमिकल होने के नाते आग लगातार फैलती गई और ज्वलनशील पदार्थों के चलते आग ये देखिए किस तरह बढ़ती गई और जितने भी स्टॉक थे, स्टॉक पाइल था, सब कुछ आग की चपेट में आ गया। लपटे जो है सैकड़ों फीट ऊंचे दिखाई दिया। धुआं, आग का गुबार, पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लंबी मशक्कत के बाद फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। राहत बचाव अभियान अभी भी जारी है। और अब खबर पश्चिम एशिया में जारी तनाव की। एक बार फिर भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाज पर हमला किया गया है। अब उस जहाज का वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए जहाज में आग लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक लाल सागर में यमन के पास तिरंगा वाले एक कमर्शियल जहाज को विस्फोटक से लदी एक नाव ने टक्कर मार दी, जिससे वो जहाज डूब गया। जहाज के सभी 13 भारतीय क्रू मेंबर को बचा लिया गया है। इस हमले को लेकर के भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई और कहा है कि भारत इस हमले की निंदा करता है। लाल सागर में यह जहाज था, इस पर तिरंगा लगा हुआ था। यमन के पास यह हमला हुआ। एक जहाज जिसमें विस्फोटक लगे थे, वो नाव जाती है, इस जहाज से टकराती है। आमतौर पर इस तरह की घटनाएं जिसे हम फिदाइन अटैक कहते हैं, इस तरह का हमला होता है। लेकिन क्या ये कोई ड्रोन था, फिदाइन अटैक था, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन सभी भारतीय जो क्रू मेंबर थे उनको बचा लिया गया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
20: इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
3: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
1: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
1: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
3: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप,

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैं करता हूँ ना,
3: मैं करूँगा।
4: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
2: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
4: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
2: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
4: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप,

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड.

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
2: New entrepreneurs came up. There was Dhirubhai Ambani. He was a rag to riches story. He built industries. He built, you know, the whole nylon business, the textile, and then, of course, then into petrochemical.
3: There were others like him, but he was by far the biggest and the most prominent of them all. He was also the most controversial because of his business methods. We did the stories on him as a success. We did a story of him under pressure. It was a churn that was taking place, and it led to lots of stories.
4: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
5: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
4: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
6: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
4: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
7: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संसद में आज भी हंगामे के आसार। इंडिया गठबंधन के दलों का आज गांधी मूर्ति से प्रेरणा स्थल तक विरोध मार्च। तीन अहम मांगों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे। आज पीडीपी का पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी मनाएगी ब्लैक डे। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। यूपी विधानसभा में आज भी चढ़ावा चोरी पर संग्राम के आसार। चंदे की रसीद मांगने वाले स्पीकर के बयान पर ओवैसी ने सवाल पूछा, क्या आस्था के आधार पर चोरी को चोरी नहीं कह सकते। अमृतसर के आतंकी मॉड्यूल से सनसनीखेज खुलासा। रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी लगाकर फुटेज भेजते थे पाकिस्तान। 4 नाबालिग समेत 9 गिरफ्तार। कमिश्नर बोले, जंतर मंतर पर भी गड़बड़ी का प्लान। झारखंड में 12वें दिन जारी छात्रों के प्रदर्शन पर अब जागी सोरेन सरकार। सीएम बोले, संवैधानिक दायरे में होगा इंसाफ। बीजेपी मानसून सत्र में चर्चा की करेगी मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: संसद में आज भी हंगामे के आसार। छात्रों के मुद्दों सहित 3 मांगों पर अमित शाह के बयान पर अड़ा विपक्ष। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के विपक्ष का विरोध प्रदर्शन की तैयारी। कांग्रेस एसपी डीएमके टीएमसी सीपीआई आप समेत अन्य दलों के शामिल होने की संभावना। आज भी यूपी विधानसभा में हंगामे के आसार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आज भी विपक्ष कर सकता है हंगामा। चढ़ावा चोरी पर गतिरोध जारी। विपक्ष कर रहा बहस की मांग। योगी सरकार ने कहा, बहस की जरूरत नहीं, एसआईटी जांच जारी है। यूपी में चुनाव से पहले एसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन। आज जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने आयोजित किया, अखिलेश यादव करेंगे पुष्पांजलि। संसद परिसर में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, उन्हें माफ करने वाले कौन होते हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, छात्र सड़कों पर है, बहुत दर्द में है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं जो उन्हें माफ कर रहे हैं। पीएम के साथ राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। बोले, आरएसएस की सोच के पीछे एक बहुत खतरनाक विभाजनकारी ताकत काम कर रही है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा, आरएसएस हमारा इतिहास नहीं बदल सकता, भारत अपने इतिहास के कुचले जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज बागपत दौरे पर होंगे राहुल गांधी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मदरसा शिक्षा पर योगी सरकार का फैसला, कामिल फाजिल डिग्री की मान्यता खत्म होगी। धार के बोसाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट मुसलमानों का पक्ष सुनेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुए चुनावों को पूरी तरह दिखावा करार दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर हिंसा को लेकर के सूत्रों का दावा है कि एफआईआर में आपराधिक साजिश की धारा भी लगाई गई है। बाकी उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी के सभी समीकरण ध्वस्त हो गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुमित्रा पवार पर कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का हमला। सोशल मीडिया पर अभद्र शब्द का इस्तेमाल। इसके विरोध में भड़के एनसीपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कांग्रेस दफ्तर में जोरदार हंगामा किया। मुख्यमंत्री सुमित्रा पवार ने कांग्रेस के अभद्र टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उचित समय आने पर करारा जवाब दिया जाएगा। सीएम फडणवीस ने भी कहा, खबरों में बने रहने के लिए राजनीति कर रहे हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति में इतने निचले स्तर पर जाने वाले पहली बार देखने को मिले। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से भी प्रतिक्रिया आई, उसे महिलाओं के अपमान से जोड़कर देखा। दिल्ली में एसआईआर की समय सीमा फिर बढ़ाई गई। अब 17 अगस्त तक चलेगा बूथ स्तर पर घर घर सत्यापन। प्रारूप मतदाता सूची 24 अगस्त को प्रकाशित होगी। दावे और आपत्तियां 24 अगस्त से 23 सितंबर तक स्वीकार की जाएंगी। पीएम मोदी का फेसबुक वीडियो हटाए जाने के मामले को लेकर के केंद्र सरकार ने मेटा को समन दिया। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद बद्दी ने केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों के आतंकवाद वाले अड्डा बताने वाले बयान की कड़ी निंदा की। केशव मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए मदनी ने इसे आजादी के इतिहास, भारतीय संविधान का अपमान बताया। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन 8 घंटे पूछताछ के बाद रिहा हो गए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का धारा 370 हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान कहा, हम इस रात को कभी नहीं भूल सकते। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने विरोध मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। धारा 370 हटाए जाने के विरोध में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी विरोध प्रदर्शन करेगी। केंद्र सरकार का भगोड़े अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 40,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के आरोपी को कब वापस लाएंगे। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बयान को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने महाना पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या अपराध को अपराध कहने से पहले अपने धर्म का हलफनामा देना होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पहली बार सामने आए। यूपी के संभल में सांसद पप्पू यादव के विरोध में वीएचपी बजरंग दल का प्रदर्शन। जेपीएससी को लेकर के छात्रों का आंदोलन 12वें दिन जारी, देश भर से मिल रहा समर्थन। परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने 3 और गिरफ्तारियां की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जेपीएससी मामले में सरकार की पैनी नजर है, समय आने पर निर्णय भी दिखेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने छात्र आंदोलन को लेकर के हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी, सीबीआई जांच की मांग की। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने एक बार फिर सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्र आंदोलन को सरकार अनसुनी कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के बीच चेहलुम जुलूस को लेकर के पुलिस अलर्ट है। सड़क के बीच में 10-10 फीट ऊंचे टेंट के पर्दे लगवाए गए हैं। यात्रा और जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस तैनात है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेल में रजत पदक जीतकर स्वदेश लौटे वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। भगवद्गीता के श्लोकों की ध्वनि से गूंजा अमेरिका के टेक्सास का डलास, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवद्गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया। मैसूर के अवधूत दत्त पीठम पीठाधीश श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जोरदार बारिश से हालात बिगड़े। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से आफत बढ़ी। सिरमौर में नेशनल हाईवे 50 से 60 साल पुराना पुल ढह गया। बंगाल के पश्चिम बर्धवान में बारिश से पानी पानी हुआ कबाड़ी मार्केट, जल निकासी की मांग को लेकर मजदूरों की हड़ताल। बागेश्वर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, जिलाधिकारी ने आज के लिए सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारी बारिश के कारण अंडरपास और मुख्य बाजार जलमग्न हो गया। सड़कों पर भारी जलभराव के चलते यातायात पूरी तरह ठप। उत्तराखंड में कलसी चक्राता मार्ग भूस्खलन से बंद हो गया, सैकड़ों गाड़ियां फंसी रह गई। मध्य प्रदेश के विदिशा से खौफनाक वीडियो सामने आया, उपंती नदी के बीच जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं बच्चे। गुजरात के गीर सोमनाथ में समंदर किनारे 5 लड़के पानी में डूबे, 3 को स्थानीय मछुआरों ने बचा लिया, 2 किशोरों की तलाश अभी भी जारी है। महाराष्ट्र में नासिक में नदी पर अस्थायी लकड़ी के पुल संतुलन बिगड़ने के कारण नदी में बह गया, बाढ़ के कारण पहले भी 4 पुल बह चुके हैं। राजस्थान के करौली में जल भराव से हालात बिगड़े, पक्के रास्तों के अभाव में लोग घुटनों तक पानी में भरकर कीचड़ से बीच शव यात्रा निकालने पर मजबूर दिखाई दिए। बिहार के वैशाली में रास्ते को लेकर के 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई, पुलिस प्रशासन के सामने ही दोनों पक्ष भिड़ गए, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मामला शांत हुआ। देहरादून में चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई, ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई। धनबाद के कतरास में जोरदार धमाका हुआ, आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए, आसपास रह रहे लोगों में दहशत फैल गई। राजस्थान के अलवर में नशे की हालत में 25 फीट ऊंचे ऐतिहासिक गुंबद पर एक युवक चढ़ गया, आधे घंटे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जब हाइड्रोलिक लिफ्ट देखी तो खुद ही नीचे उतर गया। मथुरा में जन्माष्टमी से पहले खाद्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है, 5,000 किलो से भी ज्यादा मिलावटी पेड़ा मिल्केक जब्त करके नष्ट किया गया। एनएमआरसी ने M3M प्राइवेट लिमिटेड को गंभीर सुरक्षा का उल्लंघन का दोषी माना है, मेट्रो की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और एक्वालाइन की सेवाएं बाधित होने के मामले में अब नोटिस जारी किया गया है। झारखंड के चतरा से सनसनीखेज मामला सामने आया है, नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी की ग्रामीणों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान कर देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, मॉल में फूड आउटलेट पर काम करने वाली एक युवती को युवक पीटते नजर आया, आरोपी पुलिस की हिरासत में है। पालघर में मनसे के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, मारपीट में पूर्व शहर अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के आजमगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ, बिजली के खंभे से टकराकर डीजल से भरा टैंकर पलट गया। कन्नौज से शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का वीडियो सामने आया, सरकारी स्कूल में शिक्षक सोता दिखा, बच्चे मोबाइल देखने में मग्न दिखाई दिए। सूरत में 3 फुट गहरे गड्ढे में बाइक गिरने से युवक की मौत हो गई, हादसा सीसीटीवी में कैद, लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। गुजरात के मेहसाणा में नाबालिग ने गाड़ी से आंगन में बैठे 3 लोगों को कुचल दिया, 2 की मौत हो गई, कार पर नियंत्रण खोने की वजह से हादसा हुआ। यूपी के ललितपुर में बुजुर्ग की दिन दहाड़े हत्या हो गई, इस मामले में फरार चले मुख्य आरोपी सहित 3 को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, गोली और कारतूस भी बरामद किए गए। हैदराबाद में दिल दहलाने वाली एक घटना हुई, सनकी युवक ने दिन दहाड़े पीछा करके व्यापारी की बेरहमी से हत्या की, घटना के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश। अमृतसर पुलिस का एक्शन दिखाई दिया, आईएसआई समर्थित 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, 9 आरोपी गिरफ्तार, एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। उड़ीसा के रायगढ़ में रैगिंग और मारपीट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, रैगिंग की शिकायत करने पर सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को बुरी तरह पीटा। हिमाचल में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 6 करोड़ के ड्रग्स के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच महिलाओं ने प्रधान के पति को कॉलर पकड़कर कार्यालय से निकाला, प्रधान ने आरोपों से इनकार किया। यूपी के हापुड़ में 50 लाख रुपए के लूट के मामले में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपों के खिलाफ बड़ी केस पहले से ही दर्ज थे। हरिद्वार की हरकी पौड़ी में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा है, गंगा स्नान और जल भरने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने भी कांवड़ियों का सम्मान किया, फूलों के साथ स्वागत किया, कांवड़ यात्रियों के पैर धोए और खाना भी परोसा। बिहार के भोजपुर के रहने वाले सरकारी शिक्षक रवि कुमार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, सिर्फ 9.15 सेकंड में ए से जेड लिखकर बने दुनिया के सबसे तेज अल्फाबेट राइटर। लद्दाख में जनगणना को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए लेह में भव्य मैराथन का आयोजन किया गया है, हजारों की संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ इसमें शामिल किया। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के नाम अब उपलब्धि हुई है, देशभर में 50 लाख से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए। यमन के पास समुद्री इलाके में एक भारतीय जहाज एमवी फैजे नूरे ओलिया पर बड़ा हमला हुआ है, अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आने के बाद समुद्र में डूब गया जहाज। ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर ओमान से बातचीत करते हुए कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है। ईरान अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीदें भी बढ़ी हैं, कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कूटनीतिक समाधान की कोशिशें लगातार जारी हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के पास यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला हुआ, 5 लोगों की मौत हुई, एक नागरिक घायल हुआ। यूक्रेन के सुमी समेत कई शहरों पर रूस का भीषण हमला हुआ, 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। लेबनन में संघर्ष विराम समझौते को लेकर इटली की राजधानी रोम में लेबनन और इसराइल के वार्ताकारों के बीच 7वें दौर की बातचीत पूरी हो गई। ब्राजील के साओ पोलो में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से तबाही हुई, पूरे इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने आसपास के घरों से करीब 150 निवासियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, कंपनी में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 30 गाड़ियों को लगाना पड़ा। इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश कर रहे अवैध प्रवासियों से भरा हुआ जहाज बड़े हादसे का शिकार हो गया, 157 प्रवासियों को फ्रांस और ब्रिटेन की टीमों ने सुरक्षित बचाया। श्रीलंका में मूसलाधार बारिश ने 5 लोगों की जान ले ली है, 3 लोग घायल हैं, कुछ लोगों के लापता होने की खबर है, बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अगस्त 2026, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 8:42 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 9:18 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी, यात्रा पर जा सकते हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफल।

बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, विवाह आपका तय हो सकता है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा, काम की अधिकता रहेगी, आंखों का थोड़ा ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

अब करें यात्रा में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। दो अगस्त को कर्नाटक के विजयपुरा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के ओएमआर शीट का नंबर और सवालों का नंबर बेमेल होने और प्रश्न पत्र तय समय से देर से बांटने जैसे आरोपों पर छात्रों का आक्रोश फूटा था। इसे लेकर बीजेपी और जेडीएस ने प्रियंक खरगे को घेरने की कोशिश की, उनसे इस्तीफे की मांग हुई। पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रियंक खरगे ने जो कहा, उसके बाद बीजेपी ने छात्रों के मुद्दों पर कांग्रेस नेतृत्व की नीयत पर सवाल उठा दिया है। प्रियंक खरगे का दावा है कि भर्ती परीक्षा के सवालों का नंबर और ओएमआर शीट में नंबर बेमेल होने का आरोप सिर्फ कुछ छात्रों की गलतफहमी थी, इसलिए जो लोग ओएमआर शीट के साथ एग्जाम हॉल के साथ बाहर गए वो अपनी जिम्मेदारी पर गए। सरकार की जिम्मेदारी उन छात्रों के लिए थी जो एग्जाम दे रहे थे। इन्हीं दलीलों के साथ प्रियंक खरगे कर्नाटक में पेपर लीक या भर्ती घोटालों के आरोपों पर अपना पल्ला झाड़ते भी नजर आए। प्रियंक खरगे का ये जवाब ऐसे समय में है जब नीट पेपर लीक पर पूरे देश में हंगामा हो चुका है, देश के शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती घोटालों के आरोपों पर झारखंड में छात्रों का 11 दिनों से धरना जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 अलग अलग टेंट्स में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच जैसी मांगों के साथ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से धरना और मशाल मार्च निकाल रहे छात्रों को खाने पीने जैसी मदद के साथ कुछ वॉलंटियर, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी सामने आए हैं, लेकिन आरोप लग रहा है कि झारखंड के छात्र आंदोलन को राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। पेपर लीक या परीक्षा में धांधली कहीं हो, देश के छात्रों के साथ नाइंसाफी है, लेकिन कर्नाटक, झारखंड साथ ही साथ पंजाब में पेपर लीक के मसले पर विपक्ष की चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। आज तक ब्यूरो।
2: सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा? गौर नहीं किया हो तो एक बार फिर सुन लीजिए कि उन्होंने किन किन देशों का नाम लिया है। जी हाँ, पहला नाम लिया सऊदी अरब का, दूसरा नाम लिया यूएई का और तीसरा नाम लिया कतर का। सवाल ये है कि पूरी दुनिया में शांति दूत बने घूम रहे पाकिस्तान का क्या हुआ? ट्रंप के बयान ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद शांति वार्ता में पाकिस्तान को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितनी पिछली शांति वार्ता में दी थी। ट्रंप ने ईरान को दिया आखिरी मौका, सबसे बड़ी तबाही से बचने का मौका। वैसे सीज फायर को लेकर ट्रंप को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, लेकिन ट्रंप का साफ कहना है कि उन्होंने ईरान को भयंकर तबाही से बचाने के लिए हमला ना करने का फैसला लिया। लेकिन आखिर कब तक? मीडिया ने जब ये सवाल दागा तो जवाब आया कि ये ईरान के लिए आखिरी मौका होगा, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई राहत नहीं। अब देखना यह है कि बातों और मुलाकातों की ये ताकत मिसाइलों को कब तक रोक पाती है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संसद में आज भी हंगामे के आसार। इंडिया गठबंधन के दलों का आज गांधी मूर्ति से प्रेरणा स्थल तक विरोध मार्च। तीन अहम मांगों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे। आज पीडीपी का पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी बनाएगी ब्लैक डे। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। यूपी विधानसभा में आज भी चढ़ावा चोरी पर संग्राम के आसार। चंदे की रसीद मांगने वाले स्पीकर के बयान पर ओवैसी के सवाल। पूछा, क्या आस्था के आधार पर चोरी को चोरी नहीं कह सकते। अमृतसर में पेट्रोल बम वाले मॉड्यूल से सनसनीखेज खुलासा। आईएसआई से है आरोपियों का कनेक्शन। कमिश्नर बोले, प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर भी गए लेकिन नाकाम हुए मंसूबे। और झारखंड में 12वें दिन जारी है छात्रों के प्रदर्शन पर। अब जागी सोरेन सरकार। सीएम बोले, संवैधानिक दायरे में होगा इंसाफ। बीजेपी मानसून सत्र में चर्चा की करेगी मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिना ब्रेक के आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। संसद में आज विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए मार्च निकालेंगे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, आप और अन्य दलों के शामिल होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे, जहां पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ पीडीपी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। आर्टिकल 370 और 35A को हटाने की 7वीं बरसी पर प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी और आरएसएस पर साधा है निशाना। साथ ही राहुल गांधी ने आरएसएस को एक खतरनाक विचारधारा बताया। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के हवाले से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्या जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल बम फेंकने का प्लान था? क्या छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान एक गिरोह पंजाब से दिल्ली आया था? क्या जंतर मंतर पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश नाकाम कर दी गई थी? ये सवाल खड़े हुए हैं अमृतसर में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से, जो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। दरअसल अमृतसर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वहां पुलिस ने आईएसआई समर्थित 2 आतंकी मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी लगाकर उसकी फुटेज पाकिस्तान भेजने की कोशिश में थे। इनके पास से पिस्टल, कारतूस, पेट्रोल बम, सीसीटीवी उपकरण बरामद किए गए हैं। लेकिन अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि उनकी जांच में सामने आया कि ये ग्रुप पहले दिल्ली के जंतर मंतर तक गया था, जहां उन्हें हैंडलर्स की ओर से गड़बड़ी फैलाने वाली सामग्री उपलब्ध कराई गई। हालांकि वहां वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और बाद में पंजाब लौट आए। हैरानी की बात यह भी है कि आरोपियों में 4 नाबालिग हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की विदेशी फंडिंग और अन्य सहयोगियों के संबंधों की गहन जांच कर रही है।
2: जिहड़ा एंटी टैरर ऑपरेशन दे विच आईएसआई बैट 2 मॉड्यूल बस किए गए हैं। ये दोनों आईएसआई हैंडलर्स इन्हों नू ऑपरेट कर रहे थे। एक मॉड्यूल हैगा जिहड़ा रेलवे ट्रैक्स के उत्ते कैमरे लाउंदा सी। ये सारी फीड जिहड़ी है पाकिस्तान जांदी सीगी ते उहदे नाल डिस्टर्बेंस करना चाहुंदे पीस दे विच, नैशनल सिक्योरिटी नू थ्रैट ते साडियां जिहड़ियां इंफ्रास्ट्रक्चर उहनू डैमेज करन दा जिहड़े उहनां दे मनसूबे है ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਪੈਟਰੋਲ ਬੋਟਲ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਿਸਟਲ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਲਾਈਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਰਾਊਂਡਸ ਨੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਦੋਨੋਂ ਮੋਡਿਊਲ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬੋਂਬ ਵਾਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕ ਬੇਸਡ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਬੋਟਲਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
0: कमल जी संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। कमल जी, जिस तरीके से अमृतसर पुलिस जानकारी दे रही है, काफी विस्तृत ये मॉड्यूल है, क्या डिटेल सामने आ रही है इस आतंकी मॉड्यूल के बारे में?
3: आपको पहले बता दें कि दो अलग मॉड्यूल्स हैं और ये जितने भी अक्यूज हैं वो 15 से 30 उम्र के हैं और इसी वजह से आईएसआई हैंडलर्स के साथ संपर्क में पहले भी थे, एक दो बार पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं इनमें से कई। लेकिन बात यह आ रही है कि जब उन्होंने ये पूरा जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पे इंस्ट्रक्शंस दी कि ये वहां पे जाएं। अब कुछ ट्रांजैक्शंस पेटीएम के जरिए पाई गई हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान आईएसआई की पूरी नजर जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में थी और स्टूडेंट्स के नाम पर वो ऐसे मॉड्यूल को भेजना चाह रहे थे जो जहां जहां जाके कहीं अफड़ा तफड़ी का माहौल, यानी पेट्रोल बम फेंकना। उन्होंने कहा था कि कोई भी सिक्योरिटी फोर्स या यूनिफॉर्म में कोई दिखे तो वहां पे किसी घटनाक्रम को वो अंजाम दे सके, पर किसी वजह से ये पूरा प्लान पूरा नहीं हो पाया। जब ये वापस आ रहे थे और उसके बाद हमने देखा है कि जीआरपी इसमें एक्शन में आई और जीआरपी ने ये सूचना पंजाब पुलिस को दी, उसके बाद वो एक्टिवेट हुए और इन्वेस्टिगेशन की तो भांडाफोड़ जरूर हुआ है। एक मॉड्यूल में तकरीबन 4 लोग थे, उसके अलावा एक जो जुवेनाइल पाया गया है। बाकी जो दूसरा मॉड्यूल था जो जंतर मंतर का मेन प्लानिंग और आईएसआई हैंडलर ने खास तौर पर जंतर मंतर जाने के दिशा निर्देश दिए थे वो दूसरा मॉड्यूल था। ये दोनों एक साथ हो गए और उसके बाद उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन शायद ऐसा मौका नहीं मिला है और अभी वो जांच की जा रही है। एक तो किस तरह का फंडिंग ट्रेल आया है, जो कम्युनिकेशन सेटअप है, क्योंकि ऐसे कई ऐप्स अब आ गए हैं जो कि व्हाट्सएप के अलावा सिग्नल है या बाकी टेलीग्राम है, इस तरह के ऐप्स हैं जिनको जल्दी नहीं पकड़ा जा सकता, वहां पे कम्युनिकेशन की गई है, पैसा पहुंचाया गया है और कोशिश यही कही है कि स्टूडेंट के नाम पे इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए जहां पे एक बुरा नाम दिया जाए
0: पूरे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात रांची के प्रदर्शन की करेंगे, वहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है। परीक्षा में धांधली को लेकर जेपीएससी के खिलाफ छात्रों ने बोला है और इसे लेकर हेमंत सोरेन सरकार के सामने चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इस मुद्दे को सदन में उठाने का फैसला कर लिया है। झारखंड में कल से यानी 6 अगस्त से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। बीजेपी इस मामले को लेकर सोरेन सरकार को सदन में घेरेगी और चर्चा की मांग करेगी।
4: रांची में छात्रों का ये मोर्चा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ है, लेकिन यही छात्र शिबू सोरेन की पहली बरसी पर उनकी तस्वीरों के साथ नारेबाजी करते नजर आए। ये छात्र जेपीएससी के विरोध में हेमंत सोरेन सरकार की अनदेखी से नाराज हैं। कई परीक्षाओं में धांधली के आरोप लग चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों के बाद भी अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब इनका कहना है कि झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद, भर्ती परीक्षाओं को भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से मुक्त कर पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
5: सरकार से हमारी अपील रहेगी कि आप जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करें, क्योंकि हम इसी राज्य के नागरिक हैं और अगर नागरिक को आपसे गुहार लगाना पड़ रहा है तो सर हमारा ये दुर्भाग्य है कि आप हमारे सत्ता पे बैठे हैं।
6: जो जिन्होंने सपना रचा था झारखंड के लिए, वो उसमें हेमंत सोरेन जी जरूर काम करें और न्याय विद्यार्थियों को न्याय मिल सके और जो भी धांधलियां हैं सारी चीज पे एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सके और एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जेपीएससी और जेसीसी में हो पाए।
4: भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन की रफ्तार तेज है। आंदोलन के 12वें दिन आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में युवा अभिभावक एवं समर्थक पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने भी राज्य सरकार को घेरने की तैयारी तेज कर ली है। 6 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी इस मुद्दे को सदन में उठा सकती है, उससे पहले ही मुख्यमंत्री भरोसा दे रहे हैं।
7: जिस तरीके से दिन रात एक कर लगे हुए उसका उत्तर का हमें इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराए।
4: छात्र रांची में डटे हुए हैं, वो तब तक प्रदर्शन से हटने को तैयार नहीं जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: और परीक्षा और पेपर लीक पर देश के अलग अलग हिस्सों में संग्राम छिड़ा है, तो शिक्षा की हालत क्या है आपको दिखा देते हैं। मध्यप्रदेश से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं, एमपी के विदिशा में और सागर की दो तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं, जहां विदिशा में जान जोखिम में डालकर डैम के ऊपर नदी पार कर रहे हैं स्कूल बच्चे। सागर में पुलिया टूट जाने के बाद स्कूली बच्चे पानी में घुसकर नदी पार करने को मजबूर हैं। विदिशा से जो तस्वीर सामने आई है वो विकसित मध्यप्रदेश के दावों पर सवाल खड़े करती है कि वीडियो में स्कूली बच्चे नदी पर बने स्टॉप डैम को लांग कर स्कूल जाते दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि 8 किलोमीटर का चक्कर बचाने के लिए बच्चे करने के लिए मजबूर हैं। तो शिक्षा और परीक्षा से शुरू हुआ संसद का संग्राम अब तक जारी है। मुद्दे बदल गए हैं पर विपक्ष के तेवर वही हैं। विपक्ष का एजेंडा अब चढ़ावा चोरी पर शिफ्ट हो चुका है। आज भी विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। इंडिया गठबंधन के दल आज गांधी मूर्ति से संसद परिसर में प्रेरणा स्थल तक मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान विपक्ष 3 अहम मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, आप और अन्य दलों के शामिल होने की संभावना है। और इससे पहले कल चढ़ावा चोरी के मामले पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया।
8: चढ़ावा चोरी पर सियासी महाभारत। यूपी से दिल्ली तक विपक्ष का भारी हंगामा। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरा। संसद का मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है सदन के अंदर और बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार गूंज रहा है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ रहा। राज्यसभा में कल नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और पूछा, चढ़ावा चोरी की जांच में ईडी, सीबीआई और दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियां कहां हैं? सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। खड़गे पर पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, जो लोग भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे वे आज घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते।
9: ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए,
10: मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुंडा करने का कैसे करता है? ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी समाजवादी और कम्युनिस्ट क्रांति क्या बात करते हैं? दुनिया में आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते।
8: सदन के अंदर ही नहीं सदन के बाहर भी विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए। संसद के बाहर विपक्ष के सांसदों का जमावड़ा है। सबके हाथ में अलग अलग तरह की तख्तियां हैं। विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर दान पात्र का प्रतीकात्मक पात्र रखा हुआ था। विपक्ष के सांसद इसमें चढ़ावा चढ़ा रहे थे और संदेश दे रहे थे कि कैसे राम धन चोरी हुआ। मानसून सत्र में चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और जिस तरह से विपक्ष नारेबाजी कर रहा है उससे लगता है ये मुद्दा थमने वाला नहीं है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। इसमें 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की गई। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, विपक्ष लगातार अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है, उस पर अड़ गया है, अब तो इसके लिए बकायदा इस तरह का स्थगन प्रस्ताव की भी मांग कर दी गई है।
11: देखिए नेहा, ये पहली बार नहीं है जब इस संसद के मानसून सत्र में जो है गृह मंत्री से जो है 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से टीयर गैस छोड़े गए, पैलेट्स गन्स का यूज हुआ है, उसको लेकर उनसे जवाब मांगा गया है, कहा गया है वो सदन में आए, स्टेटमेंट दे और इस पूरे विषय पे चर्चा हो जाए। और विपक्ष लगातार हमलावर है और इसीलिए लोकसभा या राज्यसभा में जो है वो संसदीय कार्रवाई नहीं चल पा रही है। हाँ, ये सही है कि हम हंगामे के तहत जो है वो सरकार अपने जितने बिल है उनको पास करा रही है। कल भी बिल पास हुए थे, आज फिर से अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में वित्त मंत्रालय से संबंधित दो बिल है। एक बिल है जो है वो टैक्साइजेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल है, उसके साथ साथ जो है अमेंडमेंट एविडेंस बिल है बुक्स के अंदर, वो दो बिल है। राज्यसभा में जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या बढ़ाने का बिल है वो है, हो हल्ला हंगामे के अंदर जो है बिल पारित हो रहे हैं। कल राज्यसभा के अंदर बिल पास हुए, लोकसभा के अंदर जो है अप्रोप्रिएशन बिल पास हुए यानी सप्लीमेंट्री बजट को पास किया गया, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों इस बात पे अड़े हुए हैं कि जो जवाब देना था वो जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने उस बिल को जब लाया गया था प्राइवेट एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर बिल, उसके अमेंडमेंट बिल पर जवाब दे दिया था, सरकार की तरफ से जो भी जवाब है वो दे दिया गया। लाठी चार्ज और इस तरीके के टीयर गैस के ऊपर गृह मंत्री का जवाब नहीं बनता है, ये सरकार का तरफ से वो है। और दूसरी तरफ विपक्ष इस चीज को लेकर अड़ा हुआ है कि जो राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला है उस पर जो है दोनों ही सदनों में जो है चर्चा हो जाए। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों बड़े हैं लेकिन सरकार अपना जो कार्यकारी विधेयक है वो पास करवा रही है, विपक्ष अपना हंगामा करके अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहा है और मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों मुद्दों पर जो है वो सरकार को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं।
0: ठीक है, और इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। राज्य के सभी 20 जिलों में प्रदर्शन करने की तैयारी है। आपने 370 और 35A को हटाने की साफी बरती है आज, जिस पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर एक दिन पहले ही श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने कैंडल मार्च किया और आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए।
4: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर सियासत तेज है। फैसले के विरोध में श्रीनगर में नारे लग रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने इस प्रदर्शन के दौरान आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग दोहराई है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी कल श्रीनगर में विरोध मार्च निकालने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस वालों से उनकी कहासुनी भी हुई।
12: आप हमें आगे तक जाने दीजिए, हम यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। जो पुलिस वाले हैं आप देख रहे हैं हमें यहाँ रोक रहे हैं पोलो व्यू में। वी आर ट्राइंग, शी इज मैन हैंडलिंग मी, नेहा जैन मैम यू आर मैन हैंडलिंग मी, बैक ऑफ। आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ जंतर मंतर में। वी आर कश्मीरीज, वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट।
4: 370 के खिलाफ पीडीपी ने मोर्चा खोला है तो दूसरी ओर पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी काला दिवस मनाने की तैयारी की। दिल्ली में मंगलवार को एक कार्यक्रम में मौजूद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर से किया वादा पूरा करना चाहिए।
13: इंडिया नीड्स टू वेक अप नाउ, नॉट टुमारो, नाउ। Unless we unitedly fight the dictatorial policies of the government, we are never going to make India great. Remember.
4: एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी विरोध प्रदर्शन को तैयार है तो दूसरी ओर बीजेपी 370 को लेकर आज के दिन पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न मनाने जा रही है। आज के प्रदर्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ हाई अलर्ट मोड में है। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मीर फरीद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। मीर, जिस तरीके से एक पीसफुल प्रोटेस्ट की तैयारी है, क्या उसकी भी अनुमति नहीं है? जिस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती को रोका गया, क्या आज भी इस तरह के सीन देखने को मिलेंगे?
14: जी नेहा, बिल्कुल। और पिछले 7 साल से, जब से 370 को हटाया गया था, तब से आज के दिन जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, इस पे जो है राजनीति गरमाना चाहते हैं। हर साल ऐसा ही होता है और इस साल एक दिन पहले ही पीडीपी ने आज क्या उनको करना है वो साफ दर्शा दिया। कल शाम में ही पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा दोनों ने प्रोटेस्ट निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस मौजूद थी और उनको जो है बाहर नहीं आने दिया, एक हद के बाहर नहीं जाने दिया। तो साफ तौर पे जहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को कभी छोड़ेंगे नहीं और हर साल जब इसका जो एनिवर्सरी आती है उस पे राजनीति बहुत गर्मा जाती है, और इस बार भी पूरे जम्मू कश्मीर में कॉल है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में प्रोटेस्ट करने की, लेकिन सरकार पुलिस किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट जो है उसकी इजाजत देने का मूड साफ उनका नहीं लग रहा है और बहुत सख्त जो है सिक्योरिटी के इंतजाम है और सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स और हर जगह कहा गया है कि किसी भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर इश्यू।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात राहुल गांधी की करेंगे जिन्होंने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने एक कार्यक्रम के दौरान छात्र आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि आज हम अजीब दौर से गुजर रहे हैं, छात्र सड़क पर हैं, उनके पास काम नहीं है और वो परीक्षाओं में निष्पक्षता और बेहतर शिक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीएम उन्हें माफ कर रहे हैं। नहीं पता कि पीएम को ये विचार कहां से आता है कि वो उन्हें या भारत के भविष्य को माफ कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने आरएसएस के को एक खतरनाक विचारधारा बताया।
15: We are going through a strange time in our country. Students are on the street in severe pain. They don't have work. They are asking for fairness in exams. They are asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. And behind the thinking of the Prime Minister, and behind the thinking of his colleagues, and particularly the RSS, is a very dangerous and caustic idea. The idea that this country is not an expression of the many.
0: अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, आरएसएस की विचारधारा को खतरनाक और जहरीला बताकर क्या साबित करने की कोशिश यहां पर राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है।
16: नेहा, देखिए आप सही कह रही हैं कि पहला मौका नहीं होगा जब संघ परिवार पे या आरएसएस पे राहुल गांधी इस तरह से हमलावर दिखाई दे रहे हैं या सुनाई दे रहे हैं। कल राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह की विचारधारा प्रधानमंत्री या फिर उनके जो कुलीग्स संघ परिवार में हैं, आरएसएस में हैं, वो रखते हैं, वो खतरनाक है इस लिहाज से कि वो एक ऐसे आइडियोलॉजी में, ऐसी विचारधारा में भरोसा रखते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को या अलग अलग वर्गों को आवाज रखने की, अपनी बात रखने की आजादी नहीं है, छूट नहीं है, ऐसी विचारधारा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में राहुल गांधी अटैक करते हुए सुनाई दिए। वाइको इन पार्लियामेंट नाम की एक किताब है जिसके लॉन्च पे राहुल गांधी पहुंचे थे।

0: में जुटेंगे। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव पीडीएफ प्लस की बात जो करते हैं उसमें ब्राह्मणों की बात उनके लिए बेहद अहम है। उन्हें मालूम है कि किस तरीके से दलित और ब्राह्मणों का कॉम्बिनेशन मायावती को सत्ता तक पहुंचा चुका है, तो वो पीडीएफ की बात जरूर करते हैं लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से बांकीपुर का रिजल्ट आया है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जीत करके आए हैं, इसके बाद से ये और मौजू हो गया है ये सवाल। मुझे लगता है कि सनातन पांडे जो कि बलिया से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो इसको एक तरीके से लीड कर रहे हैं और तमाम जो ब्राह्मण चेहरे हैं आज उसमें रहेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर उसमें बातें क्या निकल करके आती हैं, क्या पीडीए से आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की, सवर्णों की, जनरल कास्ट की भी बात करती है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की, जो आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बड़ी रणनीतिक बैठक करने जा रहे हैं। आज और कल दो दिन तक ये बैठक चलेगी जिसमें देशव्यापी अभियान पर अपने भविष्य को लेकर सीजेपी चर्चा करेगी। हालांकि दीपके ने कोई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की बात से इनकार किया है।
2: एक ऐतिहासिक जीत हुई है युवाओं की एंड उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये जो मूवमेंट है ये कहाँ जाएगा, किस राह पे जाएगा, तो उसी के बारे में, उसके बारे में चिंतन करने के लिए, उस चीज के बारे में एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम लोग सारे आज आए हैं औरंगाबाद। यहाँ पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे, दो दिन का मीटिंग है, कल और परसों होगा एंड उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे इस मूवमेंट को ग्रास रूट पे कैसे ले जाए, क्योंकि बहुत सपोर्ट है हम लोगों का ग्राउंड पे एंड हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनके पास हम लोग जाए, उनके दुख दर्द पीड़ा हम लोग समझे एंड उनके लिए एक अच्छा, युवाओं के लिए एक अच्छा सा एजेंडा लाए हम लोग।
1: और अब आज जम्मू कश्मीर के शोपियां की, जहां पर एक बार फिर अचानक बाढ़ आई है। वहां केलर इलाके में बाढ़ के गंभीर हालात दिखाई दिए हैं। सैलाब की वजह से एक निर्माणाधीन पुल तबाह हो गया और इसका असर आसपास के इलाकों पर देखा जा रहा है। चारों ओर बाढ़ की वजह से जनजीवन ठप हो चुका है। और अब आप ब्राजील के साओ पाउलो की, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से तबाही हुई है। मामला साओ पाउलो के बाहरी इलाके का है। वहां केमिकल फैक्ट्री में आग लगी तो उसके शोले आसमान छूते हुए दिखाई दिए। आग इतनी भयावह थी कि पूरे इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। भीषण आग के कारण लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने आसपास के घरों से तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सॉल्वेंट्स और पॉलिएस्टर रेजिन बनाने वाली कंपनी में आग लगने के कारण 30 दमकल गाड़ियों को वहां पर भेजना पड़ा। और अब खबर पश्चिमी एशिया में जारी तनाव की। एक बार फिर भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाज पर हमला किया गया। उसी जहाज का वीडियो आपको दिखा देते हैं। इसमें देखा जा सकता है कि जहाज में आग लग गई है और जानकारी के मुताबिक लाल सागर के यमन के पास तिरंगा वाले कमर्शियल जहाज को विस्फोटक से लदी एक नाव ने टक्कर मारी जिसमें वो डूब गया। जहाज के सभी 13 भारतीय क्रू मेंबर को बचा लिया गया। इस हमले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की और कहा है कि इस मामले की हम निंदा करते हैं। तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

गांधी मूर्ति से प्रेरणा स्थल तक विरोध मार्च, 3 अहम मांगों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे, आज पीडीपी का पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी बनाएंगी ब्लैक डे, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। यूपी विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर संग्राम के आसार, चंदे की रसीद मांगने वाले स्पीकर के बयान पर ओवैसी के सवाल, पूछा क्या आस्था के आधार पर चोरी को चोरी नहीं कह सकते। अमृतसर पेट्रोल पंप वाले मॉड्यूल से सनसनी केस खुलासा, एसआई से आरोपियों कनेक्शन, कमिश्नर बोले प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर भी गए लेकिन नाकाम हुए मंसूबे। और झारखंड में 12वें दिन जारी है छात्रों का प्रदर्शन, अब जागी है सोरेन सरकार, सीएम बोले

बीजेपी मानसून सत्र में चर्चा की करेगी मांग। साढ़े 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जोरदार बारिश से बिगड़े हालात, मुख्य बस स्टैंड के टापू बन जाने से यात्रियों को भारी दिक्कत। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात, सिरमौर में नेशनल हाईवे पर बना 50 से 60 साल पुराना पुल भारी बारिश के बाद ढह गया। बंगाल के पश्चिम बर्दवान में बारिश से पानी पानी हुआ कबाड़ी मार्केट, जल निकासी की मांग को लेकर मजदूरों की हड़ताल, सड़क पर धान रोककर किया विरोध। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारी बारिश के कारण अंडरपास और मुख्य बाजार जलमग्न, सड़कों पर भारी जलभराव, यातायात ठप। देहरादून में भारी बारिश से तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास नदी उफान पर, प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई। उत्तराखंड में कलसी चक्राता मार्ग भूस्खलन से बंद, फंसी सैकड़ों गाड़ियां। मध्य प्रदेश की विदिशा से आया खौफनाक वीडियो, फंती नदी के बीच जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को मजबूर है बच्चे। प्रयागराज में झमाझम बारिश, शहर के कई इलाकों में बरसे बादल, बारिश ने सुहाना किया मौसम, लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के नासिक में नदी पर बने अस्थायी लकड़ी के पुल से संतुलन बिगड़ने के कारण नदी में बहा व्यक्ति, बाढ़ के कारण पहले से 4 बार पुल बह चुका है। राजस्थान के करौली में जलभराव से बिगड़े हालात, पक्के रास्तों के अभाव के कारण लोग घुटनों तक भरे पानी और कीचड़ के बीच निकलने को मजबूर। संसद में आज भी हंगामे के आसार, छात्रों के मुद्दे समेत 3 मांगों पर अमित शाह के बयान पर अड़ी है विपक्ष। जेएनके को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी, कांग्रेस एसपी डीएमके टीएमसी सीपीआई आप और अन्य दलों के शामिल होने की संभावना। यूपी विधानसभा में हंगामे के आसार, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आज भी विपक्ष कर सकता है हंगामा, चढ़ावा चोरी पर गतिरोध जारी, विपक्ष कर रहा है बहस की मांग, योगी सरकार ने कहा बहस की जरूरत नहीं है, एसआईटी जांच जारी। यूपी में चुनाव से पहले एसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन, आज जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने आयोजित किया है ये सम्मेलन। संसद परिसर में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला, कहा वो उन्हें माफ करने वाले कौन होते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा छात्र सड़कों पर हैं, बहुत दर्द में, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उन्हें माफ कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा निशाना, बोले आरएसएस की सोच के पीछे बहुत खतरनाक और विभाजनकारी विचार काम कर रहा है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा आरएसएस हमारा इतिहास नहीं बदल सकता, भारत अपने इतिहास के कुचले जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज बागपत दौरे पर राहुल गांधी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मदरसा शिक्षा पर योगी सरकार का फैसला, कामिल फाजल डिग्री की मान्यता होगी खत्म, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला। धार की बोधशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों का पक्ष सुनेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर चुनाव को पूरी तरह दिखावा करार दिया। दिल्ली के जंतर मंतर की हिंसा को लेकर सूत्रों की खबर, एफआईआर में आपराधिक साजिश की धारा लगाई गई, जांच करेगी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। बांकीपुर उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर ने आज तक से खास बातचीत में कहा बीजेपी के सभी समीकरण ध्वस्त हुए हैं, जनता बीजेपी की कार्यशैली से नाराज है। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार पर कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का हमला, बोले सोशल मीडिया पर अभद्र शब्द का इस्तेमाल। विरोध में भड़के एनसीपी कार्यकर्ता, सड़क पर उतरे, कांग्रेस दफ्तर में किया जोरदार हंगामा, नारेबाजी। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कांग्रेस की अभद्र टिप्पणी पर पहली बार प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा उचित समय आने पर करारा जवाब देंगी। पीएम फडणवीस का विपक्ष पर हमला, बोले खबरों में बने रहने के लिए कर रहे हैं राजनीति, महाराष्ट्र की संस्कृति में इतने निचले स्तर पर जाने की घटना पहली बार देखने को मिली है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने महिलाओं के अपमान से जोड़कर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को अपनी टिप्पणी पर शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में एसआर की समय सीमा फिर बढ़ी, अब 17 अगस्त तक चलेगा बूथ स्तर पर घर घर सत्यापन। प्रारूप मतदाता सूची 24 अगस्त को प्रकाशित होगी, जबकि दावे और आपत्तियां 24 अगस्त से 23 सितंबर तक स्वीकार की जाएंगी। पीएम मोदी का फेसबुक वीडियो हटाए जाने के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने मेटा को दिया समन। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताने के बयान की कड़ी निंदा की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते मद्दी ने इसे आजादी के इतिहास और भारतीय संविधान का अपमान बताया। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन 8 घंटे तक पूछताछ के बाद रिहा, कहा पुलिस ने मेरे साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया। टीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का धारा 370 हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान कहा हम इस रात कभी नहीं भूल सकते, हमारी पार्टी अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग करती है।
टीडीपी नेता अल्तजा मुफ्ती ने रोड मार्च निकालने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने रोक दिया। दौरान पुलिस वालों से कहां सुनी हुई। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी विरोध प्रदर्शन करेगी। केंद्र सरकार का भगौड़े अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगौड़े अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का केंद्र पर हमला, बोले 4,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़ों को कब लाएंगे वापस। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के एक बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा सिर्फ एक टिप्पणी है ये, बल्कि ये विधानसभा की गरिमा से जुड़ा हुआ सवाल है। ओवैसी ने महाना पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या अपराध को अपराध कहने से पहले अपने धर्म का हलफनामा देना होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पहली बार सामने आए। जगतगुरु परमहंस आचार्य के अयोध्या न छोड़ने की अपील पर जताई सहमति। अमृतसर में पेट्रोल बम वाले मॉड्यूल से सनसनीखेज खुलासा, आईएसआई से आरोपियों का कनेक्शन। जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों का आंदोलन 12वें दिन जारी, देश भर से मिल रहा समर्थन। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने 3 और को अरेस्ट किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार छात्रों के आंदोलन पर तोड़ी चुप्पी, कहा जेपीएससी मामले में सरकार की पैनी नजर है, समय आने पर दिखेगा निर्णय। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने छात्र आंदोलन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, उन्होंने परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने एक बार फिर सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन को सरकार अनसुनी कर रही है, सीआईडी से जांच की मांग की। यमन के समुद्री क्षेत्र के पास भारतीय जहाज एमएसवी फैजे नूरे ओलिया पर हुआ बड़ा हमला, अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आने के बाद समुद्र में डूबा जहाज। ईरान के होर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर ओमान से की बातचीत, कहा बातचीत सकारात्मक रही है, जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने पर हुई बात। ईरान अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीद बढ़ी, कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कूटनीतिक समाधान की कोशिश जारी। कतर पाकिस्तान और ओमान मध्यस्थता में जुटे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के पास यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, 5 की मौत, 1 नागरिक घायल। यूक्रेन के सुमी समेत कई शहरों पर रूस का भीषण हमला, 3 की मौत, कई लोग घायल। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक बुनियादी ढांचों पर हुआ हमला। लेबनान में संघर्ष विराम समझौते को लेकर इटली की राजधानी रोम में लेबनान और इजराइल के वार्ताकारों के बीच 7वें दौर की बातचीत। ब्राजील के साओ पाउलो में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग की तबाही, पूरे इलाके में घटना के बाद हड़कंप। अधिकारियों ने आसपास के घरों से करीब 150 निवासियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। कंपनी में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर। इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश कर रहे अवैध अप्रवासियों से भरा जहाज हुआ बड़े हादसे का शिकार, 157 प्रवासियों को फ्रांस और ब्रिटेन की टीमों ने सुरक्षित बचाया। श्रीलंका में मूसलाधार बारिश के बाद 5 लोगों की जान गई, 3 हैं घायल, कुछ लोग लापता होने की खबर। नोएडा ग्रेटर नोएडा के 7 निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई, तय सीमा से ज्यादा फीस बढ़ाने पर जिला प्रशासन लगाया 1-1 लाख का जुर्माना। कानपुर में नकली हल्दी बनाने वाली फैक्ट्री पर एफएसडीए का छापेमारी, चावल के टुकड़ों में रंग मिलाकर तैयार हो रहा था हल्दी पाउडर। यूपी में करंट का कहर, अलग अलग हादसों में 3 की मौत, देवरिया में बच्ची, एटा में मासूम और लखनऊ में पुजारी की गई जान। नोएडा मेट्रो हादसे में पर एनएमआरसी सख्त, M3M बिल्डर को कारण बताओ नोटिस। ट्रेन की ओवरहेड लाइन में फंसने से मेट्रो सेवा 2.5 घंटे प्रभावित। अमेठी में युवक हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 85 लाख रुपए की लूट मामले में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बुजुर्ग की दिनदहाड़े हत्या मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी सहित 3 को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश कन्नौज में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का वीडियो आया सामने, सरकारी स्कूल में क्लासरूम में सोते दिखे शिक्षक। यूपी के आजमगढ़ में दर्दनाक हादसा, बिजली के खंभे से टकराकर डीजल से भरा टैंकर पलटा, 3 लोग जिंदा चले। मथुरा में जन्माष्टमी से पहले खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, 5,000 किलोग्राम से ज्यादा मिलावटी पेड़ा और मिल्क केक जब्त। बिहार के वैशाली में रास्ते को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, पुलिस प्रशासन के सामने भिड़े दोनों पक्ष। देहरादून में चलती गाड़ी में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। धनबाद के कतरास में जोरदार धमाका, फटी धरती, आधा दर्जन घर जमीन दोस्त। राजस्थान के अलवर में नशे की आदत में 25 फीट ऊंचे ऐतिहासिक गुंबद पर चढ़ा युवक, आधे घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट देखकर खुद ही नीचे उतरा। कटिहार में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे बच्चे, रेलवे ट्रैक पार करने को मजबूर, ग्रामीणों ने इलाके में प्राथमिक स्कूल खोलने की मांग की। झारखंड के चतरा से सनसनीखेज मामला, नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को ग्रामीणों ने पीट पर पीटकर हत्या की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान करने वाली घटना का वीडियो वायरल, मॉल में फूड आउटलेट पर काम करने वाली युवती को पीटते नजर आया युवक। महाराष्ट्र के पालघर में आपस में भिड़े मनसे के कार्यकर्ता, मारपीट में पूर्व शहर अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल।
पूनो नेशनल पार्क से बाहर निकला चीता, शिवपुर में गांव में दहशत, खेतों में दौड़ता दिखा चीता, वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई। कौशाम्बी में नकली लिक्विड यूरिया फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस छापेमारी, भारी मात्रा में नकली यूरिया बरामद। अनुच्छेद 370 की सातवीं बरसी को लेकर श्रीनगर के लाल चौक सील, प्रस्तावित राजनीतिक प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। सूरत में 3 फुट गहरे गड्ढे में बाइक गिरने से युवक की मौत, हादसा सीसीटीवी में कैद। गुजरात के मेहसाणा में नाबालिग ने गाड़ी के से आंगन में बैठे 3 लोगों को कुचला, 2 की मौत। हैदराबाद में दिल लाने वाली वारदात, सन की युवक ने दिन दहाड़े पीछा करके व्यापारी की बेरहमी से हत्या की, घटना के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा। अमृतसर पुलिस का एक्शन, आईएसआई समर्थित 2 आतंकी मॉड्यूल्स का भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार। उड़ीसा के रायगढ़ में रैगिंग और मारपीट का एक चौंकाने वाला मामला, रैगिंग की शिकायत करने पर सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र को बुरी तरह पीटा। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की, 6 करोड़ के ड्रग्स और तस्कर को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में वर्धमान में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच महिलाओं ने प्रधान के पति को कॉलर पकड़कर कार्यालय से निकाला। गाजीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, नीलगाय टकराने के बाद बाइक सवार की मौत। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने की तैयारी, 9 और 10 अगस्त को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार। कांवड़ यात्रा को देखते हुए अलर्ट मोड पर रेलवे दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन में बनाया गया वॉर रूम, तमाम स्टेशन पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। सावन के महीने में अलग अलग कांवड़ यात्रा खींच रही है लोगों का ध्यान। सहारनपुर से निकली बाहुबली वाली कांवड़ 9 फीट ऊंची है, श्री हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली कांवड़। बिजनौर की कांवड़ ने पेश की सेवा भाव की मिसाल, 90 साल की दादी और दूसरी तरफ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा को निकला पोता। बागपत में रिश्तों की अनोखी कांवड़, बहू ने सास ससुर के लिए उठाई कांवड़।

0: 吧。
1: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
1: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ ला भाई मेरा बैट,
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
1: बैट किसका है?
4: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी घू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घू का कॉफ सिरप।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट।
4: नोबडी एक्सपेक्टेड दैट ही वुड टेस्ट विद इन 3 मंथ्स ऑफ टेकिंग ओवर एज प्राइम मिनिस्टर।
5: टू मोर टेस्ट वर कंडक्टेड साइमल्टेनियसली ऑन 13th मई 1998।
4: Secretly fooled some of the best CIA experts, and that became the incredible story about the bomb makers, which made cover of India Today.
6: Jai Hind friends, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन ने पांचवी इकॉनमी बनने के लिए दौड़ रही हुकूमत को जगाकर न सिर्फ मंत्री का इस्तीफा दिलाया बल्कि परीक्षा व्यवस्था के बारे में सोचने को भी मजबूर किया है। उसी आंदोलन ने दूर झारखंड में भी नौजवानों के बीच बदलाव और इंसाफ की उम्मीद का दिया जलाया। लेकिन इसी बीच जब एक तरफ संघ के तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज शख्स जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को संविधान विरोधी बताते हैं, दूसरी तरफ संघ प्रमुख उन्हीं जेन जी से बातचीत करना चाहते हैं और तीसरी तरफ झारखंड में चल रहे आंदोलन को बीजेपी इंसाफ की जंग बताती है, तो सवाल खड़े होते हैं, क्या देश में आज नौजवानों की आवाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है? क्या जेन जी को संविधान परस्त और संविधान विरोधी करार दिया जा रहा है? और क्या जेन जी के मुद्दों को नजरअंदाज करके सियासत की जा सकती है? जवाब है नहीं। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद अपने मंत्रियों को जेन जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो संघ प्रमुख भी अब जेन जी से मुलाकात करना चाहते हैं। खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अब जेन जी से मुलाकात कर उनसे बातचीत करना चाहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई के नीता मुकेश अम्बानी कल्चरल सेंटर में 14 से 29 साल के जेन जी और 13 साल की जेन अल्फा के साथ मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के इस कार्यक्रम में देश के 100 से ज्यादा शहरों से 2000 से ज्यादा हाई स्कूल के विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। दरअसल जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश में ये विमर्श पैदा किया जा रहा है कि सीजेपी के आंदोलन में शामिल जेन जी दो तरह के थे, जिसमें एक वाजिब जेन जी था और दूसरा देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा जेन जी। और इसी भटकाव को रोकने के लिए अब संघ प्रमुख देश के नौजवानों से मुलाकात और राबता कायम करना चाहते हैं। जिस संस्था के कार्यक्रम में संघ प्रमुख की नौजवानों से मुलाकात होगी और इसके प्रेसिडेंट बताते हैं कि ऐसी मुलाकातों का मकसद क्या है। उधर अभिजीत दीप की ऐसी पहल का स्वागत तो करते हैं, लेकिन जेन जी से बात करने के लिए युवा चेहरे की जरूरत भी बताते हैं। और गौर करने की बात ये कि 6 अगस्त को संघ प्रमुख की जेन जी से मुलाकात के पहले 5 अगस्त को अभिजीत दीप की अपनी पार्टी की बैठक में संगठन के विस्तार, भविष्य की रणनीति और पार्टी के रोड मैप पर भी चर्चा करने वाले हैं।

0: भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से चल रही आईपीओ की तेज रफ्तार हाल के दिनों में थोड़ी धीमी पड़ती नजर आने लगी है। जिन कंपनियों को कुछ महीने पहले तक बाजार से शानदार रिस्पांस मिलने की उम्मीद थी, वो अब अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इसकी वजह है कि बाजार में बढ़ती अस्थिरता, निवेशकों की सतर्कता और वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंता ने आईपीओ मार्केट को धीमा कर दिया है। ब्लूमबर्ग की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के आईपीओ बाजार में फिलहाल पहले जैसी तेजी नहीं दिखाई दे रही है। कई कंपनियां तो अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रही हैं और हाल ही में जेप्टो ने अपने आईपीओ का प्लान टाल भी दिया है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्केट की कमजोरी के चलते कई कंपनियां अपने आईपीओ का साइज और वैल्यूएशन कम करने को मजबूर हो गई हैं। इसकी वजह है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और बाजार में बढ़ते उतार चढ़ाव ने निवेशकों को ज्यादा सतर्क बना दिया है। वहीं कुछ हालिया लिस्टिंग्स के कमजोर प्रदर्शन के बाद निवेशक शेयरों की कीमत और बिजनेस मॉडल को ज्यादा बारीकी से परखने लगे हैं। बाजार के इस बदलते माहौल का असर केवल निवेशकों पर ही नहीं, उन कंपनियों पर भी दिखाई दे रहा है जो केवल बाजार के जरिए पूंजी जुटाने की तैयारी में थीं। ऐसे में कंपनियां जल्दबाजी में बाजारों में उतरने की जगह सही समय और सही वैल्यूएशन का इंतजार कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीनों में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने की रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ी है। वहीं कई कंपनियों ने बाजार की स्थिति को देखते हुए अपनी लिस्टिंग योजनाओं की टाइमिंग पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है और मर्चेंट बैंकर्स कंपनियों को आक्रामक प्राइसिंग से बचने और निवेशकों के लिए आकर्षक वैल्यूएशन रखने की सलाह दे रहे हैं। यानी जो आईपीओ बाजार पिछले कुछ समय से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा था, वो एक नए दौर में प्रवेश करता नजर आ रहा है। ऐसे में केवल नाम या चर्चा के दम पर निवेशकों का पैसा जुटाना आसान नहीं होगा। कंपनियों को मजबूत बिजनेस, संतुलित वैल्यूएशन और बेहतर ग्रोथ प्लान के साथ बाजार में आना होगा। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बदलाव लंबे समय में बाजार को और ज्यादा परिपक्व और मजबूत बना सकता है। यानी फिलहाल आईपीओ बाजार में भले ही सुस्ती का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन आगे चलकर यही कमजोरी इसकी ताकत बन सकती है, क्योंकि निवेशकों की बढ़ती समझ कंपनियों को ज्यादा भरोसेमंद बनने का रास्ता तैयार करने में मदद करेगी। आदित्य के राणा आज तक
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज भी हंगामे की भेंट चढ़ सकती है संसद। जंतर मंतर पर पुलिस एक्शन के खिलाफ कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। गांधी मूर्ति से प्रेरणा स्थल तक इंडिया ब्लॉक का विरोध मार्च। पीएम का वीडियो डिलीट करने और सोशल प्लेटफॉर्म की मनमानी पर संसदीय समिति ने मेटा के संस्थापक मार्क जकरबर्ग को दिया है 3 दिनों का अल्टीमेटम। कहा, ये लोकतंत्र पर हमले जैसा। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए आज अखिलेश यादव का बड़ा सियासी दांव। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम। विधानसभा में जारी है चढ़ावा चोरी पर सरकार का विरोध। अमृतसर में पेट्रोल बम वाले मॉड्यूल से सनसनी खेज। खुलासा आईएसआई से है आरोपियों का कनेक्शन। कमिश्नर बोले, प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर भी गए लेकिन नाकाम हुए मंसूबे। और समंदर के तेल रूट पर जल्द समझौते के आसार। ट्रंप ने कहा, हमेशा के लिए खुलने वाला है हॉर्मूज। यमन के पास भारतीय जहाज पर हुती हमले में सुरक्षित हैं 13 लोग। भारत ने की निंदा।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज सुबह में क्या क्या है खास। तो बात होगी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हंगामे की। संसद में जहां विपक्ष चढ़ावा चोरी से लेकर छात्रों पर फायरिंग पर चर्चा की मांग कर रहा है, वहीं यूपी विधानसभा में विपक्ष योगी सरकार को चढ़ावा चोरी पर लगातार घेर रहा है। साथ ही बताएंगे कि परीक्षा में गड़बड़ी पर झारखंड में आखिर क्या चल रहा है, क्या छात्रों के आंदोलन के आगे झुक सकती है हेमंत सोरेन सरकार, क्यों बीजेपी इस मामले पर राहुल गांधी पर भी हमलावर है, और बताएंगे कि 370 हटने के 7 साल होने पर कश्मीर में क्यों उबाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी क्यों सड़कों पर आने के लिए आमादा है। तो इस सब पर बात होगी, लेकिन पहले रुख करते हैं संसद का, जहां बस 1 घंटे बाद कार्यवाही शुरू होने वाली है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के तेवर हैं, लगता है कि आज भी हंगामा ही तय है। विपक्ष चढ़ावा चोरी से लेकर छात्रों पर फायरिंग पर चर्चा की मांग कर रहा है, गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है, और कांग्रेस ने जंतर मंतर के प्रदर्शन में फायरिंग को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में ये नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि लोकसभा की जो नियमित प्रक्रिया है उसको स्थगित किया जाए और अमित शाह आकर बयान दे क्यों कार्रवाई की गई थी छात्रों के खिलाफ, जो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उस पर वो कोई ना कोई बयान दे। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, ये स्थगन प्रस्ताव दे तो दिया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर ये माना जाए या ना माना जाए ये बड़ा सवाल है, लेकिन विपक्ष की क्या कोशिश है इसके जरिए?
1: देखिए, लगातार अंजलि, आप देखिए कि जब से ये संसद सत्र शुरू हुआ है, मॉनसून सत्र पूरा हंगामे में ही धुल गया है। पहले दिन ही लाठीचार्ज होता और उसके बाद ही अमित शाह सदन में आए, अमित शाह जवाब दे, पहले धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग होती है, सत्र के बीच में ही इस्तीफा होता है धर्मेंद्र प्रधान का, और उसके बाद अमित शाह को लेकर अब हमलावर है विपक्ष। और यही वजह है कि मणिकम टैगोर का ये जो स्थगन प्रस्ताव है, हर दिन वो ये देते हैं कि पहले अमित शाह पर बात हो, अमित शाह जवाब दें कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। वही दूसरी ओर आप देखिए कि चंदा चोरी को लेकर भी कोहराम मचा हुआ है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस लगातार मकर द्वार पर विरोध कर रही है। तो ये दोनों मसले हैं जो हावी हैं, खासतौर से पेपर लीक हो, चाहे वो दिल्ली हो या झारखंड हो, उसको लेके पूरा सत्र गरमाया हुआ।
0: जी बिल्कुल मौसमी, आप हमारे साथ बने रहे हैं। दूसरे मसले की भी बात कर लेते हैं। कल चंदा चोरी पर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री आमने सामने आ गए।
2: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, ये करोड़ों श्रद्धाजनों की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी। अब भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया को बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी ने बताइए ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच
3: पार्टी और समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं, ये राम मंदिर के विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कंपनी है, भगवान लोग मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी से नाटक करके गुंडा करने का पेशी करता है, ये बगैर नाम का विरोधी है, बगैर नाम का विरोधी कांग्रेस समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं। दुनिया लोग आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते, नाम को मानते नहीं है। शर्म से हर दिन और यहाँ ये लोग बगैर नाम
2: को गाली देने लोग आज ये विषय उठा रहे, माफी मांगना चाहिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था मेरे तले पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे ये लोग, इन्होंने विरोधी है जो और आज घूमने करते हैं, पहले देश से माफी मांगे बकरी अल्लाह को जवाब दीजिए, उसके लिए आप लोग पहले देश से माफी मांगो।
0: तो कल जमकर बयानबाजी चली, विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग करता रहा और सत्ता पक्ष की दलील रही कि विपक्ष संसद की कार्यवाही चलने नहीं दे रहा है।
4: हम लगातार ये मांग करेंगे कि क्योंकि राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, एक किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो, और जो ये ट्रस्ट भी बना है मैं नहीं समझती ट्रस्ट भी सही ढंग से बना है। ये रोटेटिंग और ये इलेक्शन टाइप के लोग अपने नाम दे अलग अलग पार्टीज के, जिससे कि कोई भी इसमें चीटिंग कोई भी इसमें भ्रष्टाचार ना हो पाए।
5: उस पे एसआईटी का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी, हाई कोर्ट के ने जो एसआईटी का गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही सख्त से सख्त। तो अगर इस पे भी कोई चर्चा चाहते हैं बिजनेस एडवाइजरी मिले जाए, लेकिन सदन के अंदर नहीं चर्चा करना चाहते। समाजवादी पार्टी केवल उससे एक जैसे राजनीति कर रही हो, यहाँ पे विधानसभा के चुनाव का एजेंडा यहाँ से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता जान रही कि वहाँ पे जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी की सरकार काम कर रही है, उसे निश्चित तौर से फिर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी।
0: और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह और हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, पहले आपके पास आते हैं, आज मार्च भी है, 3 मुद्दे हैं जो मुख्यतः उठा रहे हैं विपक्ष वाले, पहला पैलेट गन और अमित शाह के बयान का मुद्दा, दूसरा कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा दें कश्मीर के लिए, और सातवें चंदा चोरी का मुद्दा। तो ये 3 जो मांगे इसको लेकर किस तरह से अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी सरकार तैयार कर रही है?
6: देखिए, सरकार की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल साफ है, सरकार चाहती है कि सदन चले, लेकिन विपक्ष की तरफ से हो हल्ला हंगामा हो रहा है और इसी बीच में सरकार जो है अपने जितने बिल हैं उनको रोज पास कराने का काम कर रही है। कल जो है लोकसभा के अंदर अप्रोप्रिएशन बिल जो है यानी सप्लीमेंट्री बजट, उस बिल को पास कराया गया। राज्यसभा के अंदर जो है वो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स बिल को पास कराया सरकार ने। सरकार की कोशिश है कि चर्चा हो, लेकिन हंगामे के बीच सरकार के जो विधायी कार्य हैं उनको पूरा करने का काम भी सरकार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस बात को लेकर पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है विपक्ष का यह कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आके जवाब दें, पैलेट गन का यूज क्यों हुआ, लाठीचार्ज क्यों चलाए गए 20 जुलाई को, उसके साथ साथ जो है चंदा चोरी के एक मामले पर जो है राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला है उसको लेकर विपक्ष अडिंग है कि इस पर जो है दोनों ही सदनों के अंदर जो है वो चर्चा होनी चाहिए।
0: जी,
6: और अगर चर्चा नहीं होगी तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी।
0: जी बिल्कुल, और इसी के बीच संसद के परिसर से ताजा तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और इस वक्त विपक्षी नेता एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो ये पैलेट गन के मुद्दे पे उन्होंने पकड़े हुए हैं अपने पोस्टर। तो मौसमी, जाहिर तौर पर ये जो मार्च होना है संसद के परिसर में उसमें पॉइंटेड फोकस के साथ विपक्षी पार्टियां जुट रही हैं, तो क्या कोशिश है इस मार्च के जरिए संदेश देने की?
1: बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं अंजलि, ये मकर द्वार की है जहाँ पे रोज हम लोग देख रहे हैं कि किसी ना किसी अलग अलग तरीके से, कभी दान पेटियां लेके, कभी अमित शाह का पोस्टर लेके ये विपक्षी दल नजर आ रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पे आप देख रही हैं समाजवादी पार्टी के सांसद और कांग्रेस के सांसद है। तो दोहरा मुद्दा लेके ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक तो अमित शाह जवाब दे और दूसरा जो राम मंदिर की दान चोरी का मसला है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि खड़गे पॉइंटेड अटैक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पे, कि संसद परिसर में आते हैं लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के फ्लोर में नजर नहीं आ रहे, ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री अमित शाह। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है अंजलि की इस पूरे हो हल्ले में कहीं ना कहीं जो दो महत्वाकांक्षी या बेहद जरूरी बिल सरकार लाने वाली थी, एक तो FCRA वाला और दूसरा जो डिलिमिटेशन बिल है जो महिला आरक्षण वाला है संशोधन, वो अभी तक हमें नहीं, उसपे अभी तक रास्ता साफ नहीं है कि क्या सरकार ला पाएगी या नहीं ला पाएगी, एक संशय बना हुआ है। और वो गतिरोध की वजह से, वो गतिरोध जो अभी हम लोग मकर द्वार पे देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, जो तख्तियां हैं वो अमित शाह गृह मंत्री की जवाबदेही, पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर तख्तियां, चंदा चोरी को लेकर तख्तियां, लाल टोपी इसमें नजर आ जाएगी जो कि सफाइयों की है, और किस तरीके से जो नाटक चल रहा है एक तरीके से चंदा चोरी का, उसको लेकर भी काफी बवाल मचा था। सनातन का अपमान कह के बीजेपी सांसदों ने कहा कि पप्पू यादव भगवा वस्त्र में आए, तो अलग अलग दौर हमने देखे है मकर द्वार पे विरोध के।
0: जी
1: अंजलि
0: जी, और इस वक्त जो तस्वीरें मौसमी आ रही हैं उसमें गांधी प्रतिमा के सामने पहुंच चुके हैं विपक्षी पार्टी के सांसद, और हम जैसे कि आप कह रहे थे कई पार्टियों के सांसद यहां पर देख रहे हैं, सुप्रिया सुले भी नजर आ रही है, तो जाहिर तौर पर जो विपक्ष है वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। पर मुद्दा जो सबसे ज्यादा उठता रहता है वो बयान को लेकर के उठ रहा है मौसमी, कि अमित शाह बयान क्यों नहीं देते। हिमांशु भी हमारे साथ ही है, तो हिमांशु सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों नहीं सरकार की तरफ से एक बार आके बयान दिया जाता है, सरकार क्यों डिफ्लेक्शन के मोड में है हमेशा।
6: देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से विपक्ष को यह साफ किया गया है कि लाठी चार्ज हो या टियर गैस का इस्तेमाल हो या फिर जो है वो पैलेट गन का अगर यूज हुआ है तो इस पर गृह मंत्री का जवाब नहीं हो सकता। ये एसडीएम लेवल पर जो है ये आदेश दिए जाते हैं, और इस पर गृह मंत्री का जवाब कैसे मांगा जा सकता है। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से जो है वो क्लैरिटी जो है विपक्ष को दी गई। जब आप देखेंगे प्राइवेट एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर अमेंडमेंट बिल जो लाया गया, उसमें जब मंत्री जितेंद्र सिंह जवाब दे रहे थे उन्होंने भी साफ किया था कि इस तरीके के आदेश गृह मंत्री नहीं देते हैं, ये नीचे के अंदर ब्यूरोक्रेसी देती है। और इसी को लेकर विपक्ष जो है लगातार हमलावर है, और विपक्ष की ये मांग है कि गृह मंत्री, क्योंकि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो केंद्र के अधीन आता है, और यानी गृह मंत्रालय जो है उसको सीधा सीधा ऑपरेट करता है, तो जो भी आदेश होंगे वो गृह मंत्रालय के निर्देश पे दिए गए होंगे, यह विपक्ष का कहना है। और इसीलिए विपक्ष जो है इस मांग को लेकर अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री जो है वो सदन के अंदर आए और वो जवाब दे। और उसके साथ साथ राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला है, और एक अब नया इशू जो है विपक्ष की तरफ से मांगा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था, केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा जब जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा चुनाव जो है पूर्ण हो जाएंगे। तो विधानसभा चुनाव जो है वो पूर्ण हुए, लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुका है, और अब सरकार की ये भी वहां की मांग है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो वहां की सरकार को दिया जाए। तो ये तीन मांगे जो है मुख्य रूप से विपक्ष की है, जिस पर सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन जो है विपक्ष को नहीं दिया गया है कि गृह मंत्री जो है सदन में आकर बयान देंगे, उसके साथ साथ राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर जो है सदन के अंदर कोई चर्चा होगी, और साथ ही साथ आज जो नई मांग है इसको लेकर क्या सरकार का रुख रहेगा वो अब से थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल, मुद्दे कई हैं और विपक्ष अडिग है, आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे जब ये मार्च शुरू होता है। लेकिन यही मुद्दा यानी कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा यूपी में भी चल रहा है, क्योंकि चढ़ावा चोरी पर यूपी विधानसभा में भी हंगामे के आसार हैं। कल भी चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग पर खूब बवाल हुआ था, तो मंगलवार को योगी सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुपूरक बजट से कहीं ज्यादा सदन में विपक्ष के हंगामे की गूंज सुनाई दी थी, और समाजवादी पार्टी के विधायक राम मंदिर चढ़ावा मामले पर पहले चर्चा की मांग को लेकर वेल में उतर आए थे, पोस्टर लहराने लगे थे, नारेबाजी करने लगे थे, और हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक विधायक को निलंबित करना पड़ा था, जबकि मार्शलों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। आज सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। अनुपूरक बजट पर चर्चा प्रस्तावित है, लेकिन नजर इस बात पर रहेगी कि क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद फिर सदन की कार्यवाही पर भारी पड़ेगा या नहीं। विपक्ष सरकार पर इस मुद्दे से बचने का आरोप लगा रही है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष के रवैये को सिर्फ राजनीतिक हंगामा बता रहा है।
7: संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इस समाजवादी पार्टी का शोक और सगल है। इन्होंने हमेशा से, इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो और लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं, कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं, ये न्यायालय की बात को नहीं मानते, ये सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते, ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, कभी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कभी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के अधीन संचालित किसी आयोग में लंबित किसी प्रकरण में जबरन उस प्रकरण को चर्चा के लिए नहीं लेकिन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से तर्कहीन मुद्दों को उठा करके इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है।
8: अब उसको नीचे करिए सचिन आप उस मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
9: करिए।
8: प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा
9: के साथ।
8: आप मुख्यमंत्री जी के फोटो आप ले सकते हैं, आप सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। You can't do. No, you can't do that. You can't do that. You cannot do that. मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे आप। चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लड़ेंगे मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड। इस बात में इजाजत नहीं देता हूं।
10: पानी दोनों मिक्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है आप विश्वास रखिए मुख्यमंत्री पर, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन ना दूध का पता है आज के समय में और ना पानी का पता है। नृपेंद्र मिश्रा जो इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और अध्यक्ष हैं उसके निर्माण समिति के, आप इनसे जब इन्होंने क्या कहा कि ये खुली डकैती है, डाका डालने का काम हुआ है।
11: देखिए, ये लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, काश गंभीरता दिखाते, काश मुद्दों पर बात करते, विधानसभा के भीतर जाते, तथ्यों के साथ बात करते, पर क्योंकि तथ्य है नहीं, मुद्दे हैं नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार शानदार काम कर रही है, बहुत सारे प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं। तो जब मुद्दे नहीं है तो अब आपको OTT पर जाने की जरूरत नहीं है। और काश ये गंभीर राजनीति करते, अगर ये गंभीर राजनीति करते तो ये बताते कि आज उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से योगी जी कहां पर लेकर आए।
0: और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक। अभिषेक, क्या लगता है आज सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा हो पाएगी जैसा प्रस्तावित है या आज भी बवाल ही रहेगा?
12: देखिए, पूरे आसार हैं कि आज का दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ेगा। हालांकि सरकार चाहती है कि जो अनुपूरक बजट लेकर के आई है उस पर आज चर्चा हो, लेकिन इसकी उम्मीद कम लगती है। सचिन यादव जिन्हें कल पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया था, आज फिर से वो धरने पर बैठ रहे हैं। यही नहीं, जो तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो लगातार चंदा चोरी, इसके अलावा स्कूलों का मर्जर, ऐसे तमाम मुद्दे लेकर एक बार फिर आज सदन में होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कल सदन में पूरी तरीके से अपनी बात नहीं रख पाए हंगामे की वजह से, तो उन्होंने बाहर आकर मीडिया को बहुत लंबा संबोधन दिया, या यूं कह लें प्रेस से बात की। आज फिर 11:15 बजे मुख्यमंत्री प्रेस से बात करेंगे। इसका मतलब यह अंदाजा है कि एक बार फिर जो सदन है वो हंगामे के भेंट चढ़ेगा। शायद मुख्यमंत्री को बोलने में या फिर वहां पर अपनी बात रखने में दिक्कत होगी, आज वो फिर बाहर आकर के मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। तो ये आप जान लीजिए बहुत छोटा सदन है, लेकिन चूंकि ये पूरा का पूरा ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और आज फिर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो किसी मूड में नहीं है मानने के, तो ये मान लीजिए कि आज का सत्र भी हो सकता है कि हंगामे के भेंट ही चढ़ जाए।
0: जी, शुक्रिया अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे, इस पर हमारी नजर है। क्योंकि मंगलवार को यूपी विधानसभा में स्पीकर सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के विधायकों को फटकार लगाई, चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग करे विधायकों को। सतीश महाना ने फटकारते हुए कहा कि आप लोगों में से किसी ने चंदा दिया है तो जरा रसीद लेकर आ जाओ, देखते हैं किसकी कितनी चोरी हुई है। इस बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर निशाना साधा और सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सतीश महाना ये कहें कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, अगर उन्हें चंदा दिया है उन्होंने तो रसीद दिखाए, तब देखेंगे कि उनका पैसा चोरी हुआ है या नहीं। तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है बल्कि विधानसभा की गरिमा का बन जाता है। तो ओवैसी ने सतीश महाना के जिस बयान को लेकर उन पर सवाल उठाए हैं, आपको वो बयान भी सुना देते हैं।
9: मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहां पे बीच में आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहां जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहां पे, कोई एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, तब पैदा भी नहीं हुए थे जब तक।
0: और आइए सीधा रुक करते हैं बीजेपी नेता गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का।
13: यहां पे उसका की सलाखों के पीछे सड़ेगा जिसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, वो फांसी पे लटकेगा। और एक एक रुपए जो जनता के हैं वो गाड़ी कमाई वापस ली जाएगी, जनता को दी जाएगी। एक बहुत बड़ा बदलाव जो आपके समक्ष मैं रखूंगा इस बिंदु पे और इसके बाद दूसरे बिंदु पे आऊंगा, वो कैसे पुराने कानून जो होते हैं वो बाधक हो जाते हैं। पहले ये लोग दंड की बात करते थे, हम सब जानते हैं 3 नए क्रिमिनल कानून आए और इसमें पहले ट्रायल जब तक कि वो व्यक्ति पेश ना हो जाए आगे नहीं बढ़ता था। तो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका सेक्शन 355 356 है जो कहता है ट्रायल इन एब्सेंशिया, कोई आतंकी है कोई अपराधी है वो अगर उपस्थित नहीं भी है तो ट्रायल आगे बढ़ सकता है। यह एक सोच का बदलाव है और बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि ये जो बदलाव आए हैं ये महत्वपूर्ण है कि भारत तेज गति से आगे बढ़े और जो भी अपराधी हो वो कहीं भी छुपा हो उसको भारत लाके उस पर मुकदमा चलाया जाए। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व है जिस पर पूरे भारत को यकीन है। अब दूसरे विषय पे आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: हर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
17: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
16: असली शहद, असली स्वाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: ला भाई मेरा बैट,
3: वो अभी तो ठीक हुआ। तो
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: नहीं इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप।
12: In association with
13: Cera Sanitaryware, it's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के

0: సోకుడు.
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा. अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया.
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद. लायन कश्मीर हनी,
1: असली शहद, असली स्वाद.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
1: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
3: चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: नहीं इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
10: In association with
11: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: His two biggest blunders have defined Indian politics since he responded to the Shahbano judgment.
4: Didn't quite understand the interplay between judiciary, society, Muslims, personal law. Shahbano was a disastrous decision.
3: That made the Hindus very angry. Then he made other mistakes with the unlocking of the doors at Ayodhya, the Shilanyas, and that's how the BJP rolled.
5: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
6: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
5: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तौलता था। कितना?

0: 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
1: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
0: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
2: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब सीधा रुख करते हैं संसद परिसर का, क्योंकि संसद में आज भी विपक्ष के तेवर सख्त हैं और संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने बैनर पोस्टर के साथ हल्ला बोल दिया है। उसका मार्च शुरू हो चुका है जिसकी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो छात्रों पर पेलेट गन एक्शन के खिलाफ गृह मंत्री के बयान की मांग हो, या फिर चंदा चोरी का मुद्दा हो, या फिर जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का मुद्दा, ये तीन मुख्यतः मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष ये मार्च कर रहा है।
1: ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई है, क्या नाम है वो, टियर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी, यही परंपरा रही है इस देश की।
2: आर्टिकल 370।
0: तो संसद परिसर से इस मार्च पर रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा।
3: 20 मार्च को हुए छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर पूरा विपक्ष इस वक्त संसद भवन के अंदर मार्च करता हुआ नजर आ रहा है। ये मार्च गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक जो है वो चल रहा है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसे जो विपक्ष के सभी सांसद हैं वो मार्च कर रहे हैं और उनके हाथ में बड़ा सा एक पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है अमित शाह जवाब दो। इस पूरे मार्च को जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे जो नेता है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी इस वक्त विपक्ष जो है वो लगातार उठा रहा है। अब लगातार जो है ये मार्च गांधी प्रतिमा से मकर द्वार की तरफ चल रहा है, जहां पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे जो सागर घोष है सबसे आगे है, साथ साथ प्रियंका गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और बाकी जो नेता है वो इस मार्च के अंदर मौजूद है। बड़ा सा एक पोस्टर इस पर लिखा हुआ अमित शाह जवाब दो। आप देख सकते हैं कैसे लगातार मार्च जो है वो गांधी प्रतिमा से चलता हुआ अब मकर द्वार की ओर जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो शुरू से ही सरकार पर हमलावर है और सरकार से इस पर जवाब मांग रहा है। साथ साथ जो चंदा चोरी का मुद्दा है वो भी लगातार गर्माता जा रहा है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा आज तक के लिए।
0: तो आइए सुन लेते हैं कि विपक्ष के नेता इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं।
4: ये की मांग है अमित शाह जी का हाउस में आने के लिए और इसमें चर्चा एक स्टेटमेंट करने के लिए 20 जुलाई में क्या हुआ है, छात्रों के साथ क्या हुआ है, कैसे किया है, किसने किया है, किसने ऑर्डर दिया है, हमारा मांग यही है।
5: गांधी स्टैचू से और यहाँ तक आप लोगों ने मार्च किया है, मकसद जो है आप लोग कह रहे हैं कि बार बार हम गृह मंत्री आए लेकिन आ नहीं रहे, क्या पड़े?
6: इंदिरा गांधी को लोग गुंगी गुड़िया कहते थे, ये हमारे गृह मंत्री गुंगा गुड्डा है, सदन में नहीं आते, बात नहीं रखते, अचानक कैसे गुंगे हो गए ये लोग, उनकी वाचा कैसी चली गई, वाणी चली गई, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लोगों को डराते थे।
5: आज विपक्ष लगभग एक साथ प्रोटेस्ट कर रहा
6: है। हम एक साथ ही है, एक साथ रहेंगे और अमित शाह को, देश के सम्मान्य गृह मंत्री को सदन में आना पड़ेगा।
7: क्या कुछ आप लोग जताना चाह रहे हैं सरकार को?
8: देखिए प्रदर्शन कहां से शुरू किया, मार्च कहां से शुरू किया, गांधी के चरणों से। दुर्भाग्य है कि आज यहां जो सरकार बनाए हुए हैं वो गांधी के विरोधी और गोडसे के अनुयायी हैं। तो आज हम वहां से चले हैं कि ये प्रेरणा ले सरकार और प्रेरणा लेकर सदन में जवाब दे कि लाठियां क्यों चली, कील लगी लाठियां क्यों चली, क्यों चला इनके ऊपर पिलेट का जवाब दे। दूसरा अब तो साफ है, सब कुछ साफ है, जब मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई 2 करोड़ की 18 करोड़, जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ 800 करोड़ का लक्ष्य था, 2200 करोड़ खर्च हुआ है, तो ये जो चंदा चोर आज से नहीं लगे, ये चंदा चोर लगे हैं मंदिर के निर्माण से, और करोड़ों में जो है वो अलग है, ये तो हजार वाले और लाख वाले पकड़े गए।
0: तो इस मार्च में सभी विपक्षी नेता शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी वहां मौजूद थे और उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों नहीं अमित शाह आते हैं सदन के अंदर, हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
9: मांग यही है प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है, ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते, इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया, ये क्या मुक्के हैं, बहरे हैं, क्या है?
0: और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, आज विपक्ष आक्रामक है, मार्च भी किया है और सीधा साफ कहा जा रहा है कि विपक्ष के जवाब देने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए अब अमित शाह संसद में आए, तो क्या लग रहा है आपको आज जो मांग कर रहे हैं उसको लेकर रणनीति कितनी आगे तक ले जाएंगे विपक्षी नेता?
10: देखिए अंजलि, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि बड़ी एक तरीके से फोकस मांग है जिस पर विपक्ष बिल्कुल भी हटने से तैयार नहीं है, हटने को तैयार नहीं है, और वो है गृह मंत्री अमित शाह की हाजिरी को लेकर कि वो संसद में आए, बताए कि लाठीचार्ज सहित ग्रंथ के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठन गई है। रोज रोज नई नई तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज गांधी स्मृति से प्रोटेस्ट हुआ, कल मकर द्वार पे हुआ, तो उससे पहले एक नाटकीय अंदाज में चंदा चोरी की पूरी एक्टिंग की गई थी। तो आप देखिए गांधी स्मृति से मार्च करते हैं लगभग 40-50 मीटर, मकर द्वार पहुंचते हैं और फिर वही मांग होती है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए। तो कुल मिला के अब इस बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठन गई है। अब आगे कितना कामकाज जैसे चल पाएगा, जैसे कि कल भी बिल पारित हुए शोर शराबे में हुए, तो क्या वैसे ही चलेगा, कोई मध्यस्थता होती है? क्योंकि बिना उसके तो एफसीआरए से लेके डीलिमिटेशन वाला सबसे बड़ी गाज अगर गिरेगी तो डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण अधिनियम जो संशोधन है उसको लेकर उस पर गाज गिरेगी, क्योंकि फिर वो इस मॉनसून सत्र में आते हुए नजर नहीं आ रहा अंजलि। और प्रियंका गांधी भी यही बात कह रही है, तलिटगंज की बात कह रही है। तो कुल मिला के उनको लगता है कि ये मौका है गृह मंत्री को घेरने का और घेरा जाए।
0: जी बिल्कुल मौसमी, आप हमारे साथ बने रहे। तो साफ तौर पर विपक्ष डटा हुआ है, संसद परिसर के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त, रिपोर्ट लेकर आ रही है हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल।
11: संसद के मकर द्वार पर इस समय सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं और फिर से यही उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आए और जवाब दें। अगर वो संसद आ रहे हैं तो फिर वो लोकसभा में आके आखिरकार बता क्यों नहीं रहे हैं कि बच्चों पर जो गन चली, जो पैलेट का इस्तेमाल हुआ, वो आखिरकार हुआ तो कैसे हुआ। सारी विपक्षी पार्टियों के सारे बड़े नेता यहां पर मकर द्वार पर नजर आ रहे हैं और इन सब के यही सवाल है और आखिरकार पूछा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जब आ रहे हैं संसद के अंदर तो फिर आखिरकार जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। जो आपको नजर आ रहा है लगाते हुए, ये यहाँ पर दान पात्र जो है एक बार फिर से लगा दिया गया है, अक्षय यादव यहाँ पे आपको नजर आए जिन्होंने जाके यहाँ पर दान पात्र रख दिया है और इसी दान पात्र के अंदर रोज जो है चंदा इकट्ठा किया जाता है। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस चंदे को लेकर वो राम मंदिर जाएंगे, अयोध्या जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जो जिस तरीके से जो घपला हुआ था उनके जो असली आरोपी है ना सिर्फ उनको जो है सजा मिले बल्कि ये भी कोशिश की जाएगी कि जो है लोग उनके बारे में सबको बताया जा सके। ये है संसद का मकर द्वार और यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ दान पात्र ही नहीं और सिर्फ ये भी कोशिश की जा रही है कि सवाल पूछा जा सके और कहीं ना कहीं जवाब मांगा जा सके गृह मंत्री अमित शाह से। दिल्ली से ऐश्वर्या पाल।
9: राम के नाम पे जो चंदा उठा है वो कहाँ है, चांदी सोना सारी चीजें कहाँ है ये पूछ रहे हैं। और 70 एकड़ जमीन ट्रस्ट की वो आपने घपला उसमें जो ये पूछ, आपके गलतियां निकालने के लिए अगर हम ठहरते हैं तो हम राम विरोधी होते हैं। अगर आपके खिलाफ आपके करप्शन को बाहर निकालते हैं तो आप लोग हमको एंटी नेशनल बोलते हैं, तो आप एक ही नेशनलिस्ट हैं, आप तो एंटी नेशनल पहले से ही है, ब्रिटिश जमाने से भी है, आप कभी इस देश के आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आपको क्या हक है हमको बोलने का?
12: सर लेकिन
13: अमेरिका की तरह सवाल है कि
12: अगर
13: आया तो इंडिया
12: क्या करेगा, सिलेक्शन अच्छी नहीं हो रहेंगे क्योंकि क्रिश्चियंस पे डायरेक्ट अटैक है, चर्चेस पे अटैक है सर, एफसीआर बिल को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान आया।
0: तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कि मुद्दा राम मंदिर का उठा रहे थे, लेकिन सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुख्यतः तीन मुद्दों को बार बार उठा रहा है, जिसमें सबसे पहला पैलेट गन का मुद्दा। ये मार्च की तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो इस वक्त संसद परिसर में चल रही है। विपक्षी नेता एक साथ
14: किस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, एस्पिरेशन को, उनके डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन को खत्म कर रहे हैं।
0: अनोज झा को, जो कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का मुद्दा उठा रहे हैं।
15: हमारा प्रोटेस्ट है, जो एट्रोसिटीज हुई हैं, जो ब्रूटेलिटी हुई है स्टूडेंट्स के खिलाफ, हम उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब देश की संसद के अंदर आए, संसद से गायब रहना बंद करें और आए और स्टेटमेंट दें कि क्यों बच्चों को मारा गया, AK-47 क्यों चलाई गई, सीवान में तीन बच्चों को पिस्टल की गोली से घायल किया, पैलेट गन क्यों चलाई गई, पहली डिमांड हमारी है। दूसरा, पूरा इंडिया ब्लॉक प्रदर्शन कर रहा है कि कश्मीर का स्टेटहुड उसको वापस दिया जाना चाहिए, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और आप उस अधिकार से कितने सालों तक उनको वंचित रखेंगे। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि जो श्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर चढ़ावा की चोरी हुई है, उस पर भी सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा।
0: इधर इस सबके बीच बीजेपी ने हमला बोल दिया है राहुल गांधी को, उनको भगोड़ा बताया है, कहा है कि वो चर्चा से भागते हैं। बीजेपी के गौरव भाटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया है।
16: जो आम जनता के मुद्दे हैं उस पे नहीं करनी चाहिए। अगर नेता प्रतिपक्ष, हमने भगोड़ों की बात करी थी, राहुल गांधी भी एक भगोड़ा ही है, संसद से भाग जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है, वो घबराते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अमित शाह जी जब तैयारी से भाषण देंगे, तथ्य रखेंगे, तो राहुल गांधी बगले झांकेंगे।
0: तो आइए रुक करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, एक तरफ यहाँ प्रोटेस्ट मार्च प्रदर्शन चल रहा है विपक्ष का, दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है, वो कहती है कि राहुल गांधी ही हैं जो असल में भगोड़े हैं, चर्चा से वो भाग रहे हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री अपना बयान रखेंगे तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो चलिए हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की मौसमी से, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो संसद परिसर से आ रही हैं। एक मार्च जो आज विपक्षी पार्टियां एक साथ एकजुट होकर कर रही हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद अलग अलग पार्टियों के आपको नजर आ रहे हैं, भले ही वो TMC हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सब एकजुट यहां नजर आ रहे हैं। बड़ा मुद्दा यहां पर जो उठाया जा रहा है, अमित शाह जवाब दो, यानी कि पैलेट गन एक्शन जो छात्रों के ऊपर हुआ उस पर वो चाहते हैं कि बयान आकर दे संसद में अमित शाह, यानी कि गृह मंत्री। इसके लिए स्थगन नोटिस भी दिया गया था आज कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा उठाया जा रहा है वो चंदा चोरी का है। तो चलिए आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। ये तो दिल्ली की तस्वीर थी जहां विपक्ष मांग कर रहा है छात्रों पर एक्शन जो हुआ उस पर जवाबदेही की। दूसरी तस्वीर है झारखंड की, जहां पर एक लगातार प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, जो कि पेपर में जो झारखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ था उसमें जो गड़बड़ियां हुई थी उसको लेकर अभी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आमरण अनशन भी कर रहे हैं एक छात्र नेता, और इसको लेकर जो स्थिति वहां पर है उसकी तस्वीर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो ये दूसरी तस्वीर जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, जहां हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और उनसे लगातार सवाल पूछा जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि छात्रों को संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध करना चाहिए। झारखंड विधानसभा में चर्चा की मांग बीजेपी करने वाली है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि आज हो सकता है।
13: आपको पता है कि सीटें जो है बेची जाती है, जब से
17: आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी है, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितने गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं, ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है और निश्चित रूप से जिस तरीके से राज दल दिन रात एक करके लगी हुई है उसका उत्तर का हमें इंतजार है।
18: मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रिजाइन दे दिया हूं और ये हमारी नियुक्ति हो सकती थी लेकिन हमारे विभाग के ही जो सीनियर्स हैं पदाधिकारी हैं सीनियर पदाधिकारी हैं उनके अड़ियल रवैये के कारण नहीं हो रही, क्योंकि सेम योग्यता वाले को 2015 में नियुक्ति हुई है इसी पद में और 2025 में क्यों नहीं लिया जा रहा है। उनका यह है कि उनका जो वर्चस्व है वो कायम नहीं रहेगा, क्योंकि हमें सारा कुछ पता है कि कहाँ कहाँ वो लोग धांधली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ये हमको सारा कुछ मालूम है।
0: और इस मुद्दे पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं, आइए सुन लीजिए।
10: झारखंड में हम देख रहे हैं कि हर दिन जो है तमाम छात्र बैठे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है, हंगर स्ट्राइक भी चल रहा है, आपको क्या लगता है दोहरे मापदंड है विपक्ष के?
19: विपक्ष के साथ साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन सबों का जो है दोहरा मापदंड, आप ये समझिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी एक जिम्मेदार मीडिया वो तो सभी जगह की चीजों को कवर करती है और आपको पता है कि जंतर मंतर के प्रदर्शन पर जो जिम्मेदार मीडिया था उसके लोगों को भी जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो सो कॉल्ड यूट्यूबर सोशल मीडिया, ये इनकी स्थिति ये है कि जहां भी भारत विरोधी कोई काम हो रहा होगा उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, इमरान के यहाँ सभी लोग जंतर मंतर के आंदोलन का एक हीरो इरफान। इरफान कौन है? इरफान एक नवी फेल व्यक्ति है जो कि ईटा भट्टा पर काम कर रहे हैं।
0: और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Sorry!

0: don't be crazy. Bro, time has changed. Now future is Gen Z.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बार कहा राहुल गांधी भगोड़े हैं, चर्चा से भाग रहे हैं।
1: पीएम का वीडियो डिलीट करने और सोशल प्लेटफॉर्म पर मनमाने भाषण से दिया। समिति ने मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को 3 दिनों का दिया अल्टीमेटम, कहा यह लोकतंत्र पर हमले के जैसा।
0: ब्राह्मणों को लुभाने के लिए आज अखिलेश यादव का बड़ा सियासी दांव, जनेश्वर मिश्र की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम, विधानसभा में जारी है चढ़ावा चोरी पर सरकार का विरोध।
1: अमृतसर में पेट्रोल बम वाले मॉड्यूल से सनसनीखेज खुलासा, आईएसआई से है आरोपियों का कनेक्शन। कमिश्नर बोले प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर भी गए लेकिन मंसूबे नाकाम हुए।
0: और समंदर के तेल रूट पर जल समझौते के आसार, ट्रंप ने कहा हमेशा के लिए खुलने वाला है होर्मुज। यमन के पास भारतीय जहाज पर हुती हमले, बेसुरक्षित है 13 लोग, भारत ने की निंदा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा भट्ट।
1: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सबसे पहले संसद आपके लिए चलते हैं। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई।
2: इसमें अवसर मिलना चाहिए और आप से मेरा आग्रह है प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दे हैं विषय उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सदन के बाहर या सदन के अंदर नारेबाजी करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप आओ, विचार व्यक्त करो। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। महत्वपूर्ण विभाग रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई माने सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए। और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: तो भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक ले स्थगित कर दी गई है। जो विपक्ष के सांसद थे वो वेल तक पहुंच गए थे। और इस बीच बड़ी खबर ये कि रिजिजू के साथ राहुल गांधी की बैठक होगी। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक बताई जा रही है, क्योंकि लगातार संसद में गतिरोध जारी है, उसी के मद्देनजर ये अहम बैठक।
1: तो एक बड़ी खबर ये, इम्पोर्टेंट ये अपडेट है, राहुल गांधी किरण रिजिजू के बीच में मुलाकात। इस मुलाकात में प्रयास संभवतः रिजिजू का ये होगा कि ऑपोजिशन जो लगातार हंगामा अब कर रहा है, पहले नीट के विषय पर, अब उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए पुलिसिया कार्रवाई पर जवाबदेही की वो मांग कर रहा है, फिर अयोध्या का राम मंदिर का चंदा चूरी का विषय भी है, और इस इन विषयों पर हंगामे की वजह से संसद चल ही नहीं पा रहे। आम आदमी के प्रश्न, आम आदमी का काम हो नहीं पा रहा है, जिसके लिए तमाम सांसदों को हर दल के चाहे वो चुना गया है। तो आम आदमी का काम नहीं हो पा रहा है। ऑपोजिशन के अपने एजेंडे हैं और वो उन पर चर्चा चाहता है, और क्वेश्चन आर नहीं चल पा रहा है, प्रश्नकाल भी नहीं चल पा रहा है।
0: पीयूष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, ये जो रिजिजू और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बैठक होने वाली है, गतिरोध कैसे खत्म हो इस पर तो चर्चा होगी, लेकिन साथ ही इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है विपक्ष।
3: जी बिल्कुल, लगातार विपक्ष की यही मांग है कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आए और जवाब दे, और इसी के साथ साथ चंदा चोरी का मुद्दा भी विपक्ष उर्दू तरीके से उठा रहा है। और इसी के मद्देनजर ये बैठक जो है वो होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ किरण रिजिजू भी रहेंगे। और यू नो, इस मुलाकात में कहीं ना कहीं जरूर ये कोशिश रहेगी कि जो गतिरोध जो बना हुआ है इस वक्त संसद के अंदर, वो गतिरोध कहीं ना कहीं दूर हो जाए। आपको बता दें कि संसद के सत्र के शुरुआत से ही जो है लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर, गृहमंत्री अमित शाह के जवाब को लेकर और साथ साथ चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार मांग कर रहा है, और इसीलिए आज कहीं ना कहीं जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखना ही होगा कि क्या इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं गतिरोध खत्म होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़ी बैठक है सरकार के बीच में और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के बीच।
1: जी पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बैठक में क्या कुछ निकलता है देखने वाली बात होगी। मेरा नाम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करेंगे शतक आज तक के। संसद में आज भी विपक्ष के तेवर सख्त हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने बैनर पोस्टर के साथ जमकर किया हल्ला बोल। विपक्ष ने छात्रों पर लाठीचार्ज, पैलेट गन, और इस पर गृहमंत्री के बैन की मांग की।

0: दिल्ली में विपक्ष का विरोध मार्च, गांधी स्मृति से लेकर मकर द्वार तक निकले नेता। केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सांसद हुए शामिल। आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे, आज पीडीपी का पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी मनाएगी ब्लैक डे, सुरक्षा के इंतजाम। एफसीआरए विवाद पर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने अमेरिकी सांसद को दिया जवाब, कहा कि अफवाह न फैलाएं, विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल और अवैध गतिविधियों पर इसका मकसद है रोक लगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और संसदीय समिति सख्त है, जकरबर्ग को 3 दिनों का अल्टीमेटम। पीएम मोदी के वीडियो मामले में माफी और कार्रवाई की मांग, नहीं तो सेफ हार्बर खत्म करने की चेतावनी। संसद परिसर में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला, कहा कि वो उन्हें माफ करने वाले कौन होते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्र सड़कों पर है, बहुत दर्द में है, दूसरी तरफ हमारे पीएम है जो उन्हें माफ कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी जमकर साधा निशाना, बोले कि आरएसएस की सोच के पीछे एक बहुत खतरनाक और विभाजनकारी विचार काम कर रहा। राहुल गांधी ने आरएसएस पर बोला हमला, कहा आरएसएस हमारा इतिहास नहीं बदल सकता, भारत अपने इतिहास के कुछ ले जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। गौरव भाटी अगर राहुल गांधी पर हमला, बोले कि विपक्ष नेता संसद नहीं चलने दे रहे, बोले कि राहुल गांधी देश को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं।
1: मदरसा शिक्षा पर योगी सरकार का फैसला, कामिल फाजिल डिग्री की मान्यता होगी खत्म, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला। धार की बोधशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों का पक्ष सुनेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुए चुनाव को पूरी तरह दिखावा करार दिया, सैन्य कार्रवाई को इन चुनाव के जरिए छिपाना चाहती है। बांकीपुर उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर ने आज तक से खास बातचीत में कहा, बीजेपी के सभी समीकरण ध्वस्त हुए हैं, जनता बीजेपी की कार्यशैली से नाराज है। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार पर कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का हमला, सोशल मीडिया पर अभद्र शब्द का इस्तेमाल, विरोध में भड़के एनसीपी कार्यकर्ता, सड़क पर उतरे, कांग्रेस दफ्तर में किया जोरदार हंगामा और नारेबाजी। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कांग्रेस की अभद्र टिप्पणी पर पहली बार प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर करारा जवाब देंगी। सीएम फडणवीस का विपक्ष पर हमला, बोले खबरों में बने रहने के लिए कर रहे हैं राजनीति। पंजाब विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग पर यूथ कांग्रेस और एबीवीपी का विधानसभा घेराव।
0: अमृतसर में पेट्रोल बम बनाने वाले मॉड्यूल से सनसनी केस खुलासा, आईएसआई से आरोपियों के कनेक्शन, कमिश्नर बोले कि प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर भी गए लेकिन नाकाम हुए मंसूबे। जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी, देश भर में मिल रहा समर्थन। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने 3 और को अरेस्ट किया, अब तक 14 गिरफ्तार। सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार छात्रों के आंदोलन पर तोड़ी चुप्पी, कहा कि जेपीएससी मामले में सरकार की पहली नजर है, समय आने पर निर्णय दिखेगा। पूर्व सीएम रघुवर दास ने आंदोलन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को लिखा खत, उन्होंने परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने एक बार फिर सोरेन सरकार पर बोला हमला, कहा कि छात्रों के आंदोलन को सरकार अनसुना कर रही है, सीआईडी से जांच करके लीपापोती की कोशिश है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पहली बार आए सामने, जगत गुरु परमहंस आचार्य के अयोध्या न छोड़ने की अपील पर सहमति बताई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के एक बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी, कहा कि सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है बल्कि यह विधानसभा की गरिमा से जुड़ा सवाल है। ओवैसी ने महाना पर हमला करते हुए कहा कि क्या अपराध को अपराध कहने से पहले अपने धर्म का हलफनामा देना होगा। केंद्र सरकार का भगोड़े अपराधियों के खिलाफ अब सख्त रुख, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का केंद्र सरकार पर हमला, बोले कि 40,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़ों को वापस कब लेकर आएंगे।
1: अयोध्या में राम दर्शन दरबार के लिए विशेष पास व्यवस्था खत्म, अब श्रद्धालु सामान्य दर्शन कतार से सीधे प्रथम तल पर राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। चढ़ावा चोरी पर गतिरोध जारी, विपक्ष कर रहा है बहस की मांग, योगी सरकार ने कहा बहस की जरूरत नहीं, एसआईटी जांच जारी। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए आज अखिलेश यादव का बड़ा सियासी दांव, आज जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने आयोजित किया कार्यक्रम, पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। आज बागपत दौरे पर हैं राहुल गांधी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट घोटाले के दावे पर एफआईआर दर्ज। भ्रामक वीडियो फैलाने के आरोप में यूट्यूब चैनल मोहित सर गुरुकुल के खिलाफ कार्रवाई। अयोध्या में रामचंद्र दास परमहंस की पुण्यतिथि पर होगा बड़ा संत समागम। 14 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ दिगंबर अखाड़ा पहुंचकर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। लखनऊ विधानसभा परिसर में सपा का प्रदर्शन, पॉटिको में जुटे सपा विधायक, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, चंदा चोरी को लेकर योगी सरकार का घेराव। सीएम योगी को धमकी देने वाले आरोपी बरेली में गिरफ्तार, पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को कोर्ट में किया पेश, मामले की जांच जारी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान ओवरसाइज डीजे पर पुलिस की कार्रवाई, गाइडलाइन तोड़ने पर डीजे का 50,000 का चलान, बॉर्डर पर लगातार हो रही है जांच। कौशाम्बी में लेखपालों पर एफआईआर, पुलिस से अभद्रता, सरकारी काम में बाधा का आरोप।
0: दिल्ली में एसआईआर की समय सीमा फिर से बढ़ी, अब 17 अगस्त तक चलेगा बूथ स्तर पर घर घर सत्यापन। प्रारूप मतदाता सूची 24 अगस्त को प्रकाशित होगी जबकि दावे और आपत्तियां 24 अगस्त से 23 सितंबर तक स्वीकार की जाएंगी। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताने वाले बयान पर निंदा की, सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा है करार दिया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए मदनी ने इसे आजादी के इतिहास और भारतीय संविधान की कायिक अपमान बताया। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जोरदार बारिश के बाद बिगड़े हालात, मुख्य बस स्टैंड टापू बन जाने से यात्रियों को परेशान होना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बढ़ी आफत, सिरमौर में नेशनल हाईवे पर बना 50 से 60 साल से जो है पुराना पुल यहां भारी बारिश के बाद ढह गया। बंगाल के पश्चिम वर्धमान में बारिश के चलते पानी पानी हुआ कबाड़ी मार्केट, जल निकासी की मांग को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारी बारिश के चलते अंडरपास और मुख्य बाजार जलमग्न, सड़कों पर भरा पानी, यातायात प्रभावित। देहरादून में भारी बारिश के चलते तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास नदी का रौद्र रूप दिखा। उत्तराखंड के कल से चक्राता मुख्य मार्ग पर भूस्खलन से बंद, फंसे सैकड़ों गाड़ियां। एमपी के विदिशा में आए खौफनाक वीडियो, पंती नदी के बीच में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं बच्चे, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर उठे गंभीर सवाल। प्रयागराज में झमाझम बारिश, शहर के कई इलाकों में बदरा बरसे, बारिश के चलते मौसम सुहाना। महाराष्ट्र के नासिक में नदी में अस्थायी लकड़ी का पुल असंतुलित बिगड़ने के चलते नदी में एक शख्स से बह गया, बाढ़ के चलते पहले भी 4 बार यहां पर पुल बह चुका है। राजस्थान के करौली में जल भराव के चलते बिगड़े हालात, पक्के रास्तों के अभाव के चलते घुटनों तक भरे पानी और कीचड़ के बीच शव यात्रा निकालने को मजबूर।
1: यमन के समुद्री क्षेत्र में भारतीय जहाज एमएसवी फैजे नूर औलिया पर हुआ बड़ा हमला, ज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आने से समुद्र में डूबा जहाज। समंदर के तेल रूट पर जल समझौते के आसार, ट्रंप ने कहा हमेशा के लिए खुलने वाला है हॉर्मुज। ईरान अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीद बढ़ी, कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कूटनीतिक समाधान की कोशिश जारी, कतर पाकिस्तान और ओमान मध्यस्थता में जुटे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के पास यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, 5 हुए मृत, 1 नागरिक घायल। यूक्रेन के सुमी शहर में रूस का भीषण हमला, 3 की मौत, कई लोग घायल। लेबनान में संघर्ष विराम समझौते को लेकर इटली की राजधानी रोम में लेबनान और इसराइल के बीच वार्ताकारों के बीच 7वें दौर की बातचीत। ब्राजील के साओ पालो में केमिकल फैक्ट्री भीषण आग से तबाही, पूरे इलाके में घटना के बाद मचा हड़कंप। अधिकारियों ने आसपास के घरों से करीब 150 निवासियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, कंपनी में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 30 गाड़ियों को लगाना पड़ा। इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश कर रहे अवैध और प्रवासियों के भरा जहाज हुआ बड़े हादसे का शिकार, 157 प्रवासियों को फ्रांस और ब्रिटेन की टीमों ने सुरक्षित बचाया। श्रीलंका में मूसलाधार बारिश ली 5 लोगों की जान, 3 लोग हैं घायल, कई के लापता होने की खबर, 2 दिन से हो रही है बारिश।
0: नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई, तय सीमा से ज्यादा फीस बढ़ाने पर जिला प्रशासन ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कानपुर में नकली हल्दी बनाने वाली फैक्ट्री पर एफएसडीए का छापा, चावल के टुकड़ों में रंग मिलाकर ये हल्दी तैयार किया जाता था और 5 लाख से ज्यादा का मालसा। यूपी में करंट का कहर, अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत, देवरिया में बच्ची, एटा में मासूम और लखनऊ में पुजारी की जान गई। नोएडा मेट्रो हादसों में एनएमआरसी सख्त और एम3एम बिल्डर के को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। क्रेन की ओवरहेड लाइन में फंसने से मेट्रो सेवा 2.5 घंटे तक प्रभावित रही, उपकरणों को भी नुकसान। अमेठी में युवक हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली, अंतर जातीय विवाह को लेकर हत्या हुई थी। यूपी के हापुड़ में 85 लाख रुपए के लूट के मामले में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ कई बड़े केसेस पहले से थे दर्ज। यूपी के ललितपुर में बुजुर्ग के दिन दहाड़े हत्या मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी समेत 3 को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। गोली और कारतूस बरामद। यूपी के कन्नौज में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का वीडियो आया सामने। सरकारी स्कूल में क्लासरूम में सोते दिखे शिक्षक, बच्चे मोबाइल फोन में मग्न दिखे। यूपी के आजमगढ़ में ही दर्दनाक हादसा, बिजली के खंभे से टकराकर डीजल से भरा हुआ टैंकर पलट गया। आग लगने से 3 लोग जिंदा जल गए। मथुरा में जन्माष्टमी से पहले खाद्य विभाग का एक्शन, 5000 किलोग्राम से ज्यादा मिलावटी पेड़ा मिल्क केक जब्त करके नष्ट किया।
1: बिहार के वैशाली में रास्ते को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प। पुलिस प्रशासन के सामने भिड़े दोनों पक्ष, भारी पुलिस बल की मौजूदगी से निपटा मामला। देहरादून में चलती गाड़ी में अचानक आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। बाद के कतरासा में जोरदार धमाका, फटी धरती, आधा दर्जन घर जमीन दोस। राजस्थान के अलवर में नशे की हालत में 25 फीट ऊंचे ऐतिहासिक गुंबद पर चढ़ा युवक, आधे घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद खुद ही नीचे उतरा। कटिहार में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचे बच्चे, रेलवे ट्रैक पार करने को मजबूर हैं छात्र। ग्रामीणों ने इलाके में प्राथमिक स्कूल खोलने की मांग की। झारखंड के चतरा में सनसनीखेज मामला, नाबालिग छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म मामले में ग्रामीणों ने पीट पीट कर हत्या की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान करने वाली घटना का वीडियो वायरल, मॉल में फूड आउटलेट पर काम करने वाली युवती पर पीटते नजर आया युवक। महाराष्ट्र के पालघर में आपस से भिड़े मनसे के कार्यकर्ता, मारपीट में पूर्व शहर अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल। पूरे नेशनल पार्क से बाहर निकला चीता, श्योपुर के गांव में दहशत। कौशाम्बी में नकली लिक्विड यूरिया फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस छापेमारी, भारी मात्रा में नकली यूरिया बरामद।
0: आर्टिकल 370 हटने के 7वें वर्षी को लेकर श्रीनगर का लाल चौक सील, प्रस्तावित राजनीतिक प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। सूरत में 3 फुट गहरे गड्ढे में बाइक गिरने से युवक की मौत हुई, हादसा सीसीटीवी में कैद, प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा। गुजरात के मेहसाणा में नाबालिग ने गाड़ी से आंगन में बैठे 3 लोगों को कुचल दिया, 2 की मौत, कार पर नियंत्रण खोने की वजह से हादसा। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, संत की युवक ने दिन दहाड़े पीछा करके व्यापारी के बेरे में से हत्या कर दी। अमृतसर पुलिस का एक्शन, आईएसआई समर्थित 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार, बड़ा आतंकी हमला भी डाला। ओडिशा के रायगढ़ में रैगिंग और मारपीट का मामला सामने आया, रैगिंग की शिकायत करने वाले सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को बुरी तरह से पीटा। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्कर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस को कामयाबी, 6 करोड़ की ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच में महिलाओं ने प्रधान के पति को कॉलर पकड़कर कार्यालय से निकाला, प्रधान ने आरोपों से कैद कर। गाजीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, नील गाय से टकराने के बाद बाइक सवार की मौत, सड़क पर गिरा दूध कारोबारी का ट्रेलर उसने कुचल दिया, घटना सीसीटीवी में कैद।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने की तैयारी, 9 और 10 अगस्त को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार। कांवड़ यात्रा को देखते हुए अलर्ट मोड पर रेलवे, दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन ने बनाया गया वॉर रूम, तमाम स्टेशन पर लगाए गए सीसीटीवी। सावन के महीने में अगले अलग अलग कांवड़ यात्रा खींच रहे लोगों का ध्यान, सहारनपुर से निकली बाहुबली वाली कांवड़, 9 फीट ऊंची है श्री हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप की विशाल कांवड़। बिजनौर की कांवड़ ने पेश की सेवा भाव की मिसाल, एक तरफ 90 साल की दादी, दूसरी तरफ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा निकालता पोता। मुजफ्फरनगर पहुंची मोदी और योगी की अनोखी कांवड़, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बड़े बड़े फोटो लगी इस कांवड़ ने खींचा सबका ध्यान।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
1: संसद में जारी गतिरोध के बीच किरण रिजिजू और राहुल गांधी की बैठक हो रही है, इस बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल है। ये बैठक अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है, गतिरोध को लेकर इस वक्त विपक्ष और किरण रिजिजू की बैठक जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अहम रूप से शामिल है।
0: तो पक्ष विपक्ष की महत्वपूर्ण बैठक, लेकिन क्या इस बैठक का कोई नतीजा निकलेगा, क्या पक्ष विपक्ष में सहमति बनेगी, क्या पक्ष विपक्ष संसद को चलाने पर सहमत हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि हर दिन करोड़ों रुपए संसद पर खर्च हो रहे हैं, तमाम सांसदों को चुना ही इसलिए गया कि वो संसद को चलाएं और संसद में बहस करें, आम आदमी के मुद्दे उठाएं, इस पूरे मानसून सत्र में संसद चल नहीं पा रही।
1: ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, कब तक खत्म हो सकती है मीटिंग, क्योंकि संसद तो स्थगित हो गई है लोकसभा?
3: देखिए नेहा, जितना मुझे समझ आता है ये मीटिंग हो सकता है थोड़ी सी लंबी चले, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक पेज पे लाएं। सरकार ये चाहती है कि कम से कम सकारात्मक जो डिस्कशंस हैं वो होने चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि जब से मॉनसून सत्र चालू हुआ है विपक्षी पार्टियां 11 बजे संसद के अंदर आती है, उसके बाद लोकसभा में जाती है, उसके बाद इतना ज्यादा हंगामा होता है कि 2 से 3 मिनट के अंदर अमूमन जो है उसको स्थगित करना पड़ता है। ज्यादातर लोकसभा स्थगित 12 बजे तक होता है, लेकिन 12 बजे भी जो माहौल है वो कुछ ऐसा ही रहता है। इस समय किरण रिजिजू जो है वो कोशिश कर रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो कि मुख्य विपक्षी
0: दोनों ही तरफ से क्या क्या पॉइंट्स रखे जा सकते हैं ऑपोजिशन की तरफ से, मतलब राहुल प्रियंका की तरफ से, और किरण रिजिजू क्या पॉइंट्स लेकर गए हैं?
3: बता दूं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी बहुत क्लियर हैं, पूरा का पूरा विपक्ष बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह जो संसद रोज आ रहे हैं वो लोकसभा के अंदर आए और एक स्टेटमेंट दें, क्लैरिफिकेशन दें कि आखिरकार पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ तो हुआ क्यों और 20 जुलाई को बच्चों को पीटने का ऑर्डर किसने दिया।
4: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: is finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Papa.
2: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया है
2: हाँ ला भाई मेरा बैट वो अभी तो ठीक हुआ तू
4: चार्ज हुआ यार
5: बैट किसका है
6: टाटा AIG है तो भरोसा है
7: इन एसोसिएशन विद
8: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
7: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
9: द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एवरीथिंग दे डिडंट वांट टू मच प्राइवेट इंडस्ट्री
10: द बिग फैमिली ग्रुप्स एट दैट टाइम हु ट्रेडिशनली वर डोमिनेटिंग Indian industry at that time. Slowly, I think new entrepreneurs came up.
9: There were businessmen who were coming into prominence and rising. Nobody had heard of Vijay Mallya's father, Vittal Mallya, at that time, because he very quietly operated to get this monopoly on the brewery and liquor business.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
1: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। ज्यूडिशरी, मॉडर्न ज्यूडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
2: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
1: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
3: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
1: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
4: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने

0: संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन के बाद कार्यवाही स्थगित। गांधी मूर्ति से विरोध मार्च निकाला गया। सदन में गृह मंत्री के बैन की मांग के विरोध खत्म करने के लिए रिजिजू की राहुल प्रियंका से मीटिंग। पीएम का वीडियो डिलीट करने सोशल प्लेटफॉर्म पर मनमाने पर संसदीय समिति ने मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को 3 दिनों का दिया अल्टीमेटम। कहा यह लोकतंत्र पर हमले जैसा। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए आज अखिलेश यादव का बड़ा सियासी दांव। चंदेश्वर मिश्र की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम। विधानसभा में भी जारी चढ़ावा। चोरी पर सरकार का विरोध।
1: रांची में भूखे प्यासे अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर हुई बात। पानी पीकर तोड़ा अनशन। सोनम से कहा जल्द रांची आइए, हम आपके समर्थन की जरूरत है। और पीओजेके में जारी है पाकिस्तान के अत्याचार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद का विवादास्पद बयान। कहा वहां के लोगों से हमें क्या मतलब, पाकिस्तानी हुकूमत देखें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का।
1: रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सोनम वांगचुक से देवेंद्र महतो ने वीडियो कॉल पर बात की। उनसे बात करके पानी पीकर अपना अनशन तोड़ दिया है। 12वां दिन था आज अनशन का। पानी पीकर अब अनशन तोड़ दिया है रांची के प्रदर्शनकारी, जिसमें सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल के बाद अनशन तोड़ा गया।
3: इससे पहले बहुत जरूरी हम साथियों को रिक्वेस्ट किए थे, एटलीस्ट जल्द रहता, लेकिन हम सबको मना किया था। कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा, आपको लेवल है 80 रहेगा, 80 शुगर लेवल है और ब्लड प्रेशर 97-96 में, और अगर 50 तक शुगर हो जाएगा तो आप बेहोश हो जाएंगे और उससे पहले हम लोग को एडमिट करना पड़ेगा। हम फिर भी उन लोग का बात से नहीं सुने और अभी तक जल भी नहीं लिया है सर।
4: देवेंद्र जी, मैं ये कहूँगा अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी। आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी, तो ऐसे हम इस बड़े कदम को आगे ले जाएं। आपको अभी समय चाहिए, 2-3 हफ्तों का भी हो सकता है। उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि उससे पहले सरकार ये सोच उठी जाएगी और वो सही कदम उठाएंगे। तो
1: सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, वीडियो कॉल पर क्या बातचीत हुई सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारियों के बीच?

0: कि उन्होंने देवेंद्र महतो से लगातार बातचीत किया, इस आंदोलन को सपोर्ट किया, यहाँ के लोकल डायलेक्ट में जो हार बताया सबको सलाम किया और लद्दाख से वो बात कर रहे थे लगातार। उन्होंने ये कहा और इनको सलाह दी कि अगर आपको लंबा आंदोलन करना है तो आपको नमक और पानी जरूर लेना चाहिए। देवेंद्र महतो ने उन्हें बताया था कि उन्होंने अन्न और जल दोनों त्याग दिया है, लेकिन उसके बाद जो है सोनम वांगचुक ने उनको सलाह दी कि महात्मा गांधी भी नींबू और नमक लेते थे जब वो देश के लिए लड़ रहे थे, देश में आजादी के आंदोलन को लीड कर रहे थे। तो ऐसे में इसी तरह से उनको भी चलना है, सुसाइड करना यानी आत्महत्या करना उनका एम नहीं है। एम उनका ये होना चाहिए कि सरकार के आत्मा को जगाया जाए, और इसमें हो सकता है कि वक्त लगे। तो ऐसे में अगर वो पानी नहीं लेंगे तो जाहिर तौर पे कुछ दिनों में वो उनकी कंडीशन ऐसी होगी कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाएगा, और जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो वेवर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ऐसे में इनको जो है इस बात को लेकर काफी सजग रहना चाहिए। सरकार से भी उन्होंने अपील की कि ये मुद्दा जो है वो जेन्यून है, इस पर वो कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे, और ये जो है स्टूडेंट्स युवाओं के हक और अधिकार की बात है। तो ऐसे में सरकार को संजीदगी दिखानी चाहिए, एक कदम आगे आना चाहिए। ये बातें उन्होंने कही। देवेंद्र महतो ने भी बताया कि वो लगातार आंदोलन करते रहे हैं छात्रों को लेकर और उनके अधिकार को लेकर। तो ऐसे में अब इनके पास कोई विकल्प नहीं बच गया था।
1: सत्यजीत, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। तो उन्होंने अपना जो अनशन है वो समाप्त कर दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एनसी सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने पीओजेके को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। ये भी एक बड़ी खबर आपको देते हैं। पीओके को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने उसे एक अलग देश बता दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद मोहम्मद रमजान ने बयान दिया है, पीओके भारत का अभिन्न। पीओजेके जो भारत का अभिन्न अंग है, उससे उन्होंने एक पीओजेके पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं।
2: आप लोगों की लगातार मांग है इंस्टीट्यूट को लेकर, कब तक ये मांग रहेगी?
3: हमारी मांग तब तक रहेगी जब तक इस मांग को पूरा किया जाए। आज हम सारे नेशनल अपोजिशन जो है सारी जमा हुई थी यहाँ मकरद्वार के सामने, पार्लियामेंट के सामने, यही एक बात कहने के लिए, मरकजी होम मिनिस्टर को याद दिलाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को याद दिलाने के लिए कि जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने वादा किया, जो 5 अगस्त 2019 जब आपने स्टेट को तोड़ा, जब आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को छीना, उस वक्त वादा किया था कि डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन और इलेक्शन के बाद स्टेटहुड वापस दे देंगे, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। सर, तमाम नेशनल अपोजिशन आज यही जमा हुए थे मरकजी हुकूमत को याद दिलाने के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो आपने वादा दिया था वो वादा पूरा करो।
2: सर, एक सवाल मेरा पीओके को लेकर है। वहां पर जो इलेक्शन हुए उसके बाद प्रोटेस्टर्स पर जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई, पुलिस कार्रवाई बहुत ज्यादा हुई, भारत सरकार ने भी वो मुद्दा उठाया, इसको किस तरह से?
3: हमें इस सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है कि दैट इज अलग कंट्री, ये उस कंट्री का मामला है। हम यहाँ मुल्क के साथ यहाँ पर वाबस्ता है, हम अपने रियासत जो इस विभाग में रह रही है, इस कंट्री में रह रहे हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर को सिर्फ याद दिलाने के लिए आए हैं, आप अपना वादा पूरा करो।
2: पीओके से कोई मतलब नहीं,
3: हमें क्या उसके साथ, वो देखेगी वहाँ की हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट का यह मामला वो देखेगी, यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री वो देखेगी, हमें उसके साथ कोई लेना, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं।
2: आपको लगता सर की पीओके जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और वो हमारा है?
3: वो जो भी है वो उनका मसला है, आपको आगे ये क्वेश्चन करना है, आप ये उनको क्वेश्चन निकाल लीजिए। हमें अपने कंट्री से जिन्होंने हमें महरूम रखा स्टेटहुड से, हमें उनसे ये बात कर रहे
2: हमारे देश का हिस्सा है सर,
3: हम उनसे बात कर रहे हैं।
2: पीओके भी तो हमारे देश का हिस्सा है सर।
3: मैं वही कहता हूँ, आप इस सवाल में आप उनसे बात कर लीजिए, हमारे साथ इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने मुतालबात जो है हम वो बात कर रहे हैं, हमें पीओके के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उन्होंने हमें इस पार्लियामेंट में नहीं भेजा है कि आप हमारे मुद्दा जो है उसको रिप्रेजेंट करो, लिहाजा हम उनके लिए कोई बात नहीं कर सकते।
4: संसद में आज की तस्वीर भी कुछ अलग दिखाई नहीं दी, विपक्ष का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। पैलेट गन पर विपक्ष ने एक बार फिर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग जारी रखी है। चंदा चोरी पर घेराबंदी जारी है। संसद परिसर में विपक्ष ने एक बार फिर से एक साथ मार्च किया है।
1: ये तीन तस्वीरें और तीनों इसमें मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में दान चोरी का मुद्दा जो शुरुआत से चल रहा है वो आज फिर से उठता दिखाई दिया। गृहमंत्री अमित शाह से जवाबदेही, उनके बयान की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। और तीसरा, आर्टिकल 370 हटने के 7 साल के पूरे होने के मौके पर जम्मू कश्मीर में जहां ब्लैक डे मना रहे, दूसरी तरफ यहां भी एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ये मांग की गई है।
5: बड़ी संख्या में सांसद आपको विपक्षी पार्टियों के दिखाई देंगे मार्च करते हुए द्वार की तरफ बढ़ते हुए। डिंपल यादव इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गई हैं, मीसा भारती आरजेडी की वो शामिल हुई हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद और तृणमूल कांग्रेस के भी सांसद मार्च करते हुए हैं दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद तिवारी हैं कांग्रेस पार्टी के सर, पूरी विपक्षी एकता दिखाई दे रही है आज मार्च में।
6: आज हम साथ चाहते हैं कि ये संसद भवन सोचने के विचार वाले सरकार का बने और गांधी जी की प्रतिमा से हम प्रेरणा लेकर निकले कि इस सरकार को सदबुद्धि आए और सरकार सदन में बुला रहे हैं। भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद उत्तर दी, वहाँ जवाब दे। छात्रों को क्यों लाठी चली जी, क्यों सीढ़ी लाठियां चली, टेलेट क्यों चले और पेपर लीक के मामले में दूसरी दंडित हूँ।
5: राज्यसभा में वो कह रहे हैं कि जो छात्रों पे लाठी चार्ज हुआ उससे लेकर चंदा चोरी पर विपक्ष सदन में जवाब चाह रहा है गृह मंत्री का, और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब मकर द्वार पे पहुंचे हैं, वो भी विपक्षी सांसदों के साथ इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। मकर द्वार तक पूरा विपक्षी सांसदों का जो कुनबा है वो पहुंच चुका है, लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे।
7: अपना बयान हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे, कैसा हो जाता है। ये परमानेंट है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं।
1: विपक्ष ने आज पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के मुद्दे पर भी जमकर प्रदर्शन किया, उस पर भी नाराजगी जाहिर की है।
5: पार्लियामेंट के मकर द्वार पे आज समाजवादी पार्टी के सांसद, थोड़ा कैमरा करीब आएगा तो आपको दिखेगा, इस तरह के गन्ने की पूरी डाल लेके अपने साथ आए हैं। डिंपल यादव आपको बारिश में भीगती हुई दिखाई देंगे, सांसद समाजवादी पार्टी की, और तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद हाथ में गन्ना लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कारण है आनंद सर बताइए?
8: जिस तरीके से E20 का प्रयोग करके पेट्रोल में गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं, कोई जवाबदेही उसकी तय नहीं है। साथ ही साथ गन्ना किसान भी परेशान है, गन्ने का किसान को उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, खेती में
5: हानि हो रही है। लेकिन डिंपल यादव पहुंची है गन्ना हाथ में लिए विरोध प्रदर्शन करने।
9: मुद्दा है युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सभी घर घर का जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहाँ E20 जो पेट्रोल है वो कहीं ना कहीं लोगों की जो अर्थव्यवस्था उसको खराब कर रहा है, और जो इंजन खराब हो रहे हैं गाड़ियों के, गरीब लोगों के, जो लोग लोन पे गाड़ियां खरीदते हैं वो तो दोबारा गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे ना।
4: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चंदा चोरी पर आक्रामकता दिखा रही समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया है। मौर्य ने कहा कि जो बाबर के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे, उनको श्रीराम जन्मभूमि पर बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। उनको बोलना है तो ज्ञानवापी मुद्दे पर बोले, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर बोले, ईदगाह मस्जिद बनाने पर बोले, जिस पे बोलना है उस पर बोले, लेकिन सदन का समय खराब ना करें।
10: देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका लोकतांत्रिक परंपरा पर, व्यवस्था पर कभी कोई सरोकार नहीं रहा है, और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से कल विधानसभा के अंदर आचरण किया है उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। सपा के सदस्यों ने पीठ का अपमान किया, सपा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में बात रखना चाहते थे उसको रखने नहीं दिया, और इससे ये पता चलता है कि सदन का समय वह केवल बर्बाद करना चाहते हैं, प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं।
1: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जब से खबर आई है, 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बड़े मुद्दों की तलाश जैसे खत्म सी हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को तेजी से लपका और अब इसे रोजाना धार देने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर।
4: लखनऊ में विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी को लेकर जबरदस्त चढ़ाई कर रही है और बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन से लेकर सदन में हंगामे तक ये सिलसिला बरकरार है।
11: मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं।
12: सचिन आप उधर मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
13: हमारी ये सरकार
12: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप उसको नीचे
13: आई विल नॉट बी,
12: मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
14: तीन दिनों से यूपी विधानसभा में यही हो रहा है। सदन की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक भांति भांति अंदाजों में बाहर इकट्ठा होते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, नारेबाजी होती है और फिर यही जंग सदन के भीतर पहुंच जाती है।
15: समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पोतिको में शुरू हो गया विधानसभा के, इससे आप देखेंगे यहाँ पे जो है दान पीटीदार रखती है, सलामी की पार्टी की कितने भी कार्यकर्ता नेता है सभी पहुंचे हुए।
14: ये तीन तस्वीरें समाजवादी पार्टी की मोर्चा बंदी की है। तीन रोज से सदन ऐसे ही विरोध प्रदर्शनों के चलते चल नहीं पा रही, ये बात सरकार को भी खल रही है। अनुपूरक बजट पर सदन के भीतर योगी का भाषण हंगामा के चलते नहीं हो पाया। योगी बाहर आए तो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे।
16: नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी, लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही, इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
12: पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकालना चाहिए, चलिए चलिए बाहर नजर दे करेंगे।
14: लगातार हंगामा के चलते विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंचा।
11: आप उसको नीचे करिए, सचिन आप उसको मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
13: करिए।
12: प्लीज आप उसको नीचे करो, आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल
13: दूंगा के साथ।
12: आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं ऐसे, आप सीएल की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। यू कैन नॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकाल दीजिए। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, इनको सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए बाहर गुंडागर्दी करेंगे आप, चलिए बाहर। इनके साथ जो भी लड़ेंगे मैं सबको निकाल दूंगा, नहीं, इट्स नॉट अलाउड, इस बात में इजाजत नहीं देता हूँ।
14: लेकिन स्पीकर महाना और सीएम योगी दोनों को अच्छी तरह से मालूम है कि समाजवादी पार्टी के तेवर इस मुद्दे पर बदलने वाले नहीं हैं। दोनों जानते हैं कि इस विरोध में टीम अखिलेश को दूर का फायदा दिख रहा है। ऐसा न होता तो दिल्ली तक समाजवादी पार्टी का यही रवैया नहीं दिखता। संसद की इन दो तस्वीरों को देखिए, दान पेटी में रुपए डालते अखिलेश और दान की रकम गिनती डिंपल। इन दो तस्वीरों से साफ है कि समाजवादी पार्टी सियासत की इस डोर को जल्दी नहीं छोड़ने जा रही।
17: तो नजर आ रहे लगाते हुए ये यहाँ पर दान पात्र जो है एक बार फिर से लगा दिया गया है। अक्षय यादव यहाँ पे आपको नजर आए जिन्होंने जाके यहाँ पर दान पात्र रख दिया है और इसी दान पात्र के अंदर रोज जो है चंदा इकट्ठा किया जाता है। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस चंदे को लेकर वो राम मंदिर जाएंगे, अयोध्या जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जो जिस तरीके से जो घपला हुआ था उनके जो असली आरोपी है ना सिर्फ उनको जो है सजा मिले बल्कि ये भी कोशिश की जाएगी कि जो है लोग उनके बारे में सबको बताया जाए।
14: मानसून सत्र में पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने चंदा चोरी पर जमकर चढ़ाई की है। इरादा साफ है बीजेपी के हिंदू वोट बैंक को हिलाने का, बीजेपी के सबसे ताकतवर मुद्दा हिंदुत्व पर ही उसे घेरने का।
18: देखिए मेरा निष्कासन जो है तो हम अंदर जा नहीं सकते, तो बाहर बैठ के चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं।
14: यानी कि चंदा चोरी के सियासी चिराग में अभी यूं ही तेल बाती डाली जाती रहेगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।
1: हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, ये तो तय है कि अयोध्या का ये जो चंदा चोरी का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, ऑपोजिशन इसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन कितना एग्रेसिवली विधानसभा में और मतलब अंदर और बाहर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है।
19: राजीव, देखिए पहले दिन से ही जब ये मानसून सत्र शुरू हुआ, चार दिन का सत्र जब ये बोला गया था तभी से समाजवादी पार्टी हावी हो रही थी, और आज तीसरे दिन जब ये सत्र शुरू होना है और कहीं ना कहीं अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है, उसको लेकर पहले से ही समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, नेता, विधायक सब हाथों में पोस्टर लेकर, वही पोस्टर जिसको लेकर कल सचिन यादव विधायक जो है उनको बाहर किया गया समाजवादी पार्टी के स्पीकर के द्वारा, आज फिर वही पोस्टर लेकर सभी बैठ गए। और आज तो दान पेटियां भी रख ली सामने और ये भी कहा कि दान में हम दान लेंगे और ये पवित्र दान लेंगे, उसके बाद हम इस पर रिपोर्ट लेंगे। यानी कि साफ कर दिया है समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कि वह दान पर पहले बात करना चाहते हैं और किसी मुद्दे पर नहीं। राम मंदिर के मामले पर चोरी जो हुई है उस पर दूध का दूध पानी का पानी करे, सरकार ने जो कहा था उस बात पर वो जवाब दे, और उसी को जवाबदेही के लिए जैसे ही सदन शुरू होता है वैसे ही सब जितने भी विधायक हैं अपनी सीट खड़े होकर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा स्थगित करनी पड़ती है। और यही वजह रही कि विधानसभा पूरी तरीके से चल ही नहीं पा रही है। आज तीसरा दिन होने के नाते पोर्टिको में सुबह से ही सारे विधायक, सारे नेता, यहां तक शिवपाल यादव जैसे बड़े वरिष्ठ नेता भी आप हाथों में तख्ती लेकर खड़े हो गए और साफ कह रहे हैं कि आखिर जवाब से सरकार क्यों बच रही है। और यही वजह है कि आज अंदर भी जैसे ही सदन शुरू होता है फिर वही शुरुआत हो जाती है और फिर वो आधे घंटे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब ये तय करना है कि चार दिन के इस सेशन में आखिर किस तरीके से ये सेशन चल पाएगा। और समाजवादी पार्टी तो एक कदम भी चंदा चोरी के अलावा ना बात करना चाहती है ना ही किसी मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहती है। यहाँ तक उसने ये भी कहा।
4: ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और मंगलवार को यूपी विधानसभा में स्पीकर सतीश माना ने समाजवादी पार्टी के विधायकों को फटकार लगाई, चढ़ावा चोरी के मसले पर चर्चा की मांग कर रहे विधायकों को महाना ने फटकारते हुए कहा कि आप लोगों में से किसी ने चंदा दिया है तो रसीद लेकर आइए, देखते हैं किसने कितनी चोरी की है। और इस बयान को लेकर ओवैसी ने उन पर निशाना साधा है और सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सतीश महाना ये कहें कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया अगर उन्होंने चंदा दिया है तो रसीद दिखाएं, तब देखेंगे कि उनका पैसा चोरी हुआ या नहीं, तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है बल्कि विधानसभा की गरिमा का है।

0: तो वैसी ने सतीश महाना के जिस बयान को लेकर उन पर सवाल उठाया, आपको वो बयान भी सुनाते हैं।
1: मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रशीद लेकर आ जाए भाई यहां पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रशीद लेकर आ जाओ भाई, यहां जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। कोई एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, तब पैदा भी नहीं हुए थे जब तुम।
0: तो यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक और मुद्दे पर मोर्चाबंदी दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने की कोशिशें शुरू कर दी है। आज लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है।
2: समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, भले ही प्राथमिक रूप से समाजवादी पार्टी ये नाम माने, लेकिन इस ब्राह्मण मिलन समारोह में सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों के साधने की कवायद अभी से, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है।
3: नहीं, बिल्कुल, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र के जरिए कहीं ना कहीं जो अगड़ा वोट है उसको साधने की कवायद है पीडीए के साथ। हम इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है, आपको दिखाएं तो इस तरीके के रथ जो हैं वो यहां पर लगा दिए गए हैं और लिखा गया है भाजपा अपमान करती है, समाजवादी सम्मान करती है। और ऊपर आपको बजरंग बली दिखाई पड़ेंगे, गदा लिए यहां पर मौजूद है। बजरंग बली को भी यहां पर एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है और ये रथ जो है ठीक बाहर खड़ा किया गया है समाजवादी पार्टी दफ्तर के। आपको हम पार्टी की दफ्तर भी लेकर चलते हैं, आइए हमारे साथ। ये पार्टी का दफ्तर है, यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के जो श्लोक हैं उन्हें यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, अलग अलग तरीके के जो श्लोक हैं उन्हें यहाँ पढ़ा जा रहा है और तमाम पोस्टर्स तो यहाँ लगा ही दिए गए हैं। इसके अलावा आपको मंदिर लेकर चलेंगे इस पार्टी कार्यालय में जहाँ।
0: ठीक है समर्थ, हम आपके पास लौटेंगे। तो तैयारियां जबरदस्त हैं और इस पर नजर लगातार रहेगी। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन ने पांचवी इकॉनमी बनने के लिए दौड़ रही हुकूमत को जगाकर न सिर्फ मंत्री का इस्तीफा दिलाया बल्कि परीक्षा व्यवस्था के बारे में सोचने को भी मजबूर किया है। उसी आंदोलन ने दूर झारखंड में भी नौजवानों के बीच बदलाव और इंसाफ की उम्मीद का दिया जलाया। लेकिन इसी बीच जब एक तरफ संघ के तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज शख्स जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को संविधान विरोधी बताते हैं, दूसरी तरफ संघ प्रमुख उन्हीं जेन जी से बातचीत करना चाहते हैं और तीसरी तरफ झारखंड में चल रहे आंदोलन को बीजेपी इंसाफ की जंग बताती है, तो सवाल खड़े होते हैं, क्या देश में आज नौजवानों की आवाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है? क्या जेन जी को संविधान परस्त और संविधान विरोधी करार दिया जा रहा है? और क्या जेन जी के मुद्दों को नजरअंदाज करके सियासत की जा सकती है? जवाब है नहीं। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद अपने मंत्रियों को जेन जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो संघ प्रमुख भी अब जेन जी से मुलाकात करना चाहते हैं। खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अब जेन जी से मुलाकात कर उनसे बातचीत करना चाहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में 14 से 29 साल के जेन जी और 13 साल की जेन अल्फा के साथ मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के इस कार्यक्रम में देश के 100 से ज्यादा शहरों से 2000 से ज्यादा हाई स्कूल के विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। दरअसल जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश में ये विमर्श पैदा किया जा रहा है कि सीजेपी के आंदोलन में शामिल जेन जी दो तरह के थे, जिसमें एक वाजिब जेन जी था और दूसरा देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा जेन जी। और इसी भटकाव को रोकने के लिए अब संघ प्रमुख देश के नौजवानों से मुलाकात और रابطہ कायम करना चाहते हैं। जिस संस्था के कार्यक्रम में संघ प्रमुख की नौजवानों से मुलाकात होगी और इसके प्रेसिडेंट बताते हैं कि ऐसी मुलाकातों का मकसद क्या है। उधर अभिजीत दीप की ऐसी पहल का स्वागत तो करते हैं, लेकिन जेन जी से बात करने के लिए युवा चेहरे की जरूरत भी बताते हैं। और गौर करने की बात ये कि 6 अगस्त को संघ प्रमुख की जेन जी से मुलाकात के पहले 5 अगस्त को अभिजीत दीप की अपनी पार्टी की बैठक में संगठन के विस्तार, भविष्य की रणनीति और पार्टी के रोड मैप पर भी चर्चा करने वाले हैं।

संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन के बाद कार्यवाही स्थगित। गांधी मूर्ति से निकाला गया विरोध मार्च। सदन में गृहमंत्री से बयान की मांग। गतिरोध खत्म करने के लिए रिजिजू की राहुल प्रियंका से मीटिंग। पीएम का वीडियो डिलीट करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनमाने पर संसदीय समिति ने मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को 3 दिनों का दिया अल्टीमेटम। कहा, यह लोकतंत्र पर हमले जैसा है।

0: शिक्षक की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम, विधानसभा में जारी है चढ़ावा चोरी पर गतिरोध। रांची में भूखे प्यासे अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र की सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर हुई बात, पानी पिया, प्रदर्शन लेकिन जारी। सोनम ने कहा कि जल्द ही रांची आप आइए, हमें आपके समर्थन की आवश्यकता, छात्रों ने कहा। और पीओजेके में जारी पाकिस्तान के अत्याचार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद का विवादास्पद बयान, कहा कि वहां के लोगों से हमें क्या मतलब, पाकिस्तानी हुकूमत समझे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं सिलसिले की, सबसे पहले बड़ी खबर आपको देते हैं संसद से, जहां पर लगातार गतिरोध चल रहा है। और इसी गतिरोध के बीच में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भी बैठक हुई है, एक अहम बैठक भी है। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। किरण रिजिजू ने इस बीच में कहा कि राहुल गांधी के साथ बातचीत सकारात्मक पॉजिटिव रही, आगे सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है। तो संसद में गतिरोध बना हुआ है, नीट उसके बाद जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में हुए कार्रवाई पर सवाल है। और इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं, एक इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, राहुल गांधी किरण रिजिजू मिले हैं, उनके बीच में बातचीत हुई है। किरण रिजिजू ने इस बातचीत को पॉजिटिव बताया, सकारात्मक बताया। ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी किरण रिजिजू की मुलाकात होगी गृहमंत्री अमित शाह के साथ। तो क्या आने वाले दिनों में संसद में गतिरोध खत्म होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि ऑपोजिशन की आप तो यही मांग कि वो गृहमंत्री अमित शाह से जवाब चाह रहे हैं, वो गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं कि उनको इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कार्रवाई की, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वो किसके आदेश पर हुआ। तो संसद में वो इस पर जवाब चाहते हैं। और अब गृहमंत्री अमित शाह के साथ इस समय बताया जा रहा है कि किरण रिजिजू की बैठक चल रही है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी यानी कि ऑपोजिशन से मिलने के बाद अब गृहमंत्री अमित शाह के साथ यानी कि जो बैठक जो बातचीत हुई होगी उसका विवरण भी देंगे। जो भी सरकार की अपनी प्लानिंग है उस पर वो आगे फैसला लेंगे कि इस बातचीत के बाद सरकार का इस पर क्या रुख रहता है। किरण रिजिजू भी अपने कुछ बातों को लेकर पहुंचे थे, राहुल गांधी और प्रियंका की उनकी अपने उनका स्टैंड एक तरीके से पहले से ही क्लियर दिख भी रहा था। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौसमी सिंह इस खबर पर जुड़ गए। मौसमी, क्या बातचीत हुई है किरण रिजिजू राहुल गांधी के बीच?
2: देखिए, ये महत्वपूर्ण बातचीत है क्योंकि जिस दिन राहुल गांधी का भाषण होना था इस पूरे मसले पर, पिछले हफ्ते हमने देखा था, तब राहुल गांधी और किरण रिजिजू की आखिरी बार बातचीत हुई थी राहुल गांधी के ऑफिस में। अब ये इतने दिनों बाद तमाम बवाल कटा है, तो एक आइस ब्रेकर मीटिंग आप कह लीजिए राजीव। किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद कहा कि वो होपफुल है, यानी कि उन्हें उम्मीद है कि आगे का कुछ रास्ता खुलेगा। और उसके बाद जो है लगातार सरकारी महकमे में मंत्रियों के बीच बातचीत जारी है। तो एक तरीके से लगातार दो तीन हफ्ते से संसद पूरा धुल गया है, सिर्फ शोर शराबा हो रहा है। और इसको लेके नेता जो विपक्ष है उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश, एक आप कहिए कि रीच आउट है राहुल गांधी के, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बात से जरूर आएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान हो। तो क्या होगा अमित शाह का बयान, ये अभी देखना होगा।
0: ये बहुत बड़ा सवाल है मौसमी। और गृहमंत्री अमित शाह से तो मीटिंग चल भी रही है, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। संसद के मानसून सत्र में लगातार हंगामा जारी है, संसद परिसर में विपक्षी दलों ने मार्च भी निकाला। इस मार्च में कांग्रेस सांसदों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद भी मौजूद रहे। ये मार्च गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक निकाला जा रहा है और इसके जरिए छात्रों के मुद्दों को उठाया गया। और इस दौरान राहुल गांधी ने यह पूछा कि पायलट गन किसके आदेश पर चले। विपक्ष ने गृहमंत्री अमित शाह से संसद में आकर जवाब देने की मांग की है। हमारी संवाददाता मौसमी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, आज भी मार्च, हर दिन प्रोटेस्ट, लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन क्या दबाव में आएगी सरकार?
2: देखिए, लगातार ये कहा जाता है दोनों तरफ से कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। कहीं ना कहीं सरकार कहती है कि विपक्ष हंगामा काट रहा है, लेकिन जो जनता के बीच मैसेज जाता है कि बिल्कुल कामकाज ठप है। और जब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस वजह से कामकाज ठप है, तो कहीं गृह मंत्री सदन में आए, इसको लेकर जो मांग विपक्ष उठा रहा है, इसको लेकर लगातार एड़ी चोटी नाक और साख का सवाल अब दोनों के बीच बन गया है। राहुल गांधी इस पे अड़े हैं, क्या सरकार इस पे अपना थोड़ा बैकफुट पे आएगी या थोड़ा अपना रवैया जो है नरम करेगी, और क्या अमित शाह कुछ बयान देंगे जो पूरी लाठीचार्ज हुई उसको लेकर, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां तक हमें जो संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने भी अपनी वही बात दोहरा दी है कि गृह मंत्री अमित शाह को जवाबदेही देनी होगी, स्टेटमेंट देना होगा, और इसको लेकर जबरदस्त बवाल छिड़ा हुआ है।
0: बहुत शुक्रिया मौसमी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात विपक्ष के विरोध के बीच में, बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी सदन में चर्चा से भागते हैं और राहुल गांधी एक भगौड़े हैं।
3: जो आम जनता के मुद्दे हैं उस पे नहीं करनी चाहिए। अगर नेता प्रतिपक्ष, हमने भगौड़ों की बात करी थी, राहुल गांधी भी एक भगौड़े ही है, संसद से भाग जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है, वो घबराते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अमित शाह जी जब तैयारी से भाषण देंगे, तथ्य रखेंगे, तो राहुल गांधी बगले झांकेंगे।
0: और अब खबर यूपी विधानसभा के सत्र से, जहां पर लगातार हंगामा चल रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता दानपत्र और पोस्टर्स लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करते दिखाई दिए। प्रदर्शन में निष्कासित पूर्व सपा नेता सचिन यादव के साथ कई पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आए।
4: यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र और राम मंदिर चढ़ावे को लेकर रसीद का मामला थमने का नाम फिलहाल तो नहीं ले रहा है। कल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जब सपा विधायकों के नाम लेकर राम मंदिर चढ़ावे की रसीद मांग ली तो समाजवादी पार्टी के विधायक उग्र हो गए। प्रदर्शन भी हुए और वो प्रदर्शन आज भी हुए हैं, जब सपा के विधायक सत्र से पहले रसीद लेकर पहुंच गए हैं प्रतीकात्मक तौर पर यह दिखाने के लिए, लीजिए हम तो रसीद ले आए, अब हमें सवाल करने दीजिए, हमें चर्चा करने दीजिए। इस पूरे मामले पर शिवपाल यादव, अतुल प्रधान समेत तमाम विधायक बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल वेल तक विधायक पहुंच गए और आज भी सदन चल पाएगा ये काफी मुश्किल प्रतीत होता है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने साबित कर दिया कि उन्हें गुंडा पार्टी क्यों कहा जाता है। जिस तरह का व्यवहार पार्टी का कल रहा है वो निराशाजनक है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, हम तो हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी तरह की चर्चा होने नहीं देना चाहती है। तो वहीं अखिलेश यादव ये सवाल करते नजर आ रहे हैं कि अगर सब कुछ इतना साफ है तो चर्चा करें, जवाब दें जो सपा के विधायक विधानसभा में सवाल कर रहे हैं।
0: अब आप यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की ब्राह्मण बोर्ड को साधने के लिए लखनऊ में आज जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पीडीएस से आगे देखते हुए अब ब्राह्मणों के साथ संपर्क कार्यक्रम कर रही है। पार्टी कोशिश में जुटी है कि 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले ब्राह्मण उनके साथ आ जाए, उच्च जाति के लोग उनके मतदाता समाजवादी पार्टी तक पहुंचे या समाजवादी उन तक पहुंचे।
5: समाजवादी पार्टी का बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन जिसमें कई ब्राह्मण नेता इकट्ठा हो रहे हैं, सबसे पहले जनेश्वर मिश्र की जयंती पर वहां पहुंचकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी ऑफिस पर पहुंचे। और इस दौरान चाहे सनातन पांडे हो या इसके अलावा पवन पांडे हो या इसके अलावा माता प्रसाद पांडे हो, वो सभी बड़े नेता समाजवादी पार्टी के आज ब्राह्मण सभा यानी कि सम्मेलन जो है उसमें पहुंचेंगे। क्योंकि एक तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ साथ ब्राह्मणों को भी साधने के लिए ये सम्मेलन देखा जा रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है 2027 में आखिर किस नाव पैर रखती समाजवादी पार्टी, ये भी देखने वाली बात होगी।
0: असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हमला किया और कहा कि जो बाबर के समर्थक हैं वो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उनको श्री राम जन्मभूमि पर नैतिक अधिकार ही नहीं है, उनको अगर बोलना है तो ज्ञानवापी के मुद्दे पर बोले, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर बोले, उस पर तोड़ी गई मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद जो बनाया गया उस पर बोले।

0: और अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने एक कार्यक्रम में ही छात्र आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि आज हम अजीब दौर में जो है, आज हम अजीब दौर से गुजर रहे हैं। छात्र सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उन्हें माफ कर रहे हैं। पता नहीं कि पीएम को ये विचार कहां से आता है कि वो उन्हें या भारत के भविष्य को माफ कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने आरएसएस को एक खतरनाक विचारधारा बताया।
1: नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार बीजेपी आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल कल ही रक्षा मामलों से जुड़ी एक संसदीय कमेटी की मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि आरएसएस मोदी सरकार के साथ मिलकर लगातार भारत के सैनिक स्कूलों को टेक ओवर कर रहा है। इसके ठीक बाद राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए आरएसएस को भारत की विविधता यानी डाइवर्सिटी के लिए खतरा बताया। दरअसल राहुल गांधी लगातार बीजेपी और आरएसएस पर हमला कर रहे हैं, उनको आड़े हाथों ले रहे हैं और उनका ऐसा मानना है कि इससे उनको फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का भी ये मानना है कि इन हमलों से ना सिर्फ बीजेपी आरएसएस की छवि धूमिल हो रही है बल्कि मोदी सरकार की इमेज को भी डेंट पहुंच रहा है।
0: और अब बात करते हैं रांची में छात्रों के प्रदर्शन की, जो लगातार चल रहा है। परीक्षा में धांधले को लेकर जेपीएससी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं अनशन कर रहे देवेंद्र महतो से सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल की है, बातचीत की है और उसके बाद पानी पीकर उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक ने उनसे काफी बातचीत की, काफी देर तक ये वीडियो कॉल चले जिसमें छात्रों ने कहा कि आप भी आइए, आप भी हमारा समर्थन करिए, यहाँ पर आप आइए। इस बीच में सोनम वांगचुक ने उनसे अपील की कि ये तो आत्महत्या करने जैसा होगा, आप पानी और नमक तो जरूर लें। और इस दरमियान फिर देवेंद्र महतो ने, जो कि मुख्य चेहरा एक तरीके से इस पूरे छात्र आंदोलन का है, उन्होंने जो अनशन था वो त्याग दिया क्योंकि चार दिनों से भूखे प्यासे थे और उन्होंने पानी पी लिया। अब बात कॉकरोच जनता पार्टी की, जो आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की एक बड़ी रणनीतिक बैठक होने जा रही है। आज और कल दो दिनों तक ये बैठक चलेगी। इसमें देशव्यापी अभियान पर अपने भविष्य को लेकर सीजेपी चर्चा करेगी। हालांकि अभिजीत दिपके ने कोई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की बात से इनकार किया।
2: सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ अभिजीत दिपके के घर पर अब बैठक शुरू हो चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि सीजीपी का दिल्ली का आंदोलन खत्म होने के बाद और धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा होने के बाद ये पहली बैठक है जिसमें जो कोर कमेटी मेंबर्स है कांग्रेस जनता पार्टी के, वो साथ में आए हैं। मेरे पीछे आप ये घर देख सकते हो जहां अब पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है। और अहम बात यह है कि इसी सदन में ये बैठक को अब शुरुआत हो चुकी है। आने वाले वक्त में स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, प्लानिंग कैसे रहेगा, सिर्फ दिल्ली जंतर मंतर नहीं बल्कि झारखंड को लेकर भी अभी सवाल उठ रहे हैं, महाराष्ट्र में सीटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में जिस तरीके की अभी परिस्थितियां हैं, जो स्टूडेंट्स का कहना है और एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से काम कर सकते हैं, इस पूरे मामले में चर्चा होगी, बैठक होगी। और अभी तक सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश करने से अच्छा है कि हम स्टूडेंट्स विंग को साथ में लेके एक साथ काम करेंगे तो एक प्रेशर ग्रुप बना पाएंगे और इसी तरीके से आगे जाने का प्रयास अब कांग्रेस जनता पार्टी का जारी रहेगा।
0: अब आज जम्मू कश्मीर की जहां पर सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। राज्य के सभी 20 जिलों में प्रदर्शन करने की तैयारी है। आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के सातवें वर्ष पर यह प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है।
3: आर्टिकल 370 को हटे आज 7 साल हो गए हैं और हर साल आज के दिन जम्मू कश्मीर में बवाल जरूर होता है और यहाँ के राजनीतिक दल, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, खासकर घाटी की अगर हम बात करें तो कोशिश यही एक दूसरे से आगे बढ़ने की रहती है, यानी कि चैंपियंस ऑफ 370 को वापस लाने की जो जंग है उसमें एक कदम आगे दिखने की कोशिश होती है। इस वक्त हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेडक्वार्टर्स में है जो नवाज सुबह के पास है और तारीख को बोलूंगा आपको दिखाएगा। यहां सुबह से ही जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं और गेट बंद है क्योंकि प्रशासन की तरफ से साफ हुआ कल शाम से ही कि किसी को भी, चाहे पीसफुली क्यों ना हो, वो क्लेम करेंगे, प्रोटेस्ट वो करेंगे, लेकिन इजाजत जो है किसी को नहीं दी जाएगी क्योंकि 7 साल से यही पॉलिसी चल रही है। प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, तो कोई भी ऐसी चीज जिससे थोड़ा भी उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस होगी या हालात खराब हो सकते हैं, उसकी इजाजत नहीं दी जाती है। यही हाल कल शाम को भी हमने देखा जब पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती प्रोटेस्ट करने के लिए निकले और रात के कई घंटे तक उन्होंने जो है कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया। ड्रामेटिक सीन्स भी हमें देखने को मिले, लेकिन साफ तौर पे ये जो मुद्दा है 370 का, यहां की पार्टीज के लिए ऐसा मुद्दा है जो उनको लगता है कि जिसका राजनीतिक बहुत ज्यादा लाभ है।
0: और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी लगातार हो रही है। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं, किरण रिजिजू और राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी, उसके बाद किरण रिजिजू और गृहमंत्री अमित शाह के बीच में मुलाकात, और इस बीच में बड़ी खबर मिल रही है रिजिजू राहुल गांधी की बैठक में बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि परिसीमन बिल को लेकर चर्चा हुई है और राहुल गांधी इसके साथ साथ गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, और छात्रों पर पुलिस या एक्शन पर बयान की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं गृहमंत्री अमित शाह पुलिस या एक्शन पर बयान दे क्योंकि दिल्ली की पुलिस गृहमंत्री अमित शाह के अंडर आती है। सूत्रों से जानकारी है कि गृहमंत्री के बयान के बिना राहुल गांधी का यानी कि कांग्रेस का स्टैंड चर्चा नहीं होगी। मिली है यहां पर पुलिस ने आईएसआई समर्थित 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी लगाकर उसकी फुटेज पाकिस्तान को भेजने की कोशिश में थे। इनके पास से पिस्तौल, कारतूस, पेट्रोल बम, सीसीटीवी उपकरण बरामद किए गए, लेकिन बताया जा रहा है कि अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने यह बताया कि उनकी जांच में यह सामने आया कि यह ग्रुप पहले दिल्ली के जंतर मंतर तक गया था और वहां पर उन्हें हैंडलर्स की ओर से गड़बड़ी फैलाने वाली यह सामग्री उपलब्ध करवाई गई थी। हालांकि वहां पर वो मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और बाद में ये पंजाब लौट आए।
4: जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन की आड़ में आईएसआई ने अपना मॉड्यूल एक्टिवेट किया और इस 2 मॉड्यूल्स का भांडाफोड़ किया है अमृतसर के कमिश्नरेट ने। जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के 10 दिन बाद इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है, जहां पे सामने आया है कि 15 से 30 साल के ये 9 युवक हैं वो इसमें शामिल थे, जहां पे पाकिस्तान आईएसआई का हैंडलर है, उन्हें लाइव इंस्ट्रक्शन इंक्रिप्टेड ऐप के जरिए देता था। साफ था कि पेट्रोल बम कहीं ना कहीं जंतर मंतर पे जाके फेंका जाए और अफड़ा तफड़ी का माहौल इसमें पैदा किया जाए। ये भी बात सामने आया है कि किसी वजह से ये मॉड्यूल एक्टिवेट नहीं हो पाया और वो खाली हाथ वापस आ गए और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें इनसे जिंदा कारतूस, पेट्रोल बम, बॉटल्स, मोटरसाइकिल, लाइटर ये सब बरामद किया गया है। और ऐसा भी बताया जाता है कि कोई युवक है जो कि यूपी से आया था, जिन्होंने इसकी मदद करने की कोशिश की है और इस बीच में जांच तेजी से चल रही है इस पूरे मामले पे।
0: बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना आज बांग्लादेश समेत दुनिया को संबोधित करेंगे और वर्चुअली वो अपना संबोधन देंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया करेगा। बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति जताई है। बांग्लादेश के शेख हसीना के संबोधन को भी उन्होंने,
5: और ऐसे में आज जब 2 साल जुलाई अपराइजिंग को पूरे हो रहे हैं तब वो भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे पहली बार मीडिया के सामने आएंगी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करेंगी और अपनी भविष्य की उन योजनाओं के बारे में बताएंगी जिनमें बांग्लादेश में उनकी पुनः वापसी, आवामी लीग को फिर से खड़ा करना और बांग्लादेश की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने की तमाम तैयारियों के बारे में उन्हें पता चलेगा। इस बीच बांग्लादेश की सरकार ने उनके स्पीच को, उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एयर करने से, पब्लिश करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
0: और अब पश्चिम एशिया में जारी तनाव की लाल सागर में यमन के पास एक भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है और इस हमले के बाद से जहाज समुद्र में डूब गया। हालांकि जहाज पर सवार 14 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस जहाज पर देश के शेख हसीना के संबोधन को भी उन्होंने,
5: और ऐसे में आज जब 2 साल जुलाई अपराइजिंग को पूरे हो रहे हैं तब वो भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे पहली बार मीडिया के सामने आएंगी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करेंगी और अपनी भविष्य की उन योजनाओं के बारे में बताएंगी जिनमें बांग्लादेश में उनकी पुनः वापसी, आवामी लीग को फिर से खड़ा करना और बांग्लादेश की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने की तमाम तैयारियों के बारे में उन्हें पता चलेगा। इस बीच बांग्लादेश की सरकार ने उनके स्पीच को, उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एयर करने से, पब्लिश करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
0: और अब पश्चिम एशिया में जारी तनाव की लाल सागर में यमन के पास एक भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है और इस हमले के बाद से जहाज समुद्र में डूब गया। हालांकि जहाज पर सवार 14 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस जहाज पर 13 भारतीय नागरिक भी सवार थे जबकि 1 यमन का नागरिक भी था। इस हमले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई है और कहा कि इस हमले की हम निंदा करते हैं।
6: अमेरिका और ईरान में चल रही जंग के बीच एक बार फिर एशिया में उभरे इस तनाव के बीच अब तक 16 भारतीयों की जान जैसे
7: परोस इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बाय, एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
2: The Congress government in the center got rid of its own government because of a series of killings in Punjab, including many prominent people. So things had gone really bad in Punjab.
3: Congress party was trying to say that Akalis have to be defeated. You must not allow some other faction of the Akalis to prop up so that votes are divided.
4: They created this Frankenstein called Bhindranwala.
5: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
6: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
5: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
7: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
5: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
8: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े

0: और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
1: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
0: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
2: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
0: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
3: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

का नारेबाजी, चंदा चोरी की पर जांच की मांग और घेराव। सीएम योगी को धमकी देने वाला आरोपी बरेली में गिरफ्तार, पुलिस ने कार्रवाई करके आरोपी को कोर्ट में किया पेश, मामले की जांच जारी। ओवैसी के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले कि जो बाबर के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उन्हें राम जन्मभूमि पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। कौशाम्बी में लेखपालों पर एफआईआर पर पुलिस अभद्रता और सरकारी काम में बाधा का आरोप, चार नामजद समेत 10 लेखपालों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच। अयोध्या में राम दरबार दर्शन के लिए विशेष पास की व्यवस्था अब खत्म, अब श्रद्धालु सामान्य दर्शन कतार में लगकर प्रथम तल पर राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। चढ़ावा चोरी पर गतिरोध जारी, विपक्ष कर रहा बहस की मांग, योगी सरकार ने कहा बहस की जरूरत नहीं, एसआईटी जांच जारी है। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए आज अखिलेश यादव का बड़ा सियासी दांव, आज जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर सपा ने आयोजित किया है कार्यक्रम, पुष्पांजलि अर्पित की। आज बागपत के दौरे पर राहुल गांधी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट घोटाले के दावे पर एफआईआर दर्ज, भ्रामक वीडियो फैलाने के आरोप में यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्रवाई। नोएडा ग्रेटर नोएडा में 7 निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई, तय सीमा से ज्यादा फीस बढ़ाने पर जिला प्रशासन ने लगाया 1-1 लाख का जुर्माना। कानपुर में नकली हल्दी बनाने वाली फैक्ट्री पर एफएसडीए का छापा, चावल के टुकड़ों में रंग मिलाकर तैयार की जा रहा था हल्दी पाउडर, 5,85,000 का माल जब्त। यूपी में करंट का कहर, अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत, देवरिया में बच्चे की, एटा में मासूम बच्चे की और लखनऊ में पुजारी की गई जान। नोएडा मेट्रो हादसों में एनएमआरसी सख्त और M3M बिल्डर को कारण बताओ नोटिस, स्क्रीन के ऊपर हेडलाइन में फंसने से मेट्रो सेवा 2.5 घंटे तक प्रभावित, उपकरणों को भी नुकसान। अमेठी में युवक हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली, अंतरजातीय विवाह को लेकर हत्या हुई थी। यूपी के हापुड़ में 85 लाख रुपए की लूट के मामले में फरार चल रहे 1 लाख के नामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, कई बड़े केसेस इस पर दर्ज थे। यूपी के ललितपुर में बुजुर्ग के दिनदहाड़ी हत्या मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी समेत 3 को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का वीडियो आया सामने, सरकारी स्कूल के क्लासरूम में सोते दिखे शिक्षक और बच्चे मोबाइल फोन में मग्न। आजमगढ़ में दर्दनाक हादसा, बिजली के खंभे से टकराकर डीजल से भरा हुआ टैंकर पलट गया, आग लगने से 3 लोग जिंदा जल गए। मथुरा में जन्माष्टमी से पहले खाद्य विभाग का एक्शन, 5,000 किलोग्राम से ज्यादा मिलावटी पेड़ा और मिल्क केक जब्त, नष्ट किया गया। यूपी में कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने की तैयारियां, 9 और 10 अगस्त को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेगी यूपी सरकार। कांवड़ यात्रा को देखते हुए अलर्ट मोड पर है रेलवे, दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन में वॉर रूम बनाया गया, तमाम स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सावन के महीने में अलग अलग कांवड़ यात्रा खींच रहे हैं लोगों का ध्यान, सहारनपुर में निकाले गए बाहुबली वाली कांवड़, 9 फीट ऊंची है, हनुमान जी के बाहुबली स्वरूप वाली है विशाल कांवड़। बिजनौर में कांवड़ ने पेश की सेवा की मिसाल, यहां पर 90 साल की दादी और दूसरी तरफ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा को लेकर पोता निकला। मुजफ्फरनगर पहुंचे मोदी और योगी की अनोखी कांवड़, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बड़े बड़े फोटोज लगे हुए हैं इस कांवड़ पर, सबका ध्यान भी खींच रहे हैं।

अयोध्या में महंत रामचंद्रदास परमहंस की पुण्यतिथि पर बड़ा संत समागम होगा। 14 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिगंबर अखाड़ा पहुंचकर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। लखनऊ में विधानसभा परिसर में सपा का प्रदर्शन, पॉर्टिको में जुटे एसपी विधायक सरकार के खिलाफ

0: अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी के विधानसभा स्पीकर ने पद छोड़ने की बात कह दी है। स्पीकर ने पद छोड़ने की चेतावनी दी है। सतीश महाना सदन में विपक्ष के व्यवहार से बेहद आहत हैं और आज की कार्यवाही के दौरान उन्होंने कहा कि सोचूंगा कि इस पद के लायक हूं या नहीं, जल्द बताऊंगा। सतीश महाना ने कल के उनके बयान के बाद से बहुत बवाल देखने को मिला है।
1: जिस समय वीडियो रिकॉर्डिंग करी जा रही थी मैंने मना किया था, उसके बाद भी उन्होंने मान गए थे, लेकिन परंतु कल जिस प्रकार से जो मेरे मना करने के पश्चात भी जिन माननीय सदस्यों के द्वारा यहां पर यहां की फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डाली, यहां की रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया में डाली, वो अत्यंत निंदनीय है और पीड़ाजनक है। अगर इस प्रकार का आप छवि समाज में देना चाहते हैं कि हम नहीं सुधर सकते, तो सबके लिए इस बात की जिम्मेदारी आती है। कोई भी एक सदस्य अगर इस प्रकार का आचरण करता, मैंने कहा था कि एक समय था कि जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो दो सदस्यों ने वहां पर अपनी हाफ ऊपर कपड़े उतार दिए थे, तो मैंने कहा था वो कपड़े दो लोगों के नहीं पूरे 403 विधानसभा के सदस्यों के उतरे हैं, मैंने ये बात कही थी। और उसके बाद भी अगर इस प्रकार का आचरण है तो मुझे बहुत दुख है, मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं हूं, अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों के अंतर्गत किया है वो उचित है कि अनुचित है। इसके ऊपर आत्मविलोचन करूंगा और इसका निर्णय शीघ्र करूंगा।
0: बयान हमने आपको सुना और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस खबर पर जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, ये बयान आहत होकर दिया गया है या विपक्ष को इस्तीफे की धमकी है?
2: कहां मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के, यही वो पोस्ट और इसी को लेकर?
3: देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आहत दिखाई दिए हैं और उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उन्होंने कह दिया है कि ये मेरा सियासी जीवन का अब बिल्कुल आखिरी दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सियासत से इस्तीफे की बात तो खुलकर नहीं कही है, लेकिन उन्होंने आहत होकर यह कह दिया है कि शायद उनकी आखिरी पारी है। यही नहीं, उन्होंने एक बात और कह दी कि वो इतने दुखी हैं कि जरूरत पड़े अगर आहत हैं लोग तो मैं माफी मांगता हूं। तो बहुत सारी बातें आज कही, हालांकि विपक्ष भी आज कल की तेवर में नहीं था, आज ठंडा था और कुछ ना कुछ मुझे लगता है बात हुई है। अभी 1 बजे तक सदन स्थगित है, 1 बजे के बाद फिर से यह सदन शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 11:15 बजे प्रेस को ब्रीफ करना था और आज उन्होंने प्रेस से बात नहीं की है, तो इसका मतलब है कि 1 बजे के बाद दूसरे हाफ में हो सकता है सदन चले और मुख्यमंत्री बोले, तो कुछ ना कुछ बात जरूर हुई है। कल जिस तरीके से सदन चला, जिस तरीके से सदन के भीतर पोस्टर लहराए गए और जिस तरीके से बातें अध्यक्ष ने रखी थी, विधानसभा अध्यक्ष ने जिस गुस्सा उनका दिखाई दिया और पूरे दिन भर सदन में हंगामा होता रहा, उसके बाद आज सतीश महाना का पहले आना और पहले बोल करके अपनी बातें रखना बहुत सारे इशारे करता है। ये एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है राजीव कि अब ये जो सत्र, चूंकि कल तक आखिर है, ऐसे में सत्र का कामकाज चले और जो ये अनुपूरक बजट है इस पर बहस हो जाए, कम से कम मुख्यमंत्री का जवाब तरीके से आ जाए, वक्त मिल जाए, इसकी कोशिश शुरू हुई है। लेकिन सतीश महाना का बयान आज बेहद अहम है, एक तरीके से उन्होंने अपने सियासी पारी के आखिरी होने का संकेत।
0: अब जब सत्र की फिर से शुरुआत होगी, फिर से जब कार्यवाही शुरू होगी तो देखना होगा कि तब क्या रुख रहता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र का आज 3रा दिन है और कल तक सत्र है और इस सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर निकला है। समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रहे, कल सदन में इस पर काफी सियासत भी देखने को मिली, लेकिन अब सवाल सनातन के सम्मान, सनातन के अपमान और चंदे की रसीद हिसाब का उठने लगा है।

0: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर सियासी मुकाबला कुछ ऐसा है कि दिल्ली से लखनऊ तक विपक्ष हमले का एक से एक कार्ड निकाल रहा है और बीजेपी उसका मुकाबला कर रही है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी ने पप्पू ड्रामा किया तो बीजेपी ने गेरुए के अपमान की ऐसी चर्चा छेड़ी कि खुद रामगोपाल यादव ने निंदा कर दी। उधर यूपी में समाजवादियों ने सदन के अंदर राम मंदिर के पोस्टर फाड़ कर रौंदे तो बीजेपी अलग सनातन के अपमान का सवाल उठा रही है।
1: पोस्टर फाड़ के कह रहे हैं कि पैरों के तले दबाए गए, ये भी आरोप लग रहा है। कल सीएम ने भी इस बात को कहा कि राम का अपमान पार्लियामेंट में भी हुआ था, यहाँ भी विधानसभा में भी किया है।
0: फर्श पर फटे पड़े समाजवादी पार्टी के पोस्टर में राम मंदिर की तस्वीर होने का हवाला देकर बीजेपी विपक्ष पर सनातन के अपमान का सवाल कर रही है। दरअसल विपक्ष मानसून सत्र की शुरुआत के दिन से ही विधानसभा के बाहर और अंदर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। 4 अगस्त को तो समाजवादी विधायक दूध और पोस्टर लेकर आ गए थे जिसमें सीएम योगी के दूध का दूध पानी का पानी वाला वादा याद दिलाया जा रहा था। इसी पोस्टर के फाड़े जाने पर अब सनातन के अपमान का सवाल खड़ा हुआ है।
2: समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आचरण आप पूरे प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखा है।
3: यह आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी।
0: दूसरी तरफ सदन के अंदर हुए विरोध प्रदर्शन और चेयर की टिप्पणी को लेकर अब विपक्षी दल लखनऊ से दिल्ली तक लाल हो गए हैं। खासकर स्पीकर की चंदे की रसीद वाले बयान पर विवाद बढ़ रहा है।
4: मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद देकर आ जाए भाई, यहाँ पे बीच में आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे।
0: अब ओवैसी कहते हैं कि चेयर से चंदे की रसीद मांगना विधानसभा की गरिमा पर सवाल खड़े करता है। ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि गुनाह का मुद्दा उठाने के लिए मजहब का हलफनामा देना पड़ेगा क्या?
5: के समर्थक हैं जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं उनको श्री राम जन्मभूमि पर चाहे वह चढ़ावा का मामला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे मंदिर निर्माण का मामला हो, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर उनके पास बोलने का साहस है तो वो बोले। अभी बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के बगल में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है जिसका मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बारे में बोले, जिस जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके ईदगाह बनाई गई है, तो जो बोलना है उस पर ये बोलते नहीं हैं, जो नहीं बोलना है उस पर समय सदन का खराब करते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इसकी भारी कीमत चुकाएगी और सपा का सफा होना पूरी तरह से तय।
0: ओवैसी इसी बहाने हिंदू एडोमेंट बोर्ड बनाम वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य का सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली से पीयूष मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: तो कल यूपी विधानसभा में जो कुछ हुआ उसे लेकर बीजेपी को क्या क्या आपत्तियां हैं, हमारे संवाददाता ने बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी से बातचीत की।
7: मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है, विधायक है, वरिष्ठ नेता भी हैं। क्या पूरा ये कल से जो बात आ रही है कि अपमान किया है, जैसे कि पार्लियामेंट हुआ फिर अब असेंबली में हो रहा है?
8: देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र में विपक्ष कई बार नारेबाजी करता है, विरोध करता है, वेल में आता है, सब स्वीकार है, आपको लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उन्होंने पोस्टर लहराए जिसपे भगवान राम का मंदिर बना हुआ था, उसके ऊपर भगवा ध्वज लगा हुआ था, और वो पोस्टर वेल में फेंके गए, स्पीकर साहब की तरफ फेंके गए, वो नीचे लोगों के पैरों में जाके पड़े। आप देखिए, ये मैंने कल निकाला था, ये आप देख सकते हैं।
7: कैमरा पर्सन संदीप से कहूंगा दिखाएं जरा क्लोज करके।
8: ये पोस्टर वहां पे डस्टबिन के पास पड़ा हुआ था। ये अधिकार किसने दे दिया कि आप हमारी आस्थाओं का इस प्रकार से मजाक उड़ाइए, उनका इस प्रकार से अपमान करिए। कल विधानसभा अध्यक्ष जी कहते रहे, हम लोग कुर्सियों पर बैठे रहे कि भाई आपको जो नारेबाजी करनी है, आपको जो भी कोसना है, जो भी अपशब्द कहने हैं, आप हमारे बारे में कह लीजिए, हमारी सरकार के बारे में कह लीजिए, लेकिन भगवान राम के मंदिर का पोस्टर लेकर आप उसको वेल में फेंक रहे हैं, लोगों के जूतों तले वो पड़ रहा है, उसको लेकर छीना झपटी हो रही है।
6: और अब बात यूपी में चुनावी राजनीति की, और चुनावी राजनीति में वोट बैंक पॉलिटिक्स की एक झलक आज लखनऊ में देखने को मिल रही है। लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क में पुष्पांजलि देने आए अखिलेश यादव को इस बार पार्क में जयंती मनाने की इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन अखिलेश यादव ने चुनावी साल में जनेश्वर मिश्र जयंती का भव्य आयोजन किया है।
9: जनेश्वर मिश्र पार्क में हमारी मौजूदगी है, आप अगर देखेंगे तो सामने आपको जनेश्वर जी की बड़ी सी मूर्ति दिखाई पड़ेगी और आसपास आपको समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर दिखाई पड़ेंगे। जनेश्वर मिश्र की अगर आप बात करें तो यूपी की सियासत में एक बहुत बड़ी छवि रही है और समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन रहा या शुरुआत से फाउंडिंग मेंबर्स में उनको गिना जाता है, मुलायम सिंह यादव के समय से वो बहुत एक्टिव रहे और जनेश्वर मिश्र क्योंकि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं इसलिए समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र जयंती को कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सॉफ्ट हिंदुत्व है उसमें भी दिखाने की कोशिश में है। यानी कि जिस तरीके से पीडीए के नारे के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, सपा को लगता है कि जनरल वोटर भी जो है वो पार्टी के साथ अगर जुड़ जाए तो चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। यानी कि पीडीए के साथ साथ अगड़े की राजनीति में कदम रख रही है समाजवादी पार्टी और उसके लिए सबसे बेहतरीन मौका अगर पार्टी के लिए है तो पार्टी को लगता है ये है, जहां पर जनेश्वर मिश्रा अमर रहे के नारे लग रहे हैं। अखिलेश यादव आप देख सकते हैं यहां पर जो है निकल रहे हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनेश्वर मिश्र की जयंती का मौका है, यहां पहुंचे और अब यहां से सीधे प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो यहां पहुंचे हुए हैं उनके साथ वो प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए यहां से निकल चुके हैं कैमरामैन गौरव के साथ आज तक।
6: और हमारे साथ हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव इस समय लाइव जुड़ गए हैं। समर, इस समय क्या हो रहा है वहां पर?
9: राजीव, देखिए समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन इस वक्त चल रहा है, भारी भीड़ यहां समाजवादी पार्टी कार्यालय में उपस्थित है और आप अगर तस्वीरों में देखें तो आपको यहां पर अखिलेश यादव नजर आएंगे और जितनी अगर आप गौर करेंगे तो जो ब्राह्मण लीडरशिप समाजवादी पार्टी की है वो आपको स्टेज पर उनको तरजीह मिली है, चाहे माता प्रसाद पांडे हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सनातन पांडे हो, सामने पूजा शुक्ला आपको दिखाई पड़ेंगी, उनके बगल में पवन पांडे दिखाई पड़ेंगे, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा आपको दिखाई पड़ेंगे और बीच में आपको अखिलेश यादव यहां पर मौजूद नजर आएंगे जो इस वक्त इस प्रबुद्ध सम्मेलन का हिस्सा बन रहे हैं। भारी संख्या में यहां पर जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहां पर है, वो यहां पर ही अखिलेश यादव भी आपको बीच में नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर जो कार्यकर्ता है वो यहां भारी संख्या में उपस्थित है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को घेर रही है और बीजेपी का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी ने सनातन का अपमान किया है, जबकि समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि जो है ब्राह्मण नाराज है और हम पीडीए के साथ साथ अगड़ों को भी लेकर चल रहे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी के दावों में सच्चाई है या समाजवादी पार्टी के जो दावे हैं वो धरातल पर सही निकलते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन सम्मेलनों के जरिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए
6: प्रयास दिख रहा है। बहुत शुक्रिया समर्थ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दरअसल जनेश्वर मिश्र आज समाजवादी सियासत के बड़े चेहरों में से आगे जो है, बहुत बड़े चेहरे तो हैं और आगे बढ़कर ब्राह्मण चेहरे के रूप में अब परोसे जा रहे हैं, क्योंकि यूपी के समाजवादी सियासत में जात की बात छिड़ी तो अखिलेश यादव की नजर एक और जात पर पड़ी और वो प्रभावी वोट बैंक है और ये जात थी ब्राह्मणों की। ये वैसा वोट बैंक है जो आबादी में तो बमुश्किल 11-15% ही है, लेकिन सियासी असर ऐसा रखते हैं कि यूपी की 115 विधानसभा सीटों पर हार जीत का फैसला कर देते हैं और 2024 के चुनाव में इस वोट बैंक का 89% हिस्सा बीजेपी को मिला था। अखिलेश की नजर अब इसी वोट बैंक पर है।
10: जिस जनेश्वर मिश्र को दुनिया प्रखर समाजवादी मानती रही, जिस जनेश्वर मिश्र को यूपी में छोटे लोहिया की उपाधि मिली, उसी जनेश्वर मिश्र में आज समाजवादी पार्टी एक जाति का चेहरा देखना चाहती है। जय जय श्री राम। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की 93वीं जयंती पर ये भव्य समारोह यूं ही नहीं आयोजित किया गया, योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी करार देने की कोशिश अब समाजवादी को ब्राह्मण हितैषी जताने तक पहुंच गई।
11: और किसी एक जाति मात्र को एक पहचान बना करके ये उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से चल रही है और सबके साथ जो सलूक हो रहे हैं उसके चलते ब्राह्मण सर्वाधिक पीड़ित है और उसमें उम्मीद दिखाई पड़ रही है समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी।
10: दरअसल समाजवादी पार्टी ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड के बाद से ही योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी करार देने की कोशिश शुरू कर दी थी। फिर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर से लेकर प्रयागराज में बटुकों की पिटाई और ब्राह्मण विधायकों के प्रीति भोज तक को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा।
11: भारतीय जनता पार्टी के सभी ब्राह्मण विधायक एक दिन अगर एक छोटे भोज पर मिलते हैं तो उस पर भी उनके जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष जी वो उनको इतनी बुरी तरह डांटते हैं कि अगले दिन अगर किया तो पार्टी कार्रवाई। अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्राह्मणों की भारतीय जनता पार्टी में क्या हैसियत रहेगी।
10: विपक्ष इन घटनाओं को कभी इंजन टकराने तो कभी ब्राह्मण बनाम ठाकुर विवाद भड़काने के तौर पर करता रहा क्योंकि विपक्ष की नजर ब्राह्मण वोट तोड़ने पर है। कारण यह है कि यूपी में करीब 14% ब्राह्मण हैं, जो राज्य की 115 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित करते हैं। 2007 में इस ब्राह्मण वोट बैंक के करीब 40% हिस्से ने बीएसपी को सत्ता शीर्ष तक पहुंचाया था। 2012 में सिर्फ 19% ब्राह्मण वोट पाकर अखिलेश सीएम बन गए थे, लेकिन 2014 के बाद से ये वोट बैंक बीजेपी के पास है। 2014 लोकसभा में लगभग 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, जो 2017 विधानसभा में 80% तक पहुंच गया। 2019 लोकसभा में फिर 83% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले तो 2022 विधानसभा में 89% तक ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले थे, लेकिन 2024 में 80% से भी कम ब्राह्मण वोट एनडीए को मिले। यूपी में ब्राह्मण वोट को बीजेपी से अलग करने के लिए तमाम खबरें चलती रही हैं। हालांकि योगी राज में ब्राह्मणों के सम्मान और सुरक्षा का भरोसा देने के लिए फौरन दोनों डिप्टी एक्शन में आ गए। केशव मौर्य ने शंकराचार्य के सम्मान की बात कही और ब्रजेश पाठक ने तो घर बुलाकर प्रयागराज में पुलिस लाठीचार्ज के शिकार हुए बटुकों को तिलक मिष्ठान पुष्प वर्षा सम्मान सब किया। हालांकि कोशिशों में अखिलेश भी पीछे नहीं रहे। समाजवादी पार्टी प्रचार करती रही कि अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडेय को नेता विपक्ष बना रखा है तो स्थानीय चुनावों में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं। अखिलेश गोसाईगंज में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने से लेकर परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी तक की मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश इन दिनों पंडित जी के मुहूर्त से ही बड़े काम करने का दावा करते हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर सनातन समाजवाद वाले पोस्टर लगाते हैं तो राजकुमार भाटी जैसे नेता के ब्राह्मण विरोधी बयान के बाद जोरदार फटकार भी लगाते हैं। अब देखना होगा कि 2027 के चुनाव में यूपी में ब्राह्मण वोट का ऊंट किस करवट बैठता है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
6: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: ओह सॉरी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए राहुल और प्रियंका के साथ किरण रिजिजू की बैठक, डिलिमिटेशन बिल पर हुई चर्चा, नेता विपक्ष का जवाब, पहले गृहमंत्री बयान दे फिर चलेगा सदन, अमित शाह से मिले रिजिजू। कॉकरोच जनता पार्टी ने तैयार किया अपना रोडमैप, महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हुई बैठक, अभिजीत दिपके बोले प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हर आंदोलन का समर्थन। रांची में भूखे प्यासे अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र की सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बात, पानी पिया लेकिन प्रदर्शन जारी, सोनम से कहा जल्द रांची आइए, हमें आपके समर्थन की जरूरत है। यूपी विधानसभा में हंगामे और टिप्पणियों से आहत स्पीकर सतीश महाना ने मांगी माफी, कहा अंतिम दौर में राजनीति में हूं, सोचूंगा कि इस पद के लायक हूं या नहीं, विपक्ष का विरोध जारी। और पीओजेके में जारी पाकिस्तान के अत्याचार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद का विवादास्पद बयान, कहा वहां के लोगों से हमें क्या मतलब, पाकिस्तानी हुकूमत समझे।

अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का संदेश, बोले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास का नया अध्याय शुरू हुआ, विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे, आज पीडीपी का पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी मनाएगी ब्लैक डे, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। संसद गतिरोध के बीच किरण रिजिजू और राहुल गांधी की अहम बैठक, बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा भी रही मौजूद, गतिरोध खत्म करने पर हुई चर्चा। संसद गतिरोध के बीच राहुल गांधी और किरण रिजिजू की बैठक खत्म, रिजिजू बोले बातचीत सकारात्मक रही, आगे सब कुछ सामान्य होने की उम्मीद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर सवाल निशाना, पूछा युवाओं पर अत्याचार और राम मंदिर चंदा मामले पर संसद में जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी, विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों ने जताया विरोध। दिल्ली विपक्ष का विरोध मार्च, गांधी स्मृति से मकर द्वार तक निकले नेता, केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सांसद शामिल। एफसीआरए विवाद पर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने अमेरिकी सांसद को दिया जवाब का अफवाना फैलाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर संसदीय समिति सख्त, जुकरबर्ग को 3 दिन का अल्टीमेटम, पीएम मोदी के वीडियो मामले में माफी और कार्रवाई की मांग, नहीं तो सेफ हार्बर खत्म करने की चेतावनी। पटना में बिहार बीजेपी की समीक्षा बैठक जारी, बांकीपुर हार को लेकर मंथन, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और सीएम सम्राट चौधरी समेत बड़े नेता मौजूद। मदरसा शिक्षा पर योगी सरकार का फैसला, कामिल फाजल डिग्री की मान्यता होगी खत्म, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला। धार की भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों का पक्ष सुनेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुए चुनाव को पूरी तरह दिखावा करार दिया, सैन्य कार्रवाई को इन चुनाव के जरिए छिपाना चाहती है। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर हमला, छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पर सवाल निशाना, आरएसएस को बताया खतरनाक विचारधारा। गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर हमला, बोले विपक्षी नेता संसद नहीं चलने दे रहे हैं, बोले राहुल गांधी को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार पर कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का हमला, सोशल मीडिया पर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कांग्रेस के अभद्र टिप्पणी पर पहली बार प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर करारा जवाब दूंगी। पीओजेके को लेकर एमसी सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान का विवादित बयान, बोले पीओजेके अलग देश है, बयान पर सियासी विवाद तेज। छत्रपति संभाजी नगर में आज से सीजेपी की 2 दिवसीय रणनीतिक बैठक शुरू, देशव्यापी अभियान की रूपरेखा पर मंथन होगा, दीपके ने राजनीतिक पार्टी बनाने से किया इनकार। पंजाब विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग पर यूथ कांग्रेस और एबीवीपी का विधानसभा घेराव। अमृतसर में पेट्रोल बम वाले मॉड्यूल से सनसनीखेज खुलासा, एसआई से आरोपियों का कनेक्शन, कमिश्नर बोले प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर गए लेकिन नाकाम हुए मंसूबे। रांची में जेपीएससी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी, अनशनकारी देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बातचीत के बाद पानी पीकर अनशन समाप्त किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार छात्रों के आंदोलन पर तोड़ी चुप्पी, कहा जेपीएससी मामले में सरकार की पैनी नजर, समय आने पर दिखेगा निर्णय। झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र में जेपीएससी मुद्दे पर घमासान के आसार, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी परीक्षा धांधली का मामला उठाकर हेमंत सोरेन सरकार को घेरेगी। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने एक बार फिर सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन को सरकार अनसुनी कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पहली बार सामने आए, जगतगुरु परमहंस आचार्य के अयोध्या न छोड़ने पर अपील पर जताई सहमति। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी, कहा सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है बल्कि ये विधानसभा की गरिमा से जुड़ा सवाल है। ओवैसी ने महाना पर हमला बोलते हुए कहा कि अपराध को अपराध कहने से पहले अपने धर्म का हलफनामा देना होगा। ओवैसी के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले जो बाबर के समर्थक हैं वो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे, उन्हें राम जन्मभूमि पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए विशेष पास व्यवस्था खत्म, अब श्रद्धालु सामान्य दर्शन कतार से सीधे प्रथम तल पर राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। चढ़ावा चोरी पर गतिरोध जारी, विपक्ष कर रहा है बहस की मांग, योगी सरकार ने कहा बहस की जरूरत नहीं है, एसआईटी जांच जारी। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए आज अखिलेश यादव का बड़ा सियासी दांव, आज जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने आयोजित किया कार्यक्रम, अखिलेश यादव ने की पुष्पांजलि अर्पित। आज बागपत दौरे पर राहुल गांधी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट घोटाले के दावे पर एफआईआर दर्ज। भ्रामक वीडियो फैलाने के आरोप में यूट्यूब चैनल मोहित सर गुरुकुल के खिलाफ कार्रवाई। अयोध्या में रामचंद्रदास परमहंस की पुण्यतिथि पर होगा बड़ा संत समागम। 14 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ दिगंबर अखाड़ा पहुंचकर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। लखनऊ में विधानसभा परिसर में सपा का प्रदर्शन। पोर्टिको में जुटे सपा विधायक, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। चंदा चोरी को लेकर योगी सरकार का घेराव। सीएम योगी को धमकी देने वाला आरोपी बरेली में गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी कोर्ट में पेश किया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान ओवरसाइज डीजे पर पुलिस की कार्रवाई। गाइडलाइन तोड़ने पर डीजे का 50,000 का चलान। कौशाम्बी में लेखपालों पर एफआईआर। पुलिस से अभद्रता और सरकारी काम में बाधा का आरोप। 4 नामजद समेत 10 लेखपालों पर केस दर्ज। दिल्ली में एसआईआर की समय सीमा फिर बढ़ाई गई। अब 17 अगस्त तक चलेगा बूथ स्तर पर घर घर सत्यापन। प्रारूप मतदाता सूची 24 अगस्त को प्रकाशित होगी, जबकि दावे और आपत्तियां 24 अगस्त से 23 सितंबर तक स्वीकार की जाएंगी। जमियत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताने वाले बयान की कड़ी निंदा की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए मदनी ने इसे आजादी के इतिहास और भारतीय संविधान का अपमान बताया। पूर्व बांग्लादेश पीएम शेख हसीना आज वर्चुअली करेंगी संबोधन। दिल्ली में कार्यक्रम पर बांग्लादेश ने जताई आपत्ति। देश में उनके भाषण के प्रसारण पर रोक है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने की तैयारी। 9 और 10 अगस्त को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार। कांवड़ यात्रा को देखते हुए अलर्ट मोड पर रेलवे। दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन में बनाया गया वॉर रूम। तमाम स्टेशन पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। सावन के महीने में अलग अलग कांवड़ यात्रा खींच रही है लोगों का ध्यान। सहारनपुर में निकली बाहुबली वाली कांवड़। 9 फीट ऊंची है श्री हनुमान जी की प्रतिमा। बिजनौर के कांवड़ ने पेश की सेवा भाव की मिसाल। एक तरफ 90 साल की दादी, दूसरी तरफ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकला पोता। मुजफ्फरनगर पहुंची मोदी और योगी की अनोखी कांवड़। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बड़े बड़े फोटो लगी इस कांवड़ ने खींचा सबका ध्यान। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जोरदार बारिश से बिगड़े हालात। मुख्य बस स्टैंड के टापू बनाए जाने से यात्रियों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से आफत। सिरमौर में नेशनल हाईवे पर बना 50 से 60 साल पुराना पुल भारी बारिश के बाद ढहा। बंगाल के पश्चिम बर्दवान में बारिश से पानी पानी हुआ कबाड़ी मार्केट। जल निकासी की मांग को लेकर मजदूरों की हड़ताल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारी बारिश के कारण अंडरपास के मुख्य बाजार जलमग्न। सड़कों पर भारी जलभराव के चलते यातायात पूरी तरह ठप। देहरादून में भारी बारिश से तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा। तपकेश्वर महादेव मंदिर के पास नदी उफान पर प्रशासन निगरानी बढ़ाई। उत्तराखंड में कलसी चक्राता मार्ग भूस्खलन से बंद, फंसी सैकड़ों गाड़ियां। मध्यप्रदेश की विदिशा से आया खौफनाक वीडियो। फंती नदी से बीच जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने में मजबूर हैं बच्चे, वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज में झमाझम बारिश। शहर के कई इलाकों में बरसे बादल। बारिश से मौसम सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के नासिक में नदी पर बने अस्थायी लकड़ी के पुल से संतुलन बिगड़ने के कारण नदी में बहा व्यक्ति। बाढ़ के कारण पहले ही 4 बार पुल बह चुका है। राजस्थान के करौली में जल भराव से बिगड़े हालात। पक्के रास्तों के अभाव में लोग घुटने तक भरे पानी और कीचड़ के बीच निकलने को मजबूर। यमन के समुद्री क्षेत्र में भारतीय जहाज MSV फैजे नूरे ओलिया पर हुआ बड़ा हमला। ज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आने के बाद समुद्र में डूबा जहाज। समंदर के तेल रूट पर जल समझौते के आसार। ट्रंप ने कहा हमेशा के लिए खुला रहने वाला है हॉर्मुज। ईरान अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीद बढ़ी। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कूटनीतिक समाधान की कोशिश जारी है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के पास यूक्रेन का बड़ा हमला। 5 की मौत, 1 नागरिक घायल। यूक्रेन के सूमी समेत कई शहरों पर रूस का भीषण हमला। 3 की हुई मौत, कई लोग घायल। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक बुनियादी ढांचे पर हुआ हमला। लेबनान में संघर्ष विराम समझौते को लेकर इटली की राजधानी रोम में लेबनान और इसराइल के वार्ताकारों के बीच हुई 7वें दौर की बातचीत। ब्राजील के साओ पालो में केमिकल फैक्ट्री में आग से हड़कंप। पूरे इलाके में इस घटना से सनसनी। अधिकारियों ने आसपास के घरों से करीब 150 निवासियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश करे अवैध प्रवासी से भरा जहाज हुआ बड़े हादसे का शिकार। श्रीलंका में मूसलाधार बारिश से 5 की गई जान, 3 लोग घायल। कुछ लोगों के लापता होने की खबर। नोएडा के 7 निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई। तय सीमा से ज्यादा फीस वसूलने पर जिला प्रशासन ने 1,00,000 का जुर्माना लगाया। कानपुर में नकली हल्दी बनाने वाली फैक्ट्री का पर FSDA का छापा। चावल के टुकड़ों में रंग मिलाकर तैयार हो रहा था हल्दी पाउडर। यूपी में करंट का कहर, अलग अलग हादसों में 3 की मौत। देवरिया में बच्ची, एटा में मासूम और लखनऊ में पुजारी की गई जान। नोएडा मेट्रो हादसे पर NMRC सख्त। M3M बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी। क्रेन की ओवरहेड लाइन में फंसने से मेट्रो सेवा 2.5 घंटे प्रभावित।
अमेठी में युवक हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली, अंतरजातीय विवाह को लेकर हुई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 85 लाख रुपए की लूट मामले में फरार चल रहे 1 लाख के नामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बुजुर्ग की दिनदहाड़े हत्या मामले फरार चल रहे मुख्य आरोपी सहित 3 को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शिक्षा व्यवस्था की बहाली का वीडियो आया सामने, सरकारी स्कूल में सोते दिखे शिक्षक और बच्चे मोबाइल देखने में मगन। यूपी के आजमगढ़ में दर्दनाक हादसा, बिजली के खंभे से टकराकर डीजल से भरा टैंकर पलटा, 3 लोग जिंदा चले। मथुरा में जन्माष्टमी से पहले खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, 5,000 किलोग्राम से ज्यादा मिलावटी पेड़ा और मिल्क केक जब्त। बिहार के वैशाली में रास्ते को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, पुलिस प्रशासन के सामने ही भिड़े दोनों पक्ष। देहरादून में चलती गाड़ी में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। धनबाद के कतरास में जोरदार धमाका, फटी धरती, आधा दर्जन घर जमीन दोज, आसपास रह रहे हजारों लोगों में दहशत। अलवर में नशे की हालत में 25 फीट ऊंचे ऐतिहासिक गुंबद पर चढ़ा युवक, आधे घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नीचे खुद उतरा। कटिहार में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे बच्चे, रेलवे ट्रैक पार करने को मजबूर हैं छात्र, ग्रामीणों ने इलाके में प्राथमिक स्कूल खोलने की मांग की। झारखंड के चतरा में सनसनीखेज मामला, नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला घटना का वीडियो आया सामने, मॉल में फूड आउटलेट पर काम करने वाली एक युवती को पीटते नजर आया युवक, आरोपी हिरासत में। महाराष्ट्र के पालघर में आपस में भिड़े मनसे के कार्यकर्ता, मारपीट में पूर्व शहर अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल। कुल्लू नेशनल पार्क से बाहर निकला चीता, शोपुर के गांव में दहशत, खेतों में दौड़ता दिखा चीता, वन विभाग निगरानी बढ़ाई और ग्रामीणों को सतर्क किया। कौशाम्बी में नकली लिक्विड यूरिया फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस छापेमारी, भारी मात्रा में नकली यूरिया बरामद। 6370 हटने की 7वीं बरसी को लेकर श्रीनगर का लाल चौक सील, प्रस्तावित राजनीतिक प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। सूरत में 3 फुट गहरे गड्ढे में बाइक गिरने से युवक की मौत, हादसा सिटी में कैद, लोगों में प्रशासन खिलाफ आक्रोश। गुजरात के मेहसाणा में नाबालिग ने गाड़ी से आंगन में बैठे 3 लोगों को कुचला, 2 की मौत, कार पर नियंत्रण खोने की वजह से हुआ हादसा। हैदराबाद दिल लाने वाली वारदात, सनकी युवक ने दिनदहाड़े पीछा करके व्यापारी की बेरहमी से की हत्या। अमृतसर पुलिस का एक्शन, आईएसआई समर्थित 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार, तला बड़ा आतंकी हमला। ओडिशा के रायगढ़ में रैगिंग और मारपीट का चौंकाने वाला मामला, रैगिंग की शिकायत करने पर सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को बुरी तरह से पीटा। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस को बड़ी कामयाबी, 6 करोड़ के ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में भ्रष्टाचार के आरोप के बीच महिलाओं ने प्रधान को के पति को कॉलर पकड़कर कार्यालय से निकाला। गाजीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, नीलगाय से टकराने के बाद बाइक सवार की मौत, सड़क पर गिरे दूध कारोबारी को ट्रेलर ने कुचला।

0: इस बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पेपर लीक के खिलाफ अनशन कर रहे देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बातचीत की और महतो ने शर्त रखी थी कि वो वांगचुक के आने पर ही अनशन तोड़ेंगे। लगातार आग्रह के बाद महतो पानी पीने को तो राजी हो गए और वांगचुक ने भरोसा दिलाया कि वो जल्द रांची आकर प्रदर्शन का समर्थन करेंगे। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे रांची से। सत्यजीत, क्या बातचीत हुई इस वीडियो कॉल में?
1: देखिए, लंबी बातचीत हुई, 15 मिनट से ज्यादा देर की बातचीत जो है वीडियो कॉल के जरिए हुई और सोनम वांगचुक ने सबसे पहले यहां अभिवादन किया, छात्रों के कॉज को सही ठहराया और इनसे अपील किया है कि महात्मा गांधी ने भी जब फ्रीडम मूवमेंट चलाया था तो वो नींबू लेते थे पानी के साथ, इन्हें भी नमक, पानी और शहद लेना चाहिए क्योंकि इन्होंने पानी का भी त्याग किया होता, वाटर से भी एब्सटेन कर रहे थे। तो उन्होंने इंसिस्ट किया, बार बार इन्हें बताया कि आत्महत्या करना आपका मकसद नहीं है, सरकार के आत्मा को जगाना जो है वो आपका मकसद है। ऐसे आप अगर करेंगे, पानी भी नहीं लेंगे तो आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा और ये मूवमेंट जो है वो वेवर डायरेक्शन में जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ खुद ये है, इनका वाइटल्स जो है काफी डिक्लाइन किया है, शुगर इनका जो है वो काफी लो हो चुका है, ब्लड प्रेशर जो है वो डॉक्टर्स के निगरानी में है और जो स्टूडेंट्स हैं गजब का इनमें अभी भी जोश देखा जा रहा है। यहाँ देखिए, अभी भी अपने जो लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को उनके लिए जो है लगे हुए हैं यहाँ छात्र कि कैसे जो है ये आगे से अगर फ्रंट से लीड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक रहे हैं। हालांकि इन्होंने मान लिया है, वाटर फास्ट जो इनका था उसको उन्होंने तोड़ा है। पानी पिया देवेंद्र जी, आपने पानी पी लिया?
2: जी पानी इसे हम नहीं पी रहे थे, पानी हम नहीं पी रहे थे, अन्न और जल दोनों छोड़े हुए थे। तो ये जब जानकारी हुई सोनम सर को, सोनम सर को जब जानकारी हुई तो उन्होंने चिंता जताया और संपर्क किया और बोला कि हम भी जब जंतर मंतर में भूख हड़ताल में थे तब जल और नमक का ग्रहण करते थे, आप जल का ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये आपके लिए आत्महत्या करने जैसा है। हमको रिक्वेस्ट किए कि आप आत्महत्या मत कीजिए, आप इस आप सड़ी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़िए, आपका आंदोलन को हम समर्थन करते हैं और आपका आंदोलन का सपोर्ट करते हैं। वो सही बताए कि बहुत अच्छे कर रहे हैं बोले, तो हम टालने का प्रयास किए तो उनको डाउट हुआ कि देवेंद्र थोड़ा जिद्दी है, बाद में जल गर्म करेगा कि नहीं, तो वो पुष्टि के लिए वो वीडियो कॉल में ही बोले कि आप तुमको
1: पानी गर्म की,
2: हाँ दिखाओ, हम अपना आँख से देखेंगे कि तुम पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है। तो हम उनको एक शर्त रखे कि हमारा एक शर्त है, मेरा शर्त आप कबूल करिएगा तभी मैं जल ग्रहण करूँगा। कि आप, मेरा शर्त था कि आप जंतर मंतर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को जिस प्रकार आप सपोर्ट किए और वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट सफल हुआ, तो आप वादा करिए कि आप झारखंड के भी स्टूडेंट 26 साल से परेशान हैं, कि लोग को भी न्याय जब तक नहीं मिलेगी आप सहयोग करेंगे।
0: ठीक है, सपोर्ट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सत्यजीत। वहीं सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक बार फिर ये साफ किया कि उनके राजनीतिक दल के गठन की कोई प्लानिंग नहीं है। दीपके का ये साफ तौर पर कहना है कि इस समय देश में प्रेशर ग्रुप की जरूरत है और सीजेपी प्रेशर ग्रुप की तरह ही काम कर रही है।
3: वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का वो गुस्सा दिख रहा था, जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी, जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टी है उसको तोड़ा जाता है ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से, इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो लोग डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चली, एक सोशल मूवमेंट चली।
0: और जम्मू कश्मीर में आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। इसे लेकर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे ऐतिहासिक दिन बताया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि 7 साल पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 और 35 इतिहास बन गए थे। जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नए अध्याय की शुरुआत हुई, तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव हुए हैं। बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों के अवसर बढ़े हैं। जिन लोगों को दशकों तक उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया, उन्हें सशक्त बनाया गया है। रुकेंगे यहां शुरू से ब्रेक के लिए, टिकते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टेलिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
4: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
5: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
6: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
7: Kuch to baat hai is dil mein.
1: In association with
2: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
1: Vimal, bolo zuban kesri. Hint, bade aaram se.
0: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

राजनीति में हूं, सोचूंगा कि इस पद के लायक हूं या नहीं। पीओजेके में जारी पाकिस्तान के अत्याचार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद का विवादास्पद बयान, कहा वहां के लोगों से हमें क्या मतलब, पाकिस्तानी हुकूमत समझे।

नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। पूरा देश एक सुर में कहता रहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा है उसे वापस लाना है। हमारी सरकार यही कहती रही कि पाकिस्तान से हमारे देश के तभी सुधर सकते हैं जब वो POJK पर कब्जा छोड़ दे और उसे भारत को सौंप दे। लेकिन POJK पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर घमासान होना तय है। तो POJK पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, मोहम्मद रमजान का कहना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं, POJK को लेकर उनका ये बयान अब काफी तूल पकड़ रहा है। एनसी सांसद ने कहा कि अलग देश है POJK, इसको पाकिस्तानी संभाले, वो जाने

0: मोहम्मद रमजान का ये विवादास्पद बयान, पीओजे को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के दायरे में आता है, अलग देश है, वही जाने कि क्या करना है पीओजे के का।
1: आप लोगों की लगातार मांग है स्टेट्यूट को लेकर, कब तक ये मांग रहेगी?
2: हमारी मांग तब तक रहेगी जब तक इस मांग को पूरा किया जाए। आज हम सारे नेशनल अपोजिशन जो है सारी जमा हुई थी यहाँ मकरदवार के सामने, पार्लियामेंट के सामने, यही एक बात कहने के लिए, मरकजी होम मिनिस्टर को याद दिलाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को याद दिलाने के लिए कि जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने वादा किया, जो 5 अगस्त 2019 जब आपने स्टेट को तोड़ा, जब आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को छीना, उस वक्त वादा किया था कि डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन और इलेक्शन के बाद स्टेटहुड करें वापस दे देंगे, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। सर, तमाम नेशनल अपोजिशन आज यही जमा हुए थे मरकजी हुकूमत को याद दिलाने के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो आपने वादा दिया था वो वादा पूरा करो।
1: सर, एक सवाल मेरा पीओके को लेकर है, वहां पर जो इलेक्शन हुए उसके बाद प्रोटेस्टर्स पर जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई, पुलिस कार्रवाई बहुत ज्यादा हुई, भारत सरकार ने भी वो मुद्दा उठाया, आप किस तरह से?
2: हमें इस सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है कि दैट इज अलग कंट्री, ये उस कंट्री का मामला है, हम यहाँ मुल्क के साथ यहाँ पर वाबस्ता है, हम अपने रियासत जो इस विभाग में रह रही है, इस कंट्री में रह रहे हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर को सिर्फ याद दिलाने के लिए आए हैं, आप अपना वादा पूरा करो।
1: पीओके से कोई मतलब नहीं,
2: हमें क्या उसके साथ, वो देखेगी वहाँ की हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट का यह मामला वो देखेगी, यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री वो देखेगी, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं।
1: आपको लगता सर की पीओके जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और वो हमारा है?
2: वो जो भी है वो उनका मसला है, आपको अगर ये क्वेश्चन करना है आप ये उनको क्वेश्चन कर लीजिए। हमें अपने कंट्री से जिन्होंने हमें महरूम रखा स्टेटहुड से, हमें उनसे ये बात कर रहे
1: हमारे देश का हिस्सा है सर,
2: हम उनसे बात कर रहे हैं,
1: पीओके भी तो हमारे देश का हिस्सा है सर।
2: मैं वही कहता हूँ, आप इस सवाल में आप उनसे बात कर लीजिए, हमारे साथ इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपने मुतालबात जो है हम वो बात कर रहे हैं, हमें पीओके के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उन्होंने हमें इस पार्लियामेंट में नहीं भेजा है कि आप हमारे मुद्दा जो है उसको रिप्रेजेंट करो, लिहाजा हम उनके लिए कोई बात नहीं कर सकते।
0: पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, आपने बार बार मोहम्मद रमजान को यह समझाने की कोशिश की कि पीओजे के भारत का हिस्सा है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, लेकिन वो बार बार इस बात पर इंसिस्ट करते रहे कि उस मुल्क से पूछिए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें यहां की जनता ने चुना है। अब इससे वो क्या दर्शाना चाहते हैं, ये जानबूझकर दिया गया बयान है या फिर कोई और मैसेज?

0: देना चाहते?
1: ये देखिए नेहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जानबूझकर दिया गया बयान है, और इससे वो साफ साफ मैसेज देना चाहते हैं कि उनको पीओके से कोई मतलब नहीं है। क्यों? आपने खुद देखा और हमने उनसे कई बार ये बात बोला भी, उनको बताया भी कि सांसद साहब पीओके तो हमारा है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन ये बात सुनने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी रमजान ने हर बार ये कहा कि हमें उससे कोई मतलब नहीं, वहां पे जो भी हो रहा है वो वहां की सरकार देखेगी, यानी पाकिस्तान की सरकार देखेगी। हमें तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुन के भेजा, हम उनकी बात रखेंगे। हमें पीओके के लोगों ने चुन के नहीं भेजा, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, वो दूसरा देश है। तो ये बयान कहीं ना कहीं दर्शाते हैं जो मानसिकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की। और कई बार नया इससे पहले, चाहे वो पुरानी सरकारें भी रही हो, मोदी सरकार भी और बीजेपी के भी कई सांसद है, वो बार बार ये कहते रहे हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। वहां पर चुनाव लड़ने की बात भी सरकार कई बार कह चुकी है, वहां पर जितनी सीट है उसको लेकर भी डिस्कशन हो चुका है। और ये भी सरकार का मत शुरुआत में रहा कि पीओके को जल्द सरकार हासिल भी करेगी। लेकिन उस वहां पर जिस तरह से प्रताड़ना प्रोटेस्टर्स के ऊपर हुई, उसको लेकर ये सवाल जो है वो पूछा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद का। और सबसे अलग बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जिनकी सरकार है जम्मू कश्मीर में, और वहां के लोग भी ये बात कहते रहे हैं कई बार कि पीओके जो है वो हमारा हिस्सा है। वहां पर सरकार होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस तरह की बात करते हैं, जरूर जो है ये बात करने की कोशिश
0: करेंगे। पीयूष लौटेंगे आपके पास, बीच सीधे लिए चलेंगे चंडीगढ़, जहां पर इस वक्त पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो एक तरफ रांची में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उधर पंजाब में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस बल की तैनाती है, इन्हें फांदने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पेपर लीक का मसला है जो पिछले काफी दिनों से ज्वलनशील है, अब अलग अलग शहरों में इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखना होगा कि कौन इन्हें लीड कर रहा है चंडीगढ़ में,
2: किस तरह जो अलग अलग पार्टीज जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, और यहाँ पर एबीवीपी के जो एक्टिविस्ट हैं झंडे हाथ में।
0: तो पेपर लीक पर एबीवीपी का ये प्रदर्शन जारी है चंडीगढ़ में, पुलिस का एक्शन भी लगातार चल रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो रहा है ताकि इस बैरिकेड को क्रॉस ना कर सके ये प्रदर्शनकारी।
2: कार्यकर्ता और स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, और ये देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश है, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश है, एक बार फिर से यहाँ पर बैरिकेडिंग की तोड़ने की कोशिश है, लेकिन पुलिस उन्हें लगातार रिजिस्ट कर रही है। लेकिन वो भी जो एबीवीपी के लोग हैं वो भी आगे से पूरी ताकत लगा रहे हैं, अभी किसी तरह इसको पार किया जाए और आगे जाया जाए। तो सिचुएशन यहाँ पर ये है चंडीगढ़ में कि जो एबीवीपी के लोग हैं वो आगे जाना चाहते हैं विधानसभा की तरफ, क्योंकि विधानसभा का सेशन जो है वो चल रहा है, लेकिन ये जो हैं चंडीगढ़ पुलिस ये लगातार इन्हें यहाँ रोके हुए है। कुछ लोग बैरिकेडिंग के ऊपर भी चढ़े हैं एबीवीपी का झंडा लेकर, एजुकेशन को लेकर जो है यहाँ पर एक हेलो
0: आपको ले चलेंगे विधानसभा, यहाँ पर इस वक्त मुख्यमंत्री बोल रहे हैं।
3: गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें, और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें, इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, जिनके लिए इन सभी मदों में धनराशि की व्यवस्था भी थी, नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका यह आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट इन नई मांगों के साथ साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए, एक्सप्रेस वे के नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने डिमांड की थी उसके लिए भी धनराशि का प्रावधान कर किया है। हमने प्रदेश के अंदर उस तबके के लिए जो अब तक प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ लग करके काम कर रहा था, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोईया, ग्राम चौकीदार, आपके कोटेदार, इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन में भी वृद्धि हो, चर्चा हो, जो लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे उन लोगों को जोड़ने का प्रावधान हो, इन सब पे सदन में चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया सदन में और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, इसमें रुकावट बनी। लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित किया है और पारित करने के साथ ही बहुत शीघ्र इन सभी तबके के लिए, मैंने जो कल भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कमीशन का गठन कर दिया है, एक न्यूनतम मानदेय हरेक आउटसोर्सिंग कर्मी को प्राप्त हो और उसको हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त हो, उसको हम अगले बहुत शीघ्र उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोईया, ग्राम चौकीदार या कोठेदार, इन सब के इंसेंटिव और इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की हुई है और उसको भी हम अब विधानसभा से बजट पारित होने के उपरांत विधान परिषद में पारित होगा, विधान परिषद से पारित होने के उपरांत फिर इस बजट को हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उस तबके तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। समाजवादी पार्टी का यह चरित्र इस तबके को अपमानित करने वाला है जो अल्प मानदेय प्राप्त करने के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए और 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ा करके 18,000 किया है। पहले 3,000 ये मानदेय मिलता था, हमने 3,000 से 10,000 किया, 10,000 से 18,000 किया और उन्हें 5,00,000 रुपए की कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। अनुदेशकों को प्रदेश में 9,000 मिलता था, उन्हें 17,000 रुपए उनका मानदेय किया और उन्हें कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं इनके मानदेय को इनको कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाई, अन्य तमाम तबके के लिए बेहतरीन स्कीम को लेकर के, योजनाओं को लेकर के हम सप्लीमेंट्री डिमांड्स में आए थे। और इन सब के साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित होने वाले उन सभी महापुरुषों के लिए जिनमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिनमें महर्षि वाल्मीकि जी हैं, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में और महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन करने वाले संत ज्योतिबा फुले हैं, साऊ जी महाराज हैं, इन सभी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी हैं, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने इस बजट में चूंकि प्रावधान किया है 407 करोड़ रुपए उनकी मूर्तियों पे छाजन लगाने और सुरक्षित पार्क के लिए बाउंड्री वॉल के लिए इतनी धनराशि की व्यवस्था इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में थी, वह न पास हो इसके लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित किया, लगातार व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन इनके व्यवधान के बावजूद सप्लीमेंट्री डिमांड्स विधानसभा से पारित हुई है। विधानमंडल से पारित होने के उपरांत ये सभी कार्य तय सीमा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे और सामाजिक न्याय के सभी पुरोधाओं को, सभी महापुरुषों को भी सम्मान मिलेगा। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है कि इन लोगों का चेहरा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक और इस पूरे तबके के साथ अन्याय करने वाला रहा है, अनर्थ करने वाला रहा है। समाजवादी पार्टी के इस अलोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को, जो सर्वनाश व्यवहार लगातार सदन में देखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं और प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि डबल इंजन की एनडीए सरकार ने पिछले 9.25 वर्ष के अंदर जिस प्रतिबद्धता के साथ समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य किया है, उसी प्रतिबद्धता के साथ यह अभियान बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सीधे आपके लिए चलेंगे ब्राह्मण सम्मेलन में, जहां पर इस वक्त अखिलेश यादव बोल रहे हैं।
4: ये दूसरों पे आरोप लगाते थे कुछ कुछ, लेकिन हमें खुशी है कि युवाओं ने उन्हें सबक सिखा दिया है और अभी चुनाव में जब वोट पड़ेगा उस समय पता लगेगा कि इनके खिलाफ कितना मतदान होने जा रहा है। केवल ये लोग हर चीज से घबरा जाते हैं। यहां तो मैं अपने तमाम साथियों का धन्यवाद देंगे और विशेष हम अवलेश जी का धन्यवाद देंगे, अवलेश जी का, जो लोग जनेश्वर मेजी से मिलने जाते रहे होंगे उस समय उनके जन्मदिन के अवसर पर, उस समय उन्हें बलिया की पूड़ी और बलिया का खाना खाने को मिलता था। वो जो भी कार्यकर्ता नेता आते थे उनका सम्मान अपने जन्मदिन पर बलिया का भोजन करा के करते थे। मैं अवलेश जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि आज जब जनेश्वर मिश्री का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सभी के भोजन के लिए इंतजाम अगर किसी ने किया है तो हमारे अवलेश सिंह जी का मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ खाने खाने पर कोई नोटिस नहीं मिलेगा, लेकिन बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें। जब बाटी चोखा खाया था उनको तो जानते होंगे उन्हें नोटिस मिल गया था। और कभी कभी कैसे अपमानित करते हैं। आज सुना है कि कोई क्वेश्चन पेपर आया जिसमें अंग्रेजी में न जाने कितने गलत क्वेश्चन पूछ लिए। 100 कुछ क्वेश्चन थे, 135 में गलत कितने पूछे अंग्रेजी में बताओ। क्वेश्चन पेपर में ये पहली बार नहीं हो रहा है। यही जिनको हाथा नहीं भाता उन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा था कि अवसरवादी कौन होता है, याद है कि नहीं? याद है। न केवल अवसरवादी पूछा था बल्कि इन्होंने एक फिल्म भी रिलीज कराई थी, याद है कि नहीं? याद, एक फिल्म रिलीज कराई थी धुरंधर, तो हम लोगों के लिए बनवाई उन्होंने। लेकिन हम कहना चाहते हैं जिन्होंने धुरंधर में जो नोटबंदी की बात कही है, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग जांच करने का काम करेंगे। और उन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी आपको याद है कि नहीं याद है? समाजवादियों ने तो बनवाई थी एक फिल्म, जिन्होंने बनाई फिल्म वो हमें छोड़ के चले गए। उस फिल्म को हम लोगों ने सब्सिडी दी थी, उस फिल्म का नाम था पंडित जी ब्याह कब हुई। लेकिन इन्होंने बताओ कौन सी फिल्म बनाई थी अभी बताओ। हम लोग तो बोल भी नहीं सकते कि क्या नाम रखा था फिल्म का, ये किसने रखा था नाम? ये जो गद्दी पे बैठे लोग हैं, जो सोचो कैमरे के सामने क्या क्या बोल सकते हैं, एक पीड़ित माँ के सामने कैसे क्या कहते हैं कि भाषण मत दो। याद है कि नहीं याद आपको? एक पीड़ित माँ जब अपने दुख को कहने गई सरकार से, तो सरकार ने कहा कि बताओ हमें भाषण दोगी तुम, जो कैमरे के सामने ये बोल सकते हैं वो बताओ कैमरे के पीछे क्या कैसे बोलते होंगे, क्या व्यवहार करते होंगे। और वो तो याद होगा, एक गोरखपुर के प्रचार और शिक्षक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं शिक्षा सभा के, वो जानते होंगे या गोरखपुर के लोग जानते होंगे, एक गुरुजी के साथ व्यवहार क्या किया था सरकार के मुखिया ने।
0: इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टेलिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
8: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
9: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
10: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क.
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना.
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933. बरसों से सरसों.
6: कुछ तो बात है इस दिल में.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क.
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना.
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933. बरसों से सरसों.
6: कुछ तो बात है इस दिल में.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

विधानसभा में हंगामे पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बरसे सीएम योगी, ब्राह्मण सम्मेलन से अखिलेश का पलटवार, कहा इनके पाप का घड़ा भर गया है, सरकार बनी तो धुरंधर में नोटबंदी चैप्टर की करेंगे जांच। संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए राहुल और प्रियंका के साथ किरण रिजिजू की बैठक, डिलिमिटेशन बिल पर हुई चर्चा, नेता विपक्ष का जवाब, पहले गृहमंत्री बयान दे फिर चलेगा सदन, अमित शाह से भी मिले रिजिजू। कॉकरोच जनता पार्टी ने तैयार किया अपना रोड मैप, महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हुई बैठक, अभिजीत दिपके बोले प्रेशर ग्रुप की तरह करेंगे काम, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हर आंदोलन का समर्थन। रांची में भूखे प्यासे अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र की सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर हुई बात, पानी पिया लेकिन प्रदर्शन जारी, सोनम ने कहा जल्द रांची आइए, हम आपके समर्थन की हमें जरूरत,

0: خلافت بیان، کہا وہاں کے لوگوں سے ہمیں کیا مطلب، پاکستانی حکومت سمجھے۔
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach, in association.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज गए हैं न्यूज रूम लाइव में, आप सभी के सामने मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। जैसा होता है वैसा हम आपको बता देते हैं। न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले किन खबरों के बारे में बात करेंगे। संसद में जमकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है, जमकर हंगामा बना हुआ है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू राहुल गांधी से मिले हैं। अब जब ये मुलाकात हुई है तो क्या संसद में जो गतिरोध चला आ रहा है वो खत्म होगा, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ ही हम बात ये भी करेंगे कि चढ़ावा चोरी पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है उस पर अब आगे क्या होने वाला है, क्या 2027 की तैयारी 29 की तैयारी की जा रही है, डिटेल में हम आपको बताएंगे। और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि अखिलेश का भ्रमर दाव 2027 का चुनाव की जो तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं, कितना इसमें सफल हो पाएंगे, क्या तैयारियां की जा रही है, क्या भ्रमर दाव अखिलेश यादव की तरफ से चला जा रहा है। और हम आपको अगली खबर में ये भी बताएंगे कि क्या रांची में जंतर मंतर जैसे हालात हो रहे हैं, वांगचुक की एंट्री अगर आएगी तो वहां पर क्या होगा। आज सोनम वांगचुक की बात हुई, अनशन तो यहां पर खत्म कर दिया लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी है। इन सभी खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दो, बड़ी खबर यह है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, विशेष सत्र को लेकर सूत्रों से खबर है कि इसे बुलाया जा सकता है, संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र संभव है, जो अभी शुरुआती जानकारी आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 13 अगस्त को समाप्त होगा मानसून सत्र, इसके बाद सत्रावसान नहीं होगा, लेकिन ताकि जल्द ही सत्र फिर बुलाया जा सके। सरकार संशोधन बिल पारित कराने के लिए दो तिहाई संख्या जुटाने पर काम कर रही है, दो तिहाई बहुमत होने के बाद बुलाया जा सकता है विशेष सत्र, और 17 अगस्त से 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है इस विशेष सत्र से जुड़ी हुई?
2: देखिए, आज डिलिमिटेशन के बिल को लेकर जो है किरण रिजिजू जो है संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने मुलाकात की है राहुल गांधी से और उनको पूछा कि डिलिमिटेशन पर उनकी पार्टी का क्या रुख है। उसके बाद राहुल गांधी ने भरोसा दिया कि मैं पार्टी में चर्चा करके जो है फाइनली आपको हम पार्टी की तरफ से अपना रुख स्पष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि महिला आरक्षण बिल को इस बार पास कराना जरूरी है। अगर इस सत्र के अंदर पास नहीं हो पाए, यानी अगस्त महीने तक पास नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में जो है फिर जो है डिलिमिटेशन बिल का कोई महत्व जो है वो नहीं रह जाएगा। और इसीलिए सरकार 13 तारीख को, क्योंकि मानसून सत्र समाप्त हो रहा है, तो उसे सत्रवासन ना करके जो है वो 17, 18 और 19 तारीख तक के लिए जो है वो विशेष सत्र के तौर पे जो बुलाया जाएगा उसे स्थगित नहीं किया जाएगा, इस सत्र आह्वान नहीं किया जाएगा। और सरकार की ये कोशिश रहेगी कि जो विपक्षी दल है उनसे बातचीत करे, जिनमें मुख्य रूप से जो है डीएमके और एनसीपी शरद पवार की पार्टी है, उनके साथ जो है सरकार की जो है बैकडोर बातचीत जो है वो चल रही है, जिसके अंदर सरकार की ये कोशिश है कि ये दोनों ही दल जो है वो डिलिमिटेशन यानी परिसीमन बिल पर जो है सरकार के साथ आए, जिससे जो है 2029 का जो लोकसभा चुनाव हो उसमें जो है वो महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू हो पाए लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा के अंदर चुनावों में भी।
0: अच्छा हिमांशु, ये बात बताइए, अभी तक जो हम विपक्ष का रवैया देखते आए हैं, अब जो विशेष सत्र की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, ऐसे में विशेष विपक्ष क्या भूमिका यहाँ पर रह जाती है, क्योंकि जब मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है तो क्या भूमिका यहाँ पर विपक्ष की देखी जा रही है?
2: देखिए, जब पिछली बार इस बिल को लाया गया था तब भी एक विशेष सत्र जो है बुलाया गया था बजट सत्र के बाद, और सरकार की तरफ से कहा गया था कि जितने वो औपचारिक तौर पर ना कह के जो एक बैकडोर बातचीत हुई थी सभी दलों के साथ जो है, उनको ये एश्योरेंस दिया गया था कि सभी राज्यों की जितनी सीटें हैं लोकसभा में और विधानसभा में उनमें 50% का जो है वो बढ़ा दी जाएंगी, जिससे 33% महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो रिजर्व हो पाए। लेकिन तब विपक्ष का ये कहना था कि आप लिखित में जो है वो दीजिए, यानी बिल के अंदर जो है इस क्लॉज को डालिए। तब सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था, गृह मंत्री अमित शाह ने अश्योर किया था सदन के अंदर कि अगर आप कहें तो मैं अमेंडमेंट अभी लेकर आता हूं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। लेकिन तब बात नहीं बनी और सरकार का ये जो बिल है परिसमन बिल वो गिर गया था क्योंकि इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए और सदन के अंदर जो इस वक्त मौजूदा लोकसभा सांसदों की स्थिति है वो 540 की है, 2/3 जो है वो 360 पे बनता है। तो सरकार के पास जो नंबर है वो उतने नहीं थे, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली है। बंगाल के बाद 20 सांसद उनके साथ आए हैं, यूबीटी के 6 सांसद छोड़ के जो है एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, तो सरकार की स्थिति बदली है। ऐसे में डीएमके और
3: श्री रमा शंकर राजभर जी, श्री रमा शंकर राजभर जी, धर्मेंद्र जी, रमा शंकर राजभर जी का पेपर है,
4: ऑनरेबल स्पीकर,
3: उनको समाजवादी पार्टी के लोग बोलने दीजिए, आपके मेंबर पेपर लेकर रहे हैं, आपके मेंबर, ये कौन सी संसदीय परंपरा, रमा शंकर राजभर जी पेपर लेकर रहे हैं, डिंपल आप खड़ी हो, धर्मेंद्र जी, क्या मैसेज हो गया, क्या मैसेज आप दे रहे हैं, आपके पार्टी आइटम नंबर 12, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी,
5: ऑनरेबल चेयरमैन सर, आई राइज टू प्रेजेंट द 28th रिपोर्ट हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन कोल माइंस एंड स्टील एज लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम इन टुडेस लिस्ट ऑफ लिस्ट।
3: थैंक यू। आइटम नंबर 13, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी,
6: चेयरमैन सर, विद योर काइंड परमिशन आई राइज टू on the table of the House statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in 407th report of the Standing Committee on Science and Technology, Forest, Environment and Climate Change on demand for grant 2026-27, demand number 90 pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology. Also, the status of implementation of the recommendations contained in the 408th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change on demands of grant 2026-27, demand number 91 pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research, DSIR, Ministry of Science and Technology. Thank you, Speaker, sir.
3: Thank you. Item number 14, Sri B.L. Verma ji.
0: तो देखिए संसद की कार्यवाही फिर से यहां पर शुरू हो चुकी है, हंगामा हो रहा है, लेकिन गतिरोध खत्म करने के लिए मुलाकात होती है राहुल गांधी की और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बातचीत के बाद विपक्ष और सरकार में गतिरोध की बस पिघलती है या नहीं, अब सबके मन में तो ये सवाल उठ रहा है। आज किरण रिजिजू ने संसद परिसर में नेता विपक्ष राहुल गांधी के रूम में कक्ष में जाकर मुलाकात की और यहां पर सिर्फ राहुल गांधी और किरण रिजिजू नहीं थे, प्रियंका गांधी भी इस बैठक में मौजूद थी और सूत्र ये बता रहे हैं कि परिसीमन बिल पर राहुल गांधी से बात हुई है। अमित शाह के बयान की मांग की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह का यहां पर बयान होना चाहिए, अमित शाह को अपनी बात संसद में रखना चाहिए। और
7: ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई है, क्या नाम है वो, टियर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी, यही परंपरा रही है इस देश की।
8: आर्टिकल 370।
0: तो ये भी आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वजह है जो अमित शाह संसद में नहीं आ रहे, उनको संसद में आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे, गृहमंत्री सदन में क्यों नहीं आते, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष वो सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कि वजह क्या है संसद में नहीं आने की, सदन में नहीं आने की। राहुल गांधी तो सवाल उठाते ही रहे हैं, अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम तो चर्चा को तैयार हैं लेकिन अमित शाह आते ही नहीं है।
9: मांग यही है प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए, वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे, ये कैसा हो जाता है, ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे है, क्या है?
0: सवाल उठाए जा रहे हैं, देखिए सवाल उठाए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे अमित शाह, अब बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा देते हैं।
4: जब संसद का सत्र चल रहा है तो क्या नेता प्रतिपक्ष को संसद के पटल पर एक मजबूत तैयारी के साथ जोरदार चर्चा जो आम जनता के मुद्दे हैं उस पर नहीं करनी चाहिए? अगर नेता प्रतिपक्ष, हमने भगोड़ों की बात करी थी, राहुल गांधी भी एक भगोड़े ही है, संसद से भाग जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है, वो घबराते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अमित शाह जी जब तैयारी से भाषण देंगे, तथ्य रखेंगे, तो राहुल गांधी बगले झांकेंगे। और जब आप संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं तो पूरा देश आहत होता है, और इसीलिए मैंने कहा उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए।
0: अब मौसमी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई, उनसे हम बात करते हैं। मौसमी, विपक्ष में और सत्ता पक्ष में आर पार चल रहा है, लेकिन ये खत्म कब होगा, बातचीत कब होगी, ये कोई नहीं समझ पा रहा। राहुल गांधी कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं अमित शाह कब आएंगे, तो बीजेपी दूसरी तरफ से जवाब दे रही है, पलटवार कर रही है, लेकिन गतिरोध खत्म कैसे होगा, कोई आशंका नजर आ रही संभावना?
10: देखिए आपको बता दें, दो शर्तें राहुल गांधी ने रखी हैं। एक शर्त यह है कि अमित शाह का बयान हो और जवाबदेही हो, दूसरी शर्त उन्होंने रखी है कि चंदा चोरी पर चर्चा हो। उन्होंने ये जिक्र किया है कि समाजवादी पार्टी हमारा एक बड़ा अलाय है, वो भी चाहती है कि चंदा चोरी पर चर्चा हो। आप ये दोनों काम कर लीजिए, उसके बाद जो भी सरकार का कामकाज है उसको आप ले आइए। और इसमें दो कामकाज जो बड़े कामकाज सरकार के पास है, जिसकी चर्चा रिजिजू ने राहुल गांधी से की है, वो FCRA और डीलिमिटेशन बिल है। जाहिर तौर पे डीलिमिटेशन और महिला संशोधन सरकार के लिए एक बड़ा मसला है, और सरकार इसको नहीं चाहती कि ये कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए, क्योंकि उससे महिला आरक्षण पूरा खतरे में आ जाता है। और यही वजह है कि जो हिमांशु कह रहे हैं कि कुछ और दिन सदन की बढ़ाई जा
0: सकती है। मौसमी इस वक्त आपको रोकते हैं, और हेमंत सोरेन, मतलब सीधे आपको झारखंड लिए चलते हैं। हेमंत सोरेन छात्रों की बात कर रहे हैं,
11: और कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है, और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे।
12: कोई कमेटी बनाने की दिशा में आपके तरफ से गृहमंत्री और मंत्री से चर्चा आगे की आपने?
11: अभी हमारे गृहमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई है, आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे भी चर्चा करेंगे। देखिए, सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, और मुझे लगता है सभी लोगों को, या जिनकी मांगे सरकार से है, वो अपनी बातें रख सकते हैं, और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही, और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी।
12: तमाम जो जांच एजेंसी है, छात्रों को उस पर भरोसा नहीं है, स्वतंत्र जांच एजेंसी की मांग कर रहे हैं।
11: बहुत सारी मांगे हैं, अब सबके एजेंसीज हैं, एजेंसी देश में कौन कौन सा है आप सबको पता है, और कौन कौन किस तरीके से काम कर रहा है वो भी पता है, और कैसे आंदोलन के मोर्चे संभाले जा रहे हैं वो भी आपको पता है। आज तो हमने शायद जिस तरीके से इसमें संज्ञान लिया है, सरकार ने जिस तरीके से इसमें अपनी कदम बढ़ाई है, और सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं हमारे कानों तक में है जहां ऐसी घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठाती।
13: सर, मानसून सत्र सुचारू रूप से चले इसके लिए सदस्यों को आपने आश्वासन दिया या कोई विचार
11: विमर्श? सत्र हम लोगों ने बहुत इसीलिए किया है कि सत्र चले।
0: तो हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया कि छात्राएं अपनी बात रखें, सरकार उनकी बातों को गंभीरता से सुनेगी, और अभी गृहमंत्री से बात नहीं हुई है, ये भी हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया। सरकार दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, और विपक्ष पर राजनीति की आरोप तो यहां पर लगते रहे, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों से हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि वो अपनी मांग सरकार से रखें। सत्यजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में बने हुए हैं। सत्यजीत, हेमंत सोरेन भी आते हैं, वो कहते हैं छात्रों से कि छात्रों की बातों को गंभीरता से सरकार सुनेगी, वो अपनी बात रखें। क्या कोई हल निकलता हुआ, रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है सरकार और छात्रों के बीच का?
14: देखिए, अगर हेमंत सोरेन जी कि छात्र आए और अपनी बातों को हमारे सामने रखे, तो आखिर कोई तरीका होना चाहिए इसका, आइस ब्रेक होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, कैसे जाएंगे, किससे मिलने जाएंगे, कोई अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तभी तो ये बातें रखेंगे। ऐसे पब्लिक डोमेन में तो ये अपनी बातें रख ही रहे हैं कि 14 जेपीएससी जो 14वीं जेपीएससी है उसको रद्द कर दे, आप प्रीलिम्स जो हुआ उसको भी खत्म कर दे, मेंस को तो आपने पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है आप सीआईडी जांच कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग है कि उसको सिरे से मतलब खत्म कर दिया जाए, फिर से उसका इश्तेहार निकले, फिर से आवेदन मंगवाया जाए, ये इनकी मांग है। इसके अलावा सीबीआई प्रोब, बार बार ये गलतियां क्यों हो रही है, कैसे ओएमआर सीट का मामला आ रहा है कि जो कम बबल्स को कलर कर रहा है उसका नाम सक्सेसफुल लिस्ट में है, जो नहीं रंग रहा है वो जो है पास हो जा रहा है, जो रंग रहा है वो पास नहीं हो पा रहा है, यानी जो ज्यादा सॉल्व कर रहा है वो पास नहीं हो रहा है। इसके अलावा टीडीपीएल जैसे ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को अगर दी जा रही है काम आवेदन मंगवाने से लेकर रिजल्ट पब्लिकेशन तक, तो ये कैसे पता नहीं था, ये कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। आपने रिजाइन करवा दिया वो ठीक है, लेकिन इसके पीछे कौन है, टाइम एंड अगेन कैसे हो रहा है, हर परीक्षा माइड इन कंट्रोवर्सी क्यों है, ये तमाम सवाल इनके हैं, और इसका सम्मानजनक समाधान ये चाहते हैं, टोटल रिफॉर्म्स चाहते हैं जेपीएससी और जेएसएससी का, अलग अलग इम्तिहान जेएसएससी लेते हैं। यहाँ देखिए, वहाँ देवेंद्र महतो जो है वो लगातार 4 दिनों से भूख हड़ताल पे है, अब इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक भी, उन्होंने इनको कहा कि आप
0: सत्यजीत यही तो बात है, छात्र इतने लंबे वक्त से अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ सरकार की तरफ से हेमंत सोरेन भी आते हैं, वो ये कहते हैं कि सरकार बहुत गंभीरता के साथ बात कर रही है, तो पेच कहां पर फंसा हुआ है, इस देश की जनता ये नहीं समझ पा रही है, जब सरकार भी गंभीरता की बात कर रही है तो आखिर कहां पर वो रोड़ा अटका हुआ है। खैर, जिनकी आप अभी बात कर रहे थे, देवेंद्र महतो जो स्टूडेंट लीडर है, उनका क्या कहना है, वो जरा बयान सुनते हैं उनका।
15: सोनम वांगचुक सर का वीडियो कॉल में बात हुई, सोनम वांगचुक सर हम लोग का आंदोलन को समर्थन करते हुए मनोबल बढ़ाए हैं, और इतना मनोबल बढ़ाए हैं कि अब सरकार को हम लोग हर हाल में पीछे झुकाएंगे, और पिछले 4 दिनों से जल और अन्न दोनों को हम त्याग किए थे, और मेरा स्थिति काफी खराब थी, उन्होंने बहुत ही आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि जल और नमक आप लीजिए, और आपके साथ हम लोग हमेशा सब कोई हैं, और निश्चित तौर पर आप लोग का आंदोलन सफल होगा।
0: देखिए, जंतर मंतर पर सब छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो एक सबसे अहम कड़ी वो सोनम वांगचुक थे। अब यहाँ पर झारखंड में छात्र बहुत लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आज जाकर सोनम वांगचुक ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की, क्या बातचीत हुई छात्रों और सोनम वांगचुक की, वो सुनिए जरा।
16: बेहतरीन तरीका है सरकार में की आत्मा को जगाना, अधिकारियों की आत्मा को जगाना, और उसके लिए आपको जिंदा रहना होगा।
17: मुझे 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं नींद में हुई थी। 26 सालों से कई लगातार पेपर लेके ऊपर ऊपर। कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जब नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
16: अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी। आप बेहोश होंगे, फिर सरकार का अपना निर्णय लेगी।
0: अब देखिए, अब छात्र नेता का कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीप्ते की तरफ से इस छात्र आंदोलन जो है, प्रदर्शन जो है, उसको लेकर अपनी बात रखी गई है, वो भी आपको सुनाते हैं।
18: डेफिनेटली वी विल गो टू झारखंड एंड वी स्टैंड विद द स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग देयर एंड वी सपोर्ट देयर एवरी डिमांड। जो हमारे पहले ही आंदोलन को सफलता मिली है उसके बाद लोगों की हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी है और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है।
19: कार्य मंत्री जी ने बहुत ही भावनात्मक रूप से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अगर सदन को चलने दें तो सदन में हर विषय पर चर्चा करने लेते हैं। ये नहीं, आप कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? ये एग्जाम्पल भविष्य के लिए क्या बनेगा? संसदीय कार्य मंत्री की बात आप माने, आप सदन को आप इस बिल को खाली करें ना। आखिर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि केसी वेणुगोपाल जी ही इज ए वेरी गुड पर्सन बट ही नॉट इनफ कैपेबल टू जस्ट और ऑल ऑफ यू, कि आप उनका कहना नहीं मान रहे हैं। आप केसी वेणुगोपाल जी का कहना तो मानिए, आप बिल तो छोड़िए, तब तो हम सदन चलाएंगे। ये शाम ये नहीं बरसा, आप कृपया इस बिल को खाली करें। आपको नहीं, आखिर जब बिल खाली करेंगे, नहीं हम बिल्कुल समय देंगे, लेकिन जब आप संसदीय कार्य मंत्री की बात माने। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: तो चेयर पर मौजूद जगदम्बिका पाल कहते रहे कि संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनिए, आप लोग वेल तो खाली कीजिए, तब तक बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
22: कुछ तो बात है इस दिल में।
23: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
22: कुछ तो बात है इस दिल में।
24: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप,

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
1: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। ज्यूडिशियरी, मॉडर्न ज्यूडिशियरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
2: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
1: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते हैं कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
3: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
1: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
4: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी।

डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण संशोधन बिल पर 16 अगस्त से विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। दो तिहाई संख्या बल पर हो रहा है काम, सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल गांधी से हुई किरेन रिजिजू की मुलाकात। विधानसभा में हंगामे पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बरसे सीएम योगी, ब्राह्मण सम्मेलन से अखिलेश का पलटवार, कहा इनके पाप का गड़ा भर गया है, सरकार बनी तो धुरंधर में नोटबंदी चैप्टर की करेंगे जांच। पेपर लीक के खिलाफ 12 दिन तक अनशन के बाद सामने आए सीएम सोरेन, का सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। प्रदर्शनकारी छात्र की सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर हुई बात। कॉकरोच जनता पार्टी ने तैयार किया अपना रोड मैप, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हुई बैठक। अभिजीत दीप के बोले, प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हर आंदोलन का समर्थन। और पीओजीके में जारी पाकिस्तान के अत्याचार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद का विवादास्पद बयान, कहा वहां के लोगों से हमें क्या मतलब, पाकिस्तानी हुकूमत समझे।

0: तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह जमकर घमासान इस वक्त मचा हुआ है। सियासी उबाल भी देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त जो आ रही है राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर। विपक्ष घेराबंदी लगातार जारी है। विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। संसद से उत्तर प्रदेश विधानसभा तक विपक्ष का इस वक्त हंगामा देखा जा रहा है। संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध मार्च किया। अब पिछले कुछ दिनों से आप तस्वीरें देख भी रहे होंगे, संसद के बाहर मकर द्वार पर किस तरह से प्रदर्शन किया जाता है, दान पेटी बनाई जाती है। पप्पू यादव भी वहां पर आते हैं, उसके बाद राहुल गांधी भी इसमें शामिल होते हैं, कल डिंपल यादव को भी आपने देखा होगा। तो संसद से उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक एक मुद्दा जो आपको लगातार देखने को मिलेगा और वो मुद्दा है राम मंदिर चंदा चोरी का, जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से यहां पर लामबंद हो गया है। संसद में विपक्ष अड़ा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तो सवाल उठाया गया था और वो ये कह रहे थे कि हर बात पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए, ये संसद में मुद्दा उठा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सियासी युद्ध राम मंदिर श्री राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जारी है। अब इस मुद्दे पर जब विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और विपक्ष को आड़े हाथ लेते हैं।
1: जो लोकतांत्रिक और असंवैधानिक चेहरा है वो एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला है। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें, इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे।
0: तो सियासत में जब एक तरफ से

0: किया जाता है ना, वो भी चुनावी माहौल में, तो दूसरी तरफ से पलटवार करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। अखिलेश यादव ने भी देर नहीं की, तुरंत से पलटवार कर दिया और अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमला करते हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने सरकार को आड़े हाथों लिया, निशाना साधा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सवाल पूछा और अखिलेश यादव उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी को सबक सिखा दिया ये भी कह रहे हैं।
1: कुछ क्वेश्चन थे, 135 में गलत कितने पूछे अंग्रेजी में बताओ? क्वेश्चन पेपर में ये पहली बार नहीं हो रहा है। यही जिनको हाथा नहीं भाता उन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा था कि अवसरवादी कौन होता है, याद है कि नहीं? याद है। न केवल अवसरवादी पूछा था बल्कि इन्होंने एक फिल्म भी रिलीज कराई थी, याद है कि नहीं? याद, एक फिल्म रिलीज कराई थी। धुरंधर तो हम लोगों के लिए बनवाई उन्होंने, लेकिन हम कहना चाहते हैं जिन्होंने धुरंधर में जो नोटबंदी की बात कही है, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग जांच करने का काम करेंगे। और उन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी आपको याद है कि नहीं याद है? समाजवादियों ने तो बनवाई थी एक फिल्म, जिन्होंने बनाई फिल्म वो हमें छोड़कर चले गए, उस फिल्म को हम लोगों ने सब्सिडी दी थी, उस फिल्म का नाम था पंडित जी ब्याह कब हुई। लेकिन इन्होंने बताओ कौन सी फिल्म बनाई थी अभी बताओ? हम लोग तो बोल भी नहीं सकते कि क्या नाम रखा था फिल्म का। और कभी कभी कैसे आप,
0: और देखिए अखिलेश यादव जब सियासी बाढ़ छोड़ते हैं ना तो एक बाढ़ से उनका मन नहीं भरता है। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा भी उठाया और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार को घेर लिया।
1: की धरती पर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा, उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता। बटकों के साथ जो अपमान किया और पूजनीय शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पे कौन सा मुकदमा लगाया था? पॉस्को वाला लगाया था, झूठा मुकदमा।
0: तो पिछले कुछ दिनों से यूपी विधानसभा में काफी कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कल राम मंदिर को लेकर जो पोस्टरबाजी हुई थी उसको लेकर सतीश महाना की तरफ से नाराजगी जताई गई थी। अब आज काफी भावुक सतीश महाना दिखाई दिए।
2: जिस समय वीडियो रिकॉर्डिंग करी जा रही थी मैंने मना किया था, उसके बाद भी उन्होंने मान गए थे, लेकिन परंतु कल जिस प्रकार से जो मेरे मना करने के पश्चात भी जिन माननीय सदस्यों के द्वारा यहां पर यहां की फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डाली, यहां की रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया में डाली, वो अत्यंत निंदनीय है और पीड़ाजनक है। अगर इस प्रकार का आप छवि समाज में देना चाहते हैं कि हम नहीं सुधर सकते, तो सबके लिए इस बात की जिम्मेवारी आती है। कोई भी एक सदस्य अगर इस प्रकार का आचरण करता, मैंने कहा था कि एक समय था कि जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो दो सदस्यों ने वहां पर अपनी हाफ ऊपर कपड़े उतार दिए थे, तो मैंने कहा था वो कपड़े दो लोगों के नहीं, पूरे 403 विधानसभा के सदस्यों के उतरे हैं, मैंने ये बात कही थी। और उसके बाद भी अगर इस प्रकार का आचरण है तो मुझे बहुत दुख है, मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं हूं, अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों के अंतर्गत किया है वो उचित है कि अनुचित है। इसके ऊपर आत्मविलोचन करूंगा और इसका निर्णय शीघ्र करूंगा।
0: और आइए बात अखिलेश यादव के मिशन ब्राह्मण की कर लेते हैं। 2027 में चुनाव है और उसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक कोशिश की जा रही है और इसी के चलते जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव का आज ब्राह्मण दाव आज देखा गया, और कोशिश भी यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा 2027 में हर किसी वर्ग को अपने पाले में लिया जा सके। 10 से 15 फीसदी है, लेकिन बहुत अहमियत यहां पर रखता है 2027 के चुनाव पर नजर है। ब्राह्मण वोट पर अब समाजवादी पार्टी वर्सेज बीजेपी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष, आज क्या खास देखने को मिला जब अखिलेश यादव अपनी बात रख रहे थे और ब्राह्मण वोट बैंक पर उनकी नजर थी?
3: देखिए, सबसे बड़ा बात हिमांशु मैं बताऊं, ये बहुत बड़ा बदलाव कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का है जो आज ब्राह्मण जो सम्मेलन उसमें देखने को मिला। वहां पीडीए की जो परिभाषा है वो ही बदलती हुई नजर आ गई। जहां तक पिछड़ा, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक कहा जाता था, अब पीडी का मतलब पंडित से कर दिया गया। यही नहीं, ब्राह्मणों की बात की जाने लगी कि वह ब्राह्मणों को सबसे बड़ा सम्मान माता प्रसाद पांडे के रूप में विधानसभा में पहुंचा रहे हैं। इसको भी छोड़िए, इससे अलावा उन्होंने बात की कि विकास दुबे तक की बात की थी कि आखिर कैसे जो इनकाउंटर हुआ उसकी उसको सबको पता है, तो हर एक वो बात वो ब्राह्मणों को कह रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी उन्होंने ये बात कही कि जो ब्राह्मण और सुदामा, यानी कि जो कृष्ण और सुदामा का रोल था, वो सबको पता है कैसा है। तो ब्राह्मण की जगह कहीं ना कहीं उन्होंने रखा और सुदामा की जगह ओबीसी वोट बैंक को एक तरीके से, तो ये भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन दिखाया। तो ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो उन्होंने फोकस किया, ब्राह्मणों के साथ जो हुआ वो फोकस किया। चढ़ावा चोरी पर भी साफ तौर से बोलते नजर आए कि वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर योजनाएं लोकार्पण करते रहे, लगातार रिकॉर्ड बनाते रहे, और जब ब्राह्मणों की बात आती है तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे। तो ये सारी चीजें एक नया प्रारूप पीडीए का इस बार ये जरूर देखने को मिला है कि क्या पीडीए जो है वो पंडित जो शुरू किया है वो पीडीए मतलब पंडित शुरुआत हो गई है, और पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी होगी, किस धुरी पर अखिलेश यादव चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा ये मैसेज है इस ब्राह्मण सभा में, और उन्होंने साफ ये भी कहा कि हमारे सभी नेता जो ब्राह्मण हैं वो जो लेकर चल रहे हैं साथ में, हम पीडीए को लेकर चल रहे हैं, तो हम कोई अलग नहीं है, हमने ब्राह्मणों के साथ खड़े होने की बात कही है। तो ये एक दांव कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का एक सबसे बड़ा समीकरण है
0: 2027 के, और उसी के लिए एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, पूरा देश ये जानता है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है वो वापस लाना ही है, भारत की तरफ से वो वापस लाया जाएगा, भारत की सरकार की तरफ से भी कहा जाता है। संबंध पाकिस्तान से तभी सुधर सकते हैं जब पीओजे के भारत के पास आएगा और पाकिस्तान इससे अपना अवैध कब्जा हटा देगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
4: संसद में देश के गृह मंत्री डंके की चोट पर कहते हैं, पीओजे के हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे।
5: मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा।
4: देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि पीओजेके के सुपुर्द करते ही पाकिस्तान से सारे विवाद खत्म हो जाएंगे।
6: कश्मीर, एक्चुअली वी हैव डन आई थिंक गुड जॉब सॉल्विंग मोस्ट ऑफ इट। आई थिंक रिमूविंग आर्टिकल 370 वाज वन स्टेप नंबर वन। Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved.
4: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जब तब चुनौती देते हुए पूछते रहते हैं कि पीओजेके पर हमारा कब्जा कब होगा।
7: चलिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया, आपने हाजी पीर छोड़ा, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा, खुद बताइए ना आप, जब करगिल का वार हुआ क्या वापस लाया? वो मौका था ना, लाते।
4: तो जिस सवाल पर पूरा देश एकजुट है, एक ही सुर और लय में बोलता है, उसी सवाल पर उमर अब्दुल्ला के एक सांसद कुछ ऐसा बोलते हैं कि किसी को भी बुरी तरह चुभ जाए। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रिजवान का ये बयान।
8: हमें इस सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है कि दैट इज अलग कंट्री, ये उस कंट्री का मामला है। हम यहाँ मुल्क के साथ यहाँ पर वाबस्ता है, हम अपने रियासत जो इस विभाग में रह रही है, इस कंट्री में रह रहे हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर को सिर्फ याद दिलाने के लिए आए हैं, आप अपना वादा पूरा करो।
9: यूके से कोई मतलब नहीं,
8: हमें क्या उसके साथ, वो देखेगी वहाँ की हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट का यह मामला वो देखेगी, यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री वो देखेगी, हमें उसके साथ कोई हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं।
9: आपको लगता है सर कि पीओके जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और वो हमारा है?
8: वो जो भी है वो उनका मसला है, आपको आगे ये क्वेश्चन करना है, आप ये उनको क्वेश्चन निकाल लीजिए। हमें अपने कंट्री से जिन्होंने हमें महरूम रखा स्टेटहुड से, हमें उनसे ये बात कर
9: रहे, हमारे देश का हिस्सा है सर,
8: हम उनसे बात कर रहे हैं,
9: पीओके भी तो हमारे देश का हिस्सा है सर।
8: मैं वही कहता हूँ, आप इस सवाल में आप उनसे बात कर लीजिए, हमारे साथ इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने मुतालबात जो है हम वो बात कर रहे हैं, हमें पीओके के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उन्होंने हमें इस पार्लियामेंट में नहीं भेजा है कि आप हमारे मुद्दा जो है उसको रिप्रेजेंट करो, लिहाजा हम उनके लिए कोई बात नहीं कर सकते।
4: आज तक से बातचीत में चौधरी रिजवान बार बार पीओजेके को पाकिस्तान का मसला बता रहे हैं।
8: हमें इस सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है कि दैट इज अलग कंट्री, ये उस कंट्री का मामला है, हम यहाँ मुल्क के साथ यहाँ पर वाबस्ता है, हमें क्या उसके साथ, वो देखेगी वहाँ की हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट का यह मामला वो देखेगी, यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री वो देखेगी, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं, वो उनका मसला है, आपको आगे ये क्वेश्चन करना है, आप ये उनको क्वेश्चन निकाल लीजिए। हमें अपने कंट्री से जिन्होंने हमें महरूम रखा स्टेटहुड से।
4: तो पूरा देश एक आवाज में कहता है कश्मीर हमारा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की पार्टी के सांसद की जुबान से कुछ और ही निकलती है। वो कह रहे हैं कि भारत को पीओजेके के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, भारत को पीओजेके में चल रही क्रूरता को नजरअंदाज कर देना चाहिए, भारत को ये भी भूल जाना चाहिए कि पीओजेके में फर्जी चुनाव करवाकर पाकिस्तान कैसे दुनिया की नजरों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। मियां रिजवान विदेश मंत्रालय के इस स्टैंड को भी शायद भूल गए।
10: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है, वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस प्रकार की खोखले कवायदें वास्तविकता को छिपा नहीं सकती। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें करीबन 90 लोग उसमें मारे गए हैं और कई एक अन्य उसमें घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
4: सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला अपने ही सांसद के ऐसे बयानों का खंडन करेंगे? पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और यहां पर वक्त चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा? गौर नहीं किया हो तो एक बार फिर सुन लीजिए कि उन्होंने किन किन देशों का नाम लिया है। जी हाँ, पहला नाम लिया सऊदी अरब का, दूसरा नाम लिया यूएई का और तीसरा नाम लिया कतर का। सवाल ये है कि पूरी दुनिया में शांति दूत बने घूम रहे पाकिस्तान का क्या हुआ? ट्रंप के बयान ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद शांति वार्ता में पाकिस्तान को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितनी पिछली शांति वार्ता में दी थी। ट्रंप ने ईरान को दिया आखिरी मौका, सबसे बड़ी तबाही से बचने का मौका। वैसे सीज फायर को लेकर ट्रंप को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, लेकिन ट्रंप का साफ कहना है कि उन्होंने ईरान को भयंकर तबाही से बचाने के लिए हमला न करने का फैसला लिया। लेकिन आखिर कब तक? मीडिया ने जब ये सवाल दागा तो जवाब आया कि ये ईरान के लिए आखिरी मौका होगा, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई राहत नहीं। अब देखना यह है कि बातों और मुलाकातों की यह ताकत मिसाइलों को कब तक रोक पाती है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: कानपुर में खाद्य विभाग की तरफ से नकली हल्दी बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा गया और काफी नकली मसाले पकड़े गए हैं। ये बताया जा रहा है कि बिना हल्दी के ये लोग हल्दी बना रहे थे और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है फैक्ट्री में चावल के टुकड़ों में पीला रंग मिलाकर वो हल्दी तैयार कर रहे थे। फैक्ट्री में करीब 6 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया गया है और साथ ही पूरी फैक्ट्री में जांच टीम असली हल्दी की एक गांठ भी नहीं मिली है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: ओह सॉरी।

0: संसद में देश के गृह मंत्री डंके की चोट पर कहते हैं पीओजे के हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे।
1: मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड एक के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा।
0: देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि पीओजेके के सुपुर्द करते ही पाकिस्तान से सारे विवाद खत्म हो जाएंगे।
2: कश्मीर एक्चुअली वी हैव डन आई थिंक गुड जॉब सॉल्विंग मोस्ट ऑफ इट। आई थिंक रिमूविंग आर्टिकल 370 वाज वन स्टेप नंबर वन, देन रिस्टोरिंग ग्रोथ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सोशल जस्टिस इन कश्मीर वाज स्टेप नंबर टू, holding elections which were done with a very high turnout was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you Kashmir solved.
0: Jammu Kashmir ke mukhyamantri Umar Abdullah bhi jab tab chunauti dete hue poochte rehte hain ki POJK par hamara kabza kab hoga.
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

विधानसभा में हंगामे पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बरसे सीएम योगी। ब्राह्मण सम्मेलन से अखिलेश का पलटवार, कहा इनके पाप का घड़ा भर गया है, सरकार बनी तो धुरंधर में नोटबंदी चैप्टर की जांच करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ 12 दिन तक अनशन के बाद सामने आए सीएम सोरेन, कहा सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। प्रदर्शनकारी छात्र की सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बात। कांग्रेस जनता पार्टी ने तैयार किया अपना रोड मैप। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हुई बैठक, अभिजीत दिपके बोले प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हर आंदोलन का समर्थन। और पीओजे में जारी पाकिस्तान के अत्याचार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद का विवादास्पद बयान, कहा वहां के लोगों से हमें क्या मतलब, पाकिस्तानी हुकूमत समझे।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में शामिल हुए नए सांसदों से मुलाकात की है। अब इसमें वो सभी सांसद शामिल हैं जो हाल में बीजेपी में शामिल हुए। इसमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल समेत वो सभी राज्यसभा के सांसद थे जो कि आम आदमी पार्टी से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए। ये वो तस्वीर भी है जिसमें चाहे राघव चड्ढा हो, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत साहनी, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, तो ये तमाम सांसद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। एक ग्रुप फोटो भी ली गई है जिसके हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और अब सुपरफास्ट अंदाज में शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबर की। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का संदेश, बोले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास का नया अध्याय शुरू हुआ, विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे, आज पीडीपी का पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी बनाएगी ब्लैक डे, सुरक्षा का इंतजाम। संसद गतिरोध के बीच किरण रिजिजू और राहुल गांधी की अहम बैठक, बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा भी नहीं मौजूद, गतिरोध खत्म करने पर चर्चा। संसद गतिरोध के बीच राहुल गांधी और किरण रिजिजू की बैठक खत्म, रिजिजू बोले बातचीत सकारात्मक रही, आगे सब कुछ सामान्य होने की उम्मीद है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना पूछा, युवाओं पर अत्याचार और राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर संसद में जवाब क्यों नहीं दे रही सरकार। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी, विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों का विरोध। दिल्ली में विपक्ष का विरोध मार्च, गांधी स्मृति से मकर द्वार तक निकले नेता, केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन। एफसीआरए विवाद पर बीएचपी नेता विनोद बंसल ने अमेरिकी सांसद को दिया जवाब, कहा कि अफवाह न फैलाएं, विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संसदीय समिति सख्त है, जकरबर्ग को 3 दिनों का अल्टीमेटम, पीएम मोदी के वीडियो मामले पर माफी और कार्रवाई की मांग, नहीं तो सेफ हार्बर खत्म करने की चेतावनी। पटना में बिहार बीजेपी की समीक्षा लगातार जारी, बांकीपुर हारपुर मंथन, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और सिम सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद। अमृतसर में पेट्रोल बम वाले मॉड्यूल से सनसनी केस, खुलासा, आईएसआई से आरोपियों का कनेक्शन, कमिश्नर बोले कि प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर गए, वहां नाकाम हो गए थे मनसूबे। रांची में जेपीएससी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी, अनशनकारी देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर की बात, उसके बाद पानी पीकर अनशन किया समाप्त। सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार छात्रों के आंदोलन पर तोड़ी चुप्पी, कहा कि जेपीएससी मामले में सरकार की पहली नजर, निर्णय समय पर दिखेगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में जेपीएससी मुद्दे पर घमासान के असर, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी परीक्षा धांधली का मामला उठाकर सोरेन सरकार को घेरेगी। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने एक बार फिर से सोरेन सरकार पर बोला हमला, आंदोलन को सरकार अनसुना कर रही है, सीआईडी से जांच करवाकर मामले की लीपापोती कर रही है। अयोध्या में महंत रामचंद्र दास परमहंस की पुण्यतिथि पर होगा संत समागम, 14 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी अखाड़ा पहुंचकर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। लखनऊ में विधानसभा परिसर में सपा का प्रदर्शन, पॉटिको में जुटे समाजवादी पार्टी के विधायक, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, चंदा चोरी को लेकर घेराव। सीएम योगी को धमकी देने वाला आरोपी बरेली से गिरफ्तार, पुलिस ने कार्रवाई करके आरोपी को कोर्ट में किया पेश, मामले की जांच जारी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान ओवरसाइज डीजे पर पुलिस की कार्रवाई, गाइडलाइन तोड़ने पर डीजे का 50,000 का चालान काटा गया, बॉर्डर पर जांच भी। कौशाम्बी में लेखपालों पर एफआईआर, पुलिस से अभद्रता और सरकारी काम में बाधा का आरोप, 4 नामजद समेत 10 लेखपालों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस कर रही है जांच। अयोध्या में राम दरबार दर्शन के लिए विशेष पास की व्यवस्था खत्म, अब श्रद्धालु सामान्य दर्शन कतार में सीधे प्रथम तल पर राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। चढ़ावा चोरी पर गतिरोध जारी, विपक्ष कर रहा है बहस की मांग, योगी सरकार ने कहा कि बहस की जरूरत नहीं, एसआईटी जांच चल रही है। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए अखिलेश यादव का बड़ा सियासी दावा, जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम किया आयोजित, अखिलेश यादव ने पुष्पांजलि अर्पित की। आज भाजपा दौरे पर राहुल गांधी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिसर्च घोटाले के दावे पर एफआईआर दर्ज, भ्रामक वीडियो फैलाने के आरोप में यूट्यूब चैनल मोहित सर गुरुकुल के खिलाफ कार्रवाई। मदरसा शिक्षा के पर योगी सरकार का फैसला, कामिल फाजिल डिग्री की मान्यता होगी खत्म, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला। सीएम योगी का सपा पर हमला, कहा कि सदन में हंगामा करके असली चेहरा दिखाया, सपा ने युवाओं, किसानों, महिलाओं, गरीबों के हितों पर चर्चा ही नहीं होने दी। अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, बोले कि पीडीएम में
पीड़ित का भी है और पंडित का भी है। जितना पंडितों को सताओगे पीडीए उतना मजबूत होगा। राहुल गांधी का आरएसएस बीजेपी पर हमला, कहा छात्र आंदोलन को लेकर यह खतरनाक था, आरएसएस की विचारधारा खतरनाक है। गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर हमला, बोले कि विपक्ष के नेता संसद चलने नहीं दे रहे, बोले कि राहुल गांधी देश को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन बिल पर जल्द विशेष सत्र संभव, 17 अगस्त से 3 दिनों तक विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पहली बार आए सामने, जगतगुरु परमहंस आचार्य के अयोध्या न छोड़ने की अपील पर सहमति जताई।

0: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार पर कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल का हमला, सोशल मीडिया पर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के कांग्रेस के अभद्र टिप्पणी पर पहली बार प्रतिक्रिया, कहा कि उचित समय आने पर करारा जवाब देंगे। पीओजेके को लेकर एनसी सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान का विवादित बयान, बोले कि पीओजेके अलग देश है, बयान पर सियासी बवाल। छत्रपति संभाजीनगर में आज सीजेपी की दो दिवसीय रणनीतिक बैठक शुरू, देशव्यापी अभियान की रूपरेखा पर मंथन, दीपके ने राजनीतिक पार्टी बनाने से किया इनकार। पंजाब विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग पर यूथ कांग्रेस और एबीवीपी का घेराव। दिल्ली में एसआईआर की समय सीमा फिर से बढ़ाई गई, अब 17 अगस्त तक चलेगा घर घर सत्यापन अभियान। प्रारूप मतदाता सूची 24 अगस्त को प्रकाशित होगी, जबकि दावे और आपत्तियां 24 अगस्त से 23 सितंबर तक स्वीकार की जाएंगी। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताने वाले बयान पर निंदा की, सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा बताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए मदनी ने इसे आजादी के इतिहास और भारतीय संविधान का भी अपमान बताया। पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना आज वर्चुअली करेंगे संबोधित दिल्ली में कार्यक्रम पर, बांग्लादेश ने जताई आपत्ति, बांग्लादेश में उनके भाषण के प्रसारण पर रोक। उत्तराखंड में कल से चक्राता था मार्ग भूस्खलन के चलते बंद, सैकड़ों वाहन फंसे। मध्य प्रदेश के विदिशा से खौफनाक वीडियो आया, उफनती नदी के बीच में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को बच्चे मजबूर हैं। प्रयागराज में झमाझम बारिश, शहर के कई इलाकों में बदरा बरसे और मौसम सुहाना, लोगों को राहत। महाराष्ट्र के नासिक में नदी पर बने अस्थायी लकड़ी के पुल से संतुलन बिगड़ने के कारण नदी में बहा व्यक्ति, बाढ़ के कारण पहले भी 4 बार पुल बह चुके हैं। राजस्थान के करौली में जलभराव से बिगड़े हालात, पक्के रास्तों के अभाव के कारण लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं, कीचड़ के बीच में शव यात्रा भी निकाली गई। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में जोरदार बारिश के चलते बिगड़े हालात, मुख्य बस स्टैंड के टापू बन जाने से यात्रियों को परेशान होना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते बड़ी आफत, सिरमौर में नेशनल हाईवे पर बना 50 से 60 साल पुराना पुल भारी बारिश के बाद गिर गया। बंगाल के पश्चिम बर्धमान में बारिश के चलते पानी कबाड़ी, मार्केट और जल निकासी की मांग को लेकर मजदूरों की हड़ताल भी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारी बारिश के चलते अंडरपास, मुख्य बाजार जलमग, सड़कों पर पानी भरा, यातायात प्रभावित। देहरादून में भारी बारिश के चलते तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास नदी उफान पर, प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई। बिहार के वैशाली में रास्ते को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प, पुलिस प्रशासन के सामने ही भिड़े दोनों पक्ष, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मामला शांत। देहरादून में चलती गाड़ी में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। धनबाद में कतरास में जोरदार धमाका, फटी धरती, आधा दर्जन घर जमींदोज, आसपास रह रहे हजारों लोग दहशत में। राजस्थान के अलवर में नशे की हालत में 25 फीट ऊंचे ऐतिहासिक गुंबद पर चढ़ा युवक, आधे घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट देकर खुद ही नीचे उतर गया। कटिहार में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे बच्चे, रेलवे ट्रैक पार करने को मजबूर है छात्र, ग्रामीणों ने इलाके में प्राथमिक स्कूल खोलने की मांग की है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ निजी स्कूलों पर कार्रवाई, तय सीमा से ज्यादा फीस बढ़ाने पर जिला प्रशासन ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कानपुर में नकली हल्दी बनाने का मामला सामने आया, फैक्ट्री पर एफएसडीए का छापा, चावल के टुकड़ों में रंग मिलाकर हल्दी बना रहे थे। यूपी में करंट का कहर, अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत, देवरिया में बचे 8 में मासूम, लखनऊ में पुजारी की मौत। नोएडा मेट्रो हादसे में एनएमआरसी सख्त है, M3M बिल्डर को कारण बताओ नोटिस, क्रेन की ओवरहेड लाइन में फंसने से मेट्रो सेवा 2.5 घंटे तक प्रभावित और उपकरणों को नुकसान भी। अमेठी में युवक हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली, अंतर जातीय विवाह को लेकर हत्या हुई। यूपी के हापुड़ में 85 लाख रुपए की लूट मामले में फरार चल रहे 1 लाख इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ कई बड़े केसेस पहले से थे दर्ज। यूपी के ललितपुर में बुजुर्ग के दिन दहाड़े हत्या मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, गोली कारतूस बरामद। यूपी के कन्नौज में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का वीडियो आया सामने, सरकारी स्कूल में क्लासरूम में सोते दिखे शिक्षक और बच्चे मोबाइल फोन को देखने में मग। यूपी के आजमगढ़ में दर्दनाक हादसा, बिजली के खंभे से टकराकर डीजल से भरा टैंकर पलटा, आग लगने से 3 लोग जिंदा जले। मथुरा में जन्माष्टमी से पहले खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, 5000 किलोग्राम से ज्यादा मिलावटी पेड़ा और मिल्क केक जब्त, नष्ट किया गया। झारखंड के चतरा में सनसनीखेज मामला आया सामने, नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी, ग्रामीणों ने पीट पीट कर उसे मार डाला। यूपी के गाजियाबाद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, मॉल में फूड आउटलेट पर काम करने वाले युवती को पीटते नजर आए युवक, आरोपी हिरासत में। महाराष्ट्र के पालघर में आपस में भिड़े मनसे कार्यकर्ता, मारपीट में पूर्व शहर अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल। कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकल गए चीता और श्योपुर के गांव में से दहशत, खेतों में दौड़ता दिखाई दिया चीता, निगरानी बढ़ाई गई। कौशाम्बी में नकली लिक्विड यूरिया फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस छापे में बड़ी मात्रा में नकली यूरिया बरामद, संचालक मौके से फरार। अनुच्छेद 370 हटने की सातवीं बरसी को लेकर श्रीनगर का लाल चौक सील, प्रस्तावित राजनीतिक प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ी। सूरत में 3 फुट तक गहरे गड्ढे में बाइक गिरने से एक युवक की मौत हो गई, घटना सीसीटीवी में कैद, प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा। गुजरात के मेहसाणा में नाबालिग ने गाड़ी से आंगन में बैठे 3 लोगों को कुचल दिया, 2 लोगों की मौत, गाड़ी पर से नियंत्रण खोने की वजह से हादसा हुआ। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली घटना, सनकी युवक ने दिन दहाड़े पीछा करके व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी, घटना के बाद लोगों में आक्रोश। अमृतसर पुलिस का एक्शन, आईएसआई समर्थित 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार, टला बड़ा आतंकी हमला। ओडिशा के रायगढ़ में रैगिंग और मारपीट का चौंकाने वाला मामला, रैगिंग की शिकायत करने पर सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को बुरी तरह पीटा। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्कर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस की कार्रवाई, 6 करोड़ के ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान में भ्रष्टाचार के आरोपी के बीच महिलाओं ने प्रधान के पति को कॉलर से पकड़ा, कार्यालय से निकाला और प्रधान ने आरोपों से इनकार किया। गाजीपुर में दर्दनाक हादसा, नील गाय से टकराने के बाद से बाइक सवार की मौत, सड़क पर गिरे हुए ट्रेलर ने बाद में कुचल दिया। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर उसे भव्य बनाने की तैयारी, 9 से 10 अगस्त तक कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेगी यूपी सरकार। कांवड़ यात्रा को देखते हुए अलर्ट मोड पर रेलवे, दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन में वॉर रूम बनाया गया, तमाम रेल स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे। सावन के महीने में अलग अलग कांवड़ यात्रा खींच रहे हैं लोगों का ध्यान, सहारनपुर में निकली बाहुबली वाली कांवड़ 9 फीट ऊंची है और हनुमान का बाहुबली स्वरूप इसमें है। बिजनौर के कांवड़ ने पेश की सेवा भाव की मिसाल, एक तरफ 90 साल की दादी, दूसरी तरफ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा को निकाल रहा पोता। मुजफ्फरनगर पहुंची मोदी और योगी के अनोखे कांवड़, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बड़े बड़े फोटो लगे इस कांवड़ ने खींचा ध्यान। शतरंज के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा सेंट लुइस टूर्नामेंट के रैपिड में टॉप पर है, 18 में से 12 पॉइंट्स जुटाए, अब 18 ब्लिट्स मैचों में खिताब पर फैसला। प्रज्ञानंदा ने अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में हासिल की है बड़ी सफलता और इस प्रदर्शन से साल के अंत में होने वाले ग्रैंड चेस टूर फाइनल में उनकी जगह बनाने की उम्मीदें मजबूत। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को मिले 9वीं सीट और 17 अगस्त से नई दिल्ली में खेला जाएगा टूर्नामेंट। 21 अगस्त को लुसाने डायमंड लीग में उतरेंगे जैवलिन थ्रो और नीरज चोपड़ा, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर अपने नाम किया। पूर्व क्रिकेटर जहीर खान ने लंका प्रीमियर लीग में टीम खरीदी और जाफना फ्रेंचाइजी के को ओनर बन गए हैं जहीर खान। नागिन बन का बॉक्स ऑफिस पर जाने की तैयारी में श्रद्धा कपूर, फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी, जल्दी शूटिंग होगी शुरू, श्रद्धा ने इस रोल के लिए जताई खुशी। फिल्म मिर्जापुर दी मूवी का पहला गाना 2 नंबर रिलीज, 4 सितंबर को रिलीज हो रही फिल्म। जाने तू या जाने ना के साथ फिल्मों में कदम रखने वाले इमरान खान लगभग 1 दशक के बाद बड़े पर्दे पर करेंगे वापसी अधूरे हम अधूरे तुम नाम के एक रोमांटिक कॉमेडी में आएंगे नजर। तब उन्हें पर्सनैलिटी राइट्स मामले में खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, बिना अनुमति अपने नाम फोटो के इस्तेमाल पर रोक लगाने की उठाई मांग। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने रचा इतिहास, सिर्फ 5 दिन में ही $1 बिलियन की कमाई। बाद ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने मुख्य सिलोहा मनवाकर लौटी भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम की 5 महिला भारतीय बॉक्सर्स रिंग में उतरी और चैंपियन बनकर निकली। प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास और अरुंधति चौधरी ने मिलकर वो कर दिखाया जो किसी भी भारतीय मुक्केबाजी टीम ने पहले कभी नहीं किया था। और वेल्टरवेट, फ्लाईवेट, फेदरवेट और लाइटवेट श्रेणियों में 5 गोल्ड मेडल जीतकर एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड बनाया। कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियंस ने आज तक के साथ खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं।
1: मैं आपसे सबसे पहले शुरू करती हूँ। आपके लिए इसलिए इजी नहीं था क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही थी मुझे पता चला आपको कितना मैनेज करना पड़ता है जब इन टर्म्स ऑफ योर ओन वेट और जब दूसरों से भी कंपटीशन करना पड़ता है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे रहता है एक यंग लड़की में जो कहती है बॉक्सिंग भी करनी है, दूसरों को डिफीट भी करना है और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है।
2: जी मैंने 54 केजी खेलती थी। हाँ। तो अभी मैंने कट करके 51 में खेल रही हूँ मैं। तो एक ये स्ट्रगल है कि वेट को मेंटेन करके रखना, भूखे प्यासे, मतलब अगले दिन फाइट होती है तो पूरे दिन हम कुछ नहीं खाते उससे पहले वाली जो दिन होता है, फिर पूरी रात प्यासा रहना पड़ता है और फिर मॉर्निंग में बाउट हम खेलते हैं और उसके बाद फिर ये कॉमनवेल्थ गेम्स का जो प्रेशर था, एक जो हम खेलने जाते हैं तो जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अलग होता है।
1: और आपने एग्जिस्टिंग चैंपियंस को डिफीट किया।
2: हाँ जी, तो मतलब जो फर्स्ट वाली बाउट थी तो उसमें तो मुझे बहुत ही ऐसे फील हुआ कि ओ माय गॉड कि मतलब कितना क्राउड है, इतना प्रेशर है, लेकिन फिर बाउट वाइज बाउट अच्छा होता गया। और फिर मेरे ऊपर ये भी प्रेशर था कि मुझे गोल्ड मेडल ही जीतना है क्योंकि मैंने ट्रायल्स में इतना अच्छा परफॉर्म किया था, फिर अपनी उस परफॉर्मेंस को मेंटेन करना था।
1: जैस्मिन 40 दिन पहले आई थिंक जो बाउट के आपकी तबीयत बहुत खराब थी, तो क्या आपको एक पॉइंट पे लगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स तो गया
3: था? मैम उस टाइम पे तो थोड़ा सी ये चल रहे थे कि पता नहीं क्या ही होगा, मतलब बिल्कुल कितने दिन बचे हुए थे, 22 मतलब इतना 20-25 दिन ही बचे हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने में। और मैं ऐसे पीछे में मतलब एक मंथ तक मैंने ट्रेनिंग भी नहीं की है, मैं ऐसी बीमारी चलती आ रही हूँ लगातार कंटिन्यू, और फिर वो एंटीबायोटिक भी मेरी 14 डेज तक चली थी।
1: लेकिन फिर लास्ट मिनट पे आपने खींच लिया।
3: फिर लास्ट मिनट पे फिर 1 जुलाई से ही मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ाया। पहले थोड़ा वार्म अप फेज में गए 2-3 दिन और फिर हमारा बेलफास्ट कैंप लग गया, वहाँ पे जाके मैंने अपनी फर्स्ट स्पारिंग की जैसे तैसे, मतलब थोड़ा बहुत कि ठीक है। तो मैं पूरा प्रॉपर फिट तो नहीं थी यहाँ पे, लेकिन वही था कि मेरे को भी बोला भी गया था कि अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट नहीं करना है, जो टेक्निकल गेम है जब जरूरत है वहाँ पे
1: कॉन्फिडेंस में काम आता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल मैम, और उसकी मतलब ट्रेनिंग हमारी जो मेंटल का था वो प्रिया वृंदा मैम है तो उनके साथ काम करके
1: मेंटल कॉन्फिडेंस अपार्ट फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेंथ यू कैन पुल ऑफ इवन इफ यू आर सुपर अनवेल। तो कौन सी एज में स्टार्ट किया आपने प्रिया, और कब आपको लगा कि अब मुझे भी लेजेंड्स में अपना जो है नाम दर्ज करना है?
4: मैंने 10 साल की एज में बॉक्सिंग की शुरुआत की थी, तो उस समय मैं बहुत शरारती थी, तो ऐसे होता था कि कोई गेम कर ले, मेरे घर को मुझे गेम्स में डाल दिया। हाँ। शरारती है
1: तो गेम्स तो बहुत कर ली। बॉक्सिंग में कहाँ से आ गई?
4: तो लड़ाई तो बॉक्सिंग में होती है।
1: उसका जोश था,
4: उसका जोश था। फिर बाद में ऐसे ही विजेंद्र बॉक्सर रहे, उनका नाम सुनने में आया कि वो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, तो उसके बाद ऐसे हुआ कि हमें विदेश के लिए मेडल लेकर आना।
1: वेल डन। अरुंधति आप तो कोटा से आ रहे हो, यू शुड हैव बीन डूइंग एन IIT और सम इंजीनियरिंग कोर्स और समथिंग एल्स या कोचिंग सेंटर में स्क्रब लगे हुए होते, व्हाट मेड यू थिंक कि नहीं मुझे हटना है बाबा मम्मी मुझे कुछ और करना है, और प्रॉब्लम हुई क्या उसमें?
5: नहीं, सेम था कि स्कूल में जैसे बॉयज़ को साथ लड़ाई करना, पिट के आना, और फिर प्रिंसिपल का घर पे फ़ोन आना कि वी आर सस्पेंडेड फॉर 1 वीक बिकॉज ये बहुत मस्ती करती है। तो पापा तो चाहते ही थे कि हाँ IIT करूँ, लेकिन फिर मेरा जो नेचर है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बोला कि ठीक है चूज़ अ सोलो गेम वेयर यू कैन परफॉर्म बाई योर सेल्फ। तो फिर उन्होंने गेम बताए 2-3 जिसमें मुझे बॉक्सिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगा सिर्फ सुनने में, और उसी की वजह से
1: ऐसा कैसे लड़की को लग रहा है कि मैं बॉक्सिंग भी कर सकती हूँ, यूजुअली नहीं सोचती है,
5: नेचर ही ऐसा है मैम, मतलब मारने में मजा आता है।
1: गुड गुड गर्ल्स, मतलब जो हम लोग को गुड गर्ल्स बोले होते हैं वो ठीक नहीं है कि आराम से बैठो। गूंस गर्ल्स,
5: यस,
1: नाइस वर्ड, दिस इज न्यू, गूंस गर्ल्स,
5: यस।
1: प्रीति ये मुझे एक चीज बताओ, ये जो कॉन्फिडेंस आप पांचों में देख रहे हैं, 2024 में आपकी भी तबियत बहुत खराब हुई थी, कुछ इवेंट्स भी आपने मिस किए थे, तो जब दूसरे प्लेयर्स को आप देखते हो वो इवेंट्स मिस हो, वो जीत रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ, कैसे अपने आप को एक स्पोर्ट्स पर्सन कहता है कि नहीं मैं बाउंस बैक करूंगी?
6: यस डेफिनेटली, ये बहुत चैलेंजिंग रहता है कोई भी फेज, वो इंजरी फेज है या हम बीमार हैं, जस्ट बिफोर कॉम्पिटिशन और इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जाने से पहले अगर हम अपना ट्रेनिंग में बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक चैलेंज रहता है। बट आई थिंक मेंटली हमें उस चीज़ को ज़्यादा कवर अप करना चाहिए उस टाइम पे। अगर हम उन चीज़ों को मेंटली ट्रेन करेंगे, अपने माइंड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कवर अप कर लेते हैं फिजिकली एट द एंड। और ओलंपिक में भी मेरे साथ यही हुआ था, मैं थोड़ा बीमार थी, बट मेंटली मैं अपना पूरा ट्रेनिंग कर रही थी. यस डेफिनेटली.
7: वो मोमेंट जो होता है जब आपको पता है मैं जीत गई हूँ, ये गोल्ड मिल गया मुझे, वो मोमेंट कैसा था? क्या आप उसमें मतलब खुद कूदते हो या आपको रिस्ट्रेन करना होता है कि नहीं कीप योरसेल्फ काम, अनाउंस होने दो?
3: रैंडम इमोशन निकलता है, मतलब खुद भी नहीं पता होता है कि अभी कैसा इमोशन निकलने वाला है, अपने आप आ जाता है.
0: खबरें लगातार जा रहे हैं, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर. आप देखते रहिए आज तक.
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
2: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
3: चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
7: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: इन एसोसिएशन विद
13: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
12: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
14: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: In association with
5: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
4: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
6: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
7: His two biggest blunders have defined Indian politics since he responded to the Shahbano judgment.
8: He didn't quite understand the interplay between judiciary, society, Muslims, personal law. Shahbano was a disastrous decision.
7: That made the Hindus very angry. Then he made other mistakes with the unlocking of the doors at Ayodhya, the Shilanyas, and that's how the BJP rolled.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण संशोधन बिल पर 16 अगस्त से विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। दो तिहाई संख्या बल पर हो रहा है काम। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी से हुई रिजिजू की मुलाकात। विधानसभा में हंगामे पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बरसे सीएम योगी। ब्राह्मण सम्मेलन से अखिलेश का पलटवार, कहा इनके पाप का घड़ा भर गया है। सरकार बनी तो धुरंधर में नोटबंदी चैप्टर की जांच करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ 12 दिन तक अनशन के बाद सामने आए सीएम सोरेन, कहा सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। प्रदर्शनकारी छात्र की सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर हुई बात। कांग्रेस जनता पार्टी ने तैयार किया अपना रोड मैप। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हुई बैठक। अभिजीत दिपके बोले, प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हर आंदोलन का समर्थन। और पीओजेके में जारी

0: हमें क्या मतलब पाकिस्तानी हुकूमत समझे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की।
0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले बात करते हैं संसद के विशेष सत्र को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर की। परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। 3 दिनों तक चलने वाला ये विशेष सत्र 16, 17 और 18 अगस्त को बुलाया जा सकता है। सरकार संशोधन बिल पारित कराने के लिए 2/3 संख्या जुटाने पर काम कर रही है, उसके बाद सत्र को बुलाया जा सकता है। वहीं 13 अगस्त को संसद का मानसून सत्र खत्म हो रहा है। हमारे साथ इसी खबर पर इस समय हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये भी बातें चल रही थी कि मानसून सत्र में ही मुमकिन है कि ये बिल सामने आए, लेकिन शायद संख्या न होने के कारण सरकार इस समय इससे बची। दूसरी चीज, जिस तरह का हंगामा होते रहा उसके बाद क्या हम ये समझ सकते हैं कि केवल संख्या बल, यानी कि अभी तो विपक्ष से बातचीत भी हम देख रहे हैं, राहुल गांधी से बातचीत देख रहे हैं किरण रिजिजू की, तो एक तो शांति, दूसरी संख्या।
2: देखिए श्वेता, एक क्योंकि सरकार के पास संख्या का अनुमान हो गया है और इसीलिए जो है विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उनसे आज जो है किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने मुलाकात की और उनसे डिलिमिटेशन पर उनसे समर्थन की बात कही, कहा कि सरकार डिलिमिटेशन बिल चाहती है। तो अब देखना यह है, राहुल गांधी ने जो हमको सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उनको कहा मैं अपनी पार्टी के अंदर और विपक्ष के सभी दलों से बात करने के बाद आपको रुख साफ करेंगे हम, और उसके बाद ही जो है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सरकार जो है वो 16 अगस्त से जो है 3 दिन का जो है विशेष सत्र बुला सकती है डिलिमिटेशन के लिए, जिस तरीके से बजट सत्र के बाद जो है 16-17 अप्रैल को बुलाया गया था, तब इस बिल को जो है लोकसभा के अंदर ये बिल पास नहीं हो पाया था क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है और मौजूदा सदन के अंदर जो सांसदों की संख्या है लोकसभा में वो 540 है, ऐसे में 360 सांसदों की संख्या जो है वो चाहिए, तब सरकार के पास 298 नंबर्स थे और ये बिल जो है वो गिर गया था। लेकिन अब परिस्थितियां जो है वो बदली है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी में टूट हुई, 20 सांसद जो है एनसीपीआई में आए, वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, उसके अलावा यूबीटी के जो सांसद हैं 6 वो टूटकर एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, तो ऐसे में 26 सांसदों का समर्थन सरकार के पास नया आया है और सरकार को ये उम्मीद है कि डीएमके और एनसीपी शरद पवार वो इस बिल का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि लिखित के अंदर अगर सरकार दे कि लोकसभा की जिन राज्यों में जो स्थिति है और विधानसभा में अगर उस पर 50% का जो
0: बढ़ोतरी
2: है वो होगी तो वो समर्थन कर सकते हैं, और इसी पर सरकार जो है वो विचार कर रही है और इसीलिए विपक्ष के सभी दलों से जो है सरकार की बातचीत जारी है। आज एलओपी जो है राहुल गांधी से बात हुई है और उसके बाद ये मानकर चल सकते हैं अखिलेश यादव या अन्य जो विपक्षी दल हैं उनके साथ जो है वो बातचीत।
0: बहुत बड़ी खबर हिमांशु दे रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र मानसून सत्र के बाद बुलाया जा सकता है 3 दिनों का, जिसमें ये जो डिलिमिटेशन बिल है और उसके साथ ही महिला आरक्षण की बात हो जाती है वो सदन में पास कराने की का प्रयास होगा। अब संसद में विपक्ष के हंगामे की बात हम करते हैं, चढ़ावा मामले और छात्रों पर एक्शन को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। हंगामे के बीच राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच बातचीत हुई, जिसकी जानकारी हम आपको अभी दे रहे थे। अब देखना होगा विपक्ष और सरकार में गतिरोध की बर्फ पिघलती है या नहीं। परिसीमन बिल से लेकर लोकसभा में किस तरीके से आम राय हो और लोकसभा सदन सुचारू रूप से चले, इस पर बातचीत। वहीं राहुल गांधी छात्रों पर एक्शन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ गए।
3: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो तो वो घर में बैठ के बात करेंगे।

0: घर में सो जाएंगे, ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते, इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे है, क्या है?
1: जब संसद का सत्र चल रहा है तो क्या नेता प्रतिपक्ष को संसद के पटल पर एक मजबूत तैयारी के साथ जोरदार चर्चा जो आम जनता के मुद्दे हैं उस पर नहीं करनी चाहिए? अगर नेता प्रतिपक्ष, हमने भगोड़ों की बात करी थी, राहुल गांधी भी एक भगोड़े ही है, संसद से भाग जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है, वो घबराते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अमित शाह जी जब तैयारी से भाषण देंगे, तथ्य रखेंगे, तो राहुल गांधी बगले झांकेंगे। और जब आप संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं तो पूरा देश आहत होता है, और इसीलिए मैंने कहा उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए।
2: राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जो राम को नहीं मानते वो कैसे मंदिर की बात कर सकते हैं।
3: वो भी पैसा चोरी करेगा, उसी के लिए सब दिन चोरी किया, आज चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। आज वही लोग राम के पक्षधर हैं, वही छात्र आंदोलन के, राहुल गांधी कभी गए नहीं और सपा कभी राम मंदिर नहीं गया, राहुल राम मंदिर नहीं गए। राम से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जनता एक एक पाई का हिसाब लेगी। ये साधु संतों को चोर कह रहे हैं, है हिम्मत कि किसी मुस्लिम संत के विषय में बोल दें? वहां तो डर लगता है।
4: हाउस चलाना चाहिए, चंदा चोरी पे सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी, हम डिमांड कर रहे हैं कि आप वक्तव्य दे दे, वो इसके ऊपर भी वक्तव्य देने को तैयार नहीं है। छात्रों के ऊपर हम कह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी तय होगी, किसकी जिम्मेदारी है, किसने पैलेट गन चलाई, किसने बच्चों को इस तरह से मारने की छूट दी, तो ये सब तमाम चीजें हैं, इनके ऊपर बात होनी चाहिए।
2: राम मंदिर चढ़ावा मामले पर संसद से यूपी विधानसभा तक उबाल है। लोकतंत्र के दोनों मंदिरों में चढ़ावा मामले की चर्चा की मांग पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया, विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा रहा।
5: जो लोकतांत्रिक और असंवैधानिक चेहरा है वो एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला है। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें, इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे।
2: अब बात अखिलेश यादव के मिशन ब्राह्मण की। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। इसकी एक अहम तस्वीर आज लखनऊ में देखने को मिल रही है, जहां समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र की जयंती को केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर मना रही है। इस बार अखिलेश यादव को जनेश्वर मिश्र पार्क में भव्य आयोजन की अनुमति नहीं मिली, इसीलिए पूरा कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन आयोजन का पैमाना पहले से कहीं बड़ा है। पार्टी दफ्तर के बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, अंदर हवन पूजन और श्रद्धांजलि का आयोजन हो रहा है।
6: धरती पर एक भी उदाहरण हो जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा, उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता। बटकों के साथ जो अपमान किया और पूजनीय शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पे कौन सा मुकदमा लगाया था? पॉस्को वाला लगाया था, झूठा मुकदमा।
2: रांची में छात्रों के प्रदर्शन में सोनम वांगचुक की एंट्री से सरकार का टेंशन बढ़ गया है। कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, सरकार पर दबाव वहां काफी है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार के दरवाजे खुले हैं, छात्रों की हर मांग पर विचार किया जा रहा है।
7: सोनम वांगचुक सर का वीडियो कॉल में बात हुई। सोनम वांगचुक सर, हम लोग का आंदोलन को समर्थन करते हुए मनोबल बढ़ाए हैं और इतना मनोबल बढ़ाए हैं कि अब सरकार को हम लोग हर हाल में पीछे झुकाएंगे। और पिछले चार दिनों से जल और अन्न दोनों को हम त्याग किए थे और मेरा स्थिति काफी खराब थी। उन्होंने बहुत ही आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि जल और नमक आप लीजिए और आपके साथ हम लोग हमेशा सब कोई हैं और निश्चित तौर पर आप लोग का आंदोलन सफल होगा।
8: बेहतरीन तरीका है सरकार ने कि आत्मा को जगाना, अधिकारियों के आत्मा को जगाना, उसके लिए
9: ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं नींद में हुई थी। यहाँ 26 सालों से कई पेपर निकल रहे हैं, लगातार पेपर लिए। कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
8: अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी, आप बेहोश होंगे, फिर सरकार का अपना निर्णय लेगी।
10: Definitely we will go to Jharkhand and we stand with the students who are protesting there and we support their every demand. जो हमारे पहले ही आंदोलन को सफलता मिली है उसके बाद लोगों की हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी है और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए अब जैसे हमें पूरे देश भर से समर्थन मिला था, ये जो आंदोलन हुआ था वो बस जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा था, वो पूरे देश भर में हुआ था, पूरे देश भर के लोगों ने हमें समर्थन दिया था अपना। तो उसके चलते अब हम देश भर में कैसे अपना संगठन बढ़ा सकते हैं, हर राज्य में कैसे अपना संगठन बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ आगे जाकर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रोड मैप हो सकता है, क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम।
2: रांची में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान आया है। हेमंत सोरेन ने कहा कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, एजेंसी पूरी तरीके से लगी हुई है और हम लोग बहुत ठोस समाधान के साथ आएंगे। सोरेन ने कहा कि सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, जिनकी मांगे सरकार से हैं वो अपनी बात रख सकते हैं।
11: कल कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपने कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं।
2: अब पंजाब पेपर लीक के मुद्दे पर मचे घमासान की बात करते हैं। चंडीगढ़ में एबीवीपी ने पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब विधानसभा का घेराव करने जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। एबीवीपी के साथ छात्र लगातार पंजाब पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
12: एबीवीपी ने कॉल दी थी कि वो पंजाब विधानसभा का घेराव करेंगे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वाटर कैनन यहां पर चल गया है। वाटर कैनन जो है वो चला दिया है चंडीगढ़ पुलिस ने, क्योंकि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं। और अब देख सकते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस बहुत भारी गिनती में यहाँ पर तैनात है, वो आगे नहीं जाना चाहते कि आगे ना जाएं एबीवीपी के कार्यकर्ता और स्टूडेंट्स। एबीवीपी ने कुछ दिन पहले भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था चंडीगढ़ में और हरजोत बैंस के घर की तरफ जो है वो जाना चाहते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह बैरिकेडिंग की हुई है चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 25 में। और यहाँ पर जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर मौजूद हैं और वो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है उन्हें रोक रही है। पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट।

0: और आइए अब राजस्थान की रिपोर्ट आपको दिखाएं।
1: केंद्र सरकार ने कौशल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया ताकि नौजवान हुनर सीखें, खुद कमाएं, दूसरों को भी नौकरी दें।
2: हम यह भी चाहते हैं कि हमारा युवा नौकरी देने वाला भी बने, तो उसके लिए भी हम युवा नीति लेकर के आए हैं।
1: लेकिन राजस्थान में जिन टीचर्स के कंधों पर छात्रों को हुनर सिखाने की जिम्मेदारी थी, जो सरकार की नजर में हुनरमंद है, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, वो दूसरों को रोजगार देने वाला बनाने लायक तो दूर, खुद ही बेरोजगार होकर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर कर दिए गए।
3: अभी ये भी हमको घर पे बिठा दिया 31 जुलाई के बाद, हम बेरोजगार हो गए हैं, कौन जिम्मेदार है हमारा। और बार बार यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो भाई हम काम करने के लिए तो विद्यालय जाते हैं, और सैलरी लेने के लिए हम समसा ऑफिस जाएं, यहाँ पे शिक्षा संकुल आए और कंपनी के पास जाएं, कंपनी कहते हैं आप हमारे नहीं हो, ये कहते हैं आप हमारे नहीं हो, और समसा ऑफिस वाले वो बोलते हैं आप हमारे हो, तो किनके हैं हम।
4: कंपनी वालों को फोन करते हैं तो हमसे सैलरी मत मांगा करो, हमारी फाइलें क्लियर कराओ। बताओ हम कौन होते हैं उनकी फाइलें क्लियर करवाने वाले? जब उन्होंने हमें हायर किया था तभी बोला था क्या कि हम आपकी फाइलें, आप हमारी फाइलें क्लियर करा के दोगे?
1: राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार से अपना हक मांगते ये वो वोकेशनल टीचर हैं जिनकी नौकरी 11 साल पढ़ाने के बाद चली गई। बाड़मेर के सुरेंद्र कुमार से आज आप मिलिए, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद धरना देने के लिए मजबूर है। जिस वोकेशनल टीचर को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए स्कूल में होना चाहिए, उन्हें प्लेसमेंट एजेंसियों ने सड़क पर लाकर बैठा दिया।
5: सर हमें राजकीय विद्यालयों में बच्चों को कौशल शिक्षा दे रहे हैं, और 2014-15 से हम टेंडर प्रक्रिया पे लगे, ठेका प्रथा पे लगे हुए हैं।
6: ठेका प्रथा पर
5: जी जी सर, और उसमें वर्तमान में राजस्थान में 21 से ज्यादा कंपनियां हैं, और कोई भी कंपनी का कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, और सारा काम सरकार के अधीन होता है, लेकिन सरकार ने अपने हाथ खड़े करके कंपनियों को दे रखा है, और कंपनियां आज 11 वर्षों से योग्य लोगों का, स्किल और वेल एजुकेटेड शिक्षकों का लगातार शोषण कर रही है। आज हम राज्य के 41 जिलों से वो एक मांग लेके आए हैं कि हमें स्थायी जॉब पॉलिसी दे, और हम वेल एजुकेटेड स्किल लोगों को स्किल के आधार पर उन्हें स्थायी पॉलिसी दे।
7: भारत सरकार ने बोल रखा है कि राज्य सरकार इनको डायरेक्टली प्लेसमेंट की जगह पर डायरेक्टली इनको विभाग के जरिए कौशल शिक्षा के जरिए इन व्यवसायिक शिक्षकों को लगा सकती है, लेकिन राजस्थान की जो सरकार है वो ठेका प्रथा से लगा रखा है।
0: अभी के लिए हमारी इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
11: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
12: कुछ तो बात है इस तेल में।
13: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। ज्यूडिशरी, मॉडर्न ज्यूडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
14: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं, या फिर
13: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
6: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
13: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
15: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: don't be crazy. Bro, time has changed. Now future is Gen Z.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है उसे इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बीच नाला पूरे उफान पर है। लहरें घरों के किनारों को छूती हुई तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कुदरत के रौद्र रूप को देखकर लोग बेहद डरे हुए हैं। दिलों में खौफ है कि कहीं सैलाब का प्रहार उनके मकान को ही नुकसान न पहुंचा दे।
7: मौसम विभाग ने कहा है कि ये सिलसिला जो है एक हफ्ता और जारी रहेगा, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी जा सकती है। कहां पर ये फटेगा, कहां फ्लश फ्लड आएगा, तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही इसका जो इलाज है कि लोग सतर्क रहे।
6: अब बांदीपुरा की ही एक और तस्वीर को देखिए। लहरें किस तरह उफनाई हुई हैं और हाहाकार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। कई इलाके भी इन लहरों के जद में आ रहे हैं। राजौरी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। फ्लैश फ्लड से यहाँ भी खतरा बढ़ा हुआ है। तमाम जगहों पर घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। गुरेज के कोरकबल इलाके में बादल फटने के बाद कुछ लोग लहरों के बीच फंस गए और कई मवेशी बह गए। वहीं पहलगाम में अचानक आई बाढ़ ने सड़क के कई हिस्सों को बहा दिया है, जिससे पहलगाम का संपर्क प्रभावित हो गया है। स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन बारिश के बीच इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: उत्तर प्रदेश में योगी अखिलेश के बीच छिड़ी जंग, विधानसभा हंगामे पर बरसे मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का पलटवार, सरकार बनी तो करेंगे नोटबंदी की जांच। संभल हिंसा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में पूर्व नियोजित साजिश का बड़ा खुलासा, सांसद बर्क और विधायक इकबाल के बेटे का नाम आया सामने। 24 नवंबर 2024 को हुआ था पथराव, गोलीबारी और आगजनी। रांची में आंदोलनकारी छात्रों से मिलने पहुंचे एसडीएम और एसडीओ, सरकार के संदेश के साथ बातचीत, मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, परीक्षा में धांधली के खिलाफ चंडीगढ़ में प्रदर्शन, पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर की पानी की बौछार। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जारी पाकिस्तान सेना के अत्याचार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद का विवादास्पद बयान, कहा वहां के लोगों से हमें क्या मतलब, पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें समझे। आप देख रहे रणभूमि, मैं हूं गौरव सावंत। इस समय बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर छात्र और आंदोलनकारी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे जेपीएससी पेपर लीक मामले में। अब उन छात्रों से मिलने के लिए प्रशासन का एक प्रतिनिधि मंडल छात्रों के पास पहुंचा है। उनकी जो उनके प्रश्न हैं, जो उनके सारे मुद्दे हैं, उनको जानना चाहता है। 12 दिन से आंदोलन कर रहे हैं छात्र आमरण अनशन पर, बिना खाना पानी छात्र कुछ बैठे हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में हो रहा है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मेरे मन में जो है, जो मैं कर रहा हूं, क्या अपना सीना फाड़ कर दिखाऊं। रांची में छात्रों से मिलने समय सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एसडीओ दोनों पहुंचे हैं। सरकार जो प्रस्ताव लेकर आई है उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 8 दिनों से ना कुछ खाया है ना पिया है, बेहद कमजोर है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो कई मांगों को लेकर जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विसेज कमीशन में जो पेपर लीक का मामला है, धांधली का मामला है, किस तरह से उसमें सुधार लाया जाए, ऐसे कई मुद्दे लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है हेमंत सोरेन का, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जब चाहे आए मुझसे बात करें। प्रीति चौधरी मेरी सहयोगी झारखंड से हमारे साथ जुड़ रही है। प्रीति, एसडीओ एसडीएम क्या संदेश लेकर आए हैं और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी क्या मांगे हैं इस समय?
1: गौरव, मैं आपको एक बार दिखा दूं, मैं अपने कैमरा पर्सन पवन को बताऊंगी। यहां पर जो अभी धरना प्रदर्शन है, बारिश हो रही है, पर ये देखिए यहाँ पर पहले एसडीओ आए थे, अब ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सरकार से और लोग आ रहे हैं। एक नेगोशिएशन के लिए, एक वे खोलने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार अब चाह रही है। सर, आप बताएंगे, अभी पहले एसडीओ आए थे, क्या कह के गए हैं आप?
2: वो ये कर करके गए कि मुख्यमंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं, 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है, और जिनका बात रखा जाए, और मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के बाद फिर ये मुद्दा पे डिस्कस करके अपने में एक सुझाव देंगे।
1: एक मंत्री भी आए हैं
2: अभी, ये हमारे बाबूलाल मरांडी है, झारखंड स्टेट के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री हैं, प्लस नवीन जायसवाल है, हटिया विधानसभा के विधायक हैं, वो अभी आए हैं। अब देखिए अभी क्या बात होता है, इसके बाद फिर निष्कर्ष निकाल।
1: आपको लगता है कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी?
2: बिल्कुल, हमारी मांगे बिल्कुल जेन्युइन है।
1: अगर सरकार सारी मांगे मान ले पर सीबीआई को जांच ना दे, क्योंकि सुनने में आया है उसी पर सरकार अड़ी हुई है कि सीबीआई को नहीं सीआईडी को दे दिया जाए।
2: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जो बात किया गया, जो बड़े ऑफिसर आए, एसडीओ आए, डीएम आए, जो भी आए, पांच लोग के, ठीक है। अब मेरा कहना है कि पांच लोग से ही अगर पर्सनल में बात करना है तो पांच लोग में ही आप अपने फैमिली में ही इलेक्शन लड़के सीएम
1: बन गए। आज तक से है, अभी सरकार ने जी, थैंक यू सर, सरकार ने अब जो रास्ता खोला है बातचीत का, आप लोग अपनी पांच लोग की कमेटी बना रहे हैं उनसे बात करने के लिए?
3: यस मैम, बना रहे हैं।
1: अभी बाबूलाल मरांडी भी आए हैं और मंत्री भी आए हैं, आपको लगता है आपकी मांगे मानी जाएंगी?
3: मैम सरकार की तरफ से जो हो रहा है सो हो रहा है। मैम मेरा एक मांग माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी है मैम, क्योंकि मैं दो दो बार इंटरव्यू दे चुका हूँ मैम, और जिस मूवमेंट के वजह से, जिस एग्जाम के वजह से ये मूवमेंट शुरू हुआ है वो मैं पास हूँ मैम। फिर भी मेरा माननीय उच्चतम न्यायालय से ये निवेदन है।
1: आप पास हैं?
3: यस मैम, मैं पास हूँ।
1: आप जेपीसीसी इस बार पास हैं?
3: यस मैम, मैं पास हूँ।
1: फिर तभी भी यहाँ पर है जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें आपने क्लियर किया?
3: यस मैम, मैं पास हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे हूँ। मेरा माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि आप महामहिम भीष्म और गुरु द्रोण की तरह मुखदर्शक बनना छोड़ दीजिए। एक संवैधानिक संस्था का चीरहरण हो गया है और आपकी खामोशी हमें चुभ रही है। आप अफजल गुरु के लिए रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल सकते हैं और कुत्तों के लिए सुबह मोटो ले सकते हैं, तो क्या हमें कुत्ता बनना पड़ेगा? इसीलिए आपसे निवेदन है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी, जिसका एक साल से डेट पे डेट मिल रहा है,
1: आप 19 से बोल रहे हैं कि 19 से सारे एग्जाम को खारिज,
3: सारे एग्जाम
1: ये तो मुश्किल है ना सर?
3: नहीं नहीं, उस एग्जाम का केस चल रहा है मैम, आप डेट ही नहीं दीजिएगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? एक साल से डेट ही नहीं मिल रहा है तो आप डेट दीजिए, सुनवाई कीजिए 3 महीना, अगर हम गलत होंगे तो हटा दीजिएगा।
1: सरकार कह रही है थोड़ा हम चलेंगे, थोड़ा आप चलिए।
3: मैम सरकार का जो चल रहा है तो चल ही रहा है, हम माननीय कोर्ट से निवेदन कर रहे हैं कि आप तो हस्तक्षेप कीजिए। सुओ मोटो सिर्फ कुत्तों के लिए तो है नहीं, हमारे लिए भी रखिए, हम भी यहाँ के बच्चे हैं, भोगेंगे तो आप लगता है लीजिएगा। वही मेरा
1: एक चीज बताइए, यहाँ पर दो प्रदर्शन अब चल रहे हैं, एक आपका प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे जिससे सरकार आई है आपसे बातचीत करने, एक वे निकालने के लिए कि आगे क्या हो सकता है कि आपका धरना प्रदर्शन बंद हो जाए। आप हमसे थोड़ी ही दूर देवेंद्र नाथ महातो वहाँ पर अनशन पे, आज उन्होंने पानी का अनशन तोड़ा है, JKLF वहाँ पर अभी भी प्रदर्शन कर रही है, आपके प्रदर्शन में और उस प्रदर्शन में क्या अंतर है?
3: हम हमारे प्रदर्शन और उस प्रदर्शन में अंतर यही है कि हम आप पॉलिटिकल रहना चाहते थे, हमें कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं चाहिए। कोई नेता मंत्री आता है उनका नैतिक समर्थन हम लेंगे, लेकिन उन्हें मंच नहीं देंगे। मंच में सिर्फ वही छात्र रहेंगे जो पीड़ित है, सच में पीड़ित है, जो ऑलरेडी मेंस इंटरव्यू दिए हुए हैं, जिनके साथ सच में गलत हुआ है, वही है यहाँ पे मैम।
1: यहाँ पर बहुत सारे बच्चे वो भी है, छात्र है जो अनशन पर बैठे हुए हैं यहाँ पर।
3: यस मैम।
1: कितने लोगों का कितने दिन तक अनशन चल रहा है?
3: 4 लोगों का अनशन है, अनिश्चितकालीन अनशन है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी।
1: जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं है उनका अनशन चल रहा है।
3: हमारी मांगे स्पष्ट।
0: अच्छा प्रीति, जो स्थिति इस समय वहाँ पर बनी हुई है, जो छात्र है प्रीति, वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि बड़े बड़े नेता दिल्ली के मुद्दे पर तो बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के वो नेता जो जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, वो यहाँ प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी सरकार है तो चुप क्यों बैठे हैं? क्या छात्रों में ये भी है? कांग्रेस में अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी इस समय प्रयागराज में अपने छात्रों की गूंज लेकर गए हैं, वो गूंज झारखंड क्यों नहीं सुनाई दे रही?
1: वही सवाल पूछते हैं गौरव इनसे। एक सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें शामिल है कांग्रेस, कांग्रेस जो छात्रों की गूंज प्रयागराज तक लेके गई है, कांग्रेस जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए थे, आपके साथ उन्होंने आकर खड़े नहीं हुए हैं जैसा उनको उतरना चाहिए था, डिसअपॉइंटेड है उनसे?
3: यस मैम, ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची।
1: कुछ नहीं,
3: लड़की नहीं है मैम, मेरे लिए यही वर्ड सही है, हबीबी कम टू रांची।
0: प्रीति आप वहाँ घूम घूम कर, प्रीति अलग अलग स्थानों से और छात्रों से बात करके हमको वो ग्राउंड रिपोर्ट बताइए। यहाँ पर अलग अलग छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, एक मंच यहाँ है प्रीति सुनाए, एक मंच और है जहाँ आमरण अनशन पर छात्र बैठे। प्रीति उस मंच तक भी पहुँचने का प्रयास कीजिए, औरों से भी बात कीजिए। प्रीति
1: गौरव, यहाँ पर दो मंच हैं। एक मंच जो छात्रों का मंच है उस पे हम हैं। यहाँ पर सरकार आई है, यहीं पर एसडीओ आए हैं और उन्होंने बातचीत के लिए बोला है और 5 बजे तक इनको कमिटी बनाने के लिए बोला है जो छात्र हैं। यहाँ से क्योंकि काफी बारिश हो रही है, यहाँ से 300 मीटर दूर एक छोटा मंच है, वहां पर ज्यादा लोग नहीं है। वहां पर JKLM जो एक यहाँ की लोकल पार्टी है वो भी पहले इसी मंच पर थी, पर बाद में दोनों अलग अलग रास्ते गए अपने प्रदर्शन को लेकर। वहां पर देवेंद्र नाथ महातो हैं जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से बात कर अपना पानी का अनशन तोड़ा था, तो वहां काफी दूर है वो जगह, पर यहां पर ही अभी सरकार ने यहां पर बातचीत शुरू की है। और अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं जो लोग यहां पर हैं, अभी काफी तादाद में लोग आए हैं, काफी तादाद में जो यूथ है झारखंड का वो यहां पहुंचा है। सवाल सबके पास है, थोड़ा बात कर लेते हैं उनसे। सर आप कहां से आए?
4: रांची में ही रहते हैं।
1: आप रांची में रहते हैं, स्टूडेंट हैं?
4: स्टूडेंट हैं।
1: अपना हेलमेट लेके आए हैं तो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आए हैं? किसी पार्टी से हैं?
4: नहीं नहीं, किसी पार्टी से नहीं है, पीएचडी स्टूडेंट हैं, पीएचडी कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से।
1: क्या नाम है आपका?
4: अक्षय आदित्य।
1: आप क्यों आए हैं आज यहाँ? आप आज यहाँ क्यों आए?
4: हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि बहुत दिन से आ रहे हैं और प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के, तो उसी के सिलसिले में यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हुए जो लोग भी छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका
1: सपोर्ट।
0: तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। कुछ छात्र संगठन और छात्र ये भी कह रहे हैं कि कुछ आवाजें राजधानी दिल्ली में तो सुनाई दी, पेपर लीक अगर झारखंड में होता है या कर्नाटक में होता है या पंजाब में होता है तो यहां ये आवाजें क्यों नहीं सुनाई देती? आवाजें तो हर छात्र के लिए एक साथ उठनी चाहिए। उस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल हम बात करते हैं हॉर्मूज जलडमरू मध्य की। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बार फिर खुल रहा है?

0: ईरान से ट्रंप की डील, क्या जल्द खुलेगा हुर्मुज? गिरने लगे तेल के दाम, युद्ध पर लगेगी लगाम। क्या किसी भी कीमत पर ट्रंप ने किया समझौता? डील से पहले ट्रंप ने क्यों दी धमकी? हमलों की धमकी दे रहे ट्रंप को पेंटागन की चेतावनी। फूंक दिए सारे हथियार, अमेरिकी फौज लाचार। खत्म हो गया यूएस का थर्ड मिसाइल स्टॉक। पैट्रियट इंटरसेप्टर भी ईरान से नहीं बचा पाएंगे। अब भी बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे ट्रंप। हार कर भी जीतने का भर रहे दम।
1: अट्ठाईस फरवरी 2026 यानी 5 महीने से ज्यादा समय से अमेरिका और ईरान का युद्ध लगातार चल रहा है, बीच बीच में रुकता है, क्या अब अंत करीब है? असल में दावा तो अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों की ओर से एक बार फिर किया जा रहा है, लेकिन हमेशा की तरह ईरान अब भी अमेरिका की किसी बात पर मुहर लगाने को तैयार ही नहीं है। और अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी समझौते की कहानी क्या कहती है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनके मंत्री हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान से उनकी डील आज हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान, जो किसी भी डील की बात से साफ इनकार कर रहा है। हालांकि अमेरिका बार बार यही कहता आया है कि ईरान पर्दे के पीछे तो समझौते के लिए तैयार है और समझौता कर भी लेता है, मगर सामने आकर वो मुकर जाता है। एक बात तो साफ है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच आज समझौता हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य एक बार फिर खुल जाएगा। यहां से दुनिया का 20% तेल और गैस उसकी आवाजाही होती है। खुलने भर की उम्मीद से कच्चे तेल के दाम में अभी से ही लगभग 5% की गिरावट तो आ गई है। ये कीमत $76.3 प्रति बैरल इस समय आ गई है। ब्रेंट क्रूड भी $80 के नीचे आ गया है। हालांकि एक पेच अब भी है, ईरान हॉर्मुज को ओमान के साथ मिलकर अपने नियंत्रण में रखने की बात पर अभी भी अड़ा हुआ है। बदले में वो जहाजों से फीस वसूलने का ऐलान भी कर चुका है, जबकि अमेरिका इसके धुर खिलाफ है और इसी पर यह बात अटकी हुई है। लेकिन इस समय बड़ी खबर एक और अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के जो वित्त मंत्री है स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि ईरान से आज ही एक बड़ी डील हो सकती है। हालांकि वो इस डील का क्रेडिट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी को दे रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक, सबसे बड़ा हमला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक हमला करने को तैयार था। डोनाल्ड ट्रंप ने डील के लिए उस हमले को रोक दिया और अब कतर और ओमान की मध्यस्थता से डील का दावा किया भी जा रहा है। सुनिए,
2: President Trump last week threatened what would have been one of the largest military campaigns, or the largest military campaign since World War II, against the Iranians. And now we are, because of that, we are in talks with the Iranians. And I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait and move towards a more normalized position in this conflict.
1: तो जो बात स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला करने की जो धमकी दी थी, ईरान अब उसके बाद डील करने को तैयार हो गया है। ये डील होगी या नहीं अभी ये तय नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक के बाद एक धमकी देते हैं, कहते हैं या तो डील कर लो वरना बहुत बड़ा हमला कर दूंगा। सुनिए कैसे उन्होंने दावा किया कि ईरान ने उनकी धमकी से डर के समझौते की बात की है। सुनिए,
3: the strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. And we were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it.
1: तो आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनी कि उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला कर दूंगा, तो ईरान ने फोन किया, उन्होंने बोला नहीं नहीं बात कर लो, प्लीज मेरे साथ हमारे साथ डील कर लो। क्या ईरान ने ऐसा कहा? डोनाल्ड ट्रंप तो ईरान को डराकर बातचीत की टेबल पर लाना चाहते हैं। इसकी दो बड़ी वजह है और यह भी आपको समझने की आवश्यकता है। एक, दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया भर के बाजारों की जो स्थिति है, बेहद खस्ता है। दूसरी तरफ अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो गई है और यही वजह है अल जजीरा के मुताबिक कि अमेरिका अब डील करने को तैयार हो गया है। बड़ी खबर इजरायली मीडिया के हवाले से आ रही है। इजरायली सूत्रों का हवाला देते हुए यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकार ईरान के साथ किसी भी कीमत पर समझौता अब कर लेना चाहते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका कोई भी जानकारी सीधे अब इसराइल को नहीं दे रहा है, बल्कि इसके लिए तीसरे माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी खबर ये कि कतर के अमीर और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही तनाव करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए ईरान के साथ अमेरिका के मतभेदों को दूर करने की कोशिशों पर चर्चा कर रहे हैं। ये जानकारी सीधे कतर के अमीर के दफ्तर से सामने आई है। दूसरी तरफ ईरान और ओमान भी हॉर्मूज को खोलने की अब बात कर रहे हैं, यानी अमेरिका धमकी तो दे रहा है बमबारी की, लेकिन उसके जो डिफेंसिव वेपन्स है, उसके जो इंटरसेप्टर्स हैं, वो खत्म हो गए हैं, ऐसा बड़ा दावा किया जा रहा है। और ये बड़ी बात है, ये बड़ा दावा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ईरान के साथ समझौता करना अमेरिका की मजबूरी क्यों बनता जा रहा है। दरअसल ईरान के खिलाफ 28 फरवरी से, यानी 5 महीने से जो सैन्य कार्रवाई चल रही है, उसके कारण अमेरिका का जो मिसाइल भंडार है मध्य पूर्व में, वो खतरनाक स्तर पर नीचे गिर गया है। कैसे, मैं आपको ये विस्तार से दिखाता हूं कि कैसे अमेरिका ने 5 महीने के इस ऑपरेशन में ताबड़तोड़ बमबारी करके अपनी मिसाइलें फूंक दी हैं। कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड इंटरसेप्टर, थर्ड टर्मिनल ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है, एरिया डिफेंस सिस्टम है ये। उसका स्टॉक 80% खत्म हो गया है मध्य पूर्व में। ये मिसाइलें बनने में बहुत समय लगता है। अच्छा, ये तो हुआ टर्मिनल लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उससे कम 2200 पेट्रियट मिसाइल थी, अब 50% स्टॉक पेट्रियट मिसाइल का खत्म हो गया है। स्थिति तो इतनी खराब हुई कि कुछ पेट्रियट मिसाइल उनको ताइवान की सुरक्षा के लिए, साउथ कोरिया की सुरक्षा के लिए, जापान की सुरक्षा के लिए, जो पैसिफिक ओशन में थी, वहां से यहां पर मंगानी पड़ी। फिर टोमहॉक क्रूज मिसाइल्स, 50% स्टॉक इसका भी खत्म हो गया है। आप सोचिए, 5 महीने में 50% स्टॉक खत्म, थर्ड का तो 80% स्टॉक खत्म, नई मिसाइलें आएंगी कहां से, बनने में समय लगता है। जो थर्ड है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ये लंबी दूरी तक इनकमिंग टारगेट को, यानी आपके ऊपर जो खतरा आ रहा है, उसको ध्वस्त कर सकता है दूर से ही। पेट्रियट मिसाइल और टोमहॉक क्रूज मिसाइल, टोमहॉक मिसाइल की अगर बात करें तो दुश्मन के इलाके में भेद कर वार करने की शुरुआत की क्षमता रखता है, लेकिन इनका स्टॉक लगातार घटता जा रहा है और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। जो प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स अमेरिका के पास है, वो लगभग पूरी तरह खत्म होने की कगार पे आ गई है। दूसरी क्या होता, सऊदी अरब यूएई में स्टॉक खत्म होने से घबराहट पैदा हो रही है। और आप जानते हैं कि ईरान जिस तरह से कारपेट बॉम्बिंग करता है, वो अमेरिका के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर देता है, यानी जितनी मिसाइलें अमेरिका दाग सकते एक बार में, उससे ज्यादा रॉकेट और ड्रोन और मिसाइलों से हमला करता है और फिर दूसरी खेप, और इसीलिए कई देशों में नुकसान ज्यादा भी हुआ है। अच्छा, फिलहाल हॉर्मूज पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए, तेल की कीमतों को गिराने के लिए जो बातचीत हो रही है, उससे कुछ सकारात्मक नतीजे आए हैं। तेल का दाम कम हुआ है, कल तेल की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि कारोबारियों ने इस उम्मीद में कीमतें तय कर ली कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो सकता है। कल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, यानी WTI, ये $75.6 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। जो 4% $60 प्रति बैरल कम हो गया है। अच्छा, ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो ये लगभग $4.50 इसकी कीमत गिर गई है, ये लगभग $80 पर आ गया है। दोनों बेंचमार्क तीन हफ्तों के अब अपने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि इस बात की अब उम्मीद बढ़ गई है कि समझौता हो जाएगा, हॉर्मूज एक बार फिर खुल जाएगा, और अगर हॉर्मूज एक बार फिर खुल जाता है तो तेल और गैस दोनों की आवाजाही शुरू हो सकती है। तो एक जगह जहां शांति की उम्मीद है, दूसरे युद्ध में युद्ध बहुत खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यूक्रेन की राजधानी कीव से आ रही है, जहां रूस ने भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया है। इस भयानक हमले में अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, 44 से ज्यादा लोग घायल हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने अब बताया कि बीती रात यह हमला शुरू हुआ। राजधानी कीव और कीव के आसपास के कई इलाकों में रूस ने क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स दोनों से घातक हमले किए। बताया ये जा रहा है कि रूस ने कम से कम 20 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, 5 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, बड़े हमले किए। और इंटरसेप्टर तो अब यूक्रेन के पास भी नहीं बचे, जब अमेरिका के पास नहीं है तो यूक्रेन के पास भी नहीं है, और यही इस समय सबसे बड़ी समस्या है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल एक ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
9: सरसों
10: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।
5: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
6: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
7: कुछ तो बात है इस तेल में।
8: In association with
9: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: The government controlled everything. They didn't want too much private industry.
11: The big family groups at that time, who traditionally were dominating Indian industry at that time. Slowly, I think new entrepreneurs came up.
10: There were businessmen who were coming into prominence and rising. Nobody had heard of Vijay Mallya's father, Vittal Mallya, at that time, because he very quietly operated to get this monopoly on the brewery and liquor business.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
1: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
2: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
1: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
3: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
1: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
4: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जंग, विधानसभा हंगामे पर बरसे मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का पलटवार, सरकार बनी तो करेंगे नोटबंदी की जांच। संभल हिंसा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में पूर्व नियोजित साजिश का बड़ा खुलासा, सांसद बर्क और विधायक इकबाल के बेटे का नाम आया सामने। 24 नवंबर 2024 को हुआ पथराव, गोलीबारी और आगजनी।

दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर की मांग पर अड़ा एबीवीपी, परीक्षा में धांधली के खिलाफ चंडीगढ़ में प्रदर्शन, पुलिस ने आंदोलनकारियों पर की पानी की बौछार। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जारी पाकिस्तान के अत्याचार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद का विवादास्पद बयान, कहा वहां के लोगों से हमें क्या मतलब, पाकिस्तान की हुकूमत समझे।

0: गई पाकिस्तान की पोल। पीस के नाम पर पीट रहा आतंक का ढोल।
1: ये देख सकते हैं आप, लगातार हम पे फायर हो रहे और गोलियां लग चुकी हैं।
0: बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा पाकिस्तान। पीओजेके में शांति के लिए आतंकी भेज रहा पाकिस्तान। कब रुकेगा पीओजेके में जुल्म का सिलसिला? पाक से आजादी मांगने शहर शहर निकल रहा काफिला। कब तक आतंकियों को पालेगा पोसेगा पाकिस्तान? खैबर से लेकर पीओके तक गृह युद्ध के हालात हैं। लेकिन शरीफ की सरकार और मुनीर की सेना न किसी की सुनना चाहती है, न किसी को उसका हक देना चाहती है। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, सड़कों पर सरकार और सेना को गालियां दे रहे हैं। लेकिन बेशर्म पाकिस्तान है कि मानता नहीं।
2: हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे, अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे।
3: देख रहे रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। और अब हम बात करेंगे उस रणभूमि की जहां पर स्वतंत्रता की आग धधक रही है लोगों के सीनों में। क्या पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, क्या बलूचिस्तान, क्या खैबर पख्तूनख्वा, क्या सिंध, और अब तो पाकिस्तान के पंजाब सूबे में भी लोग घरों से निकल रहे हैं। सेना के साथ मिलकर हक की आवाज पाकिस्तान में दबाई जा रही है। ये जमीनी स्थिति है। जमीनी स्थिति है क्या? आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले, गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की, जहां लोग अपने बुनियादी हक की लड़ाई करने के लिए सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन की, गालियां भी खाई, अब गोलियां खा रहे हैं। लेकिन शाहबाज शरीफ की सरकार हो या आसिम मुनीर की फौज हो, बेशर्मी की हर हद उन्होंने पार कर ली है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान का जो झूठ है, जो मक्कारी है, जो बेशर्मी है, वो दुनिया के सामने उजागर हो रही है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने का ड्रामा करते हुए पाकिस्तान ने एक शांति समिति यानी पीस कमिटी बनाई। पीस कमिटी की जो कमान है उसमें एक आतंकवादी को भी उन्होंने शामिल कर लिया। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप बताइए कि एक आतंकवादी, जी हां, एक आतंकवादी शांति स्थापित करेगा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में, या खौफ का माहौल बनाएगा और खौफ के साए में जो स्वतंत्रता की आग है उसको दबाने की कोशिश करेगा, बुझाने की कोशिश करेगा। अलग अलग सूबों में पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सेना यह जान चुकी है कि वो सिंध पर, बलूचिस्तान पर, खैबर पख्तूनख्वा पर जो कब्जा किए बैठी है, अब आवाम सड़कों पर आ गई है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ चाहते हैं कि पाकिस्तान के सूबों को तोड़ दिया जाए। चार सूबे हैं, कोई बोल रहा है 12 सूबे बना दो, कोई बोलता है 20 सूबे बना दो। और ये जो पूरा प्लान है, पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, उनकी सलाह दी जा रही, उन्होंने सलाह दी, देश भर में अब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। खैर, विवाद

0: बयान देने की सीमा तो उन्होंने पार कर ही ली है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस, मतलब मैं आपको अब जम्मू कश्मीर ले चलता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद है, आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों पर अगर अत्याचार हो रहा है, वहां जो हो रहा है उससे हमें क्या मतलब, पाकिस्तान की हुकूमत समझिए, जबकि भारत और ये भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर हमारा है, वो गैर कानूनी कब्जा पाकिस्तान पर है और ये पाकिस्तान का कब्जा वहां पर है और ये बात संसद कह चुकी है, पीओजेके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, ये सांसद नहीं जानते। पाकिस्तान में एक और बवाल शुरू होने जा रहा है, इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने आज पूरे पाकिस्तान में आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल 5 अगस्त 2023 को ही इमरान खान को तोशा खाना मामले में गिरफ्तार किया गया था, वो अभी भी वैसे जेल में बंद है। उनकी पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है बैरिस्टर गौहर अली खान, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, ये कहा गया है कि जनसभाएं की जाए, प्रदर्शन किए जाए, लॉन्ग मार्च की जाए, रणनीति बनाई जाए ताकि इमरान खान को जेल से निकाला जा सके। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में हर दूसरे दिन अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पिछले हफ्ते कहा था कि पाकिस्तान बर्बाद था और बर्बाद होता जा रहा है, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के सूबों को जिलों में बांटा जाए। इसे लेकर देशभर में उनकी आलोचना शुरू हो गई, सेना के अधिकार बढ़ाने की साजिश रची जा रही है। अब जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन नकवी का जमकर मजाक उड़ाया है, यहां तक कह दिया है कि वो वक्त से पहले बालिग हो गए थे। उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान कोई केक नहीं है कि जो जब चाहे जब आए उसे छुरी से काट ले। सुनिए,
1: नकवी साहब हमारे बरखुरदार हैं लेकिन कुछ वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। अब ये मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बात जो है वो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में की है, लेकिन अपनी ज़ाती हैसियत में बात करना कैसे मुमकिन है जबकि वो इस वक्त एक काबीना के मेंबर है। क्या वो ये कह सकते हैं या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह सकता है कि ये मेरी आशीर्वाद पे हुआ है या मेरी इजाज़त से हुआ है, या काबीना ये कह सकती है वफाकी के ये हमारी इजाज़त से हुआ है, या किसी और तरफ से कोई बात हुई हो तो वो भी वाज़े कर दी जाए। क्या मुल्क इस बात के लिए तैयार है कि सूबे बनाए जाएं? सूबे बनाना कोई बुरी बात नहीं है, इंडिया में भी बन रहे हैं और जगह भी बनते हैं, ये कोई केक तो नहीं है कि आप आराम से छुरी लेकर उसको बस जिस तरह चाहें काट दें। सूबे बनाने की बात के लिए क्या मुल्क तैयार है?
0: और वो सूबों में बांटना क्यों चाहते हैं देश को? यानी आप पाकिस्तान का पंजाब सूबा ले लीजिए, वो उसको 3 भाग में करना चाहते हैं, बलूचिस्तान को 4 भाग में करना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को 4 भाग में करना चाहते हैं, सिंध को बांट देना चाहते हैं। साजिश आर्मी चीफ की यह है कि अगर सूबे बट जाएंगे तो जरदारी की ताकत कम हो जाएगी सिंध में और शरीफ की ताकत कम हो जाएगी पंजाब में, और फिर वो अपने पिट्ठुओं को सत्ता में ले आएंगे और आर्मी राज करती रहेगी। अब हम आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जो पाकिस्तान के इस दावे की धज्जियां उड़ा के रख देगी कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है और पाकिस्तान को आतंकवाद को पालने को पोसने में उसका कोई संबंध नहीं है। हम आपको पाकिस्तान का वो नापाक प्लान दिखाते हैं। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांति ला स्थापित करने के लिए एक समिति बनाई गई, एक कमिटी बनाई गई। उस कमिटी में एक ऐसे आतंकवादी को जगह दी गई है जो कई जगह बम धमाके कराने के लिए कुख्यात है। पीओके में शांति बनाने की वो कोशिश करेगा या फिर वो सरकार और सेना के खिलाफ जो वहां की आवाम खड़ी हुई है उन्हें कुचलने की साजिश करेगा? देखिए ये रिपोर्ट,
2: फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अब आतंकियों के सहारे पीओजेके में शांति लाएगा आतंकिस्तान। जेके में जुल्म और फर्जी चुनाव से मचा कोहराम। गजब का बेशर्म है पाकिस्तान, चाल में भी चरित्र में भी, और चेहरा तो है ही आतंकिस्तान जैसा। पूरा पीओके जल रहा है, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बुनियादी हक मानने पर उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, सेना के जुल्म के खिलाफ लोग जान की बाजी लगा रहे हैं। पिछले हफ्ते भर में ही 100 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन शरीफ और मुरीद की जानलेवा जोड़ी एक के बाद एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और अमानवीय कदम उठा रही है। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान में लगातार मजबूत होते टेरर नेटवर्क की गवाह है, बल्कि पीओके में आतंकियों के सहारे बगावत को काबू करने की पाकिस्तान की साजिश को भी साबित करती है। पहले इस चेहरे को देखिए और पहचानने की कोशिश करिए। आतंकिस्तान में इसे इलियास कश्मीरी के नाम से जाना जाता है। भारत में हुए कई बड़े धमाकों की साजिश इसी ने रची थी। ये तस्वीर आतंकियों की किसी अहम मीटिंग या ISI की किसी खुफिया मिशन की नहीं है। ये तस्वीर POJK में गए उन नुमाइंदों की है जिन्हें पीस कमेटी का हिस्सा बनाकर शांति स्थापित करने के नाम पर भेजा गया था। एक आतंकी को पीस कमेटी का सदस्य बनाकर पीओके में भेजा गया है। ये पाकिस्तान के लिए बेशक आम बात हो, लेकिन पूरी दुनिया के लिए हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीर है। गुनहगार हमेशा छिपने की कोशिश करता है। इलियास कश्मीरी भी कैमरा सामने आने पर बचने की कोशिश कर रहा है। जब उसे अंदाजा हो जाता है कि उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो रही है, तो वो साइड में हटने की कोशिश करता है और फ्रेम से बाहर हो जाता है। गोलियां बरसाने वाले आतंकियों को पीस कमेटी का मेंबर बनाकर पीओके में भेजने से पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का पर्दाफाश हो गया है कि वो ISI के भरोसे POJK में हक की आवाज उठाने वालों को चुप कराना चाहता है। पहले पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आंदोलन को दबाने के लिए JAAC पर बैन लगाया, फिर मुनीर की सेना ने बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाई। इसके बाद संगीनों के साए में POJK में फर्जी चुनाव को अंजाम दिया गया और अब पीस कमेटी के नाम पर एक प्रतिनिधि मंडल रावला कोट भेजा गया है जिसमें इलियास कश्मीरी जैसा आतंकी भी शामिल है। जैश मोहम्मद के इस सीनियर कमांडर के पीस कमेटी में शामिल होने पर पाकिस्तान की नियत पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच लश्कर ए तैयबा भी JAAC आंदोलन के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आया है। संगठन लगातार JAAC नेताओं को गद्दार बता रहा है, उनके खिलाफ प्रचार अभियान चला रहा है और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशों का खुलकर समर्थन कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने POJK में चुनाव कराकर अपना नापाक कब्जा बनाए रखने की साजिश भी रची, जिसका स्थानीय लोग खोलकर विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार और सेना इस इलाके में हक की लड़ाई लड़ रहे लोगों को धांधली के सहारे दबाना चाहती है। जहां तक भारत का सवाल है, तो वो पहले ही इस चुनाव के बारे में अपनी राय साफ कर चुका है कि ये पाकिस्तानी सरकार की ओर से रचे गए ढोंग के अलावा कुछ नहीं है।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस प्रकार की खोखले कवायदें वास्तविकता को छिपा नहीं सकती। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है, उसमें करीबन 90 लोग उसमें मारे गए हैं और कई एक अन्य उसमें घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
2: बगावत की जो चिंगारियां पीओके समेत अलग अलग इलाकों से शुरू हुई हैं, वो जल्द ही आग में तब्दील होती दिख रही हैं। इस आग की तपिश तो खैर इस्लामाबाद अभी से महसूस करने लगा है, तभी तो पाकिस्तान सरकार और सेना सीधे सीधे आतंकियों की शरण में चली गई है। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर यह आतंकवादी इलियास कश्मीरी है कौन। इसका काम ही है आतंक फैलाना और ये पीस कमेटी का सदस्य है पीओजेके में। कौन है ये आदमी? नाम मसूद इलियास कश्मीरी। काम युवाओं को आतंकी गुटों में भर्ती करना, टेरर फंडिंग कराना। ये दरअसल जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का एक सरगना है। किन किन टेररिस्ट अटैक्स में यह शामिल हुआ रहा है, ये दरअसल कई नामों से जाना भी जाता है। मुफ्ती मसूद इलियास, मसूद इलियास, एम मसूद इलियास, अबू मोहम्मद। इलियास कश्मीरी एक बॉम्ब मेकर है, वो एक टेरर फंडर भी है और ब्रेन वॉश करता है युवाओं को धर्म के नाम पर। मौलाना मसूद अजहर का ये बहुत भरोसेमंद है। कश्मीर में घुसपैठ का एक मुख्य संयोजक रहा है, उसका समन्वयक ये रहा है। दरअसल ये भारत में इन्फिल्ट्रेशन कराता है जम्मू और कश्मीर में, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आतंकी गुटों में शामिल करने में ये जबरदस्त सक्रिय रहा है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में भी, और जो वहां पर लश्कर ए तैयबा का गढ़ है वो मुरीदके में है, और बहावलपुर जैश ए मोहम्मद के गढ़ में। अप्रैल 2022 में जम्मू में पीडीपी के कार्यालय के पास सुरक्षा बलों पर हमले को इसने अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में ये शामिल रहा है, मुलव्विज रहा है। इलियास कश्मीरी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसने दावा किया था कि भारतीय सेना की कार्रवाई में मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आपको याद है एक वीडियो इसका बहुत वायरल हुआ था कि मसूद अजहर रोने लगा था जब उसका आधा परिवार वहां मारा गया था, उनके चिथड़े वहां उड़ गए थे और चिथड़े मिल रहे थे। ये वही इलियास कश्मीरी है, पाकिस्तान की सेना का ये बहुत मुंह लगा है। भारत ने जुलाई 2026 में जो 23 आतंकियों की सूची शामिल की थी उसमें इसे नंबर 1 मोहम्मद इलियास कश्मीरी को रखा गया था। बड़ा आतंकवादी है ये और काफी समय से भारत में आतंकवाद फैलाता रहा है। इलियास कश्मीरी इंडोक्ट्रिनेटर कहलाता है। इंडोक्ट्रिनेटर यानी ये धर्म के नाम पर युवाओं को बरगलाता है, फिर उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। दो ट्रेनिंग होती है, एक दौराए आम, एक दौराए खास। दौराए आम प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग या शुरुआती ट्रेनिंग होती है, और दौराए खास जहां पर उन्हें आईईडी इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें कई आतंकवादियों को एक साथ मिलकर हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती है, सुरक्षा बलों से कैसे बचे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, नाइट विजन डिवाइसेस का कैसे इस्तेमाल करना है, टेलीस्कोपिक लेंस का किस तरह से इस्तेमाल करना है, लंबी दूरी तक वार करने का इस्तेमाल। बड़ी खबर इस समय आ रही है, मार्क जकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारत सरकार से माफी मांगी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने माफी मांग ली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट, उनके मुताबिक गलती से हटा दिया गया था, उसको टेक्निकल ग्लिच कहा था, लेकिन भारत सरकार ने सफाई मांगी थी। अश्विनी वैष्णव से मिलने मेटा की टीम आज पहुंची, विस्तार से चर्चा हुई क्योंकि एल्गोरिदम क्या है मेटा का यह भी भारत सरकार जानना चाहती है। मार्क जकरबर्ग ने अब माफी मांग ली है, जिस तरह की गलती उनके मुताबिक पहले हुई वो आगे से नहीं होगी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वायरल पोस्ट वो हट गया था। इसके अलावा एल्गोरिदम क्या है यह भी भारत सरकार जानना चाहती है। बड़ी खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। दो अगस्त को कर्नाटक के विजयपुरा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के ओएमआर शीट का नंबर और सवालों का नंबर बेमेल होने और प रश्न पत्र तय समय से देर से बांटने जैसे आरोपों पर छात्रों का आक्रोश फूटा था। इसे लेकर बीजेपी और जेडीएस ने प्रियंक खरगे को घेरने की कोशिश की, उनसे इस्तीफे की मांग हुई। पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रियंक खरगे ने जो कहा उसके बाद बीजेपी ने छात्रों के मुद्दों पर कांग्रेस नेतृत्व की नीयत पर सवाल उठा दिया है। प्रियंक खरगे का दावा है कि भर्ती परीक्षा के सवालों का नंबर और ओएमआर शीट में नंबर बेमेल होने का आरोप सिर्फ कुछ छात्रों की गलतफहमी थी, इसलिए जो लोग ओएमआर शीट के साथ एग्जाम हॉल के साथ बाहर गए वो अपनी जिम्मेदारी पर गए। सरकार की जिम्मेदारी उन छात्रों के लिए थी जो एग्जाम दे रहे थे। इन्हीं दलीलों के साथ प्रियंक खरगे कर्नाटक में पेपर लीक या भर्ती घोटालों के आरोपों पर अपना पल्ला झाड़ते भी नजर आए। प्रियंक खरगे का ये जवाब ऐसे समय में है जब नीट पेपर लीक पर पूरे देश में हंगामा हो चुका है, देश के शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती घोटालों के आरोपों पर झारखंड में छात्रों का 11 दिनों से धरना जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 अलग अलग टेंट्स में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच जैसी मांगों के साथ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से धरना और मशाल मार्च निकाल रहे छात्रों को खाने पीने जैसी मदद के साथ कुछ वॉलंटियर, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी सामने आए हैं, लेकिन आरोप लग रहा है कि झारखंड के छात्र आंदोलन को राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। पेपर लीक या परीक्षा में धांधली कहीं हो, देश के छात्रों के साथ नाइंसाफी है, लेकिन कर्नाटक, झारखंड साथ ही साथ पंजाब में पेपर लीक के मसले पर विपक्ष की चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा? गौर नहीं किया हो तो एक बार फिर सुन लीजिए कि उन्होंने किन किन देशों का नाम लिया है। जी हाँ, पहला नाम लिया सऊदी अरब का, दूसरा नाम लिया यूएई का और तीसरा नाम लिया कतर का। सवाल ये है कि पूरी दुनिया में शांति दूत बने घूम रहे पाकिस्तान का क्या हुआ? ट्रंप के बयान ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद शांति वार्ता में पाकिस्तान को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितनी पिछली शांति वार्ता में दी थी। ट्रंप ने ईरान को दिया आखिरी मौका, सबसे बड़ी तबाही से बचने का मौका। वैसे सीज फायर को लेकर ट्रंप को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, लेकिन ट्रंप का साफ कहना है कि उन्होंने ईरान को भयंकर तबाही से बचाने के लिए हमला ना करने का फैसला लिया। लेकिन आखिर कब तक? मीडिया ने जब ये सवाल दागा तो जवाब आया कि ये ईरान के लिए आखिरी मौका होगा, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई राहत नहीं। अब देखना यह है कि बातों और मुलाकातों की यह ताकत मिसाइलों को कब तक रोक पाती है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कबूली गलती, डीप फेक और कंटेंट गड़बड़ियों पर मांगी माफी। यूपी में योगी अखिलेश के बीच छिड़ी चांग विधानसभा हंगामे पर परसे मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का पलटवार, सरकार बनी तो करेंगे नोटबंदी की जांच। संबल हिंसा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में पूर्व नियोजित साजिश का खुलासा, सांसद बर्क और विधायक इकबाल के बेटे का नाम आया सामने। 24 नवंबर 2024 को हुआ पथराव, गोलीबारी और आगजनी। रांची में आंदोलनकारी छात्रों से मिलने पहुंचा सरकार का प्रतिनिधिमंडल, प्रस्ताव पर कर रहे हैं बातचीत। सीएम सोरेन बोले, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जारी पाकिस्तान के अत्याचार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद का विवादास्पद बयान, कहा वहां के लोगों से हमें क्या मतलब, पाकिस्तानी हुकूमत समझे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल यूपी में चल रही चुनावी राजनीति पर, और ये राजनीति जात पात की ही है, और उसमें भी 50-52 फीसदी वाले ओबीसी की नहीं तो 12-14 फीसदी वाले ब्राह्मणों को लेकर हो रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने पहली बार लखनऊ में आज जनेश्वर मिश्र जयंती कुछ ज्यादा ही धूमधाम से मनाई है। जनेश्वर मिश्र पार्क में पुष्पांजलि से लेकर समाजवादी पार्टी दफ्तर तक तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम, हवन, पूजन, आरती, तमाम काम किए गए। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि छोटे लहिया कहे जाने वाले जनवादी नेता जनेश्वर मिश्र को समाजवादी पार्टी एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में पेश कर रही थी। अखिलेश के मंच पर तमाम ब्राह्मण नेता, विधायक, सांसद बुलाए गए थे। अखिलेश को तोहफे में भी फरसा, शंख, मंत्रोच्चार पत्र, ऐसी चीजें मिल रही थी। और जब अखिलेश के संबोधन का मौका आया तो पहले तो उन्होंने योगी राज में ब्राह्मणों पर अत्याचार की घटनाएं गिनाई, फिर कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी बताकर यादव और ब्राह्मण जाति की मित्रता का हवाला दे दिया, और मंच पर बैठे ब्राह्मण नेताओं का हवाला देकर सम्मान का भरोसा भी दिलाया। लेकिन इस उत्साह में अखिलेश ने यूपी में अपनी सियासत के बुनियादी मंत्र को ही पूरी तरीके से बदल डाला। पीडीए यानी पिछला, दलित, अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश ने पी फॉर पिछड़ा नहीं तो पी फॉर पंडित कह दिया है। वैसे अखिलेश अपने पीडीए की व्याख्या मौके मौके पर बदलते रहे, और इसीलिए बीजेपी उन पर अवसरवादी राजनीति का आरोप भी लगा रही है। लेकिन इन आरोपों प्रत्यारोपों से आगे दंगल में हम चर्चा करेंगे कि आखिर यूपी में क्या इस बार का मतदान जाति फॉर्मूले पर होगा, क्या बीजेपी को 80-90 फीसदी समर्थन देने वाले ब्राह्मण वोट पर अखिलेश डोरे डाल पाएंगे, यूपी में जात पात की सियासत का क्या रुख होने वाला है, तमाम सवाल है। खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसी से जुड़ी यह रिपोर्ट देखते हैं।
2: जनेश्वर मिश्र की ऐसी जयंती लखनऊ वालों ने शायद कभी ना देखी थी। पुष्पांजलि तो हर साल होती थी, लेकिन ऐसा जश्न, ढोल, नगाड़े, डमरू, डांस, आरती, पूजन, ये सब पहली बार हुआ। जर्मन हैंगर टेंट में जनवादी जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर गुंजायमान था। जिन जनेश्वर मिश्र को दुनिया प्रखर समाजवादी मानती है, जिन जनेश्वर मिश्र को उत्तर प्रदेश में छोटे लोहिया की उपाधि मिली, उन्हीं जनेश्वर मिश्र में आज समाजवादी पार्टी एक जाति का चेहरा देखना चाहती है, क्योंकि योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी करार देते देते अब समाजवादी पार्टी खुद को ब्राह्मण हितैषी जताती है, अपना फॉर्मूला तक बदल दिया।
3: पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है, कि पीडीए में पीडी, पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा।
2: और पंडितों से अखिलेश का पॉलिटिकल प्रेम योगी राज में ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार की दावों की कहानी से शुरू होता है, और तब अखिलेश यादव ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर और प्रयागराज में बटुकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों की प्रीति भोज तक का जिक्र कर डाला।
3: क्या कारण था कि गाड़ी पलटा दी गई और न केवल गाड़ी इन्होंने पलटाई, हमारे साथी याद दिला रहे थे कि सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था। कुंभ के आयोजन में केवल वो सच जानना चाहते थे लेकिन सरकार ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, त्रिवेणी में स्नान नहीं करने दिया। उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता।
2: मंच पर बैठे माता प्रसाद पांडे से लेकर इकलौते ब्राह्मण सांसद सनातन पांडे तक का जिक्र करते हुए अखिलेश डोरे डाल रहे थे कि ब्राह्मणों का सम्मान तो समाजवादी पार्टी ही करती है।
3: ये कोई दोस्ती आज की नहीं है, भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
2: और इस सियासी सम्मान के उद्गार के पीछे की जमीनी कहानी कुछ ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में करीब 11-12% ब्राह्मण हैं जो राज्य की 115 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित करते हैं। 2007 में इस ब्राह्मण वोट बैंक के करीब 40% हिस्से ने बीएसपी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। 2012 में सिर्फ 19% ब्राह्मण वोट पाकर अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2014 के बाद से ये वोट बैंक बीजेपी के पास है। 2014 लोकसभा चुनाव में लगभग 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, जो 2017 विधानसभा चुनाव में 80% तक पहुंच गया। 2019 लोकसभा चुनाव में फिर 83% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला, तो 2022 विधानसभा चुनाव में 89% तक ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिलता है, लेकिन 2024 में 80% से भी कम ब्राह्मण वोट एनडीए पाती है। अखिलेश को लगता है कि बिना ब्राह्मण वोट के आशीर्वाद के लखनऊ की कुर्सी हासिल नहीं हो सकती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव कभी नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का नाम गिनाते, कभी गोसाईगंज में भगवान परशुराम की मूर्ति का जिक्र करते हैं, अखिलेश परशुराम जयंती पर अपने राज्य में सरकारी छुट्टी के ऐलान की याद दिलाते हैं। इतना ही नहीं, वो इन दिनों पंडित जी के मुहूर्त से ही बड़े काम करने का दावा करते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर सनातन समाजवाद वाले पोस्टर लगते हैं, तो राजकुमार भाटी जैसे नेता की ब्राह्मण विरोधी बयान के बाद उन्हें जोरदार फटकार भी लगाते हैं।
4: पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं, केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए।
5: ये कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं, ये तो बहरूपिया हैं एक तरीके से, जैसे रूप बदलते हैं सामने देख देख के, ये वही दिखा रहे हैं।
2: दरअसल देश की सियासत में राजनीतिक दलों के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के गठन से पनपी सियासी बेल तरह तरह के जातिवादी मोर्चों तक पहुंची है। ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी चर्चित हुआ और समाजवादी पार्टी 15 से अधिक प्रमुख जातियों और उपजातियों पर केंद्रित करके चुनावी रणनीतियां बनाने लगी। एक तरफ एसपी ब्राह्मणों के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करती है, तो क्षत्रिय वोट के लिए क्षत्रिय समाज मिलन समारोह करती है। वैश्य व्यापारी समाज के वोट के लिए एसपी का व्यापार प्रकोष्ठ, तो गैर यादव ओबीसी वोट के लिए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन से लेकर जनवादी क्रांति यात्रा चलाती है। अखिलेश कभी लोधी गुर्जर जाट समुदाय के लिए साम्यवादी समता भाईचारा अभियान चलाते हैं, तो कभी दलित वोट के लिए बाबा साहेब वाहिनी का गठन करते हैं। और समाजवादी पार्टी के इसी राजनीतिक मंत्र पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी विधानसभा में विपक्ष के व्यवहार को जन विरोधी बता देते हैं।
6: समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है कि इन लोगों का चेहरा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक और इस पूरे तबके के साथ अन्याय करने वाला रहा है, अनर्थ करने वाला रहा है समाजवादी पार्टी के इस अलोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को, जो सर्वनाश व्यवहार लगातार सदन में देखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं।
2: यह और बात है कि पीडीए के पी में अब पिछड़े की जगह पंडित की बात करने वाले अखिलेश की तमाम कोशिश के बाद भी 2022 के चुनाव में यूपी विधानसभा में कुल 52 विधायक जीत कर आए, जिनमें 46 बीजेपी और 6 समाजवादी पार्टी के थे। उससे पहले 2017 में यूपी में 58 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए, जिनमें 48 विधायक बीजेपी के थे और 10 एसपी बीएसपी अन्य दल। और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2022 में 89% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला था, जबकि एसपी को 6-7% ही ब्राह्मण वोट मिला। और तब 2017 में करीब 80% ब्राह्मण वोट पर बीजेपी का कब्जा था और एसपी गठबंधन को करीब 11% ब्राह्मण वोट मिला था। देखना है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश का पी फॉर पिछड़ा का झंडा बुलंद होगा या फिर पी फॉर पंडित का। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बड़ी दिलचस्प बात है कि लोहिया के नाम पर, राम मनोहर लोहिया के नाम पर पार्टी बनाने वाली समाजवादी पार्टी को अब छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की याद आ रही है, क्योंकि उनका नाम जनेश्वर मिश्र है। किसी कम्युनिटी की पॉलिटिक्स है, जात की पॉलिटिक्स है, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। गणेश श्याम तिवारी समाजवादी पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राघवेंद्र द्विवेदी बहुजन समाज पार्टी से इस चर्चा में शामिल होंगे। आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और वरुण पुरोहित भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तीन सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या जनेश्वर मिश्र जयंती बनाकर अखिलेश ने ब्राह्मण वोट पर डोरे डाले हैं, क्योंकि अब इसे प्रबुद्ध सम्मेलन कहा गया है? क्या पीडीए में पी का मतलब पंडित बताना समाजवादी पार्टी की अवसरवादी राजनीति है, क्योंकि अब तक पीडीए के कई डेफिनेशंस हो चुके हैं और अब यह नया डेफिनेशन पी मतलब पंडित, यह नया डेफिनेशन समाजवादी पार्टी से रखा गया है। तीसरा सवाल, क्या यूपी में बीजेपी को मिलते रहे ब्राह्मण वोट में अखिलेश सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि अब तक ये वोट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ता है। 2017 और 2022 में 80% से ज्यादा ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही गया था। शुरुआत करेंगे इस बार समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उन्हीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो घनश्याम तिवारी जी, आपको अवसरवादी क्यों नहीं कहा जाए, क्योंकि अब तक तो आपको कभी ब्राह्मण समाज की इस तरीके से याद नहीं आई। जैसे मैंने कहा कि राम मनोहर लोहिया के नाम पर पार्टी बनाई, अब छोटे लोहिया की याद आ रही है, क्योंकि उनका नाम मिश्रा है।
7: नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। आज तक एक प्रबुद्ध चैनल है, मुझे लगता है कि हम तर्कों और तथ्यों के साथ बात करें तो उपयुक्त होगा। आपका कोई भी दर्शक अगर जनेश्वर मिश्र जी की समाजवादी पार्टी से जुड़ाव के बारे में चर्चा करे, आपको मेरी आवाज आ रही है?
0: जी जी।
7: आपका कोई भी दर्शक अगर जनेश्वर मिश्र जी के समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ाव की चर्चा करे, चाहे 1950 से 1960 का दशक हो, जब छोटे लोहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के प्रत्यक्ष शिष्य थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में सक्रिय थे, या 1970 का दशक था जब उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, या फिर 1977 से 1980 का दशक था या 1980 के बाद का दशक था लगातार, और उसके बाद इस तरीके से हमने उनके नाम पर अखिलेश यादव जी की सरकार ने जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, जो वाकई समाजवाद की पहचान है। जिस पार्क में पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जाता है अपने परिवार के साथ, वो प्रकृति का आनंद लेता है, वो समाजवाद को महसूस करता है कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक तरीके से सरकारी तंत्र के माध्यम से बनी हुई एक बेहतर मिसाल का उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतनी लंबी कड़ी है कि इसमें अवसरवाद का तो सवाल ही नहीं उठता है। अवसरवाद का सवाल तो उन पार्टियों से उठाना चाहिए जो चंदा चोरी करते हैं और भगवान राम की राजनीति की करते हुए राजनीति में आते हैं।
0: घनश्याम तिवारी जी, इस पे कोई दो राय नहीं है कि जनेश्वर मिश्र पार्क समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब बनाया गया था, और जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी से जुड़े ही नहीं तो समाजवादी आंदोलन से जुड़े नेता थे। राम मनोहर लोहिया और राज नारायण के चेले थे और इसीलिए उन्हें छोटा लोहिया भी कहा जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब उनका निधन हुआ तब भी वो समाजवादी पार्टी के ही राज्यसभा के सांसद थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया गया था, वो एक समाजवादी नेता थे, इसके वजह से बनाया गया था। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हमने देखा, आरती, पूजन, हवन, ये सारा जनेश्वर मिश्र की जयंती बनाने के लिए आप जो बना रहे हैं, ये नई बात है। और इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि आज उन्हें ब्राह्मण बनाया गया है, पहले वो समाजवादी नेता थे, आज उन्हें ब्राह्मण नेता के तौर पर पेश किया जा रहा है, ये बदलाव देखा गया, इसके लिए सवाल उठता है।
7: बेहतरीन सवाल है साहिल। देखिए, आपके दर्शक जिनको मैं 10 सालों से जानता हूं आपके मंच के माध्यम से, वो देख रहे हैं कि 10-12 साल से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी को हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी और न जाने कौन कौन सा विरोधी का सर्टिफिकेट बांटते चल रहे हैं। वो तय कर रहे हैं कि
0: आप थोड़ी देर रोकना चाहूंगा, राहुल गांधी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं पहले, उसके बाद दोबारा लौटेंगे चर्चा।
8: जो हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं उनसे, भैया प्लीज शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। जो हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट से, उनसे मेरी अभी मीटिंग हुई थी, डिस्कशन हुआ था, फ्रैंक डिस्कशन। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो हजारों यंगस्टर्स हैं इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की है, मगर इनका नॉन स्टॉप हरेसमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। तो मैं चाहूंगा कि दो दो शब्द ये भी बोले। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज अ सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरी सिंगल यंग पर्सन हु हैज डन दिस। यू हैव डन नथिंग रॉन्ग एंड द क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग योर अपोलॉजी डज नॉट अराइज। यू डू नॉट हैव टू अपोलोजाइज टू एनीबॉडी, यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। आईड लाइक टू से टू वर्ड्स इन इंग्लिश। वी हैड अ फ्री विलिंग कॉन्वर्सेशन विद some of the young protesters. They mentioned to me how they were assaulted, beaten, threatened. I'm very proud of them. I'm very proud of what they have done, what thousands of young Indians like them have done. They have defended the constitution, they have protected the idea of India, they have protected India's future. Complaining about the education system, which is a flawed system, a collapsing system, a useless system, is not a crime. If anything, the system needs to be changed, it needs to be corrected. And that is all they were asking for. They were not doing violence, they were not being aggressive, they were not being nasty. They were beaten, they were assaulted, they are threatened. Accepting their apology, forcing them first, sending gundas to their house. Mahilaon ke ghar mein gunda bhejne ke baad, forcibly unse apology, 15 saal ki bachchi se apology lena, aur phir उस अपोलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपोलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस। वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। वी वांट ए एजुकेशन सिस्टम दैट वर्क्स, वी वांट एग्जाम लीक्स टू स्टॉप एंड वी वांट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री हु इज देम टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। सो वुड यू लाइक टू से अ वर्ड?
9: हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया आहिर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। बट जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ ये ही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं मेरे बारे में, गलत गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीस में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी क्योंकि वो ये बोल रहे हैं। 27th को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज अ सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहे। थैंक यू।
8: एक सेकंड।
9: हेलो,
8: इनको इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। इनको पैलेट गन इंजरी हुई थी, ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन यूज नहीं की गई, ये आपको थोड़ा बताएंगे।
10: मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और प्लेट गन मैं अपने आंखों से देखी थी कि हमारे साइड पॉइंट गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया। और मुझे पता, अच्छी तरह से पता है, मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन सी लगी है, बस मुझे ये पता है। पर जब जब देश में जंतर मंतर 20 तारीख और जब जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले हम खड़ा होंगे जरूर।
11: मैं फरहनाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ, मैं एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे, इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम, क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरहनाज, पहले उन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम किया, मैंने कहा फरहनाज, इनका इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही है। तो सर अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते हैं, तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे, हम हक के लिए अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद जय भारत।
12: मेरा नाम भरत बानाइत है, मैं नागपुर से आया था, जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाक्या, तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की, शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को, मुझे इस तरीके से लगता है। क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद कईयों बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था, उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए, मतलब इस तरीके का वाक्य हमने देखा। और अभी तक जिंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा और ये मेरे जिंदगी का ब्लैक डे था और ये जिंदगी में किसी के नहीं आना चाहिए, इसलिए सबने एक साथ सब खड़े हुए। और जैसे मुझे मारा गया तो लोग देख के आए, पर अभी हमें लगता है कि उस दिन अगर हम रुकते नहीं जंतर मंतर पे तो ये लोकतंत्र का आखिरी दिन होता, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।
13: हाय अभिमान, मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बस इतना बताऊंगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था अगर वो आके मुझसे माफी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज्यादा गालियां मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है। और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ। थैंक्स।
14: आप सब लोगों से सवाल है कि आप कह रहे हो इंटिमिडेट किया जा रहा है, आप कह रहे हो डराया जा रहा है, आपके ऊपर एक्शन हो रहा है, इवन देन यू आर स्टैंडिंग हियर, व्हाट मेक्स यू स्टैंडिंग हियर?
15: नो, बट आई वांट टू से समथिंग एल्स,
14: या
15: व्हिच इज इवन मोर पावरफुल।
14: यस,
15: दैट there are young people who are standing here in front of India's press, but Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here.
13: अगर ये बाहर जाएगा उसके बाद हमें रोज और गालियां पड़ने वाली हैं।
14: What makes you standing here?
15: They are Indian.
13: कल को मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। So as a woman of this country, please tell me where am I supposed to go to for my protection?
16: मुझे बस आप इतना बता दीजिए।
15: जस्ट वन सेकंड, वन सेकंड,
16: मेरा बस एक सवाल है जो भी ये देख रहा है उनसे, क्या जस्टिस आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर हो, या आर्टिकल 14 के हिसाब से जस्टिस सबके लिए इक्वल है? ये मेरा सवाल है।
15: सो नो, लास्ट थिंग आई वांट टू से, वन सेकंड, वी आर नॉट टेकिंग एनी मोर क्वेश्चन। लास्ट थिंग आई वांट टू से इज दैट फॉर देम टू कम हियर।
0: तो आंदोलनकारी छात्रों के साथ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका वही आरोप है कि आखिरकार इन छात्रों पर लाठियां क्यों बरसाई गई, और वो छात्रों ने भी अपनी भूमिका इस पर बताई है और सरकार से कुछ सवाल पूछे। लौटते हमारी इस चर्चा की तरफ, घनश्याम तिवारी अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद के शर्मा जी उस पर अपनी भूमिका रखेंगे।
7: देखिए, दो बातें कहूंगा मैं, जो अपनी बात खत्म कर रहा था वो इसी से जुड़ी हुई है। पिछले 12 सालों में आपने देखा है कि के शर्मा जी जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व लोग मौके मौके पर आपको सर्टिफिकेट देके जाते हैं, आप एंटी नेशनल हैं, आप एंटी हिंदू हैं, आप एंटी राम हैं, आप एंटी ये हैं, एंटी वो हैं, सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। जिस पार्टी ने पिछले 12 साल में 25,000 करोड़ का चंदा जमा किया है, जिसने संसद को शॉपिंग मॉल बना रखा है, जिस पार्टी में 800 MPs और MLAs हैं, ये स्टेटिस्टिक्स हैं, जिनके क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं आज की डेट में, वो पार्टी 12 साल से सबको, आज छात्रों को सर्टिफिकेट बांट रही है, बेटियों को सर्टिफिकेट बांट रही है, लाठी और पैलेट गन तो उपहार है। तो जब हम जनेश्वर मिश्र जी के, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर उनके पार्क में कार्यक्रम करना चाहते हैं, वो पार्टी हमें करने नहीं देती है। जब अपने दफ्तर में करते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं हर कार्य से कि हम किसी पार्टी के, वैसे भी नकली पार्टी जो कि चंदा चोरी करती है, चढ़ावा चोरी करती है, उसके सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। इस देश की संस्कृति में जो भी रिचुअल है, जो भी तरीके हैं, किसी भी जयंती को, किसी भी समय को और किसी भी विषय को सेलिब्रेट करने के, उसके अनुसार हम काम करेंगे। इसमें हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको अच्छा लगता है आपका साधुवाद, आपको अच्छा नहीं लगता है उसमें भी साधुवाद।
0: सर्टिफिकेट आपकी तरफ से भी दिया गया, पीडीए का नाम बदल दिया गया, पीडीए में जो पी था वो पिछड़ी की जगह पे, पीड़ित की जगह पे अब पंडित हो गया है। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। के शर्मा जी, आप कैसे देखेंगे इस बात को, क्योंकि एक बड़ी चौड़ी चार्जशीट भी अखिलेश यादव वहां पर गिनवा रहे थे कि आपकी सरकार कैसे ब्राह्मण विरोधी है, ठाकुरवाद की सरकार है।
17: देखिए साहिल जी, हंसी आती है कि चोर साहूकार बनने चला है। मुझे आश्चर्य हुआ कि समाजवाद और जातिवाद का क्या लेना देना। जनेश्वर मिश्र जी के विचारों को कभी अखिलेश यादव ने पढ़ा भी है, उनके भाषणों को सुना भी है, उसमें जातिवाद की दुहाई है क्या, ब्राह्मणवाद की दुहाई है क्या? तो असली बात तो ये, श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं जनेश्वर जी को, उनके प्रति उसको जाति को लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, पीडीए आपने ठीक कहा, अब पी से पंडित हो गए, अब पिछड़ा गए तेल लेने अब पी पंडित हो गए। ये वास्तव में पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अपने परिवार का, मुलायम खानदान, अखिलेश खानदान का कैसे हम विकास करें, ये है पीडीए, इसका एक्चुअल है। तीसरी बात, अभी घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, साहब हम सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं, आपके पाप आपके कुकर्म आपको सर्टिफाइड करते हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं, आप ब्राह्मण विरोधी हैं, क्योंकि यदि आप ब्राह्मणों की बात करते हैं तो हिंदू धर्म की भी बात आती है। और ये आपकी सर्टिफाइड क्या है, पहले मैं ब्राह्मणों में बता देता हूं, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, बहुत लंबा बोला है सर इन्होंने। 2013 मैं एक साल की एक दो घटना केवल बताता हूं इंपॉर्टेंट। इटावा, जो कि मुलायम सिंह का गृह क्षेत्र है, अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, यहां ब्राह्मण परिवारों, परिवार नहीं सर, ब्राह्मण परिवारों की महिलाओं और बच्चों के मुंह में कालिक पोत कर गांव से बाहर निकाला गया। और जब इसका यहां पर सदन के अंदर में विरोध हुआ तो क्या बोला मुलायम सिंह यादव ने, सुना आपने? ऐसी घटनाएं तो होती रहती, ये तो भाषा थी सर। मैनपुरी में 3 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, कोई कॉग्निजेंस नहीं। हमीरपुर में 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई, ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये जागरण अखबार है, ये जागरण अखबार की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं कोई हवा हवाई बात आपसे नहीं कर रहा हूं साहिब जी, ऐसे में कई घटनाक्रम बता सकता हूं आपको। आज इनको ब्राह्मणों का सुधा गया
0: और यही तो कारण है ना कि आपके साथ में ब्राह्मण समाज 2017 और 2022 में 83 और 89% के साथ खड़ा हुआ है और आज की स्थिति में भी आपके ब्राह्मण विधायक सबसे ज्यादा है। अगर 52 कुल संख्या है, 52 विधायकों की संख्या है ब्राह्मण विधायकों की, तो आपके पास करीब 45 विधायक ऐसे हैं कि जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। मुद्दा वो नहीं है, अब एक नई चार्जशीट आपके खिलाफ भी रखी गई है, जैसे कानपुर के भीतर जो डिमोलिशन की कार्यवाही हुई उसमें जो दीक्षित परिवार में जलकर उनकी उनकी मौत हो गई वो एक मुद्दा उठाया गया। विकास दुबे उनकी एनकाउंटर का मुद्दा उसमें उठाया गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जो बटुक है उन पर जो कार्यवाही हुई उसका मुद्दा उसमें उठाया गया है।
17: नहीं, जो आप शंकराचार्य जी का मुद्दा बता रहे हैं ये वही है ना सर, जिनको 2016 में बनारस में लाठियों से जो है पीट पीट के अधमरा कर दिया था, इन्हीं को, इन्हीं के साथी और जो साधु संत थे, तब इनको ध्यान नहीं है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये दोहरा चरित्र है अखिलेश यादव का, ये बहुरूपीय है। आज इनको पूरे वहां उत्तर प्रदेश में विकास का मुद्दा नहीं दिख रहा है, कोई मुद्दा नहीं है, इनको समझ ही नहीं आ रहा, तो इसलिए ये इस तरह की जातिवादी मुद्दा उठा रहे हैं। और ये क्या, ये मैं वही कह रहा था कि आप हिंदुओं का अपमान करते रहे। क्या कहा अखिलेश यादव ने साहब, कि कहीं भी एक पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, वो मंदिर बन जाएगा साहब। ये तो आस्था है हिंदू धर्म के प्रति इनकी। दीपावली के समय अखिलेश यादव ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि ईसाइयों से सीखो मोमबत्ती जलाए, ये अखिलेश यादव की विचारधारा है सर।
0: लेकिन शर्मा जी कहीं
17: रामचरित की
0: गाइडलाइंस महंगी तो साबित नहीं हो रही है।
17: आम फाड़ा गया, जलाया गया, क्या
0: यूजीसी गाइडलाइंस कहीं महंगी तो साबित नहीं हो रही है?
17: मुझे बात तो करने दीजिए, मैं जो कह रहा हूं आप किस ऐसा है सर, ये कुछ बैठे हैं तथाकथित राजनीतिक पंडित बने बैठे रहते हैं, ये इन लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। ये मोदी विरोध भाजपा विरोध में सारी गाते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होता सर। देश अच्छे से समझता है, देश जानता है, सबको पता है कि यदि समाजवादी आएंगे तो अत्याचार किस पर होगा, दलितों पर, ब्राह्मणों पर, ये पहले निशाने होते हैं समाजवादी माफियाओं के और गुंडों के। ये उत्तर, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं अच्छे से जानता हूं समाजवाद को, सबसे पहला अत्याचार दलितों और ब्राह्मणों पर होगा, यही सच्चाई है समाजवाद की। और फिर अखिलेश यादव जो अपने पिता के नहीं सगे हुए, वो दूसरे के क्या सगे होंगे सर। मुलायम सिंह को जिस तरह से बेइज्जत किया, जिस ढंग से मंच से उतार के नीचे किया, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो समाज का होगा, देश का होगा, क्या कहते हैं?
0: घनश्याम तिवारी
17: आपको जवाब देने का लगातार हार रहे हैं।
0: संगीन आरोप है, आप किसी के भी हो सकते हैं। आज ब्राह्मण समाज की आपको याद आ रही है, लेकिन राघवेंद्र द्विवेदी जो मायावती जी ने 2007 में दांव खेला था, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, उसी से पन्ना खींचकर आज समाजवादी पार्टी अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? आपके साथ भी ज्यादा दिन नहीं रहा वो समाज।
18: देखिए साहिल जी, देखिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और कांग्रेस के जो उनके सलाहकार हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता को, पहले तो छोटे लोहिया जी के बारे में पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि वो हमेशा से परिवारवाद के विरोध में रहे हैं, वो हमेशा समाजवाद की बात करते थे। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही चार चार बार। अब ये चुनाव के ऐन मौके पर इस तरह का कार्यक्रम करना, कल तक आप पीफर जो पिछड़ा बता रहे थे, आज वो पीफर पंडित हो गया। जब आपकी सरकार रहती है तो आपके जिले में वाजपेयी परिवार को जूते का माला पहनाकर और आपके जिले में घुमाया जाता है। जब उस खबर को एक राष्ट्रीय अखबार छापता है तो आपके लोगों द्वारा उस पर प्रेशर बनाया जाता है। जब जब आपकी सरकार रही, सबसे ज्यादा या तो ब्राह्मण प्रताड़ित किए गए, नहीं तो अनुसूचित प्रताड़ित किए गए। आपके सरकार के लोगों द्वारा किया क्या जाता है ब्राह्मणों के प्रति? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं पीडीए का फुल फॉर्म है पीट देगा अहिर, और वास्तव में जब जब सरकार रही है केवल अहिर पीटने का ही काम किया है। आज भी जो पीड़ित और शोषित और वंचित जनता

0: नाम पे ओछी राजनीति की है, भ्रष्टाचार की है, ब्राह्मणों के लिए क्या किए। अब चुनाव के समय अगर आप 10 ब्राह्मण को ये शंख बजवा दें, या इनको तो कायदे से उनके परिवार को, जिनके नाम पे आज कार्यक्रम किए उनके परिवार को शामिल करना चाहिए था, या इनके प्रवक्ता बताएं कि आज उनकी परिवार किस माली हालत में है। 2009 से 2014 तक
1: कहीं पंडितों के चक्कर में पिछड़ा ना खिसक जाए।
2: 2000 जी, दो बातें,
1: एक मिनट उनको खत्म करने दीजिए, उनको 10 सेकंड और चाहिए, प्लीज उनको खत्म करने दीजिए। जी बोलिए द्विवेदी जी।
0: इनको ये कंफर्म करना चाहिए कि जब 2009 में स्थिति खराब हुई तो 2009 से 2014 तक क्या स्थिति थी, इसी जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर समाजवादी पार्टी में क्या क्या हुआ। आज आप सनातनी बन रहे हैं, जब आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू सनातन पर क्या क्या कहे तब आप क्यों नहीं आए, तब अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बयान दिए, अभी राजकुमार भारती द्वारा जो कहा गया,
1: इसलिए आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाकर डांट दी जाती है जब वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ कोई बयान देते हैं। यही तो राजनीति का खेल होता है ना गणेश श्याम जी।
2: सही जी, दो बातें कहूंगा। पहली बात कि हम एक सभ्य चर्चा में बैठे हुए, मैं के शर्मा जी को नहीं कहता कि वो अपने बेटे के हुए या उनके बेटे उनके हुए या नहीं हुए। इस तरह की असभ्य बात शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की असभ्य बात करनी चाहिए। कौन
3: सार्वजनिक मंच पर है
2: और नहीं हुआ, ये बदतमीजी और ये बेशर्मी और ये बेईमानी भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, के शर्मा का संस्कार है। दूसरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज बीच में। दूसरी बात, मैं आपका साधुवाद देता हूं, आज तक का साधुवाद देता हूं कि उन्होंने यहां पर SBSP के प्रवक्ता को बुलाया। SBSP वो पार्टी है जो आप अभी बच्चों का दिखा रहे थे, भारत के सबसे घनघोर जो जघन्य एग्जाम माफिया हैं SBSP से जुड़े हुए हैं, यानी BJP से जुड़े हुए हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से जुड़े हुए हैं। आज यहां पर द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, ये SBSP को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और देश के सारे एग्जाम माफिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके खिलाफ बच्चों ने आंदोलन किया था, जिनके डर से, उन बच्चों के डर से अमित शाह छुपे हुए हैं। जनरल शाह, मैं उन्हें कहता हूं जनरल शाह, छुपे हुए हैं। जिस पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत का दावा करते हैं वो जनरल शाह उस पार्लियामेंट में घुस नहीं पा रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जिस उस सदन के नेता हैं, वो नरेंद्र मोदी उस संसद में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि जो व्यक्ति, जो जनरल शाह के ऊपर आरोप लगते हैं बेटियों के कपड़े फाड़ने के, उस बेटी ने बताया कि किस तरीके से पुलिस ने उसके ऊपर उसके प्राइवेट पार्ट्स में डंडा डालने की कोशिश की।
1: मुद्दा ये नहीं था, मैंने सवाल आपको कुछ और पूछा था, इस पर चर्चा अलग से करेंगे और इस पर चर्चा हम करते रहे। लेकिन गणेश तिवारी जी, जो मैंने आपको SBSP के प्रवक्ता की बात आपने सुनी, आपको याद दिलाया कि आपका ओरिजिनल डेफिनेशन क्या था, और उसमें आपको यह पूछा गया कि कहीं पंडितों के चक्कर में पिछड़ा ना खिसक जाए। आपको तो दोनों देखना होगा ना, 2024 में PDA आपके साथ में खड़ा था और आज आप PDA को भूलकर पंडितों के पीछे लगे हुए हैं।
2: देखिए, बहुत साधारण सी बात है, 2024 में हमने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में भी हराया, बनारस में लगभग प्रधानमंत्री हारते हारते बचे और पूरे उत्तर प्रदेश में हराया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब वोटर पर निर्भर नहीं करेंगे, अब इलेक्टोरल रोल चुराना शुरू करते हैं, वो अलग बात है। तो पूरा उत्तर प्रदेश का हर समाज हमारे साथ खड़ा है, वो गुंडों के साथ खड़ा नहीं होना चाहता कोई भी समाज, चंदा चोरी वालों के साथ, राम जी का चढ़ावा चुराने वालों के साथ, ऐसी पार्टी के साथ जो रोज बेईमानी करती है, रोज बेशर्मी की बात करती है, और 800 MP और MLA जिसके अंदर क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड के हैं इनका, ये के शर्मा जी एक बेसिक गूगल करेंगे इनको पता चल जाएगा। तो किसी को भी कोई भी तोहमत लगाने से पहले एक आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए, अपनी पार्टी की तस्वीर देखनी चाहिए।
1: चेहरा
2: तो ये बता ही रहे हैं।
4: देखिए साहिल जी, बहुत प्रतिष्ठित चैनल है आज तक, और एक कहावत है कि जब तर्क और तथ्य नहीं होते ना तो व्यक्तिगत गाली गलौज की भाषा आती है। वही काम अभी घनश्याम तिवारी कर रहे हैं। मैंने जिस घटना का जिक्र किया, सार्वजनिक मंच पर वो घटना हुई है, मेरे पास उसके वीडियो हैं, और एक मेरे पास नहीं सारे चैनलों के पास वीडियो हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने मंच पर माइक उससे लूट कर और किस तरह से हाथापाई की है, ये सारे देश ने देखा है मुलायम सिंह के साथ जो हुआ।
1: ठीक है, उस पर अलग से चर्चा हो चुकी है। अभी अभी जो बात मैंने तिवारी जी को कही है,
4: मैं नहीं चाहता था कि वैसी बात करूं, लेकिन एक मिनट एक बात मुझे पूछा करना है। मैं वैसे उस जिक्र पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं उसकी पूरी बात बता देता हूं। राजकुमार भाटी इन्हीं की पार्टी का प्रवक्ता है ना, किस तरह से गालियां बकी है ब्राह्मणों को 2 महीना पहले, और पूरा समाजवादी पार्टी मौन रहकर उसका समर्थन किया, किसी ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को उस समय गाली दिया जा रहा था, उस मंच से इनका प्रवक्ता गाली दे रहा था, तब तो साहब बड़ा अच्छा लग रहा था इनको। आज इनको ब्राह्मणों का वोट चाहिए, आज भी उसके ऊपर कोई खंडन नहीं है। तो अखिलेश यादव

0: ने उस ब्राह्मणों को दिए गए गाली का जो है कहीं खंडन नहीं किया बल्कि मौन समर्थन किया। और इसके बाद ये किस मुख से ब्राह्मणों के सामने जाने की बात कर रहे हैं? और ये गुंडा माफिया की पार्टी
1: मुद्दे इसमें निकलेंगे आशुतोष जी,
0: अंसारी कौन था सर?
1: लेकिन नंबर बड़े साफ नजर आते हैं, और जिस तरीके से वोट भारतीय जनता पार्टी को 2017 और 2022 में पड़े हैं, 83% वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, 89% वोट 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, यानी भर भर कर 10-14% की आबादी वाले ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी के पास जाते रहे, 72% 2014 के लोकसभा चुनाव के भीतर भी। बड़ी दिलचस्प बात है, इसके बावजूद जनुआ तोड़ो से लेकर जनेश्वर मिश्र को जनुआ पहनाने की कोशिश आज समाजवादी पार्टी कर रही है, किस बिना पर उन्हें यह कॉन्फिडेंस है कि यह ब्राह्मण वोट उनके पास चले आएंगे?
2: देखिए साहिल, ये देखिए अजीब इत्तेफाक की बात यह है कि जब आपके यहां से आया कि मुझे इस डिबेट में हिस्सा लेना है, तो मैं दरअसल जो किताब पढ़ रहा था, बड़ी दिलचस्प किताब है ये, किताब है देख लीजिएगा इसको, ये किताब है भंवर मेघवंशी की, जिन्होंने किताब लिखी थी मैं एक कार सेवक था, अंबेडकरवाद की रोशनी में आरएसएस का द्विज राष्ट्रवाद, परत दर परत पड़ताल। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि दरअसल जो कि 1990 के बाद जब आरएसएस को यह लगा कि दलितों और पिछड़ों का साथ जरूरी है अगर आपको वाकई में इस देश के अंदर अपनी सरकार बनानी है, तो उन्होंने सायास उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की, ये इस किताब में लिखा हुआ है। और उन्होंने खास तौर पर कहा कि जब बाबरी मस्जिद ढही 6 दिसंबर को, उसके बाद 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको जब गिराया, उसको जब सैक किया गया और फिर जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, तो जब विश्लेषण किया गया तो यह पता चला कि दरअसल दलितों पिछड़ों का जो समर्थन हमको मिल रहा था वो समर्थन मिलना कम हुआ, इसलिए आउटरीच करने की कोशिश की। मुझे लगता है कुछ उसी तरीके के भ्रम में इस वक्त अखिलेश यादव जी भी है, उनको लगता है कि ब्राह्मण तबका जो है वो उनको वोट करेगा। हकीकत यह है कि ब्राह्मण समाज के लोग वो अखिलेश यादव को वोट नहीं करेंगे, ये बात कम से कम समाजवादी पार्टी को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। 89% वोट उन्होंने किया है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव करने चाहिए, जिस पर काम होना चाहिए, वो बेरोजगारी का प्रश्न है, महंगाई का प्रश्न है, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का प्रश्न है, इन सब चीजों को लेके जाना चाहिए। जो छात्र ना गुस्से में थे, जिन छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है, वो क्यों वहां पे थे? क्या वो ब्राह्मण समाज के थे? क्या वो दलित थे? क्या पिछड़े थे?
1: मुद्दे छोड़कर घड़ी की सुइयां उल्टी घुमाने की कोशिश जो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है, उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है उसमें। और इसीलिए वरुण पुरोहित जी, ये कौन सी राजनीति समाजवादी पार्टी करना चाहती है? सहयोगियों को समझाने की जरूरत आ गई, ऐसा नहीं लगता है कभी?
3: साहिल जी, आपसे आग्रह है कि मेरे 30 सेकंड। सबसे बड़े जो फॉल्स नैरेटिव देश में चल रहा है, जिसको मैं कई वर्षों से उठा रहा हूं, कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, ब्राह्मणवाद, ये जो शब्द कर करके ब्राह्मणों को सॉफ्ट टारगेट कर रखा है ना देश के अंदर हर जाति। आप मुझे बताइए, कौन से ब्राह्मण ने किसी दलित की जमीन छीन ली, किसी जाट राजपूत की छीन ली, कोई जमीने छीन ली, कोई व्यापार कर लिया, किसी का क्या छीन लिया? कुछ खाली संस्कृति का रक्षक और संस्कारों का निर्वहन करने के लिए अपना जीवन होम करता है। और ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण की कोई बात ही नहीं हो रही। ब्राह्मण वोट किसको चाहिए? ब्राह्मण वोट जब मायावती जी को चाहिए था, उसके पहले क्या कर रहे थे? ब्राह्मणों के लिए क्या क्या बोलते थे? फिर आना पड़ा ब्राह्मणों की शरण में। भारतीय जनता पार्टी भी ब्रह्महत्या प्रदेश बना चुकी है उत्तर प्रदेश को, योगी आदित्यनाथ जी का आपने देखा होगा, यूजीसी रूल्स में फट गायब हो जाते हैं। ब्राह्मणों को हर तरह से एक्सक्लूड कर दो, ब्राह्मणों को किसी की हिम्मत है कि जाटों और राजपूतों को बोल दे कि हिम्मत नहीं है किसी की टेलीविजन के ऊपर? खाली ब्राह्मण ब्राह्मण, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है इनको, तो ब्राह्मण रिएक्शन करेगा नहीं, हिंसक होएगा नहीं, तो ब्राह्मणों को टारगेट करो सबसे पहली बात। और उत्तर प्रदेश नहीं, सारे देश में पंडा पुजारियों को, पुरोहितों को जिस कदर साइडलाइन कर रहे हैं, मंदिरों से हटा रहे हैं, भाई मंदिरों में इनका क्या हक है, इनका क्या, पूरे देश में देखा जा रहा है ब्राह्मणों के साथ अत्याचार। उत्तर प्रदेश तो जो कि ब्राह्मण डोमिनेटिंग है, उसको आप ब्राह्मणों का किस कदर ब्रह्महत्या प्रदेश बनाए योगी आदित्यनाथ ने। आपने एक शब्द लिया था ठाकुरवाद, तो छत्राणियों का गुजरात में इतना अपमान हुआ, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको हार देखनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी। तो ये ब्राह्मणों के तो कतई कोई सगे नहीं, तो ब्राह्मण अपना अल्टरनेट ढूंढ रहा है। आप ये भी आशुतोष जी ने आपने कहा,
1: समाजवादी बहुत सारे लोग हैं जो इस रेस में शामिल है, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी इस बात को अप्रूव करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
3: मैं आपको कह रहा हूँ, ब्राह्मण अल्टरनेट देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है ब्राह्मणों को 12 साल में और 10 साल यूपी में केंद्र में। अगर नहीं था तो क्यों लाए यूजीसी रूल्स? ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो जाए, यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ कुछ भी हो जाए, तो ब्राह्मणों को ही सॉफ्ट टारगेट कर रखा है। ब्राह्मणों के वोट के लिए
1: आशुतोष जी, आज जो क्या इसका फायदा होगा? मायावती को तो फायदा हो चुका है, मायावती जीत चुकी है चुनाव इससे। 20 सेकंड आखिर।
2: आपने आपके सवाल का जवाब देने के पहले आपके इसी पैनल में देखिए कि 5 ब्राह्मण जाति के लोग हैं, मैं अकेला हूं जो गैर ब्राह्मण हूं, फिर ब्राह्मण कहां से अपने आप को जो है वो इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। मैं रोहित जी को यही कहना चाहता हूं, ब्राह्मण ही इस देश को चलाते हैं, वो असुरक्षित नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव का मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि पीडीए की जो उनकी धारणा है दलितों पिछड़ों को अपने साथ
1: लेकर, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स एक नया मोड लेने की कोशिश कर रही है, बात तो साफ नजर आती है। क्योंकि जनेश्वर मिश्र की जयंती जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने बनाई, पूरा डेफिनेशन पीडीए का उन्होंने बदल दिया। वो 60 सीटें जहां पर ब्राह्मण वोट 20% से ज्यादा है, क्या वो कमाल दिखाएंगी? समाजवादी पार्टी के लिए उसका फायदा होगा, नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

मुल्तानी घू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घू का कॉफ सिरप,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Papa.
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया
2: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: मिनट से चार्ज हुआ यार।
6: ओला बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: इन एसोसिएशन विद
9: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
8: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
10: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
11: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
12: द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द सेंटर गॉट रिड ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ अ सीरीज ऑफ किलिंग्स इन पंजाब, इंक्लूडिंग मेनी प्रोमिनेंट पीपल। सो थिंग्स हैड गॉन रियली बैड इन पंजाब।
13: कांग्रेस पार्टी वाज ट्राइंग टू से कि अकालीज हैव टू बी डिफीटेड, यू मस्ट नॉट अलाउ सम अदर फैक्शन ऑफ द अकालीज टू प्रॉप अप सो दैट वोट्स आर डिवाइडेड।
14: दे क्रिएटेड दिस फ्रैंकेनस्टाइन कॉल्ड भिंडरवाला।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जनेश्वर मिश्र की ऐसी जयंती लखनऊ वालों ने शायद कभी ना देखी थी। पुष्पांजलि तो हर साल होती थी, लेकिन ऐसा जश्न, ढोल नगाड़े डमरू डांस आरती पूजन, ये सब पहली बार हुआ। जर्मन हैंगर टेंट में जनवादी जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर गुंजायमान था। जिन जनेश्वर मिश्र को दुनिया प्रखर समाजवादी मानती है, जिन जनेश्वर मिश्र को उत्तर प्रदेश में छोटे लोहिया की उपाधि मिली, उन्हीं जनेश्वर मिश्र में आज समाजवादी पार्टी एक जाति का चेहरा देखना चाहती है, क्योंकि योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी करार देते देते अब समाजवादी पार्टी खुद को ब्राह्मण हितैषी जताती है, अपना फॉर्मूला तक बदल दिया। और पंडितों से अखिलेश का पॉलिटिकल प्रेम योगी राज में ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार की दावों की कहानी से शुरू होता है। और तब अखिलेश यादव ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर और प्रयागराज में बटुकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों की प्रीति भोज तक का जिक्र कर डाला। मंच पर बैठे माता प्रसाद पांडे से लेकर इकलौते ब्राह्मण सांसद सनातन पांडे तक का जिक्र करते हुए अखिलेश डोरे डाल रहे थे कि ब्राह्मणों का सम्मान तो समाजवादी पार्टी ही करती है। और इस सियासी सम्मान के उद्गार के पीछे की जमीनी कहानी कुछ ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में करीब 11-12% ब्राह्मण हैं, जो राज्य की 115 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित करते हैं। 2007 में इस ब्राह्मण वोट बैंक के करीब 40% हिस्से ने बीएसपी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। 2012 में सिर्फ 19% ब्राह्मण वोट पाकर अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2014 के बाद से ये वोट बैंक बीजेपी के पास है। 2014 लोकसभा चुनाव में लगभग 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, जो 2017 विधानसभा चुनाव में 80% तक पहुंच गया। 2019 लोकसभा चुनाव में फिर 83% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला, तो 2022 विधानसभा चुनाव में 89% तक ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिलता है, लेकिन 2024 में 80% से भी कम ब्राह्मण वोट एनडीए पाती है। अखिलेश को लगता है कि बिना ब्राह्मण वोट के आशीर्वाद के लखनऊ की कुर्सी हासिल नहीं हो सकती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव कभी नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का नाम गिनाते, कभी गोसाईगंज में भगवान परशुराम की मूर्ति का जिक्र करते हैं, अखिलेश परशुराम जयंती पर अपने राज्य में सरकारी छुट्टी के ऐलान की याद दिलाते हैं। इतना ही नहीं, वो इन दिनों पंडित जी के मुहूर्त से ही बड़े काम करने का दावा करते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर सनातन समाजवाद वाले पोस्टर लगते हैं, तो राजकुमार भाटी जैसे नेता के ब्राह्मण विरोधी बयान के बाद उन्हें जोरदार फटकार भी लगाते हैं। दरअसल देश की सियासत में राजनीतिक दलों के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के गठन से पनपी सियासी बेल तरह तरह के जातिवादी मोर्चों तक पहुंची है। ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी चर्चित हुआ और समाजवादी पार्टी 15 से अधिक प्रमुख जातियों और उपजातियों पर केंद्रित करके चुनावी रणनीतियां बनाने लगी। एक तरफ एसपी ब्राह्मणों के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करती है, तो क्षत्रिय वोट के लिए क्षत्रिय समाज मिलन समारोह करती है। वैश्य व्यापारी समाज के वोट के लिए एसपी का व्यापार प्रकोष्ठ, तो गैर यादव ओबीसी वोट के लिए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन से लेकर जनवादी क्रांति यात्रा चलाती है। अखिलेश कभी लोधी गुर्जर जाट समुदाय के लिए साम्यवादी समता भाईचारा अभियान चलाते हैं, तो कभी दलित वोट के लिए बाबा साहेब वाहिनी का गठन करते हैं। और समाजवादी पार्टी के इसी राजनीतिक मंत्र पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी विधानसभा में विपक्ष के व्यवहार को जन विरोधी बता देते हैं। ये और बात है कि पीडीए के पी में अब पिछड़े की जगह पंडित की बात करने वाले अखिलेश की तमाम कोशिश के बाद भी 2022 के चुनाव में यूपी विधानसभा में कुल 52 विधायक जीत कर आए, जिनमें 46 बीजेपी और 6 समाजवादी पार्टी के थे। उससे पहले 2017 में यूपी में 58 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए, जिनमें 48 विधायक बीजेपी के थे और 10 एसपी बीएसपी अन्य दल के। और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2022 में 89% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला था, जबकि एसपी को 6-7% ही ब्राह्मण वोट मिला। और तब 2017 में करीब 80% ब्राह्मण वोट पर बीजेपी का कब्जा था और एसपी गठबंधन को करीब 11% ब्राह्मण वोट मिला था। देखना है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश का पी फॉर पिछड़ा का झंडा बुलंद होगा या फिर पी फॉर पंडित का। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: संसद में देश के गृह मंत्री डंके की चोट पर कहते हैं, पीओजे के हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि पीओजेके के सुपुर्द करते ही पाकिस्तान से सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जब तब चुनौती देते हुए पूछते रहते हैं कि पीओजेके पर हमारा कब्जा कब होगा। तो जिस सवाल पर पूरा देश एकजुट है, एक ही सुर और लय में बोलता है, उसी सवाल पर उमर अब्दुल्ला के एक सांसद कुछ ऐसा बोलते हैं कि किसी को भी बुरी तरह चुभ जाए। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रिजवान का ये बयान। सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला अपने ही सांसद के ऐसे बयानों का खंडन करेंगे? पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, ब्रेक के उस पार देखेंगे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।

मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कबूली गलती, डीप फेक और कंटेंट गड़बड़ियों पर माफी मांगी। केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को कल फिर से पेश होने का समन दिया। जंतर मंतर की घटना पर राहुल गांधी ने फिर गृह मंत्री को घेरा। प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ना हिंसा पर बोलते हैं ना संसद आते। उत्तर प्रदेश में योगी अखिलेश के बीच छिड़ी जंग, विधानसभा हंगामा।

0: दावे पर वर्षे मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का पलटवार, सरकार बनी तो करेंगे नोटबंदी की जांच। संभल हिंसा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में पूर्व नियोजित साजिश का खुलासा, सांसद बर्क और विधायक इकबाल के बेटे का नाम आया सामने। 24 नवंबर 2024 को हुआ था पथराव, गोलीबारी और आगजनी। और रांची में आंदोलनकारी छात्रों से मिलने पहुंचा सरकार का प्रतिनिधिमंडल, प्रस्ताव पर हो रही है बातचीत। सीएम सोरेन बोले, दरवाजे सबके लिए खुले।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: अभी भी उनको ईगो है और उनकी ईगो सेटिस्फेक्शन कर लेने के लिए वो ऐसा धंधा कर रहे हैं।
3: लिबर्टी डेमोक्रेसी है, आप क्वेश्चन आवर नहीं चलेंगे।
4: नारेबाजी करना लोग, राहुल गांधी भी एक भगोड़ा ही है, संसद से भाग जाते हैं।
5: किरण रिजिजू मेट राहुल गांधी विद गवर्नमेंट एजेंडा।

0: मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज चर्चा होगी देश की संसद पर और जो आर पार की लड़ाई इस वक्त थम नहीं रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में आज फिर इंडिया अलायंस ने अमित शाह को घेरने की कोशिश की। दिल्ली में पुलिस एक्शन पर गृहमंत्री के बयान की मांग पर विपक्ष ने मार्च निकाला, लेकिन इन सब के बीच लोकसभा में कार्यवाही नहीं हो सकी है। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी अलग अलग राज्य से आए प्रदर्शनकारियों से मिले हैं और एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से चर्चा कर संसद का जो एक गतिरोध पैदा हो गया है कि भाई चर्चा नहीं हो पा रही है, उसको तोड़ने की कोशिश जरूर की लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी संसद की चर्चा से भाग रहे हैं। आज हम सवाल पूछेंगे कि कौन बहस से भाग रहा है। सवाल यह है कि संसद में बनी स्थिति का जिम्मेदार कौन है। संसद सत्र में संसद से ज्यादा सड़क की सियासत के क्या मायने हैं। सरकार और विपक्ष की लड़ाई में संसद में आई बाधा को कैसे दूर होगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। कौन चर्चा से भाग रहा है इस पर चर्चा करेंगे हल्ला बोल में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भारत की संसद ठप है, सड़क पर संग्राम है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में संसद में इंडिया अलायंस का मोर्चा निकला। गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक अमित शाह जवाब दो और अमित शाह संसद से गायब जैसे नारों वाले पोस्टर और तख्तियों के साथ विपक्ष ने सरकार को घेरा।
1: यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया।
0: विपक्ष के इसी हंगामे से लोकसभा की कार्यवाही भी फिर आज नहीं चल सकी। ऐसे में बीजेपी ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाकर पलटवार में देरी नहीं की।
2: नेता प्रतिपक्ष, खासकर जब संसद का सत्र चल रहा हो तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो संसद जाए, बहस करे, तथ्य दे, जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं संसद के पटल पर रखे। लेकिन आप ये देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के मंदिर से ही दूर भागता है, उसको डर लगता है।
0: गतिरोध की वजह से ठप संसद को चलाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की प्रियंका गांधी की मौजूदगी में राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई। ऐसी चर्चा है कि राहुल गांधी ने पुलिस एक्शन पर अमित शाह के बयान और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद की चर्चा के बिना विपक्ष के सहयोग से साफ इनकार किया।
3: किरेन रिजिजू मेट राहुल गांधी विद गवर्नमेंट एजेंडा। वी आर वेरी क्लियर अबाउट एवरी इश्यू। वी आर टोल्ड अर्लियर इटसेल्फ वी वांटेड डिस्कशन ऑन चंदा चोरी। देन द बिगिनिंग ऑनवर्ड्स वी आर आस्किंग फॉर अ स्टेटमेंट फ्रॉम होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री।
0: वैसे जब कांग्रेस नेतृत्व अमित शाह के बयान और चढ़ावा चोरी पर सरकार पर दबाव बना रहा है, तब पार्टी सांसद इमरान मसूद चढ़ावा चोरी पर थोड़ा अलग स्टैंड लेते नजर आए।
4: चंदा चोरी के साथ?
5: नहीं नहीं, चंदा चोरी विषय नहीं है, ज्यादा बड़ा विषय छात्रों का है। जो चल रहा है हमारा, वही तो चल रहा है हमारा। देखिए, हाउस चलाना चाहिए, चंदा चोरी पे सुप्रीम कोर्ट ने SIT बना दी।
0: वैसे 20 जुलाई से शुरू हुए संसद सत्र में अब तक किसी मसले पर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन सकी है। इसी का नतीजा है कि संसद का विधायी कार्य प्रभावित है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं, चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मलुक नागर महासचिव RLD के हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की, उनके साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आरोप लगाया है कि छात्रों को धमकाया जा रहा है। उनका ये बयान सुनिए।
6: मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। यू हैव डन नथिंग रॉन्ग एंड द क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग योर अपोलॉजी डज नॉट अराइज। यू डू नॉट हैव टू अपोलोजाइज टू एनीबॉडी। यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। महिलाओं के घर में गुंडा भेजने के बाद फोर्सिबली उनसे अपॉलोजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलोजी लेना और फिर उस अपॉलोजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलोजी इज कंप्लीट नॉनसेंस, वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। दे आर यंग पीपल हु आर स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ इंडियाज प्रेस, बट अमित शाह एंड द प्राइम मिनिस्टर डोंट हैव द करेज टू स्टैंड हियर। द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वायलेंस इज मिस्टर अमित शाह, इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही डज नॉट हैव द डिसेंसी टू कम टू पार्लियामेंट, ही डज नॉट हैव द डिसेंसी और द करेज टू कॉमेंट ऑन वॉट इज हैपेंड।
0: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और प्रदीप भंडारी जी, इसी पर जुड़ा हुआ पहला सवाल आपसे है, गृहमंत्री को लेकर, सरकार के बयान को लेकर वो सीधा हमलावर है इस वक्त विपक्ष, वो कह रहा है तो आखिर सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है?
7: नहीं, सरकार इससे पीछे कहां हट रही है अंजना जी, ये तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के अंदर है। सॉलिसिटर जनरल ने तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सरकार का स्टेटमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट तारीख आने वाली है। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट को ब्लैकमेल नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी चर्चा से भाग रही है। पहले कह रहे थे नीट के ऊपर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा उसके बाद चर्चा होगी, अब जाकर ये जानबूझकर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आज जब ये चर्चा करेंगे तो जब झारखंड के अंदर इनकी जहां की सरकार है, जहां का छात्र राहुल गांधी से पूछ रहा है कि क्या झारखंड का बच्चा जो देश का बच्चा नहीं है, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जहां सीबीआई प्रोब वो मांग रहे हैं, राहुल गांधी ने वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहां पे झारखंड की एक बच्ची को साथ में लेकर आया, झारखंड के बारे में तो एक शब्द नहीं बोला, झारखंड पीएससी का पेपर लीक हो गया, सीट बेची गई, कांग्रेस पार्टी वहां तो अपने एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे तक की बात नहीं कर रही, वहां पे सीबीआई प्रोब की बात नहीं कर रही। तो जब जब चर्चा होगी तो इनके सब तार खुलेंगे, जब चर्चा होगी तो इनको पता होगा कि साधुओं का अपमान कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के कहने पे पार्लियामेंट के बाहर कहा जाए, इन्होंने साधु को एक चोर के रूप में बताया। तो आज कांग्रेस पार्टी चर्चा से भाग रही, हम कहा चर्चा से भाग रहे, हम तो 200 से ज्यादा क्रिमिनल्स को, फ्यूजिटिव्स को लेकर आए, जिसपे कांग्रेस पार्टी को पता जब चर्चा होगी तो कांग्रेस पार्टी घबरा जाएगी और कांग्रेस पार्टी को यह भी पता है कि जब पार्लियामेंट के ऊपर चर्चा, पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो लोग राहुल गांधी से सवाल पूछना चालू करेंगे कि भाई उनकी अकाउंटेबिलिटी कहां है, भले वो राम मंदिर का मुद्दा हो गया जहां पे अभी तक प्रभु श्रीराम के मंदिर के दर्शन करने वो नहीं गए, जहां पे वो हिंदू साधु संतों के ऊपर लाठी की बात कर रहे हैं, जहां पे वो हिंदू साधु संतों के प्रभु श्रीराम की मूर्ति को जमीन पर रख रहे हैं और साधु को जो है कॉलर से पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो हम तो चर्चा के लिए तैयार है, पर कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर हंगामा बंद करने का प्रयास तो करे, तब जाके चर्चा होगी। ये देखिए तस्वीर, ये है असली तस्वीर झारखंड के छात्र की, जस्ट बिकॉज वो जीके वन का छात्र नहीं है, जस्ट बिकॉज वो लटेंस का छात्र नहीं, जस्ट बिकॉज 10 लाख रेंट नहीं देता वो दाल रोटी खाने वाला छात्र है, इस देश के भारत का छात्र है, जस्ट बिकॉज भारत को गाली नहीं बकरा, कोई पॉलिटिकल नारा नहीं देख रहा, तो उसका नारा उसकी बात नहीं करेंगे राहुल गांधी? एक स्टेटमेंट आया राहुल गांधी संदीप सिंह चापड़ा से।
0: सापरा साहब, आप दो बातों का जवाब दीजिए, एक तो बीजेपी आरोप लगा रही है, उन्होंने अपनी तरफ से पक्ष रखा कि वो तैयार हैं इस बातचीत के लिए, लेकिन सवाल यह है कि अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग भाग रहे हैं इससे, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है। दूसरी बात, रांची इतना दूर हो गया है?
8: नहीं देखिए अंजना जी, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूं, इनके इन्होंने जिस तरह से उत्तर दिया उसमें मैं एक लाइन में उसका सारांश कर सकता हूं कि चोर मचाए शोर। अरे इल्जाम आप पर लगे हैं, आपको सवालों का जवाब देना है। हमने तो लोकतंत्र प्रणाली के अंदर पार्लियामेंट में आपको एक नहीं पिछले 13-14 दिनों से हम दे रहे हैं ना नोटिस कि भाई आप इन विषयों पर चर्चा करिए, आप वोट चोरी पर चर्चा करने को तैयार नहीं, आप चंदा चोरी पर चर्चा करने को तैयार नहीं, पेपर लीक पर चर्चा करने को। क्यों घबरा रहे, क्यों काहे घबरा रहे? आ रहा ऑडियो? आ रहा है?
0: हाँ आ रहा है, अब आ रहा है, बोलिए बोलिए।
8: हाँ हाँ हाँ, तो काहे घबरा रहे? दरअसल अंजना जी ऐसा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर पार्लियामेंट में बोलेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, पार्लियामेंट में इनको सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और क्या जवाब देंगे? और इनको पता है कि आज नरेंद्र मोदी जी की इमेज जो है वो डैमेज हो चुकी है, आज मोदी मैजिक नहीं चल रहा, ये तो दतिया से और बाकीपुर से भी हमको समझ में आ गया, पूरे देश ने देखा है, तो मोदी मैजिक चल नहीं रहा है, ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए छुपके घूम रहे। अरे भगोड़े तो आप बने हुए, आप पार्लियामेंट के अंदर आकर के वहां पर मंगल मिलन कर सकते हैं, लेकिन आप छात्रों का मंगल प्लान पर चर्चा नहीं कर सकते हैं? ये क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है क्या? देश का लोकतंत्र है, इसमें विपक्ष को सवाल पूछने होते हैं, सत्ताधारी पार्टी को जवाब देने होते हैं। हमें पता है कि संसद जो है बहुमत से चलता है, लेकिन लोकतंत्र जो है वो जवाबदेही से चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है, रील से नहीं चलता है। प्रधानमंत्री रील बना रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? यही तो सवाल हम लोग पूछ रहे हैं जो आप लोग उत्तर नहीं देना चाहते। और ये जेंजी जो है, ये जेंजी आपकी उन बातों में नहीं आने वाला है जो आप करते रहे हैं बातें, जिस तरह से आप बटेंगे तो कटेंगे की बात करते थे, या 80-20 की बात करते थे, या अली बजरंग बली की बात करते थे, मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे। ये छात्र जो है ये आपकी उन बातों में भी नहीं आने वाला, आपकी विभाजनकारी राजनीति का ये वो नहीं बनने वाला है। तो ये छात्र जो है क्लियर कट एक सटीक सवाल पूछ रहा है कि हमारी समस्याओं पर जवाब दो। आपने हमारे पर पैलेट गन क्यों चलाई? आपने टीयर गैस क्यों चलाया? बिहार के अंदर आपने एक
7: क्यों चलाई?
8: इसकी जवाबदारी किसकी है? पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी? आर्मरी से पैलेट गन विड्रॉ करने की इजाजत किसने दी, ये बताइए। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए ना, मैंने तो पूरा शांति से सुना ना आपकी बात, शांति से सुना ना, काहे घबरा रहे? घबराइए मत, घबराइए मत। उत्तर यही घबरा है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के शाह और तानाशाह इसीलिए नहीं आ रहे। अब मैं अंजना जी आपके दूसरे सवाल का उत्तर भी देता हूं। आप झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी संवेदनशील है। हमारे रांची के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, एनएसयूआई के अध्यक्ष और एनएसयूआई की टीम और यूथ कांग्रेस की टीम वहां पर प्रदर्शनकारियों के साथ में बैठी है, हम उनके साथ में हैं। हमने सरकार को कहा कि इसमें संजीदगी से हमको काम करना चाहिए, और वहां के मुख्यमंत्री ने अभी मीडिया पर कुछ देर पहले आकर के कह तो दिया है कि हमारे दरवाजे छात्रों के लिए खुले, हम हर समस्या के लिए जवाबदारी लेने के लिए तैयार हैं। और मुख्यमंत्री ने सीआईडी इंक्वायरी लगाई है, अब एसडीएम और एसडीओ को वहां पर भेजा भी है छात्रों से बात करने के लिए। तो बात करने की जो कोशिश है, जो समाधान निकालने की कोशिश है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो हम कहीं भी छात्रों के खिलाफ नहीं है, झारखंड हो या कहीं भी हो, हम छात्रों के साथ, छात्रों की समस्याओं के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो हमारी सरकार है या विपक्ष की सरकार है, हम संजीदगी से उसका काम लेंगे।
0: लेकिन दिल्ली से रांची में क्या बदल जाता है कि दिल्ली में तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए?
7: मैं जवाब देता हूं।
0: झारखंड में इस्तीफा नहीं चाहिए? सापरा साहब,
8: नहीं, मैं क्या कहता हूं, सीआईडी की इंक्वायरी हो गई है, थोड़ा आपको भी 2-4 दिन इंतजार तो करना पड़ेगा ना। सीआईडी की इंक्वायरी चल रही है, एसडीएम वहां गए हैं, एसडीओ वहां गए हैं, तो वो चर्चा हो रही है, इन्होंने भी तो समय दिया था ना। तो ये जो चीजें हैं वो सारे दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सीआईडी को भी कुछ समय चाहिए, उसके ऊपर तहकीकात होगी। मुख्यमंत्री ने, सोरेन साहब ने कहा है कि मैं पूरी तहकीकात करके आपके सामने आऊंगा।
0: कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी तो समय लिया था, बता रहे हैं वो।
7: वाह वाह भैया वाह, यहाँ एसडीएम भेजो, वहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगो, यहाँ पे चर्चा करो, वहां पे जाके इस्तीफा मांगो। अरे सीट बेचने का काम कर रही है झारखंड में कांग्रेस की सरकार, ये छात्र कह रहे हैं, छात्र चाह रहे हैं कि पेपर रद्द हो, वो आपके एसडीएम या बाबू या मंत्री से नहीं मिलना चाह रहे, वहां पे इंसाफ की बात कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज उनके हाथ में पत्थर नहीं है तो उनकी बात को नहीं मानोगे? जस्ट बिकॉज वो भारत के संसद के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, उनकी बात को नहीं मान रहे? सुनो,
8: 7,000
7: आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, गांधी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ये रहा है दिल्ली से। सुनो, बीच में नहीं बोला था मैंने, सापरा जी मैं पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा, मैं बीच में दिल्ली से झारखंड तक मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सापरा जी उसको मत प्लीज,
0: ठीक है? बारी बारी से
7: दिल्ली से झारखंड में, दिल्ली
0: सापरा जी पर माइक का कंट्रोल मेरे पास है, तो इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं इसको बोलने नहीं दूंगा, उसको बोलने नहीं दूंगा। प्रदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए, टॉपिक पर रहिए, कह रहे हम कदम उठा रहे।
7: मैं टॉपिक पे ही हूं, दिल्ली से झारखंड की फ्लाइट है 2 घंटे 5 मिनट की, 7,700 रुपए मैं ट्रांसफर कर देता हूं सापरा साहब, जाके राहुल गांधी को भेज देना, जितना दिन एक दिन जिम में खर्च करते हैं उतने दिन में एक ट्रांसफर चले जाएंगे। हेमंत सोरेन से जाके मिलके बोलो, सीबीआई की प्रोब ऑर्डर करो, ये छात्र चाह रहा है,
0: कि आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं भंडारी जी, ये जो 2 घंटे की फ्लाइट है, लगे हाथ कीमत भी बता दीजिए फ्लाइट की। एक सेकंड, बीजेपी के कितने नेता जा रहे हैं दिल्ली से इन बच्चों की सुध लेने? विपक्ष कहाँ है? बार बार कहते हैं राहुल गांधी और ये वो, विपक्ष कुछ नहीं करता है, आप क्या कर रहे हैं?
7: है पहुंच गए मैडम, बाबूलाल मरांडी ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके हैं, जो झारखंड के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता है बाबूलाल
0: मरांडी। वैसे तो कांग्रेस के झारखंड के नेता वहां पर मौजूद है,
7: ऑलरेडी जा चुके हैं नैतिक समर्थन।
0: तो फिर वो एनएसयूआई की बात करेंगे ना, आपके कौन से बड़े नेता दिल्ली से जा रहे हैं फ्लाइट से?
7: मैं इसलिए फर्क बताता हूँ,
8: शहर का कांग्रेस पार्टी
7: मैडम, मैं फर्क बताता हूँ। वहां पे वो सरकार में है, उनका मुख्यमंत्री सुन नहीं रहा है, इसलिए राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्होंने प्रणाली रखी थी कि स्टेज पे कॉकरोचों के पास बैठे थे, तो यहाँ तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो छात्रों की बात को सुने। उनको तो टीप है, वहां पे जाके छात्र भीग रहे हैं, वो किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, SC ST का बच्चा। और ये गोली की बात कर रहे थे, गोली तो चिमन भाई पटेल ने चलाई थी गुजरात के अंदर, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने 100 से ज्यादा छात्र मारे गए थे। गोली तो इंदिरा गांधी ने चलाई थी साधुओं के ऊपर, गोली तो तेलंगाना ने चलाई थी कांग्रेस पार्टी ने, जहां 600 से ज्यादा छात्र मारे गए थे, एक गोली नहीं चली है। अगर है एविडेंस तो जाके सुप्रीम कोर्ट को दे दो, झूठ मत फैलाओ, संसद में चर्चा करो ना, दम है तो। ये संसद के बाहर नौटंकी करके साधुओं का अपमान करते हो, संसद के अंदर चर्चा नहीं कर सकते।
0: ठीक है, एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं सीधा भदौरिया जी के पास जाऊंगी, छोटा सा जवाब।
8: अंजना जी, किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता जो है एकदम नंगा झूठ टीवी चैनल पर बैठ करके बोलते हैं कि गोली नहीं चली, पैलेट गन नहीं चली। क्या बिहार के अंदर गोली नहीं चली है? सबको पता है। क्या अंजना जी आप कह सकती है कि नहीं चली है? क्या दिल्ली के अंदर पैलेट गन नहीं चली जब एंट्री पार्लियामेंट?
7: अरे आप बीच में बोलिए
0: प्रदीप जी, प्रदीप जी, सिवान में AK-47 का वीडियो, फिर वहां से एक सेकंड, सिवान में AK-47 का वीडियो, फिर एक अधिकारी पर वहां पर कार्रवाई, वैसे ही दिल्ली में भी अस्पताल की रिपोर्ट जो हमने आज तक पर दिखाई है। अगर नहीं हुआ है तो सामने आकर ऑन रिकॉर्ड आप लोग बोलिए, और कोर्ट में जो कहिएगा वो भी हम लोग दिखाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन इस बात का जवाब भी तो देना चाहिए कि दिल्ली से इतनी दूरी हो गई है रांची की कि वहां पर कोई सुध नहीं, मतलब मुंह से नहीं निकल रहा है शीर्षस्थ नेताओं के। झारखंड के लिए एक ट्वीट, एक पोस्ट नहीं आ रहा है बड़े बड़े नेताओं का।
9: देखिए मैं बिल्कुल आपके बात का जवाब दूंगा, लेकिन आपका शीर्षक बहुत अच्छा था, चर्चा से भागे कौन, सदन में मौन कौन। तो हमने उसको आगे जोड़ दिया, जनता से सवाल से नजर चुराए, आखिर जिम्मेदार कौन? जब सच्चाई की बारी आई फिर लापता हुआ कौन? देश नहीं भूलने वाला, याद रखेगा कौन कौन? लोकतंत्र की चौखट पे सच से परेशान कौन? लोकतंत्र के आईने में बेनकाब हुआ कौन? तो सवाल है कि आपने जो सवाल आज उठाया था उसी में सारा जवाब हमने दे दिया। अब आपने कहा रांची की बात, बिल्कुल मैं डंकी की चोट पे कह रहा हूं चित्रा जी, सॉरी अंजना जी। सवाल यह है कि जो बात यहां पे बार बार हो रही है, अगर मेरी बहन बेटियां वहां पे हिंदुस्तान की किसी बहन बेटियों के ऊपर में लाठी चलेगी, अगर गोली चलेगी, आंसू गैस छोड़े जाएंगे और उनको लहूलुहान किया जाएगा, तो बिल्कुल आवाज उठाएंगे, डंके की चोट पे आवाज उठाएंगे। दिल्ली में भी आवाज उठाई थी, क्योंकि हम उनको बहन बेटी अपनी समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। अगर रांची में सरकार ने ये करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि यहां पे अलग है वहां पे अलग है, वो भी मेरी बहन बेटी या भाई है।
0: पत्री देख रहे हैं कि आप दिन शुभ दिन निकलेगा उस दिन आवाज उठाइएगा।
9: अंजना जी
0: पंचांग देख रहे हैं,
9: अंजना जी,
0: अनुराग जी इतना होश में तो रहिए, कौन चैनल पर बैठे हैं, किस एंकर के साथ है, दूसरी जगह जाके यहाँ का नाम लेते हैं, यहाँ पर बैठकर दूसरी जगह का नाम लेते हैं। चलिए मैं लौट रहे हैं। मलुक नागर जी, आज बड़ा सवाल ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि यहां पर किया तो वहां पर क्यों नहीं बोल रहे, वहां का जा रहे वहां के क्यों नहीं बोल रहे। ये भी तो एक सच्चाई है ना कि जब दिल्ली में हो रहा था तो एनडीए के सारे लोग उस पर मौन धरे हुए थे, मौन धरे थे कि नहीं आप लोग?
10: देखिए अंजना जी, जो आप कह रहे हैं मैं उसको मना तो नहीं कर सकता, पर अगर देखें इस देश के माननीय प्रधानमंत्री उज्जैन जियों के जैसी सोच में सोच मिलाने के लिए जिस तरह वो रील देख रहे हैं, रील बनाकर उनसे कनेक्टिविटी करने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए, और जो उनकी मांग थी वो मान ली, जो पहली बार किसी मिनिस्टर का 12 साल में इस्तीफा हुआ। तो आज राहुल गांधी जी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें कहीं भी कर्नाटक की बात नहीं करी, झारखंड की बात नहीं करी, तेलंगाना की बात नहीं करी, हिमाचल की बात नहीं करी, कितने लोगों पर लाठियां भांजी उसकी बात नहीं करी, वहां इस्तीफा मांग रहे शिक्षा मंत्री का उनकी बात नहीं करी। तो ये हिपोक्रेसी क्यों?
0: अच्छा एनडीए के कितने नेता बोल रहे थे? क्यों मलुक जी एनडीए के कितने नेता बोल रहे थे दिल्ली वाले प्रदर्शन पर, मार्च पर, बच्चों के साथ में खड़ा हूं, कितने एनडीए के नेता बोल रहे थे मुझे गिना दीजिए।
10: अंजना जी बहुत सारे लोग बोल रहे थे और मैं जहां तक बात है वो तो सब बड़े नेता भी बोल रहे थे और मैं तो सामान्य हूं, मैं भी आपके नेशनल टेलीविजन पर डेली बात कर रहा था और दूसरे नेशनल टेलीविजनों पर भी बात कर रहा था कि जेएनजीओ के साथ हैं, प्रधानमंत्री प्यार करते हैं और युवाओं के साथ हैं और जो कुछ असामाजिक तत्व घुसे थे उनकी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और जांच भी चल रही है तो वो इश्यू अलग है। पर क्या वहां पे इनके जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस वो मुंह में दही क्यों जमा के बैठ जाते हैं, वहां क्यों नहीं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे, वहां क्यों सीबीआई की जांच की मांग कर रहे, वहां क्यों अपनी स्टेट पुलिस की सीआईडी की जांच करा रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है सीबीआई तो उसका चीफ मिनिस्टर और केसों में तो वहां जांच करा रहे हैं और इसमें जो जेएनजीओ का युवाओं का स्टूडेंट का इसमें सीबीआई की जांच नहीं करा रहे। तो इनका दो चेहरे दोगले चेहरे सामने आ गए। अब बात आती है चित्रा जी, मैं एमपी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, तो वहां जो चर्चा हो रही है दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है।
0: अनुराग भदौरिया का रोग ही ऐसा है, सबको लग गया। अरे आप लोगों को हो क्या गया है, मतलब पूरे कुएं में ही पड़ा है क्या? चलिए
8: दे दूं इनका,
10: माफी चाहता हूँ। तो
7: अंजना जी
0: चलिए सापरा साहब, जैसे ये लोग मेरा नाम भूल रहे हैं वैसे आप लोग झारखंड भूल रहे हैं।
8: देखिए अंजना जी, इनकी पोल यही खुलती जा रही है, कितने मलुक नागर कितने बोखलाए हुए यही पर नजर आ रहे हैं। ये कहते हैं मुंह में दही जमी थी, मुझे बताइए जब कंगना रनौत ने जनरेशन गटर कहा तब इनके मुंह में दही नहीं जमी थी क्या? सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था जनरेशन गटर कहा गया, दहशत गर्द कहा गया, अतुल लिमय ने कहा कि असंवैधानिक मोर्चा था वो, आपके छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी है उन्होंने क्या ट्वीट किया, उन्होंने तो अलग ही किस्म का बता दिया, बाबर की विरासत उन्होंने बता दिया। तो ये जो सारी चीजें जब हो रही थी तब मलूक नागर या भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके मुंह में भी तो दही जमी थी ना, और फिर ये बताएं कि जेपीएससी के
0: चेयरमैन की तो दही जमी। बच्चों के मुद्दे पर आप में इनमें कोई फर्क नहीं है, हम सब एक ही तरह के हैं, ये आप कह रहे हैं। जब बात होगी दिल्ली की तो हम उस पर पूरी चढ़ाई करेंगे, क्योंकि भाई ये मुद्दा ऐसा है आपको पॉलिटिकली सूट करता है। जब झारखंड का जंतर मंतर आएगा तब आप लोग छू मंतर हो जाएंगे, यही कह रहे हैं ना आप कि इन्होंने भी किया था हम भी वही कर रहे हैं।
8: मुझे इस पे क्लैरिटी देनी है जो आपका सवाल है। देखिए अंजना जी, ऐसा नहीं है, हम ये कहते हैं कि झारखंड के अंदर जेपीएससी के चेयरमैन की तहकीकात हो रही है, क्या इन्होंने एनटीए का जो डीजी है क्या उसको हिरासत में लिया है, क्या आपने एनटीए का जो डीजी है उस एनटीए के डीजी को आपने एडिशनल चार्ज क्यों दिया हुआ, एनटीए के अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्क पर सारे काम क्यों दिए हुए, आपने ये जो एनटीए का कार्यभार जो आउटसोर्स किया हुआ है ये क्यों हुआ हुआ है? 2024 में जो आप 2024 में जो आपका तहकीकात आप कर रहे थे उसके तो 44 लोग छूट गए, संजीव क्या मखीजा या क्या था वो मुखिया, संजीव मुखिया वो भी एक केस में छूट गया है, बाकी के केस होंगे लेकिन एक केस में छूट गया, वो क्यों छूटा है, ये तमाम सारे सवालों का जवाब। और जिस दिन आप पार्लियामेंट के अंदर ये लेके आ रहे थे, कानून की दुरुस्ती लेकर के आ रहे थे, उसी दिन उत्तराखंड के अंदर दो पेपर और लीक हो गए इंजीनियरिंग के। ये तो आपका शासन प्रशासन है, आपकी नीति और नियत दोनों में खोट है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भ्रष्ट जनता पार्टी है, भारत की जुमला पार्टी है, भारत की जगलरी पार्टी है। ये आज देश की जनता और देश का जेंजी इसको जानता है, इसीलिए आपके जो शाह और तानाशाह है ना वो पार्लियामेंट में नहीं आ रहे, ये शाह और तानाशाह पार्लियामेंट में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास में कोई उत्तर नहीं है।
0: ठीक है, आपके पास भी झारखंड को लेकर लेकिन कोई जवाब नहीं है। एक जगह पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उसके बिना हम मानेंगे नहीं, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री का नाम नहीं क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ यहां पर आप लोग दिल्ली में ये तो कह नहीं रहे थे कि एनडीए के जो सीईओ हैं उनको हटाओ, करते ना ये मांग, एक मांग तो आप लोग नहीं कर रहे थे सापरा साहब, आप तो कह रहे थे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, कह रहे थे कि नहीं?
8: हमने कहा अंजना जी, हमने कहा कि पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, सिस्टम बदलने की बात होती है, मतलब मंत्री
0: के बिना पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे,
8: मंत्री से लेके संतरी तक सब बदली होना चाहिए, पूरा एजुकेशन सिस्टम का ओवरऑल
0: भंडारी जी
8: दुरुस्ती होनी चाहिए।
0: भंडारी जी अब ऐसी इमेज बन रही है ना कि चूंकि दिल्ली में ये सब कुछ हुआ तो झारखंड पर भी आप लोग माहौल तैयार करना चाहते हैं कि अपने राज्य का भी तो देखो।
7: अंजना जी अंजना जी, मैं इनको शांति से सुन रहा था, एंटोनियो माइनो की पार्टी के प्रवक्ता को मैं शांति से सुन रहा था और अब मैं एक एक कर जवाब दूंगा। ये एंटोनियो माइनो की पार्टी के प्रवक्ता, यहाँ कॉकरोच गायब है झारखंड से, सपा गायब है झारखंड से, कांग्रेस गायब है झारखंड से, आम आदमी पार्टी गायब है झारखंड से, क्योंकि वहां पे एक मजदूर का बेटा प्रोटेस्ट कर रहा है, किसान का बेटा प्रोटेस्ट कर रहा है, इसलिए इनको दिक्कत है। अब सुनिए दूसरी बात, यहाँ पे है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, ये आम आदमी पार्टी की सरकार की पुलिस कहती है कि वहां पे पाकिस्तानी कोई आतंकी हो, झारखंड के अंदर यहाँ पे दिल्ली के अंदर उनने घुसने का प्रयास करा था और इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर ये पत्थर जो है पुलिस के ऊपर फेंकने की बात कर रहे थे, जिसकी अब जांच हो रही है। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर तीन, आपने कहा हमारे नेता कहां है, ये रहे आपके एमपी और स्टेट प्रेसिडेंट आदित्य साहू, इसके बाद ये रहे चौथे आपके बाबूलाल मरांडी जो वहां पे पूरी तरीके से पहुंचे हुए थे। हम छात्रों की हर नैतिक मांग के साथ हैं। क्या झारखंड के अंदर अभी तक कांग्रेस पार्टी के शिक्षा मंत्री ने, कांग्रेस जेएमएम के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। क्या सीबीआई प्रोब ऑर्डर हुई? नहीं हुई। क्या जेपीपीएससी कैंसिल हुआ? नहीं हुआ। पांचवी बात पैलेट की, कोई गोली नहीं चली। अगर किसी के पास भी एविडेंस है कोर्ट के अंदर, वो भारतीय न्याय संहिता की धारा के हिसाब से जा सकता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसा डिफरेंस कैसे होता है अंजना जी, कि दिल्ली का लटेंस का छात्र छात्र है, झारखंड का छात्र छात्र नहीं है, कर्नाटका में 80 लाख की रिश्वत कांग्रेस पार्टी की सरकार दे रही है, वहां पे तक ये एक्शन नहीं ले रहे?
0: एक बार अनुराग जी जवाब दे दें,
7: सीबीआई प्रोब ऑर्डर कर दो। इतने बड़े भ्रष्टाचारी हो सापरा, इतने बड़े
0: बोलिए, चार मंत्रियों का मोह, झारखंड सरकार में चार मंत्रियों का मोह हावी हो रहा है क्या?
7: काले चश्मे के साथ
8: देखिए ऐसा है, ये जो काले चश्मे की बात कर रहे हैं ना, ये इतना चिल्ला चोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मोगैम्बो को खुश करना है। मोगैम्बो खुश हो जाएगा, लेकिन ये जेंजी खुश होने वाली नहीं है, ये जनता खुश होने वाली नहीं है। आप मोगैम्बो और इस देश के शाह तानाशाह इन सबको खुश करते रहे ये चिल्ला चोट से, लेकिन सवाल फिर भी ये पूछा जाएगा कि आपके आपकी पुलिस ने पैलेट गन चलाई, वो पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी? पहली पैलेट गन जो है वो आर्मरी से विड्रॉ करने की इजाजत,
0: भंडारी जी बीच में नहीं, आपके बीच में लगातार
8: ये लगातार बोल रहे। देखिये ये बताता है कि इनका भी खेल खत्म हो चुका है, ये प्रदीप भंडारी का भी खेल खत्म है, ये बीच बीच में बोलते हैं, इनके पास में कोई उत्तर नहीं है। ये मैं पूछ रहा हूं कि आर्मरी से पैलेट गन जो विड्रॉ हुई उस पर सिग्नेचर किसका है? क्या पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर जो जिस पुलिस वाले ने वहां पर रजिस्टर कराया कि पैलेट गन मैंने चलाई है, जिस डीसीपी ने ऑर्डर दिया है, डीसीपी का नाम है, उसके ऊपर अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। निर्दोष छात्रों के ऊपर आपने पैलेट गन चलाई, निर्दोष छात्रों के ऊपर टीयर गैस चलाई, निर्दोष छात्रों पर बिहार के अंदर AK-47 तानी गई और
0: भंडारी जी आपकी आवाज नहीं जा रही है,
8: चली वो छात्रों को लग जाती तो क्या दृश्य होता? मुंबई के अंदर छात्रों पर लाठियां बांधी गई, कील वाली लाठियां बांधी गई मुंबई के अंदर, उसी तरह से राजस्थान में हुआ, उसी तरह से और देश के अलग अलग शहरों के अंदर हुआ।
0: अनुराग जी,
8: देशव्यापी आंदोलन बना है,
0: लेकिन अगर छात्रों और उनके कॉज की तरफ जवाबदेही है तो ऐसे में तो एक ही तरीका हो सकता है ना इसको आंकने का। आपके भी बहुत बड़े बड़े नेता पहुंचे थे जंतर मंतर, एक बार पहुंच जाइए रांची में, अगर स्टेडियम का पता चाहिए तो हम लोग भेज देंगे।
9: देखिए अंजना जी गजब सा समय आया इस देश के अंदर में। छात्र अगर परेशान है तो आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष। अगर यहां युवा परेशान है तो आवाज जिम्मेदारी किसकी होगी? विपक्ष की। किसान परेशान है तो आवाज जिम्मेदारी किसकी होगी? विपक्ष की।
0: झारखंड में सत्ता में कौन है?
9: बेरोजगारी बढ़ गई है
0: झारखंड में, सत्ता में कौन है?
9: अगर सदन आ रहा हूँ झारखंड पहुंच रहा
0: हूँ। बच्चे क्या दिल्ली के झारखंड के अलग हैं? ये भी एक सवाल है अनुराग जी,
9: सुन लीजिए जी। भ्रष्टाचार बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार अगर बढ़ जाएगा देश के अंदर में तो जिम्मेदार कौन होगा? विपक्ष। बारिश ज्यादा हो जाएगी किसान का नुकसान, जिम्मेदार विपक्ष। गर्मी ज्यादा हो गई, जिम्मेदार विपक्ष।
0: मेडिकल व्यवस्था चरमराएगी, जिम्मेदार विपक्ष। एजुकेशन
9: चरमराएगी, जिम्मेदार विपक्ष। अब मैं रटी रटाई नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, रटी रटाई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती है। मैं इनसे पूछना चाहता
0: हूँ, बीजेपी का सवाल नहीं है, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि वहाँ बच्चों के रोने के विजुअल्स आ रहे हैं ना, वो भी पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई क्यों नहीं पहुंचता है।
9: इसीलिए
0: वो बच्चे पूछ रहे हैं, छोड़िए ना बीजेपी को।
9: इसीलिए मैं अंजना जी आपसे पूछ रहा हूं, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं अंजना जी, सरकार केंद्र में इनकी है क्या? इनके शिक्षा मंत्री गए वहां पे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये कहते हैं ना अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी व्यवस्था अच्छी होगी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी, क्या इनके मंत्री गए वहां पे?
0: बिल्कुल।
9: क्या इनका कोई बड़ा लीडर गया वहां पे?
0: सारी
9: जिम्मेदारी हम तो कहते हैं, हम तो
0: प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी प्रहलाद जोशी के लिए कह रहे हैं,
7: भाई पढ़ लिख के आया करो।
0: वो कह रहे हैं नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो गए ना, जाए ना वहां पर। अरे सुनिए प्रदीप जी, प्रदीप जी ये बेसिक है, आप सरकार में केंद्र में थे तो विपक्ष के नेता आपको घेर रहे थे, आप वहां पर अगर वो सत्ता में है, आप विपक्ष में है तो भेजिए ना अपने मंत्रियों को, प्रहलाद जोशी जी जाए वहां पर बच्चों से बात करने में क्या दिक्कत है, उनको वो टिकट दिखाइए ना जो रांची का टिकट आप दिखा रहे थे
7: ना जी। हाँ। अंजना जी लॉजिक ये कहता है कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट वहां पहुंचे हैं, हम वहां विपक्ष में, हमारा विपक्ष का मुख्य चेहरा वहां पहुंचा है, ये स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, ये चर्चा जो पूरी की पूरी परीक्षा सेंटर ने नहीं कराई, स्टेट ने कराई, और हम इसलिए राहुल गांधी का जवाब मांग रहे क्योंकि वहां का शिक्षा मंत्री जो मुख्यमंत्री है वो छात्रों की बात नहीं सुन रहा, इसलिए जाके हम केंद्र की बात कर रहे हैं, ये फर्क है इनमें और हम में। मैं तो पूछ रहा हूं ये नंबर देखिए 989, इतने हीनियस क्रिमिनल्स पाए गए थे दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे, झारखंड में कितने, जीरो, इसीलिए क्या ये नहीं जा रहे हैं क्या, क्या इंस्टाग्राम रियल वायरल नहीं हो जाएंगे राहुल गांधी, इसलिए नहीं जा रहे, वहां मजदूर का बेटा है, एससी का बेटा है, ओबीसी का बेटा है, इसलिए राहुल गांधी नहीं जा रहे, हम चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जाए क्योंकि वहां की झारखंड की सरकार छात्रों की मांग नहीं सुन रही, और जब सरकार छात्रों की मांग नहीं सुनती तो हाईकमांड को बोला जाता है कि छात्र की मांग सुनो सीबीआई प्रोब ऑर्डर करो, छात्र की मांग सुनो पेपर को कैंसिल करो, छात्र की मांग सुनो जाके भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में डालो, इनमें से कुछ नहीं हुआ है, वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जा रहे हैं पर झारखंड के अंदर 2 किलोमीटर दूर नहीं जा रहे, ये फर्क है। जब केंद्र की बात की हमने अकाउंटेबिलिटी ली, हम लॉ लेके आए, हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये तो रेड फ्लैग है जेंजी के, झारखंड का जेंजी नहीं है, क्या बात कर रही है।
0: बोलिए बोलिए अनुराग जी,
9: बताइए क्या आपको कैसे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि असामाजिक तत्व यहां पे पहुंच गए लुटियन जोन में, इतनी सिक्योर इलाके में, इसके मतलब आपकी पुलिस व्यवस्था फेल है ना, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल है, आप तो खुद ही अपनी सरकार को कोसने में लगे हो, मान गए ना आपकी सरकार फेल है, आप कह रहे हैं रांची में जीरो है, इसका मतलब सरकार अच्छी है वहां पे, तभी असामाजिक तत्व वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, तभी वहां पे कोई असामाजिक तत्व नहीं है, तभी आप कह रहे हैं वहां पे जीरो है, ये जो आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं वहां जीरो है रांची में, और आपके यहाँ बढ़ गए थे, इसका मतलब आपकी सिस्टम फेलियर है, आप मान लीजिए आपका सिस्टम फेलियर है, आपकी सरकार फेलियर है, आप नहीं पकड़ पाते हो जो गलत गुंडे बदमाश असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, आप जान नहीं पाते हो, लेकिन रांची की रांची की पुलिस जान गई वहां नहीं घुस पा रहे कोई, इसके मतलब आप मलुक जी मान जाओ
0: कहां खड़े हैं आप लोग इस मुद्दे पर, स्टूडेंट्स के अगर साथ है तो भाई ये सवाल तो उठता ही है ना कि दिल्ली से लेकर झारखंड तक सबका अपना अपना पलटता है मामला, किसकी सरकार है ये देखकर तो क्लियर है, चार लोगों में दिख रहा है कौन किधर है।
10: अंजना जी देखिए, जो सबसे बड़ा संवैधानिक मंदिर और संसद है, और कोई भी बोले, कोई मेंबर बोले, कोई मिनिस्टर बोले, तो एलओपी की तरफ से क्वेश्चन आने चाहिए, तो एलओपी संसद से गायब है, और जो अंजना जी बात है कि संसद चले कैसे, अगर कोई भी नोटिस देते हैं और किसी पे हाय हुल्ला होता है तो बीएससी की मीटिंग होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और उसमें सहमति बनती है, अगर ये चर्चा करना चाहते हैं ताकि एजेंसीज अपना काम करें तो संसद को क्यों नहीं चलने देना चाहते, दूसरा वहां स्टेट में सीबीआई की जांच मुख्यमंत्री के अधीन आती है क्यों नहीं करवा रहे, तीसरा वहां ये वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो मांग रहे हैं बच्चे तो क्यों नहीं दिलवाते, जो भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी पेश करी है एक बिल्कुल 12 साल में जो पहली बार जेएनजीओ के लिए, तो क्या ये जेएनजीओ को नौजवानों को स्टूडेंट्स को कुछ समझते ही नहीं है, झारखंड में या कर्नाटक पंजाब में जो केस चलाए जो लाठियां बांधी उनको जो जो वहीं पे उनको प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग, तो इनके दो चेहरे हिपोक्रेसी और दोगले

0: जो रॉल इनके आ रहे हैं, क्या आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो क्या वहां नहीं हो सकती थी झारखंड की कुछ बात? क्या नहीं हो सकती थी वहां पंजाब के लोगों की बात? क्या नहीं स्टूडेंट्स की बात?
1: सापरा साहब,
0: क्या नहीं हो सकती थी कर्नाटक
1: एक बार मेंशन ही कर
0: के
1: देते,
0: स्टूडेंट्स की बात?
1: रस्मी पूरा कर देते।
2: नहीं, रस्म की बात नहीं है, हम तो एक्चुअली लड़ रहे हैं जमीन पर। मैंने तो कहा कि झारखंड में हमारे रांची के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष यूथ कांग्रेस

0: अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी वहां पर छात्रों के साथ में बैठे हैं। ये मलूक नागर और इनको ये सारी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये मदहोश है, सत्ता के नशे में मदहोश है। और जो बात कर रहे थे, मुझे टिकट विकेट दिखा रहे, पहले ये बताएं कि 28 दिन तक छात्रों का आंदोलन वहां पर जंतर मंतर पर चल रहा था। देश के शाह और तानाशाह, आपको हमको आपको हमको टिकट दिखा रहे हो ना, वहां तो चल के जाना था ना, वहां तो आधा किलोमीटर भी नहीं था। अंजना, ये फिर बीच में बोल पड़े, ये फिर बीच में बोल पड़े, देखिए ना कितने बौखला गए हैं। ठीक है, सवाल ये है, आप हमको कहते हैं कि झारखंड क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री देश के शाह और तानाशाह पार्लियामेंट से या सात लोक कल्याण मार्ग से जंतर मंतर तक नहीं पहुंचे 28 दिन, जब तक 20 तारीख को आपकी पुलिस ने और पुलिस के वर्दी में गुंडों ने जो लाठियां बांधी है, कील वाली लाठियां मारी है, टीयर गैस चलाया है, पैलेट गन चलाई है, जब छात्रों को आप लोगों ने जख्मी किया बुरी तरह से, वहां पर प्रताड़ना हुई है छात्रों की। आज वो लड़की ने राहुल गांधी जी के साथ जो थी उसने बताया कि पैलेट गन के छर्रे किस तरह से उड़े हैं, दूसरी लड़की ने बताया कि मेरे बटक्स में किस तरह से लकड़ी मारी गई है। क्या इन सब बातों का जवाब है क्या प्रदीप भंडारी के पास या मलूक नागर के पास? भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी उनके सहकारी लोग हैं उनके पास भी ये जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी ये छात्र विरोधी है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी, और उनके जितने सहयोगी है एनडीए के अंदर वो भी नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनका भी डैमेज हो रहा है। और ये डैमेज के साथ में डैमेज कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी आ नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बता दें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा सवाल है।
1: ठीक है, प्रदीप भंडारी जी उनकी बातों का जवाब दीजिए, इसके बाद आ रहे हैं अनुराग।
2: अंजना जी, एंटोनियो माइनो के प्रवक्ता जोर जोर से चिल्ला है कि भाई कोई छात्र विरोधी है तो छात्र विरोधी उससे नहीं होता, एक्शन से होता है। ये जरा देखिए, कर्नाटका के अंदर 3 FIRs करी गई है उन छात्रों ने जिनने राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया, जेल में डाल दिया और अभी तक जाके FIR वापस नहीं लिए। ये होता है असली राहुल गांधी छात्र विरोधी। गोलियां चलती हैं कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, जहां 100 से ज्यादा छात्रों को कांग्रेस गुजरात में जब सरकार में थी निस्तनबूत कर दिया था और किसी ने कुछ नहीं बोला था। 600 से ज्यादा छात्रों को कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में मार दिया था। छात्र विरोधी ये लोग हैं। हमने तो छात्रों की मांग का सम्मान किया, दिल्ली के अंदर एक गोली नहीं चली, एक छात्र की जान ली गई, इसको
1: प्रदीप जी एक काउंटर सवाल है मेरा, एक काउंटर सवाल है प्रदीप जी, फिर कहां गया, एक सेकंड, राहुल गांधी आज अगर इन छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपकी नैरेटिव मशीनरी कहां है? जो आप किसी अखबार का निकालते हैं पन्ना, फिर किसी अखबार का निकालते हैं खोज के कि ये देखो 3 बच्चों के खिलाफ एक्शन हुआ, आप भी ढूंढ के लाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए, क्या हो गया आजकल आप लोगों की मशीनरी को पूरा? राहुल गांधी तो मेहनत कर रहे हैं, सामने लाकर दिखा रहे हैं और नैरेटिव वो बना रहे हैं।
2: देखिए अंजना जी, जो झूठा होता है ना उसको झूठ को प्रूफ करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, जो सच्चा होता है ना उसका सत्य अपने आप सामने आ जाता है, कोर्ट में सामने आ जाता है। हमें कोर्ट पे विश्वास है और कोर्ट के अंदर ये मामला जो है पूरी तरीके से चीज चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कोर्ट के ऊपर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे राहुल गांधी का रफाल का झूठ हुआ था, और देश की जनता सत्य को याद रखती है, देश की जनता देख रही है कि राहुल गांधी अगर सच्चे छात्र की बात कर रहे होते तो झारखंड के अंदर जाके भी अपने एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा मांगते, अगर सच्चे बात कर रहे तो कर्नाटका में जो छात्रों के ऊपर FIR हुई उस पर जाके राहुल गांधी जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को हटा देते। अगर सच्चे होते, महिलाओं की बात कर रहे होते तो कर्नाटका के अंदर सिर्फ एक महिला कर्नाटक के नए कैबिनेट एक्सपेंशन में नहीं होती। अगर सच्चे होते तो जाके मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना प्रेसिडेंट नहीं बनाते, अपने से युवा व्यक्ति को बनाते, ये इसमें सच्चाई होती है। और सच्चे होते तो झारखंड के दाल रोटी खाने वाले छात्र, जो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, उसकी बात सुनते, ये इनकी सच्चाई, और ये गोली चलाते हैं। और अगर इनके पास कोई एविडेंस है कोर्ट चले जाए।
1: एक छोटा सा जवाब दीजिए फिर अनुराग जी आ रहे।
0: देखिए अंजना जी, ये कहते हैं कर्नाटका के FIR ये बता रहे हैं, आपने ठीक कहा, इनकी मशीनरी पे जंग लग गया है, उसी तरह से इस देश के शाह और तानाशाह की जुबान पर भी जंग लग गया है, इसीलिए वो नहीं आना चाहते हैं। कर्नाटका के अंदर जो FIR थे वो वापस ले लिए गए, इनको पता भी नहीं है, ये अभी खाली पेपर यहां से दिखा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो 5 छात्र आज राहुल गांधी जी के साथ आए थे, अरे उनके सवालों का जवाब कौन देगा? उनके सवालों का जवाब इस देश के शाह और तानाशाह देंगे कि नहीं देंगे? उनके छात्रों के सवालों के जवाब पार्लियामेंट के अंदर उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए? इन छात्रों के सवालों के जवाब जो है
1: वो पार्लियामेंट के अंदर मिलेंगे
0: नहीं? ये तो नहीं, ये भंडारी को तो आदत लग गई है ना, ये तोता है, तोता सुनिए। सवाल ये है,
1: जल्दी से कमेंट,
0: सवाल ये है कि सवाल पार्लियामेंट में,
1: एक सेकंड संबित पात्रा एक प्रेस

0: कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी ने जो कहा उसका जवाब देने के लिए सुनिए।
1: ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूं, ये जो ब्रीफिंग है, ये राहुल गांधी जी के लिए है, उन बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे बच्चे होते हैं, हम सबके हैं, वो देश का भविष्य है। इसलिए बच्चों, आपको नमस्कार, आपको प्रणाम। आपके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मैं केवल और केवल राहुल जी के लिए कर रहा हूं। पहली बात तो है, इससे पहले भी इसी मंच पर खड़े होकर, सदन के बाहर खड़े होकर, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा था कि 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान कोई गोली फायरिंग नहीं हुई थी। मैं एक प्रवक्ता हूं, जिम्मेदारी के साथ पार्टी मुझे भेजती है। मैं यहां अकेला बैठा हुआ होता हूं, मगर पूरी सिस्टम पीछे रिसर्च के पश्चात मुझे मटेरियल देती है, बहुत जिम्मेदारी के साथ। उस समय भी हमने कहा था, और उतनी ही जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि ये संवेदनशील विषय है, कहीं भटकाव ना हो, कहीं लोगों को कुछ चीजें सच ना लगे, इसलिए बहुत स्पष्टता के साथ, शालीनता के साथ और ठहराव के साथ इस सच्चाई को मैं पुनः बयान करना चाहता हूं कि कोई गोली नहीं चली 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान। दूसरी बात है, यह एक गलत परंपरा है। कभी भी राजनीति में बच्चों के कंधों पर, मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करने का प्रयास जो राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं। हम भी कभी स्कूल और कॉलेजेस में थे, आंदोलनों में हमने भी भाग लिया है, और जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे, उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव को, द बंच ऑफ लाइज दैट मिस्टर राहुल गांधी इज ट्राइंग टू प्रोपगेट, द सिलेक्टिविटी दैट राहुल गांधी हैज अंडरटेकन, हम उसे यहां एक्सपोज करना चाहते हैं। देश के बच्चों को निडर रहना चाहिए, और हां, जब भी आवश्यकता पड़े आंदोलन इत्यादि, इनसे घबराना नहीं चाहिए। मगर झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए। मैं आज एक बहुत जाने माने मीडिया हाउस के एक आर्टिकल को पढ़ रहा हूं, झारखंड से है, अभी चंद घंटों पहले ये प्रकाशित हुआ है, मैं इसे पढ़ रहा हूं। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, पर डिप्रेशन पैनिक अटैक झेल रही हूं। पेपर लीक पर बोली रांची प्रोटेस्ट में बैठी छात्रा, अभ्यर्थी प्रतीक्षा बताती है कि इन अनिश्चितता ने उनकी मेंटल हेल्थ को पूरी तरह तबाह कर दिया है। प्रतीक्षा करती कहती है कि मैं इस समय खुद डिप्रेशन से जूझ रही हूं, कई बार पैनिक अटैक आते हैं, पढ़ाई छोड़कर घर लौटने का मन करता है, खुद को परिवार पर बोझ महसूस करने लगी हूं। बचपन से हर क्लास में अव्वल रही, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में यूनिवर्सिटी टॉप करके गोल्ड मेडल हासिल किया, बीएड पूरा किया, लेकिन आज अपनी ही दुर्दशा देखी नहीं जाती। रिश्तेदारों के ताने, शादी का दबाव और परीक्षा रद्द होने का डर, झारखंड के इस सिस्टम ने मुझे डिप्रेशन और पैनिक अटैक की मरीज बना दिया है। झारखंड में जो जेपीएससी और जेएसएससी धांधली हुई है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए अभ्यर्थी ने यह बताया है, पूरी कहानी आगे और भी है, समय की कमी के कारण मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं जो एक बहुत जाने माने चैनल ने आज प्रकाशित किया है। मगर ये जो सिलेक्टिविटी है जहां झारखंड के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे राहुल गांधी कन्वीनियंटली दबा दे रहे हैं। वो झारखंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार वहां है। और लास्ट में राहुल जी का जो वक्तव्य था कि अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे, माननीय गृहमंत्री सदन में नहीं आ रहे, राहुल जी आप सदन चलने कहां दे रहे? और आप सब पत्रकार बंधु, आप सब पार्लियामेंट में रहते हैं, आप सभी देखते हैं, हम सबके पहुंचने से पहले माननीय गृहमंत्री सदन पहुंचते हैं और हम सब जब सदन से लौटते हैं उसके बाद वो सदन छोड़ के कभी मध्यरात्रि में, कभी रात को 10 बजे आवश्यकता पड़े तो, कई बार मैंने, हम सबने देखा है, मैंने भी देखा है, रात को 1 या 2 बजे वो सदन से आते हैं। मगर सदन चल कहां रही है? 5 मिनट से अधिक 10 मिनट से अधिक तो सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। 11 बजे सदन शुरू होता है, हुड़दंग इस प्रकार मचाई जाती है राहुल गांधी जी और उनके सांसदों द्वारा कि 2 मिनट के अंदर हाउस को एडजॉर्न करना पड़ता है, फिर हाउस बैठती है, फिर आप स्पीकर के डेस्क तक को थपथपाते हो, आप तख्तियां लेकर आते हैं, तख्तियां टीवी में दिख जाए उसके लिए पुरजोर तरीके से उछलते हैं। वैसे में किस प्रकार से आप आशा कर रहे हैं जहां सदन नहीं चल रहा है और आप ये कह रहे हैं कि माननीय गृहमंत्री नहीं आ रहे? जिस विभाग की चर्चा रहती है उस विभाग के मंत्री अवश्य आते हैं, माननीय गृहमंत्री के विभाग की चर्चा होगी वो जरूर रहेंगे, वो हैं सदन में ही है, मगर आप किसी भी विषय पे चर्चा नहीं होने दे रहे, किसी भी विषय पे आप सदन को चलने नहीं दे रहे। देश ये सब कुछ देख रहा है क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने आधार पर आज नरेटिव नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के नरेटिव सेट करने की ये जो प्रयास है राहुल जी, यह राजनीति में उचित नहीं है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और उसकी राजनीति के तरीकों पर है, बच्चों से। और मैंने सुना आज मुस्कान ने भी कहा कि मैं मुस्कान शर्मा हूं। मुस्कान, आप अगर मुस्कान शर्मा भी हो तो हमारी देश की बिटिया हो, और मुस्कान खान भी हो तो हमारी ही देश की बिटिया हो। शर्मा हो या खान हो, ये हिंदुस्तान की, देश की बेटी हो, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके प्रयास से ये देश बढ़ता है। इसलिए ये जो डिविजिव एजेंडा सेट करके राहुल गांधी जी ने चलाने की कोशिश की है, यह बहुत गलत है। यह देश का हृदय इतना बड़ा है कि इस देश ने देखा है कि आप साधु के वेश में आकर पार्लियामेंट के आगे बैठते हैं, साधु को घसीटा जाता है, साधु जी त्रिपुंड लगाए हुए हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, उनकी पिटाई की जाती है, मगर इस देश का हृदय इतना बड़ा है कि वह इस गरल को भी श्रावण के मास में पी जाता है, मगर उस पर उफ तक नहीं कहता है। और आप इस देश में विभाजन के बीज बो रहे हो बच्चों के माध्यम से। बच्चे, कभी यह मत सोचना कि धर्म के आधार पर इस देश के बच्चों को विभाजित करने का प्रयास कोई कर रहा है। निडर होकर आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं और सारे बच्चे इस देश के हैं। इतना ही मैं कहना चाहता था, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यहीं पर हल्ला बोल का अंत करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप देख रहे थे, लेकिन आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ। हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे कि अगर सरकार विदेशी चंदे का हिसाब मांग रही है तो देश में चर्च से लेकर अमेरिकी सांसदों तक तनाव क्यों है, और इसके बाद आपको बताएंगे कि झारखंड के जेन ज़ी प्रोटेस्ट में जंतर मंतर वाले लोग गायब क्यों और रील वाला कॉन्टेंट क्यों नहीं। आखिर में देश की सड़कों पर बिना इंश्योरेंस दौड़ रहे 16.5 करोड़ वाहनों के लिए जरूरी खबर बताएंगे कि अब बिना बीमा ना गाड़ी में तेल होगा ना गाड़ी दौड़ेगी। देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: याद है ना मैंने क्या सिखाया था, सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
6: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
7: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
8: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
9: Barso se sarso.
10: Kuch to baat hai is dil mein.
11: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
12: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
13: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
12: छक्का?
13: सब कैशलेस हो गया है।
12: हाँ ओले, ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू?
14: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
12: ओले, बैट किसका है?
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।
16: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
19: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमाक, the mustard specialist since 1933.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। दो अगस्त को कर्नाटक के विजयपुरा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के ओएमआर शीट का नंबर और सवालों का नंबर बेमेल होने और प्रश्न पत्र तय समय से देर से बांटने जैसे आरोपों पर छात्रों का आक्रोश फूटा था। इसे लेकर बीजेपी और जेडीएस ने प्रियंक खरगे को घेरने की कोशिश की, उनसे इस्तीफे की मांग हुई। पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रियंक खरगे ने जो कहा, उसके बाद बीजेपी ने छात्रों के मुद्दों पर कांग्रेस नेतृत्व की नीयत पर सवाल उठा दिया है। प्रियंक खरगे का दावा है कि भर्ती परीक्षा के सवालों का नंबर और ओएमआर शीट में नंबर बेमेल होने का आरोप सिर्फ कुछ छात्रों की गलतफहमी थी, इसलिए जो लोग ओएमआर शीट के साथ एग्जाम हॉल के साथ बाहर गए वो अपनी जिम्मेदारी पर गए। सरकार की जिम्मेदारी उन छात्रों के लिए थी जो एग्जाम दे रहे थे। इन्हीं दलीलों के साथ प्रियंक खरगे कर्नाटक में पेपर लीक या भर्ती घोटालों के आरोपों पर अपना पल्ला झाड़ते भी नजर आए। प्रियंक खरगे का ये जवाब ऐसे समय में है जब नीट पेपर लीक पर पूरे देश में हंगामा हो चुका है, देश के शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती घोटालों के आरोपों पर झारखंड में छात्रों का 11 दिनों से धरना जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 अलग अलग टेंट्स में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच जैसी मांगों के साथ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से धरना और मशाल मार्च निकाल रहे छात्रों को खाने पीने जैसी मदद के साथ कुछ वॉलंटियर, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी सामने आए हैं, लेकिन आरोप लग रहा है कि झारखंड के छात्र आंदोलन को राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। पेपर लीक या परीक्षा में धांधली कहीं हो, देश के छात्रों के साथ नाइंसाफी है, लेकिन कर्नाटक, झारखंड साथ ही साथ पंजाब में पेपर लीक के मसले पर विपक्ष की चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। आज तक ब्यूरो।

सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा? गौर नहीं किया हो तो एक बार फिर सुन लीजिए कि उन्होंने किन किन देशों का नाम लिया है। जी हाँ, पहला नाम लिया सऊदी अरब का, दूसरा नाम लिया यूएई का और तीसरा नाम लिया कतर का। सवाल ये है कि पूरी दुनिया में शांति दूत बने घूम रहे पाकिस्तान का क्या हुआ? ट्रंप के बयान ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद शांति वार्ता में पाकिस्तान को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितनी पिछली शांति वार्ता में दी थी। ट्रंप ने ईरान को दिया आखिरी मौका, सबसे बड़ी तबाही से बचने का मौका। वैसे सीज फायर को लेकर ट्रंप को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, लेकिन ट्रंप का साफ कहना है कि उन्होंने ईरान को भयंकर तबाही से बचाने के लिए हमला ना करने का फैसला लिया। लेकिन आखिर कब तक? मीडिया ने जब ये सवाल दागा तो जवाब आया कि ये ईरान के लिए आखिरी मौका होगा, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई राहत नहीं। अब देखना यह है कि बातों और मुलाकातों की ये ताकत मिसाइलों को कब तक रोक पाती है। आज तक ब्यूरो।

0: शाम के 7 बजने वाले आज तक के इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिनभर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत करें हेडलाइंस से। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर ना करें राजनीति, पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते, नेता विपक्ष ने गृहमंत्री पर साधा था निशाना, ना हिंसा पर बोलते हैं ना संसद आते हैं। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कबूली गलती, डीप फेक और कंटेंट गड़बड़ियों पर मांगी माफी, केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को कल फिर से पेश होने का दिया है समन। यूपी में योगी अखिलेश के बीच छिड़ी जंग, विधानसभा हंगामे पर बरसे मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का पलटवार, सरकार बनी तो करेंगे नोटबंदी की जांच। शो की शुरुआत उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अभी फिलहाल दूर है, लेकिन चुनावी बिसात बिछनी अभी से शुरू हो चुकी है। इसकी एक अहम तस्वीर आज लखनऊ में देखने को मिली, जहां समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र की जयंती को सिर्फ श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर मनाया। अखिलेश ने मन से ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश की।
1: समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में प्रभु श्री राम की झांकी निकल रही है। झांकी में राजा रामचंद्र, लक्ष्मण और हनुमान दिख रहे हैं। ये अखिलेश यादव का हिंदुत्व प्रेम है। समाजवादी पार्टी के पुरोधा जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया और नए सिरे से पीडीए की परिभाषा बताई।
2: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
1: अखिलेश अब तक पीडीए के पी को पिछड़ा कहते थे, अब पंडित कह रहे हैं। अखिलेश के इसी बदलाव पर बीजेपी तंज कस रही है।
3: ये खुद कंफ्यूज है, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम ही नहीं करना।
1: अखिलेश यादव योगी सरकार पर सीधे हमला बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ब्राह्मणों पर सरकार जुल्म कर रही है।
2: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग।
1: अब बीजेपी कह रही है कि चंद रोज पहले ब्राह्मणों का अपमान करने वाली पार्टी ब्राह्मण प्रेम का दिखावा कर रही है।
4: अभी 10 दिन पहले आप कहते हैं कि वेश्या से ब्राह्मण से भली वेश्या, ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है। क्या समाजवादी पार्टी ने इसका खंडन किया? क्या समाजवादी पार्टी ने इसका प्रतिरोध किया?
1: अखिलेश की ब्राह्मण सभा से एक बात तो तय है कि 27 के चुनाव में अखिलेश यादव दलितों और पिछड़ों के साथ ब्राह्मण वोटर्स को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में 10 से 12 फीसदी आबादी ब्राह्मण की है, जिनका 110 से 115 सीटों पर असर है। मौजूदा दौर में यूपी में 52 विधायक ब्राह्मण हैं। अखिलेश की सारी कोशिश है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर ब्राह्मण मतदाता को अपने पाले में लाया जाए और जीत का समीकरण बिठाया जाए। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन था, कल तक सत्र होना है और सत्र में राम मंदिर रावा चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर निकला है। समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, अब सवाल सनातन के सम्मान अपमान और चंदे की रसीद पर रण छिड़ गया है।
5: विधानसभा के बाहर जैसा प्रदर्शन कल था, वैसा ही प्रदर्शन आज भी है। हाथों में तख्तियां और जुबान पर तेवर, विपक्ष के विधायक चढ़ावा चोरी के मसले पर विधानसभा के बाहर दान पात्र लेकर बैठे थे। कल स्पीकर ने एसपी के विधायक सचिन यादव को सदन से बाहर निकाल दिया था, आज वो सदन के बाहर धरने पर बैठ गए।
6: देखिए, मेरा निष्कासन हुआ है तो मैं अंदर कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता, तो बाहर बैठ के जनता की आवाज उठाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि चढ़ावा चोरी पर सदन के अंदर चर्चा हो।
5: यही पोस्टर लेकर सचिन यादव कल सदन के भीतर आए थे, इसीलिए उनका निष्कासन हुआ। आज भी स्पीकर कह रहे हैं कि सीएम के पद का सम्मान होना चाहिए।
7: मेरे विचार से सदन के सदन के माननीय नेता एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करना सदन के माननीय सदस्यों के संवैधानिक दायित्व है।
5: कल स्पीकर सतीश महाना ने चढ़ावा चोरी पर नारा लगा रहे विधायकों से चंदे की रसीद मांगी थी। आज विपक्षी विधायक प्रतीकात्मक रसीद लेकर पहुंचे थे। अब ओवैसी कहते हैं कि चेयर से चंदे की रसीद मांगना विधानसभा की गरिमा पर सवाल खड़े करता है। ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि गुनाह का मुद्दा उठाने के लिए मजहब का हलफनामा देना पड़ेगा क्या। अब यूपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ओवैसी को राम मंदिर और चढ़ावा के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है।
8: मैंने कहा उनको इस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, उनको बोलना है तो वही काशी के ज्ञानव्यापी परिसर के बारे में बोले और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बनी ईदगाह के बारे में बोले।
5: इन सबके बीच अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं।
9: ऊपर तो ताला मारा हुआ है लेकिन नीचे से सुरंग बनाई हुई है। बताओ कोई प्रभु भगवान श्री राम जी के चढ़ावे के दान पात्र में कोई पैसा निकाल सकता है क्या? कहीं आपने सुना हो ऐसा काम होता हो?
5: इन्हीं आरोपों ने विधानसभा में इतना बवाल मचाया कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
10: विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है।
5: चढ़ावा चोरी का मुद्दा यूपी में लगातार बड़ा हो रहा है। विपक्ष ने इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है और बीजेपी इस मुद्दे की काट खोजने में लगी हुई है। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: और अब बात संसद की, जहां मॉनसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर संसद ना चलने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं विपक्ष पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर संसद में अमित शाह के जवाब पर अड़ा हुआ है।
11: पेपर लीक से शुरू हुआ घमासान अब प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल तक पहुंच गया है। विपक्ष लगातार अमित शाह से जवाब मांगने को लेकर प्रदर्शन कर रहा है।
12: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे, ये कैसा हो जाता है?
13: बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई है, क्या नाम है वो, टियर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी है ना? किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी।
11: इस विरोध मार्च के बाद राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, देश के गृह मंत्री मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि वो छात्रों के गुनहगार हैं। तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी को संसद का भगोड़ा बता रही है।
14: हमने भगोड़ों की बात करी थी, राहुल गांधी भी एक भगोड़ा ही है। संसद से भाग जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है, वो घबराते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अमित शाह जी जब तैयारी से भाषण देंगे, तथ्य रखेंगे, तो राहुल गांधी बगले झांकेंगे।
11: गतिरोध की वजह से ठप संसद को चलाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की प्रियंका गांधी की मौजूदगी में राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई। सूत्रों की ओर से साफ किया गया कि अमित शाह को पैलेट गन पर बयान देना होगा, जिसके बाद किरेन रिजिजू की एक बैठक अमित शाह के साथ भी हुई।
15: किरेन रिजिजू मेट राहुल गांधी विद गवर्नमेंट एजेंडा। वी आर वेरी क्लियर अबाउट एवरी इश्यू। वी आर टोल्ड अर्लियर इटसेल्फ वी वांटेड डिस्कशन on Chanda Chori. Then the beginning onwards we are asking for a statement from Home Minister of this country.
11: बहरहाल इस खींचतान के बीच संसद पूरी तरह से ठप पड़ी है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर राहुल गांधी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वो सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुए बच्चों के साथ पहुंचे और सरकार से प्रदर्शनकारियों पर हमले को लेकर सवाल किए। जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है, कैसे देखिए।
16: मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। यू हैव डन नथिंग रॉन्ग एंड द क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग योर अपोलॉजी डज नॉट अराइज, यू डू नॉट हैव टू अपोलोजाइज टू एनीबॉडी।
17: कोई गोली नहीं चली 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान। दूसरी बात है, यह एक गलत परंपरा है, कभी भी राजनीति में बच्चों के कंधों पर, मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करने का प्रयास जो राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए।
0: और अब बात कश्मीर में 370 हटने की, जैसे आज पूरे 7 साल हो गए हैं। इसे लेकर घाटी से अलग अलग तस्वीरें सामने आई, बीजेपी जहां जश्न मनाती दिखी, वहीं विरोधी स्टेट फुट की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए।
11: ये जश्न है कश्मीर की नई पहचान का, ये जश्न है कश्मीर में 370 हटने का। आज से ठीक 7 साल पहले कश्मीर से 370 हटाई गई थी। इस मौके पर बीजेपी ने आज अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली और जोरदार जश्न मनाया।
18: आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए जश्न का दिन है, खुशी का दिन है, फख्र का दिन है। आज के ही दिन दो झंडे, दो आइन और दो हेड्स को दस्त किया गया था, खत्म किया गया।
11: इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके इसे ऐतिहासिक बताया। 7 साल पहले इसी दिन अनुच्छेद 370 और 35A इतिहास बन गए, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। उधर 370 के विरोध में भी सियासी मोर्चा खोला गया, जहां कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया और स्टेटहुड बहाल करने की मांग की।
19: एनसी सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है, 50 MLA उनने लोगों को ये बोल के लाए कि हम 370 की लड़ाई लड़ेंगे। आज वही जमात, शेख अब्दुल्ला साहब की जमात, जिनने पहले सदर रियासत से चीफ मिनिस्टर को किया और आज फ्रॉम अ स्टेट विद स्पेशल स्टेटस दे आर डिमोटिंग अस, दे आर नॉर्मलाइजिंग अस टू बीइंग अ यूटी।
18: 370 कांग्रेस की नाजायज औलाद थी और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिश्तेदार थी। अब जब रिश्तेदार कोई मरता है उस दिन खुशियां नहीं मनाई जाती है, उस दिन काले कपड़े पहने जाते हैं, उस दिन मातम किया जाता है, यहाँ काली पट्टी बांधी जाती है, डेमोक्रेटिक हक है उनका।
11: इस बीच कश्मीर में आज सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसे देखते हुए अमरनाथ यात्रा को भी रोका गया है।
20: सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम है, जैसे कि हर साल होता है, जो सुरक्षा बलों की एडिशनल टुकड़ियां हैं संवेदनशील जगहों पे लगाई गई है, खासकर जो पार्टी ऑफिसेज हैं एनसी पीडीपी के, वहां ज्यादा जो है डिप्लॉयमेंट है।
11: बहरहाल 370 के मुद्दे को लेकर सियासत जारी है, जहां बीजेपी जश्न मना रही है तो वहीं विपक्ष स्टेटहुड के मुद्दे पर सड़कों पर उतरा है। आज तक ब्यूरो।
0: सावन का पवित्र महीना चल रहा है और अलग अलग शहरों में भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकल रहे हैं। भक्ति भाव में डूबी इन कांवड़ यात्राओं में कांवड़ के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर आस्था की रौनक छाई हुई है।
21: महादेव के भक्त गंगा जल लेने के लिए अपनी अपनी कांवड़ लेकर निकल चुके हैं। कांवड़ियों में उत्साह है, उमंग है, भक्ति की तरंग है, उल्लास है। कांवड़ियों की भक्ति जितनी रंग बिरंगी है उतनी ही रंग बिरंगी है इनकी कांवड़। अब इसी कांवड़ को देख लीजिए, 54 फीट लंबी और 54 किलो चांदी से सजी कांवड़ लेकर 600 कांवड़ियों का जत्था चला बाबा धाम। कांवड़िया पथ भक्तिमय है। पश्चिम बंगाल के राजकुमार महतो हाथ के बल बाबा धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इनके साथ शिव के प्रतीकात्मक डमरू रूपी कांवड़ है, साथ में शिवलिंग और बोल बम के नारे। यूपी के मुजफ्फरनगर से आई इन रिश्तों की कांवड़ को देखिए। ये प्रेमी जोड़ा 111 लीटर गंगा जल की कांवड़ लेकर यात्रा कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि भोले की कृपा हो और इनके परिवार वाले इन दोनों की शादी के लिए मान जाएं। मुजफ्फरनगर में ही ये कांवड़ भी दिखी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। रिश्तों की एक और कांवड़ बिजनौर में दिखी, जहां एक पोता एक तरफ 90 साल की दादी और दूसरी तरफ उनके ही वजन के बराबर गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकला। सहारनपुर की ये कांवड़ यात्रा भी आकर्षण का केंद्र है। करीब 9 फीट ऊंची बाहुबली कांवड़ यात्रा, इसमें बाहुबली के तौर पर हनुमान है। देश के अलग अलग हिस्सों में सावन में माहौल भक्तिमय है, कांवड़ियों का जत्था निकल रहा है और हर हर महादेव और बोल बम के नारे जयकारे गूंज रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और बात मौसम की करेंगे, जहां पूर्वोत्तर में बादलों ने तबाही मचा रखी है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में जबरदस्त तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं भूस्खलन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।
21: बारिश के बाद बरसी तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते खूंखार हो चुके हैं।
2: लगातार बारिश हो रही है अरुणाचल प्रदेश में। ये इंडो चीन बॉर्डर तक ये सड़क जाती है। आप कंडीशन देखिए, हालत देखिए। यहाँ एक लैंडस्लाइड की वजह से ये रोड काफी टाइम बंद हो गई थी, बीच में कट ऑफ हो गई थी। ये स्ट्रेटेजिक रोड है। लगातार बारिश हो रही है अरुणाचल प्रदेश में, जगह जगह फ्लड, लैंडस्लाइड, नदी का स्तर बढ़ चुका है। ये पूरा यहाँ आप देखेंगे एक बाइक वाले पूरा पहाड़ गिर गया था। वो गाड़ियों की हालत देखिए, गाड़ियां किस प्रकार काम करती, किस प्रकार लोग सफर कर रहे हैं।
21: असम में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिसका जायजा लेने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे।
3: राहत का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। नुकसान इतना हुआ है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी कमी भारत सरकार की ओर से नहीं रहेगी।
21: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कालसी की तस्वीरें देखिए। सैलाब के बीच एक कार को रास्ता पार करना महंगा पड़ गया। दोनों तरफ मजबूर लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे और गाड़ी मलबे में दब गई। बहरहाल मौसम ने पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही मचा रखी है। आज तक ब्यूरो।
0: रबा शेयर बाजार की कारोबार के दौरान आज घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। रुझान सेंसेक्स 152 अंक चढ़कर 78,581 के स्तर पर, निफ्टी 10 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 24,625 के स्तर पर बंद हुआ। बढ़त की वजह से आरबीआई की तरफ से रेपो रेट को लगातार तीसरी बार स्थिर रखने, आर्थिक ग्रोथ के अनुमान में मामूली बढ़ोतरी करने और विदेशी निवेशकों की खरीदारी रही। शेयर बाजार की मजबूती के साथ रुपये में भी तेजी देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 95.15 के स्तर पर बंद हुआ। आरबीआई की मौद्रिक नीति के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। वहीं डॉलर में कमजोरी, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट और विदेशी पूंजी प्रवाह से रुपए को समर्थन मिला है। सराफा बाजार में भी आज जोरदार तेजी का रुख रहा। सोना 2,711 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,45,570 के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 7,565 रुपए बढ़कर 2,26,200 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। आरबीआई के नीतिगत फैसलों के बाद बाजार में बड़ी खरीदारी, घरेलू डिमांड और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मजबूत रुख चलते सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। और अब बात पाकिस्तान की करेंगे, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जनता सड़क पर उतर रही है, जहां शांति की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने आतंकियों को सौंप रखी है।
22: हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी इलियास कश्मीरी को पाकिस्तान ने पीस कमेटी का हिस्सा बनाया है, जिस पर जिम्मेदारी पीओके में मची बगावत को शांत करने की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की सेना पीओके में क्या करना चाहती है। पहले पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आंदोलन को दबाने के लिए JAAC पर बैन लगाया, फिर मुनीर की सेना ने बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाई। इसके बाद संगीनों के साए में POK में फर्जी चुनाव को अंजाम दिया गया और अब पीस कमेटी के नाम पर एक प्रतिनिधि मंडल रावला कोट भेजा गया है जिसमें इलियास कश्मीरी जैसा आतंकी भी शामिल है। इसी बीच लश्करे तैयबा भी JAAC आंदोलन के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आया है। संगठन लगातार JAAC नेताओं को गद्दार बता रहा है, उनके खिलाफ प्रचार अभियान चला रहा है और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशों का खुलकर समर्थन कर रहा है। वहीं भारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद POK के मुद्दे को पाकिस्तान का मसला बता रहे हैं।
1: वो देखेगी वहाँ की हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट का यह मामला वो देखेगी, यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री वो देखेगी, हमें उसके साथ कोई लेना सर की हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं।
4: आपको लगता है सर कि POK जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और वो हमारा है,
1: वो जो भी है वो उनका मसला है।
6: ये राष्ट्रद्रोह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर के वहां जो हालात खराब हुए हैं वो वहां की सरकार देखेगी। वहां की सरकार ने तो जुल्मो सितम किया है।
22: बहरहाल POJK में पाकिस्तान का हाल बेहाल है, जहां पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जनता ने आर पार की जंग छेड़ रखी है। आज तक ब्यूरो।
0: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मीटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है। अब से कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का पोस्ट मीटा द्वारा हटा दिया गया था, उसी को लेकर भारत सरकार ने मीटा से जवाब मांगे थे और अब इसी पोस्ट को रोकने के मामले में माफी मांगी गई है मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। मीटा के अधिकारी ने माफी मांगी है, माफ कीजिएगा। और इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ था जब प्रधानमंत्री के पोस्ट को रोक दिया गया था। वक्त एक ब्रेक का उछला है, टिकते रहिए आज तक।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
0: वक्त एक ब्रेक का उछला है, टिकते रहिए आज तक।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
25: चार्ज हुआ यार,
26: बैग किसका है?
27: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से

0: सरसों
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests.
4: Nobody expected that he would test within 3 months of taking over as Prime Minister.
5: Two more tests were conducted simultaneously on 13th May 1998.
4: Secretly fooled some of the best CIA experts, and that became the incredible story about the bomb makers, which made cover of India Today.
6: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते हैं कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

बारिश के बाद सड़कों पर हुए जानलेवा गड्ढों से बचकर अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचना बड़ी चुनौती बन गया है। यहां तक कि जिस हाईवे पर चलने के लिए टोल देना पड़ता है उस पर भी लंबे चौड़े गड्ढों में गिरकर लोगों की जान जा रही है। सरकार के दावों और सड़कों की रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम मुंबई नासिक हाईवे पर पहुंची। ठाणे में ये पता लगाना मुश्किल है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। यहाँ दो दिनों में जानलेवा गड्ढों ने दो लोगों की जान ले ली। शाहपुर में इस गड्ढे में बाइक गिरने से एक TDRF जवान की मौत हो गई, जिसके बाद से शाहपुर के बामनी गांव में मातम पसरा है।

टीडीआरएफ के जवान विकास कुरे सोमवार सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। टीडीआरएफ के जवान विकास कुरे के परिवार में उसकी पत्नी और 9 महीने की जुड़वा बेटियां हैं। ठेकेदारों ने भले ही सड़क पर वो गड्ढा भर दिया हो जहाँ विकास गोरे की मौत हुई थी, लेकिन सवाल है कि ऐसे गड्ढों पर तभी ध्यान क्यों जाता है जब किसी की जान चली जाती है। वहीं ठाणे के भिवंडी में भी एक गड्ढे की वजह से बाइक पर पीछे बैठी सुनीता नाम की एक महिला की मौत हो गई थी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर ना करें राजनीति, पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते हैं। नेता विपक्ष गृह मंत्री पर सादा सा निशाना, ना हिंसा पर बोलते हैं ना संसद आते हैं। मेटा ने मानी गलती, पीएम मोदी के पोस्ट रोकने को लेकर मांगी माफी। केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को कल फिर से पेश होने का दिया समन। यूपी में योगी अखिलेश के बीच छिड़ी जंग, विधानसभा हंगामे पर बरसे मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का पलटवार, सरकार बनी तो करेंगे नोटबंदी की जांच। संबल हिंसा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में पूर्व नियोजित साजिश का खुलासा, सांसद बर्क और विधायक इकबाल के बेटे का नाम आया सामने। 24 नवंबर 2024 को हुआ पथराव, गोलीबारी और आगजनी। रोती हुई बोली शेख हसीना, बांग्लादेश बन चुका है पाकिस्तान, सत्ता परिवर्तन के लिए की गई हिंसा, भारत के लिए चिंता जरूरी, दिसंबर में जाऊंगी ढाका।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज विशेष में बात रांची में चल रहे प्रदर्शन की करेंगे, जहां छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुद्दा बिल्कुल वही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने का। इस आंदोलन का आज 12वां दिन है और मुद्दा अब राजनीतिक हो गया है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी रांची के इन छात्रों के प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं, आंदोलन बढ़ता जा रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें।
1: देवेंद्रनाथ महातो हैं, जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से बात कर अपना पानी का अनशन छोड़ा है।
2: लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी।
3: पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की यह स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है, सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव भूल जाता है मार्केट।
2: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है।
4: दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे प्रदर्शन की गूंज भी अब पूरे देश में हो रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार दबाव के बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि आज

0: और अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार दबाव के बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि आज झारखंड सरकार के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
1: सर आप बताएंगे, अभी पहले SDO आए थे, क्या कह के गए हैं आप?
2: वो ये कर करके गए कि मुख्यमंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं, 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है, और जिनका बात रखा जाए, और मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के बाद फिर ये मुद्दा पे डिस्कस करके अपने में एक सुझाव देंगे।
0: ये प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहा है। इसमें करीब 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ा हुआ था। बुधवार को सोनम मांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की। उनकी अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा।
3: ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं नींद में हुई थी। मैं 26 सालों से कई लगातार कल डॉक्टर हमको हिदायत दे दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
4: अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी, आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी।
0: असल में एक ही जगह पर प्रदर्शन के 2-2 मंच हो गए हैं। देवेंद्र नाथ महतो जिस मंच पर हैं, वो झारखंड की एक लोकल पार्टी का मंच है, जबकि दूसरे मंच पर छात्र हैं।
1: यहाँ पर 2 मंच हैं, एक मंच जो छात्रों का मंच है उस पे हम हैं। यहाँ पर सरकार आई है, यहीं पर SDO आए हैं और उन्होंने बातचीत के लिए बोला है और 5 बजे तक इनको कमेटी बनाने के लिए बोला है जो छात्र हैं। यहाँ से क्योंकि काफी बारिश हो रही है, यहाँ से 300 मीटर दूर एक छोटा मंच है, वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है। वहाँ पर JKLM जो एक यहाँ की लोकल पार्टी है वो भी पहले इसी मंच पर थी, पर बाद में दोनों अलग अलग रास्ते गए अपने प्रदर्शन को लेकर। वहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो हैं जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से बात कर अपना पानी का अनशन तोड़ा था, तो वहाँ काफी दूर है वो जगह, पर यहाँ पर ही अभी सरकार ने यहाँ पर बातचीत शुरू की है। और अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं जो लोग यहाँ पर हैं, अभी काफी तादाद में लोग आए हैं, काफी तादाद में जो यूथ है झारखंड का वो यहाँ पहुँचा है।
0: JPSC और JSSC अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और OMR शीट में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। वहीं JSSC CGL समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं JPSC परीक्षा रद्द की जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच CBI जैसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए।
1: अगर सरकार सारी मांगे मान ले पर CBI को जांच ना दे, क्योंकि सुनने में आया है उसी पर सरकार अड़ी हुई है कि CBI को नहीं CID को दे दिया जाए।
2: CID जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जो बात किया गया, जो बड़े ऑफिसर आए, SDO आए, SDM आए, जो भी आए, 5 लोग के, ठीक है। अब मेरा कहना है कि 5 लोग से ही अगर पर्सनल में बात करना है तो 5 लोग में ही आप अपने फैमिली में ही इलेक्शन लड़के।
0: ये प्रदर्शन राजनीतिक भी हो चुका है। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर सवाल उठा रही BJP रांची के प्रदर्शन को पूरा समर्थन दे रही है। झारखंड में BJP के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी प्रदर्शनकारियों से मिलने गए थे, लेकिन इधर जंतर मंतर के छात्रों के समर्थन में दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास घेरने वाले राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ सरकार में शामिल है। अब छात्र भी इस पर सवाल उठा रहे हैं।
1: एक सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें शामिल है कांग्रेस, कांग्रेस जो छात्रों की गूंज प्रयागराज तक लेके गई है, कांग्रेस जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए थे, आपके साथ उन्होंने आकर खड़े नहीं हुए हैं जैसा उनको उतरना चाहिए था, डिसअपॉइंटेड है उनसे।
5: ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहते हैं।

0: कहेंगे हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी
0: कम टू रांची।
1: कुछ कुछ नहीं,
0: लड़की नहीं है मैम, मेरे लिए यही वर्ड सही है, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी कम टू रांची। पर डिसअपॉइंटेड है?
0: बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैम, मन खराब हो गया है। आप नीट के लिए इतना हावी प्रदर्शन कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेर रहे थे, और वहाँ तो एक एग्जाम का बात था मैम, वो भी एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ तो हमारे नौकरी का सवाल है।
2: प्रदर्शन में शामिल जिस भी छात्र को देखो उसकी अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची के ही छात्र यहाँ आए हैं, पूरे झारखंड से छात्र यहाँ आए। 19 साल का ये लड़का चतरा से यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आया है। जब ये 10वीं कक्षा में था तब इसका भाई JPSC की तैयारी कर रहा था, अब ये ग्रेजुएट हो गया है और भाई अभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाया। अब दोनों भाई साथ में तैयारी करते हैं।
1: जब आप
3: 10th में थे,
1: आप 10th
3: का तैयारी करने आया था मैं रांची, वो लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो भैया हैं ये JSSC का तैयारी करते थे 2022 में, मैं आज 2026 में मैं भी JSSC का तैयारी कर रहा हूँ, JPSC, ये भी वही चीज का करने लगे हैं, इनका ये 30+ हो गया। बताइए,
1: आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कितने साल के हैं सर?
4: मेरा 30 साल हो गए, 30 ईयर।
1: और ये 19 साल के हैं, कब से एक ही एग्जाम दे जा रहे हैं?
4: की एग्जाम
1: कब से?
4: 8 साल से।
1: 8 साल से एक एग्जाम दे रहे हैं?
4: जी जी जी, क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की ये स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट में, जिसके पास जितना पैसा रहता है सब देखकर ज्वाइन कर लेता है। अभी जैसे JPSC का आया तो DSP का 1,30,00,000 रुपया रेट था, BDO CO 1,20,00,000 रुपया रेट था। जैसे तो सरकार से हमको कहना है कि अगर इसी तरह करना है तो कॉलम आता है EWS का, जनरल का, तो रेट का भी कॉलम खोल दे।
2: ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं, जिससे मिलो उसकी अपनी अलग कहानी है। एक और अभ्यर्थी मिला जो अब 35 साल के हो गए, 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं अनियमितताओं की वजह से एग्जाम निकल ही नहीं रहा।
1: आप कितने एग्जाम दे चुके हैं?
5: मैंने 3 JPSC दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस लिखे हैं JPSC का।
1: सारे रद्द हुए हैं?
5: सारे रद्द नहीं हुए हैं, अभी तो इसके लिए हम लोग आए 14 के लिए, ये रद्द हुए।
1: पेपर लीक हुआ है सर?
5: हाँ, पेपर लीक हुआ इसके लिए।
1: कितने साल दे चुके हैं आप इन एग्जाम्स में?
5: मैंने तो मेरा ये 35 ईयर्स हो रहा है, ये एज 35 ईयर्स है।
1: कब से दे रहे हैं एग्जाम?
5: 2016 से दे रहे हैं, 2016 से।
1: पिछले 10 साल से आप ही एग्जाम दे रहे हैं?
5: 3 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू दिए, और ये वाला एक JPSC है 14 वाला, इसका तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सब देख रहे हैं कि अभी तक कट ऑफ भी नहीं पता, रिजल्ट निकाल दिया है,
1: कट ऑफ जारी।
2: ऐसा नहीं है कि यह हाल किसी एक एग्जाम का हो। एक और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मिले, विक्रम। झारखंड सरकार ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए पिछले 7 साल से भर्ती ही नहीं निकाली है। जब से झारखंड बना है तब से सिर्फ 3 बार भर्ती निकली है, अभी तो जद्दोजहद भर्ती निकालने की।
6: बात ऐसा है कि हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतने अभागे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता एग्जाम देने को। पिछले 26 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ सिर्फ 3 बार एग्जाम हुई, 2007, 2013 और 2019 में। 2019 के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुए, तो हमने RTI के जरिए आंकड़ा निकाला था, वो आंकड़ा निकल के आया है हमारा 539 सीट खाली है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का लगभग आधा से ज्यादा सीट खाली होता है। इसके बाद हमने मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से जितने भी टेबल्स होते हैं वहां पे जाके अर्जी लगाई है कि हमारा वैकेंसी आ जाए, लेकिन वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। ये जो लेटर आप देख सकते हैं, मतलब विभाग में जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो DOPT में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ से वैकेंसी जारी होती है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, और इसी तरह से हमें घुमाया जा रहा है।
2: प्रीति चौधरी, रांची आज तक।
7: हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा रांची पहुंचे, यहां छात्रों ने भारी बारिश में एक तिरंगा यात्रा निकाली जिसमें 500 मीटर का तिरंगा शामिल था। आशुतोष की ये रिपोर्ट देखिए।
8: उमस भरी गर्मी, आंधी हो या बरसात हो, बीते 12 दिनों से झारखंड के ये युवा लगातार सड़कों पर हैं। अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मांग इतनी है कि JPSC JSSC में जो धांधली हुई है उसे खत्म किया जाए, उन्हें इंसाफ मिले। वो बेरोजगारी से जूझते झारखंड में युवाओं के जो सपने टूटे हैं, और अब इंसाफ की मांग के लिए ये छात्र मड़ुआ रोटी खाएंगे, लेकिन इंसाफ चाहिए, और इसीलिए तिरंगा यात्रा लेकर के ये छात्र जो है अब निकले हैं। और आगे जिस स्टेडियम में लगातार पिछले 12 दिनों से जहां उमस भरी गर्मी या फिर आंधी तूफान और फिर बरसात इनके हौसले को तोड़ नहीं सकती, देश का झंडा लेकर के नारे लगाते हुए ये युवा जो है झारखंड रांची की इन सड़कों पर लगातार डटे हुए हैं। 12 दिन से आप लोग हर मौसम में आंधी तूफान गर्मी क्या कुछ नहीं देखा है, वो क्या चीज है जो इन युवाओं को हिम्मत देती है?
9: देखिए भैया, सबसे पहला बात है कि अभी झारखंड में रोपा रोपने का समय है, लोग धान उगाते हैं, धान उगाने छोड़ करके छात्र यहाँ पे आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सोचने वाला बात है कि हेमंत सरकार अभी तक छात्रों का मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले हैं, माड़ भात खाने वाले हैं, बोथल भात खाने वाले छात्र है। नहीं पूरा करेगी तो इसी प्रकार हम अडिगता से खड़े रहेंगे और सरकार का सामना करेंगे।
8: मड़ुआ रोटी, दरअसल आदिवासी इलाका है जहां पर मड़ुआ की खेती होती है और किसानों के लिए आदिवासियों के लिए वही रोटी है। और देखिए छात्रों का ये गुस्सा है कि यहां पिज्जा रोटी नहीं है, यहां पर बर्गर नहीं है। ये वो छात्र हैं जो बेहद गरीब परिवेश से आते हैं, बहुत पिछड़े इलाकों से आते हैं, और ऐसे में अगर 100 सीटों की नौकरी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में निकलती है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए ये हौसला ये हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि उसके पीछे बड़ी वजह है मजबूरियां।
7: सरकार चाहती है किसी तरीके से ये प्रोटेस्ट कुछ हल्का पड़ जाए, इसीलिए आज सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों तक पहुंचा गया और प्रदर्शनकारियों के शीर्ष 5 छात्र नेताओं को मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगे बताने को कहा गया। अभी तक प्रदर्शनकारियों ने इस प्रस्ताव पर कोई कॉल नहीं लिया है, लेकिन कल इन छात्रों ने झारखंड विधानसभा घेराव का प्लान बनाया।
2: छात्र जेपीएससी भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। सरकार सीआईडी से जांच करवाना चाहती है। अब सरकार और प्रदर्शनकारियों की बातचीत होगी तो कैसे बात बनेगी, ये बड़ा सवाल। एसडीएम कुमार रजत और एडीएम धनंजय कुमार प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों से मिलने के लिए पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए बुलाए।
10: कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग के यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है, और कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपने कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे।
2: छात्रों को बीजेपी का पूरा समर्थन मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई बीजेपी के विधायक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने अनशन पर बैठे छात्रों से मुलाकात कर बातचीत की।
11: मैंने ये तो यहाँ आया है, दोनों धारणा स्थल पर हम पहुंचे और लड़कों का मेमोरेंडम एक तो लिए हैं, लड़कों की समस्याओं को मैंने सुना है और लड़का की मांग बिल्कुल जेन्युइन है, वाजिब है। जेसीसी में और जेपीएससी में पिछले दिनों जिस प्रकार से गड़बड़ियां हुई है, तो लड़कों का मांग यही है कि वो सब एग्जाम रद्द करके और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए।
2: मौसम भी अनुकूल नहीं है लेकिन छात्रों के हौसले बुलंद हैं। आज उन्होंने रांची में एक तिरंगा यात्रा निकाली जिसमें 500 मीटर लंबा तिरंगा शामिल था।
12: तिरंगा सबके हाथों में है, बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हर के हाथ में तिरंगा है और ये इनकी जो मांग है वो बिल्कुल क्लियर है कि जेपीएससी का जो 14 प्रीलिम्स एग्जाम है उसको रद्द करना होगा, सीबीआई और जेएसएससी ने जो इम्तिहान लिया है।
7: रुकेंगे आज ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

संसद में देश के गृह मंत्री डंके की चोट पर कहते हैं पीओजे के हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि पीओजेके के सुपुर्द करते ही पाकिस्तान से सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जब तब चुनौती देते हुए पूछते रहते हैं कि पीओजेके पर हमारा कब्जा कब होगा। तो जिस सवाल पर पूरा देश एकजुट है, एक ही सुर और लय में बोलता है, उसी सवाल पर उमर अब्दुल्ला के एक सांसद कुछ ऐसा बोलते हैं कि किसी को भी बुरी तरह चुभ जाए। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रिजवान का ये बयान। सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला अपने ही सांसद के ऐसे बयानों का खंडन करेंगे। पीयूष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन ने पांचवी इकॉनमी बनने के लिए दौड़ रही हुकूमत को जगाकर न सिर्फ मंत्री का इस्तीफा दिलाया बल्कि परीक्षा व्यवस्था के बारे में सोचने को भी मजबूर किया है। उसी आंदोलन ने दूर झारखंड में भी नौजवानों के बीच बदलाव और इंसाफ की उम्मीद का दिया जलाया। लेकिन इसी बीच जब एक तरफ संघ के तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज शख्स जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को संविधान विरोधी बताते हैं, दूसरी तरफ संघ प्रमुख उन्हीं जेन जी से बातचीत करना चाहते हैं और तीसरी तरफ झारखंड में चल रहे आंदोलन को बीजेपी इंसाफ की जंग बताती है, तो सवाल खड़े होते हैं, क्या देश में आज नौजवानों की आवाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है? क्या जेन जी को संविधान परस्त और संविधान विरोधी करार दिया जा रहा है? और क्या जेन जी के मुद्दों को नजरअंदाज करके सियासत की जा सकती है? जवाब है नहीं। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद अपने मंत्रियों को जेन जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो संघ प्रमुख भी अब जेन जी से मुलाकात करना चाहते हैं। खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अब जेन जी से मुलाकात कर उनसे बातचीत करना चाहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई के नीता मुकेश अम्बानी कल्चरल सेंटर में 14 से 29 साल के जेन जी और 13 साल की जेन अल्फा के साथ मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के इस कार्यक्रम में देश के 100 से ज्यादा शहरों से 2000 से ज्यादा हाई स्कूल के विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। दरअसल जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश में ये विमर्श पैदा किया जा रहा है कि सीजेपी के आंदोलन में शामिल जेन जी दो तरह के थे, जिसमें एक वाजिब जेन जी था और दूसरा देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा जेन जी। और इसी भटकाव को रोकने के लिए अब संघ प्रमुख देश के नौजवानों से मुलाकात और रابطہ कायम करना चाहते हैं। जिस संस्था के कार्यक्रम में संघ प्रमुख की नौजवानों से मुलाकात होगी और इसके प्रेसिडेंट बताते हैं कि ऐसी मुलाकातों का मकसद क्या है। उधर अभिजीत दीप की ऐसी पहल का स्वागत तो करते हैं, लेकिन जेन जी से बात करने के लिए युवा चेहरे की जरूरत भी बताते हैं। और गौर करने की बात ये कि 6 अगस्त को संघ प्रमुख की जेन जी से मुलाकात के पहले 5 अगस्त को अभिजीत दीप की अपनी पार्टी की बैठक में संगठन के विस्तार, भविष्य की रणनीति और पार्टी के रोड मैप पर भी चर्चा करने वाले हैं।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संसदात. पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी. अधिकारी बोले हुई गलती. केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को कल फिर से पेश होने का समन दिया. यूपी में योगी अखिलेश के बीच छिड़ी जंग. विधानसभा हंगामे पर बरसे मुख्यमंत्री. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का पलटवार. सरकार बनी तो करेंगे नोटबंदी की जांच. संभल हिंसा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में पूर्व नियोजित साजिश का खुलासा. सांसद बर्क और विधायक इकबाल के बेटे का नाम आया सामने. 24 नवंबर 2024 को हुआ पथराव. गोलीबारी और आगजनी. हपक कर रोती हुई बोली शेख हसीना. बांग्लादेश बन चुका है पाकिस्तान. सत्ता परिवर्तन के लिए की गई हिंसा. भारत के लिए चिंता जरूरी. दिसंबर में जाऊंगी ढाका.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
2: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। रांची में पेपर लीक से लेकर भर्ती धांधली से परेशान प्रदर्शनकारियों के धरने को 13 दिन बीत चुके हैं, तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 साल बाद आज बांग्लादेश के लोगों को वर्चुअली संबोधित किया है, कहा है कि जल्द वो देश लौटेंगी। लेकिन इन खबरों से पहले उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी राजनीतिक खबर से आपको हम खबरदार करते हैं, जहां अखिलेश यादव ने शॉर्ट फॉर्म से वोट का लॉन्ग फॉर्म हासिल करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने 2024 में पीडीए का गठन किया, तब कहा कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन अब जैसा वोट वैसा जोड़ चलने लगा है। जहां पी से कभी पिछड़ा कहते हैं, आज पीडीए में पी का मतलब पंडित बताए, इससे भी पहले पी का मतलब पीड़ित और पीड़ा बता चुके हैं। इसी तरह डी से दलित और दया का जिक्र अखिलेश यादव कर चुके हैं, जबकि पीडीए में जो आखिरी ए है उसको लेकर अल्पसंख्यक, अगड़ा, आधी आबादी, आदिवासी, अपनापन, ये सब समय समय पर समाजवादी पार्टी बताती रही, जिसमें आज चर्चा पी फॉर पंडित की होने लगी। जब ब्राह्मण वोट साधने के लिए पीडीए में पीडी मतलब पंडित ही अखिलेश यादव कहने लगे।
1: पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
2: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया।
1: जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा।
2: जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
3: प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है।
2: जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
4: दिन भर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार।
5: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चले।
1: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग।
2: संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है।
6: उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीट पर असर डालने वाले ब्राह्मण वोट में बंटवारा क्या समाजवादी पार्टी करा सकती है? ये सवाल आते ही बहुत से लोग कहते ना, एकदम नहीं। जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां संत समाज कहता है वो बीजेपी के साथ है, जहां सनातन की बात करती बीजेपी है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में 2 से ज्यादा बार बीजेपी नेताओं के मुंह पर आता है, जहां 10 ब्राह्मण वोट में 8 ब्राह्मण वोट बीजेपी 5 चुनावों से हासिल करती आई है, वहां समाजवादी पार्टी क्या ब्राह्मण वोट की आहुति से सत्ता का हवन कर सकती? जब आप जानने के लिए इस वीडियो पर गौर करना जरूरी है। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडे, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी जैसे तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। छोटे लोहिया कहे गए पुराने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, डमरू बजता है, जिस मंत्र को पढ़कर शिव को प्रसन्न किया गया वो शिव तांडव स्त्रोत होता है। इन सब के बीच अखिलेश यादव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के रूप में गढ़े गए पीडीए के पी का नया रूप बताते हैं।
1: लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा

0: या दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा।
1: जिस ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुट रही है, उससे जुड़े कुछ तथ्य नोट कर लीजिए। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य ये है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन तक ब्राह्मण ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे। यूपी में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का दूसरा तथ्य यह है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट बटा। 2007 में कई वर्षों के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी, तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। तीसरा तथ्य यह है कि 2007 से अब तक जिसके ब्राह्मण विधायक ज्यादा, उसकी सत्ता आई। 2007 में मायावती के बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते। 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। इन्हीं सब तथ्यों के बीच अखिलेश यादव, मुस्लिम यादव और फिर पिछड़े वोट के कुछ हिस्से के साथ अब सवर्णों में सबसे बड़े वर्ग ब्राह्मण वोट को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तक याद कराते हैं।
2: भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है, और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे आप हमारी पौराणिक कहा पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
3: समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा समर्पित करता हूँ, और इनका ब्राह्मण समाज से, सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कंफ्यूज है, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं, जनता इन्हें नकार चुकी है।
4: दरअसल ब्राह्मण वोट जब समय समय पर सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर दलों में बढ़ता रहा है, तब अखिलेश यादव कुछ घटनाएं याद दिलाकर ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगाते हैं, जिसमें आस्था के नाम पर राम मंदिर चढ़ावा मामले से लेकर अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर तक को जोड़ देते हैं। इसके पीछे वजह भी है, 2014 में बीजेपी को 72% ब्राह्मण वोट मिला, समाजवादी पार्टी 5%, बीएसपी 5% और कांग्रेस को 11% ब्राह्मण वोट मिला। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 83% ब्राह्मण वोट पाती है, बाकी समाजवादी पार्टी को 7%, बीएसपी 2%, कांग्रेस को 1% ब्राह्मण वोट मिला। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 84%, समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ लड़े तो महागठबंधन को 6% और कांग्रेस को 6% ब्राह्मण वोट मिला। 2022 में बीजेपी को 89%, एसपी को 6, बीएसपी को 1 से भी कम और कांग्रेस को 1% वोट मिला। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए 79% और इंडिया गठबंधन को 16% वोट मिला। इस पूरे चार्ट को गौर से देखें तो पाएंगे कि 5 चुनाव से ब्राह्मण वोट बीजेपी के पास चुंबक की तरह ज्यादा है। 2014 से 2024 के बीच ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 16% हिस्सा ही हासिल कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि सवर्णों के सबसे बड़े वर्ग में ब्राह्मण का ही कुछ वोट टूटेगा तो उसका वोट बढ़ेगा, सीट बढ़ेगी। इसीलिए अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन वाले मंच से चुन चुन कर वो घटना याद दिलाते हैं जिससे ब्राह्मण वोट साधा जा सके, लेकिन बीजेपी इसे बेकार की कोशिश समाजवादी पार्टी की बताती है।

0: पहली तस्वीर हाथ में त्रिशूल और डमरू, दूसरी तस्वीर काशी के ब्राह्मण बोले आज समाजवादी ही आवाज। प्रतीक चिन्ह के तौर पर इसी नारे वाली तस्वीर अखिलेश यादव लेते हैं। तीसरी तस्वीर नारा इस पर पढ़िए, ब्राह्मण की मति पीडीए की शक्ति, अखिलेश बदलेंगे यूपी की नियत। चौथी तस्वीर बीजेपी अपमान करती है समाजवादी सम्मान, जिसमें हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार सम्मान के साथ मंच पर बैठाया जाता है। इन प्रतीकों के साथ उत्तर प्रदेश पंडित जी सम्मान से कहे जाने वाले ब्राह्मण वोटर को अपने साथ समाजवादी पार्टी लाना चाहती है।
1: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं।
0: इसके बाद एक एक करके अखिलेश यादव याद दिलाते हैं कि वो हर विवाद जिससे ब्राह्मण वोट को उनकी पार्टी में शिफ्ट कराया जाए। और तब अखिलेश ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर चले बुलडोजर, प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े बटकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों के प्रीति भोज को बीजेपी के संगठन की तरफ से दिए गए नोटिस तक का जिक्र कर डाला।
1: याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है, सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था, और वो जो कहावत है गोरखपुर में हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है कोने हाथा नहीं भाता। बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें।
2: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में गांव में कहावत है बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कालर थी वो लटक गई। तो लोगों ने पूछा कहां से बिल्ली मौसी आ रहे हैं, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजिम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृति को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं।
3: भारत की धरती पर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा, उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है।
4: ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से जूतों से मारा गया, क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे?
5: बड़ा असमंजस में है लोग। असमंजस में ये है कि पहले आप तय कर लीजिए कि आपकी भावना और मंशा क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं। पी की 29 परिभाषाएं समाजवादी पार्टी ने आपके सामने पहले दे रखी है। आपकी दुकान है, आप उसके मालिक हैं, आपका अपना स्कूल है, आप उसके प्रिंसिपल भी हैं, आप प्रबंधक भी हैं, तो व्याख्याएं आपको जो करनी हो वो आप करते रहिए।
6: सनातन धर्म के सम्मान की बात करके जब हिंदू वोट को बीजेपी लगातार साधती रही है, तब पिछले दो महीने से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राम मंदिर चढ़ावा मामले पर विपक्ष को बीजेपी को घेरने वाला हथियार मिल गया है। जहां कल स्पीकर सतीश महाना के बयान के बाद और भी ब्राह्मण वोट के साथ पूरे हिंदू वोट को लेकर तनातनी बढ़ गई।
3: आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है। दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया, और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को, कहा कि ये ही छोटे कर्मचारी हैं जो सूचना देते थे। और क्या आरोप लगाया उन्होंने, जाति को लेकर के आरोप लगा दिया, कहा कि उसको सूचना देने वाला कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहीं पर है मंदिर में। और सच्चाई तो ये है कि चोरी इतनी बड़ी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं।
7: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया, जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं, जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
8: संसद से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर और भीतर तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर राजनीतिक हमला इसी तरह जारी है। लखनऊ में विधानसभा में अलग लड़ाई दिखती है, हाथ में तख्तियां और जुबान पर तल्ख तेवर। विपक्ष के विधायक चढ़ावा चोरी के मसले पर दान पात्र लेकर विधानसभा के बाहर बैठे। मंगलवार को स्पीकर ने समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को सदन से बाहर निकाल दिया। बुधवार को वो सदन के बाहर धरने पर बैठ गए।
9: मेरा निष्कासन हुआ है तो मैं अंदर कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता, तो बाहर बैठ के जनता की आवाज उठाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि चढ़ावा चोरी पर सदन के अंदर चर्चा हो।
8: यही पोस्टर लेकर सचिन यादव सदन के भीतर आए, इसलिए उनका निष्कासन हुआ। स्पीकर कहते हैं मुख्यमंत्री के पद का सम्मान होना चाहिए।
10: मेरे विचार से सदन के माननीय नेता एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करना सदन के माननीय सदस्यों के संवैधानिक दायित्व।
8: राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच स्पीकर सतीश महाना खुद विवादों में घिरे हैं, जहां स्पीकर ने चढ़ावा चोरी पर नारे लगा रहे विधायकों से चंदे की रसीद मांगी थी।
10: मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रशीद देकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रशीद लेकर आ जाओ भाई यहाँ, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे।
8: इस तरह के बयान पहले भी सतीश महाना देकर पलट चुके हैं। फिलहाल दोबारा चंदा विवाद पर सवाल करने पर रसीद मांगी, विपक्षी विधायक प्रतीकात्मक रसीद लेकर पहुंच गए। महाना के बयान पर विपक्ष ने और चढ़कर घेर लिया।
3: बड़े लोग शामिल होंगे और बड़े लोग शामिल इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो, और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्तदान का नहीं पता लगा, तो बताओ क्या कह रहे हैं ये लोग। देखिए बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि रसीद लाइए, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया है, रसीद दिखाओ आप। इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि दान दिया हुआ, दक्षिणा दिया हुआ, उसकी कभी रसीद नहीं मिला करती है। हमारे हिंदू परंपराओं में, सनातनी परंपराओं में कभी भी उसका रसीद नहीं मिला करती है। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है कि एक रसीद घोटाला भी हुआ डीसीएम है, एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में है, उन्होंने नकली रसीद करके चंदा लिया था कहीं पर, उसका उन पे पाप पड़ा, जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है।
5: आप उत्तर प्रदेश के स्पीकर पर भी सवाल उठाते हो, ये भारत के संविधान के अनुच्छेदों से कहीं ना कहीं आच्छादित ये कुर्सियां हैं। एक तरफ आप लगातार संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान कर रहे हैं, उन्हें अपमानित करने के लिए हर षड्यंत्र कर रहे हैं, एक तरफ आप संविधान की दुहाई देते हैं, तो उनके किसी सीट की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो आचरण क्या विधानसभा में हुआ, ये आचरण क्या शोभा देता है?
0: वही ओवैसी कहते हैं कि चेयर से चंदे की रसीद मांगना विधानसभा की गर्मियों पर सवाल उठाता है। ओवैसी का सवाल है कि गुनाह का मुद्दा उठाने के लिए मजहब का हलफनामा देना पड़ेगा क्या?
11: उनको इस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उनको बोलना है तो वही काशी के ज्ञानव्यापी परिसर के बारे में बोले और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बनी ईदगाह के बारे में बोले।
0: फिलहाल ब्राह्मण वोट साधने से लेकर राम मंदिर चढ़ावे विवाद तक पर रणनीति बनाकर बढ़ती समाजवादी पार्टी की नजर बीजेपी के साथ एकजुट रहे हिंदू वोट को तोड़ने की है, ताकि 40% के पार तक 2027 के चुनाव में पहुंचा जा सके। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: आज की राजनीति खबर में दूसरा खबरदार करता सवाल है, अभिजीत दिपके क्या राजनीति में आएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे पर अपने आंदोलन से मजबूर करने वाले अभिजीत दिपके रांची में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब अभिजीत दिपके ने आज खुद दिया।
12: आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है।
0: भारत के हर सियासी दल से निराश अभिजीत दिपके क्या अब अपनी पार्टी बनाने की सोच रहे हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि मौजूदा राजनीतिक तंत्र से जनता त्रस्त हो चुकी है।
12: अब हम देश भर में कैसे अपना संगठन बढ़ा सकते हैं, हर राज्य में कैसे अपना संगठन बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ आगे जाकर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रोड मैप हो सकता है, क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। एक तरीके से हमारा ये दो दिन का जो कॉकरोच कॉन्क्लेव रहेगा वो हमारा एक फ्यूचर का रणनीति डिसाइड करेगा।
0: सवाल है कि जनता को क्या नया विकल्प देने जा रहे हैं अभिजीत दिपके? कॉकरोच जनता पार्टी भी क्या चुनाव में उतरेगी? वो किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी? इसे लेकर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सीजेपी की बैठक शुरू होने से पहले अभिजीत दिपके मीडिया के सामने आए। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो राजनीति में आने को लेकर थी।
12: मला वाटतं आम्ही तर विचार करत नाही, पण मीडिया वाल्यांना खूप एक्साइटमेंट आहे, आम्ही एक पॉलिटिकल पार्टी सुरू करावी। पण नाही, गम्मत करतोय सर।
0: अभिजीत दिपके कहते हैं कि उनका आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के लोग लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चीजों के खिलाफ एक साथ आए। इसीलिए आज देश को किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि एक मजबूत जन आंदोलन की जरूरत है।
12: जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो लोग डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चली, एक सोशल मूवमेंट चली।
0: तो अभिजीत दिपके के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी देश में अपना संगठन तो बढ़ाएगी, लेकिन कहते हैं कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश को एक नए राजनीतिक दल के बजाय नए आंदोलन की जरूरत है। लोकतंत्र में दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो न सीधे चुनाव लड़ते हैं न सरकार में शामिल होते हैं, लेकिन ये जनहित से जुड़ी मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। मांग पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और हड़ताल करते हैं, जिसका उदाहरण देश ने जंतर मंतर पर देखा है।
12: हमारी जो डिमांड थी वो थी एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो होना ही चाहिए, वो उन्होंने कर दिया है।
0: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर अभिजीत दिपके प्रेशर ग्रुप के अपने किरदार में बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, इसलिए झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर उनकी चुप्पी, वहां ना जाना, झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खलता है। सवाल पूछा जा रहा है कि जंतर मंतर प्रदर्शन करने वाले दिपके रांची कब आएंगे?

0: हमारे जो झारखंड के जो साथी हमारे वो ऑलरेडी वहां पर है और जरूरत पड़ी तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार, और हम जाएंगे जरूर। और हमारी उनसे फोन पर बात भी हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई, और हमने कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो कांग्रेस जनता पार्टी करेगी और उनकी जितनी भी डिमांड है हम उनका पूरा समर्थन करते हैं।
1: लेकिन सवाल अभिजीत दीपके की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर अब भी है, जिसे लेकर भले उनका अभी इनकार हो, लेकिन भारत में नाना करते राजनीति में आना पार्टी बनाने का उदाहरण अरविंद केजरीवाल के रूप में देश देख चुका है। केजरीवाल अन्ना आंदोलन में ये कहते रहे कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने बाद में न सिर्फ पार्टी बनाई बल्कि कांग्रेस के साथ पहली सरकार बनाई, जिसकी सरकारों का विरोध करते हुए वो सत्ता में आए। राजनीतिक दल बनाने को लेकर अरविंद केजरीवाल के अन्ना हजारे से मतभेद भी हुए, जबकि आंदोलन के वक्त केजरीवाल अभिजीत दीपके की तरह पार्टी नहीं बनाने की बात करते थे। इसलिए भले ही अभिजीत दीपके राजनीतिक दल बनाने के सवाल को मीडिया की इच्छा बताकर टाल दें, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ने सवाल को भविष्य के लिए जिंदा रखा है।
2: दरअसल झारखंड में जो प्रदर्शन चल रहा है, रांची में एक ही मुद्दे को लेकर एक ही जगह पर दो प्रदर्शन हो रहे हैं। एक लोकल पार्टी से जुड़े छात्र नेता और उनसे जुड़े लोगों का मंच है, जबकि दूसरे मंच पर बाकी छात्र हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसमें शामिल छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ दिया था। आज सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी अपील के बाद देवेंद्र ने पानी पिया लेकिन अनशन जारी रखने का ऐलान किया। प्रदर्शन का दूसरा मंच छात्रों का है, जो जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी जांच की बात कर रही है, जिसे छात्रों ने नामंजूर कर दिया है। आप छात्रों की बात सुने, ये जाने कि कैसे दशकों से झारखंड के छात्रों के साथ धोखा हो रहा है। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे विभाग क्यों कटघरे में छात्रों के ही पोस्टर से, समझिए। ये अभय तिवारी है, झारखंड में सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाला हर छात्र जानता है, क्योंकि अभय तिवारी झारखंड में परीक्षा धांधली का प्रतीक बन चुका है। उसका टैलेंट इतना ज्यादा है, प्रदर्शन कर रहे छात्र तंज में कहते नहीं थकते कि इसकी प्रतिभा को देखते धरती छोटी पड़ गई है। आखिर ये कौन है, इसकी चर्चा पूरे झारखंड में क्यों है, उससे आपको हम खबरदार करें। इससे पहले झारखंड के छात्रों का वो दर्द सुनिए जो खोखले हो चुके सिस्टम के हर मोर्चे पर नाकाम होने से हमें खबरदार करता है।
1: झारखंड की राजधानी रांची, जहां सरकारी नौकरियों की परीक्षा में दावा है इतनी धांधली होती है कि अभिषेक जैसे हजारों छात्र तैयारी करना ही छोड़ देते हैं।
3: दूसरे स्टेट में सुनते हैं कि पेपर लीक होता है, यहाँ पेपर लीक तो होता है लेकिन सीट बिकता है, सीधा सीट ही बेच दिया जाता है।
4: आपका नाम?
3: मेरा नाम अभिषेक है, मैं तैयारी करता था, तैयारी में छोड़ दिया हूँ।
4: तैयारी कर रहे थे?
3: हाँ, छोड़ दिया मैंने।
4: कितने एग्जाम की तैयारी किया है?
3: सीजीएल में लास्ट दिया 2024 में, 22 सितंबर को जो हुआ था उसके बाद से मैंने छोड़ दिया।
4: कितने दिए थे अभी?
3: वही एग्जाम दो बार दिया था, दो बार।
1: झारखंड यानी वो राज्य जहाँ पर दावा है कि छात्र परीक्षा हॉल में पेपर लिखते तो सेटर होटल में बैठकर।
5: फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो मेन्स की कॉपियां हैं एक प्राइवेट एजेंसी के प्राइवेट रूम में होटल में पाई गई, उनके कंप्यूटर में पाई गई, तो ऐसा कहां रूल है? मेन्स की कॉपियां जब भी स्टूडेंट मेन्स लिखते हैं उसको मेन्स लिखने के बाद कॉपियां जो है वो स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है, आयोग की जेपीएससी की स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है, बट एफआरओ मेन्स की आंसर राइटिंग की कॉपियां जो है जो मेन्स के एग्जाम में लिखी गई थी एक प्राइवेट एजेंसी के निजी कंप्यूटर लैपटॉप में वो कॉपियां पाई गई, तो कैसे हुआ है? ये सिस्टम में ऐसा लूप होल है कि ऐसा सुनने में आता है, लोग एक बच्चा बच्चा बोलेगा कि यहाँ की मेन्स जो है स्टूडेंट तो हॉल में लिखते हैं ना, और जो सेटर लोग हैं वो होटल में बैठकर मेन्स की कॉपियां लिखते हैं और सिलेक्ट होते हैं। मैम,
1: झारखंड यानी वो राज्य जहां पर सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले छात्रों से हर कदम छल होता है, इसलिए स्मृति कुमारी जैसी छात्रा अपने ही राज्य की परीक्षा देने से तौबा कर लेती।
4: यहां पर क्यों पहुंची?
6: प्रोटेस्ट के पहुंचे हैं, जेपीएससी जैसी रद्द करना चाहते हैं हम सब।
4: कितने साल की?
6: मैं 22 साल की हूँ।
4: 22 साल की है, इतना आपको गुस्सा क्यों है, क्या हुआ?
6: क्योंकि इस झारखंड में हमेशा 10 साल के बाद एग्जाम होता है, वो भी फेयर टाइप का नहीं होता है, हमेशा रद्द होगा एग्जाम, पता चलेगा पेपर लीक भी हो गया है, सबका पैसे से नौकरी होता है, गरीब बच्चा गरीब होते जा रहा है, अमीर बच्चा अमीर होते जा रहा है।
4: आप कितने एग्जाम दिए हैं जो रद्द हुए?
6: हम झारखंड में एक भी एग्जाम नहीं दिए हैं, क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं है झारखंड में तैयारी करने का, यहाँ 10 साल 15 साल

0: तक एग्जाम, तब मेरे नौकरी होता है, इसलिए हम सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं।
1: रांची में छात्रों का होता ये प्रदर्शन भले ही सामान्य लगे, लेकिन इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों से हुई नाइंसाफियां माफी के लायक नहीं।
2: मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ मैम, 2 साल से मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला है, अब मैं आगे की पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा। 40,000 फी भरना पड़ता है मुझे यूनिवर्सिटी के लिए। अगर सरकार को पैसा नहीं देना था तो मुझे पहले ही बोल देते कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे स्कॉलरशिप, तो हम एडमिशन नहीं लेते इंजीनियरिंग में। अब एडमिशन ले लिया, आगे की पढ़ाई हम कैसे कर सकते हैं बताइए। स्कॉलरशिप छात्रों को 2 साल से नहीं मिला है मैम, और नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम करप्ट है। आपसे
1: झारखंड में सरकारी परीक्षाओं के नाम पर हो रही छात्रों से नाइंसाफी की असलियत इन दो सगे भाइयों की कहानी से आज आप देखिए और खबरदार करिए सरकार को झारखंड की, जहां बड़े भाई का नाम अभिषेक है और छोटे भाई का नाम हितेश।
3: मैं 19 साल का हूं।
4: 19 साल के?
3: क्योंकि हमारा फ्यूचर का सवाल है मैम, क्योंकि हमारा फ्यूचर का सवाल है। मैं 2022 में रांची में आया था अपना 10th का तैयारी करने, ठीक है। उस टाइम मेरे भैया लोग पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में। मैं ग्रेजुएशन फाइनल करने वाला हूं, लास्ट ईयर में हूं। अभी तक भैया लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके साथ अब तैयारी करने लगा हूँ। यहाँ पे फ्यूचर ऐसा डार्क हमारा बना दिया गया है कि दिखने पर भी नहीं दिखता है।
1: तो झारखंड में बड़ा भाई तैयारी करता ही रह गया और छोटा भाई 10वीं से ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में पहुँच गया, लेकिन झारखंड सरकार ढंग से परीक्षा भर्ती की आयोजित ही नहीं करवा पाई, जबकि चुनाव के वक्त 5 लाख नौकरियों का वादा किया गया।
5: 2019 में चुनाव लड़ने के लिए प्रचार करते थे तो ये न्यूज था, 5 लाख नौकरी सरकारी नौकरी की बात करते थे, और 6 साल से ज्यादा समय हो चुका है, 1 लाख भी सरकारी नौकरी नहीं मिला है। और इनका ऑडियो उपलब्ध है, ऑडियो में बोलते हैं कि सरकारी नौकरी लेके क्या करोगे, सुअर पालो बकरी पालो, सरकारी नौकरी करेगा ट्रांसफर वहाँ हो जाएगा, दिक्कत होगा, दुनिया भर का समस्या होता है, हम नहीं समझते हैं। तो बोलते हैं कि सुअर पालो बकरी पालो, और ये बोले थे 5 लाख सरकारी नौकरी का, 1 लाख भी सरकारी नौकरी अभी तक नहीं मिला, पूरा जोड़ देंगे तो भी।
1: रांची से 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली में जिस प्रदर्शन ने केंद्र सरकार को अपने शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए मजबूर कर दिया, उसकी वजह नीट पेपर लीक था। लेकिन झारखंड में तो छात्रों का आरोप है कि कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक और धांधली के पूरी ही नहीं होती, बार बार परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती, सीधे सीधे नौकरियां बेच दी जाती।
6: स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी 2022 में आया था वो अभी 2026 हो गया, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, और अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ और एग्जाम को रद्द कर दिया गया है वापस। LDC का एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया मैम, जिसमें सेटिंग नहीं हो पाती है ना।
4: सर्विस कमीशन,
6: यस मैम, यस
4: JSSC की बात कर रहे हैं, झारखंड स्टाफ कमीशन।
7: ये जो आंसुलिपिक है जिसको स्टेनोग्राफर कहते हैं, ये 2022 में आता है, 23 में परीक्षा ली जाती है, फिर इसको रद्द कर दिया जाता है, फिर 25 में आता है, फिर 26 में इसको रद्द कर दिया जाता है। जब आयोग से हम लोग पूछते हैं कि आखिर रद्द क्यों हो रहा है, तो आयोग कहता है कि आप किसी और चीज का तैयारी कर लीजिए।
1: JPSC और JSSC की परीक्षा देने वाला छात्र इसी अन्याय के खिलाफ रांची में 13 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनका इल्जाम है कि कोई भर्ती परीक्षा बिना गड़बड़ी के पूरी नहीं हुई। इसका उदाहरण वो अभय तिवारी आरोपी के रूप में है, जो JPSC परीक्षा में धांधली का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना गया, जिसके बारे में छात्रों का दावा है कि वो 1-2 नहीं बल्कि 12 अलग अलग सरकारी नौकरियों की परीक्षा पास कर चुके हैं।
3: जो अभय तिवारी के बारे में बात किया जा रहा है, मनोज कुमार तिवारी, उसने 2013 में SSR इन इंडियन नेवी का एग्जाम निकाला। धांधली कैसे कैसे हुआ बताता हूँ। 2014 में असिस्टेंट इन बार भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में निकाला, 14 में NSL में निकाला, 18 में CRPF हेड कांस्टेबल जो कि सेंट्रल लेवल का होता है, 18 में सब इंस्पेक्टर झारखंड का बना, फिर उसके बाद 23 में JSSC सेकंड टॉपर रहा। उसने अपने भाई को और उसकी पत्नी को भी उसमें शामिल करवाया, उससे उसका भी रिजल्ट आया।
1: पैसे लेकर सरकारी नौकरी में सेटिंग करने का आरोपी अभय तिवारी झारखंड में हो रही धांधली का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। छात्र उसके पोस्टर लेकर तंज कसते हैं कि उसकी अलौकिक प्रतिभा से तो इसरो भी हैरान है, और उसके लिए धरती बहुत छोटी पड़ चुकी है।
8: झारखंड CID की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी अभय तिवारी ने कई प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं, जिनमें 2018 में पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए हुई लिखित परीक्षा भी शामिल। इन तथ्यों की पुष्टि और जांच के लिए CID की SIT ने संबंधित परीक्षाओं को आयोजित करने वाली एजेंसियों से रिकॉर्ड मांगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 13 साल में 12 परीक्षाएं पास करने वाले जिस अभय तिवारी की कहानी झारखंड के बच्चे बच्चे को पता है, उसकी खबर CID या फिर JPSC को क्यों नहीं थी? जबकि अभय तिवारी ने साल 2013 में नेवी में SAR पद की लिखित परीक्षा पास की, अगले साल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सहायक पद की लिखित

परीक्षा, आईआरबी कांस्टेबल की लिखित परीक्षा, एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की पीटी परीक्षा, साल 2018 के दरोगा की लिखित परीक्षा, इसी साल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की लिखित और टाइपिंग परीक्षा, जेपीएससी की पीजीटी टीचर परीक्षा, एसएससी सीजीएल परीक्षा, जेपीएससी की सहायक वन रक्षक परीक्षा, जेपीएससी वन क्षेत्र पदाधिकारी परीक्षा, जेपीएससी खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा, जेपी

0: चुका है, जो अभी गोड्डा जिले के पुड़ैया हाट में प्राखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर काम कर रहा है। उस आरोपी को लेकर झारखंड के परीक्षा लेने वाले विभाग आंखें बंद करके कैसे बैठे रहे, अब आप ही सोचिए। जिन छात्रों के साल बर्बाद हो गए, जो धांधली की वजह से नौकरी नहीं पा सके, वो सीआईडी जांच कैसे स्वीकार कर लें। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर भी जांच का भरोसा दे रहे हैं।
1: कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपने कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं।
0: रांची का जयपाल स्टेडियम इस वक्त देश का नया जंतर मंतर बना हुआ है। यहाँ 12 दिन से छात्र परीक्षा में धांधली से सरकार और सिस्टम को खबरदार कर रहे हैं। मूसलाधार बरसात में तिरंगा यात्रा लेकर निकले छात्र इंसाफ मिलने तक नंगे पांव चलने की शपथ ले रहे हैं।
2: उमस भरी गर्मी, आंधी हो या बरसात हो, बीते 12 दिनों से झारखंड के ये युवा लगातार सड़कों पर हैं। अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मांग इतनी है कि जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधली हुई है उसे खत्म किया जाए, उन्हें इंसाफ मिले। वो बेरोजगारी से जूझते झारखंड में युवाओं के जो सपने टूटे हैं और अब इंसाफ की मांग के लिए ये छात्र मड़ुआ रोटी खाएंगे, लेकिन इंसाफ चाहिए और इसीलिए तिरंगा यात्रा लेकर के ये छात्र जो है अब निकले हैं और आगे जिस स्टेडियम में लगातार पिछले 12 दिनों से जहां उमस भरी गर्मी या फिर आंधी तूफान और फिर बरसात इनके हौसले को तोड़ नहीं सकती, देश का झंडा लेकर के नारे लगाते हुए ये युवा जो है झारखंड रांची की इन सड़कों पर लगातार डटे हुए हैं। 12 दिन से आप लोग हर मौसम में आंधी तूफान गर्मी क्या कुछ नहीं देखा है, वो क्या चीज है जो इन युवाओं को हिम्मत देती है?
3: देखिए भैया, सबसे पहला बात है कि अभी झारखंड में रोपा रोपने का समय है, लोग धान उगाते हैं, धान उगाने छोड़ करके छात्र यहाँ पे आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सोचने वाला बात है कि हेमंत सरकार अभी तक छात्रों का मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले है, माड़ भात खाने वाले है, बोथल भात खाने वाले छात्र है, नहीं पूरा करेगी तो इसी प्रकार हम अडिगता से खड़े रहेंगे और सरकार का सामना करेंगे।
2: 12 दिन, इन 12 दिनों में मौसम तो मुझे लगता है कोई चुनौती रही ही नहीं, लेकिन इन 12 दिनों के बाद
4: हौसले बहुत हैं सर। मौसम फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, तो ये बारिश ये पानी हमारा क्या बिगाड़ेगा।
5: बारिश के लिए हम लोग कोर कमेटी का बैठक करेंगे कि डेलीगेशन टीम को जो बुलाया गया है आपस में निर्णय लेंगे, उसके बाद क्या कुछ करना है, उसके बाद जो कोर कमेटी का जो बात रहेगा वो सर्वमान्य रहेगा। इसलिए हम लोगों ने एसडीओ सर और एडीएम सर जो हम लोग
2: दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर से 12 किलोमीटर जब आप रांची आएंगे ना, इन छात्रों के बीच को भीगते हुए देखेंगे तो ये छाता खोलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हम भी कभी युवा थे, हमने भी परीक्षाएं दी हैं और आप सोचिए कि अगर पर्चा लीक हो जाए, सपने टूट जाए, उम्मीदें टूट जाए तो क्या कुछ बीत सकता है।
0: युवाओं के अधिकार उनकी नौकरी के लिए आज तक ने खबरदार किया है तो बड़ा असर हुआ है। 31 जुलाई को खबरदार में इसी वक्त हमने प्रधानमंत्री के निर्देश और पहल के बावजूद राजस्थान में छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म नहीं होने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसी रात राजस्थान सीएमओ से रिपोर्ट मांगी, के बाद राजस्थान सरकार ने यह कहते हुए अपनी रिपोर्ट अब भेजी है कि पीएम की मंशा के तहत छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म किया जाएगा। मतलब राजस्थान में छोटी नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था बाकी राज्यों की तरह खत्म कर दी जाएगी। दूसरी खबर का असर भी राजस्थान से हुआ है। टेंडर पूरी होने तक स्किल डेवलपमेंट पढ़ाने वाले किसी भी टीचर को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। पुराने टेंडर को आगे बढ़ाया,

0: 24 घंटे पहले ही हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि कैसे राजस्थान में वोकेशनल टीचर्स को प्लेसमेंट एजेंसियां बिना कुछ कहे नौकरी से निकाल दे रही हैं, उन्हें वक्त पर सैलरी नहीं दे रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो हम आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद कुमार इस समय जुड़ रहे हैं, क्योंकि शरद, ये रिपोर्ट्स आज तक पर हमने दिखाई और ये पहली बार भी नहीं है, लेकिन ये जो अब एक तो इंटरव्यू नहीं होने वाला छोटी नौकरियों में, और कल ही जो खबर हमने दिखाई थी शरद, छात्र कुछ और ये बेरोजगार जो है वो कुछ राहत महसूस कर रहे हैं।
1: बिल्कुल श्वेता, युवाओं के हक में नौकरियों के लिए खबरदार करता ये कार्यक्रम कितना असरदार हो गया है कि दोनों ही हमारी खबरों पर रिपोर्ट सीधे पीएमओ ने मांगी है और राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने संपर्क किया और कहा कि पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है और इस रिपोर्ट में हम क्या क्या भेज रहे हैं। शुक्रवार को हमने एक खबर दिखाई थी, उसी रात पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी थी, अगले दिन ये रिपोर्ट भेजी गई है कि हाँ, हम छोटी नौकरियों में जो कमियां रह गई थी उसे दुरुस्त करके हम इंटरव्यू खत्म करेंगे। आज भी अधिकारियों ने कहा दिन भर पीएमओ को रिपोर्ट बनाने में लगा, जब स्किल डेवलपमेंट के जो टीचर थे उन्हें हटाया गया, क्योंकि ये भी काफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय कार्यक्रम रहा। और उसके बाद कहा गया कि किस तरह से अस्थायी नौकरी इन्हें दी जाएगी उसके लिए भी कमेटी फैसला करेगी, उस पर भी सक्षम स्तर पर विचार किया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यालय पीएमओ कितनी पैनी नजर रखे हुए है युवाओं और नौकरियों के कार्यक्रम पर, जो हम दिखाते हैं ये दिखाता है कि दोनों ही खबरों पर सीधे पीएमओ ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है और राजस्थान सरकार ने दोनों ही जो स्टोरी थी उस पे कहा है कि हम फैसला सकारात्मक ले रहे हैं। 10 साल पुरानी मांग थी श्वेता कि छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, मगर आज तक पर खबर चलने के बाद राजस्थान की बीजेपी सरकार, भजन लाल सरकार ने यह फैसला किया है और बताया है पीएमओ को कि इस दिशा में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये युवाओं के हक में जो हम खबरदार करते हैं वो कितना असरदार कार्यक्रम है ये दिखाता है।
0: शरद, हालांकि ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपकी गलती दिखाई जाए तो उस गलती को आप सुधारें, लेकिन उम्मीद ये भी करते हैं, क्योंकि राजस्थान न केवल बीजेपी के शासन से बल्कि इससे पहले जब कांग्रेस का शासन वहां रहा तब भी हमने देखा कि पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा वहां पर रहा। आज भी हमने देखा कि किस तरीके से तार वहां से जुड़ गए जब पिछला नीट का पेपर जब लीक होने की खबर सामने आई थी। क्या उन चीजों को लेकर, उनको दुरुस्त करने को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं?
1: बिल्कुल श्वेता, ये बात सही है कि राजस्थान सबसे पहले बदनाम होने वाले राज्यों में रहा, जहां पर लंबी लड़ाई हमने खबरदार और दस्तक में लड़ी थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर। और यहां पर इस सरकार में पेपर लीक की घटनाएं नहीं हुई है, नीट का जो खुलासा हुआ यहीं से हुआ था, ये सही है, मगर इसके तार महाराष्ट्र से थे। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे राज्यों के युवाओं से जुड़े खबरों पर नजर रखता है, कांग्रेस शासन में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है कि कोई तीसरी आंख भी है जो दिल्ली से बैठी हुई है, जो राज्यों की सरकारों पर इस तरह से नजर रखे हुए है, मगर इसके बावजूद नौकरियां बहुत निकल रही है, फिर भी लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई पत्र दे देते हैं, फिर भी महीने महीने तक ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो कई सारे ऐसी समस्याएं हैं जिससे युवा आज भी जूझ रहे हैं, जिसे हम दिखाते रहते हैं, मगर ये कहा जा सकता है कि युवाओं को इस कार्यक्रम में खबर दिखाए जाने के बाद बहुत राहत मिलती है इससे, इसलिए इस खबरदार कार्यक्रम से युवाओं की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई है। श्वेता,
0: बहुत शुक्रिया। शरद कुमार हमारे संवाददाता हमें ये जानकारी दे रहे थे। अच्छी बात है कि खबरदार किया गया और उसके बाद असर उस खबर का दिखा है, दो दो जगह जहां पर बदलाव की आवश्यकता थी। और अब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल से आई उस खबर का वीडियो, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे बेहतर खाना तो जेल में शायद कैदियों को भी खिलाया जाता है, लेकिन मिड डे मील के तहत सीतापुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल में ऐसा खाना परोसा गया जो किसी हालत में बच्चों को खिलाने लायक नहीं था। अब कार्रवाई की बात कलेक्टर ने कही। सवाल है कि जिस योजना की निगरानी के लिए हर जिले में 20 अधिकारी होते हैं, वहां बच्चों को मिड डे मील का खाना देने के नाम पर ऐसा शर्मनाक मजाक क्यों हुआ?
2: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जली रोटी, पनिहल सब्जी और सरकारों के गुणगान। इस वीडियो को बार बार देखिए, इसलिए देखिएगा क्योंकि मजाक भी बहुत हल्का शब्द साबित होता है। कुकर में 2 गिलास पानी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया, स्वाद अनुसार नमक डालकर आलू के चंद टुकड़े और परवल के छींटे मारकर सीटी लगा दी गई। जानवरों को भी जैसे रोटी नहीं फेंकी जाती, उस तरह से फेंक कर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सरकारी स्कूल का मिड डे मील बच्चों को परोसा जा रहा है। ऐसा मिड डे मील खाकर पढ़ेंगे बच्चे तो सोचिए कैसे बढ़ेंगे बच्चे। सीतापुर के छंगापुर का सरकारी प्राइमरी स्कूल इस बात की गवाही देता है कि मिड डे मील के नाम पर जो दावे सरकार करती है, हकीकत में उसमें बहुत पानी मिला हुआ है। दावा है ये वीडियो मंगलवार का है, जब नियम कहता है कि बच्चों को चावल और सब्जी युक्त दाल दी जानी चाहिए। नियम कहता है चना या अरहर की दाल में मौसमी सब्जी मिलाकर चावल के साथ दिया जाए, लेकिन सीतापुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल में बना मिड डे मील कहता है नियम गया पानी लेने और उसी पानी वाली सब्जी को परस देंगे, ताकि बच्चे को इसी बहाने थाली में कल कल बहती पानी वाली सब्जी के बहाने नदियों के बहाव का पाठ भी पढ़ा दिया जाए। वो तो गनीमत रहे, एक शख्स ने ये वीडियो बनाया, वायरल किया तो जाकर पता चला कि सरकारी स्कूल में बच्चों को किस तरह पानी वाली सब्जी का स्वाद चखाकर तंदुरुस्त करने की योजना चल रही है। जहां कार्रवाई के नाम का नाटक करने अधिकारी पहुंचे, रसोईया को हटा दिया, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया, बीईओ के खिलाफ एडवर्स एंट्री करके हाथ झाड़ लिया गया। जरा सीतापुर के कलेक्टर को सुनिए।
3: लापरवाही के कारण मतलब ऐसे घटना घटित हुई। जब ये प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को संज्ञान में आया, तत्काल हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ साथ जो खंड शिक्षा अधिकारी को हमने विद्यालय भेजा। विद्यालय में जब प्रथम दृष्टि जो वायरल हुई वीडियो वो सही पाया गया है, उसको संज्ञान में लेते हुए जो प्रिंसिपल साहब और साथ में जो रसोईया, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और प्रिंसिपल साहब का सस्पेंशन का कार्रवाई की गई, और साथ साथ जो पर्यवेक्षण का जो लापरवाही का देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर भी प्रतिकूल प्रविष्टि का कार्रवाई किया गया। और ऐसे लापरवाही फ्यूचर में ना होने के संबंध में प्रशासन का स्तर से पहले से स्पष्ट निर्देशित किया गया, जो खंड शिक्षा अधिकारी नहीं खंड विकास अधिकारी भी स्कूल पे जाएंगे, जो बच्चे के साथ बैठ के मिड डे मील खाएंगे और मिड डे मील गुणवत्तापूर्ण से बन रहा है या नहीं इसके संबंध में भी इन लोगों को पर्यवेक्षण करने के लिए हमने स्पष्ट निर्देशित किया गया।
2: ये सब सुनकर आपको लगेगा कि देखो कलेक्टर साहब ने कितना बड़ा एक्शन लिया, लेकिन रुकिए, फैक्ट हम बताते हैं। यूपी एमडीएम के दस्तावेज कहते हैं कि बच्चे किस तरह का खाना स्कूल में मिड डे मील के तौर पर पा रहे हैं और खा रहे हैं, इसकी निगरानी के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक DRDA, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और ब्लॉक स्तर पर उप जिलाधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, पूर्ति निरीक्षक, यानी कुल 20 लोग हैं। लेकिन एक आदमी ये नहीं देख पा रहा था कि कैसी पानी वाली सब्जी बच्चों को स्कूल में परोसी और खिलाई जा रही है, क्योंकि बेसिक शिक्षा वाली व्यवस्था में कहा जाता है सबसे बड़ा करप्शन अधिकारी मिड डे मील के नाम पर ही तो करते हैं। जहां मिड डे मील ना बने तो बचने का सबसे ज्यादा रेट लगता है, बाकी खराब बने तो कौन देखने वाला है। सोचिए ये मासूम बच्चे इस खाने को कैसे खाते रहे होंगे, कभी उफ नहीं किया होगा। इन्हें क्या पता कि इनके हक का खाना खा खा कर कौन कौन कितना कितना मोटा हो गया होगा।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, रहिए खबरदार।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: is finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर घर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
4: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
3: असली शहद, असली स्वाद।
5: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर। चल दे चटक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम? क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
6: सुपर स्ट्रॉन्ग
5: और मॉइस्चर प्रूफ।
6: वारंटी
5: 15 साल की।
6: कदम
5: सर प्लीज।
7: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
8: क्रॉसबॉन्ड HDMR Max। फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: पापा
15: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
14: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
15: छक्का?
14: सब कैशलेस हो गया है।
15: हाँ बोले ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ। तू
16: बिलोंड चार्ज हुआ यार।
17: ला बैट किसका है?
18: टाटा AIG है तो भरोसा है।
19: आगे आगे।
20: अरे उधर
19: उधर किधर?
20: करेक्ट करेक्ट।
21: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर किधर?
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस तेल में।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University.
7: In association with
8: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
9: कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। दो अगस्त को कर्नाटक के विजयपुरा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के OMR शीट का नंबर और सवालों का नंबर बेमेल होने और प्रश्न पत्र तय समय से देर से बांटने जैसे आरोपों पर छात्रों का आक्रोश फूटा था। इसे लेकर बीजेपी और JDS ने प्रियंक खरगे को घेरने की कोशिश की, उनसे इस्तीफे की मांग हुई। पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रियंक खरगे ने जो कहा उसके बाद बीजेपी ने छात्रों के मुद्दों पर कांग्रेस नेतृत्व की नीयत पर सवाल उठा दिया है। प्रियंक खरगे का दावा है कि भर्ती परीक्षा के सवालों का नंबर और OMR शीट में नंबर बेमेल होने का आरोप सिर्फ कुछ छात्रों की गलतफहमी थी, इसलिए जो लोग OMR शीट के साथ एग्जाम हॉल के साथ बाहर गए वो अपनी जिम्मेदारी पर गए। सरकार की जिम्मेदारी उन छात्रों के लिए थी जो एग्जाम दे रहे थे। इन्हीं दलीलों के साथ प्रियंक खरगे कर्नाटक में पेपर लीक या भर्ती घोटालों के आरोपों पर अपना पल्ला झाड़ते भी नजर आए। प्रियंक खरगे का ये जवाब ऐसे समय में है जब नीट पेपर लीक पर पूरे देश में हंगामा हो चुका है, देश के शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इस बीच झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती घोटालों के आरोपों पर झारखंड में छात्रों का 11 दिनों से धरना जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 अलग अलग टेंट्स में भर्ती घोटाले की CBI जांच जैसी मांगों के साथ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से धरना और मशाल मार्च निकाल रहे छात्रों को खाने पीने जैसी मदद के साथ कुछ वॉलंटियर, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी सामने आए हैं। लेकिन आरोप लग रहा है कि झारखंड के छात्र आंदोलन को राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। पेपर लीक या परीक्षा में धांधली कहीं हो, देश के छात्रों के साथ नाइंसाफी है। लेकिन कर्नाटक, झारखंड साथ ही साथ पंजाब में पेपर लीक के मसले पर विपक्ष की चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। आज तक ब्यूरो।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको झारखंड में जेंजी युवाओं के आंदोलन में लेकर चलेंगे और पूछेंगे कि जो लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर दौड़े जा रहे थे, नारे लगा रहे थे, रील बना रहे थे, सरकार को आईना दिखाने कदम भर रहे थे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ऐलान के अलावा कुछ सुनना नहीं चाह रहे थे, पता नहीं क्यों वो झारखंड में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आखिर इन लोगों को झारखंड का जेंजी प्रोटेस्ट क्यों नहीं लुभा पा रहा? क्यों इनके कैमरे को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम नजर नहीं आ रहा? क्या झारखंड के जेंजी प्रोटेस्ट में इन लोगों को रील वाला वायरल कंटेंट नहीं मिल पा रहा? लेकिन आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां मूसलाधार बारिश है, टेंट फट चुके हैं, बिस्तरों तक पानी भर चुका है, लेकिन झारखंड के ये जेंजी छात्र अपनी किताबों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे डटे हैं। इनकी मांगे बिल्कुल साफ है, परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच, जेपीएससी की 14वीं संयुक्त परीक्षा का तत्काल रद्द होना और उस रैकेट का सफाया जो पैसों के दम पर नौकरियां बेच रहा है। लेकिन झारखंड सरकार का कहना है कि उसे सीआईडी जांच पर भरोसा है। आज हम पूछेंगे कि क्या झारखंड के उन युवाओं की मांग पूरी हो पाएगी और साथ ही पूछेंगे क्या वाकई झारखंड के इस आंदोलन में रील वाला कंटेंट नहीं है या फिर लोगों की आंखें अब सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक देखने और परोसने की आदि हो चुकी है। इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत में निर्वासित जीवन बिता रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख हसीना भावुक हो गई और कहा कि बांग्लादेश एक और पाकिस्तान बन गया है, लेकिन वो बांग्लादेश जरूर लौटेंगे। आज आपको बताएंगे कि जिस देश से शेख हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा, वहां वापस लौटने की हिम्मत वो कैसे जुटा पा रहे हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत में चर्च को मिलने वाले विदेशी चढ़ावे, दूसरे शब्दों में कहें तो विदेशी फंडिंग के हिसाब पर तनाव क्यों है। अब विदेशों से मिलने वाली फंडिंग को लेकर भारत सरकार के प्रस्तावित बिल पर अमेरिका तक घमासान मचा है। ट्रंप की पार्टी के एक सांसद ने आरोप लगाया है कि नया एफसीआरए बिल भारत में चर्च पर कब्जे की साजिश है, जबकि सरकार कह रही है कि ये बिल विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आज आपको अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता की असली तस्वीर भी जरा दिखाएंगे। और आखिर में देश की सड़कों पर बिना इंश्योरेंस दौड़ रहे 16.5 करोड़ से ज्यादा वाहनों के लिए जरूरी खबर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन वाहनों के मालिक सावधान हो जाएं, क्योंकि अब बिना बीमा न गाड़ी में तेल होगा न गाड़ी दौड़ेगी। खैर, शुरुआत करते हैं, आपको ये बताते हैं कि क्या झारखंड का जेंजी आंदोलन अब तभी खत्म होगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपना इस्तीफा देंगे। ये मांग आंदोलन पर बैठे कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों ने की है। उनका कहना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की जिस परीक्षा में धांधली हुई उसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विभाग से है। इनमें भी कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास आते हैं, और क्योंकि ये परीक्षाएं भी नीतिगत और प्रशासनिक मामलों से जुड़ी हुई थी, इसीलिए आंदोलन पर बैठे छात्रों की यह मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि यहां हम दो बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। पहली बात, इस्तीफे की यह मांग अब तक किसी पोस्टर या बैनर पर नहीं लिखी गई है, कहीं भी नहीं लिखी गई है, और सिर्फ कुछ छात्रों ने मौखिक रूप से ऐसा कहा है। और दूसरी बात, ये मांग छात्रों के केवल एक धड़े की तरफ से कही जा रही है, तो क्या अब इस छात्र आंदोलन में दो धड़े हैं? रांची के जिस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यह आंदोलन चल रहा है, वहां हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार मौजूद है। वो ऐसा कहते हैं कि स्टेडियम में अभी दो आंदोलन चल रहे हैं, यानी दो अलग अलग गुट हो गए हैं। एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो कि भूख हड़ताल पर है और सोनम वांगचुक से बात के बाद उन्होंने जल पिया है, नहीं तो वो 2-3 दिन से जल भी नहीं ले रहे थे। जबकि दूसरा आंदोलन वो छात्र कर रहे हैं जिन्हें परीक्षा में धांधली की वजह से फेल कर दिया गया था। दोनों आंदोलनों की मांग एक ही है, लेकिन दोनों का विरोध प्रदर्शन अलग अलग चल रहा है, और इनमें भी देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल पीड़ित छात्रों के टेंट से 150 मीटर दूर एक दूसरे टेंट में चल रही है। जिन प्रदर्शनकारी युवाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है, वो देवेंद्र नाथ महतो के साथ बैठे हैं, जबकि दूसरे धड़े के प्रदर्शनकारी छात्रों ने अभी ऐसी कोई मांग नहीं की है। मुख्य रूप से ज्यादातर प्रदर्शनकारी छात्र आंदोलन खत्म करने के लिए 5 शर्तें रख रहे हैं सरकार के सामने। इनमें पहली मांग यह है कि जिन परीक्षाओं में धांधली हुई उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए। दूसरा, सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं और प्रक्रिया में सुधार किए जाएं और इन्हें पारदर्शी बनाया जाए। तीसरा, अप्रैल महीने में झारखंड लोक सेवा आयोग की जो 14वीं संयुक्त परीक्षा हुई थी उसे तत्काल रद्द किया जाए। चौथा, परीक्षा कराने वाली जिन कंपनीज और एजेंसियों की भूमिका संदिग्ध है उनकी जांच हो, उनके द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए, नए सिरे से ये परीक्षाएं कराई जाए। और पांचवी मांग ये है कि रिश्वत लेकर सरकारी नौकरी दिलाने वाले रैकेट को खत्म किया जाए। इनमें भी जिन लोगों को इस रैकेट की मदद से सरकारी नौकरी मिल चुकी है उनकी नियुक्ति भी तत्काल खारिज हो। बड़ी बात यह है कि इन मांगों को लेकर सरकार ये कह रही है कि उसके दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। हेमंत सोरेन खुद ऐसा कह रहे हैं और रांची के एसडीएम कुमार रजत आज प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने पहुंचे, जिसमें उन्होंने इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने की अपील की, लेकिन छात्रों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। देखिए,
1: माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है, और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए जो लोग वहाँ जाके बात करेंगे।
2: सर, आपसे एक विनम्र अनुरोध का अपील है कि हम हजारों छात्रों का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ कोर टीम के साथ ही कर रहे हैं और हम लोग पर तमाम छात्रों का बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि हम लोग का एक प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा।
1: जैसा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप मेरे थ्रू आपको दिया गया है कि वार्ता करने के लिए भेजा बोला गया है, आप एक बार वार्ता कर लीजिए।
2: सबसे कम हम लोग 6 बजे तक समय दे, 4 बजे आप बोले तो 2 घंटे समय
3: दे, 5 घंटे का समय दे, 5 घंटे
1: हम लोग उनको समझा रहे हैं कि आप लोग डेलीगेशन तैयार करके जहां पे वार्ता के लिए स्थान नियत किया गया है वहां पे वार्ता करेंगे।
4: उम्मीद है कि
1: हम लोग पॉजिटिव हैं।
0: ये आंदोलन तभी खत्म हो सकता है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हो जाए, जबकि अभी रात 9 बजे तक झारखंड की सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई है। आज इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के बीच एक मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात का एजेंडा यही आंदोलन था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब हेमंत सोरेन बाहर आए तब उन्होंने ये तो कहा कि सरकार के दावे जो दरवाजे हैं वो बातचीत के लिए खुले हैं। अभी छात्र क्या कह रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई को जांच सौंपने के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि वो अपना सीना चीर कर नहीं दिखा सकते और सरकार को सीआईडी की जांच पर पूरा भरोसा है और जैसे ही सीआईडी की जांच रिपोर्ट आ जाएगी सरकार कड़े कदम उठाएगी। सुनिए,
5: कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहां जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं।
0: तो हेमंत सोरेन खुलकर ये कह रहे हैं कि जिन्हें भी बात करना है उनके दरवाजे खुले हैं, वो इसके लिए तैयार हैं। अब देखिए, हर बड़े छात्र आंदोलन की एक विडंबना होती है और आज इस विडंबना को भी हम दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे आंदोलनों में अक्सर कैमरे मंच पर टिके रहते हैं, जमीन पर नहीं। बहस इस बात पर होती है कि सरकार का पक्ष क्या है, विपक्ष क्या कह रहा है, किस नेता ने क्या बयान दिया। लेकिन इन सारी आवाजों के शोर में सबसे बड़ी जो आवाज होती है वो अक्सर दब जाती है, उन छात्रों की आवाज जिनके संघर्ष को लोग सही रूप में देख नहीं पाते, है ना। कोई छात्र अपनी किताबें छोड़कर अपना भविष्य दांव पर लगाकर सड़क या स्टेडियम में रातें गुजारने का फैसला शौक से तो नहीं करता। ये देखिए, लड़के लड़कियां सब, वो ऐसा तब करता है जब उसे लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं बचा। जब बार बार की गुहार, आवेदन, प्रदर्शन, उम्मीदें उसे केवल निराशा लौटाती है। झारखंड में इस समय लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही है। ये देखिए, जिस स्टेडियम में ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं वहां पानी भर चुका है। जिन तिरपालों के सहारे उन्होंने अपने संघर्ष को बचाए रखने की कोशिश की थी वो भी जगह जगह से फट चुके हैं। बारिश का पानी उनके कपड़ों, बिस्तर, सामान सब तक पहुंच रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं। इनकी तकलीफ, कोई भी छात्र तभी इतनी तकलीफ उठाता है जब वो व्यवस्था से पूरी तरह हार चुका हो और उसे लगता हो कि बस हमें खुद ही टिके रहना होगा, नहीं तो हमारा भविष्य तो यूं ही बह जाएगा। जब उसे लगने लगता है कि अगर आज भी वो नहीं बोला तो शायद उसके हिस्से का न्याय हमेशा के लिए छिन जाएगा। इसीलिए इस आंदोलन को केवल राजनीतिक चश्मे से देखना सही नहीं होगा कि भाई दिल्ली वाला है तो इस सरकार के खिलाफ है, झारखंड वाला है तो इस सरकार के खिलाफ है। इनको तो बस पेपर लीक से, नौकरियों की बिक्री से मुफ्त आजादी चाहिए। ये उन युवाओं की पीड़ा को समझने का भी समय है जो अपने सबसे ऊर्जावान सालों में रोजगार, पारदर्शिता, न्याय की मांग करते हुए बारिश में भीगने को मजबूर हैं। देखिए, जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी वो आज तिरपाल संभाल रहे हैं, जिन कंधों पर देश का भविष्य खड़ा होना चाहिए था वो आज आंदोलन को उठ रहे हैं। देखिए,
4: चाय पकौड़ा खा रहे हैं या हम लोग आपको चाय पकौड़ा और बिस्कुट भी खिला देंगे, आइए हम लोग का सहयोग करिए।
6: ये बारिश हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती है, चाहे दिन रात बारिश हो हमें उससे मतलब नहीं है। हम आंदोलन में जारी रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। हम आंदोलन छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले।
4: इतने जो कड़े धूप में है तो हो सकता है शाम में और भी भीड़ हो जाए, स्टूडेंट छात्र लोग एकजुट हो जाए।
7: है थोड़ा हालत खराब है हम लोग को, लेकिन हाँ ये अनिश्चित काल है, बारिश उरिश हमारा ये नहीं तोड़ सकती है। जब तक सरकार ये हमारी मांगे नहीं पूरा करेगी तब तक ये धरना रहेगा।
8: स्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, ये हमारा संघर्ष जो है यह लगातार जारी रहेगा।
0: खैर, टूटे हुए तिरपाल तो सबने देखे, लेकिन आज अंदर से टूट चुके इन युवाओं को सुनना भी जरूरी है। और जानते हैं ये जेंजी युवा क्या कह रहे हैं कि हमें डटे रहना है। आपने देखा है, वो पूछते हैं कि उन्हें आंदोलन पर बैठना ही क्यों पड़ा, सिस्टम से उनकी व्यथा को समझ क्यों नहीं पाया। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर आकर रोना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आखिर वो करे तो क्या करे। एक छात्र ने तो यहां ये भी कहा कि उनकी लड़ाई राजनीतिक है ही नहीं, उन्हें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आंदोलन को आज सबसे ज्यादा राजनीतिक वजहों से ट्रोल किया जा रहा है। और ये उन छात्रों का जो दर्द है उसे शायद ही कोई समझ रहा है। सुनिए,
6: और आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने तिरंगा मार्च निकाला है। देख सकते हैं ये बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद उनके स्पिरिट्स जो हैं वो हाई हैं।
9: हमको आपसे सीमन चाहिए, आप शिक्षा व्यवस्था का सुधार कीजिए सर, प्लीज। हाँ, जोड़ के निवेदन कर रहे हैं सर।
10: हम लोग में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग अपने हाथ के लिए लड़ रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ गया? वो गवर्नमेंट तो सामने आए और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाहिर करे। जो एस्पिरेंट है उनको कैसे मोटिवेशन मिलेगा सर आगे पढ़ने के लिए और झारखंड को सुधार करने के लिए?
11: यहाँ पर सारे लोग कोई बड़े बाप के बेटे नहीं है सर, हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई सर किसी राजमिस्त्री का बेटा है। हम लोग सर एक हाई एंड मिडिल क्लास परिवार से भी बिलोंग नहीं करते सर। जो छात्र जो छात्र सर जो पैसे वाले हैं वो यहाँ पर कोई आंदोलन में नहीं आया होगा सर, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो सीट खरीद के डीएसपी बन गया होगा, वो सीट खरीद के वीडियो बन गया होगा, सीओ बन गया होगा।
12: एक कार्यक्रम चलता है सरकार आपके द्वार, तो ये हमारा द्वार है, हम छात्रों का द्वार है, आप भी हमारे द्वार पे आइए और हमसे संवाद कीजिए, आप ही का कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार, तो आप आइए हमारे द्वार पे, जो हम छात्रों ने अपना द्वार सजाया है इस द्वार पे आइए, हम सब छात्र आपका स्वागत करेंगे और आपसे बात करेंगे।
13: आखिर झारखंड का जनता, झारखंड का युवा, झारखंड का छात्र ने आपको वोट देके सीएम बनाया है, तो आप उस गुरु परमात्र है कि हम सीएम बन गया तो सब चीज कर लिए, जरूरत पड़ेगा तो रोटी के साथ पलट देंगे, जैसे रोटी पलटता है ना उधर सट्टा पलट देंगे।
14: सरकार का नियति नहीं है नौकरी देना, सरकार का नियत है बस नौकरी उसी लोग के देना जो उनके झोली भरता है।
15: माननीय मुख्यमंत्री जी ही हम लोग को भविष्य संवार सकते हैं, अगर उनको संवारना है तो संवार दें और नहीं तो मारना है तो मार दें। अब तो भूख हड़ताल पर हम लोग चले गए हैं।
16: सुने हम लोग चेहरा पे जबरदस्ती हंसी ला रहे कि हम लोग हंस सके, इसीलिए गाना गा रहे क्योंकि उनको तो दर्द दिखाई नहीं दे रहा, शायद हमारी हंसी देख के वो आ जाए।
0: तो आपने इन बच्चों की बात सुनी और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने आप में एक आईना है इन तमाम समाज को सबके सामने कि बच्चे, और वो भी देखिए हर वर्ग के बच्चे जब ऐसे अपनी मांगों के लिए आ रहे हैं वो किस तरह से संयम से अपनी बात को कह रहे हैं, वो ये हर हाल में सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके आंदोलन को कोई भी बदनाम ना करे या कोई भी ऐसे नारे वहां पर नहीं लगाए जाएं जिनसे उनके ही जो लक्ष्य है उसको चोट पहुंचे। ये वाकई बहुत बड़ी तारीफ की चीज है। अब देखिए, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब आप इन छात्रों को सुनिए।
17: अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं करती है तो हम सभी छात्र नौजवान सीएम सर की इस्तीफा का भी मांग करेंगे लास्ट में। अगर अच्छा। हम लोग की उपरोक्त मांग नहीं मानती है तो हम सीएम सर से ये अपील करेंगे कि आपसे छात्र नौजवान की दुख और पीड़ा नहीं देखा जा रहा है, अतः चूंकि जेपीएससी और जेएसएससी कार्मिक के अंतर्गत आता है सर, और कार्मिक जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो अकाउंटेबिलिटी माननीय मुख्यमंत्री जी का बनना चाहिए सर, और उस नाते हम सभी छात्र इस्तीफा मांग रहे हैं।
0: आज ये खबरें भी आई कि छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन देवेंद्रनाथ महतो का कहना है कि ये खबरें गलत हैं। उनके मुताबिक उन्होंने नमक और पानी का ग्रहण किया है लेकिन अपने अनशन को तोड़ा नहीं है। इससे पहले वो निर्जला मतलब बिना जल के वो अनशन पर बैठे थे और सोनम वांगचुक से उनकी बात ही हुई, उसके बाद से जब उन्होंने अनुरोध किया तो उन्होंने पानी पिया। उनका कहना है कि छात्रों की मांगे पूरी होने तक वो अन्न का त्याग जारी रखेंगे और ये फैसला भी उन्होंने तब लिया है जब सोनम वांगचुक को भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन मिल गया। आज सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारी छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की, उन्होंने ही देवेंद्रनाथ महतो से ये कहा कि वो जल ग्रहण करें और ठीक से रहे तभी इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे, अपनी भूख हड़ताल जारी रखें और छात्रों को इंसाफ दिलाएं। सुनिए।
18: तो उसके लिए हमें समय चाहिए, तो आप जल जरूर लीजिएगा। मैं आपसे विनती कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, जीवन को दांव पे लगाकर इसका सभी लोग आदर करते हैं। मैं अभी आप सभी से विनती करूँगा कि उन्हें जल पिलाएं।
19: सोनम वांगचुक सर का वीडियो कॉल में बात हुई, सोनम वांगचुक सर हम लोग का आंदोलन को समर्थन करते हुए मनोबल बढ़ाए हैं और इतना मनोबल बढ़ाए हैं कि अब सरकार को हम लोग हर हाल में पीछे झुकाएंगे।
20: पानी हम नहीं पी रहे थे, अन्न और जल दोनों छोड़े हुए थे, तो ये जब जानकारी हुई सोनम सर को, सोनम सर को जब जानकारी हुई तो उन्होंने चिंता जताया और संपर्क किया और बोला कि हम भी जब जंतर मंतर में भूख हड़ताल में थे तब जल और नमक का ग्रहण करते थे। आप जल का ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये आपके लिए आत्महत्या करने जैसा है। हमको रिक्वेस्ट किए कि आप आत्महत्या मत कीजिए, आप इस आप सारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़िए, आपका आंदोलन को हम समर्थन करते हैं।
0: आज सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिस पर लिखा है कि झारखंड के छात्रों का आंदोलन इंस्टाग्राम पर दिखाने के लिए एस्थेटिक नहीं है। सोचिए, पहली नजर में ये एक व्यंग लगता है, लेकिन अगर थोड़ा ठहर कर सोचिए तो ये हमारे समय की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। एक जमाना था जब किसी आंदोलन की ताकत उसके मुद्दे से तय होती थी। लोग इसलिए जुड़ते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यहां न्याय हुआ है, मुद्दा बड़ा है, आवाज दबाई जा रही है, बदलाव की जरूरत है, तो इसमें जुड़ना है। बड़े बड़े आंदोलन इस देश में हुए, किसी आंदोलन की तस्वीर कितनी सुंदर दिख रही है इससे तो कोई संबंध नहीं होता था कि भाई ये आंदोलन ज्यादा सुंदर दिख रहा है, वहां पर जाकर ज्यादा रोमांचक लग रहा है तो वहां जाना है। लेकिन आज हम ऐसे दौर में हैं जहां किसी आंदोलन की पहली परीक्षा उसकी मांगों से पहले वहां से आ रहे विजुअल्स तय कर रहे हैं। क्या तस्वीर आकर्षक है, क्या वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल है, क्या उसमें ऐसा फ्रेम है जो रील बन सके, क्या वो एल्गोरिदम को पसंद आएगा, क्या एल्गोरिदम उसे पुश करेगा। अगर जवाब हाँ है तो आंदोलन लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो कई बार उसका दर्द भी टाइमलाइन तक नहीं पहुंच पाता। या फिर कई लोग इस बात का भी इंतजार करते हैं कि एक्शन ज्यादा हो, वहां पर अगर मार्च हो, वहां पर तरह तरह की नारेबाजी हो तो उसके हक में बोलने वाले, उसके खिलाफ बोलने वाले लोग दोनों ही तरफ से एल्गोरिदम पुश करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा बात है। किसी आंदोलन को आज के दिन में अगर क्रेडिट देना है तो उसके पक्ष में भी कई लोग बोलने वाले हैं, किसी आंदोलन को डिसक्रेडिट करना है, गलत बताना है तो उस पक्ष में भी उतनी ही ताकत एल्गोरिदम के जरिए लगाई जाती है और फिर ये एल्गोरिदम की लड़ाई बनकर रह जाती है। झारखंड के इन छात्रों के आंदोलन में ना कोई रंग बिरंगा मंच है, ना कोई आकर्षक बैकड्रॉप है। यहाँ की तस्वीरों में कीचड़ है, बारिश है, फटे हुए तिरपाल है, भीगे हुए कपड़े हैं, थके हुए चेहरे हैं, लेकिन ये बच्चे डटे हैं और इनको पूरा देश सलाम कर रहा है। शायद यही वजह है लेकिन कि सोशल मीडिया की उस दुनिया में उतनी जगह नहीं बना पा रहा झारखंड का यह आंदोलन, जहां अक्सर हर चीज में ट्रेंड की डिमांड होती है। जंतर मंतर के आंदोलन की तरह झारखंड के आंदोलन को कई युवाओं का समर्थन मिला है, वहां भीड़ भी पहुंच रही है, लेकिन इंस्टाग्राम पर इस विरोध प्रदर्शन की उतनी चर्चा नहीं है। दुख की बात यह है कि कई लोग लिख रहे हैं कि झारखंड का आंदोलन इंस्टाग्राम पर दिखाने के लिए आकर्षक और ट्रेंडी नहीं है। मतलब जिस तरह का ट्रेंड और जिस तरह का प्लाकार्ड्स लोग लेकर खड़े थे, वो बड़े पंची थे, इसकी वजह से जो कुछ वहां पर हुआ और यहाँ पर हुआ वो एक अलग ही दुनिया दिख रही है। सोचिए, हम सोशल मीडिया के उस दौर में आ चुके हैं जहां छात्रों की पीड़ा अल्गोरिदम के चश्मे से आंकी जा रही है।

इन आंदोलनों के बाद हमारी सरकारें कितनी जागी हैं, कितनी सजग हुई हैं, आज वो देखना और समझना भी जरूरी है। इनमें पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के विदिशा से आई है, जहां मध्य प्रदेश के विदिशा से आई इस तस्वीर में आप खुद ही देखिए, स्कूल जाने के लिए इन छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उम्मीद है कि मोहन यादव इन तस्वीरों को मुख्यमंत्री जी देखेंगे। ये तमाम छात्र बेतवा नदी पर बने बांध को पार करके अपने स्कूल पहुंचते हैं और दुख की बात यह है कि स्कूल में भी शिक्षा का वो स्तर नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। आज हम यही कहेंगे कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो वो इन बच्चों के संघर्ष को समझे, ये समझे कि ऐसे ना जाने कितने छात्रों को आज स्कूल जाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है और ये हमारी जेन जी के बाद जेन अल्फा पीढ़ी है जिसे भारत का भविष्य कहा जाता है। लेकिन इस पीढ़ी को हमने कैसी व्यवस्था दी है उसकी तस्वीरें सबके सामने है। अब मध्य प्रदेश के सागर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां कोपरा नदी पर बना कच्चा पुल ध्वस्त हो गया और अब वहां इन स्कूली छात्राओं को अपनी जान हथेली पर लेकर स्कूल जाना पड़ रहा है। और सागर भी मध्य प्रदेश में ही आता है जहां बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री है। कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि छात्रों में अचानक ये गुस्सा कहां से आया, ये क्या हो गया, तो उसका कारण ये तस्वीरें हैं। जब हमारे छात्रों को सिर्फ शिक्षा हासिल करने के लिए इतने संघर्षों से गुजरना पड़ता है और फिर जब वो स्कूल पहुंचते हैं व्यवस्था उनके प्रति इतना लापरवाह होता है, टीचर नहीं, फिर एग्जाम दो तो पेपर लीक, तब ये ज्वार फूटता है और फिर आंदोलन के रूप में यही आक्रोश ऐसे ही तिनका तिनका बढ़ता हुआ सड़कों पर फूटता है। इस बात को आप बिहार के कटिहार से आई इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं, जहां पुल नहीं होने के कारण कई स्कूली बच्चों को रेलवे ट्रैक से गुजरना पड़ता है और हमारा सिस्टम इसमें कुछ गलत दिखता ही नहीं उनको। देखिए

आखिरी में जो आपने वीडियो देखा कटिहार का है, बिहार का, जहां पर रेलवे ट्रैक पार करके ऐसे बच्चे जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं एग्जाम देने। आज देश में जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है जेन जी, यानी भारत की वो युवा पीढ़ी जिनका भरोसा सरकार भी जीतना चाहती है और जिनका भरोसा विपक्ष भी जीतना चाहता है। दोनों पक्षों ने अपनी रणनीति को बदला है, अपने राजनीतिक बयानों से लेकर अपनी तमाम योजनाओं में जेन जी युवाओं को शामिल करने की कोशिश की है, और इस बात को आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। आज जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए गए 7 साल पूरे हो गए, तब सरकार ने खास तौर पर जेन जी युवाओं के लिए एक वीडियो जारी किया, और इसमें यह बताया गया कि जिस कश्मीर को जेन जी युवा आज देखते हैं वो पहले ऐसा नहीं होता था। यानी इस वीडियो से पता चलता है कि सरकार ने अपनी रणनीति को बदला है और अब वो जेन जी युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई चीजें कर रही है। देखिए,

तो बदला बदला सा अंदाज है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग और उनकी टीम के माफी मांगने से कोई बड़ा बदलाव आएगा या ये सोशल मीडिया कंपनियां आगे भी अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं समझेंगी। जंतर मंतर के जेंजी आंदोलन में जो आपत्तिजनक और गाली गलौज वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और जिस मामले में फेसबुक से प्रधानमंत्री मोदी का एक पोस्ट 5 घंटे के लिए हटा दिया गया था, उस मामले में आज मेटा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। ये बैठक 45 मिनट तक चली जिसमें मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग और उनकी टीम की तरफ से कई मुद्दों पर माफी मांगी गई है। इनमें फेसबुक से प्रधानमंत्री मोदी का जो 23 जुलाई का वीडियो हटाया गया था उस पर कंपनी के अधिकारियों ने अपनी गलती को स्वीकार किया। इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जो अश्लील तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं उसके लिए माफी मांगी। जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान जो डीप फेक और एआई से तैयार किए गए फर्जी वीडियोस वायरल हुए उन्हें समय रहते इंस्टाग्राम से हटाया नहीं गया, उन पर कंपनी की तरफ से माफी मांगी गई, आई एम सॉरी कहा गया। महिलाओं के खिलाफ जो आपत्तिजनक वीडियोस और अब्यूजिव कंटेंट यानी गाली गलौज वाले वीडियोस हैं महिलाओं के खिलाफ वो इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ, इसके लिए भी माफी मांगी। सबसे ज्यादा हैरानी और अफसोस की बात यह है कि मेटा के अधिकारियों ने खुद ये माना कि इंस्टाग्राम पर इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट की पहुंच बढ़ाने के लिए उस पर पैसा खर्च हुआ था। आपत्तिजनक कंटेंट बढ़ाने के लिए पैसा खर्च हुआ था, ऐसे अश्लील और आपत्तिजनक वीडियोस को बूस्ट किया गया था और ये गलती मेटा के अधिकारियों ने स्वीकार की और ये भी दोहराया कि आगे ऐसा नहीं होगा। इस बैठक में मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कप्लान, वाइस प्रेसिडेंट नील पॉट्स, सीनियर डायरेक्टर रफाइल फ्रांकेल और भारत में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अमन जैन और प्रिया श्रीनिवासन शामिल हुए, जबकि भारत सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एस कृष्णन शामिल हुए। मेटा की तरफ से ये माफी तब मांगी गई जब ये चेतावनी दी जा रही थी कि मेटा का सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खत्म किया जा सकता है। यहां ये भी समझिए कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन होता क्या है जिसका ये कंपनियां इतना फायदा उठाती हैं। आईटी एक्ट की धारा 79 सोशल मीडिया कंपनीज को इंटरमीडियरी का दर्जा देती है। इसका मतलब ये होता है, इंटरमीडियरी मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करता है तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी यूजर की होती है ना कि इन सोशल मीडिया कंपनीज की। हालांकि ये सिक्योरिटी कवर या ये सेफ हार्बर इन कंपनियों को तभी मिलता है जब ये भारत के कानूनों का पालन करें, सरकार और अदालतों के आदेश माने और आईटी नियमों के अनुसार जिम्मेदारी से काम करें। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम का ये सेफ हार्बर खत्म हो जाएगा तो इन कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स पर जो भी आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित होगा उनके लिए जिम्मेदार कौन, ये कंपनी मानी जाएगी और इन पर कानूनी मामला ज्यादा बढ़ेगा। शायद यही डर है कि मेटा की टीम ने माफी मांगने में देर नहीं लगाई और आई एम सॉरी कह दिया, हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। तो सुनिए, 15 जनवरी 2025 को मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अपने उस बयान के लिए माफी मांगी थी जिसमें उन्होंने एक पॉडकास्ट में यह कहा था कि भारत के चुनावों मौजूदा सरकार सत्ता से बाहर हो गई जबकि उन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी। 2025 में ही मेटा के ऑटो ट्रांसलेशन फीचर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से जुड़ी एक पोस्ट का गलत अनुवाद कर दिया था और उस वक्त भी मेटा ने माफी मांगी और आज तीसरी बार मेटा की पूरी टीम ने भारत से माफी मांगी है। और यहां ऐसा भी लगता है कि मेटा ने माफी मांगकर खुद को रेस्क्यू करना सीख लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्क जकरबर्ग अब तक 10 से ज्यादा मामलों में खुद अदालत और संसद की कार्रवाई में पेश होकर माफी मांग चुके हैं। इनमें भी 2 फरवरी 2024 को अमेरिकी सेनेट में यह मुद्दा उठा था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों का यौन शोषण, बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं और उस वक्त मार्क जकरबर्ग को वहां सेनेट में पेश होना पड़ा। वहां भी उन्होंने क्या कहा, आई एम सॉरी। और यह सिलसिला 2007 से जारी है। आज सवाल तो यह है कि अगर ये सोशल मीडिया कंपनी सालों से एक ही गलती करने के लिए माफी मांग रही है और वही गलती बार बार बार बार हो रही है तो इन पर भरोसा कैसे करें और कैसे मान लें कि ये दोबारा यही गलती करके माफी नहीं मांग लेंगे। मैं आज मेटा की कम्युनिटी गाइडलाइंस आपके
अपने साथ लेकर आई हूं। ये हम नहीं पढ़ रहे, ये कोई और भी नहीं पढ़ रहा, ये हम लिखा भी हमने लिखा नहीं है। किसने लिखा है? ये मेटा ने लिखा है। ये गाइडलाइंस उनकी लिखी हुई गाइडलाइंस है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपनी गाइडलाइंस को भूल गए हैं। ये लिखते हैं कि खतरनाक संगठनों और लोगों को उनके प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं दी जाएगी। ये जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स है जिसमें ऑथेंटिसिटी, अगर ऑथेंटिसिटी आपने कैपिटल्स में अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस में लिखा है, तो ये जो पहली ही जगह आप ऑथेंटिसिटी देख रहे हैं उसमें सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि डीप फेक वीडियोस कैसे चल रहे हैं फिर, और खुलेआम चल रहे हैं। इतने आपत्तिजनक महिलाओं को ऐसी स्थिति में दिखाया जाता है, तो फिर ये कम्युनिटी गाइडलाइंस जो आपने लिखी हैं, हम तो बस याद दिला रहे हैं। फ्रॉड, स्कैम, सेफ्टी की बात की है आपने, हम ऐसा तमाम कंटेंट हटा देंगे जो किसी को भी फिजिकल सिक्योरिटी या किसी को रिस्क या हार्म हो, जिसकी वजह से किसी को इंटिमिडेट किया जाए या किसी को दबाने की कोशिश की जाए, किसी को बुली करने की कोशिश की जाए। प्रिवेसी, वी आर कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग पर्सनल प्रिवेसी एंड इंफॉर्मेशन, डिग्निटी, वी बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल इन डिग्निटी। ये सब कहां माना जा रहा है? गाली गलौज, अश्लील वीडियो, और ये सब कुछ हमारे बच्चों के हाथ में जा रहा है। बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जो अश्लील तस्वीरें और वीडियो मौजूद है, उन्हें भी प्रमोट नहीं करेंगे, ऐसा आप अपने गाइडलाइंस में खुद लिखते हैं। लेकिन सोचिए, इन कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? ये कम्युनिटी गाइडलाइंस कहती है कि डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स हम जगह नहीं देंगे, फ्रॉड, स्कैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिस जगह नहीं देंगे। सब कुछ हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, वायलेंस और इंसाइटमेंट नहीं करेंगे, जबकि भड़काऊ चीजें, किसी को मारने के लिए उकसाया जा रहा है, ये सब कुछ चल रहा है आराम से। इस वक्त भी जब हम ये कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं, उस वक्त भी जब मार्क ज़करबर्ग और उनकी टीम ने आई एम सॉरी कहा, तब भी, और इससे पहले भी जब जब वो उस आई एम सॉरी बोलते आए, उसके बाद भी इस तरह का डीप फेक कॉन्टेंट नहीं हटा है। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, सुइसाइड, सेल्फ इंजरी, अडल्ट न्यूडिटी, हेटफुल कॉन्डक्ट, प्राइवेसी वायलेशंस, वायलेंट ग्राफिक कंटेंट, अपना ही कम्युनिटी गाइड

0: आप क्या कर रहे हैं। ये सारा आपत्तिजनक कंटेंट तो इंस्टाग्राम पर आसानी से दिख जाता है और जब इस पर सवाल उठते हैं तो ये कंपनियां माफी मांग लेती हैं। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये बन चुका है, लेकिन हकीकत में इन माफी से क्या बदलता है?
1: फेक न्यूज, फॉरेन इंटरफेरेंस इन इलेक्शंस एंड हेट स्पीच, एज वेल एज डेवलपर्स एंड डेटा प्राइवेसी। We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here.
2: I'm sorry for everything that you have all been through. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer.
0: अगली खबर का रुख करते हैं। आज बांग्लादेश में जेंजी आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 2 सालों में शेख हसीना ने बांग्लादेश को भुलाया नहीं है। वो आज भी बांग्लादेश लौटने की बात कह रही हैं। आज द फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना वर्चुअली जुड़ी थी। उन्होंने यहीं से अपने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने पिछले 2 वर्षों में बहुत दर्द झेला है, चारों तरफ डर फैल गया है और इस डर को खत्म करने के लिए साल दिसंबर में वो बांग्लादेश लौटेंगी, चाहे ऐसा करने के बाद उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। करीब 25 मिनट के उनके संबोधन में सुरक्षा कारणों से उनका कैमरा बंद था, इसीलिए केवल उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार उन्हें झूठे मुकदमों, मौत की सजा, दिखावटी सुनवाई से डरा नहीं सकती। छात्र आंदोलन और हंगामे के दौरान बांग्लादेश छोड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी पीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे। उनके पास उस वक्त निकलने के लिए केवल 30 से 40 मिनट थे। हालात ऐसे बने कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा, लेकिन वो वापस जरूर लौटेंगी। उनके मुताबिक वो मजबूरी में देश छोड़कर गई थी।
3: Whatever fate awaits me, I will return to my people. I cannot stay away while my beloved countrymen are suffering. I know I may be detained, I may be sent to prison. They may try to enforce verdicts issued in fabricated cases, but fear cannot decide my duty to the people. My life moves beyond calculations of personal safety long ago.
0: बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही शेख हसीना भारत में रह रही हैं और तभी से बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। शेख हसीना भी जानती हैं कि जैसे ही वो बांग्लादेश पहुंचेंगी वैसे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुमकिन है कि फांसी दे दी जाए। दरअसल शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में 663 मुकदमे इस वक्त दर्ज हैं। इनमें से करीब 453 मामले तो हत्या के हैं। इनमें से ज्यादातर मामले 2024 में हुए इस आंदोलन से जुड़े हैं जिसने उनका तख्ता पलट किया था। पिछले साल 17 नवंबर को ढाका की एक विशेष अदालत ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुना दी थी। शेख हसीना का कहना है कि वो इन मुकदमों से डरती नहीं, वो बांग्लादेश और बांग्लादेशियों की पीड़ा को देखकर परेशान है। उन्होंने अपने संबोधन में साफ साफ कहा है कि आज का बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं जिसे उनके परिवार ने 30 लाख लोगों ने अपनी जान देकर बनाया था। उनका कहना है कि बांग्लादेश आज एक असफल देश बन गया है जहां मानवाधिकार खत्म हो चुके हैं और वो फिर से दूसरा पाकिस्तान बन गया है जो भारत के पूर्व में है। उनके खिलाफ एक छात्र आंदोलन को वो तख्ता पलटकर राजनीतिक हथियार बताती हैं। उनके मुताबिक छात्र आंदोलनकारियों से शांतिपूर्ण बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने छात्रों को राजनीति का हथियार बनाया और इस वजह से आज हालात ये है कि बांग्लादेश खत्म हो रहा है। और अब बात करेंगे अगली खबर का। पीओके, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में करीब 45 लाख लोग रहते हैं और इस वक्त वहां सैन्य तानाशाही चल रही है। कहने के लिए वो वहां चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक लोगों की जान लेकर दिखावटी मतदान सुनिश्चित करवा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पीओके में लोगों ने इन चुनावों का बहिष्कार किया। वो पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। दरअसल वो समझ गए कि चुनाव के नाम पर पाकिस्तानी सरकार उनका शोषण करती है। हालांकि अब की बार इस दिखावटी चुनाव के लिए शाहबाज और मुनीर ने एक खूनी प्लान बनाया था और उसी के तहत पीओके में चुनाव और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों का को मारा जा रहा है। 27 जुलाई को इस दिखावटी चुनाव का पहला और 3 अगस्त को दूसरा चरण था। 27 जुलाई से 3 अगस्त के

0: बीच पाकिस्तानी सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार डाला है। हम आपको पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के जुल्म और बर्बरता के सबूत है। इसमें वो पीओके के मासूम नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं और सबूत मिटाने के लिए उनकी लाशें हटा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाली जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक दूसरे चरण की वोटिंग तक करीब 90 प्रदर्शनकारियों की हत्याएं हो चुकी हैं।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: तो तस्वीरें आप विरोध प्रदर्शन की वहां देख ही रहे हैं। जो बात भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है वही बात इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि उसने पीओके में हो रही बर्बरता को छिपाने के लिए एक नया तानाशाही फरमान जारी किया है। वो क्या? पाकिस्तान ने सभी विदेशी पत्रकारों को निर्देश दिए हैं कि वो पीओके की रिपोर्टिंग बंद कर दें। उसने पीओके में हो रहे सरकारी विरोध प्रदर्शनों और पाकिस्तानी सेना की बर्बरता की रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेशी पत्रकारों को केवल इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में रहने का फरमान सुनाया गया है। पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि अगर विदेशी पत्रकारों को इन 3 शहरों से बाहर जाना है तो उन्हें सरकार से एक एनओसी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब यह है कि पाकिस्तान ने ग्लोबल मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी है। किसी तानाशाह की तरह शाहबाज और मुनीर ने मीडिया पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अभी हाल ही में अल जजीरा ने पीओके में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाई थी। माना जा रहा है कि इसी के बाद पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी है।
2: जीरा एक बार फिर खबरों में है और उसकी वजह बनी है अल जजीरा की पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद से की गई हालिया इलेक्शन पर रिपोर्टिंग, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की हुकूमत ने उस पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान में मीडिया की आजादी का मसला नया नहीं है। गुज़िश्ता बरसों में सहाफियों, टीवी चैनल्स और इवन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मुख्तलिफ औकात में दबाव, पाबंदियों और सेंसरशिप के मसाइल का सामना रहा है। अल जजीरा की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्टिंग, खास तौर पर सियासी और इंतखाबी मामलात पर उसकी कवरेज ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि क्या रियासतें मुश्किल सवाल पूछने वाले मीडिया को बर्दाश्त कर सकती हैं। हर हुकूमत को कौमी सलामती का तहफ्फुज़ करने का हक हासिल है, लेकिन सवाल यह है कि कौमी सलामती कौन डिफाइन करता है और क्या कौमी सलामती के नाम पर ऐसी मालूमात को भी रोका जा सकता है जो अवामी मफाद में हो।
0: 10 अगस्त को पीओके में आखिरी चरण की फर्जी वोटिंग होनी है और तब तक पाकिस्तान की कोशिश रहेगी कि वो विदेशी मीडिया को रिपोर्टिंग यहां पर ना करने दे ताकि जितने वोट डालने हैं वो डाले जा सके। और अब तो फर्जी चुनाव के नकली नतीजे भी आने लगे हैं। नकली नतीजों को देखकर नवाज, शाहबाज और मनीर तीनों बड़े खुश हैं। हालांकि नकली खुशी में तख्ता पलट का डर भी है। और अब आपको बाढ़ और बारिश का वो निर्दयी रूप दिखाएंगे जिसने असम को कभी ना भूलने वाला गम दिया है। जी हाँ, असम की गोद में हर साल मानसून एक अभिशाप बनकर उतरता है, लेकिन इस बार की त्रासदी ने भूगोल और इतिहास दोनों के पन्नों को पलट कर रख दिया है। ब्रह्मपुत्र की उफनती लहरों और कुदरत के बदलते मिजाज ने असम के उन इलाकों को भी अपने आगोश में इस बार ले लिया है जिन्हें पीढ़ियों से पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था। असम में इस साल की बाढ़ में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 90 के करीब पहुंच गया है। राज्य के जो चराईदेव, धेमाजी, गोलघाट, जोरहाट, शिवसागर जिले हैं उनके 1,22,000 से ज्यादा लोग अभी भी इस बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। पूरे असम में 365 गांव पूरी तरह पानी में डूबे हैं और 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि बर्बाद हो चुकी है।

0: आज आपको ये भी समझना चाहिए कि असम के वो जिले जहां कभी भी इस तरह पानी नहीं जाता था, भरता था, वहां भी इतनी भीषण बाढ़ कैसे आई। असम के ऊपरी हिस्से के तीन जिले हैं, शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट, बरसों से बाढ़ के नक्शे पर सुरक्षित ये माने जाते थे। यहाँ छोटी छोटी नदियां थी, फ्लैश फ्लड्स कुछ ही घंटों के लिए आते थे और फिर उतर जाती थी। लेकिन इस बार यहाँ जो हुआ उसे सबको हैरान कर दिया। इसकी वजह प्राकृतिक भी थी और इंसानी भी। इस आपदा की असली शुरुआत 18 से 20 जुलाई के बीच पड़ोसी राज्य नागालैंड में हुई। बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा। नागालैंड में कुल मिलाकर 181% ज्यादा बारिश हुई है, 181% ज्यादा। ऊपरी इलाकों के जो मोकोक चुंग जिले हैं उनमें 493% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मोन जिले में जुलाई की कुछ जो कुल औसत बारिश है उसका एक तिहाई हिस्सा सिर्फ 8 घंटों में बरस गया। असम के चराइदेव जिले में भी इसी दौरान 436% ज्यादा बारिश दर्ज हुई। लगातार मानसूनी बारिश के कारण पहाड़ियां पहले से ही पानी से सैचुरेटेड थी। नतीजा यह हुआ कि तमाम पहाड़ियां ढह गईं। ऊपरी इलाकों में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स हुए। पहाड़ों से मलबे, गाद, पत्थरों के साथ पानी, एक ऐसा रेला निकला जिसने समतल मैदानी इलाकों को कुछ ही घंटों में जलमग्न कर दिया। अब पूरे राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का मुख्य जलस्तर पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर था। जब नागालैंड और असम के ऊपरी इलाकों का पानी इसकी सहायक नदियों दिखो, दिसांग और झांझी के जरिए नीचे आया तो ब्रह्मपुत्र ने उस अतिरिक्त पानी को लेने से मना कर दिया और बैकफ्लो की वजह से पानी वापस ऊपरी असम की बस्तियों की ओर पहुंच गया। लोगों का कहना है कि पानी का स्तर इतनी तेजी से ऊपर उठा कि वो अपने घरों से सामान नहीं निकाल पाए, मवेशी तक वो सुरक्षित बाहर नहीं निकाल पाए। असम में बाढ़ रोकने का पारंपरिक तरीका जो है वो मिट्टी के तटबंध बनाना है। नदियों में बढ़ती जो सिल्ट है उसकी वजह से उनकी तलहटी ऊंची हो चुकी है। ये तटबंध पानी के भारी दबाव को झेल नहीं पाए। डोरेका नदी का तटबंध टूटने से नाजरा के चाय बागानों भी पानी ही पानी बढ़ गया, डूब गए हैं। इसके अलावा अंधाधुंध शहरीकरण, सड़कों, घरों के विस्तार ने प्राकृतिक स्पंज की जो तरह काम करने वाले निचले इलाके थे, वेटलैंड को खत्म कर दिया है। अब स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहाड़ी तलहटी में हो रहे अवैध खनन ने उन प्राकृतिक चट्टानों और वनों को नष्ट कर दिया है जो पहाड़ों से उतरने वाले पानी की रफ्तार को रोकते थे। अवैध खनन गतिविधियों के कारण जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, तबाह हो गई है। नदियों का न्यूट्रल फ्लो बाधित हुआ है जिससे सुरक्षित समझे जाने वाले इलाकों में भी भीषण जल भराव हो गया है। असम की यह आपदा सिर्फ एक मानसूनी बारिश का परिणाम नहीं है बल्कि ये इस बात की चेतावनी है कि जब जब प्रकृति के भूगोल के साथ खिलवाड़ होगा तब तक सुरक्षित माने जाने वाले इलाके भी इतिहास के सबसे बड़े जल प्रलय का गवाह बनेंगे। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
3: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
2: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
3: सुपर स्ट्रॉन्ग
2: और मॉइस्चर प्रूफ।
4: वारंटी
2: 15 साल की।
3: कदम
2: सर प्लीज
3: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
5: क्रॉसबॉन्ड HDMR मैक्स फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
6: In association with
7: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
6: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
8: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
9: संसद में देश के गृह मंत्री डंके की चोट पर कहते हैं, पीओजे के हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि पीओजे के सुपुर्द करते ही पाकिस्तान से सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जब तब चुनौती देते हुए पूछते रहते हैं कि पीओजे पर हमारा कब्जा कब होगा। तो जिस सवाल पर पूरा देश एकजुट है, एक ही सुर और लय में बोलता है, उसी सवाल पर उमर अब्दुल्ला के एक सांसद कुछ ऐसा बोलते हैं कि किसी को भी बुरी तरह चुभ जाए। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रिजवान का ये बयान। सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला अपने ही सांसद के ऐसे बयानों का खंडन करेंगे? पीयूष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन ने पांचवी इकॉनमी बनने के लिए दौड़ रही हुकूमत को जगाकर न सिर्फ मंत्री का इस्तीफा दिलाया बल्कि परीक्षा व्यवस्था के बारे में सोचने को भी मजबूर किया है। उसी आंदोलन ने दूर झारखंड में भी नौजवानों के बीच बदलाव और इंसाफ की उम्मीद का दिया जलाया। लेकिन इसी बीच जब एक तरफ संघ के तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज शख्स जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को संविधान विरोधी बताते हैं, दूसरी तरफ संघ प्रमुख उन्हीं जेन जी से बातचीत करना चाहते हैं और तीसरी तरफ झारखंड में चल रहे आंदोलन को बीजेपी इंसाफ की जंग बताती है, तो सवाल खड़े होते हैं, क्या देश में आज नौजवानों की आवाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है? क्या जेन जी को संविधान परस्त और संविधान विरोधी करार दिया जा रहा है? और क्या जेन जी के मुद्दों को नजरअंदाज करके सियासत की जा सकती है? जवाब है नहीं। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद अपने मंत्रियों को जेन जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो संघ प्रमुख भी अब जेन जी से मुलाकात करना चाहते हैं। खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अब जेन जी से मुलाकात कर उनसे बातचीत करना चाहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई के नीता मुकेश अम्बानी कल्चरल सेंटर में 14 से 29 साल के जेन जी और 13 साल की जेन अल्फा के साथ मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के इस कार्यक्रम में देश के 100 से ज्यादा शहरों से 2000 से ज्यादा हाई स्कूल के विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। दरअसल जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश में ये विमर्श पैदा किया जा रहा है कि सीजेपी के आंदोलन में शामिल जेन जी दो तरह के थे, जिसमें एक वाजिब जेन जी था और दूसरा देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा जेन जी। और इसी भटकाव को रोकने के लिए अब संघ प्रमुख देश के नौजवानों से मुलाकात और राब्ता कायम करना चाहते हैं। जिस संस्था के कार्यक्रम में संघ प्रमुख की नौजवानों से मुलाकात होगी और इसके प्रेसिडेंट बताते हैं कि ऐसी मुलाकातों का मकसद क्या है। उधर अभिजीत दीप की ऐसी पहल का स्वागत तो करते हैं, लेकिन जेन जी से बात करने के लिए युवा चेहरे की जरूरत भी बताते हैं। और गौर करने की बात ये कि 6 अगस्त को संघ प्रमुख की जेन जी से मुलाकात के पहले 5 अगस्त को अभिजीत दीप की अपनी पार्टी की बैठक में संगठन के विस्तार, भविष्य की रणनीति और पार्टी के रोड मैप पर भी चर्चा करने वाले हैं।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आजकल लोग दूसरों के घरों में आग लगाने के बाद खुद ही सेल्फी लेने और रील बनाने पहुंच जाते हैं, फिर इसे एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट कहते हैं। नमस्कार।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर न करें राजनीति, पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते, नेता विपक्ष ने पहले अमित शाह पर साधा था निशाना। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी, मानी अपनी गलती, केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को कल फिर से पेश होने के लिए दिया है समन। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड, कहा पवन पांडे होंगे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जीत का किया दावा। दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना, ऑडियो संदेश में कहा मुझे बेदखल करने के लिए छात्र आंदोलन को बनाया हथियार, पाकिस्तान की तरह बन चुका है बांग्लादेश। और आज तक के खबर का डबल असर, पीएमओ के दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों के लिए खत्म होगा इंटरव्यू, उत्तराखंड परिवहन विभाग के रोडवेज कर्मचारियों को भी जल्द वेतन भुगतान के दिए आदेश।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: के साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी और उसके फाउंडर अभिजीत दिपके के आगे के प्लान पर। क्या होगा अभिजीत दिपके के आगे का प्लान? एक तरफ जब झारखंड की राजधानी रांची में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर जंतर मंतर जैसा आंदोलन चल रहा है, 7 से अधिक प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में यानी कि अभिजीत दिपके के घर पर 2 दिन की बैठक करने जा रही है। आखिर इस बैठक का उद्देश्य क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी आगे किस प्लान पर काम कर रही है? आज हम आपको अभिजीत दिपके की पूरी रणनीति दिखाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अभिजीत दिपके कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर के दिमाग में चल क्या रहा है।
1: महाराष्ट्र में कॉकरोच जनता पार्टी की 2 दिन की बैठक, दिपके का राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्लान, आगे क्या होगा? दिपके ने क्यों कहा देश को जन आंदोलन की जरूरत? क्या है सीजेपी की प्रेशर ग्रुप पॉलिसी? दिपके के दिमाग में क्या है? रांची के छात्र आंदोलन में सीजेपी की क्या है भागीदारी? नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 36 दिन के आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और सरकार के साथ सीजेपी की 3 शर्तों पर इस आंदोलन की समाप्ति जरूर हो गई, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके के घर पर 2 दिन की बैठक कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीजेपी की इस मीटिंग में अभिजीत दिपके के साथ सीजेपी के दोनों प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष राग का भी मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें कि जब दिपके के घर ये बैठक शुरू हुई तो सिविल ड्रेस में महाराष्ट्र पुलिस के कई अफसर भी वहां मौजूद थे।
2: दिल्ली का जंतर मंतर का आंदोलन होने के बाद ये पहली बैठक है, क्योंकि इसमें ही सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो रोड मैप है वो एग्जैक्टली कैसा होगा, स्ट्रैटेजीज क्या होगी और आने वाले वक्त में एग्जैक्टली कौन कौन से आंदोलन करने हैं, इस सभी पे चर्चा शुरू हो चुकी है। सबसे अहम बात यह है, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि सिविल ड्रेस हो या फिर पुलिस यूनिफॉर्म हो, अलग अलग जगह की स्पेशल ब्रांच और यहाँ की छत्रपति संभाजी नगर की जो पुलिस है वो यहाँ आ चुकी है। पुलिस पर्सनल यहाँ बंदोबस्त बढ़ाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अंदर भी, जो घर के अंदर है आप देख सकते हो सिविल ड्रेस में, यहाँ महिला पुलिस कर्मचारी भी खड़ी है।
1: कॉकरोच जनता पार्टी की ये बैठक क्यों बुलाई गई है? इस बैठक में सीजेपी की क्या रणनीति बनने जा रही है, इसके बारे में दिपके ने क्लियर कर दिया है।
3: पूरे देश भर के लोगों ने हमें समर्थन दिया था अपना, तो उसके चलते अब हम देश भर में कैसे अपना संगठन बढ़ा सकते हैं, हर राज्य में कैसे अपना संगठन बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ आगे जाकर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रोड मैप हो सकता है, क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। एक तरीके से हमारा ये 2 दिन का जो कॉकरोच कॉन्क्लेव रहेगा वो हमारा एक फ्यूचर का रणनीति डिसाइड करेगा।
1: कॉकरोच जनता पार्टी का अगला प्लान क्या होगा? अभिजीत दिपके ने इस मीटिंग के सब्जेक्ट और मुद्दे भी बता दिए हैं। दिपके ने कहा है कि हमारे आंदोलन को सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पर समर्थन नहीं मिला, लोगों ने इसलिए साथ दिया क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था, न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर उनका भरोसा कम हो गया है। मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था बहुत खराब स्थिति में है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा वापस लाने के लिए व्यापक जन आंदोलन और जनता के दबाव की जरूरत है।
3: अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था, जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशन में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है।
1: सीजेपी इस मीटिंग में जो रणनीति बना रही है उसमें ये भी क्लियर कर दिया गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। दिपके ने एक बड़ी बात ये भी कही कि अभी भारत को एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, इसलिए सीजेपी फिलहाल उसी भूमिका में काम करेगी।
3: पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है, और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टी है उसको तोड़ा जाता है ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से।
1: आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने युवाओं को कॉकरोच कहा था। उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इसके बाद अमेरिका में पढ़ाई करने वाले अभिजीत दिपके ने विरोध के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम से एक व्यंगात्मक ऑनलाइन अभियान शुरू किया। सोशल मीडिया पर यह अभियान तेजी से वायरल हुआ और बड़ी संख्या में छात्र इससे जुड़ते गए। देखते ही देखते ये ऑनलाइन मुहिम एक संगठित छात्र आंदोलन में बदल गई। इसके बाद दिपके ने नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ ऑनलाइन आंदोलन शुरू किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। अभिजीत दिपके 6 जून को अमेरिका से भारत लौटे थे। इसी दिन सीजेपी का दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला प्रदर्शन हुआ। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से युवा दिल्ली पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। जेन जी से मिले समर्थन के बाद ये आंदोलन चर्चा में आया। दिल्ली के बाद सीजेपी का आंदोलन देश के दूसरे शहरों में भी पहुंचा। सीजेपी का आंदोलन तो खत्म हो गया, अब झारखंड की राजधानी रांची में भी जंतर मंतर जैसा आंदोलन चल रहा है। छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब इस आंदोलन को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी इसमें शामिल है। तो दिपके ने ये भी क्लियर कर दिया कि सीजेपी झारखंड जाएगी और वहां आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। सीजेपी ने झारखंड के छात्रों की हर मांग का समर्थन किया है।
3: झारखंड के जो साथी हमारे वो ऑलरेडी वहां पर है, और जरूरत पड़ी तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार, और हम जाएंगे जरूर। और हमारी उनसे फोन पर बात भी हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई, और हमने कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो कॉकरोच जनता पार्टी करेगी, और उनकी जितनी भी डिमांड है हम उनका पूरा समर्थन करते हैं।
1: कॉकरोच जनता पार्टी बार बार सरकार को चेतावनी पर चेतावनी दे रही है कि जो उनकी शर्तें सरकार के साथ तय हुई हैं, अगर वो नहीं मानी गईं, तो फिर से आंदोलन होगा।
4: ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो जख्मी हुए, जिनके ऊपर लाठियां चली, सर फोड़ा गया, पैलेट गन यूज करके उनको अंधा बनाया गया, वैसे पुलिस के खिलाफ हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल वो है। एंड सवाल एकदम जायज है। हम लोग डे वन से ऐसे सारे बच्चों को, सारे प्रदर्शनकारियों को हेल्प दे रहे हैं, लीगल हेल्प हो या मेडिकल हेल्प हो।
1: अब सीजेपी 2 दिन की बैठक के बाद यानी 6 अगस्त को अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेगी। भले ही सीजेपी की इस बैठक में जंतर मंतर पर अनशन करने वाले सोनम वांगचुक ना हो, लेकिन सीजेपी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि सोनम वांगचुक सीजेपी के मेंटर बने रहेंगे। ओमकार बाबले, छत्रपति संभाजी नगर, आज तक।
0: और अब हम आपको उत्तर प्रदेश में बने नए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सरकारी अंधेरगर्दी पर आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। 4200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई की निगरानी में नया एक्सप्रेसवे बना। 13 जुलाई को देश के रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ और लोगों को लगा कि सरकार ने उन्हें बहुत बड़ी सौगात दे दी। घंटों का सफर अब मिनटों में पूरा होगा, लेकिन आम जनता की उम्मीदों पर चंद दिनों में ग्रहण लग गया। आज एक्सप्रेसवे पर गड्ढे ही गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में ही है ये एक्सप्रेसवे, इसे लेकर जनता परेशान है। जनता अब सरकार से सीधा सवाल पूछ रही है, आखिर कब तक घटिया निर्माण, भ्रष्टाचार की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी? क्या अफसरों, ठेकेदारों के गठजोड़ का कोई तोड़ सरकार के पास है?
1: टैक्स पेयर्स के 4200 करोड़ रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ। दावा यही है कि कानपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे का तोहफा जनता को मिला है, लेकिन चंद दिनों में धूल फाकते वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की सच्चाई सामने आ गई। आज नए नवेले एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेसवे है, फर्क करना मुश्किल नहीं। सोचिए, नए एक्सप्रेसवे को चंद दिनों में मरम्मत की जरूरत पड़ गई तो आने वाले दिनों में क्या होगा। अब सवाल 4200 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता का है, क्योंकि पहली बरसात में एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई।
5: इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पर जहां पर उद्घाटन के बाद एक बार नहीं बल्कि दो बार सड़क खिसकने की शिकायत आई, जिसके बाद अब यहां पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि सबसे पहले 26 जुलाई को यानी उद्घाटन के 12 दिन बाद यहां पर सड़क खिसकने की शिकायत मिली, जिसके बाद NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर मरम्मत का काम कराया गया। एक बार फिर से 8 दिन बाद ये पूरी सड़क खिसक गई, जिसके बाद इस पूरे 200 से 300 मीटर के पूरे स्ट्रेच को काट कर फिर से बनाया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पर लगी हैं, JCB मशीन से एक तरफ खुदाई कर रही हैं और दूसरी तरफ मटेरियल डाल के यहाँ पर जो रोलर मशीन्स हैं उसको इस पूरे पैच वर्क की मरम्मत की जा रही है।
1: हालात ये है कि 5 जगहों पर एक्सप्रेसवे धस गया है। एक जगह मरम्मत का काम पूरा होता है तो दूसरा गड्ढा नजर आ जाता है, मतलब एक्सप्रेसवे बना है या गड्ढा वे।
5: कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में मरम्मत के चलते जिस दूसरी रोड को आने और जाने के लिए रखा गया था, यानी एक ही रोड जहां पर गाड़ियां आ भी रही थी या जहां गाड़ियां जा भी रही थी, अब वहां पर एक बैरिकेडिंग और लगा दी गई है। वजह यह है कि अब उस रोड पर भी शिकायतें सामने आने लगी है, वहां भी रोड धंसने लगी है और वहां भी रोड खिसकने लगी है। ये लाइव एग्जांपल है, हम मौजूद हैं उस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में। पीछे अगर आप देखेंगे बाएं तरफ पहले से ही काम चल रहा है मरम्मत का, वो 300 मीटर का स्ट्रेच पहले से ही काट कर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पर गाड़ियां आ भी रही हैं जा भी रही हैं, वहां पर एक और बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहां पे आप देखेंगे तो ये सड़क भी फिलहाल कल की बारिश के बाद धस गई है।
1: लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का स्याह सच यही है, लेकिन इसी सच्चाई की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। वादा 120 की रफ्तार का था, लेकिन आज आम जनता सरकारी सिस्टम और ठेकेदारों के खेल की वजह से बीच में पिसने को मजबूर है।
6: मैं उन्नाव से आ रहा हूँ।
5: उन्नाव से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप आए तो
6: रास्ता बंद हुआ है,
5: तो आप लोग अब कहाँ पे, क्या बताया उन्होंने कि कैसे?
6: वो टोल टैक्स पे बोल रहा था कि इधर से रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा आपको काफी दूर तक। अच्छा। वहाँ से उस लेन में जाके रॉन्ग साइड से तब आप जा सकते हो लखनऊ।
5: तो उन्होंने पहले नहीं कहीं लिख के रखा था कि रॉन्ग साइड है ऐसा?
6: वो उन्होंने फास्ट टैग काट दिया ना मेरा, जब कट गया तब बोला कि भैया आप आगे से जाके यू टर्न लेना, रॉन्ग साइड से घूम के लखनऊ जाना।
5: तो कितने किलोमीटर आप यहाँ से रॉन्ग साइड?
6: बताया नहीं उन्होंने कितना, उन्होंने बोला काफी आपको कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद रॉन्ग साइड उधर से होके तब आपको जाना पड़ेगा।
5: सुविधा आप लोग को हो रही है?
6: भाई दिक्कत तो है, ये पता नहीं हो सकता चालान भी काट दे, मेरा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा उधर से घूम के, इधर रास्ता पता नहीं कैसे क्या है।
1: ये अंधेर गर्दी के गड्ढे नहीं तो क्या है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की खलाई खुलने के बावजूद NHAI के अफसर यही दावा कर रहे हैं कि कसूर तो बारिश का है, एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी और NHAI का नहीं।
7: ऐसा नहीं कि NHAI का रोड खराब होता, आप दूसरे रोड भी देखें तो ऐसा नहीं कि बारिश के कारण रोड खराब होते हैं, ये बारिश में फ्लेक्सिबल पेमेंट जहाँ रहते हैं वहाँ पे टूटी आते हैं।
1: इनका नाम है गौतम विशाल, NHAI के रीजनल अफसर है। सवाल जवाबदेही तय करने का है, लेकिन जिम्मेदारों ने बिना जांच पूरी हुए फैसला सुना दिया, मतलब जो अब तक होता आया है वही इस मामले में होगा। जांच और एक्शन की दुहाई देकर एक्सप्रेसवे के गड्ढों को NHAI के अफसर गटक जाएंगे, क्योंकि कसूर बरसात का है, क्वालिटी तो 100 आने खरी है।
7: AI तकनीक के हिसाब से बनाया गया और रोड क्रश मेरा एक्सप्रेसवे बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई क्वालिटी की कोई क्वालिटी बीच बीच में चेक होते गए हैं।
1: एक्सप्रेसवे को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं हुआ, सब कुछ मानकों के हिसाब से हुआ, तो NHAI को पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर और मौजूदा प्रोजेक्ट मैनेजर पर कार्रवाई का हंटर क्यों चलाना पड़ा? धसा हुआ एक्सप्रेसवे गवाही दे रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन एक्सप्रेसवे के निर्माण में हुई खामियों के बावजूद NHAI के अफसर बड़ी बेशर्मी से एक्सप्रेसवे की खूबियां गिना रहे हैं।
7: टोटल 63 किलोमीटर का लेंथ है और 126 किलोमीटर दोनों साइड मिला करके होते हैं। 126 किलोमीटर में आप मेरे 5 लोकेशंस हैं, 5 लोकेशन मिला करके 1 किलोमीटर भी लेंथ नहीं आता, और यानी कि मेरा मोर देन 98% स्ट्रेच में बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से आज भी चल रहा है।
1: सवाल यही है कि 4200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद एक्सप्रेसवे का एक भी हिस्सा घटिया क्यों निकला। सवाल एनएचएआई के कर्मचारियों और एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के गड़बड़ छाले का है। क्या टैक्स पेयर्स के पैसों से बने एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण के बाद पीएनसी पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ नोटिस भेजना नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी काफी है? क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में देश की जनता से वादा किया था कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन एनएचएआई के अफसरों और ठेकेदारों पर गडकरी की चेतावनी जमीन पर नजर नहीं आई। यानी अभी बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
8: ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसे कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा, ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है। और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में किसी की मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी मैं लाकाम लेके आया हूँ। और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैकलिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोकपीट करके सीधा कर दो, हम किसी के साथ।
0: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में सामने आई गड़बड़ी को लेकर नितिन गडकरी ने संसद में ऐलान किया था। संसद में दिए अपने जवाब में राजमार्ग मंत्रालय ने माना कि बीते 2 वर्षों में गुजरात, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, मेघालय समेत कई राज्यों में 19 परियोजनाओं में खामियां और गड़बड़ियां पाई गई। कई अफसरों पर एक्शन हुआ, 11 अधिकारियों को जो कि जिम्मेदार अफसर थे उन्हें बर्खास्त किया गया, जबकि कई कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया गया। लेकिन सरकार के एक्शन के बावजूद हमारे देश भर में घटिया निर्माण के चलते नेशनल हाईवे, ब्रिज, हाईवे और फ्लाईओवर्स के धसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब सवाल यही है कि आम जनता की गाढ़ी कमाई के डकैतों का इलाज सरकार कब करेगी, क्योंकि एनएचएआई और निर्माण करने वाली कंपनियों की मिलीभगत से ही पूरा ये खेल चल रहा है। सवाल यहां सिर्फ धस रहे एक्सप्रेसवे तक सीमित नहीं है, एनएचएआई की जानलेवा लापरवाही राहगीरों को बेमौत मार रही है।
1: देश की संसद में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सड़क हादसों में मरने वालों का आंकड़ा बताते हुए दुख तो जताते हैं, लेकिन कटघरे में ड्राइवरों को खड़ा कर देते हैं। यही कहते हैं कि ड्राइविंग की अच्छी ट्रेनिंग की कमी कई बार जानलेवा साबित होती है।
9: In our country, we are highest in the accidents, and particularly, it is really a very, very painful thing. That every year we have 180,000 deaths. There are lot of reasons, that is with the automobile engineering, we have taken all the measures for that. Road engineering, we have taken the measure. The third is enforcement of law, already a new act is already there. The most important thing is the behavior of the human being. That is to be important thing. And regarding the reference of another member about the driver, in our country we need a good training for the driver.
1: क्या इन आंसुओं का जवाब जिम्मेदारों के पास है, क्योंकि 31 साल के विकास कोरे की मौत ड्राइविंग की ट्रेनिंग की कमी से नहीं बल्कि मुंबई नासिक हाईवे पर एनएचएआई की अंधेर गर्दी से हुई। विकास कोरे ठाणे डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का हिस्सा थे, लेकिन हाईवे पर मौत के गड्ढे ने बेमौत मार दिया।
10: ये देखिए, सड़क बहुत अच्छी है तो इसलिए काफी स्पीड में वो आ रहे थे, और बताया यही जा रहा है कि विकास जब अपनी गाड़ी, अपनी टू व्हीलर को जब इससे लेके जा रहे थे तो यहाँ पानी भरा हुआ था। उससे वो समझ नहीं पाए कि आखिर यहाँ पर ये पॉट होल है। उनकी गाड़ी जो कि तेज रफ्तार में थी इसको हिट किया उन्होंने, और सीधे गाड़ी थोड़ी दूर और वो उससे भी आगे दूर जाके गिरे। उससे उनको बहुत तेज चोटें आई। तुरंत लोगों ने यहाँ पर रुक के एम्बुलेंस बुलाई, गाड़ियाँ रुक गई थी यहाँ पर। किसी तरीके से उनको एम्बुलेंस में लेके जाया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचे तब तक में उनकी मौत हो गई।
1: सरकारी अंधेर गर्दी की कीमत विकास कोरे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। विकास कोरे की मृत्यु के बाद आनंद फानंद में गड्ढे को भर दिया गया, लेकिन हादसे वाले स्पॉट से चंद कदमों की दूरी पर एक नहीं 10 से ज्यादा मौत के गड्ढे एनएचएआई के नकारेपन की गवाही दे रहे हैं। मतलब जिम्मेदारों की नींद अभी भी नहीं टूटी है।
10: उस पॉट होल में जहां से विकास गोरे की मौत हुई उसको तो भर दिया, लेकिन उससे ठीक आप देख लीजिए 500 मीटर की दूरी पर कम से कम 10 पॉट होल्स हैं, और छोटे मोटे नहीं, आप देख लीजिए काफी, आप देखिए इतने तकरीबन 3-4 इंच का ये अंदर पानी गड्ढा है, और बड़े बड़े गड्ढे हैं, छोटे मोटे नहीं। इसमें अगर कोई बाइक चला जाए तो उसमें वाकई किसी की दुर्घटना हो सकती है।
1: 24 घंटे में 2 मौतों के बाद भी जिम्मेदारों का जमीर नहीं जागा, मानो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार टोल तो पूरा वसूल रही है, लेकिन बदले में गड्ढे वाली सड़क दे रही है, न कोई सुनने वाला है और न ही लोगों की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ रोकने वाला।
11: यहाँ की जो प्रशासन है एक नंबर की घटिया है, जो इस तरह से अगर रास्ते बंद रहे, यहाँ पर कितने लोगों की जान जा रही है और किसी का कुछ ध्यान नहीं है। मतलब जो गडकरी साहब है वो क्या कर रहे, अगर इतना टेंडर निकालते, इतने पैसे अगर वो लोग देते हैं, ये गरीबों का पैसा जा रहा है और उसी में गरीबों की जान जा रही है।
12: रास्ता हालत तो देख रहे हैं, ये जो एक महीना हो गया पूरा ऐसा ही खड्डे में,
10: हर बरसात में यही हालत।
12: हाँ, हर बरसात में यही हालत होता है।
10: मतलब पिछले कितने सालों से आप देख रहे
12: हैं? अरे 5-6 साल में ऐसा ही हालत रहता है।
10: मतलब हर हल्की सी बरसात हुई नहीं कि ये ऐसे ही आपको हिलते डुलते संभलते हुए जाना पड़ता है,
12: डांस करना पड़ता है।
1: तारीख बदली लेकिन हालात आज तक नहीं बदले। हर साल बरसात में हाईवे की यही बदसूरत तस्वीर सामने आती है, लोगों की जान जाती है लेकिन हालात नहीं बदले।
13: मेरे सामने 2-3 टू व्हीलर वाले कल इसमें गिर गए।
10: अच्छा।
13: और ये हर साल का यही स्पॉट, यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा ब्रिज है ना, हमेशा फूट जाता है, इतनी हालत खराब है यहाँ के लोगों।
1: सीधा सवाल जिम्मेदारों से है, नेशनल हाईवे पर मौत के गड्ढों को भरने का काम कौन करेगा? क्योंकि हाईवे मौत के गड्ढों का कहर जारी है।
14: जब यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है, ये गड्ढा दिखता नहीं, आप एक सोच सकते हैं ये गड्ढे में अगर किसी की गाड़ी आ जाती है तो उसके पीठ का स्पाइन का क्या हाल है। ये गड्ढा गिनने की अपन कोशिश करेंगे, टेप मेरे पास है, ये गड्ढा हम अगर गिनते हैं तो ये गड्ढा आप देख सकते हैं 7 फुट, मतलब ये टेप पूरी तरह से खत्म हो गई, 7 फुट का ये गड्ढा है। और ये गड्ढे को अगर हम ऐसा गिनते हैं तो ये गड्ढा हम देख सकते हैं 38 इंच, यानी 3 फुट के भी ऊपर ये गड्ढा है। प्रशासन ने बारिश रुकने के बाद भी ये गड्ढा बुझाने का काम किया नहीं। ये गड्ढे में पानी भरने के बाद बड़े पैमाने पे लोगों के हाल होते हैं। इतना बड़ा गड्ढा, मतलब इसका डीप भी हम देखेंगे तो 1.25 फुट इतना उसका डीप है। ये गड्ढे में क्या हालत हो सकती है आप जान सकते हैं।
1: हादसों को लेकर ड्राइवरों पर सवाल उठाना कहां तक जायज है, जब नेशनल हाईवे के नाम पर सरकार गड्ढा मुक्त सड़कें देने के बजाय आम जनता को गड्ढा युक्त सड़कें दे रही है। आज तक ब्यूरो।
15: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे आसिम मुनीर का कहर, शहबाज शरीफ का डर। आप देखते रहिए दस्तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: मुल्तानी घू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घू का कॉफ सिरप,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: पापा।
8: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ
9: ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
9: चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: अनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
16: I wake up wearing someone else again.

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: 6000 करोड़ रुपए का AUM था, उसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया.
3: हाँ, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़. यस, मैंने कमाना 2005 में शुरू किया, निवेश करना 2006 में किया और सब पैसा इक्विटी में डाल दिया. एंड यू कैन इमेजिन 2008 में आधा हो गया. आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए दाल चावल फंड. एवरीवन एस्पायर्स टू बी अ मैंगो मिलियनेयर. उसको वॉरेन बफेट नहीं बनना, उसको लेट राकेश झुनझुनवाला नहीं बनना. सिर्फ महीने के 1.5 लाख की ऐसा ही 18 साल तक अगर आप करते हैं इक्विटी फंड में, आपके 10 करोड़. क्योंकि आपने वो पैसा डाला मार्केट में, उसने रिटर्न कमाया, रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमाया, वो पावर.
4: His two biggest blunders have defined Indian politics since he responded to the Shahbano judgment.
5: Didn't quite understand the interplay between judiciary, society, Muslims, personal law. Shahbano was a disastrous decision.
4: That made the Hindus very angry. Then he made other mistakes with the unlocking of the doors at Ayodhya, the Shilanyas, and that's how the BJP rolled.
6: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है. गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं. भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है. ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए. कौन सा? पुलिस. किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने. और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था. जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया. अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज. तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता.
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षे का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने. वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस. ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था. कितना? 200 किलो भी. मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को. मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ. पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा.
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा.
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब खबर पाकिस्तान की। जी हाँ, एक तरफ तो आसिम मुनीर पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों की आवाज दबाने के लिए गोलियां चलवा रहा है। स्थिति यह है कि पाकिस्तानी सेना पर मस्जिदों को निशाना बनाने, इमामों पर बर्बरता ढाने के आरोप लग रहे हैं। फिर भी पीओके में आंदोलन कर रही जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC लोगों के साथ अपने अधिकारों और सेना की इस हैवानियत के विरोध में लड़ाई जारी रखे हुए। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर मोहसिन नकवी के साथ मिलकर इस्लामाबाद में तख्ता पलट की साजिश भी रच रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर और नकवी का नकाब उतर चुका है। आइए आपको दिखाएं पाकिस्तान का आगे क्या होने वाला है।
3: पीओके में बेगुनाहों पर फायरिंग, इस्लामाबाद में तख्ता पलट की साजिश। आसिम मुनीर का डबल गेम एक्सपोज, पीओके में इस्लामाबाद तक विरोध। पीओके में फर्जी चुनाव का खेल, शरीफ खानदान और भुट्टो परिवार की भिड़न। आसिम मुनीर का घातक गेम प्लान, पूरे पाकिस्तान को उलझाने की कोशिश। पीओके में मुनीर ने शांति लाने का ठेका आतंकियों को क्यों दे दिया? पीओके में इस वक्त बगावत की जो आग धधक रही है, उसे पाकिस्तान की सरकार और सेना दबाने की पूरी कोशिशों में जुटी है। लेकिन पीओके वालों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में विद्रोह बढ़ता ही जा रहा है। पूरा पीओके जल रहा है, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बुनियादी हक मांगने पर उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, सेना के जुल्मों के खिलाफ लोग जान की बाजी लगा रहे हैं। पिछले हफ्ते भर में ही 100 लोगों की जान जा चुकी है। मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई है। पीओके में मुनीर की सेना गोलियां बरसा रही है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी पीओके में फर्जी चुनाव करवाकर खुद को पीओके का विजेता घोषित करने पर तुली है। लेकिन सच्चाई क्या है, खुद पाकिस्तानी पत्रकार इसकी सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं।
4: एजेके के कैपिटल के अंदर, मुजफ्फरबाद के अंदर लाल चौक में आज शाम तकरीबन 4:30 बजे गैर मुसल्ला मुजाहिरीन जमा हुए, जिनकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है। ये लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं, पंजाब रेंजर्स, उन्होंने और फ्रंटियर कोर ने जो है वो फायरिंग शुरू कर दी उनके ऊपर। कम से कम एक हलाकत की तस्दीक हुई है, जबकि जख्मियों की तादाद में जो है वो इजाफा हो सकता है। मैं आपको वीडियोस दिखाने वाला हूं जो ग्राउंड से स्मगल होकर आई है। अगर ये तस्वीर दुरुस्त है तो सवाल ये है कि गैर मुसल्ला प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इतनी सख्त फोर्स का जो ये हार्ड स्टेट बनाई जा रही है, जिसके अंदर जो है इस वक्त हालात तो आपके सामने ही है, अब ये क्या अवाम की आवाज के जवाब में गोलियां चलाना एक नॉर्मल सी बात बन गई है? लगता तो यही है, हम वीडियो की आपको आवाज नहीं ज्यादा सुना सकेंगे। लगातार फायरिंग हो रही है, जो विजुअल्स हैं वो आपके सामने हैं, और जाहिर बात है कि विजुअल्स हम इससे ज्यादा आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये इलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन हुआ है, इसके ऊपर इनके अपने जो अंदर झगड़े बन गए हैं, जो सिस्टम तो फेल हुआ है लेकिन इनके अपने अंदर भी झगड़े शुरू हो गए हैं। जमात-उद-दावा लश्कर-ए-तैयबा जो इनका है, जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बना के बैठा हुआ है, उनके अंदर भी मामला जो है वो चल रहे हैं। इस वक्त इस इलेक्शन की तरफ अब जब देखते हैं, ऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अब तक 45 में से 23 सीट्स जो है वो उनको दान की जा चुकी हैं, उनके हवाले की जा चुकी हैं, उनको जो है वो गिफ्ट की जा चुकी हैं। आसिम मुनीर अपनी मशूक को जो है वो तोहफे के अंदर जो है 45 में से 23 सीट्स दे चुका है।
3: आपको बता दें कि पीओके विधानसभा की 45 सीटों पर 3 चरणों में दिखावटी चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में पीएमएलएन ने 13 में से 9 सीटें जीती थीं। अब दूसरे चरण के बाद उसके पास कुल 23 सीटें हो गई हैं, जो बहुमत के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण 10 अगस्त को होना बाकी है। हालांकि पीओके वाले दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव फर्जी है। जब वहां बहिष्कार हो रहा है तो वोट कौन डाल रहा है? पाकिस्तानी मीडिया ने खुद दिखाया है कि कैसे पोलिंग बूथों पर सन्नाटा है, तो फिर वोट कौन डाल रहा है?
4: चेक करें आप, पुलिस वाले टेबलों के ऊपर सो रहे हैं।

0: पीओके को लेकर एक और पर्दाफाश हुआ है। जी हां, पीओके में आसिफ मुनीर अब शांति बहाल करने का ड्रामा खेल रहे हैं, जिसके तहत एक पीस कमेटी बनाई गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पीस कमेटी में आतंकियों को शामिल किया गया है। जी हां, पीस कमेटी के नाम पर एक प्रतिनिधि मंडल रावला कोट भेजा गया है, जिसमें इलियास कश्मीरी जैसा आतंकी भी शामिल है। जैश मोहम्मद के इस सीनियर कमांडर के पीस कमेटी में शामिल होने पर पाकिस्तान की नियत पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच लश्कर ए तैयबा भी JAC आंदोलन के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आया है। संगठन लगातार JAC नेताओं को गद्दार बता रहा है, उनके खिलाफ प्रचार अभियान चला रहा है और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशों का खुलकर समर्थन कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान पीओके में आतंकी भेज रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव का ढोंग करके पीओके पर अपना कब्जा बनाए रखने की साजिश भी रच रहा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जनप्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस प्रकार की खोखले कवायदें वास्तविकता को छिपा नहीं सकती। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: पाकिस्तान में एक चर्चा ये भी है कि आसिफ मुनीर और मोहसिन नकवी मिलकर बड़ा गेम कर रहे हैं। आखिर मुनीर ने एक तीर से कई शिकार करने का प्लान बनाया है। वो पाकिस्तान के लगभग हर सूबे में भड़के विद्रोह को दबाने के लिए उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो इसके जरिए पाकिस्तान के दो परिवारों भुट्टो परिवार और शरीफ परिवार के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। और आसिफ मुनीर ने नवाज शरीफ की ही पार्टी के मंत्री मोहसिन नकवी का इस्तेमाल किया और ये बयान दिलवाया कि 70 साल पुराना पाकिस्तान का सिस्टम फेल हो गया है और नए सिस्टम की जरूरत है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि आसिफ मुनीर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और मोहसिन नकवी को रबर स्टैंप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि कैसे शहबाज सरकार के मंत्री मोहसिन नकवी और उनकी पार्टी के बीच खुली जंग छिड़ गई है।
2: GHQ के अंदर प्लान बनाया गया है कि जनाब स्वीपिंग पॉलिटिकल ओवरऑल किया जाएगा और आसिफ मुनीर को सदर बना दिया जाएगा और उसके पेशाब को डिक्टेटर को और उसके यूनिफॉर्म के अंदर सदर बनाया जाएगा और तमाम उसके पास पावर भी होगी। वो सिर्फ आसिफ जरदारी की तरह का सदर नहीं होगा और मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी इसी सिलसिले में सदर जरदारी से कराची में जाके मिला है और सदर जरदारी ने हमारी इत्तला के मुताबिक बताया कि यार मैं तो मान भी लूं, जारी बात है उसकी फाइलें बहुत सी खुली हुई है, नैप की फाइलें बड़ी खुली हुई है, मेरा बेटा नहीं मानता और उसने तो कोई करप्शन भी नहीं की हुई और वो तो इसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं है। तो उसको कहा गया, सदर जरदारी को मोहसिन नकवी ने कहा कि देखें मैं भी तो आपका बेटा बना हुआ हूं लेकिन ऊपर से अब ऑर्डर ये आ गया है कि बेटे को साइडलाइन करें, बेटे के पर काटें और ये हमारे एग्रीमेंट के ऊपर आप आ जाएं, आपको सेफ एग्जिट मिल जाएगा, दुबई जाके रहना है, उसके अलावा अमेरिका में रहना है, जिधर भी रहना है वो आपको सेफ एग्जिट मिलेगा, नहीं तो आपको सेफ एग्जिट भी नहीं मिलेगा।
0: मोहसिन नकवी ने अचानक 21 साल पुराने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू घोटाले का मुद्दा उठाया है। सिस्टम फेल होने का दावा करने वाले मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें जज, नौकरशाह, राजनेता और बैंकर सभी शामिल रहे हैं।
3: इतना बड़ा स्कैम मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, बैंकर्स हर एक इन्वॉल्व है और 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग पैसे खाते रहे। तो मेरा ख्याल है कि अभी सिर्फ बिल्डिंग तक नहीं हमें रहना चाहिए, मैं तो पूरी तजवीज दूंगा कि जो जो इसमें जिस जिसने वो उनको नुकसान पहुंचाया उन सबके पीछे जाना चाहिए।
0: लेकिन अब इस्लामाबाद में भी आसिफ मुनीर और मोहसिन नकवी का तख्ता पलट वाला प्लान एक्सपोज हो रहा है। जी हाँ, जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख

0: मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन नकवी का जमकर मजाक उड़ाया है और ये तक कह दिया है कि वो वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई केक नहीं है कि जब मन आया छुरी से काट दिया।
1: नकवी साहब हमारे बरखुरदार हैं, लेकिन कुछ वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। अब ये मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बात जो है वो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में की है, लेकिन अपनी ज़ाती हैसियत में बात करना कैसे मुमकिन है जबकि वो इस वक्त एक काबीना के मेंबर है। क्या वो ये कह सकते हैं या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह सकता है कि ये मेरी आशीर्वाद पे हुआ है या मेरी इजाज़त से हुआ है, या काबीना ये कह सकती है वफाकी के ये हमारी इजाज़त से हुआ है, या किसी और तरफ से कोई बात हुई हो तो वो भी वाज़े कर दी जाए। क्या मुल्क इस बात के लिए तैयार है कि सूबे बनाए जाएं? सूबे बनाना कोई बुरी बात नहीं है, इंडिया में भी बन रहे हैं और जगह भी बनते हैं। ये कोई केक तो नहीं है कि आप आराम से छुरी लेकर उसको बस जिस तरह चाहें काट दें। सूबे बनाने की बात के लिए क्या मुल्क तैयार है?
0: उधर पाकिस्तान में एक और बवाल शुरू होने जा रहा है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 5 अगस्त से पूरे पाकिस्तान में आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2023 को ही इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनसभाओं, प्रदर्शनों और लॉन्ग मार्च जैसी रणनीति पर चर्चा की गई है। आज तक ब्यूरो।
2: अब खबर बांग्लादेश की। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आज की सबसे बड़ी दस्तक की। आज 2 वर्ष बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो वर्चुअली जुड़ी, सवालों के जवाब दिए, लेकिन उनका कैमरा बंद था। पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से पहले 25 मिनट का भाषण भी उन्होंने दिया। एक लाइन में अगर समझें तो शेख हसीना ने यही ऐलान किया कि लौटने के बाद मौजूदा सरकार चाहे उन्हें जेल में डाल दे या फिर मरवा दे, वो इसी वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश वापस लौटेंगी। हम आपको ये बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। सबसे पहले सुनिए बांग्लादेश और दुनिया के नाम शेख हसीना ने क्या संदेश दिया।
3: Cancer, but when you ask me, after going back, they may arrest me. I am telling you one thing. That is 81, when I return home. That time also they tried to stop me. Dr. Rahman was in power, but I went there. But 1983, I was arrested. And again in 1985, 1987, there several times, even 2007. That time also I was outside the country. But when I wanted to return home, they tried to stop me, but they could not. I returned home. So I know that they may put me in the jail or they may kill me, they may, anything may happen, but still I have to go back. You are friend of Bangladesh. You are here. I know you will support me. So the people's support, it is very important for me.
2: आइए हम हमारे साथी प्रणय उपाध्याय के पास आपको लिए चलते हैं। प्रणय, आखिर शेख हसीना ने यह निर्णय क्यों लिया?
4: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में 2 साल पूरे हो चुके हैं। 5 अगस्त 2024 वो तारीख थी जब शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत में आना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी और तब से वो भारत के अंदर मौजूद है। लेकिन अब शेख हसीना ने दिल्ली के फॉरेन करेस्पॉन्डेंट क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ये भारत में रहते हुए उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो जल्दी ही वापस बांग्लादेश लौटेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ न केवल कई मामले दर्ज हैं बल्कि उनको वहां पर मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है। लेकिन शेख हसीना ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि ढाका पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है या उन्हें किसी तरीके की सजा दी जाती है, क्योंकि वो अपने लोगों से और अपने देश से दूर नहीं रह सकती हैं और अब उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया है। शेख हसीना वापस कब लौटेंगी बांग्लादेश, इस सवाल पर उनका कहना था कि वो दिसंबर में, यानी दिसंबर 2026 में वापस लौटेंगी। तारीख का ऐलान वो बाद में करेंगी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बड़े गंभीर आरोप बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार थी उस पर लगाए। उन्होंने कहा कि शेख हसीना सरकार के खिलाफ जिस तरीके का आंदोलन चलाया गया था, तो वो छात्रों का आंदोलन नहीं था बल्कि वो सत्ता परिवर्तन का आंदोलन था, जहां छात्रों की भावनाओं को भड़काया गया। साथ ही वो रेजिम चेंज का यानी सत्ता परिवर्तन का एक सोचा समझा प्लान था, एक साजिश थी, जिसके अंदर छात्रों की भावनाओं को भड़काते हुए उनको आगे किया गया, उनका इस्तेमाल किया गया और उसकी आड़ में जो चुनी हुई सरकार थी उसको हटाकर वहां पर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में एक अंतरिम सरकार को बैठाया गया। इतना ही नहीं, शेख हसीना के साथ साथ उनके बेटे सजीव वाजिद भी वर्चुअल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल थे, क्योंकि शेख हसीना ने दिल्ली के फॉरेन करेस्पॉन्डेंट क्लब के अंदर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ये वर्चुअली की थी, और ऐसे वर्चुअली की थी कि इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका चेहरा भी नजर नहीं आया था, केवल उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके बेटे अमेरिका से सजीव वाजिद भी जुड़े थे, और सजीव वाजिद ने कहा कि भारत की सरहद के ऊपर यानी भारत के पूर्वी छोर के ऊपर एक नया पाकिस्तान फिर से खड़ा हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के हालात जो हैं वो काफी कम्युनली भी, और साथ ही बांग्लादेश में जिस तरीके से वहां पर ISI की पैठ बनी है वो भारत के लिए चिंता का विषय है, और इसको लेकर भारत को भी सोचना चाहिए कि आखिर बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है।
2: खबर हॉर्मुस पर अमेरिका और ईरान के बीच आर पार की लड़ाई की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो सबसे बड़ा हमला उस पर करेंगे। ट्रंप की इस धमकी का जवाब ईरान ने कुवैत पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले से दिया। ईरान का ट्रंप को संदेश एकदम साफ है, हॉर्मुज खुलेगा तो ईरान की मर्जी से खुलेगा, अगर अमेरिका ने हॉर्मुज को लेकर ईरान पर नया हमला किया तो पूरे मिडिल ईस्ट में हमले होंगे। दूसरी तरफ ईरान ने ओमान के साथ हॉर्मुज पर डील का मसौदा तैयार कर लिया, अगले कुछ घंटों में ओमान और ईरान हॉर्मुज को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए ईरान ने ओमान के साथ मिलकर एक बड़ा दांव चल दिया। ईरान के इस दांव से ट्रंप के हाथ पैर फूल गए। ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
5: मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का सायरन बजा। कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला। सऊदी अरब के तेल टैंकर पर हमला। हॉर्मुज पर ईरान की ट्रंप को सीधी धमकी। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी बेअसर। आर पार की लड़ाई, ईरान ने टेंशन बढ़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति बीते 72 घंटे से यही दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, जल्द ईरान और अमेरिका के बीच बात बन जाएगी। अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका सबसे बड़ा हमला करेगा। ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यरूशलम पोस्ट के मुताबिक IRGC ने 3 ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। वहीं इराक के बसरा प्रांत में भी जोरदार धमाकों की खबरें सामने आई हैं। ईरानी मीडिया ने भी कुवैत में विस्फोटों की पुष्टि की है। बड़ी बात यह है कि ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को ट्रंप की धमकी के चंद घंटों के बाद निशाना बनाया है। संदेश यही दिया है कि ईरान न तो झुकेगा और न ही अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बाद रुकेगा।
6: They are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
5: ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज को लेकर ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत चल रही है, बहुत जल्द हॉर्मुज खुल जाएगा। लेकिन हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के प्लान पर ईरान ने पानी फेर दिया है। हॉर्मुज को लेकर ईरान ने एक नई रणनीति अपनाई है। ये रणनीति ओमान के साथ मिलकर एक नए रूट की तैयारी है, वही रूट जिससे आने वाले दिनों में आवाजाही शुरू होगी। ये रूट पूरी तरह ईरान और ओमान के नियंत्रण में रहेगा, यानी हॉर्मुज पर ट्रंप के नहले पर ईरान दहला चलने की तैयारी कर चुका है। हालांकि ट्रंप मानते हैं कि हॉर्मुज को ईरान के कब्जे से मुक्त करवा कर रहेंगे।
6: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open.
7: And we were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it.
5: दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि होर्मुज को लेकर ट्रंप लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एक दो बार नहीं बल्कि 75 बार कह चुके हैं कि होर्मुज खुला है, लेकिन हकीकत यही है कि होर्मुज बंद है। होर्मुज तभी खुलेगा जब ईरान इजाजत देगा। ईरान का आरोप है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन अमेरिका बातचीत को लेकर झूठा दावा कर रहा है।
6: And it would have gone on for a long time, and there'd be essentially very little left. There'd be nothing left. And if I'm given a chance to let a lot of people live, I want to give that chance. So I'm under no time constraint. You know, I don't happen to be running.
5: होर्मुज को लेकर ईरान का प्लान तैयार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओमान के साथ होर्मुज के मैनेजमेंट को लेकर नया ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। प्लान के तहत होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल होगा, जबकि ईरान से मंजूरी लेने के बाद ओमान होर्मुज को पार करने की इजाजत जहाजों को देगा। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज को लेकर चल रही चर्चा में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। ये पूरी तरह ओमान और ईरान के बीच द्विपक्षीय वार्ता है। मतलब यही है कि होर्मुज से अमेरिका को ईरान ने पूरी तरह से बाहर कर दिया है। अब सवाल यही है कि जब ईरान और ओमान के बीच होर्मुज को लेकर 1-to-1 बातचीत चल रही है, तो अमेरिका इस बातचीत में अपनी भूमिका का दावा क्यों कर रहा है?
8: President Trump last week threatened what would have been one of the largest military campaigns, or the largest military campaign since World War II, against the Iranians. And now we are, because of that, we are in talks with the Iranians, and I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait and move towards a more normalized position in this conflict.
5: Defense expert मानते हैं कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति के तर्कश में सिर्फ धमकियां बची हैं, क्योंकि ईरान युद्ध के चलते अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइलों के संकट से गुजर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास लंबी दूरी की मिसाइलों का स्टॉक करीब करीब खत्म हो चुका है, लिहाजा मिसाइलों की कमी के चलते ट्रंप एक बार फिर बातचीत की टेबल पर वापस आ गए हैं।
2: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: In association with
8: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा? गौर नहीं किया हो तो एक बार फिर सुन लीजिए कि उन्होंने किन किन देशों का नाम लिया है। जी हाँ, पहला नाम लिया सऊदी अरब का, दूसरा नाम लिया यूएई का और तीसरा नाम लिया कतर का। सवाल ये है कि पूरी दुनिया में शांति दूत बने घूम रहे पाकिस्तान का क्या हुआ? ट्रंप के बयान ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद शांति वार्ता में पाकिस्तान को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितनी पिछली शांति वार्ता में दी थी। ट्रंप ने ईरान को दिया आखिरी मौका, सबसे बड़ी तबाही से बचने का मौका। वैसे सीज फायर को लेकर ट्रंप को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, लेकिन ट्रंप का साफ कहना है कि उन्होंने ईरान को भयंकर तबाही से बचाने के लिए हमला ना करने का फैसला लिया। लेकिन आखिर कब तक? मीडिया ने जब ये सवाल दागा तो जवाब आया कि ये ईरान के लिए आखिरी मौका होगा, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई राहत नहीं। अब देखना यह है कि बातों और मुलाकातों की ये ताकत मिसाइलों को कब तक रोक पाती है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
5: Kuch to baat hai is dil mein.
6: Karnataka ke grih mantri Priyank Kharge ke is bayan ne tool pakad liya hai. दो अगस्त को कर्नाटक के विजयपुरा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के OMR शीट का नंबर और सवालों का नंबर बेमेल होने और प्रश्न पत्र तय समय से देर से बांटने जैसे आरोपों पर छात्रों का आक्रोश फूटा था। इसे लेकर बीजेपी और JDS ने प्रियंक खरगे को घेरने की कोशिश की, उनसे इस्तीफे की मांग हुई। पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रियंक खरगे ने जो कहा उसके बाद बीजेपी ने छात्रों के मुद्दों पर कांग्रेस नेतृत्व की नीयत पर सवाल उठा दिया है। प्रियंक खरगे का दावा है कि भर्ती परीक्षा के सवालों का नंबर और OMR शीट में नंबर बेमेल होने का आरोप सिर्फ कुछ छात्रों की गलतफहमी थी, इसलिए जो लोग OMR शीट के साथ एग्जाम हॉल के साथ बाहर गए वो अपनी जिम्मेदारी पर गए। सरकार की जिम्मेदारी उन छात्रों के लिए थी जो एग्जाम दे रहे थे। इन्हीं दलीलों के साथ प्रियंक खरगे कर्नाटक में पेपर लीक या भर्ती घोटालों के आरोपों पर अपना पल्ला झाड़ते भी नजर आए। प्रियंक खरगे का ये जवाब ऐसे समय में है जब नीट पेपर लीक पर पूरे देश में हंगामा हो चुका है, देश के शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इस बीच झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती घोटालों के आरोपों पर झारखंड में छात्रों का 11 दिनों से धरना जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 अलग अलग टेंट्स में भर्ती घोटाले की CBI जांच जैसी मांगों के साथ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से धरना और मशाल मार्च निकाल रहे छात्रों को खाने पीने जैसी मदद के साथ कुछ वॉलंटियर, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी सामने आए हैं, लेकिन आरोप लग रहा है कि झारखंड के छात्र आंदोलन को राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। पेपर लीक या परीक्षा में धांधली कहीं हो, देश के छात्रों के साथ नाइंसाफी है, लेकिन कर्नाटक, झारखंड साथ ही साथ पंजाब में पेपर लीक के मसले पर विपक्ष की चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक बेहतर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर न करें राजनीति, पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते नेता, विपक्ष ने पहले अमित शाह पर साधा था निशाना। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने माफी मांगी, मानी अपनी गलती केंद्र सरकार ने, मेटा अधिकारियों को कल फिर से पेश होने का दिया समन। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड, कहा पवन पांडे होंगे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जीत का किया दावा। दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना, ऑडियो संदेश में कहा मुझे बेदखल करने के लिए छात्र आंदोलन को बनाया गया था हथियार, पाकिस्तान की तरह बन चुका है बांग्लादेश। आज तक की खबर का डबल असर, पीएमओ के दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों के लिए खत्म होगा इंटरव्यू, उत्तराखंड परिवहन विभाग के रोडवेज कर्मचारियों को भी जल्द वेतन भुगतान के आदेश।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शमशान में एक अर्थी चिता पर रखी जा चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि चिता को आग दी जाती अचानक बहुत सारे पुलिस वाले शमशान पहुंच जाते हैं। इसके बाद चिता पर लेटी महिला के घर वालों से पूरी रात बातचीत करते हैं। उधर जो महिला चिता पर लेटी थी उसका पति उसी शमशान से बस कुछ दूरी पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। अब इसी शमशान और उस अस्पताल से इस कहानी की शुरुआत होती है।
1: तस्वीरें रात के अंधेरे की हैं और जगह है झांसी के पास बबीना कैंट का एक शमशान घाट। शमशान घाट में दूर से ही एक अधजली चिता नजर आती है। बासी लाल कपड़ों में लिपटी एक लाश भी रखी है। चारों तरफ लकड़ियां बिखरी पड़ी हैं और थके हारे पुलिस वाले शमशान घाट में इन्हीं लाश और लकड़ियों के इर्द गिर्द बैठकर लगातार पहरेदारी कर रहे हैं। रह रह कर लोग शमशान घाट में आ जा रहे हैं। कोई रुक कर देख रहा है, कोई माजरा समझने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश में है। अब सवाल यह है कि इस शमशान घाट में रात के वक्त आखिर वो कौन सी पहेली है जिसका सच जानने के लिए पुलिस वालों को यहाँ पहरा देना पड़ रहा है। ये अधजली चिता किसकी है, पास में रखी लाश किसकी है, और सबसे अहम ये कि एक लाश की पहरेदारी की ये पहेली क्या है। तो आइए इस सच को जानने से पहले आपको इस शमशान घाट से करीब 30 किलोमीटर दूर एक निजी अस्पताल के आईसीयू में लिए चलता हूँ, जहाँ एक बिस्तर पर एक मरीज बेसुध लेटा है। 32 साल के इस नौजवान का नाम है सागर साहू, जिसका मध्य प्रदेश के अशोक नगर में एसी और फ्रिज का काम है। तस्वीरों से साफ है कि सागर की हालत नाजुक है। अब आइए एक बार फिर उसी शमशान घाट में चलते हैं, जहां ये लाश रखी है। असल में ये लाश सागर की पत्नी राधा राठौर का है। यानी एक तरफ पति अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पत्नी मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लाई जा चुकी है। ऐसा तब है जब सागर और राधा की शादी को बमुश्किल 9 महीने ही हुए हैं। सवाल यह है कि महज 9 महीनों में 30-32 साल की इस जोड़ी की जिंदगी में एकाएक ऐसा क्या हो गया कि एक की मौत हो गई और दूसरा बिल्कुल मौत की दहलीज पर पहुंच गया। और अब इस मौत के बाद आखिर क्यों पुलिस वालों को रात भर शमशान घाट में लाश की पहरेदारी करनी पड़ रही है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल यानी 2025 के शुरुआती दिनों से, जब सोशल मीडिया पर सागर और राधा की मुलाकात हुई। लखनऊ की रहने वाली राधा को सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक था। वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव थी और यहीं उसकी मुलाकात झांसी के सागर से हुई और फिर दोनों ने शादी की जिद पकड़ ली। घर वाले तैयार नहीं थे, लेकिन बच्चों की जिद के आगे हार गए और 25 नवंबर 2025 को दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों मध्य प्रदेश के अशोक नगर में रहने लगे, लेकिन सोमवार यानी 3 अगस्त की रात को जब सागर अपनी पत्नी राधा को लेकर बबीना के अपने घर में पहुंचा, तो दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि सागर ने सीधे जहर खा लिया। इसके बाद उसके घर वाले आनन फानन में उसे लेकर पास के अस्पताल में पहुंचे, जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
2: विजय, भाई मेरे भाई की पता नहीं हम पति पत्नी में क्या बात हुई। मैंने भाई की हालत देखी, उसकी हालत बहुत एकदम कह रहा ऐसे डला हुआ था, एकदम चित्त कह रहा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे कुछ भी हो सकता है। अब उसकी इतनी सीरियस कंडीशन देख के हम लोग उसको ब्लॉक हॉस्पिटल लेके गए। उसकी सीरियस कंडीशन में उसकी पत्नी भी ऊपर से उतर के आई सागर की गैलरी में डला था, तो उसी सीरियस कंडीशन में हम लोग अस्पताल लेके गए। अस्पताल से वालों ने मना कर दिया कि भाई इसको झांसी रेफर करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर हमने झांसी के लिए एम्बुलेंस बुलाई, उसको झांसी मम्मी पापा को बैठा के झांसी में भेजा।
1: अभी घर वाले सागर को लेकर झांसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे ही थे कि तब तक घर से दोबारा फोन आ गया और इस बार खबर और भी ज्यादा दहलाने वाली थी।
2: हमने झांसी के लिए एम्बुलेंस बुलाई, उसको झांसी मम्मी पापा को बैठा के झांसी में भेजा एम्बुलेंस के साथ में। इतने में घर से फोन आ गया मेरी पत्नी का, उसने बताया कि भाई जल्दी घर पे आओ, कुछ हो गया है। घर पे जाके देखा तो उसकी
3: भाई ने बांध लिया।
2: हाँ, पत्नी ने, सागर की पत्नी ने गले में फंदा लगा लिया।
1: पति सागर जहर खाकर अस्पताल पहुंच चुका था और इधर घर में मौजूद पत्नी ने अपने गले में फंदा लगाकर खुद को खत्म कर लिया। आनन फानन में राधा की मौत की खबर घर वालों ने पुलिस को दी और उसे फंदे से उतार कर अस्पताल ले जाया गया, ताकि अगर जिंदगी की जरा सी भी उम्मीद बची हो तो उसे वापस लाया जा सके। लेकिन डॉक्टरों ने राधा को मुर्दा करार दिया। जाहिर है, अशोकनगर से बबीना आने के बाद सागर और उसकी पत्नी राधा के बीच कुछ ऐसा जरूर हुआ जिसके चलते दोनों ने इतना भयानक कदम उठा लिया। अब बहू तो नहीं रही, लेकिन बेटे की जिंदगी बचाने के लिए घरवाले अब सागर को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा चुके थे। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब राधा के ससुराल वाले रात को उसके शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए बबीना कैंट के शमशान घाट में पहुंचे और रात में ही उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। ससुराल वालों ने राधा के घर वालों को इसकी जानकारी तक नहीं दी। बस फिर क्या था, राधा के ससुराल वालों के इसी रवैये ने मौत के रहस्य को गहरा कर दिया और अननेचुरल डेथ यानी अस्वाभाविक मौत के इस मामले में अब कत्ल वाली थ्योरी की एंट्री हो गई।
4: हम लोग पैसा की व्यवस्था नहीं पाए, उसमें रात में इन्होंने मार के टांग दिया, उसकी हत्या करके सागर साहू और मुन्नू साहू, विजय साहू और इनकी माँ है इंदिरा साहू, इनकी बहन भी उसमें शामिल है, इन लोगों ने सब लोग मिल के उसको मार दिया। हत्या करके बाद उसका शव जो है फांसी के फंदे पर लटका दिया। तो उसके बाद मुझे, हम लोगों को कोई खबर ना दी गई ना कुछ।
1: इत्तेफाक से बबीना से ही किसी ने फोन पर लखनऊ में राधा के घर वालों को उसकी मौत की खबर दे दी। राधा के घर वालों को पता चला कि उसके ससुराल वाले जल्दबाजी में उसके शव का अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लड़की वाले लगातार अपने पहुंचने तक समाज के लोगों को उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे थे।
4: दोपहर में अगले दिन जो है 11 बजे के आसपास समथिंग, एक साहू समाज के अध्यक्ष हैं यहाँ पे बबीना कैंट में, उन्होंने हमको कॉल किया 11:30 के आसपास में, तो हमको बताया गया, तो उन्होंने पूरी जानकारी दी, तो हम लोग वहाँ से तुरंत निकले। और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने क्या किया, जब हम लोग पहुंचे यहाँ लगभग 8:30 बजे बराबर बातचीत होती रही, ये सागर यहाँ के जो साहू समाज के अध्यक्ष हैं उनसे बात होती रही बराबर कि भैया अभी जो है मेरा शव जो है मेरी भांजी का अभी रखवाना नहीं, मैं जब आ जाऊँ तब तो आप अंतिम संस्कार करवाना। उसके बाद जब हम 8:30 बजे यहाँ पे आके पहुँचे तो वो लोग शव को अंतिम उसमें शमशान घाट ले जा चुके थे, उस पर बराबर प्रेशर डाल रहे थे हम लोगों की इतने टाइम ही मतलब अंतिम संस्कार होगा, रात में हो जाता है, हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं होता है, ये हर आदमी जानता है, पूरा यूपी जानता है, पूरा इंडिया जानता है, हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं था, ये लोग प्रेशर डाल रहे कि मेरे वहाँ 11 बजे तक अंतिम संस्कार होता है।
1: लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर लड़के वालों ने राधा के घर वालों को उनकी बेटी की मौत की खबर क्यों नहीं दी, क्यों किसी को बताए बगैर शव को

0: रातों रात अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर पहुंच गए। वो भी तब जब आम तौर पर रात के वक्त अंतिम संस्कार करने की मान्यता नहीं है। तो इसका जवाब भी राधा के घर वालों ने दिया। उनका कहना था कि राधा ने बेशक सागर से लव मैरिज की थी, लेकिन सागर के घर वाले उससे दहेज की मांग करते थे। कुछ रोज पहले राधा का भाई उसे लेने लखनऊ के बबीना पहुंचा था, लेकिन तब भी लड़की के ससुराल वालों ने दहेज की मांग करते हुए राधा को उसके साथ भेजने से मना कर दिया था, और सागर ने यहां तक धमकी दी थी कि वो राधा को तलाक दे देगा।
1: मेरी भांजी की शादी यहाँ बबीना कैंट में सागर साहू से हुई थी, जो कि लव मैरिज थी। उसमें क्या हुआ, ये दहेज जो है मांग रहे थे 10 लाख रुपए। आज 10 दिन पहले मांग रहे थे कि जब विकास राठौर उनका राधा का जब भाई लेने यहाँ पे आया, तो उससे उसकी बहन और सागर साहू, विजय साहू और उनके पिताजी सागर साहू के मुन्नू साहू, उन्होंने बोला कि 10 लाख रुपए हमको दो आके तब तुम्हारी लड़की को जाने देंगे, तुम्हारी बहन को जाने देंगे। तो इतना हम लोग पास पैसा था नहीं कि मतलब 10 लाख रुपए की व्यवस्था मैं कर पाऊँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया। 15 दिन से बराबर प्रताड़ित कर रहे थे उसको, तो बराबर फोन कर रही थी लड़की कि मतलब ये कह रहे हैं पैसा, तो हम लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद कल इन्होंने फोन किया कि शाम को कि भैया ये जो है लड़की मतलब हम डिवोर्स दे रहे हैं, कोर्ट से डिवोर्स दे देंगे, और डिवोर्स देके मैं आपकी लड़की को मैं दोपहर तक 12-1 बजे तक छोड़ दूंगा, आप वहीं रखना, मुझे नहीं रखना है, ठीक है, या तो पैसे की व्यवस्था करो।
0: चूंकि दोनों की शादी को अभी चंद महीने ही हुए थे और इसी बीच लड़की की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई, तो इस मामले की मजिस्ट्रेटी जांच तो होनी ही थी। लेकिन जिस तरह से राधा की मौत के बाद घर वालों ने उसकी मौत को दहेज हत्या करार दिया, उससे मामला पेचीदा हो गया, और राधा के शव का अंतिम संस्कार रोकने के लिए झांसी पुलिस को पूरे लवाजमे के साथ बबीना के इस शमशान घाट में पहुंचना पड़ा। हालत ये हुई कि 4 और 5 अगस्त को रात भर पुलिस शमशान घाट में बैठकर राधा के शव की रखवाली करती रही और दोनों पक्षों को भरोसे में लिया। चूंकि राधा के शव का पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका था, तो पुलिस ने लड़की के घर वालों को इसकी जानकारी दी और बताया कि पोस्टमार्टम में सच्चाई का खुलासा हो जाएगा। इसके बाद घर वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी तो हुए, लेकिन पहले पति समेत तमाम ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। ये झांसी के बबीना थाने में दर्ज उसी FIR की कॉपी है, जिसमें राधा के घर वालों ने सागर समेत उसके माता पिता और घर के बाकी सदस्यों के खिलाफ दहेज हत्या का इल्जाम लगाते हुए शिकायत दी है। इसमें पति सागर के अलावा सास ससुर और दूसरे ससुरालियों के भी नाम है। FIR में उस घटना का भी जिक्र है जिसमें सागर के घर वालों ने कथित तौर पर 10 लाख रुपए दहेज के लिए राधा को उसके भाई के साथ लखनऊ भेजने से मना कर दिया था। घर वालों ने फिलहाल सीधा सीधा इल्जाम लगाया है कि सागर के ससुराल वालों ने ही दहेज के लिए उनकी बेटी राधा की हत्या कर दी और उसे आत्महत्या दिखाने के लिए शव को फंदे से लटका दिया। फिलहाल झांसी की पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली है, आरोपी भी उसके रडार पर है, मगर दिक्कत यह है कि एक आरोपी जहां अस्पताल के ICU में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, वहीं बाकी के आरोपी उसकी तीमारदारी में लगे हैं। सवाल यह भी है कि सागर और राधा की चंद महीने की लव मैरिज के बीच आखिर पति पत्नी में वो कौन सा और कैसा विवाद था जिसके चलते सागर ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की और राधा ने गले में फंदा लगाकर जान ही दे दी। फिलहाल पुलिस इस पहेली को भी सुलझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि शुरुआती तफ्तीश में ये पता चला है कि राधा किसी कंपनी के लिए अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और अब वो बाहर जाकर काम करना चाहती थी, जबकि सागर इसके लिए तैयार नहीं था, जिसे लेकर दोनों के बीच कुछ दिनों से अनबन और कहासुनी चल रही थी। लेकिन क्या पति की खुदकुशी की कोशिश और पत्नी की खुदकुशी की इस स्टोरी का सच यही है, या फिर कहानी वैसी है जैसा राधा के घर वाले बता रहे हैं? पुलिस को अभी इसी सच का पता लगाना है। अजय झा, बबीना, झांसी, आज तक।
2: क्या कोई ड्राइवर अपने अफसर को सिर्फ इसलिए मार सकता है क्योंकि उससे ज्यादा काम कराया जाता था? बिहार के एक नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव अफसर विमल कुमार की मौत के मामले में गिरफ्तार ड्राइवर ने पुलिस से कुछ ऐसा ही कहा है। हालांकि खुद विमल कुमार की पत्नी को ड्राइवर की बातों पर यकीन नहीं है। उनका दावा है कि उनके पति को एक साजिश के तहत मारा गया है और इस सिलसिले में वो एक विधायक का भी नाम ले रही है।
0: बिहार के डेहरी डालमिया नगर विकास परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी ईओ की हत्या का मामला थोड़ा और उलझ गया है। पुलिस ने बेशक इस सिलसिले में अब तक सिर्फ ईओ विमल कुमार के ड्राइवर मिथिलेश को ही गिरफ्तार किया हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके साथ जैसी बर्बरता की बात सामने आई है उसे देखकर ये शक है कि शायद इस वारदात को अंजाम देने वाले कातिल और ज्यादा हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ड्राइवर के गुस्से वाली थ्योरी भी सवालों के घेरे में आ जाती है। विमल कुमार का कत्ल 29 और 30 जुलाई की रात को तब किया गया जब वो अपने ड्राइवर के साथ टेहरी से दानापुर जा रहे थे। फिलहाल शव की हालत देखकर उनका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी हैरान हैं। ईओ विमल कुमार के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की माने तो उनके शरीर का तकरीबन हर वाइटल ऑर्गन उन पर हुए हमले में बुरी तरह से डैमेज हो गया था। फिर चाहे वो उनके फेफड़े हो, लिवर हो, गले या फिर सीने का हिस्सा हो, शरीर का तकरीबन हर अंग बुरी तरह से जख्मी था। पसलियां टूट गई थी। बहुत ज्यादा रक्त स्राव यानी खून के बहने की वजह से उनके दिल ने भी काम करना बंद कर दिया था।
3: कार्यपालक पदाधिकारी का जो पोस्टमार्टम हुआ था, एक्चुअली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखे तो उसमें हार्ड एंड ब्लंट ही इंजुरी था, यानी कि कहीं भी फायर आर्म नहीं था, पेनिट्रेटिंग इंजुरी नहीं था जिसे कोई भोंक दे, छुरा मार दे या कोई तेज हथियार से काट दे, पीट दे, इस तरह का कुछ नहीं था। जो भी था हार्ड एंड ब्लंट हो सकता है, हार्ड ब्लंट में बहुत सारी चीज़ें लाठी डंडा रॉड लोहा जो भी हो सकता है, तो इसी से बुरी तरह से मारा गया था, जिसमें मारने में इनको इतना मान देखने से इंजुरी देखने से लग रहा है कि उनको इतना बुरी तरह से मारा गया था, वो आदमी को खून बहा अंदर आंतरिक जख्म के चलते ब्लीडिंग हुआ जिसे शौक में चले गए और शौक में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का कारण हार्ट ब्लंट ही है, जिसमें सबसे वाइटल है कि सांस की नली जो थायराइड बोन है वह टूटा हुआ था, लीवर में भी फटा था, बाती भी दोनों फैंग से टूटा हुआ था, लंग्स में भी इंजुरी थी, ब्लैडर में भी इंजुरी था, ये लग रहा है कि मारा गया है रॉड हो या जो भी हार्ट ब्लंट लाठी लाठी की गई हो, लेकिन हार्ट ब्लंट हम लोग उसको कहते हैं, इसे मारा गया।
0: ईओ की हत्या के बाद इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उनकी लाश उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ औरंगाबाद के एक पुल के पास पाई गई। ये मौका वारदात पर रात के अंधेरे में ली गई एक तस्वीर है। तस्वीर में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक स्कॉर्पियो गाड़ी किसी गड्ढे में धंसी नजर आ रही है। गाड़ी के ऊपर हुटर वगैरह लगे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी किसी सरकारी अफसर की है। अब आइए इस गाड़ी की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दिन के उजाले की है और इस वक्त इस तस्वीर में गाड़ी के इर्द गिर्द पुलिस का पूरा लवाजमा मौजूद है। कहानी ये है कि शुरुआती तौर पर जो केस सड़क हादसे का लग रहा था वो अब कत्ल के मामले में बदल चुका है और वारदात का शिकार होने वाला भी कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि बिहार के रोहतास जिले के टेहरी डालमिया नगर विकास परिषद के ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार हैं। यानी मामला हाई प्रोफाइल है, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी और सनसनीखेज बात यह है कि इस कत्ल की साजिश में डेहरी के विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह का नाम भी जुड़ने लगा है। टेहरी डालमिया नगर विकास परिषद के ईओ विमल कुमार शनिवार यानी 29 जुलाई की रात को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से डेहरी से दानापुर के लिए निकले थे। साथ में उनका ड्राइवर मिथिलेश कुमार भी था। विमल कुमार का परिवार दानापुर में रहता है, लेकिन इससे पहले कि वो दानापुर अपने घर पहुंचते रात को औरंगाबाद जिले के इसी नहर के पास ये वारदात हो गई। रात को ही उनके ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने पुलिस को फोन किया और गाड़ी के एक्सीडेंट होने की जानकारी दी। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो मामला कुछ ऐसा ही लगा, क्योंकि गाड़ी नहर के गड्ढे में धंसी हुई थी। आनन फानन में पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से विमल कुमार को उठाकर पास के अस्पताल में लेकर गई, मगर डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉट डेड यानी मुर्दा करार दिया।
4: रात को लगभग 10:30 के आसपास हम लोगों को पता चला कि

0: जो ईओ डेहरी साहब हैं वो घायल हैं। सूचना प्राप्त होते ही उनको हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। उनके बाद उसका इंक्वायरी करवाई गई, इंक्वेस्ट करवाई गई। इंक्वेस्ट कराने के बाद यहाँ पे सदर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया। उसके रिपोर्ट के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
1: उधर जब इस मामले के इकलौते चश्मदीद और विमल कुमार के ड्राइवर मिथिलेश से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसकी बातों से कहानी पलटने लगी। जो मिथिलेश कुमार अब तक मामले को एक्सीडेंट का बता रहा था, उसी मिथिलेश ने आगे की पूछताछ में पुलिस को बताया कि मामला एक्सीडेंट का नहीं, असल में लूटपाट का है। उसने पहले ये कहानी सुनाई कि दो अपाचे बाइक पर आए लुटेरों ने उनके साथ लूटपाट की और इसी दौरान विमल कुमार का कत्ल कर दिया। जबकि पूछताछ आगे बढ़ने पर उसने कहा कि लुटेरे दो बाइक पर नहीं बल्कि एक ही पर सवार होकर आए थे। इससे पुलिस का शक उस पर गहरा गया।
2: डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि दो अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि एक अपाची बाइक पर आए थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने यह अपाची वाली कहानी बना करके फोन किया अपने किसी स्टाफ को, जांच पुलिस को इस कहानी की जानकारी मिली।
1: बहरहाल जब तफ्तीश और आगे बढ़ी तो इस वारदात की वजह भी सामने आ गई। पता चला कि विमल कुमार की अपने ही ड्राइवर मिथिलेश के साथ लंबे समय से अनबन चल रही थी। दोनों के बीच कई बार तीखी नोक झोंक भी हुई थी। यहाँ तक कि जिस रात ये वारदात हुई उस दिन भी विमल कुमार ने मिथिलेश को फटकारा था, जिससे वो गुस्से में था।
2: उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर कुछ किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रुका गया, कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में जो आप नहर देख रहे हैं इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है।
1: लेकिन ये तो रही पुलिस की अब तक की तफ्तीश और उससे सामने आई कहानी। विमल कुमार का शव पटना पहुंचने के बाद उनकी पत्नी बबीता ने इस हत्याकांड को लेकर जो इल्जाम लगाया उसने पूरे बिहार में सियासी भूचाल ला दिया। बबीता का ये कहना था कि ड्राइवर इस वारदात का सिर्फ एक मोहरा भर है और कत्ल का असली मास्टरमाइंड टेहरी का विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह है।
3: रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने, आइए हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख। बोले हम गलत नहीं कर, कहाँ से देंगे?
4: कौन है विधायक?
5: कौन है विधायक?
3: वही डिहरी का विधायक, रोज फोन करता था जो नया बना, रोज दिन फोन करता था, रोज कभी कब कहा हमको कि साहब नहीं है। साहब बोले साहब एक्सीडेंट हो गया है, मित्र से नहीं। बोला आप बोल रहे हैं मेरे साहेब को क्या हो गया? बोले साहेब नहीं है।
4: क्या ड्राइवर, क्या ड्राइवर क्या बोला था?
6: ड्राइवर छोड़ के
3: तो भाग गया। मैडम सर नहीं रहे। हम बोले क्या हुआ? तो अपाची वाला मार दिया है। हम बोले एक्सीडेंट हुआ है तो नहीं, अपाची वाला मारा है। हम बोले आप कहाँ थे? आप नहीं बचाए, अब गाड़ी रोके का है तो गाड़ी रोको। हम बोले आप रोके का है गाड़ी? वो कुछ नहीं बोला, भागने लगा। बोले
1: उधर विधायक सोनू सिंह का कहना है कि वो इस वारदात से पहले ईओ विमल कुमार के साथ ही

0: एक प्रोग्राम में थे और उनका कभी विमल कुमार के साथ कोई विवाद नहीं रहा।
1: अब वह किस परिस्थिति में उनकी पत्नी यह बात बोली है, मैं अपनी तरफ से, आप मीडिया के माध्यम से, हमारी पार्टी और एनडीए सरकार निरंतर कटिबद्ध है कि जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
0: मामले की चलती जांच के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विमल कुमार का कातिल अकेले उनका ड्राइवर ही है या फिर इसकी साजिश कुछ वैसी ही है जैसा कि विमल कुमार के घर वाले इशारा कर रहे हैं।
2: जो बातें अभी प्रकाश में आई, इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। तो अभी तक जो बात आई मैंने आपसे शेयर कर दी।
3: और लोगों की सर संलिप्तता हो सकती है क्या इसमें?
2: देखिए, अभी तक जो उसने बताया है और जो क्राइम सीन से जैसा दिखता है तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है, तो कहानी वही है। लेकिन अब इसमें जैसा मैंने आपसे कहा, सारे बिंदुओं पर सत्यापन हम लोग करेंगे। प्रारंभिक अनुसंधान है, इसमें ड्राइवर की बातें बदल रही थी। ड्राइवर ने बताया कि तनावग्रस्त था, अचानक कुछ जो क्राइम सीन पे भी जिस तरह से उसने बताया है, तो पहला तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो रॉड था, रॉड है वास्तव में, रॉड यहाँ पर है कि नहीं, तो अभी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं।
0: औरंगाबाद से अभिनेश कुमार सिंह के साथ रंजन कुमार, सासाराम, आज तक।
4: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
6: और इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब उल हसन के घर पर आगजनी की कोशिश की गई है। शाकिब अल हसन ने आज ही पूर्व पीएम शेख हसीना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, उसके बाद उनके घर पर आगजनी की कोशिश हुई है। जानकारी है कि पेट्रोल बम फेंका गया था जिससे कि घर में आग लग गई। जानकारी ये भी मिली है कि कार्यक्रम जिस वक्त इस आगजनी को अंजाम दिया गया, घर में कोई मौजूद नहीं था। तो दिसंबर में लौटने की बात शेख हसीना ने आज कही है भारत से, और साथ ही साथ अपनी पार्टी से प्रतिबंध हटाने की उन्होंने मांग की है। आज इस जो महत्वपूर्ण उनका कार्यक्रम भारत से जारी था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था, जिस तरह की जानकारी है। उसके बाद कई अलग अलग जगहों पर जबरदस्त प्रदर्शन और हंगामा देखने को मिला है। फिलहाल जानकारी यह है कि पूर्व क्रिकेट कप्तान बांग्लादेश के शाकिब उल हसन के घर पर आगजनी की गई है, पेट्रोल बम से हमला किया गया है, आग लगा दी गई है उनके घर को। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
7: The government controlled everything. They didn't want too much private industry.
8: The big family groups at that time, who traditionally were dominating Indian industry at that time. Slowly, I think new entrepreneurs came up.
7: There were businessmen who were coming into prominence and rising. Nobody had heard of Vijay Mallya's father, Vittal Mallya, at that time, because he very quietly operated to get this monopoly on the brewery and liquor business.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का

0: का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा बच्चों के कंधे पर बंदूक ना करें राजनीति, पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते, नेता विपक्ष ने पहले अमित शाह पर साधा था निशाना। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने माफी मांगी, मानी अपनी गलती, केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को कल फिर से पेश होने का दिया समन। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड, कहा पवन पांडे होंगे अयोध्या से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार, उनकी जीत का किया दावा। दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना, ऑडियो संदेश में कहा मुझे बेदखल करने के लिए छात्र आंदोलन को बनाया गया था हथियार, पाकिस्तान की तरह बन चुका है बांग्लादेश। और आज तक की खबर का डबल असर, पीएमओ के दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों के लिए खत्म होगा इंटरव्यू, उत्तराखंड परिवहन विभाग के रोडवेज कर्मचारियों को भी जल्द वेतन भुगतान के आदेश।

संभाजी नगर में सीजेपी की दो दिवसीय रणनीति बैठक, देशव्यापी अभियान की रूपरेखा पर मंथन किया गया। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने राजनीतिक पार्टी बनाने से किया इनकार, बोले कांग्रेस जनता पार्टी प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगी, देश को जन आंदोलन की जरूरत है। मुंबई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बयान के बाद एनसीपी का विरोध प्रदर्शन, जीशान सिद्दीकी के आह्वान पर जुटे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, कई हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम सुनेत्र पवार के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सियासी घमासान, एनसीपी ने कांग्रेस को दी सोच समझकर बोलने की नसीहत। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी जारी, आज से आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया। देशभर में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हुई, गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं मूर्ति कलाकार। बप्पा की मूर्ति निर्माण में श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी रखा जा रहा है खास ख्याल, कोर्ट ने भी पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा निर्माण पर जोर दिया है। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश से फसलों को नुकसान, जलमग्न हुई है कई एकड़ फसल। गुजरात के राजकोट में इलेक्ट्रिक बाइक में आग लग गई थी, घर में धुआं भरने के बाद मच गई थी अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुंबई के नाला सोपारा वसई के बीच युवक ने ट्रेन के सामने खड़े होकर रोकी लोकल ट्रेन, मोटरमैन की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। महाराष्ट्र के सतारा में गहरी खाई के बीच युवकों का कार से खतरनाक स्टंट वीडियो वायरल हुआ। नागपुर में नाबालिग को बंधक बनाने के आरोप में युवक गिरफ्तार, फूड डिलीवरी बॉय के सुराग से पहले पुलिस ने किशोरी की जान बचाई। गुजरात के गिर सोमनाथ में समुद्र में अचानक से आई लहरों और तेज करंट की वजह से पानी में फंस गए थे 3 बच्चे, मछुआरों की बहादुरी से बची तीनों की ही जान। गुजरात के भावनगर में ट्रेन चालक ने एशियाई शेरों के झुंड को देखकर रोकी थी ट्रेन, समय रहते ट्रेन के रुकने से बची रेल ट्रैक पार कर रहे शेरों की जान। गुजरात के वडोदरा में सड़क पर आया था 12 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग ने रेस्क्यू करके नदी में छोड़ा। नागिन बनकर बॉक्स ऑफिस पर जाने की तैयारी में श्रद्धा कपूर, फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हुई, जल्द शूटिंग शुरू होगी, श्रद्धा ने इस रोल के लिए खुशी जताई। कल मिर्जापुर द मूवी का पहला गाना 2 नंबर रिलीज हुआ, 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी फिल्म। जाने तू या जाने ना का फिल्मों में कदम रखने वाले इमरान खान लगभग एक दशक के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे अधूरे हम अधूरे तुम नाम की एक रोमांटिक

कॉमेडी में नजर आएंगे। तबू ने पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। बिना अनुमति अपने नाम फोटो के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू ने रच दिया है इतिहास। अब तक 1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है इस फिल्म ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। पेपरलीक आंदोलन के बाद सुर्खियों में आई कांग्रेस जनता पार्टी अब अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। आज सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के घर पर छत्रपति संभाजी नगर में अहम बैठक हुई है और ये बैठक कल भी जारी रहने वाली है। इस बैठक में देश भर में छात्र आंदोलनों को समर्थन देने और संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई, लेकिन आज अभिजीत दिपके ने यह ऐलान कर दिया है कि वो राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहे, फिलहाल वो प्रेशर ग्रुप से सरकार पर दबाव बनाएंगे।
1: मैं

0: क्योंकि आज जंतर मंतर के बाद कॉकरोच जनता पार्टी रांची में भी छात्रों की आवाज बुलंद करेगी, क्योंकि आज महाराष्ट्र के संभाजीनगर में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के घर पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक से पहले अभिजीत दिपके मीडिया के सामने आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो आने वाले समय में राजनीतिक पार्टी भी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि सीजेपी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगा जो सरकार पर आम लोगों के मुद्दों पर दबाव बनाएगा।
1: सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है, और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टी है उसको तोड़ा जाता है ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो लोग डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चली, एक सोशल मूवमेंट चली।
0: जब मीडिया ने दिपके से पूछा कि क्या वो झारखंड में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करने वहां जाएंगे, इस पर दिपके बोले, हम निश्चित रूप से झारखंड जाकर छात्रों की मांगों का समर्थन करेंगे।
1: डेफिनेटली वी विल गो टू झारखंड एंड वी स्टैंड विद द स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग देयर एंड वी सपोर्ट देयर एवरी डिमांड। जो हमारे पहले ही आंदोलन को सफलता मिली है उसके बाद लोगों की हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी है, और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए अब जैसे हमें पूरे देश भर से समर्थन मिला था, ये जो आंदोलन हुआ था वो बस जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा था, वो पूरे देश भर में हुआ था, पूरे देश भर के लोगों ने हमें समर्थन दिया था अपना। तो उसके चलते अब हम देश भर में कैसे अपना संगठन बढ़ा सकते हैं, हर राज्य में कैसे अपना संगठन बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ आगे जाकर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रोड मैप हो सकता है, क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम।
0: आज की बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी में चर्चा हुई कि आगे उन्हें किन किन राज्यों में आंदोलन के लिए कूच करना होगा।
2: अभिजीत दिपके ने एक बात लाइन क्लियर कर दी है कि हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक संगठन नहीं बनाना चाहते। हम एक प्रेशर ग्रुप रखेंगे, वो प्रेशर ग्रुप सरकार जिस तरीके से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उनकी नीतियां क्या है, मूल्य क्या है, उन सब पर कड़ी निगरानी रखेगा। इतना ही नहीं बल्कि प्रेशर ग्रुप, अभी तो उन्होंने ये कहा है कि एजुकेशन सेक्टर में जो कुछ भी हो रहा है, अभी झारखंड में जो प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है वो हो, या फिर महाराष्ट्र में सीटी एग्जाम को लेकर अभी बवाल हो रहा है, रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अब सवाल उठाए जा रहे हैं, जरा डिफरेंट स्पेकुलेशन कि इसमें भी पेपर लीक होने की आशंका है, टेंडर कैसे सेट हुए। तो कॉकरोच जनता पार्टी आने वाले वक्त में इन सभी घटनाओं पर नजर रखेगी।
0: इससे पहले शिक्षाविद और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी रांची में बैठे आंदोलनकारियों से फोन पर बात की।
3: तरीका है सरकार ने कि आत्मा को जगाना, अधिकारियों की आत्मा को जगाना, और उसके लिए आपको जिला लेना होगा।
4: ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं नींद में हुई थी, 26 सालों से कई लगातार पेपर
5: ये ऊपर ऊपर।
4: कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जब नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
3: अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी, आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी।

0: कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दूसरे सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास को निशाना बनाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की।
1: जिसकी दुकान सिर्फ लोगों के बारे में झूठ फैलाकर चलती है, उस व्यक्ति द्वारा अभी कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में सौरभ दास पर लगातार गलत आरोप लगाए गए, सौरभ के घर को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और उसी मिस इन्फॉर्मेशन के कारण आज सुबह कई यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स सौरभ के घर पहुंच गए। उनमें से कुछ लोगों ने घर में घुसने की भी कोशिश की और पूरी तरह से सौरभ की और उसके परिवार की निजता का उल्लंघन किया।
0: वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि देश भर से बड़ी संख्या में युवा सीजेपी से जुड़ रहे हैं और अब उन्हें संगठित करने के लिए स्पष्ट कार्य योजना तैयार की जाएगी।
2: उसके बारे में चिंतन करने के लिए, उस चीज के बारे में एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग सारे आज आए हैं औरंगाबाद। यहाँ पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे, दो दिन का मीटिंग है, कल और परसों होगा, एंड उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे इस मूवमेंट को ग्रास रूट पे कैसे ले जाए।
3: अभिजीत फेरी आने पाहुण की सेवा कर देगा।
0: मीटिंग से पहले अभिजीत दिपके पत्रकारों को अपने हाथ से चाय बांटते दिखे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोग ये वीडियो शेयर कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। इस बीच विपक्ष को भी ये लग रहा है कि जो प्रेशर वो सरकार पर नहीं बना पाए उसे सीजेपी ने कर दिखाया।
4: कॉकरोच और छिपकली, इनको तो हम ज्यादा नहीं जानते। हम सिर्फ ये जानते हैं कि सकारात्मक राजनीति हमें करनी है। बच्चों के मुद्दे सही हैं, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था जो अच्छी होनी चाहिए थी अभी नहीं हुई है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारी खुद की अपनी पार्टियां हैं, तो कॉकरोच माकरोच को लेकर हम क्या जीवन में राजनीति करेंगे, हम अपनी खुद की राजनीति करेंगे।
5: मुझे लगता है कि अभी कोई सूरत का एक आरटीआई का कोई वर्कर है, कार्यकर्ता है, उन्होंने मतलब उनके संबंध में कुछ टिप्पणी की है कि भाई वो अमेरिका कैसा गया था, पैसा उन्होंने कहाँ से लाया था, तो उसका कोई बीजेपी से, आरपीआई से या कोई एनडीए से कोई तो संबंध नहीं है। मतलब जो आरटीआई का कार्यकर्ता है वो ऐसा ही कार्यकर्ता है, ऐसे ही कार्यकर्ता मांग करते रहते हैं।
0: फिलहाल कांग्रेस जनता पार्टी की हर गतिविधि पर सरकार और पुलिस की नजर है, इसीलिए बीजेपी का कोई भी नेता सीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने से बच रहा है।
6: जब वांगचुक ने इस आंदोलन का बैकिंग दिया है, वो उनके विद्यार्थियों के पीछे खड़े हैं, तो क्या अभिजीत दिपके, उनकी सीजेपी भी इनके पीछे खड़े रहेगी? तो दिपके का ये साफ साफ कहना था कि अगर जरूरत होगी तो हम वहां जाएंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक हमारे मेंटोर है और वो जो कहेंगे उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। आज की मीटिंग में भी यही तय होगा कि अब झारखंड हो जहां आंदोलन शुरू है वहां क्या करना है, रोड मैप कैसा रहेगा, स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, और आने वाले वक्त में सिर्फ एजुकेशन या फिर शिक्षण व्यवस्था के बाद भी, यानी कि आरोग्य हो, कुछ अलग अलग गांव के किसानों के इश्यू हो, एग्जैक्टली कौन कौन से मुद्दे पर सीजेपी ये पूरे आंदोलन को आगे लेके जाएगी, देखना बहुत अहम रहेगा। कैमरा पर्सन राजू रेवणकर के साथ में ओंकार बाबले, छत्रपति संभाजीनगर, आज तक।
7: अब बात करेंगे एक और हंगामे की, जो शीश महल को लेकर है। जी हां, मुंबई में मेयर रितु तावड़े के सरकारी बंगले के नवीनीकरण को लेकर सियासी जंग शुरू हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने खर्च को लेकर कहा है कि क्या दूसरा ताजमहल बनाया जा रहा है, जो मेयर के बंगले पर जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। हालांकि मेयर रितु तावड़े ने आदित्य ठाकरे के आरोपों को बताया है बेबुनियाद।

0: देश ही नहीं एशिया के सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी में दशकों तक ठाकरे परिवार का कब्जा रहा, लेकिन जब से बीजेपी बीएमसी के सत्ता में आई है तब से ठाकरे परिवार लगातार मुंबई की मेयर रितु तावड़े पर हमलावर है। ताजा विवाद मेयर बंगले को लेकर है। शिवसेना यूबीटी और बीएमसी प्रशासन के बीच राजनीतिक विवाद के बाद बायकुला में मेयर के बंगले पर होने वाले अतिरिक्त खर्च पर रोक लगा दी गई है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब नगर निकाय ने मेयर के आवास के आसपास के विकास कार्यों के लिए 2,89,00,000 रुपए के टेंडर जारी किए, जबकि इस साल की शुरुआत में ही इसके नवीनीकरण पर 3,40,00,000 से ज्यादा खर्च किए जा चुके थे। अब शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने मेयर आवास पर लगातार हो रहे भारी भरकम खर्च पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इसे पर्यटक स्थल या ताजमहल की जगह बदला जा रहा है।
1: आपको एक अंदाज देता हूँ, एमपी लैड फंड 5 करोड़ का होता है, महाराष्ट्र में एमएलए को भी 5 करोड़ मिलते हैं, और इससे बढ़कर लगभग 6 करोड़ तक जो रकम है वो मेयर हाउस के सिर्फ मुरम्मत पे जा रही है। ये कौन सी बात है? यानी आप अगर अच्छी बीएसटी बस की सुविधा पूछे, कचरा उठाने की बात करें, पानी की समस्या के बारे में बात करें तो कहते पैसा नहीं है, लेकिन खुद के बंगले पे, खुद के गाड़ी पे खर्चा करने के लिए बहुत पैसा, और ये पैसा सब मुंबई करों का है, ये टैक्स पर मनी।
0: अब विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है।
2: मुंबई के भाईकला स्थित इस मेयर बंगले की बात करें तो फिलहाल ये एक नए राजनीतिक विवादों से घिरा हुआ है। इस बंगले पर पिछले अप्रैल में ही 3.5 करोड़ रुपए नवीनीकरण के लिए खर्च किए गए थे, बावजूद उसके अब एक नया टेंडर निकला है जिसमें लगभग 3.25 करोड़ और खर्च किए जाने वाले हैं, जिसको लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। विपक्ष अब मेयर पर निशाना साध रहा है। यूबीटी शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे और बीएमसी की विपक्षी नेता किशोरी पेडणेकर ने इस पर सवाल या निशान खड़ा किया है। आदित्य ठाकरे का तो कहना है कि क्या मुंबई के मेयर का ये बंगला कोई ताजमहल है या इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने जा रहे हैं, जो इस पर इतना खर्च किया जा रहा है, इसको इतना सजाया जा रहा है। हालांकि ये एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है और इसके आसपास के परिसर में कुछ कामों के लिए एक नया टेंडर निकला था, और इस टेंडर दस्तावेज पर अगर नजर डाले तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जू डिपार्टमेंट की तरफ से इस परिसर में, यहाँ पर चाहे साउंड या नॉइज बैरियर्स हो, या तो ड्रेनेज लाइन हो, या तो पानी की टंकियाँ हो, इसे नए से बनाना होगा, और उसके लिए लगभग 3.5 या 3.25 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाने हैं।
0: जूनियर ठाकरे के आरोपों के जवाब में बीएमसी मेयर रितु तावड़े ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मुंबई कर को गुमराह करने का आरोप लगाया।
3: नहीं, आदित्य ठाकरे ने जो भी आरोप लगाया उसका मैं यहाँ पे स्वीकार नहीं करती हूँ, क्योंकि उन्होंने पहली बात तो 5.5 करोड़ है भी नहीं इसके ये टेंडर में, तो कुछ भी वो अपने पार्टी के जो विरोधी पक्ष नेता और या तो कोई उनके जो नगर सेवक उनके माध्यम से जो उनको पूरा मटेरियल मिलता है उसके ऊपर अगर वो बात करते होंगे तो मुझे इस चीज का बहुत दुख लगता है कि उबाटा के इतने बड़े नेता जवाबदार उन्होंने इस तरह से स्टेटमेंट करना बहुत ही गलत है। ये जो पूरा टेंडर है ये महापौर हेरिटेज बंगले का है नहीं, इस टेंडर में डायरेक्टर ऑफ जू की साइन है, ये पूरा टेंडर रानी के बाग का है। अभी महापौर का जो बंगला है उसको लेके जो पूरा परिसर अप टू रानी का बाग ये डायरेक्टर जू के अंडर आता है, तो उसके लिए जो काम उन्होंने प्रस्तावित किए ये विषय यहाँ पे ये जो टेंडर निकला है इसमें कहीं भी महापौर और महापौर निवास इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है।
0: मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने बताया कि इस प्रशासनिक प्रक्रिया में उनकी सीधी भागीदारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने नगर निकाय अधिकारियों को तुरंत टेंडर वापस लेने का निर्देश दिया क्योंकि दस्तावेज में मेयर के बंगले का जिक्र था। इस बात की पुष्टि करते हुए जू अधिकारियों ने अपनी गलती मान ली है।
2: मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने इन सारे आरोपों को खारिज करते हुए ये साफ कर दिया है कि ये जो टेंडर निकला था वो ना कि मेयर बंगले के लिए निकला था, लेकिन मेयर बंगले के बगल में जो रानी लक्ष्मीबाई का एक जू है, यानी जू डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर एक प्रसिद्ध जू है, उसके परिसर में कुछ काम करने के लिए निकाला गया था। गलती से उस दस्तावेज में मेयर बंगलो ये नाम आ गया, उसका उल्लेख हुआ, और उसी को लेकर ये विवाद अब खड़ा हुआ है। अब इस विवाद के बाद मेयर रितु तावड़े ने ये निर्णय लिया है कि इस टेंडर को पूरी तरह से रद्द किया जाएगा, इस पर स्टे लगाई जाएगी। हालांकि निर्णय तो लिया गया है लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
4: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ एनसीपी का हल्ला बोल लगातार अभी भी जारी है। लगातार दूसरे दिन भी एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जाकर सपकाल से माफी की मांग की गई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस की सहयोगी उद्धव ठाकरे की पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सपकाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, जिससे विपक्षी गठबंधन की एकता पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए।
0: महाराष्ट्र में गुंगी गुड़िया पर मचा कोहराम थमता नहीं दिख रहा। आज भी एनसीपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई के दादर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर सपकाल माफी मांगो और सपकाल मुर्दाबाद जैसे नारे लगाकर हंगामा किया। एनसीपी विधायक जिशान सिद्दीकी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने हर्षवर्धन सपकाल की तस्वीर पर काली पोती और उनसे सुनेत्रा पवार को गुंगी गुड़िया कहने वाले बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए मुंबई पुलिस ने प्रदर्शनकारी एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। देखिए कैसे पुलिस एनसीपी कार्यकर्ताओं को खींचते हुए हिरासत में ले जा रही है, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी सपकाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
5: तो महाराष्ट्र की जनता ने हर्षवर्धन सपकाल को नकारा है। अभी उन्होंने डट्टी पॉलिटिक्स शुरू की है, उनको महाराष्ट्र में कोई पहचानता नहीं है। हमारी ताई का नाम लेके उनको थोड़ा फेम गेम चाहिए था, बस यही। हम इसी के लिए उनका निषेध करने आए जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है।
6: हर्षवर्धन सपकाल को शासन का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। वो अनशन ऐसे कुछ भी बात करते रहते हैं, कभी भी वो उनका जो शब्द था उनके लिए निषेध करने के लिए आप देख सकते हैं हमने गदा लाया और उनको भी साथ में पहुंचाएंगे अभी कार्यालय तक।
0: दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार का एक वीडियो शेयर कर उन्हें गुंगी गुड़िया कहा गया था, जिसके बाद सुनेत्रा पवार ने कहा था कि वक्त आने पर करारा जवाब मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र की सियासत में गुंगी गुड़िया पर आर पार वाली सियासत हो रही है। दिल्ली से मुंबई तक वार पलटवार का दौर जारी है। विपक्ष की महिला नेता भी सपकाल के बयान को निजी हमला बताकर निंदा कर रही है।
7: पर्सनल रिमार्क है, पॉलिटिक्स में आप इशू पे लड़ाई लड़े, ऐसे ऐसे पर्सनल उन पे वार कर कहां तक सही है। सुनेत्रा पवार जी काफी जिम्मेदारी से राज्यसभा में रही हैं और राजनीति में, हाँ ये बात सही है कि लेट आई हैं। अब वो भी, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उप मुख्यमंत्री है, वो भी ऐसे राज्य की जो एक बड़ा राज्य है, वहां पर किसी को भी समय लगता है अपना जो भी उनके व्यूज हैं सब कुछ एस्टेब्लिश करने में। आई थिंक उनको इस तरीके की बातें करना किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। वी शुड अवॉइड दिस वुमन रिलेटेड टारगेटिंग जो चलती रहती है राजनीति में, ये इसको अवॉइड करना चाहिए।
8: जो स्टेटमेंट कांग्रेस के नेताओं ने किया है मिसेज अजीत पवार जी के बारे में वो बहुत ही गलत है और मैं समझता हूँ कि राजनीति का स्तर कांग्रेस के नेताओं की वजह से इतना गिर गया है। मैं समझ, ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं था कि इनको, ठीक है विरोध राजनीतिक विरोध रहता है, बट व्यक्तिगत तौर पे इन्होंने जो बयान दिया है वो उचित नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है।
9: वुमेन एम्पावरमेंट की बात जिस दौर में हर पार्टी करती है, उस दौर में एक महिला डिप्टी सीएम को गुंगी गुड़िया कह के क्रिटिसाइज कर रही
8: है। यही तो बोल रहा हूँ ना मैं कि ये जो कहावत, आपको तो याद होगा इंदिरा जी के बारे में भी उस टाइम ऐसा कुछ बात कही थी, उस वक्त सभी ने आलोचना की थी कि ये बात, और इंदिरा जी ने अपना मेटल प्रूव किया था, ये पुरानी हिस्ट्री है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो इनको बात ऊंचाई, इनकी कद कम है, इनके पास मैच्योरिटी नहीं है और जो भी इन्होंने कहा है उससे कोई लोगों की सहमति नहीं है, बात गलत है बिल्कुल।
0: इससे पहले कल भी एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में घुसकर सपकाल को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने सुनेत्रा पवार पर दिए बयान पर माफी नहीं मांगी तो पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन करेंगे।
10: गुंगी गुड़िया बोल के टिका टिप्पणी की है, मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक महिला उपमुख्यमंत्री के प्रति, सुनेत्रा वहिनी अजीत पवार के प्रति कितना मन के अंदर द्वेष है ये प्रकट होता है। आज कुछ दिन नहीं हुए उनको उप मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसे प्रसंग में वो उप मुख्यमंत्री बनी है जब अजीत दादा अपने में से जाने के बाद वो सारा दुख झेल के आज उप मुख्यमंत्री बनके वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में लगी है।
0: विवाद बढ़ने के बाद सपकाल को सफाई देने आना पड़ा था। उन्होंने कहा कि गुंगी गुड़िया एक राजनीतिक जुमला है, हालांकि उनका मकसद किसी पर निजी हमला करना या अपमान करना नहीं था।
11: अशा वेळेस हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणं म्हणजे चूप बसणं आणि तशी भूमिका ही त्यांनी त्या ठिकाणी निभावल्याच्या अनुषंगानं गुंगी गुड़िया हा शब्दप्रयोग त्या ठिकाणी केलेला आहे। गुंगी गुड़िया ही शिवे आहे का, गुंगी गुड़िया हा अपशब्द आहे का, गुंगी गुड़िया हा काही अनपार्लमेंटरी विषय आहे का, नाही, हे एक वर्णन आहे आणि ते वर्णन जसं जसं तो शब्द आहे अगदी तशाच स्वरूपामध्ये हा उपमुख्यमंत्री यांच्यावर तो अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने बसला आहे।
0: सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी गुंगी गुड़िया बयान पर सपकाल को खरी खोटी सुना चुके हैं।
12: बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीने यांची कारवाई चाललेली आहे।
13: अरे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मती भ्रष्ट हो गई है। ये केवल सुनेत्रा ताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है।
0: फिलहाल एनसीपी कार्यकर्ता ना रुकने को तैयार है ना ही झुकने को। सवाल है कि क्या सपकाल सुनेत्रा पवार से माफी मांगकर विवाद खत्म करने का विकल्प चुनेंगे या वो अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। ऋतु भालेकर, मुंबई आज तक।
4: और इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बांग्लादेश से जहां पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब उल हसन के घर पर आगजनी की गई है। शाकिब अल हसन ने आज ही पूर्व पीएम शेख हसीना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, उसके बाद उनके घर पर आगजनी हुई है। और आपको बता दें कि पेट्रोल बम उनके घर में फेंका गया है जिससे आग लग गई थी। हालांकि दिसंबर में शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, ये पूरा एक कार्यक्रम था। पहली बार उन्होंने बांग्लादेश को भारत से संबोधित किया था और उसके बाद अलग अलग जगहों पर आगजनी की खबरें हैं। और आपको ये भी बता दें कि पूर्व क्रिकेट कप्तान रहे हैं शाकिब उल हसन, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, उनके घर पर आगजनी की गई है। और जानकारी ये भी है कि उस वक्त उनके घर पर कोई मौजूद नहीं था। इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: संसद में देश के गृह मंत्री डंके की चोट पर कहते हैं पीओजे के हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि पीओजेके के सुपुर्द करते ही पाकिस्तान से सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जब तब चुनौती देते हुए पूछते रहते हैं कि पीओजेके पर हमारा कब्जा कब होगा। तो जिस सवाल पर पूरा देश एकजुट है, एक ही सुर और लय में बोलता है, उसी सवाल पर उमर अब्दुल्ला के एक सांसद कुछ ऐसा बोलते हैं कि किसी को भी बुरी तरह चुभ जाए। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रिजवान का ये बयान। सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला अपने ही सांसद के ऐसे बयानों का खंडन करेंगे। पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर न करें राजनीति। पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते नेता, विपक्ष ने पहले अमित शाह पर साधा था निशाना। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने माफी मांगी, मानी अपनी गलती। केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को आज फिर से पेश होने का दिया है समन। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड, कहा पवन पांडे होंगे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जीत का दावा किया। दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना, ऑडियो संदेश में कहा मुझे बेदखल करने के लिए छात्र आंदोलन को बनाया गया हथियार। कार्यक्रम में शामिल होने पर पूर्व क्रिकेटर शाकिब उल हसन के घर पर आगजनी की कोशिश। और आज तक की खबर का डबल असर, पीएमओ के दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों

राज्यसभा से जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पारित, सुप्रीम कोर्ट में अब 34 की जगह होंगे 38 जज। जंतर मंतर की घटना पर राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गृहमंत्री अमित शाह को घेरते हुए कहा न हिंसा पर बोलते हैं न संसद आते हैं। राहुल गांधी ने कहा प्रदर्शनकारी छात्रों का उत्पीड़न हुआ, ये भारत के भविष्य के लिए लड़े। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा प्रदर्शन में कोई फायरिंग नहीं हुई और छात्रों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा ने राहुल गांधी से पूछा झारखंड के छात्रों की परेशानी जानने रांची क्यों नहीं चले जाते राहुल, बच्चों के नाम पर राजनीति न करें। मेटा के अधिकारियों की डीप फेक और कंटेंट गड़बड़ियों पर माफी मांगी गई, केंद्र सरकार का मेटा अधिकारियों को आज फिर से पेश होने का समन जारी। आज से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज, सीएम सोरेन सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक में शामिल हुए, सदन की रणनीति और कई विषयों पर चर्चा। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र में जेपीएससी मुद्दे पर घमासान के आसार, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी परीक्षा धांधली का मामला उठाकर हेमंत सोरेन को घेरेगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों का रांची में विरोध प्रदर्शन, बोले धांधली हुई परीक्षा रद्द कराए, सीबीआई जांच हो। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचा सरकार का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, सीएम सोरेन बोले दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। सीएम सोरेन बोले गड़बड़ी करने वाले जेल में है, समस्या का जल्द समाधान होगा। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर सीएम सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की, पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया पर जोर दिया। जेपीएससी पेपर लीक मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड सरकारी कर्मचारी अभय तिवारी को गिरफ्तार किया गया, आरोपी वर्तमान में गोड्डा जिले के पोडैयाहाट में बीएसओ के पद पर कार्यरत है। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड, कहा पवन पांडे होंगे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जीत का दावा भी किया गया। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा सदन में हंगामा कर असली चेहरा दिखाया, एसपी ने युवाओं किसानों महिलाओं और गरीबों के हितों में चर्चा नहीं होने दी। अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, बोले पीडीए में पी का मतलब पंडित भी है, कहा जितना पंडितों को सताओगे पीडीए उतना ही मजबूत होगा। लखनऊ में अखिलेश के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का हमला, बोले एसपी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हैं। आज तक की खबर के बाद एनएचएआई का बड़ा एक्शन, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नहीं लगेगा टोल, मरम्मत पूरी होने तक किया गया है सस्पेंड। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच कई संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने उभरते ज्ञान क्षेत्र विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन उद्घाटन किया, संबोधन के दौरान कहा नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवा नैतिक मूल्यों से जुड़ने के साथ साथ समय की मांग के अनुरूप शिक्षित हो रहे हैं। समलिंसा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में पूर्व नियोजित साजिश का खुलासा, सांसद बर्क और विधायक इकबाल के बेटे का नाम सामने आया, 24 नवंबर 2024 को हुआ था पथराव, गोलीबारी और आगजनी भी हुई थी। परीक्षा में धांधली के खिलाफ चंडीगढ़ में प्रदर्शन, पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है एबीवीपी, पुलिस ने आंदोलनकारियों पर पानी की बौछारें की। आज तक की खबर का असर, पीएमओ की दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों के लिए खत्म हो गए इंटरव्यू, उत्तराखंड परिवहन विभाग के रोडवेज के कर्मचारियों को भी जल्द वेतन भुगतान के आदेश। छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की 2 दिवसीय रणनीतिक बैठक, देशव्यापी अभियान की रूपरेखा पर मंथन। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने राजनीतिक पार्टी बनाने से इनकार किया, बोले कांग्रेस जनता पार्टी प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगी। मुंबई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बयान के बाद एनसीपी का विरोध प्रदर्शन, जीशान सिद्दीकी के आह्वान पर जुटे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनीता पवार के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सियासी हंगामा, एनसीपी ने कांग्रेस को दी है सोच समझ कर बोलने की नसीहत। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स के अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी जारी, आज से आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया। अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला, राम दरबार दर्शन के लिए विशेष पास व्यवस्था खत्म हुई, जबकि रामलला की आरती के लिए अब मिलेगा तत्काल पास। यूपी के सहारनपुर में डीआईजी और कमिश्नर ने कांवड़ यात्रा रूट पर किए गए इंतजामों का जायजा लिया, कांवड़ शिविरों का भी निरीक्षण किया गया। 26 सितंबर से जोधपुर में गर्जेंगे दुनिया भर के फाइटर जेट्स, पाकिस्तान बॉर्डर के पास होगी आईएएफ की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल ड्रिल, तरंग शक्ति 2.0। मणिपुर में बॉक्सर जदुमणि सिंह का शानदार स्वागत, कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए जीता सिल्वर मेडल, इम्फाल में फूलमालाओं के साथ जश्न। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाए जा रहे अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों के लिए डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। देशभर में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हुई, गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं मूर्तिकार। बप्पा की मूर्ति निर्माण में श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी रखा जा रहा है खास ख्याल, कोर्ट ने भी पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा निर्माण पर जोर दिया। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम का आयोजन, इसी स्कूल में धनुष ने 10वीं की
पढ़ाई की थी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने शिवसागर में बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित संतक और नेपाली कुटी इलाकों का दौरा किया, नुकसान का जायजा लिया गया। जेपी नड्डा ने केंद्र के हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया, बोले असम के साथ मजबूती के साथ खड़ी है सरकार, राहत तथा पुनर्वास कार्यों में नहीं होगी कोई कमी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में उरी में फ्लैश फ्लड से बिगड़े हालात, निचले इलाकों में घुसा तेज बहाव का पानी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, नंदीमार्ग नाले का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत। हरिद्वार में स्नान के दौरान गंगा नदी के तेज बहाव में डूबा कांवड़िया, पीएसी के आपदा राहत दल ने रेस्क्यू किया। देहरादून में भारी बारिश से तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास उफान पर नदी, प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। देहरादून के मसूरी के पास भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा टला, सरकारी आवास पर अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिरा, बाल बाल बचा परिवार। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हुआ, कई इलाकों में जलभराव हुआ, मुख्य सड़कों पर लंबा जाम। दिल्ली में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, एमी रोड समेत कई जगहों पर सड़क पर भरा 3 फीट से ज्यादा पानी, यातायात बाधित हुआ। यूपी के बांदा में जोरदार बारिश के बाद जलभराव, सड़कें तालाब बन गई, कई घरों में घुस गया पानी, प्रशासन के दावों की पोल खुली। नेपाल में बारिश से पहाड़ी नदियों में उफान है, कई गांव में घुस गया बाढ़ का पानी, इलाके जलमग्न। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश से फसलों को नुकसान हुआ, जलमग्न हुई कई एकड़ फसलें। धनबाद में शॉर्ट सर्किट से बहुमंजिला इमारत के बिजली मीटर में लगी थी भीषण आग, दमकल की तत्परता से चला बड़ा हादसा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर खड़ी खाली बस में आग लगी थी, समय रहते सुरक्षित स्थान पर हटाने के बाद बड़ा हादसा टला। गुजरात के राजकोट में इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगी, घर में धुआं भरने के बाद अफरा तफरी मची, फायर ब्रिगेड ने 6 लोगों को बाहर निकाला। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ मंदिर परिसर में गूंजे थप्पड़, घूसे पुजारी के बेटे और गार्ड्स के बीच मारपीट। ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट से खरीदे लड्डू में मिली फफूंदी, यात्री ने सोशल मीडिया पर शिकायत की, कार्रवाई और रिफंड की भी मांग की। गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेस वे पर अज्ञात वाहन से टकराई थी बाइक, हरिद्वार जा रहे 3 कांवड़ियों की हाईवे पर मौत। जयपुर में अस्पताल के गेट पर अचानक से भरभराकर गिरा छज्जा, इलाज कराने पहुंची महिला चपेट में आई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मादा भालू के हमले के बाद 2 ग्रामीणों की मौत हुई, एक की हालत गंभीर है, शावक की मौत के बाद भालू के आक्रामक होने की खबर। बिहार के बगहा में शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, ट्रैक्टर के इंजन में छुपाई गई लगभग 590 लीटर शराब बियर जब्त। शामली में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश फुरकान ढेर हुआ, जिसमें जिसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, लूट समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। हैदराबाद में होटल कर्मचारी पर हमला, आधार कार्ड मांगने पर कमरे की बुकिंग के लिए पहुंचे 4 लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। अलवर में डीजल से भरा हुआ टैंकर खेत में पलट गया, ग्रामीणों ने तेल भरने की लूट मची, घटना का वीडियो वायरल। मिर्जापुर में पुल निर्माण के गड्ढे में डूबने से 2 मासूमों के चचेरे भाइयों की जान चली गई, घर से खेलने गए बच्चों का शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम। मेरठ में अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। मुंबई में नाला सोपारा वसे के बीच युवक ने ट्रेन के सामने खड़े होकर रोकी लोकल ट्रेन, मोटरमैन की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। महाराष्ट्र के सतारा में गहरी खाई के बीच युवकों का कार से खतरनाक स्टंट वीडियो वायरल। नागपुर में नाबालिग को बंधक बनाने के आरोप में युवक गिरफ्तार, फूड डिलीवरी बॉय के सुराग से पुलिस ने बचाई किशोरी की जान। गुजरात के गिर सोमनाथ में समुद्र में अचानक से आई लहरों और तेज करंट की वजह से पानी में फंसे 3 बच्चे, मछुआरों ने बहादुरी से बचाई तीनों की जान। गुजरात के भावनगर में ट्रेन चालक ने एशियाई शेरों के झुंड को देखकर रोकी थी ट्रेन, समय रहते ट्रेन के रुकने से बची रेल ट्रैक पार कर रहे शेरों की जान। गुजरात के वडोदरा में सड़क पर आया था 12 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग ने रेस्क्यू करके नदी में छोड़ा। नागिन बनकर बॉक्स ऑफिस पर छाने की तैयारी में है श्रद्धा कपूर, फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी, जल्दी शूटिंग शुरू होगी, श्रद्धा ने इस रोल के लिए जताई है खुशी। फिल्म मिर्जापुर द मूवी का पहला गाना 2 नंबरी रिलीज हुआ, 4 सितंबर को फिल्म को रिलीज किया जाएगा। जाने तू या जाने ना के साथ फिल्मों में कदम रखने वाले इमरान खान लगभग 1 दशक के बाद बड़े पर्दे पर करेंगे वापसी, अधूरे हम अधूरे तुम नाम की एक रोमांटिक कॉमेडी में नजर आएंगे। तब उन्हें पर्सनैलिटी राइट्स मामले में खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, बिना अनुमति अपने नाम फोटो के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग उठाई। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने इतिहास रच दिया है, अब तक $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई कर डाली है। आरबीआई ने उम्मीद के मुताबिक ही रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा, लोन की एमआई में फिलहाल कोई भी राहत नहीं मिलेगी, महंगाई और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया। संसद में रखे गए प्रस्ताव के पारित होने के बाद 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगेगी फीस, व्यापारियों पर लगेगा मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ग्राहकों को सीधे शुल्क नहीं लगेगा। जुलाई में आयरिंग में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एआई और मशीन लर्निंग रोल्स में सबसे तेज उछाल, शहरों में कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में भर्तियों की रफ्तार सबसे तेज।
सरकार ने साफ कर दिया कि E20 से ज्यादा एथेनॉल वाले वाहनों के लिए फिलहाल कोई अलग से नीति नहीं है। E20 पेट्रोल से इंजन को कोई नुकसान नहीं होने का दावा भी दोहराया गया। मेट्रो सर्विस के 2.5 घंटे प्रभावित रहने के बाद NMRC ने M3M को नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब मांगा है। कंस्ट्रक्शन साइट से टूटी क्रेन की स्लिंग के ओवरहेड लाइन में फंसने के बाद एक्शन लिया गया। बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार शेख हसीना ने दिया सार्वजनिक संबोधन। का बांग्लादेश बन चुका है पाकिस्तान, भारत के लिए चिंता जरूरी है। कहा सत्ता परिवर्तन के लिए रची गई हिंसा की साजिश, दिसंबर में वापस जाऊंगी बांग्लादेश। पूर्व बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल से हमला किया गया, तोड़फोड़ और पथराव की भी खबर। बांग्लादेश की अवामी लीग ने किया हमले का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा जल्द खुल सकता है हॉर्मुज। इससे पहले ट्रंप ने कहा था ईरान ने बातचीत में की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर वार्ता विफल रही तो ईरान को चुकानी होगी बड़ी कीमत। यमन के उती लड़ाकों का बड़ा दावा, लाल सागर में मौजूद सऊदी अरब के तेल टैंकर्स को मिसाइल से बनाया गया निशाना, सऊदी अरब की तरफ से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। अमेरिका के विपक्षी सांसदों की मांग बढ़ा सकती है राष्ट्रपति ट्रंप की परेशानी, 2 डेमोक्रेट सांसदों ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेक और पेंटागन से मांगी ईरान युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की जानकारी। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास मौजूद लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को निशाना बनाया, 8 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन के पास एयर डिफेंस से जुड़े हथियारों की भारी कमी, बीते साल से 3 गुना कम हो रही है आपूर्ति। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बहन किम योंग जोन ने जापान के टोमाहॉक मिसाइल परीक्षण की आलोचना की, बोली जापान अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की रखता है मंशा। चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों का दिया कड़ा जवाब, अमेरिका को होने वाले ड्रोन निर्यात को किया नियंत्रित, 6 अमेरिकी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया। चांद से टकराया स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन का एक हिस्सा, पिछले साल से अंतरिक्ष में तैर रहा था रॉकेट का यह हिस्सा, तेज रफ्तार से चंद्रमा से टकराने का लगाया जा रहा है अनुमान।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको झारखंड में जेंजी युवाओं के आंदोलन में लेकर चलेंगे और पूछेंगे कि जो लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर दौड़े जा रहे थे, नारे लगा रहे थे, रील बना रहे थे, सरकार को आईना दिखाने कदम भर रहे थे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ऐलान के अलावा कुछ सुनना नहीं चाह रहे थे, पता नहीं क्यों वो झारखंड में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आखिर इन लोगों को झारखंड का जेंजी प्रोटेस्ट क्यों नहीं लुभा पा रहा? क्यों इनके कैमरे को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम नजर नहीं आ रहा? क्या झारखंड के जेंजी प्रोटेस्ट में इन लोगों को रील वाला वायरल कंटेंट नहीं मिल पा रहा? लेकिन आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां मूसलाधार बारिश है, टेंट फट चुके हैं, बिस्तरों तक पानी भर चुका है, लेकिन झारखंड के ये जेंजी छात्र अपनी किताबों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे डटे हैं। इनकी मांगे बिल्कुल साफ है, परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच, जेपीएससी की 14वीं संयुक्त परीक्षा का तत्काल रद्द होना और उस रैकेट का सफाया जो पैसों के दम पर नौकरियां बेच रहा है। लेकिन झारखंड सरकार का कहना है कि उसे सीआईडी जांच पर भरोसा है। आज हम पूछेंगे कि क्या झारखंड के उन युवाओं की मांग पूरी हो पाएगी और साथ ही पूछेंगे क्या वाकई झारखंड के इस आंदोलन में रील वाला कॉन्टेंट नहीं है या फिर लोगों की आंखें अब सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक देखने और परोसने की आदि हो चुकी है। इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत में निर्वासित जीवन बिता रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख हसीना भावुक हो गई और कहा कि बांग्लादेश एक और पाकिस्तान बन गया है, लेकिन वो बांग्लादेश जरूर लौटेंगे। आज आपको बताएंगे कि जिस देश से शेख हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा, वहां वापस लौटने की हिम्मत वो कैसे जुटा पा रहे हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत में चर्च को मिलने वाले विदेशी चढ़ावे, दूसरे शब्दों में कहें तो विदेशी फंडिंग के हिसाब पर तनाव क्यों है। अब विदेशों से मिलने वाली फंडिंग को लेकर भारत सरकार के प्रस्तावित बिल पर अमेरिका तक घमासान मचा है। ट्रंप की पार्टी के एक सांसद ने आरोप लगाया है कि नया एफसीआरए बिल भारत में चर्च पर कब्जे की साजिश है, जबकि सरकार कह रही है कि ये बिल विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आज आपको अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता की असली तस्वीर भी जरा दिखाएंगे। और आखिर में देश की सड़कों पर बिना इंश्योरेंस दौड़ रहे 16.5 करोड़ से ज्यादा वाहनों के लिए जरूरी खबर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन वाहनों के मालिक सावधान हो जाएं, क्योंकि अब बिना बीमा न गाड़ी में तेल होगा न गाड़ी दौड़ेगी। खैर, शुरुआत करते हैं, आपको ये बताते हैं कि क्या झारखंड का जेंजी आंदोलन अब तभी खत्म होगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपना इस्तीफा देंगे। ये मांग आंदोलन पर बैठे कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों ने की है। उनका कहना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की जिस परीक्षा में धांधली हुई उसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विभाग से है। इनमें भी कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास आते हैं, और क्योंकि ये परीक्षाएं भी नीतिगत और प्रशासनिक मामलों से जुड़ी हुई थी, इसीलिए आंदोलन पर बैठे छात्रों की ये मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि यहां हम दो बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। पहली बात, इस्तीफे की ये मांग अब तक किसी पोस्टर या बैनर पर नहीं लिखी गई है, कहीं भी नहीं लिखी गई है, और सिर्फ कुछ छात्रों ने मौखिक रूप से ऐसा कहा है। और दूसरी बात, ये मांग छात्रों के केवल एक धड़े की तरफ से कही जा रही है, तो क्या अब इस छात्र आंदोलन में दो धड़े हैं? रांची के जिस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये आंदोलन चल रहा है, वहां हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार मौजूद है। वो ऐसा कहते हैं कि स्टेडियम में अभी दो आंदोलन चल रहे हैं, यानी दो अलग अलग गुट हो गए हैं। एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो कि भूख हड़ताल पर है, और सोनम वांगचुक से बात के बाद उन्होंने जल पिया है, नहीं तो वो 2-3 दिन से जल भी नहीं ले रहे थे। जबकि दूसरा आंदोलन वो छात्र कर रहे हैं जिन्हें परीक्षा में धांधली की वजह से फेल कर दिया गया था। दोनों आंदोलनों की मांग एक ही है, लेकिन दोनों का विरोध प्रदर्शन अलग अलग चल रहा है, और इनमें भी देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल पीड़ित छात्रों के टेंट से 150 मीटर दूर एक दूसरे टेंट में चल रही है। जिन प्रदर्शनकारी युवाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है, वो देवेंद्र नाथ महतो के साथ बैठे हैं, जबकि दूसरे धड़े के प्रदर्शनकारी छात्रों ने अभी ऐसी कोई मांग नहीं की है। मुख्य रूप से ज्यादातर प्रदर्शनकारी छात्र आंदोलन खत्म करने के लिए 5 शर्तें रख रहे हैं सरकार के सामने। इनमें पहली मांग यह है कि जिन परीक्षाओं में धांधली हुई उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए। दूसरा, सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं और प्रक्रिया में सुधार किए जाएं और इन्हें पारदर्शी बनाया जाए। तीसरा, अप्रैल महीने में झारखंड लोक सेवा आयोग की जो 14वीं संयुक्त परीक्षा हुई थी उसे तत्काल रद्द किया जाए। चौथा, परीक्षा कराने वाली जिन कंपनीज और एजेंसियों की भूमिका संदिग्ध है उनकी जांच हो, उनके द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए, नए सिरे से ये परीक्षाएं कराई जाए। और पांचवी मांग ये है कि रिश्वत लेकर सरकारी नौकरी दिलाने वाले रैकेट को खत्म किया जाए। इनमें भी जिन लोगों को इस रैकेट की मदद से सरकारी नौकरी मिल चुकी है उनकी नियुक्ति भी तत्काल खारिज हो। बड़ी बात यह है कि इन मांगों को लेकर सरकार ये कह रही है कि उसके दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। हेमंत सोरेन खुद ऐसा कह रहे हैं और रांची के एसडीएम कुमार रजत आज प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने पहुंचे, जिसमें उन्होंने इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने की अपील की, लेकिन छात्रों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। देखिए,
1: माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है, और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए जो लोग वहाँ जाके बात करेंगे।
2: सर, आपसे एक विनम्र हम लोग का अपील है कि हम हजारों छात्रों का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ कोर टीम के साथ ही कर रहे हैं और हम लोग पर तमाम छात्रों का बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि हम लोग का एक प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा।
1: जैसा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप मेरे थ्रू आपको दिया गया है कि वार्ता करने के लिए भेजा बोला गया है, आप एक बार वार्ता कर लीजिए।
2: सर, सबसे कम हम लोग 6 बजे तक समय है, 4 बजे आप बोले तो 2 घंटे समय है, 6 घंटे का मत 5 घंटे का समय है, 5 घंटे का समय है, 5 घंटे हम लोग
1: हम लोग उनको समझा रहे हैं कि आप लोग डेलीगेशन तैयार करके जहां पे वार्ता के लिए स्थान नियत किया गया है वहां पे वार्ता करेंगे।
3: उम्मीद है कि
1: हम लोग पॉजिटिव हैं।
0: ये आंदोलन तभी खत्म हो सकता है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हो जाए, जबकि अभी रात 9 बजे तक झारखंड की सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए है। आज इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के बीच एक मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात का एजेंडा यही आंदोलन था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब हेमंत सोरेन बाहर आए तब उन्होंने ये तो कहा कि सरकार के दावे जो दरवाजे हैं वो बातचीत के लिए खुले हैं। अभी छात्र क्या कह रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई को जांच सौंपने के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि वो अपना सीना चीर कर नहीं दिखा सकते और सरकार को सीआईडी की जांच पर पूरा भरोसा है और जैसे ही सीआईडी की जांच रिपोर्ट आ जाएगी सरकार कड़े कदम उठाएगी। सुनिए,
4: कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहां जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं।
0: तो हेमंत सोरेन खुलकर ये कह रहे हैं कि जिन्हें भी बात करना है उनके दरवाजे खुले हैं, वो इसके लिए तैयार हैं। अब देखिए, हर बड़े छात्र आंदोलन की एक विडंबना होती है और आज इस विडंबना को भी हम दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे आंदोलनों में अक्सर कैमरे मंच पर टिके रहते हैं, जमीन पर नहीं। बहस इस बात पर होती है कि सरकार का पक्ष क्या है, विपक्ष क्या कह रहा है, किस नेता ने क्या बयान दिया। लेकिन इन सारी आवाजों के शोर में सबसे बड़ी जो आवाज होती है वो अक्सर दब जाती है, उन छात्रों की आवाज जिनके संघर्ष को लोग सही रूप में देख नहीं पाते, है ना। कोई छात्र अपनी किताबें छोड़कर अपना भविष्य दांव पर लगाकर सड़क या स्टेडियम में रातें गुजारने का फैसला शौक से तो नहीं करता। ये देखिए, लड़के लड़कियां सब, वो ऐसा तब करता है जब उसे लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं बचा। जब बार बार की गुहार, आवेदन, प्रदर्शन, उम्मीदें उसे केवल निराशा लौटाती है। झारखंड में इस समय लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही है। ये देखिए, जिस स्टेडियम में ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं वहां पानी भर चुका है। जिन तिरपालों के सहारे उन्होंने अपने संघर्ष को बचाए रखने की कोशिश की थी वो भी जगह जगह से फट चुके हैं। बारिश का पानी उनके कपड़ों, बिस्तर, सामान सब तक पहुंच रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं। इनकी तकलीफ, कोई भी छात्र तभी इतनी तकलीफ उठाता है जब वो व्यवस्था से पूरी तरह हार चुका हो और उसे लगता हो कि बस हमें खुद ही टिके रहना होगा, नहीं तो हमारा भविष्य तो यूं ही बह जाएगा। जब उसे लगने लगता है कि अगर आज भी वो नहीं बोला तो शायद उसके हिस्से का न्याय हमेशा के लिए छिन जाएगा। इसीलिए इस आंदोलन को केवल राजनीतिक चश्मे से देखना सही नहीं होगा कि भाई दिल्ली वाला है तो इस सरकार के खिलाफ है, झारखंड वाला है तो इस सरकार के खिलाफ है। इनको तो बस पेपर लीक से, नौकरियों की बिक्री से मुफ्त आजादी चाहिए। ये उन युवाओं की पीड़ा को समझने का भी समय है जो अपने सबसे ऊर्जावान सालों में रोजगार, पारदर्शिता, न्याय की मांग करते हुए बारिश में भीगने को मजबूर हैं। देखिए, जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी वो आज तिरपाल संभाल रहे हैं, जिन कंधों पर देश का भविष्य खड़ा होना चाहिए था वो आज आंदोलन को उठ रहे हैं। देखिए,
3: चाय पकौड़ा खा रहे हैं या हम लोग आपको चाय पकौड़ा और बिस्कुट भी खिला देंगे, आइए हम लोग का सहयोग करिए।
5: ये बारिश हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती है, चाहे दिन रात बारिश हो हमें उससे मतलब नहीं है। हम आंदोलन में जारी रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। हम आंदोलन छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले।
3: इतने जो कड़े धूप में है तो हो सकता है शाम में और भी भीड़ हो जाए, स्टूडेंट छात्र लोग एकजुट हो जाए।
6: है थोड़ा हालत खराब है हम लोग को, लेकिन हाँ ये अनिश्चित काल है, बारिश उरिश हमारा ये नहीं तोड़ सकती है। जब तक सरकार ये हमारी मांगे नहीं पूरा करेगी तब तक ये धरना रहेगा।
7: स्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, ये हमारा संघर्ष जो है यह लगातार जारी रहेगा।
0: खैर, टूटे हुए तिरपाल तो सबने देखे, लेकिन आज अंदर से टूट चुके इन युवाओं को सुनना भी जरूरी है। और जानते हैं ये जेंजी युवा क्या कह रहे हैं कि हमें डटे रहना है। आपने देखा है, वो पूछते हैं कि उन्हें आंदोलन पर बैठना ही क्यों पड़ा, सिस्टम से उनकी व्यथा को समझ क्यों नहीं पाया। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर आकर रोना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आखिर वो करे तो क्या करे। एक छात्र ने तो यहाँ ये भी कहा कि उनकी लड़ाई राजनीतिक है ही नहीं, उन्हें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आंदोलन को आज सबसे ज्यादा राजनीतिक वजहों से ट्रोल किया जा रहा है। और ये उन छात्रों का जो दर्द है उसे शायद ही कोई समझ रहा है। सुनिए,
8: और आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने तिरंगा मार्च निकाला है। देख सकते हैं ये बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद उनके स्पिरिट्स जो हैं वो हाई हैं।
9: हमको आपसे सीमन चाहिए, आप शिक्षा व्यवस्था का सुधार कीजिए सर, प्लीज। हाँ, जोड़ के निवेदन कर रहे हैं।
10: हम लोग में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग अपने हाथ के लिए लड़ रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ गया? वो गवर्नमेंट तो सामने आए और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाहिर करे। जो एस्पिरेंट है उनको कैसे मोटिवेशन मिलेगा सर आगे पढ़ने के लिए और झारखंड को सुधार करने के लिए?
11: यहाँ पर सारे लोग कोई बड़े बाप के बेटे नहीं है सर, हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई सर किसी राजमिस्त्री का बेटा है। हम लोग सर एक हायर मिडिल क्लास परिवार से भी बिलोंग नहीं करते सर। जो छात्र जो छात्र सर जो पैसे वाले हैं वो यहाँ पर कोई आंदोलन में नहीं आया होगा सर, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो सीट खरीद के डीएसपी बन गया होगा, वो सीट खरीद के वीडियो बन गया होगा, सीओ बन गया होगा।
12: एक कार्यक्रम चलता है सरकार आपके द्वार, तो ये हमारा द्वार है, हम छात्रों का द्वार है, आप भी हमारे द्वार पे आइए और हमसे संवाद कीजिए, आप ही का कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार, तो आप आइए हमारे द्वार पे, जो हम छात्रों ने अपना द्वार सजाया है इस द्वार पे आइए, हम सब छात्र आपका स्वागत करेंगे और आपसे बात करेंगे।
13: आखिर झारखंड का जनता, झारखंड के युवा, झारखंड के छात्र ने आपको वोट देके सीएम बनाया है, तो आप उस गुरु पर मत रहे कि हम सीएम बन गया तो सब चीज कर लिए, जरूरत पड़ेगा तो रोटी के सब पलट देंगे, जैसे रोटी पलटता है ना उधर सत्ता पलट देंगे।
14: सरकार का नियति नहीं है नौकरी देना, सरकार का नियत है बस नौकरी उसी लोग के देना जो उनके झोली भरता है।
15: माननीय मुख्यमंत्री जी ही हम लोग को भविष्य संवार सकते हैं, अगर उनको संवारना है तो संवार दें और नहीं तो मारना है तो मार दें। अब तो भूख हड़ताल पर हम लोग चले गए हैं।
16: सुने हम लोग चेहरा पे जबरदस्ती हंसी ला रहे कि हम लोग हंस सके, इसीलिए गाना गा रहे क्योंकि उनको तो दर्द दिखाई नहीं दे रहा, शायद हमारी हंसी देख के वो आ जाए।
0: तो आपने इन बच्चों की बात सुनी और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने आप में एक आईना है इन तमाम समाज को सबके सामने कि बच्चे, और वो भी देखिए हर वर्ग के बच्चे जब ऐसे अपनी मांगों के लिए आ रहे हैं वो किस तरह से संयम से अपनी बात को कह रहे हैं, वो ये हर हाल में सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके आंदोलन को कोई भी बदनाम ना करे या कोई भी ऐसे नारे वहां पर नहीं लगाए जाएं जिनसे उनके ही जो लक्ष्य है उसको चोट पहुंचे। ये वाकई बहुत बड़ी तारीफ की चीज है। अब देखिए, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब आप इन छात्रों को सुनिए।
17: अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं करती है तो हम सभी छात्र नौजवान सीएम सर की इस्तीफा का भी मांग करेंगे लास्ट में। अगर अच्छा। हम लोग की उपरोक्त मांग नहीं मानती है तो हम सीएम सर से ये अपील करेंगे कि आपसे छात्र नौजवान की दुख और पीड़ा नहीं देखा जा रहा है, अतः चूंकि जेपीएससी और जेएसएससी कार्मिक के अंतर्गत आता है सर, और कार्मिक जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो अकाउंटेबिलिटी माननीय मुख्यमंत्री जी का बनना चाहिए सर, और उस नाते हम सभी छात्र इस्तीफा मांग रहे हैं।
0: आज ये खबरें भी आई कि छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन देवेंद्रनाथ महतो का कहना है कि ये खबरें गलत हैं। उनके मुताबिक उन्होंने नमक और पानी का ग्रहण किया है लेकिन अपने अनशन को तोड़ा नहीं है। इससे पहले वो निर्जला मतलब बिना जल के वो अनशन पर बैठे थे और सोनम वांगचुक से उनकी बात ही हुई, उसके बाद से जब उन्होंने अनुरोध किया तो उन्होंने पानी पिया। उनका कहना है कि छात्रों की मांगे पूरी होने तक वो अन्न का त्याग जारी रखेंगे और ये फैसला भी उन्होंने तब लिया है जब सोनम वांगचुक को भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन मिल गया। आज सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारी छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की, उन्होंने ही देवेंद्रनाथ महतो से ये कहा कि वो जल ग्रहण करें और ठीक से रहे तभी इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे, अपनी भूख हड़ताल जारी रखें और छात्रों को इंसाफ दिलाएं। सुनिए।
18: तो उसके लिए हमें समय चाहिए, तो आप जल जरूर लीजिएगा। मैं आपसे विनती कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, जीवन को दांव पे लगाकर इसका सभी लोग आदर करते हैं। मैं अभी आप सभी से विनती करूँगा कि उन्हें जल पिलाएं।
19: सोनम वांगचुक सर का वीडियो कॉल में बात हुई, सोनम वांगचुक सर हम लोग का आंदोलन को समर्थन करते हुए मनोबल बढ़ाए हैं और इतना मनोबल बढ़ाए हैं कि अब सरकार को हम लोग हर हाल में पीछे झुकाएंगे।
20: पानी हम नहीं पी रहे थे, अन्न और जल दोनों छोड़े हुए थे, तो ये जब जानकारी हुई सोनम सर को, सोनम सर को जब जानकारी हुई तो उन्होंने चिंता जताया और संपर्क किया और बोला कि हम भी जब जंतर मंतर में भूख हड़ताल में थे तब जल और नमक का ग्रहण करते थे। आप जल का ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये आपके लिए आत्महत्या करने जैसा है। हमको रिक्वेस्ट किए कि आप आत्महत्या मत कीजिए, आप इस आप सारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़िए, आपका आंदोलन को हम समर्थन करते हैं।
0: आज सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिस पर लिखा है कि झारखंड के छात्रों का आंदोलन इंस्टाग्राम पर दिखाने के लिए एस्थेटिक नहीं है। सोचिए, पहली नजर में ये एक व्यंग लगता है, लेकिन अगर थोड़ा ठहर कर सोचिए तो ये हमारे समय की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। एक जमाना था जब किसी आंदोलन की ताकत उसके मुद्दे से तय होती थी। लोग इसलिए जुड़ते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यहां न्याय हुआ है, मुद्दा बड़ा है, आवाज दबाई जा रही है, बदलाव की जरूरत है, तो इसमें जुड़ना है। बड़े बड़े आंदोलन इस देश में हुए, किसी आंदोलन की तस्वीर कितनी सुंदर दिख रही है इससे तो कोई संबंध नहीं होता था कि भाई ये आंदोलन ज्यादा सुंदर दिख रहा है, वहां पर जाकर ज्यादा रोमांचक लग रहा है तो वहां जाना है। लेकिन आज हम ऐसे दौर में हैं।

क्या एल्गोरिदम उसे पुश करेगा? अगर जवाब हाँ है तो आंदोलन लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो कई बार उसका दर्द भी टाइमलाइन तक नहीं पहुंच पाता। या फिर कई लोग इस बात का भी इंतजार करते हैं कि एक्शन ज्यादा हो, वहां पर अगर मार्च हो, वहां पर तरह तरह की नारेबाजी हो, तो उसके हक में बोलने वाले, उसके खिलाफ बोलने वाले लोग दोनों ही तरफ से एल्गोरिदम पुश करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा बात है। किसी आंदोलन को आज के दिन में अगर क्रेडिट देना है तो उसके पक्ष में भी कई लोग बोलने वाले हैं। किसी आंदोलन को डिसक्रेडिट करना है, गलत बताना है, तो उस पक्ष में भी उतनी ही ताकत एल्गोरिदम के जरिए लगाई जाती है और फिर ये एल्गोरिदम की लड़ाई बनकर रह जाती है। झारखंड के इन छात्रों के आंदोलन में ना कोई रंग बिरंगा मंच है, ना कोई आकर्षक बैकड्रॉप है। यहाँ की तस्वीरों में कीचड़ है, बारिश है, फटे हुए तिरपाल है, भीगे हुए कपड़े हैं, थके हुए चेहरे हैं, लेकिन ये बच्चे डटे हैं और इनको पूरा देश सलाम कर रहा है। शायद यही वजह है लेकिन कि सोशल मीडिया की उस दुनिया में उतनी जगह नहीं बना पा रहा झारखंड का ये आंदोलन, जहां अक्सर हर चीज में ट्रेंड की डिमांड होती है। जंतर मंतर के आंदोलन की तरह झारखंड के आंदोलन को कई युवाओं का समर्थन मिला है, वहां भीड़ भी पहुंच रही है, लेकिन इंस्टाग्राम पर इस विरोध प्रदर्शन की उतनी चर्चा नहीं है। दुख की बात यह है कि कई लोग लिख रहे हैं कि झारखंड का आंदोलन इंस्टाग्राम पर दिखाने के लिए आकर्षक और ट्रेंडी नहीं है। मतलब जिस तरह का ट्रेंड और जिस तरह का प्लाकार्ड्स लोग लेकर खड़े थे, वो बड़े पंची थे, इसकी वजह से जो कुछ वहां पर हुआ और यहां पर हुआ वो एक अलग ही दुनिया दिख रही है। सोचिए, हम सोशल मीडिया के उस दौर में आ चुके हैं जहां छात्रों की पीड़ा अल्गोरिदम के चश्मे से आंकी जा रही है।

इन आंदोलनों के बाद हमारी सरकारें कितनी जागी हैं, कितनी सजग हुई हैं, आज वो देखना और समझना भी जरूरी है। इनमें पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के विदिशा से आई है, जहां मध्य प्रदेश के विदिशा से आई इस तस्वीर में आप खुद ही देखिए, स्कूल जाने के लिए इन छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उम्मीद है कि मोहन यादव इन तस्वीरों को मुख्यमंत्री जी देखेंगे। ये तमाम छात्र बेतवा नदी पर बने बांध को पार करके अपने स्कूल पहुंचते हैं और दुख की बात यह है कि स्कूल में भी शिक्षा का वो स्तर नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। आज हम यही कहेंगे कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो वो इन बच्चों के संघर्ष को समझे, ये समझे कि ऐसे ना जाने कितने छात्रों को आज स्कूल जाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है और ये हमारी जेन जी के बाद जेन अल्फा पीढ़ी है जिसे भारत का भविष्य कहा जाता है। लेकिन इस पीढ़ी को हमने कैसी व्यवस्था दी है उसकी तस्वीरें सबके सामने हैं। अब मध्य प्रदेश के सागर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां कोपरा नदी पर बना कच्चा पुल ध्वस्त हो गया और अब वहां इन स्कूली छात्राओं को अपनी जान हथेली पर लेकर स्कूल जाना पड़ रहा है। और सागर भी मध्य प्रदेश में ही आता है जहां बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री है। कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि छात्रों में अचानक ये गुस्सा कहां से आया, ये क्या हो गया, तो उसका कारण ये तस्वीरें हैं। जब हमारे छात्रों को सिर्फ शिक्षा हासिल करने के लिए इतने संघर्षों से गुजरना पड़ता है और फिर जब वो स्कूल पहुंचते हैं व्यवस्था उनके प्रति इतना लापरवाह होता है, टीचर नहीं, फिर एग्जाम दो तो पेपर लीक, तब ये ज्वार फूटता है और फिर

आंदोलन के रूप में यही आक्रोश ऐसे ही तिनका तिनका बढ़ता हुआ सड़कों पर फूटता है। इस बात को आप बिहार के कटिहार से आई इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं, जहां पुल नहीं होने के कारण कई स्कूली बच्चों को रेलवे ट्रैक से गुजरना पड़ता है और हमारा सिस्टम इसमें कुछ गलत दिखता ही नहीं उनको। देखिए,

आखिरी में जो आपने वीडियो देखा कटिहार का है, बिहार का, जहां पर रेलवे ट्रैक पार करके ऐसे बच्चे जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं एग्जाम देने। आज देश में जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है जेन जी, यानी भारत की वो युवा पीढ़ी जिनका भरोसा सरकार भी जीतना चाहती है और जिनका भरोसा विपक्ष भी जीतना चाहता है। दोनों पक्षों ने अपनी रणनीति को बदला है, अपने राजनीतिक बयानों से लेकर अपनी तमाम योजनाओं में जेन जी युवाओं को शामिल करने की कोशिश की है, और इस बात को आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। आज जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए गए 7 साल पूरे हो गए, तब सरकार ने खास तौर पर जेन जी युवाओं के लिए एक वीडियो जारी किया, और इसमें यह बताया गया कि जिस कश्मीर को जेन जी युवा आज देखते हैं वो पहले ऐसा नहीं होता था। यानी इस वीडियो से पता चलता है कि सरकार ने अपनी रणनीति को बदला है और अब वो जेन जी युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई चीजें कर रही है। देखिए,

0: तो बदला बदला सा अंदाज है। खैर आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि क्या मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग और उनकी टीम के माफी मांगने से कोई बड़ा बदलाव आएगा या ये सोशल मीडिया कंपनियां आगे भी अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं समझेंगी। जंतर मंतर के जेंजी आंदोलन में जो आपत्तिजनक और गाली गलौज वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और जिस मामले में फेसबुक से प्रधानमंत्री मोदी का एक पोस्ट 5 घंटे के लिए हटा दिया गया था, उस मामले में आज मेटा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। ये बैठक 45 मिनट तक चली जिसमें मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग और उनकी टीम की तरफ से कई मुद्दों पर माफी मांगी गई है। इनमें फेसबुक से प्रधानमंत्री मोदी का जो 23 जुलाई का वीडियो हटाया गया था उस पर कंपनी के अधिकारियों ने अपनी गलती को स्वीकार किया। इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जो अश्लील तस्वीरें और वीडियोज मौजूद हैं उसके लिए माफी मांगी। जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान जो डीप फेक और एआई से तैयार किए गए फर्जी वीडियोस वायरल हुए उन्हें समय रहते इंस्टाग्राम से हटाया नहीं गया, उन पर कंपनी की तरफ से माफी मांगी गई, आई एम सॉरी कहा गया। महिलाओं के खिलाफ जो आपत्तिजनक वीडियोस और अब्यूजिव कंटेंट यानी गाली गलौज वाले वीडियोस हैं महिलाओं के खिलाफ वो इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ, इसके लिए भी माफी मांगी। सबसे ज्यादा हैरानी और अफसोस की बात यह है कि मेटा के अधिकारियों ने खुद ये माना कि इंस्टाग्राम पर इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट की पहुंच बढ़ाने के लिए उस पर पैसा खर्च हुआ था। आपत्तिजनक कंटेंट बढ़ाने के लिए पैसा खर्च हुआ था, ऐसे अश्लील और आपत्तिजनक वीडियोस को बूस्ट किया गया था और ये गलती मेटा के अधिकारियों ने स्वीकार की और ये भी दोहराया कि आगे ऐसा नहीं होगा। इस बैठक में मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कप्लान, वाइस प्रेसिडेंट नील पॉट्स, सीनियर डायरेक्टर रफाइल फ्रांकेल और भारत में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अमन जैन और प्रिया श्रीनिवासन शामिल हुए, जबकि भारत सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एस कृष्णन शामिल हुए। मेटा की तरफ से ये माफी तब मांगी गई जब ये चेतावनी दी जा रही थी कि मेटा का सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खत्म किया जा सकता है। यहां ये भी समझिए कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन होता क्या है जिसका ये कंपनियां इतना फायदा उठाती हैं। आईटी एक्ट की धारा 79 सोशल मीडिया कंपनीज को इंटरमीडियरी का दर्जा देती है। इसका मतलब ये होता है, इंटरमीडियरी मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करता है तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी यूजर की होती है ना कि इन सोशल मीडिया कंपनीज की। हालांकि ये सिक्योरिटी कवर या ये सेफ हार्बर इन कंपनियों को तभी मिलता है जब ये भारत के कानूनों का पालन करें, सरकार और अदालतों के आदेश माने और आईटी नियमों के अनुसार जिम्मेदारी से काम करें। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम का ये सेफ हार्बर खत्म हो जाएगा तो इन कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स पर जो भी आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित होगा उनके लिए जिम्मेदार कौन, ये कंपनी मानी जाएगी और इन पर कानूनी मामला ज्यादा बढ़ेगा। शायद यही डर है कि मेटा की टीम ने माफी मांगने में देर नहीं लगाई और आई एम सॉरी कह दिया, हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। तो सुनिए, 15 जनवरी 2025 को मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अपने उस बयान के लिए माफी मांगी थी जिसमें उन्होंने एक पॉडकास्ट में यह कहा था कि भारत के चुनावों मौजूदा सरकार सत्ता से बाहर हो गई, जबकि उन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी। 2025 में ही मेटा के ऑटो ट्रांसलेशन फीचर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से जुड़ी एक पोस्ट का गलत अनुवाद कर दिया था और उस वक्त भी मेटा ने माफी मांगी और आज तीसरी बार मेटा की पूरी टीम ने भारत से माफी मांगी है। और यहां ऐसा भी लगता है कि मेटा ने माफी मांगकर खुद को रेस्क्यू करना सीख लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्क जकरबर्ग अब तक 10 से ज्यादा मामलों में खुद अदालत और संसद की कार्रवाई में पेश होकर माफी मांग चुके हैं। इनमें भी 2 फरवरी 2024 को अमेरिकी सेनेट में यह मुद्दा उठा था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों का यौन शोषण, बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं और उस वक्त मार्क जकरबर्ग को वहां सेनेट में पेश होना पड़ा। वहां भी उन्होंने क्या कहा, आई एम सॉरी। और यह सिलसिला 2007 से जारी है। आज सवाल तो यह है कि अगर ये सोशल मीडिया कंपनी सालों से एक ही गलती करने के लिए माफी मांग रही है और वही गलती बार बार बार बार हो रही है तो इन पर भरोसा कैसे करें और कैसे मान लें कि ये दोबारा यही गलती करके माफी नहीं मांग लेंगे। मैं आज मेटा की कम्युनिटी गाइडलाइंस आपके अपने साथ लेकर आई हूं। ये हम नहीं पढ़ रहे, ये कोई और भी नहीं पढ़ रहा, ये हम लिखा भी हमने लिखा नहीं है। किसने लिखा है? ये मेटा ने लिखा है। ये गाइडलाइंस उनकी लिखी हुई गाइडलाइंस है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपनी गाइडलाइंस को भूल गए हैं। ये लिखते हैं कि खतरनाक संगठनों और लोगों को उनके प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं दी जाएगी। ये जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स है जिसमें ऑथेंटिसिटी, अगर ऑथेंटिसिटी आपने कैपिटल्स में अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस में लिखा है, तो ये जो पहली ही जगह आप ऑथेंटिसिटी देख रहे हैं, ऑथेंटिसिटी देख रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि डीप फेक वीडियोस कैसे चल रहे हैं फिर, और खुलेआम चल रहे हैं। इतने आपत्तिजनक महिलाओं को ऐसी स्थिति में दिखाया जाता है, तो फिर ये कम्युनिटी गाइडलाइंस जो आपने लिखी हैं, हम तो बस याद दिला रहे हैं। फ्रॉड, स्कैम, सेफ्टी की बात की है आपने, हम ऐसा तमाम कंटेंट हटा देंगे जो किसी को भी फिजिकल सिक्योरिटी या किसी को रिस्क या हार्म हो, जिसकी वजह से किसी को इंटिमिडेट किया जाए या किसी को दबाने की कोशिश की जाए, किसी को बुली करने की कोशिश की जाए। प्रिवेसी, वी आर कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग पर्सनल प्रिवेसी एंड इंफॉर्मेशन डिग्निटी, वी बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल इन डिग्निटी। ये सब कहां माना जा रहा है? गाली गलौज, अश्लील वीडियो, और ये सब कुछ हमारे बच्चों के हाथ में जा रहा है। बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जो अश्लील तस्वीरें और वीडियो मौजूद है, उन्हें भी प्रमोट नहीं करेंगे, ऐसा आप अपने गाइडलाइंस में खुद लिखते हैं। लेकिन सोचिए, इन कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? ये कम्युनिटी गाइडलाइंस कहती हैं कि डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स हम जगह नहीं देंगे, फ्रॉड, स्कैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिस जगह नहीं देंगे। सब कुछ हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, वायलेंस और इंसाइटमेंट नहीं करेंगे, जबकि भड़काऊ चीजें, किसी को मारने के लिए उकसाया जा रहा है, ये सब कुछ चल रहा है आराम से। इस वक्त भी जब हम ये कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं, उस वक्त भी जब मार्क ज़करबर्ग और उनकी टीम ने आई एम सॉरी कहा, तब भी, और इससे पहले भी जब जब वो आई एम सॉरी बोलते आए, उसके बाद भी इस तरह का डीप फेक कॉन्टेंट नहीं हटा है। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, सुइसाइड, सेल्फ इंजरी, अडल्ट न्यूडिटी, हेटफुल कॉन्डक्ट, प्राइवेसी वायलेशंस, वायलेंट ग्राफिक कंटेंट, अपना ही कम्युनिटी गाइडलाइन बस एक बार पढ़ लीजिए और फिर चले जाइए इंस्टाग्राम पर जो आप लोग चला रहे हैं, जाकर देखिए अपना कंटेंट, आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये सारा आपत्तिजनक कंटेंट तो इंस्टाग्राम पर आसानी से दिख जाता है, और जब इस पर सवाल उठते हैं तो ये कंपनियां माफी मांग लेती हैं। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये बन चुका है, लेकिन हकीकत में इन माफी से क्या बदलता है?
1: Fake news, foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here.
2: I'm sorry for everything that you've all have to go through, the things that your families have suffered, and this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer.
0: अगली खबर का रुख करते हैं। आज बांग्लादेश में जेंजी आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 2 सालों में शेख हसीना ने बांग्लादेश को भुलाया नहीं है। वो आज भी बांग्लादेश लौटने की बात कह रही हैं। आज द फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना वर्चुअली जुड़ी थी। उन्होंने यहीं से अपने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने पिछले 2 वर्षों में बहुत दर्द झेला है, चारों तरफ डर फैल गया है, और इस डर को खत्म करने के लिए साल दिसंबर में वो बांग्लादेश लौटेंगी, चाहे ऐसा करने के बाद उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। करीब 25 मिनट के उनके संबोधन में सुरक्षा कारणों से उनका कैमरा बंद था, इसीलिए केवल उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार उन्हें झूठे मुकदमों, मौत की सजा, दिखावटी सुनवाई से डरा नहीं सकती। छात्र आंदोलन और हंगामे के दौरान बांग्लादेश छोड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी पीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे। उनके पास उस वक्त निकलने के लिए केवल 30 से 40 मिनट थे। हालात ऐसे बने कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा, लेकिन वो वापस जरूर लौटेंगी। उनके मुताबिक वो मजबूरी में देश छोड़कर गई थी।
3: Whatever fate awaits me, I will return to my people. I cannot stay away while my beloved countrymen are suffering. I know I may be detained, I may be sent to prison. They may try to enforce verdicts issued in fabricated cases, but fear cannot decide my duty to the people. My life moves beyond calculations of personal safety long ago.
0: बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही शेख हसीना भारत में रह रही हैं और तभी से बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। शेख हसीना भी जानती हैं कि जैसे ही वो बांग्लादेश पहुंचेंगी वैसे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुमकिन है कि फांसी दे दी जाए। दरअसल शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में 663 मुकदमे इस वक्त दर्ज हैं। इनमें से करीब 453 मामले तो हत्या के हैं। इनमें से ज्यादातर मामले 2024 में हुए इस आंदोलन से जुड़े हैं जिसने उनका तख्ता पलट किया था। पिछले साल 17 नवंबर को ढाका की एक विशेष अदालत ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुना दी थी। शेख हसीना का कहना है कि वो इन मुकदमों से डरती नहीं, वो बांग्लादेश और बांग्लादेशियों की पीड़ा को देखकर परेशान है। उन्होंने अपने संबोधन में साफ साफ कहा है कि आज का बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं जिसे उनके परिवार ने 30 लाख लोगों ने अपनी जान देकर बनाया था। उनका कहना है कि बांग्लादेश आज एक असफल देश बन गया है जहां मानवाधिकार खत्म हो चुके हैं और वो फिर से दूसरा पाकिस्तान बन गया है जो भारत के पूर्व में है। उनके खिलाफ एक छात्र आंदोलन को वो तख्ता पलटकर राजनीतिक हथियार बताती हैं। उनके मुताबिक छात्र आंदोलनकारियों से शांतिपूर्ण बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने छात्रों को राजनीति का हथियार बनाया और इस वजह से आज हालात ये है कि बांग्लादेश खत्म हो रहा है। और अब बात करेंगे अगली खबर का। पीओके, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में करीब 45 लाख लोग रहते हैं और इस वक्त वहां सैन्य तानाशाही चल रही है। कहने के लिए वो वहां चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक लोगों की जान लेकर दिखावटी मतदान सुनिश्चित करवा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पीओके में लोगों ने इन चुनावों का बहिष्कार किया। वो पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। दरअसल वो समझ गए कि चुनाव के नाम पर पाकिस्तानी सरकार उनका शोषण करती है। हालांकि अब की बार इस दिखावटी चुनाव के लिए शाहबाज और मुनीर ने एक खूनी प्लान बनाया था और उसी के तहत पीओके में चुनाव और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है। 27 जुलाई को इस दिखावटी चुनाव का पहला और 3 अगस्त को दूसरा चरण था। 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच पाकिस्तानी सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार डाला है। हम आपको पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के जुल्म और बर्बरता के सबूत है। इसमें वो पीओके के मासूम नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं और सबूत मिटाने के लिए उनकी लाशें हटा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाली जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक दूसरे चरण की वोटिंग तक करीब 90 प्रदर्शनकारियों की हत्याएं हो चुकी हैं।
4: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: तो तस्वीरें आप विरोध प्रदर्शन की वहां देख ही रहे हैं। जो बात भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है वही बात इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि उसने पीओके में हो रही बर्बरता को छिपाने के लिए एक नया तानाशाही फरमान जारी किया है। वो क्या, पाकिस्तान ने सभी विदेशी पत्रकारों को निर्देश दिए हैं कि वो पीओके की रिपोर्टिंग बंद कर दें। उसने पीओके में हो रहे सरकारी विरोध प्रदर्शनों और पाकिस्तानी सेना की बर्बरता की रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेशी पत्रकारों को केवल इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में रहने का फरमान सुनाया गया है। पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि अगर विदेशी पत्रकारों को इन तीन शहरों से बाहर जाना है तो उन्हें सरकार से एक एनओसी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब यह है कि पाकिस्तान ने ग्लोबल मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी है। किसी तानाशाह की तरह शाहबाज और मुनीर ने मीडिया पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अभी हाल ही में अल जजीरा ने पीओके में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाई थी। माना जा रहा है कि इसी के बाद पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी है।
5: जजीरा एक बार फिर खबरों में है और उसकी वजह बनी है अल जजीरा की पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद से की गई हालिया इलेक्शन पर रिपोर्टिंग, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की हुकूमत ने उस पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान में मीडिया की आजादी का मसला नया नहीं है। गुज़िश्ता बरसों में सहाफियों, टीवी चैनल्स और इवन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मुख्तलिफ औकात में दबाव, पाबंदियों और सेंसरशिप के मसाइल का सामना रहा है। अल जजीरा की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्टिंग, खास तौर पर सियासी और इंतखाबी मामलात पर उसकी कवरेज ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि क्या रियासतें मुश्किल सवाल पूछने वाले मीडिया को बर्दाश्त कर सकती हैं। हर हुकूमत को कौमी सलामती का तहफ्फुज करने का हक हासिल है, लेकिन सवाल यह है कि कौमी सलामती कौन डिफाइन करता है और क्या कौमी सलामती के नाम पर ऐसी मालूमात को भी रोका जा सकता है जो अवामी मफाद में हो।
0: 10 अगस्त को पीओके में आखिरी चरण की फर्जी वोटिंग होनी है और तब तक पाकिस्तान की कोशिश रहेगी कि वो विदेशी मीडिया को रिपोर्टिंग यहां पर ना करने दे, ताकि जितने वोट डालने हैं वो डाले जा सके। और अब तो फर्जी चुनाव के नकली नतीजे भी आने लगे हैं। नकली नतीजों को देखकर नवाज, शाहबाज और मनीर तीनों बड़े खुश हैं। हालांकि नकली खुशी में तख्ता पलट का डर भी है। और अब आपको बाढ़ और बारिश का वो निर्दयी रूप दिखाएंगे जिसने असम को कभी ना भूलने वाला गम दिया है। जी हाँ, असम की गोद में हर साल मानसून एक अभिशाप बनकर उतरता है, लेकिन इस बार की त्रासदी ने भूगोल और इतिहास दोनों के पन्नों को पलट कर रख दिया है। ब्रह्मपुत्र की उफनती लहरों और कुदरत के बदलते मिजाज ने असम के उन इलाकों को भी अपने आगोश में इस बार ले लिया है जिन्हें पीढ़ियों से पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था। असम में इस साल की बाढ़ में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 90 के करीब पहुंच गया है। राज्य के जो चराईदेव, धेमाजी, गोलघाट, जोरहाट, शिवसागर जिले हैं उनके 1,22,000 से ज्यादा लोग अभी भी इस बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। पूरे असम में 365 गांव पूरी तरह पानी में डूबे हैं और 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि बर्बाद हो चुकी है।

आज आपको ये भी समझना चाहिए कि असम के वो जिले जहां कभी भी इस तरह पानी नहीं जाता था, भरता था, वहां भी इतनी भीषण बाढ़ कैसे आई। असम के ऊपरी हिस्से के तीन जिले हैं, शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट, बरसों से बाढ़ के नक्शे पर सुरक्षित ये माने जाते थे। यहाँ छोटी छोटी नदियां थी, फ्लैश फ्लड्स कुछ ही घंटों के लिए आते थे और फिर उतर जाती थी। लेकिन इस बार यहाँ जो हुआ उसे सबको हैरान कर दिया। इसकी वजह प्राकृतिक भी थी और इंसानी भी। इस आपदा की असली शुरुआत 18 से 20 जुलाई के बीच पड़ोसी राज्य नागालैंड में हुई। बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा। नागालैंड में कुल मिलाकर 181% ज्यादा बारिश हुई है, 181% ज्यादा। ऊपरी इलाकों के जो मोकोक चुंग जिले हैं उनमें 493% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मोन जिले में जुलाई की कुछ जो कुल औसत बारिश है उसका एक तिहाई हिस्सा सिर्फ 8 घंटों में बरस गया। असम के चराईदेव जिले में भी इसी दौरान 436% ज्यादा बारिश दर्ज हुई। लगातार मानसूनी बारिश के कारण पहाड़ियां पहले से ही पानी से सैचुरेटेड थी। नतीजा यह हुआ कि तमाम पहाड़ियां ढह गईं। ऊपरी इलाकों में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स हुए। पहाड़ों से मलबे, गाद, पत्थर, पत्थरों के साथ पानी, एक ऐसा रेला निकला जिसने समतल मैदानी इलाकों को कुछ ही घंटों में जलमग्न कर दिया। अब पूरे राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का मुख्य जलस्तर पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर था। जब नागालैंड और असम के ऊपरी इलाकों का पानी इसकी सहायक नदियों दिखो, दिसांग और झांझी के जरिए नीचे आया तो ब्रह्मपुत्र ने उस अतिरिक्त पानी को लेने से मना कर दिया और बैकफ्लो की वजह से पानी वापस ऊपरी असम की बस्तियों की ओर पहुंच गया। लोगों का कहना है कि पानी का स्तर इतनी तेजी से ऊपर उठा कि वो अपने घरों से सामान नहीं निकाल पाए, मवेशी तक वो सुरक्षित बाहर नहीं निकाल पाए। असम में बाढ़ रोकने का पारंपरिक तरीका जो है वो मिट्टी के तटबंध बनाना है। नदियों में बढ़ती जो सिल्ट है उसकी वजह से उनकी तलहटी ऊंची हो चुकी है। ये तटबंध पानी के भारी दबाव को झेल नहीं पाए। डोरेका नदी का तटबंध टूटने से नाजिरा के चाय बागानों भी पानी ही पानी बढ़ गया, डूब गए हैं। इसके अलावा अंधाधुंध शहरीकरण, सड़कों, घरों के विस्तार ने प्राकृतिक स्पंज की जो तरह काम करने वाले निचले इलाके थे, वेटलैंड को खत्म कर दिया है। अब स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहाड़ी तलहटी में हो रहे अवैध खनन ने उन प्राकृतिक चट्टानों और वनों को नष्ट कर दिया है जो पहाड़ों से उतरने वाले पानी की रफ्तार को रोकते थे। अवैध खनन गतिविधियों के कारण जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, तबाह हो गई है। नदियों का न्यूट्रल फ्लो बाधित हुआ है जिससे सुरक्षित समझे जाने वाले इलाकों में भी भीषण जल भराव हो गया है। असम की यह आपदा सिर्फ एक मानसूनी बारिश का परिणाम नहीं है बल्कि ये इस बात की चेतावनी है कि जब जब प्रकृति के भूगोल के साथ खिलवाड़ होगा तब तक सुरक्षित माने जाने वाले इलाके भी इतिहास के सबसे बड़े जल प्रलय का गवाह बनेंगे। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आजकल लोग दूसरों के घरों में आग लगाने के बाद खुद ही सेल्फी लेने और रील बनाने पहुंच जाते हैं, फिर इसे एक्सक्लूसिव कंटेंट कहते हैं। नमस्कार।

0: रांची में 13 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है और छात्र आंदोलन का मुद्दा अब राजनीतिक हो चुका है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी रांची के इन छात्रों के प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं? कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं, आंदोलन बढ़ता जा रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें।
1: देवेंद्रनाथ महातो हैं जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से बात कर अपना पानी का अनशन तोड़ा।
2: लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी।
3: पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की यह स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट।
4: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है।
5: दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे प्रदर्शन की गूंज भी अब पूरे देश में हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार दबाव के बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि आज झारखंड सरकार के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
1: सर आप बताएंगे, अभी पहले एसडीओ आए थे, क्या कह के गए हैं आप?
4: वो ये करके गए कि मुख्यमंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और जिनका बात रखा जाए और मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के बाद फिर ये मुद्दा पे डिस्कस करके अपने में एक सुझाव देंगे।
5: ये प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहा है। इसमें करीब 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ा हुआ था। बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा।
6: ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं नींद में हुई थी। मैं 26 सालों से कई लगातार पेपर कल डॉक्टर हमको हिदायत दे दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
5: जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और ओएमआर शीट में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। वहीं जेएसएससी सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए।
1: अगर सरकार सारी मांगे मान ले पर सीबीआई को जांच ना दे, क्योंकि सुनने में आया है उसी पर सरकार अड़ी हुई है कि सीबीआई को नहीं सीआईडी को दे दिया जाए।
4: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जो बात किया गया, जो बड़े ऑफिसर आए, एसडीओ आए, एसडीएम आए, जो भी आए, 5 लोग के, ठीक है। अब मेरा कहना है कि 5 लोग से ही अगर पर्सनल में बात करना है तो 5 लोग में ही आप अपने फैमिली में ही इलेक्शन लड़के।
5: ये प्रदर्शन राजनीतिक भी हो चुका है। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर सवाल उठा रही बीजेपी रांची के प्रदर्शन को पूरा समर्थन दे रही है। झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी प्रदर्शनकारियों से मिलने गए थे लेकिन इधर जंतर मंतर के छात्रों के समर्थन में दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवाज घेरने वाले राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ सरकार में शामिल है। अब छात्र भी इस पर सवाल उठा रहे हैं।
1: एक सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें शामिल है कांग्रेस। कांग्रेस जो छात्रों की गूंज प्रयागराज तक लेके गई है, कांग्रेस जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए थे, आपके साथ उन्होंने आकर खड़े नहीं हुए हैं जैसा उनको उतरना चाहिए था। डिसअपॉइंटेड है उनसे।
2: ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी
2: कम टू रांची।
1: कुछ कुछ नहीं,
2: लड़की नहीं है मैम, मेरे लिए यही वर्ड सही है, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी कम टू रांची। पर डिसअपॉइंटेड है,
2: बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैम, मन खराब हो गया है। आप नीट के लिए इतना हावी प्रदर्शन कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेर रहे थे, और वहाँ तो एक एग्जाम का बात था मैम, वो भी एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ तो हमारे नौकरी का सवाल है।
5: प्रदर्शन में शामिल जिस भी छात्र को देखो उसकी अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची के ही छात्र यहाँ आए हैं, पूरे झारखंड से छात्र यहाँ हैं। 19 साल का ये लड़का चतरा से यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आया है। जब ये 10वीं कक्षा में था तब इसका भाई JPSC की तैयारी कर रहा था, अब ये ग्रेजुएट हो गया है और भाई अभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाया। अब दोनों भाई साथ में तैयारी करते हैं।
1: जब आप
7: 10th में थे,
1: आप 10th
7: का तैयारी करने आया था मैं रांची, वो लाइब्रेरी में पढ़ता था, भैया हैं ये JSSC का तैयारी करते थे 2022 में, मैं आज 2026 में मैं भी JSSC का तैयारी कर रहा हूँ, JPSC, ये भी वही चीज का करने लगे, इनका ये 30+ हो गया। बताइए,
1: आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कितने साल के हैं सर?
3: मेरा 30 साल हो गया, 30 ईयर।
1: और ये 19 साल के हैं, कब से एक ही एग्जाम दे जा रहे हैं?
3: की एग्जाम
1: कब से?
3: 8 साल से।
1: 8 साल से एक एग्जाम दे रहे हैं?
3: जी जी जी, क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की ये स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट में, जिसके पास जितना पैसा रहता है सब देखकर ज्वाइन कर लेता है। अभी जैसे JPSC का आया तो DSP का 1,30,00,000 रुपया रेट था, BDO CO 1,20,00,000 रुपया रेट था। जैसे तो सरकार से हमको कहना है कि अगर इसी तरह करना है तो कॉलम आता है EWS का, जनरल का, तो रेट का भी कॉलम खोल दे।
5: ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं, जिससे मिलो उसकी अपनी अलग कहानी है। एक और अभ्यर्थी मिला जो अब 35 साल के हो गए, 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं अनियमितताओं की वजह से एग्जाम निकल ही नहीं रहा।
1: आप कितने एग्जाम दे चुके हैं?
8: मैंने 3 JPSC दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस लिखे हैं JPSC का।
1: सारे रद्द हुए हैं?
8: सारे रद्द नहीं हुए हैं, अभी तो इसके लिए हम लोग आए 14 के लिए, ये रद्द हुए।
1: पेपर लीक हुआ है सर?
8: हाँ, पेपर लीक हुआ इसके लिए।
1: कितने साल दे चुके हैं आप इन एग्जाम्स में?
8: मैंने तो मेरा ये 35 ईयर्स हो रहा है, ये एज 35 ईयर्स है।
1: कब से दे रहे हैं एग्जाम?
8: 2016 से दे रहे हैं, 2016 से।
1: पिछले 10 साल से आप ही एग्जाम दे रहे हैं?
8: 3 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू दिए, और ये वाला एक JPSC है 14 वाला, इसका तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सब देख रहे हैं कि अभी तक कट ऑफ भी नहीं पता, रिजल्ट निकाल दिया है,
1: कट ऑफ जारी।
5: ऐसा नहीं है कि यह हाल किसी एक एग्जाम का हो। एक और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मिले, विक्रम। झारखंड सरकार ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए पिछले 7 साल से भर्ती ही नहीं निकाली है। जब से झारखंड बना है तब से सिर्फ 3 बार भर्ती निकली है, अभी तो जद्दोजहद भर्ती निकालने की।
9: बात ऐसा है कि हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतने अभागे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता एग्जाम देने को। पिछले 26 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ सिर्फ 3 बार एग्जाम हुई, 2007, 2013 और 2019 में। 2019 के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई है। तो हमने RTI के जरिए आंकड़ा निकाला था, वो आंकड़ा निकल के आया है, हमारा 539 सीट खाली है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का लगभग आधा से ज्यादा सीट खाली होता है। इसके बाद हमने मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से जितने भी टेबल्स होते हैं वहां पे जाके अर्जी लगाई है कि हमारा वैकेंसी आ जाए, लेकिन वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। ये जो लेटर आप देख सकते हैं, मतलब विभाग में जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो DOPT में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ से वैकेंसी जारी होती है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, और इसी तरह से हमें घुमाया जा रहा है।
5: प्रीति चौधरी, रांची आज तक।
0: समाजवादी पार्टी की सियासत में PDA की परिभाषा अखिलेश यादव नए सिरे से समझा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2024 में PDA का गठन किया, तब कहा था कि PDA मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन अब जैसा वोट वैसा जोड़ चलने लगा है। जहां P से कभी पिछड़ा कहते हैं, आज PDA में P का मतलब पंडित बताने लगे थे।
10: पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
11: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया।
10: जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा।
11: जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
12: प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है।
11: जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
13: दिन भर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार।
14: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली।
10: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग।
11: संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है।
5: उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीट पर असर डालने वाले ब्राह्मण वोट में बंटवारा क्या समाजवादी पार्टी करा सकती है? ये सवाल आते ही बहुत से लोग कहते ना, एकदम नहीं। जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां संत समाज कहता है वो बीजेपी के साथ है, जहां सनातन की बात करती बीजेपी है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में 2 से ज्यादा बार बीजेपी नेताओं के मुंह पर आता है, जहां 10 ब्राह्मण वोट में 8 ब्राह्मण वोट बीजेपी 5 चुनावों से हासिल करती आई है, वहां समाजवादी पार्टी क्या ब्राह्मण वोट की आहुति से सत्ता का हवन कर सकती? जब आप जानने के लिए इस वीडियो पर गौर करना जरूरी है। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडे, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी जैसे तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। छोटे लोहिया कहे गए पुराने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, डमरू बजता है, जिस मंत्र को पढ़कर शिव को प्रसन्न किया गया वो शिव तांडव स्त्रोत होता है। इन सब के बीच अखिलेश यादव पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के रूप में गढ़े गए पीडीए के पी का नया रूप बताते हैं।
10: लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा।
5: जिस ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुट रही है, उससे जुड़े कुछ तथ्य नोट कर लीजिए। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य ये है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन तक ब्राह्मण ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे। यूपी में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का दूसरा तथ्य यह है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट बटा। 2007 में कई वर्षों के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी, तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। तीसरा तथ्य यह है कि 2007 से अब तक जिसके ब्राह्मण विधायक ज्यादा, उसकी सत्ता आई। 2007 में मायावती के बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते। 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। इन्हीं सब तथ्यों के बीच अखिलेश यादव, मुस्लिम यादव और फिर पिछड़े वोट के कुछ हिस्से के साथ अब सवर्णों में सबसे बड़े वर्ग ब्राह्मण वोट को जोड़ना चाहते हैं।
15: इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तक याद कराते हैं।
12: भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे आप हमारी पौराणिक कहा पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
16: समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और इनका ब्राह्मण समाज से सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कंफ्यूज है, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं, जनता इन्हें नकार चुकी है।
0: यूपी में ब्राह्मण वोटों को लेकर सियासत जोरों पर है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव कुछ घटनाएं याद दिलाकर ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप लगाते हैं, जिसमें आस्था के नाम पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर तक को वो जोड़ देते हैं।

0: पहली तस्वीर हाथ में त्रिशूल और डमरू, दूसरी तस्वीर काशी के ब्राह्मण बोले आज समाजवादी ही आवाज, प्रतीक चिन्ह के तौर पर इसी नारे वाली तस्वीर अखिलेश यादव लेते हैं, तीसरी तस्वीर नारा इस पर पढ़िए ब्राह्मण की मति पीडीए की शक्ति अखिलेश बदलेंगे यूपी की नियत, चौथी तस्वीर बीजेपी अपमान करती है समाजवादी सम्मान, जिसमें हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार सम्मान के साथ मंच पर बैठाया जाता है। इन प्रतीकों के साथ उत्तर प्रदेश पंडित जी सम्मान से कहे जाने वाले ब्राह्मण वोटर को अपने साथ समाजवादी पार्टी लाना चाहती है।
1: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं।
0: इसके बाद एक एक करके अखिलेश यादव याद दिलाते हैं कि वो हर विवाद जिससे ब्राह्मण वोट को उनकी पार्टी में शिफ्ट कराया जाए, और तब अखिलेश ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर चले बुलडोजर, प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े बटकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों के प्रीति भोज को बीजेपी के संगठन की तरफ से दिए गए नोटिस तक का जिक्र कर डाला।
1: याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है, सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था, और वो जो कहावत है गोरखपुर में हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है कोने हाथा नहीं भाता। बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें।
2: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका। गले में गांव में कहावत है बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कालर थी वो लटक गई, तो लोगों ने पूछा कहां से बिल्ली मौसी आ रही है, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजिम में ही हमेशा गुंडई अराजकता दंगे फसाद सर्व समाज का अपमान सनातन संस्कृत को ध्वस्त करना ये वही लोग हैं।
3: भारत की धरती पर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा, उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है।
4: ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से जूतों से मारा गया, क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे?
5: बड़ा असमंजस में है लोग, असमंजस में ये है कि पहले आप तय कर लीजिए कि आपकी भावना और मंशा क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं। पी की 29 परिभाषाएं समाजवादी पार्टी ने आपके सामने पहले दे रखी है। आपकी दुकान है, आप उसके मालिक हैं, आपका अपना स्कूल है, आप उसके प्रिंसिपल भी हैं, आप प्रबंधक भी हैं, तो व्याख्याएं आपको जो करनी हो वो आप करते रहिए।
6: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर न करें राजनीति। पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते नेता, विपक्ष ने पहले अमित शाह पर साधा था निशाना। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने माफी मांगी, मानी अपनी गलती। केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को आज फिर से पेश होने का दिया है समन। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड, कहा पवन पांडे होंगे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जीत का दावा किया। दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना, ऑडियो संदेश में कहा मुझे बेदखल करने के लिए छात्र आंदोलन को बनाया गया हथियार। कार्यक्रम में शामिल होने पर पूर्व क्रिकेटर शाकिब उल हसन के घर पर आगजनी की कोशिश। और आज तक की खबर का डबल असर, पीएमओ के दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों के लिए खत्म हो गए इंटरव्यू। उत्तराखंड परिवहन विभाग के रोडवेज कर्मचारियों को भी जल्द वेतन भुगतान के आदेश। रांची में 13 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है और छात्र आंदोलन का मुद्दा अब राजनीतिक हो चुका है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी रांची के इन छात्रों के प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं? कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं, आंदोलन बढ़ता जा रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें।
1: देवेंद्रनाथ महातो हैं जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से बात कर अपना पानी का अनशन छोड़ा है।
2: लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी।
3: पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की यह स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट।
2: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है।
4: दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे प्रदर्शन की गूंज भी अब पूरे देश में हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार दबाव के बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि आज झारखंड सरकार के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
1: सर आप बताएंगे, अभी पहले एसडीओ आए थे, क्या कह के गए हैं आप?
2: वो ये कर करके गए कि मुख्यमंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं, अभी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और जिनका बात रखा जाए और मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के बाद फिर ये मुद्दा पे डिस्कस करके अपने में एक सुझाव देंगे।
4: ये प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहा है। इसमें करीब 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ा हुआ था। बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा।
5: ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं लीग में रही थी, 26 सालों से कई लगातार। कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
6: अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी, आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी।
4: जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और ओएमआर शीट में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। वहीं जेएसएससी सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए।
0: अगर सरकार सारी मांगे मान ले पर सीबीआई को जांच ना दे, क्योंकि सुनने में आया है उसी पर सरकार अड़ी हुई है कि सीबीआई को नहीं सीआईडी को दे दिया जाए।
2: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ करके जो बात किया गया, जो बड़े ऑफिसर आए, एसडीओ आए, एसडीएम आए, जो भी आए, पांच लोग के, ठीक है। अब मेरा कहना है कि पांच लोग से ही अगर पर्सनल में बात करना है तो पांच लोग में ही आप अपने फैमिली में ही इलेक्शन लड़के।
4: ये प्रदर्शन राजनीतिक भी हो चुका है। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर सवाल उठा रही बीजेपी रांची के प्रदर्शन को पूरा समर्थन दे रही है। झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी प्रदर्शनकारियों से मिलने गए थे, लेकिन इधर जंतर मंतर के छात्रों के समर्थन में दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास घेरने वाले राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ सरकार में शामिल है। अब छात्र भी इस पर सवाल उठा रहे हैं।
0: एक सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें शामिल है कांग्रेस। कांग्रेस जो छात्रों की गूंज प्रयागराज तक लेके गई है, कांग्रेस जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए थे, आपके साथ उन्होंने आकर खड़े नहीं हुए हैं जैसा उनको उतरना चाहिए था, डिसअपॉइंटेड है उनसे।
7: ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची।
0: कुछ नहीं,
7: लड़की नहीं है मैम, मेरे लिए यही वर्ड सही है, हबीबी कम टू रांची।
0: पर डिसअपॉइंटेड है,
7: बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैम, मन खराब हो गया है। आप नीट के लिए इतना हावी प्रदर्शन कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेर रहे थे, और वहाँ तो एक एग्जाम का बात था मैम, वो भी एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ तो हमारे नौकरी का सवाल है।
4: प्रदर्शन में शामिल जिस भी छात्र को देखो उसकी अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची के ही छात्र यहाँ आए हैं, पूरे झारखंड से छात्र यहाँ आए। 19 साल का ये लड़का चतरा से यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आया है। जब ये 10वीं कक्षा में था तब इसका भाई जेपीएससी की तैयारी कर रहा था, अब ये ग्रेजुएट हो गया है और भाई अभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाया। अब दोनों भाई साथ में तैयारी करते हैं।
0: जब आप
8: 10th में थे,
0: आप 10th
8: का तैयारी करने आया था मैं रांची, वो लाइब्रेरी में पढ़ता था, भैया हैं ये जेएसएससी का तैयारी करते थे 2022 में, मैं आज 2026 में मैं भी जेएसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, जेपीएससी, ये भी वही चीज का करने लगे हैं, इनका ये 30+ हो गया। बताइए,
0: आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कितने साल के हैं सर?
9: मेरा 30 साल हो गया, 30 ईयर।
0: और ये 19 साल के हैं, कब से एक ही एग्जाम दे जा रहे हैं?
9: की एग्जाम
0: कब से?
9: 8 साल से।
0: 8 साल से एक एग्जाम दे रहे हैं?
9: जी जी जी, क्योंकि

0: पोस्ट का होता है सारा का, पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट में, जिसके पास जितना पैसा रहता है सब देखकर ज्वाइन कर लेता है। अभी जैसे जेपीएससी का आया तो डीएसपी का 1,30,00,000 रूपया रेट था, वीडियो सीओ 1,20,00,000 रूपया रेट था। जैसे तो सरकार से हमको कहना है कि अगर इसी तरह करना है तो कॉलम आता है ईडब्ल्यूएस का, जनरल का, तो रेट का भी कॉलम खोल दे।
1: ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं, जिससे मिलो उसकी अपनी अलग कहानी है। एक और अभ्यर्थी मिला जो अब 35 साल के हो गए, 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं अनियमितताओं की वजह से एग्जाम निकल ही नहीं रहा।
2: आप कितने एग्जाम दे चुके हैं?
3: मैंने 3 जेपीएससी दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस लिखे हैं जेपीएससी का।
2: सारे रद्द हुए हैं?
3: सारे रद्द नहीं हुए हैं, अभी तो इसके लिए हम लोग आए 14 के लिए, ये रद्द हुए।
2: पेपर लीक हुआ है सर?
3: हाँ, पेपर लीक हुआ इसके लिए।
2: कितने साल दे चुके हैं आप इन एग्जाम्स में?
3: मैंने तो, मेरा ये 35 इयर्स हो रहा है, ये एज 35 इयर्स है।
2: कब से दे रहे हैं एग्जाम?
3: 2016 से दे रहे हैं, 2016 से।
2: पिछले 10 साल से आप ही एग्जाम दे रहे हैं?
3: 3 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू दिए, और ये वाला एक जेपीएससी है 14 वाला, इसका तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सब देख रहे हैं कि अभी तक कट ऑफ भी नहीं पता, रिजल्ट निकाल दिया है,
2: कट ऑफ जारी।
1: ऐसा नहीं है कि यह हाल किसी एक एग्जाम का हो। एक और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मिले, विक्रम। झारखंड सरकार ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए पिछले 7 साल से भर्ती ही नहीं निकाली है। जब से झारखंड बना है तब से सिर्फ 3 बार भर्ती निकली है, अभी तो जद्दोजहद भर्ती निकालने की।
4: बात ऐसा है कि हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतने अभागे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता एग्जाम देने को। पिछले 26 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ सिर्फ 3 बार एग्जाम हुई, 2007, 2013 और 2019 में। 2019 के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुए। तो हमने आरटीआई के जरिए आंकड़ा निकाला था, वो आंकड़ा निकल के आया है हमारा 539 सीट खाली है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का लगभग आधा से ज्यादा सीट खाली होता है। इसके बाद हमने मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से जितने भी टेबल्स होते हैं वहां पे जाके अर्जी लगाई है कि हमारा वैकेंसी आ जाए, लेकिन वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। ये जो लेटर आप देख सकते हैं, मतलब विभाग में जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो डीओपीटी में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ से वैकेंसी जारी होती है। यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, और इसी तरह से हमें घुमाया जा रहा है।
1: प्रीति चौधरी, रांची, आज तक।
5: समाजवादी पार्टी की सियासत में पीडीए की परिभाषा अखिलेश यादव नए सिरे से समझा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2024 में पीडीए का गठन किया, तब कहा था कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन अब जैसा वोट वैसा जोड़ चलने लगा है। जहां पी से कभी पिछड़ा कहते हैं, आज पीडीए में पी का मतलब पंडित बताने लगे थे।
6: पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
7: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया।
6: जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा।
7: जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
8: प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है।
7: जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
9: दिन भर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार।
10: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100-100 चूहे खा के बिल्ली हज को चले।
6: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग।
7: संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है।
11: उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीट पर असर डालने वाले ब्राह्मण वोट में बंटवारा क्या समाजवादी पार्टी करा सकती है? ये सवाल आते ही बहुत से लोग कहते ना, एकदम नहीं। जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां संत समाज कहता है वो बीजेपी के साथ है, जहां सनातन की बात करती बीजेपी है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में 2 से ज्यादा बार बीजेपी नेताओं के मुंह पर आता है, जहां 10 ब्राह्मण वोट में 8 ब्राह्मण वोट बीजेपी 5 चुनावों से हासिल करती आई है, वहां समाजवादी पार्टी क्या ब्राह्मण वोट की आहुति से सत्ता का हवन कर सकती है?

0: जवाब जानने के लिए इस वीडियो पर गौर करना जरूरी है। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडे, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी जैसे तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। छोटे लोहिया कहे गए पुराने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, डमरू बजता है। जिस मंत्र को पढ़कर शिव को प्रसन्न किया गया वो शिव तांडव स्त्रोत होता है। इन सब के बीच अखिलेश यादव पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के रूप में गढ़े गए पीडीए के पी का नया रूप बताते हैं।
1: लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं वो जान लें कि पीडीए में पीडी पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे पीड़ा बढ़ाओगे उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा।
0: जिस ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुट रही है उससे जुड़े कुछ तथ्य नोट कर लीजिए। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य ये है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन तक ब्राह्मण ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे। यूपी में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का दूसरा तथ्य यह है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट बटा। 2007 में कई वर्षों के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। तीसरा तथ्य यह है कि 2007 से अब तक जिसके ब्राह्मण विधायक ज्यादा उसकी सत्ता आई। 2007 में मायावती के बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते। 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। इन्हीं सब तथ्यों के बीच अखिलेश यादव मुस्लिम यादव और फिर पिछड़े वोट के कुछ हिस्से के साथ अब सवर्णों में सबसे बड़े वर्ग ब्राह्मण वोट को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तक याद कराते हैं।
2: भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है, और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे आप हमारी पौराणिक कहा पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
3: समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और इनका ब्राह्मण समाज से सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कंफ्यूज है, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं, जनता इन्हें नकार चुकी है।
4: यूपी में ब्राह्मण वोटों को लेकर सियासत जोरों पर है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव कुछ घटनाएं याद दिलाकर ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप लगाते हैं, जिसमें आस्था के नाम पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर तक को वो जोड़ देते हैं।

0: पहली तस्वीर हाथ में त्रिशूल और डमरू, दूसरी तस्वीर काशी के ब्राह्मण बोले आज समाजवादी ही आवाज। प्रतीक चिन्ह के तौर पर इसी नारे वाली तस्वीर अखिलेश यादव लेते हैं। तीसरी तस्वीर नारा इस पर पढ़िए, ब्राह्मण की मति पीडीए की शक्ति, अखिलेश बदलेंगे यूपी की नियत। चौथी तस्वीर बीजेपी अपमान करती है समाजवादी सम्मान, जिसमें हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार सम्मान के साथ मंच पर बैठाया जाता है। इन प्रतीकों के साथ उत्तर प्रदेश पंडित जी सम्मान से कहे जाने वाले ब्राह्मण वोटर को अपने साथ समाजवादी पार्टी लाना चाहती है।
1: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं।
0: इसके बाद एक एक करके अखिलेश यादव याद दिलाते हैं कि वो हर विवाद जिससे ब्राह्मण वोट को उनकी पार्टी में शिफ्ट कराया जाए। और तब अखिलेश ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर चले बुलडोजर, प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े बटकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों के प्रीति भोज को बीजेपी के संगठन की तरफ से दिए गए नोटिस तक का जिक्र कर डाला।
1: याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है, सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था, और वो जो कहावत है गोरखपुर में हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है कोने हाथा नहीं भाता। बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें।
2: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में गांव में कहावत है बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कालर थी वो लटक गई। तो लोगों ने पूछा कहां से बिल्ली मौसी आ रही है, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजिम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृति को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं।
3: भारत की धरती पर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा, उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है।
4: ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से जूतों से मारा गया, क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे?
5: बड़ा असमंजस में है लोग। असमंजस में ये है कि पहले आप तय कर लीजिए कि आपकी भावना और मंशा क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं। पी की 29 परिभाषाएं समाजवादी पार्टी ने आपके सामने पहले दे रखी है। आपकी दुकान है, आप उसके मालिक हैं, आपका अपना स्कूल है, आप उसके प्रिंसिपल भी हैं, आप प्रबंधक भी हैं, तो व्याख्याएं आपको जो करनी हो वो आप करते रहिए।
6: उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को 4,200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई की निगरानी में बनाया गया। 13 जुलाई को देश के रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, आपको याद होगा। आज एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं और या फिर गड्ढों में एक्सप्रेसवे है, इसे लेकर जनता बुरी तरह से कंफ्यूज्ड है। जनता आप सरकार से सीधा सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी।
7: टैक्स पेयर्स के 4200 करोड़ रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ। दावा यही है कि कानपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे का तोहफा जनता को मिला है, लेकिन चंद दिनों में धूल फांकते वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की सच्चाई सामने आ गई। आज नए नवेले एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेसवे है, फर्क करना मुश्किल नहीं। सोचिए, नए एक्सप्रेसवे को चंद दिनों में मरम्मत की जरूरत पड़ गई तो आने वाले दिनों में क्या होगा। अब सवाल 4200 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता का है, क्योंकि पहली बरसात में एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई।
8: इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पर जहां पर उद्घाटन के बाद एक बार नहीं बल्कि दो बार सड़क खिसकने की शिकायत आई, जिसके बाद अब यहां पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि सबसे पहले 26 जुलाई को यानी उद्घाटन के 12 दिन बाद यहां पर सड़क खिसकने की शिकायत मिली, जिसके बाद NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर मरम्मत का काम कराया गया। एक बार फिर से 8 दिन बाद ये पूरी सड़क खिसक गई, जिसके बाद इस पूरे 200 से 300 मीटर के पूरे स्ट्रेच को काट कर फिर से बनाया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मशीन्स यहां पर लगी हैं, JCB मशीन्स एक तरफ खुदाई कर रही हैं और दूसरी तरफ मटेरियल डाल के यहां पर जो रोलर मशीन्स हैं उसको इस पूरे पैच वर्क की मरम्मत की जा रही है।
7: हालात ये है कि 5 जगहों पर एक्सप्रेसवे धस गया है। एक जगह मरम्मत का काम पूरा होता है तो दूसरा गड्ढा नजर आ जाता है, मतलब एक्सप्रेसवे बना है या गड्ढा वे।
8: कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में मरम्मत के चलते जिस दूसरी रोड को आने और जाने के लिए रखा गया था, यानी एक ही रोड जहां पर गाड़ियां आ भी रही थी या जहां गाड़ियां जा भी रही थी, अब वहां पर एक बैरिकेडिंग और लगा दी गई है। वजह यह है कि अब उस रोड पर भी शिकायतें सामने आने लगी है, वहां भी रोड धंसने लगी है और वहां भी रोड खिसकने लगी है। ये लाइव एग्जांपल है, हम मौजूद हैं उस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में। पीछे अगर आप देखेंगे बाएं तरफ पहले से ही काम चल रहा है मरम्मत का, वो 300 मीटर का स्ट्रेच पहले से ही काट कर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पर गाड़ियां आ भी रही हैं जा भी रही हैं, वहां पर एक और बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहां पर आप देखेंगे तो ये सड़क भी फिलहाल कल की बारिश के बाद धस गई है।
7: लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का स्या सच यही है, लेकिन इसी सच्चाई की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। वादा 120 की रफ्तार का था, लेकिन आज आम जनता सरकारी सिस्टम और ठेकेदारों के खेल की वजह से बीच में पिसने को मजबूर है।
9: मैं उन्नाव से आ रहा हूँ।
8: उन्नाव से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप आए तो
9: रास्ता बंद हुआ है,
8: तो आप लोग अब क्या क्या बताया उन्होंने कैसे?
9: वो टोल टैक्स पे बोल रहा था कि इधर से रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा आपको काफी दूर तक। अच्छा। वहाँ से उस लेन में जाके रॉन्ग साइड से तब आप जा सकते हो लखनऊ।
8: उन्होंने पहले नहीं कहीं लिख के रखा था कि रॉन्ग साइड है ऐसा?
9: वो उन्होंने फास्ट टैग काट दिया ना मेरा, जब कट गया तब बोला कि भैया आप आगे से जाके यू टर्न लेना रॉन्ग साइड से, उस घूम के लखनऊ जाना आप।
8: तो कितने किलोमीटर आप यहां से रॉन्ग साइड चले?
9: बताया नहीं उन्होंने कितना, उन्होंने बोला काफी आपको कम से कम आधा किलोमीटर एक किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद रॉन्ग साइड उधर से होके तब आपको जाना पड़ेगा।
8: सुविधा आप लोग को हो रही है?
9: भाई दिक्कत तो है, ये पता नहीं हो सकता चालान भी काट दे, मेरा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा उधर से घूम के, इधर रास्ता पता नहीं कैसे क्या है।
7: ये अंधेर गर्दी के गड्ढे नहीं तो क्या है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की खलाई खुलने के बावजूद NHAI के अफसर यही दावा कर रहे हैं कि कसूर तो बारिश का है, एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी और NHAI का नहीं।
10: ऐसा नहीं कि NHAI का रोड खराब होता, आप दूसरे रोड्स भी देखें तो ऐसा नहीं कि बारिश के कारण रोड खराब होते हैं, ये बारिश में फ्लेक्सिबल पेमेंट जहां रहते हैं वहां पे टूटी आते हैं।
7: इनका नाम है गौतम विशाल, NHAI के रीजनल अफसर हैं। सवाल जवाबदेही तय करने का है, लेकिन जिम्मेदारों ने बिना जांच पूरी हुए फैसला सुना दिया, मतलब जो अब तक होता आया है वही इस मामले में होगा। जांच और एक्शन की दुहाई देकर एक्सप्रेसवे के गड्ढों को NHAI के अफसर गटक जाएंगे, क्योंकि कसूर बरसात का है, क्वालिटी तो 100 आने खरी है।
10: AI तकनीक के हिसाब से बनाया गया और रोड क्रश मेरा एक्सप्रेसवे बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई क्वालिटी की कोई क्वालिटी बीच बीच में चेक होते गए हैं।
7: एक्सप्रेसवे को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं हुआ, सब कुछ मानकों के हिसाब से हुआ, तो NHAI को पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर और मौजूदा प्रोजेक्ट मैनेजर पर कार्रवाई का हंटर क्यों चलाना पड़ा? धसा हुआ एक्सप्रेसवे गवाही दे रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन एक्सप्रेसवे के निर्माण में हुई खामियों के बावजूद NHAI के अफसर बड़ी बेशर्मी से एक्सप्रेसवे की खूबियां गिना रहे हैं।
10: टोटल 63 किलोमीटर का लेंथ है और 126 किलोमीटर दोनों साइड मिला करके होते हैं। 126 किलोमीटर में आप मेरे 5 लोकेशंस हैं, 5 लोकेशन मिला करके 1 किलोमीटर भी लेंथ नहीं आता, और यानी कि मेरा मोर देन 98% स्ट्रेच में बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से आज भी चल रहा है।
7: सवाल यही है कि 4200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद एक्सप्रेसवे का एक भी हिस्सा घटिया क्यों निकला। सवाल NHAI के कर्मचारियों और एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के गड़बड़ छाले का है। क्या टैक्स पेयर्स के पैसों से बने एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण के बाद PNC पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ नोटिस भेजना नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी काफी है? क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में देश की जनता से वादा किया था कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन NHAI के अफसरों और ठेकेदारों पर गडकरी की चेतावनी जमीन पर नजर नहीं आई। यानी अभी बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
11: ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसे कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा, ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है। और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में किसी की मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए हैं। बेनीवाल जी, आपके भी मैं लाकाम लेके आया हूँ। और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैकलिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोकपीट करके सीधा कर दो, हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
6: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर न करें राजनीति। पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते नेता, विपक्ष ने पहले अमित शाह पर साधा था निशाना। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने माफी मांगी, मानी अपनी गलती। केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को आज फिर से पेश होने का दिया है समन। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड, कहा पवन पांडे होंगे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जीत का दावा किया। दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना, ऑडियो संदेश में कहा मुझे बेदखल करने के लिए छात्र आंदोलन को बनाया गया हथियार। कार्यक्रम में शामिल होने पर पूर्व क्रिकेटर शाकिब उल हसन के घर पर आगजनी की कोशिश। और आज तक की खबर का डबल असर, पीएमओ के दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों के लिए खत्म हो गए इंटरव्यू। उत्तराखंड परिवहन विभाग के रोडवेज कर्मचारियों को भी जल्द वेतन भुगतान के आदेश। रांची में 13 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है और छात्र आंदोलन का मुद्दा अब राजनीतिक हो चुका है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी रांची के इन छात्रों के प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं? कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं, आंदोलन बढ़ता जा रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें।
1: वहां पर देवेंद्र नाथ महातो हैं जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से बात कर अपना पानी का अनशन तोड़ा।
2: लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी।
3: क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की ये स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव भूल जाता है मार्केट।
2: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है।
4: दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे प्रदर्शन की गूंज भी अब पूरे देश में हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार दबाव के बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि आज झारखंड सरकार के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
5: सर आप बताएंगे, अभी पहले एसडीओ आए थे, क्या कह के गए हैं आप?
2: वो ये कर के गए कि मुख्यमंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और जिनका बात रखा जाए और मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के बाद फिर ये मुद्दा पे डिस्कस करके अपने में एक सुझाव देंगे।
4: ये प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहा है। इसमें करीब 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ा हुआ था। बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा।
6: मेरी 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं नींद में हुई थी। 26 सालों से कई लगातार कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
7: अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी, आप बेहोश होंगे, फिर सरकार का अपना निर्णय लेगी।
4: जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और ओएमआर शीट में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। वहीं जेएसएससी सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए।
5: अगर सरकार सारी मांगे मान ले पर सीबीआई को जांच ना दे, क्योंकि सुनने में आया है उसी पर सरकार अड़ी हुई है कि सीबीआई को नहीं सीआईडी को दे दिया जाए।
2: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जो बात किया गया, जो बड़े ऑफिसर आए, एसडीओ आए, एसडीएम आए, जो भी आए, पांच लोग के, ठीक है। अब मेरा कहना है कि पांच लोग से ही अगर पर्सनल में बात करना है तो पांच लोग में ही आप अपने फैमिली में ही इलेक्शन लड़के।
4: ये प्रदर्शन राजनीतिक भी हो चुका है। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर सवाल उठा रही बीजेपी रांची के प्रदर्शन को पूरा समर्थन दे रही है। झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी प्रदर्शनकारियों से मिलने गए थे, लेकिन इधर जंतर मंतर के छात्रों के समर्थन में दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास घेरने वाले राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ सरकार में शामिल है। अब छात्र भी इस पर सवाल उठा रहे हैं।
5: एक सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें शामिल है कांग्रेस। कांग्रेस जो छात्रों की गूंज प्रयागराज तक लेके गई है, कांग्रेस जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए थे, आपके साथ उन्होंने आकर खड़े नहीं हुए हैं जैसा उनको उतरना चाहिए था, डिसअपॉइंटेड है उनसे?
8: ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
5: हबीबी
8: कम टू रांची।
5: कुछु कुछु नहीं,
8: लड़की नहीं है मैम, मेरे लिए यही वर्ड सही है, हबीबी कम टू रांची,
5: हबीबी कम टू रांची। पर डिसअपॉइंटेड है,
8: बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैम, मन खराब हो गया है। आप नीट के लिए इतना हावी प्रदर्शन कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेर रहे थे, और वहाँ तो एक एग्जाम का बात था मैम, वो भी एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ तो हमारे नौकरी का सवाल है।
4: प्रदर्शन में शामिल जिस भी छात्र को देखो उसकी अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची के ही छात्र यहाँ आए हैं, पूरे झारखंड से छात्र यहाँ आए हैं। 19 साल का ये लड़का चतरा से यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आया है। जब ये 10वीं कक्षा में था तब इसका भाई जेपीएससी की तैयारी कर रहा था, अब ये ग्रेजुएट हो गया है और भाई अभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाया। अब दोनों भाई साथ में तैयारी करते हैं।
5: जब आप
9: 10th में थे,
5: आप 10th
9: का तैयारी करने आया था मैं रांची, वो लाइब्रेरी में पढ़ता था, भैया हैं ये जेएसएससी का तैयारी करते थे 2022 में, मैं आज 2026 में मैं भी जेएसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, जेपीएससी, ये भी वही चीज का करने लगे हैं, इनका ये 30 प्लस हो गया। बताइए,
5: आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कितने साल के हैं सर?
10: मेरा 30 साल हो गया, 30 ईयर।
5: और ये 19 साल के हैं, कब से एक ही एग्जाम दे जा रहे हैं?
10: की एग्जाम
5: कब से?
10: 8 साल से।
5: 8 साल से एक एग्जाम दे रहे हैं?
10: जी जी जी, क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की ये स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट में, जिसके पास जितना पैसा रहता है सब देखकर ज्वाइन कर लेता है। अभी जैसे जेपीएससी का आया तो डीएसपी का 1,30,00,000 रुपया रेट था, बीडीओ सीओ 1,20,00,000 रुपया रेट था। जैसे तो सरकार से हमको कहना है कि अगर इसी तरह करना है तो कॉलम आता है ईडब्ल्यूएस का, जनरल का, तो रेट का भी कॉलम खोल दे।
4: ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं, जिससे मिलो उसकी अपनी अलग कहानी है। एक और अभ्यर्थी मिला जो अब 35 साल के हो गए, 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं अनियमितताओं की वजह से एग्जाम निकल ही नहीं रहा।
5: आप कितने एग्जाम दे चुके हैं?
11: मैंने 3 जेपीएससी दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस लिखे हैं जेपीएससी का।
5: सारे रद्द हुए हैं?
11: सारे रद्द नहीं हुए हैं, अभी तो इसके लिए हम लोग आए 14 के लिए, ये रद्द हुए।
5: पेपर लीक हुआ है सर?
11: पेपर लीक हुआ इसके लिए।
5: कितने साल दे चुके हैं आप इन एग्जाम्स में?
11: मैंने तो मेरा ये 35 इयर्स हो रहा है, ये एज 35 इयर्स है।
5: कब से दे रहे हैं एग्जाम?
11: 2016 से दे रहे हैं, 2016 से।
5: पिछले 10 साल से आप एग्जाम दे रहे हैं?
11: 3 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू दिए, और ये वाला एक जेपीएससी है 14 वाला, इसका तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सब देख रहे हैं कि अभी तो कट ऑफ भी नहीं पता, रिजल्ट निकाल दिया है,
5: कट ऑफ जारी नहीं।
4: ऐसा नहीं है कि यह हाल किसी एक एग्जाम का हो। एक और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मिले, विक्रम। झारखंड सरकार ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए पिछले 7 साल से भर्ती ही नहीं निकाली है। जब से झारखंड बना है तब से सिर्फ 3 बार भर्ती निकली है, अभी तो जद्दोजहद भर्ती निकालने की।
12: बात ऐसा है कि हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतने अभागे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता है एग्जाम देने को। पिछले 26 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ सिर्फ 3 बार एग्जाम हुई, 2007, 2013 और 2019 में। 2019 के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई है। तो हमने RTI के जरिए आंकड़ा निकाला था, वो आंकड़ा निकल के आया है हमारा 539 सीट खाली है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का लगभग आधा से ज्यादा सीट खाली होता है। इसके बाद हमने मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से जितने भी टेबल्स होते हैं वहां पे जाके अर्जी लगाई है कि हमारा वैकेंसी आ जाए, लेकिन वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। ये जो लेटर आप देख सकते हैं, मतलब विभाग में जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो DOPT में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहां से वैकेंसी जारी होती है। यहां जाते हैं तो यहां बताया जाता है, यहां जाते हैं तो यहां बताया जाता है, और इसी तरह से हमें घुमाया जा रहा है।
4: प्रीति चौधरी, रांची आज तक।
0: समाजवादी पार्टी की सियासत में PDA की परिभाषा अखिलेश यादव नए सिरे से समझा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2024 में PDA का गठन किया, तब कहा था कि PDA मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन अब जैसा वोट वैसा जोड़ चलने लगा है। जहां P से कभी पिछड़ा कहते हैं, आज PDA में P का मतलब पंडित बताने लगे थे।
13: PDA में PD पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
14: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया।
13: जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही PDA और मजबूत दिखाई देगा।
14: जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
15: प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है।
14: जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
16: दिन भर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार।
17: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चले।
13: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग।
14: संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है।
18: उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीट पर असर डालने वाले ब्राह्मण वोट में बंटवारा क्या समाजवादी पार्टी करा सकती है? ये सवाल आते ही बहुत से लोग कहते ना, एकदम नहीं। जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां संत समाज कहता है वो BJP के साथ है, जहां सनातन की बात करती BJP है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में 2 से ज्यादा बार BJP नेताओं के मुंह पर आता है, जहां 10 ब्राह्मण वोट में 8 ब्राह्मण वोट BJP 5 चुनावों से हासिल करती आई है, वहां समाजवादी पार्टी क्या ब्राह्मण वोट की आहुति से सत्ता का हवन कर सकती? जवाब जानने के लिए इस वीडियो पर गौर करना जरूरी है। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडे, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी जैसे तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। छोटे लोहिया कहे गए पुराने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, डमरू बजता है, जिस मंत्र को पढ़कर शिव को प्रसन्न किया गया वो शिव तांडव स्त्रोत होता है। इन सब के बीच अखिलेश यादव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के रूप में गढ़े गए PDA के P का नया रूप बताते हैं।
13: लोग PDA की बात करते हैं और PDA की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से PDA से वो लोग हारे हैं, तब से PDA की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं PDA में PD पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग PDA की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि PDA में PD जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही PDA और मजबूत दिखाई देगा।
18: जिस ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुट रही है उससे जुड़े कुछ तथ्य नोट कर लीजिए। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य ये है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन तक ब्राह्मण ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे। यूपी में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का दूसरा तथ्य यह है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट बटा। 2007 में कई वर्षों के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। तीसरा तथ्य यह है कि 2007 से अब तक जिसके ब्राह्मण विधायक ज्यादा उसकी सत्ता आई। 2007 में मायावती के बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते। 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। इन्हीं सब तथ्यों के बीच अखिलेश यादव, मुस्लिम यादव और फिर पिछड़े वोट के कुछ हिस्से के साथ अब सवर्णों में सबसे बड़े वर्ग ब्राह्मण वोट को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तक याद कराते हैं।
15: भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे आप हमारी पौराणिक कहां पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
19: समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इनका ब्राह्मण समाज से और सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं, ये खुद कन्फ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं, जनता इन्हें नकार चुकी है।
0: यूपी में ब्राह्मण वोटों को लेकर सियासत जोरों पर है और यही वजह है कि अखिलेश यादव कुछ घटनाएं याद दिलाकर ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप लगाते हैं, जिसमें आस्था के नाम पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर तक को वो जोड़ देते हैं।

0: पहली तस्वीर हाथ में त्रिशूल और डमरू, दूसरी तस्वीर काशी के ब्राह्मण बोले आज समाजवादी ही आवाज। प्रतीक चिन्ह के तौर पर इसी नारे वाली तस्वीर अखिलेश यादव लेते हैं। तीसरी तस्वीर नारा इस पर पढ़िए, ब्राह्मण की मति पीडीए की शक्ति, अखिलेश बदलेंगे यूपी की नियत। चौथी तस्वीर बीजेपी अपमान करती है समाजवादी सम्मान, जिसमें हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार सम्मान के साथ मंच पर बैठाया जाता है। इन प्रतीकों के साथ उत्तर प्रदेश पंडित जी सम्मान से कहे जाने वाले ब्राह्मण वोटर को अपने साथ समाजवादी पार्टी लाना चाहती है।
1: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं।
0: इसके बाद एक एक करके अखिलेश यादव याद दिलाते हैं कि वो हर विवाद जिससे ब्राह्मण वोट को उनकी पार्टी में शिफ्ट कराया जाए। और तब अखिलेश ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर चले बुलडोजर, प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े बटकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों के प्रीति भोज को बीजेपी के संगठन की तरफ से दिए गए नोटिस तक का जिक्र कर डाला।
1: याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है, सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था, और वो जो कहावत है गोरखपुर में हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है कोने हाथा नहीं भाता। बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें।
2: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में गांव में कहावत है बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कालर थी वो लटक गई। तो लोगों ने पूछा कहां से बिल्ली मौसी आ रहे हैं, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजिम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृति को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं।
3: भारत की धरती पर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा, उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है।
4: ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से जूतों से मारा गया, क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे?
5: बड़ा असमंजस में है लोग। असमंजस में ये है कि पहले आप तय कर लीजिए कि आपकी भावना और मंशा क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं। पी की 29 परिभाषाएं समाजवादी पार्टी ने आपके सामने पहले दे रखी है। आपकी दुकान है, आप उसके मालिक हैं, आपका अपना स्कूल है, आप उसके प्रिंसिपल भी हैं, आप प्रबंधक भी हैं, तो व्याख्याएं आपको जो करनी हो वो आप करते रहिए।
6: उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को 4,200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई की निगरानी में बनाया गया। 13 जुलाई को देश के रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, आपको याद होगा। आज एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं और या फिर गड्ढों में एक्सप्रेसवे है, इसे लेकर जनता बुरी तरह से कंफ्यूज है। जनता अब सरकार से सीधा सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी।
7: टैक्स पेयर्स के 4200 करोड़ रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ। दावा यही है कि कानपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे का तोहफा जनता को मिला है, लेकिन चंद दिनों में धूल फांकते वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे की सच्चाई सामने आ गई। आज नए नवेले एक्सप्रेस वे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेस वे है, फर्क करना मुश्किल नहीं। सोचिए, नए एक्सप्रेस वे को चंद दिनों में मरम्मत की जरूरत पड़ गई तो आने वाले दिनों में क्या होगा। अब सवाल 4200 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता का है, क्योंकि पहली बरसात में एक्सप्रेस वे की पोल खुल गई।
8: इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पर जहां पर उद्घाटन के बाद एक बार नहीं बल्कि दो बार सड़क खिसकने की शिकायत आई, जिसके बाद अब यहां पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि सबसे पहले 26 जुलाई को यानी उद्घाटन के 12 दिन बाद यहां पर सड़क खिसकने की शिकायत मिली, जिसके बाद NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर मरम्मत का काम कराया गया। एक बार फिर से 8 दिन बाद ये पूरी सड़क खिसक गई, जिसके बाद इस पूरे 200 से 300 मीटर के पूरे स्ट्रेच को काट कर फिर से बनाया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पर लगी हैं, JCB मशीन से एक तरफ खुदाई कर रही हैं और दूसरी तरफ मटेरियल डाल के यहाँ पर जो रोलर मशीन्स हैं उसको इस पूरे पैच वर्क की मरम्मत की जा रही है।
7: हालात ये है कि 5 जगहों पर एक्सप्रेस वे धस गया है। एक जगह मरम्मत का काम पूरा होता है तो दूसरा गड्ढा नजर आ जाता है, मतलब एक्सप्रेस वे बना है या गड्ढा वे।
8: कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे में मरम्मत के चलते जिस दूसरी रोड को आने और जाने के लिए रखा गया था, यानी एक ही रोड जहां पर गाड़ियां आ भी रही थी या जहां गाड़ियां जा भी रही थी, अब वहां पर एक बैरिकेडिंग और लगा दी गई है। वजह यह है कि अब उस रोड पर भी शिकायतें सामने आने लगी है, वहां भी रोड धंसने लगी है और वहां भी रोड खिसकने लगी है। ये लाइव एग्जांपल है, हम मौजूद हैं उस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में। पीछे अगर आप देखेंगे बाएं तरफ पहले से ही काम चल रहा है मरम्मत का, वो 300 मीटर का स्ट्रेच पहले से ही काट कर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पर गाड़ियां आ भी रही हैं जा भी रही हैं, वहां पर एक और बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहां पर आप देखेंगे तो ये सड़क भी फिलहाल कल की बारिश के बाद धस गई है।
7: लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का स्याह सच यही है, लेकिन इसी सच्चाई की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। वादा 120 की रफ्तार का था, लेकिन आज आम जनता सरकारी सिस्टम और ठेकेदारों के खेल की वजह से बीच में पिसने को मजबूर है।
9: मैं उन्नाव से आ रहा हूँ।
8: उन्नाव से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप आए तो
9: रास्ता बंद हुआ है,
8: तो आप लोग अब यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि कैसे?
9: वो टोल टैक्स पे बोल रहा था कि इधर से रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा आपको काफी दूर तक। अच्छा। वहाँ से उस लेन में जाके रॉन्ग साइड से तब आप जा सकते हो लखनऊ।
8: तो उन्होंने पहले नहीं कहीं लिख के रखा था कि रॉन्ग साइड है ऐसा?
9: वो उन्होंने फास्ट टैग काट दिया ना मेरा, जब कट गया तब बोला कि भैया आप आगे से जाके यू टर्न लेना, रॉन्ग साइड से घूम के लखनऊ जाना।
8: तो कितने किलोमीटर आप यहाँ से रॉन्ग साइड चले?
9: बताया नहीं उन्होंने कितना, उन्होंने बोला काफी आपको कम से कम आधा किलोमीटर एक किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद रॉन्ग साइड उधर से होके तब आपको जाना पड़ेगा।
8: सुविधा आप लोग को हो रही है?
9: भाई दिक्कत तो है, पता नहीं हो सकता चालान भी काट दे, मेरा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा उधर से घूम के, इधर रास्ता पता नहीं कैसे क्या है।
7: ये अंधेर गर्दी के गड्ढे नहीं तो क्या है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे की कलई खुलने के बावजूद NHAI के अफसर यही दावा कर रहे हैं कि कसूर तो बारिश का है, एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनी और NHAI का नहीं।
10: ऐसा नहीं कि NHAI का रोड खराब होता, आप दूसरे रोड से भी देखें तो ऐसा नहीं कि बारिश के कारण रोड खराब होते हैं, ये बारिश में फ्लेक्सिबल पेमेंट जहाँ रहते हैं वहाँ पे टूटी आते हैं।
7: इनका नाम है गौतम विशाल, NHAI के रीजनल अफसर है। सवाल जवाबदेही तय करने का है, लेकिन जिम्मेदारों ने बिना जांच पूरी हुए फैसला सुना दिया, मतलब जो अब तक होता आया है वही इस मामले में होगा। जांच और एक्शन की दुहाई देकर एक्सप्रेस वे के गड्ढों को NHAI के अफसर गटक जाएंगे, क्योंकि कसूर बरसात का है, क्वालिटी तो 100 आने खरी है।
10: AI तकनीक के हिसाब से बनाएगा और रोड क्रश मेरा एक्सप्रेस वे बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई क्वालिटी की कोई क्वालिटी बीच बीच में चेक होते गए हैं।
7: एक्सप्रेस वे को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं हुआ, सब कुछ मानकों के हिसाब से हुआ, तो NHAI को पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर और मौजूदा प्रोजेक्ट मैनेजर पर कार्रवाई का हंटर क्यों चलाना पड़ा? धसा हुआ एक्सप्रेस वे गवाही दे रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन एक्सप्रेस वे के निर्माण में हुई खामियों के बावजूद NHAI के अफसर बड़ी बेशर्मी से एक्सप्रेस वे की खूबियां गिना रहे हैं।
10: टोटल 63 किलोमीटर का लेंथ है और 126 किलोमीटर दोनों साइड मिला करके होते हैं। 126 किलोमीटर में आप मेरे 5 लोकेशंस हैं, 5 लोकेशन मिला करके 1 किलोमीटर भी लेंथ नहीं आता, और यानी कि मेरा मोर देन 98% स्ट्रेस में बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से आज भी चल रहा है।
7: सवाल यही है कि 4200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद एक्सप्रेसवे का एक भी हिस्सा घटिया क्यों निकला। सवाल NHAI के कर्मचारियों और एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के गड़बड़ छाले का है। क्या टैक्स पेयर्स के पैसों से बने एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण के बाद PNC पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ नोटिस भेजना नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी काफी है? क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में देश की जनता से वादा किया था कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन NHAI के अफसरों और ठेकेदारों पर गडकरी की चेतावनी जमीन पर नजर नहीं आई। यानी अभी बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
11: ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसे कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा, ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है। और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में किसी की मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए हैं। बेनीवाल जी, आपके भी मैं लाकाम लेके आया हूँ। और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैकलिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर दो, हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
6: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर न करें राजनीति। पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते नेता, विपक्ष ने पहले अमित शाह पर साधा था निशाना। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने माफी मांगी, मानी अपनी गलती। केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को आज फिर से पेश होने का दिया है समन। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड, कहा पवन पांडे होंगे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जीत का दावा किया। दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना, ऑडियो संदेश में कहा मुझे बेदखल करने के लिए छात्र आंदोलन को बनाया गया हथियार। कार्यक्रम में शामिल होने पर पूर्व क्रिकेटर शाकिब उल हसन के घर पर आगजनी की कोशिश। और आज तक की खबर का डबल असर, पीएमओ के दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों के लिए खत्म होगा इंटरव्यू। उत्तराखंड परिवहन विभाग के रोडवेज कर्मचारियों को भी जल्द वेतन भुगतान के आदेश। रांची में 13 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है और छात्र आंदोलन का मुद्दा अब राजनीतिक हो चुका है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी रांची के इन छात्रों के प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं? कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं आंदोलन पर।
1: वहां पर देवेंद्र नाथ महातो हैं जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से बात कर अपना पानी का अनशन छोड़ा।
2: लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी।
3: क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की यह स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव भूल जाता है मार्केट।
4: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है।
5: दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे प्रदर्शन की गूंज भी अब पूरे देश में हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार दबाव के बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि आज झारखंड सरकार के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
6: सर आप बताएंगे, अभी पहले एसडीओ आए थे, क्या कह के गए हैं आप?
4: वो ये कर करके गए कि मुख्यमंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है, और जिनका बात रखा जाए और मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के बाद फिर ये मुद्दा पे डिस्कस करके अपने में एक सुझाव देंगे।
5: ये प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहा है। इसमें करीब 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ा हुआ था। बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा।
7: ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं लीग में हुई थी। मैं 26 सालों से कई लगातार कल डॉक्टर हमको हिदायत दे दिए थे कि अगर आप जब नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
5: जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और ओएमआर शीट में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। वहीं जेएसएससी सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए।
6: अगर सरकार सारी मांगे मान ले पर सीबीआई को जांच ना दे, क्योंकि सुनने में आया है उसी पर सरकार अड़ी हुई है कि सीबीआई को नहीं सीआईडी को दे दिया जाए।
4: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जो बात किया गया, जो बड़े ऑफिसर आए, एसडीओ आए, एसडीएम आए, जो भी आए, पांच लोग के, ठीक है। अब मेरा कहना है कि पांच लोग से ही अगर पर्सनल में बात करना है तो पांच लोग में ही आप अपने फैमिली में ही इलेक्शन लड़के।
5: ये प्रदर्शन राजनीतिक भी हो चुका है। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर सवाल उठा रही बीजेपी रांची के प्रदर्शन को पूरा समर्थन दे रही है। झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी प्रदर्शनकारियों से मिलने गए थे, लेकिन इधर जंतर मंतर के छात्रों के समर्थन में दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास घेरने वाले राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ सरकार में शामिल है। अब छात्र भी इस पर सवाल उठा रहे हैं।
6: एक सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें शामिल है कांग्रेस। कांग्रेस जो छात्रों की गूंज प्रयागराज तक लेके गई है, कांग्रेस जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए थे, आपके साथ उन्होंने आकर

0: सामने बैठ गए थे, आपके साथ उन्होंने आकर खड़े नहीं हुए हैं जैसा उनको उतरना चाहिए था, डिसअपॉइंटेड है उनसे।
1: यस मैम, ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
2: हबीबी
1: कम टू रांची,
2: कुछ कुछ नहीं
1: लड़की नहीं है मैम, मेरे लिए यही वर्ड सही है, हबीबी कम टू रांची,
0: हबीबी कम टू रांची। पर डिसअपॉइंटेड है,
1: बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैम, मन खराब हो गया है। आप नीट के लिए इतना हावी प्रदर्शन कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेर रहे थे, और वहाँ तो एक एग्जाम का बात था मैम, वो भी एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ तो हमारे नौकरी का सवाल है।
3: प्रदर्शन में शामिल जिस भी छात्र को देखो उसकी अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची के ही छात्र यहाँ आए हैं, पूरे झारखंड से छात्र यहाँ आए। 19 साल का ये लड़का चतरा से यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आया है। जब ये 10वीं कक्षा में था तब इसका भाई जेपीएससी की तैयारी कर रहा था, अब ये ग्रेजुएट हो गया है और भाई अभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाया। अब दोनों भाई साथ में तैयारी करते हैं।
0: जब आप
4: 10th में थे,
0: आप 10th
4: का तैयारी करने आया था मैं रांची, वो लाइब्रेरी में पढ़ता था, भैया है ये जेएसएससी का तैयारी करते थे 2022 में, मैं आज 2026 में मैं भी जेएसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, जेपीएससी, ये भी वही चीज का करने लगे हैं, इनका ये 30+ हो गया। बताइए,
0: आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कितने साल के हैं सर?
5: मेरा 30 साल हो गया, 30 ईयर,
0: और ये 19 साल के हैं। कब से एक ही एग्जाम दे जा रहे हैं?
5: की एग्जाम
0: कब से?
5: 8 साल से।
0: 8 साल से एक एग्जाम दे रहे हैं?
5: जी जी जी, क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की ये स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट में, और जिसके पास जितना पैसा रहता है सब देखकर ज्वाइन कर लेता है। अभी जैसे जेपीएससी का आया तो डीएसपी का 1,30,00,000 रुपया रेट था, बीडीओ सीओ 1,20,00,000 रुपया रेट था। जैसे तो सरकार से हमको कहना है कि अगर इसी तरह करना है तो कॉलम आता है ईडब्ल्यूएस का, जनरल का, तो रेट का भी कॉलम खोल दे।
3: ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं, जिससे मिलो उसकी अपनी अलग कहानी है। एक और अभ्यर्थी मिला जो अब 35 साल के हो गए, 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं अनियमितताओं की वजह से एग्जाम निकल ही नहीं रहा।
0: आप कितने एग्जाम दे चुके हैं?
6: मैंने 3 जेपीएससी दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस लिखे हैं जेपीएससी का।
0: सारे रद्द हुए हैं?
6: सारे रद्द नहीं हुए हैं, अभी तो इसके लिए हम लोग आए 14 के लिए, ये रद्द
0: पेपर लीक हुआ है सर।
6: पेपर लीक हुआ इसके लिए।
0: कितने साल दे चुके हैं आप इन एग्जाम?
6: मैंने तो मेरा ये 35 ईयर्स हो रहा है, ये एज 35 ईयर्स है।
0: कब से दे रहे हैं एग्जाम?
6: 2016 से दे रहे हैं, 2016 से।
0: पिछले 10 साल से आप ही एग्जाम दे रहे हैं?
6: 3 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू दिए, और ये वाला एक जेपीएससी है 14 वाला, इसका तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सब देख रहे हैं कि अभी तो कट ऑफ भी नहीं पता, रिजल्ट निकाल दिया है,
0: कट ऑफ जारी नहीं।
3: ऐसा नहीं है कि यह हाल किसी एक एग्जाम का हो। एक और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मिले, विक्रम। झारखंड सरकार ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए पिछले 7 साल से भर्ती ही नहीं निकाली है। जब से झारखंड बना है तब से सिर्फ 3 बार भर्ती निकली है, अभी तो जद्दोजहद भर्ती निकालने की।
1: बात ऐसा है कि हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतने अभागे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता एग्जाम देने को। पिछले 26 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ सिर्फ 3 बार एग्जाम हुई, 2007, 2013 और 2019 में। 2019 के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई है। तो हमने आरटीआई के जरिए आंकड़ा निकाला था, वो आंकड़ा निकल के आया है हमारा 539 सीट खाली है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का लगभग आधा से ज्यादा सीट खाली होता है। इसके बाद हमने मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से जितने भी टेबल्स होते हैं वहां पे जाके अर्जी लगाई है कि हमारा वैकेंसी आ जाए, लेकिन वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। ये जो लेटर आप देख सकते हैं, मतलब विभाग में जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो डीओपीटी में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहां से वैकेंसी जारी होती है, यहां जाते हैं तो यहां बताया जाता है, यहां जाते हैं तो यहां बताया जाता है, और इसी तरह से हमें घुमाया जा रहा है।
3: प्रीति चौधरी, रांची आज तक।
7: समाजवादी पार्टी की सियासत में पीडीए की परिभाषा अखिलेश यादव नए सिरे से समझा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2024 में पीडीए का गठन किया, तब कहा था कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन अब जैसा वोट वैसा जोड़ चलने लगा है। जहां पी से कभी पिछड़ा कहते हैं, आज पीडीए में पी का मतलब पंडित बताने लगे थे।
8: पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
9: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया।
8: जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखेगा।

0: दिखाई देगा।
1: तो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
2: प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है।
1: जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
3: दिन भर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, शाम को चलाओ अपार चलाओ अपार चलाओ अपार चलाओ अपार चलाओ अपार।
4: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चले।
0: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग।
1: संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहाँ किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है।
5: उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीट पर असर डालने वाले ब्राह्मण वोट में बंटवारा क्या समाजवादी पार्टी करा सकती है? ये सवाल आते ही बहुत से लोग कहते ना, एकदम नहीं। जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां संत समाज कहता है वो बीजेपी के साथ है, जहां सनातन की बात करती बीजेपी है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में दो से ज्यादा बार बीजेपी नेताओं के मुंह पर आता है, जहां 10 ब्राह्मण वोट में 8 ब्राह्मण वोट बीजेपी 5 चुनावों से हासिल करती आई है, वहां समाजवादी पार्टी क्या ब्राह्मण वोट की आहुति से सत्ता का हवन कर सकती? जवाब जानने के लिए इस वीडियो पर गौर करना जरूरी है। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडे, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी जैसे तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। छोटे लोहिया कहे गए पुराने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, डमरू बजता है, जिस मंत्र को पढ़कर शिव को प्रसन्न किया गया वो शिव तांडव स्त्रोत होता है। इन सब के बीच अखिलेश यादव पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के रूप में गढ़े गए पीडीए के पी का नया रूप बताते हैं।
0: लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा।
5: जिस ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुट रही है, उससे जुड़े कुछ तथ्य नोट कर लीजिए। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य ये है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन तक ब्राह्मण ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे। यूपी में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का दूसरा तथ्य यह है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट बटा। 2007 में कई वर्षों के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी, तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। तीसरा तथ्य यह है कि 2007 से अब तक जिसके ब्राह्मण विधायक ज्यादा, उसकी सत्ता आई। 2007 में मायावती के बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते। 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। इन्हीं सब तथ्यों के बीच अखिलेश यादव, मुस्लिम यादव और फिर पिछड़े वोट के कुछ हिस्से के साथ अब सवर्णों में सबसे बड़े वर्ग ब्राह्मण वोट को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तक याद कराते हैं।
2: भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती? कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे आप हमारी पौराणिक कहा पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसलिए समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
6: समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और इनका ब्राह्मण समाज से सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं, ये खुद कन्फ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं, जनता इन्हें नकार चुकी है।
7: यूपी में ब्राह्मण वोटों को लेकर सियासत जोरों पर है और यही वजह है कि अखिलेश यादव कुछ घटनाएं याद दिलाकर ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप लगाते हैं, जिसमें आस्था के नाम पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर तक को वो जोड़ देते हैं।

0: पहली तस्वीर हाथ में त्रिशूल और डमरू, दूसरी तस्वीर काशी के ब्राह्मण बोले आज समाजवादी ही आवाज। प्रतीक चिन्ह के तौर पर इसी नारे वाली तस्वीर अखिलेश यादव लेते हैं। तीसरी तस्वीर नारा इस पर पढ़िए, ब्राह्मण की मति पीडीए की शक्ति, अखिलेश बदलेंगे यूपी की नियत। चौथी तस्वीर बीजेपी अपमान करती है समाजवादी सम्मान, जिसमें हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार सम्मान के साथ मंच पर बैठाया जाता है। इन प्रतीकों के साथ उत्तर प्रदेश पंडित जी सम्मान से कहे जाने वाले ब्राह्मण वोटर को अपने साथ समाजवादी पार्टी लाना चाहती है।
1: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं।
0: इसके बाद एक एक करके अखिलेश यादव याद दिलाते हैं कि वो हर विवाद जिससे ब्राह्मण वोट को उनकी पार्टी में शिफ्ट कराया जाए। और तब अखिलेश ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर चले बुलडोजर, प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े बटकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों के प्रीति भोज को बीजेपी के संगठन की तरफ से दिए गए नोटिस तक का जिक्र कर डाला।
1: याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है, सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था, और वो जो कहावत है गोरखपुर में हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है कोने हाथा नहीं भाता। बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें।
2: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में गांव में कहावत है बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कालर थी वो लटक गई, तो लोगों ने पूछा कहां से बिल्ली मौसी आ रही है, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजिम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृति को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं।
3: भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा, उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है।
4: ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से जूतों से मारा गया, क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे?
5: बड़ा असमंजस में है लोग। असमंजस में ये है कि पहले आप तय कर लीजिए कि आपकी भावना और मंशा क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं। पी की 29 परिभाषाएं समाजवादी पार्टी ने आपके सामने पहले दे रखी है। आपकी दुकान है, आप उसके मालिक हैं, आपका अपना स्कूल है, आप उसके प्रिंसिपल भी हैं, आप प्रबंधक भी हैं, तो व्याख्याएं आपको जो करनी हो वो आप करते रहिए।
6: उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को 4,200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई की निगरानी में बनाया गया। 13 जुलाई को देश के रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, आपको याद होगा। आज एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं और या फिर गड्ढों में एक्सप्रेसवे है, इसे लेकर जनता बुरी तरह से कंफ्यूज है। जनता अब सरकार से सीधा सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी।
7: क्या टैक्स पेयर्स के 4200 करोड़ रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ। दावा यही है कि कानपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे का तोहफा जनता को मिला है, लेकिन चंद दिनों में धूल फांकते वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे की सच्चाई सामने आ गई। आज नए नवेले एक्सप्रेस वे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेस वे है, फर्क करना मुश्किल नहीं। सोचिए, नए एक्सप्रेस वे को चंद दिनों में मरम्मत की जरूरत पड़ गई तो आने वाले दिनों में क्या होगा। अब सवाल 4200 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता का है, क्योंकि पहली बरसात में एक्सप्रेस वे की पोल खुल गई।
8: इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पर जहां पर उद्घाटन के बाद एक बार नहीं बल्कि दो बार सड़क खिसकने की शिकायत आई, जिसके बाद अब यहां पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि सबसे पहले 26 जुलाई को यानी उद्घाटन के 12 दिन बाद यहां पर सड़क खिसकने की शिकायत मिली, जिसके बाद NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर मरम्मत का काम कराया गया। एक बार फिर से 8 दिन बाद ये पूरी सड़क खिसक गई, जिसके बाद इस पूरे 200 से 300 मीटर के पूरे स्ट्रेच को काट कर फिर से बनाया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पर लगी हैं, JCB मशीन से एक तरफ खुदाई कर रही हैं और दूसरी तरफ मटेरियल डाल के यहाँ पर जो रोलर मशीन्स हैं उसको इस पूरे पैच वर्क की मरम्मत की जा रही है।
7: हालात ये है कि 5 जगहों पर एक्सप्रेस वे धस गया है। एक जगह मरम्मत का काम पूरा होता है तो दूसरा गड्ढा नजर आ जाता है, मतलब एक्सप्रेस वे बना है या गड्ढा वे।
8: कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में मरम्मत के चलते जिस दूसरी रोड को आने और जाने के लिए रखा गया था, यानी एक ही रोड जहां पर गाड़ियां आ भी रही थी या जहां गाड़ियां जा भी रही थी, अब वहां पर एक बैरिकेडिंग और लगा दी गई है। वजह यह है कि अब उस रोड पर भी शिकायतें सामने आने लगी है, वहां भी रोड धंसने लगी है और वहां भी रोड खिसकने लगी है। ये लाइव एग्जांपल है, हम मौजूद हैं उस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में। पीछे अगर आप देखेंगे बाएं तरफ पहले से ही काम चल रहा है मरम्मत का, वो 300 मीटर का स्ट्रेच पहले से ही काट कर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पर गाड़ियां आ भी रही हैं जा भी रही हैं, वहां पर एक और बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहां पर आप देखेंगे तो ये सड़क भी फिलहाल कल की बारिश के बाद धस गई है।
7: लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का स्याह सच यही है, लेकिन इसी सच्चाई की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। वादा 120 की रफ्तार का था, लेकिन आज आम जनता सरकारी सिस्टम और ठेकेदारों के खेल की वजह से बीच में पिसने को मजबूर है।
9: भाई मैं उन्नाव से आ रहा हूँ।
8: उन्नाव से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप आए तो
9: रास्ता बंद हुआ है,
8: तो आप लोग अब यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि कैसे?
9: वो टोल टैक्स पे बोल रहा था कि इधर से रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा आपको काफी दूर तक। अच्छा। वहाँ से उस लेन में जाके रॉन्ग साइड से तब आप जा सकते हो लखनऊ।
8: उन्होंने पहले नहीं कहीं लिख के रखा था कि रॉन्ग साइड है ऐसा?
9: वो उन्होंने फास्ट टैग काट दिया ना मेरा, जब कट गया तब बोला कि भैया आप आगे से जाके यू टर्न लेना रॉन्ग साइड से, उस घूम के लखनऊ जाना।
8: तो कितने किलोमीटर आप यहाँ से रॉन्ग साइड चले?
9: बताया नहीं उन्होंने कितना, उन्होंने बोला काफी आपको कम से कम आधा किलोमीटर एक किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद रॉन्ग साइड उधर से होके तब आपको जाना पड़ेगा।
8: सुविधा आप लोग को हो रही है?
9: भाई दिक्कत तो है, पता नहीं हो सकता चलान भी काट दे, मेरा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा उधर से घूम के, इधर रास्ता पता नहीं कैसे क्या है।
7: ये अंधेर गर्दी के गड्ढे नहीं तो क्या है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे की कलई खुलने के बावजूद NHAI के अफसर यही दावा कर रहे हैं कि कसूर तो बारिश का है, एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनी और NHAI का नहीं।
10: ऐसा नहीं कि NHAI का रोड खराब होता है, आप दूसरे रोड से भी देखें तो ऐसा नहीं कि बारिश के कारण रोड खराब होते हैं, ये बारिश में फ्लेक्सिबल पेमेंट जहाँ रहते हैं वहाँ पे टूट ही आते हैं।
7: इनका नाम है गौतम विशाल, NHAI के रीजनल अफसर है। सवाल जवाबदेही तय करने का है, लेकिन जिम्मेदारों ने बिना जांच पूरी हुए फैसला सुना दिया, मतलब जो अब तक होता आया है वही इस मामले में होगा। जांच और एक्शन की दुहाई देकर एक्सप्रेस वे के गड्ढों को NHAI के अफसर गटक जाएंगे, क्योंकि कसूर बरसात का है, क्वालिटी तो 100 आने खरी है।
10: AI तकनीक के हिसाब से बनाया गया और रोड क्रश मेरा एक्सप्रेस वे बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई क्वालिटी की कोई क्वालिटी बीच बीच में चेक होते गए हैं।
7: एक्सप्रेस वे को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं हुआ, सब कुछ मानकों के हिसाब से हुआ, तो NHAI को पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर और मौजूदा प्रोजेक्ट मैनेजर पर कार्रवाई का हंटर क्यों चलाना पड़ा? धसा हुआ एक्सप्रेस वे गवाही दे रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन एक्सप्रेस वे के निर्माण में हुई खामियों के बावजूद NHAI के अफसर बड़ी बेशर्मी से एक्सप्रेस वे की खूबियां गिना रहे हैं।
10: टोटल 63 किलोमीटर का लेंथ है और 126 किलोमीटर दोनों साइड मिला करके होते हैं। 126 किलोमीटर में आप मेरे 5 लोकेशंस हैं, 5 लोकेशन मिला करके 1 किलोमीटर भी लेंथ नहीं आता, और यानी कि मेरा मोर देन 98% स्ट्रेस में बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से आज भी चल रहा है।
7: सवाल यही है कि 4200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद एक्सप्रेसवे का एक भी हिस्सा घटिया क्यों निकला। सवाल NHAI के कर्मचारियों और एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के गड़बड़ छाले का है। क्या टैक्स पेयर्स के पैसों से बने एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण के बाद PNC पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ नोटिस भेजना नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी काफी है? क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में देश की जनता से वादा किया था कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन NHAI के अफसरों और ठेकेदारों पर गडकरी की चेतावनी जमीन पर नजर नहीं आई। यानी अभी बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
11: ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसे कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा, ऐसी भी पॉलिसी बनाई है। और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में किसी की मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए हैं। बेनीवाल जी, आपके भी मैं लाख काम लेके आया हूँ। और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैकलिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर दें, हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
6: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर न करें राजनीति। पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते नेता, विपक्ष ने पहले अमित शाह पर साधा था निशाना। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने माफी मांगी, मानी अपनी गलती। केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को आज फिर से पेश होने का दिया है समन। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड, कहा पवन पांडे होंगे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जीत का दावा किया। दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना, ऑडियो संदेश में कहा मुझे बेदखल करने के लिए छात्र आंदोलन को बनाया गया हथियार। कार्यक्रम में शामिल होने पर पूर्व क्रिकेटर शाकिब उल हसन के घर पर आगजनी की कोशिश। और आज तक की खबर का डबल असर, पीएमओ के दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों के लिए खत्म होगा इंटरव्यू। उत्तराखंड परिवहन विभाग के रोडवेज कर्मचारियों को भी जल्द वेतन भुगतान के आदेश। रांची में 13 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है और छात्र आंदोलन का मुद्दा अब राजनीतिक हो चुका है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी रांची के इन छात्रों के प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं? कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं, आंदोलन बढ़ता जा रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें।
1: वहां पर देवेंद्रनाथ महातो हैं जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से बात कर अपना पानी का अनशन छोड़ा है।
2: लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी।
3: क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की यह स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव भूल जाता है मार्केट।
2: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है।
4: दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे प्रदर्शन की गूंज भी अब पूरे देश में हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार दबाव के बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि आज झारखंड सरकार के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
1: सर आप बताएंगे, अभी पहले एसडीओ आए थे, क्या कह के गए हैं आप?
2: वो ये कर के गए कि मुख्यमंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और जिनका बात रखा जाए और मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के बाद फिर ये मुद्दा पे डिस्कस करके अपने में एक सुझाव देंगे।
4: ये प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहा है। इसमें करीब 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ा हुआ था। बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा।
5: ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं लीड में रही थी, 26 साल से कई लगातार के लिए ऊपर ऊपर। कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
6: अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी, आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी।
4: जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और ओएमआर शीट में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। वहीं जेएसएससी सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए।
0: अगर सरकार सारी मांगे मान ले पर सीबीआई को जांच ना दे, क्योंकि सुनने में आया है उसी पर सरकार अड़ी हुई है कि सीबीआई को नहीं सीआईडी को दे दिया जाए।
2: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जो बात किया गया, जो बड़े ऑफिसर आए, एसडीओ आए, एसडीएम आए, जो भी आए, पांच लोग के, ठीक है। अब मेरा कहना है कि पांच लोग से ही अगर पर्सनल में बात करना है तो पांच लोग में ही आप अपने फैमिली में ही इलेक्शन लड़के।
4: ये प्रदर्शन राजनीतिक भी हो चुका है। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर सवाल उठा रही बीजेपी रांची के प्रदर्शन को पूरा समर्थन दे रही है। झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी प्रदर्शनकारियों से मिलने गए थे, लेकिन इधर जंतर मंतर के छात्रों के समर्थन में दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास घेरने वाले राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ सरकार में शामिल है। अब छात्र भी इस पर सवाल उठा रहे हैं।
0: एक सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें शामिल है कांग्रेस। कांग्रेस जो छात्रों की गूंज प्रयागराज तक लेके गई है, कांग्रेस जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए थे, आपके साथ उन्होंने आकर खड़े नहीं हुए हैं जैसा उनको उतरना चाहिए था, डिसअपॉइंटेड है उनसे।
7: ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची।
0: कुछ कुछ नहीं,
7: लड़की नहीं है मैम, मेरे लिए यही वर्ड सही है, हबीबी कम टू रांची।
0: पर डिसअपॉइंटेड है,
7: बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैम, मन खराब हो गया है। आप नीट के लिए इतना हावी प्रदर्शन कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेर रहे थे, और वहाँ पे एक एग्जाम का बात था मैम, वो भी एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ तो हमारे नौकरी का सवाल है।
4: प्रदर्शन में शामिल जिस भी छात्र को देखो उसकी अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची के ही छात्र यहाँ आए हैं, पूरे झारखंड से छात्र यहाँ आए। 19 साल का ये लड़का चतरा से यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आया है। जब ये 10वीं कक्षा में था तब इसका भाई जेपीएससी की तैयारी कर रहा था, अब ये ग्रेजुएट हो गया है और भाई अभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाया। अब दोनों भाई साथ में तैयारी करते हैं।
0: जब आप
8: 10th में थे,
0: आप 10th
8: का तैयारी करने आया था मैं रांची, वो लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो भैया हैं ये जेएसएससी का तैयारी करते थे 2022 में, मैं आज 2026 में मैं भी जेएसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, जेपीएससी, ये भी वही चीज का करने लगे हैं, इनका ये 30+ हो गया। बताइए,
0: आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कितने साल के हैं सर?
9: मेरा 30 साल हो गया, 30 ईयर,
0: और ये 19 साल के हैं। कब से एक ही एग्जाम दे जा रहे हैं?
9: की एग्जाम
0: कब से?
9: 8 साल से।
0: 8 साल से एक एग्जाम दे रहे हैं?
9: जी जी जी, क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की ये स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट में, जिसके पास जितना पैसा रहता है सब देखकर ज्वाइन कर लेता है। अभी जैसे जेपीएससी का आया तो डीएसपी का 1,30,00,000 रुपया रेट था, वीडियो सीओ 1,20,00,000 रुपया रेट था। जैसे तो सरकार से हमको कहना है कि अगर इसी तरह करना है तो कॉलम आता है ईडब्ल्यूएस का, जनरल का, तो रेट का भी कॉलम खोल दे।
4: ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं, जिससे मिलो उसकी अपनी अलग कहानी है। एक और अभ्यर्थी मिला जो अब 35 साल के हो गए, 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं अनियमितताओं की वजह से एग्जाम निकल ही नहीं रहा।
0: आप कितने एग्जाम दे चुके हैं?
10: मैंने 3 जेपीएससी दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस लिखे हैं जेपीएससी का।
0: सारे रद्द हुए हैं?
10: सारे रद्द नहीं हुए हैं, अभी तो इसके लिए हम लोग आए 14 के लिए, ये रद्द हुए।
0: पेपर लीक हुआ है सर?
10: पेपर लीक हुआ इसके लिए।
0: कितने साल दे चुके हैं आप इन एग्जाम्स में?
10: मैंने तो मेरा ये 35 इयर्स हो रहा है, ये 35 इयर्स है।
0: कब से दे रहे हैं एग्जाम?
10: 2016 से दे रहे हैं, 2016 से।
0: पिछले 10 साल से आप ये एग्जाम दे रहे हैं?
10: 3 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू दिए, और ये वाला एक जेपीएससी है 14 वाला, इसका तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सब देख रहे हैं कि अभी तो कट ऑफ भी नहीं पता, रिजल्ट निकाल दिया है,
0: कट ऑफ जारी नहीं।
4: ऐसा नहीं है कि यह हाल किसी एक एग्जाम का हो। एक और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मिले, विक्रम। झारखंड सरकार ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए पिछले 7 साल से भर्ती ही नहीं निकाली है। जब से झारखंड बना है तब से सिर्फ 3 बार भर्ती निकली है, अभी तो जद्दोजहद भर्ती निकालने की।
11: बात ऐसा है कि हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतने अभागे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता एग्जाम देने को। पिछले 26 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ सिर्फ 3 बार एग्जाम हुई, 2007, 2013 और 2019 में, 2019 के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई है। तो हमने आरटीआई के जरिए आंकड़ा निकाला था, वो आंकड़ा निकल के आया है हमारा 539 सीट खाली है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का लगभग आधा से ज्यादा सीट खाली होता है। इसके बाद हमने मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से जितने भी टेबल्स होते हैं वहां पे जाके अर्जी लगाई है कि हमारा वैकेंसी आ जाए, लेकिन वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। ये जो लेटर आप देख सकते हैं, मतलब विभाग में जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो डीओपीटी में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहां से वैकेंसी जारी होती है। यहां जाते हैं तो यहां बताया जाता है, यहां जाते हैं तो यहां बताया जाता है, और इसी तरह से हमें घुमाया जा रहा है।
4: प्रीति चौधरी, रांची आज तक।
0: पेपरलीक आंदोलन के बाद सुर्खियों में आई कांग्रेस जनता पार्टी अब अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। आज सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने के घर पर छत्रपति संभाजीनगर में अहम बैठक हुई थी और ये बैठक कल भी जारी रहेगी। इस बैठक में देश भर में छात्र आंदोलन को समर्थन देने और संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई है, लेकिन अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि वो राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, फिलहाल वो प्रेशर ग्रुप से सरकार पर दबाव बनाएंगे।
12: क्या जंतर मंतर के बाद कांग्रेस जनता पार्टी रांची में भी छात्रों की आवाज बुलंद करेगी? क्योंकि आज महाराष्ट्र के संभाजीनगर में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के घर पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस जनता पार्टी ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक से पहले अभिजीत दीपके मीडिया के सामने आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो आने वाले समय में राजनीतिक पार्टी भी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि सीजेपी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगा जो सरकार पर आम लोगों के मुद्दों पर दबाव बनाएगा।
13: सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी, जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है, और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टी है उसको तोड़ा जाता है ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो लोग डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चली, एक सोशल मूवमेंट चली।
12: जब मीडिया ने दीपके से पूछा कि क्या वो झारखंड में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करने वहां जाएंगे, इस पर दीपके बोले, हम निश्चित रूप से झारखंड जाकर छात्रों की मांगों का समर्थन करेंगे।
13: डेफिनेटली वी विल गो टू झारखंड एंड वी स्टैंड विद द स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग देयर एंड वी सपोर्ट देयर एवरी डिमांड। जो हमारे पहले ही आंदोलन को सफलता मिली है उसके बाद लोगों की हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी है, और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए अब जैसे हमें पूरे देश भर से समर्थन मिला था, ये जो आंदोलन हुआ था वो बस जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा था, वो पूरे देश भर में हुआ था, पूरे देश भर के लोगों ने हमें समर्थन दिया था अपना। तो उसके चलते अब हम देश भर में कैसे अपना संगठन बढ़ा सकते हैं, हर राज्य में कैसे अपना संगठन बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ आगे जाकर कांग्रेस जनता पार्टी का क्या रोडमैप हो सकता है, क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम।
12: आज की बैठक में कांग्रेस जनता पार्टी में चर्चा हुई कि आगे उन्हें किन किन राज्यों में आंदोलन के लिए कूच करना होगा।
14: अभिजीत दीपके ने एक बात लाइन क्लियर कर दी है कि हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक संगठन नहीं बनाना चाहते, हम एक प्रेशर ग्रुप रखेंगे। वो प्रेशर ग्रुप सरकार जिस तरीके से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उनकी नीतियां क्या है, मूल्य क्या है, उन सब पर कड़ी निगरानी रखेगा। इतना ही नहीं बल्कि प्रेशर ग्रुप, अभी तो उन्होंने ये कहा है कि एजुकेशन सेक्टर में जो कुछ भी हो रहा है, अभी झारखंड में जो प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है वो हो, या फिर महाराष्ट्र में सीटी एग्जाम को लेकर अभी बवाल हो रहा है, रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अब सवाल उठाए जा रहे हैं, देयर आर डिफरेंट स्पेकुलेशंस कि इसमें भी पेपर लीक होने की आशंका है, टेंडर कैसे सेट हुए। तो कांग्रेस जनता पार्टी आने वाले वक्त में इन सभी घटनाओं पर नजर रखेगी।
12: इससे पहले शिक्षाविद और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी रांची में बैठे आंदोलनकारियों से फोन पर बात की।
15: तरीका है सरकार ने की आत्मा को जगाना, अधिकारियों की आत्मा को जगाना, और उसके लिए आपको पहला लेना होगा।
16: 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं लीग में हूँ कि 26 सालों से कई लगातार कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
15: अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी, आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी।
4: कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दूसरे सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास को निशाना बनाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की।
17: जिसकी दुकान सिर्फ लोगों के बारे में झूठ फैलाकर चलती है, उस व्यक्ति द्वारा अभी कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में सौरभ दास पर लगातार गलत आरोप लगाए गए, सौरभ के घर को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और उसी मिस इन्फॉर्मेशन के कारण आज सुबह कई यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स सौरभ के घर पहुंच गए, उनमें से कुछ लोगों ने घर में घुसने की भी कोशिश की और पूरी तरह से सौरभ की और उसके परिवार की निजता का उल्लंघन किया।
4: वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि देश भर से बड़ी संख्या में युवा सीजेपी से जुड़ रहे हैं और अब उन्हें संगठित करने के लिए स्पष्ट कार्य योजना तैयार की जाएगी।
18: उसके बारे में चिंतन करने के लिए, उस चीज के बारे में एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम लोग सारे आज आए हैं औरंगाबाद। यहाँ पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे, दो दिन का मीटिंग है, कल और परसों होगा, एंड उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे इस मूवमेंट को ग्रास रूट पे कैसे ले जाए।
19: अभी जी फेरी आने पाहुड़े की सेवा कर रहे
4: मीटिंग से पहले अभिजीत दिपके पत्रकारों को अपने हाथ से चाय बांटते दिखे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोग ये वीडियो शेयर कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। इस बीच विपक्ष को भी ये लग रहा है कि जो प्रेशर वो सरकार पर नहीं बना पाए उसे सीजेपी ने कर दिखाया।
20: कॉकरोच और छिपकली, इनको तो हम ज्यादा नहीं जानते, हम सिर्फ ये जानते हैं कि सकारात्मक राजनीति हमें करनी है। बच्चों के मुद्दे सही हैं, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था जो अच्छी होनी चाहिए थी अभी नहीं हुई है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हमारी खुद की अपनी पार्टियां हैं, तो कॉकरोच माकरोच को लेकर हम क्या जीवन में राजनीति करेंगे, हम अपनी खुद की राजनीति करेंगे।
21: मुझे लगता है कि अभी कोई सूरत का एक आरटीआई का कोई वर्कर है, कार्यकर्ता है, उन्होंने मतलब उनके संबंध में कुछ टिप्पणी की है कि भाई वो अमेरिका कैसा गया था, पैसा उन्होंने कहाँ से लाया था, तो उसका कोई बीजेपी से आरपीआई से या कोई एनडीए से कोई संबंध नहीं है। मतलब जो आरटीआई का कार्यकर्ता है वो ऐसा ही कार्यकर्ता है, ऐसे ही कार्यकर्ता मांग करते रहते हैं।
4: फिलहाल कांग्रेस जनता पार्टी की हर गतिविधि पर सरकार और पुलिस की नजर है, इसीलिए बीजेपी का कोई भी नेता सीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने से बच रहा है।
14: जब वांगचुक ने इस आंदोलन का बैकिंग दिया है, वो उनके विद्यार्थियों के पीछे खड़े हैं, तो क्या अभिजीत दिपके, उनकी सीजेपी भी इनके पीछे खड़े रहेगी? तो दिपके का ये साफ साफ कहना था कि अगर जरूरत होगी तो हम वहां जाएंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक हमारे मेंटर है और वो जो कहेंगे उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। आज की मीटिंग में भी यही तय होगा कि अब झारखंड हो जहां आंदोलन शुरू है वहां क्या करना है, रोड मैप कैसा रहेगा, स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, और आने वाले वक्त में सिर्फ एजुकेशन या फिर शिक्षण व्यवस्था के बाद भी, यानी कि आरोग्य हो, कुछ अलग अलग गांव के किसानों के इश्यू हो, एग्जैक्टली कौन कौन से मुद्दे पर सीजेपी ये पूरे आंदोलन को आगे लेके जाएगी, देखना बहुत अहम रहेगा। कैमरा पर्सन राजू रेवड़कर के साथ में ओंकार बाबले, छत्रपति संभाजीनगर, आज तक।
0: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में गोलियां चलवाने वाले आसिम मुनीर का डबल गेम जारी है। मोहसिन नकवी के साथ मिलकर आसिम मुनीर इस्लामाबाद में तख्ता पलट करने की साजिश रच रहे हैं।
22: पीओके में बेगुनाहों पर फायरिंग, इस्लामाबाद में तख्ता पलट की साजिश। आसिम मुनीर का डबल गेम एक्सपोज, इस्लामाबाद तक विरोध। पीओके में फर्जी चुनाव का खेल, शरीफ खानदान और भुट्टो परिवार की भिड़न। आसिफ मुनीर का घातक गेम प्लान, पूरे पाकिस्तान को उलझाने की कोशिश। पीओके में मुनीर ने शांति लाने का ठेका आतंकियों को क्यों दे दिया? पीओके में इस वक्त बगावत की जो आग धधक रही है, उसे पाकिस्तान की सरकार और सेना दबाने की पूरी कोशिशों में जुटी है, लेकिन पीओके वालों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में विद्रोह बढ़ता ही जा रहा है। पूरा पीओके जल रहा है, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बुनियादी हक मांगने पर उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। सेना के जुल्मों के खिलाफ लोग जान की बाजी लगा रहे हैं। पिछले हफ्ते भर में ही 100 लोगों की जान जा चुकी है। मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई है। पीओके ने मुनीर की सेना गोलियां बरसा रही है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी पीओके में फर्जी चुनाव करवा कर खुद को पीओके का विजेता घोषित करने पर तुली है, लेकिन सच्चाई क्या है, खुद पाकिस्तानी पत्रकार इसकी सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं।
1: लगातार फायरिंग हो रही है, जो विजुअल्स हैं वो आपके सामने हैं, और जाहिर बात है कि विजुअल्स हम इससे ज्यादा आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये इलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन हुआ है, इसके ऊपर इनके अपने जो अंदर झगड़े बन गए हैं, जो सिस्टम तो फेल हुआ है लेकिन इनके अपने अंदर भी झगड़े शुरू हो गए हैं। जमातुद्दावा लश्कर ए तैयबा जो इनका है, जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बना के बैठा हुआ है, उनके अंदर भी मामला जो है वो चल रहे हैं। इस वक्त इस इलेक्शन की तरफ अब जब देखते हैं, ऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अब तक 45 में से 23 सीट्स जो है वो उनको दान की जा चुकी हैं, उनके हवाले की जा चुकी हैं, उनको जो है वो गिफ्ट की जा चुकी हैं। आसिम मुनीर अपनी मशूक को जो है वो तोहफे के अंदर जो है 45 में से 23 सीट्स दे चुका है।
22: आपको बता दें कि पीओके विधानसभा की 45 सीटों पर 3 चरणों में दिखावटी चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में पीएमएलएन ने 13 में से 9 सीटें जीती थीं। अब दूसरे चरण के बाद उसके पास कुल 23 सीटें हो गई हैं, जो बहुमत के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण 10 अगस्त को होना बाकी है। हालांकि पीओके वाले दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव फर्जी है, जब वहां बहिष्कार हो रहा है तो वोट कौन डाल रहा है? पाकिस्तानी मीडिया ने खुद दिखाया है कि कैसे पोलिंग बूथों पर सन्नाटा है, तो फिर वोट कौन डाल रहा है?
1: चेक करें आप, पुलिस वाले टेबलों के ऊपर सो रहे हैं, वोटर एक भी नहीं है, और इतनी गहरी नींद सो रहे हैं कि कैमरामैन टीम आके बड़े कैमरों से फुल फ्लैश तस्वीरें बना के नशर कर रही है। सुनसान बयाबान ये हो रहा है इलेक्शन।
22: पीओके को लेकर एक और पर्दाफाश हुआ है। जी हाँ, पीओके में आसिफ मुनीर अब शांति बहाल करने का ड्रामा खेल रहे हैं, जिसके तहत एक पीस कमेटी बनाई गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पीस कमेटी में आतंकियों को शामिल किया गया है। जी हाँ, पीस कमेटी के नाम पर एक प्रतिनिधि मंडल रावला कोट भेजा गया है, जिसमें इलियास कश्मीरी जैसा आतंकी भी शामिल है। जैश ए मोहम्मद के इस सीनियर कमांडर के पीस कमेटी में शामिल होने पर पाकिस्तान की नियत पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच लश्कर ए तैयबा भी जेएसी आंदोलन के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आया है। संगठन लगातार जेएसी नेताओं को गद्दार बता रहा है, उनके खिलाफ प्रचार अभियान चला रहा है और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशों का खुलकर समर्थन कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान पीओके में आतंकी भेज रहा है तो दूसरी तरफ चुनाव का ढोंग करके पीओके पर अपना कब्जा बनाए रखने की साजिश भी रच रहा है।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस प्रकार की खोखले कवायदें वास्तविकता को छिपा नहीं सकती।
22: पाकिस्तान में एक चर्चा ये भी है कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी मिलकर बा गेम कर रहे हैं। आखिर मुनीर ने एक तीर से कई शिकार करने का प्लान बनाया है। वो पाकिस्तान के लगभग हर सूबे में भड़के विद्रोह को दबाने के लिए उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो इसके जरिए पाकिस्तान के दो परिवारों, भुट्टो परिवार और शरीफ परिवार के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। और आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ की ही पार्टी के मंत्री मोहसिन नकवी का इस्तेमाल किया और ये बयान दिलवाया कि 70 साल पुराना पाकिस्तान का सिस्टम फेल हो गया है और नए सिस्टम की जरूरत है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि आसिम मुनीर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और मोहसिन नकवी को रबर स्टैम्प प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि कैसे शहबाज सरकार के मंत्री मोहसिन नकवी और उनकी पार्टी के बीच खुली जंग छिड़ गई है।
1: मोहसिन नकवी इसी सिलसिले में सदर जरदारी से कराची में जाके मिला है और सदर जरदारी ने हमारी इत्तला के मुताबिक बताया कि यार मैं तो मान भी लूं, जारी बात है उसकी फाइलें बहुत सी खुली हुई है, नैप की फाइलें बड़ी खुली हुई है, मेरा बेटा नहीं मानता और उसने तो कोई करप्शन भी नहीं की हुई और वो तो इसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं है। तो उसको कहा गया सदर जरदारी को, मोहसिन नकवी ने कहा कि देखें मैं भी तो आपका बेटा बना हुआ हूं लेकिन ऊपर से अब ऑर्डर ये आ गया है कि बेटे को साइडलाइन करें, बेटे के पर काटें और ये हमारे एग्रीमेंट के ऊपर आप आ जाएं, बेटे को साइडलाइन करें, बेटे के पर काटें और ये हमारे एग्रीमेंट के ऊपर आप आ जाएं, आपको सेफ एग्जिट मिल जाएगा, दुबई जाके रहना है, उसके अलावा अमरीका में रहना है, जिधर भी रहना है वो आपको सेफ एग्जिट मिलेगा, नहीं तो आपको सेफ एग्जिट भी नहीं मिलेगा।
22: मोहसिन नकवी ने अचानक 21 साल पुराने वन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें जज, नौकरशाह, राजनेता और बैंकर सभी शामिल रहे हैं।
2: इतना बड़ा स्कैम मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, बैंकर्स हर एक इन्वॉल्व है और 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग पैसे खाते रहे।
22: लेकिन अब इस्लामाबाद में भी आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी का तख्ता पलट वाला प्लान एक्सपोज हो रहा है। जी हां, जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन नकवी का जमकर मजाक उड़ाया है और ये तक कह दिया है कि वो वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई केक नहीं है कि जब मन आया छुरी से काट दिया।
5: नकवी साहब हमारे बरखुरदार हैं लेकिन कुछ वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। अब ये मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बात जो है वो अपनी जाती कैपेसिटी में की है। क्या मुल्क इस बात के लिए तैयार है कि सूबे बनाए जाएं? सूबे बनाना कोई बुरी बात नहीं है, इंडिया में भी बन रहे हैं और जगह भी बनते हैं। ये कोई केक तो नहीं है कि आप आराम से छुरी लेकर उसको बस जिस तरह चाहें काट दें। सूबे बनाने की बात के लिए क्या मुल्क तैयार है?
22: उधर पाकिस्तान में एक और बवाल शुरू होने जा रहा है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 5 अगस्त से पूरे पाकिस्तान में आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2023 को ही इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनसभाओं, प्रदर्शनों और लॉन्ग मार्च जैसी रणनीति पर चर्चा की गई है। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर न करें राजनीति, पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते नेता, विपक्ष ने पहले अमित शाह पर साधा था निशाना। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने माफी मांगी, मानी अपनी गलती, केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को आज फिर से पेश होने का दिया है समन। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड, कहा पवन पांडे होंगे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जीत का दावा किया। दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना, ऑडियो संदेश में कहा मुझे बेदखल करने के लिए छात्र आंदोलन को बनाया गया हथियार, कार्यक्रम में शामिल होने पर पूर्व क्रिकेटर शाकिब उल हसन के घर पर आगजनी की कोशिश। और आज तक की खबर का डबल असर, पीएमओ के दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों के लिए खत्म होगा इंटरव्यू, उत्तराखंड परिवहन विभाग के रोडवेज कर्मचारियों को भी जल्द वेतन भुगतान के आदेश। रांची में 13 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है और छात्र आंदोलन का मुद्दा अब राजनीतिक हो चुका है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी रांची के इन छात्रों के प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं? कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं, आंदोलन बढ़ता जा रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें।
1: वहां पर देवेंद्र नाथ महातो है जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से बात कर अपना पानी का अनशन तोड़ा।
2: लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी।
3: क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की यह स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव भूल जाता है मार्केट।
4: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है।
5: दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे प्रदर्शन की गूंज भी अब पूरे देश में हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार दबाव के बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि आज झारखंड सरकार के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
1: सर आप बताएंगे, अभी पहले एसडीओ आए थे, क्या कह के गए हैं आप?
4: वो ये कर करके गए कि मुख्यमंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं, अभी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और जिनका बात रखा जाए और मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के बाद फिर ये मुद्दा पे डिस्कस करके अपने में एक सुझाव देंगे।
5: ये प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहा है। इसमें करीब 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ा हुआ था। बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा।
6: ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं नींद में रही थी, 26 सालों से कई लगातार। कल डॉक्टर हमको हिदायत दे दिए थे कि अगर आप जब नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
5: जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और ओएमआर शीट में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। वहीं जेएसएससी सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए।
0: अगर सरकार सारी मांगे मान ले पर सीबीआई को जांच ना दे, क्योंकि सुनने में आया है उसी पर सरकार अड़ी हुई है कि सीबीआई को नहीं सीआईडी को दे दिया जाए।
4: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जो बात किया गया, जो बड़े ऑफिसर आए, एसडीओ आए, एसडीएम आए, जो भी आए, पांच लोग के, ठीक है। अब मेरा कहना है कि पांच लोग से ही अगर पर्सनल में बात करना है तो पांच लोग में ही आप अपने फैमिली में ही इलेक्शन लड़के।
5: ये प्रदर्शन राजनीतिक भी हो चुका है। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर सवाल उठा रही बीजेपी रांची के प्रदर्शन को पूरा समर्थन दे रही है। झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी प्रदर्शनकारियों से मिलने गए थे, लेकिन इधर जंतर मंतर के छात्रों के समर्थन में दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास घेरने वाले राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ सरकार में शामिल है। अब छात्र भी इस पर सवाल उठा रहे हैं।
0: एक सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें शामिल है कांग्रेस। कांग्रेस जो छात्रों की गूंज प्रयागराज तक लेके गई है, कांग्रेस जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए थे, आपके साथ उन्होंने आकर खड़े नहीं हुए हैं जैसा उनको उतरना चाहिए था, डिसअपॉइंटेड है उनसे।
2: ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची।

0: अभी प्रदर्शन कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेर रहे थे और वहाँ पे एक एग्जाम का बात था मैम, वो भी एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ तो हमारे नौकरी का सवाल है।
1: प्रदर्शन में शामिल जिस भी छात्र को देखो उसकी अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची के ही छात्र यहाँ आए हैं, पूरे झारखंड से छात्र यहाँ आए हैं। 19 साल का यह लड़का चतरा से यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आया है। जब ये 10वीं कक्षा में था तब इसका भाई JPSC की तैयारी कर रहा था, अब ये ग्रेजुएट हो गया है और भाई अभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाया। अब दोनों भाई साथ में तैयारी करते हैं।
2: जब आप
3: 10th में थे,
2: आप 10th
3: का तैयारी करने आया था मैं रांची, वो लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो भैया हैं, ये JSSC का तैयारी करते थे 2022 में, मैं आज 2026 में मैं भी JSSC का तैयारी कर रहा हूँ, JPSC, ये भी वही चीज का करने लगे हैं। इनका ये 30+ हो गया, बताइए।
2: आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कितने साल के हैं सर?
4: मेरा 30 साल हो गया, 30 ईयर।
2: और ये 19 साल के हैं, कब से एक ही एग्जाम दे जा रहे हैं?
4: की एग्जाम
2: कब से?
4: 8 साल से।
2: 8 साल से एक एग्जाम दे रहे हैं?
4: जी जी जी, क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की ये स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट में, और जिसके पास जितना पैसा रहता है सब देखकर ज्वाइन कर लेता है। अभी जैसे JPSC का आया तो DSP का 1,30,00,000 रुपया रेट था, BDO CO 1,20,00,000 रुपया रेट था। जैसे तो सरकार से हमको कहना है कि अगर इसी तरह करना है तो कॉलम आता है EWS का, जनरल का, तो रेट का भी कॉलम खोल दे।
1: ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं, जिससे मिलो उसकी अपनी अलग कहानी है। एक और अभ्यर्थी मिला जो अब 35 साल के हो गए, 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं अनियमितताओं की वजह से एग्जाम निकल ही नहीं रहा।
2: आप कितने एग्जाम दे चुके हैं?
5: मैंने 3 JPSC दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस लिखे हैं JPSC का।
2: सारे रद्द हुए हैं?
5: सारे रद्द नहीं हुए हैं, अभी तो इसके लिए हम लोग आए 14 के लिए, ये रद्द हुए।
2: पेपर लीक हुआ है सर?
5: पेपर लीक हुआ इसके लिए।
2: कितने साल दे चुके हैं आप इन एग्जाम्स में?
5: मैंने तो मेरा ये 35 इयर्स हो रहा है, ये 35 इयर्स है।
2: कब से दे रहे हैं एग्जाम?
5: 2016 से दे रहे हैं, 2016 से।
2: पिछले 10 साल से आप ही एग्जाम दे रहे हैं?
5: 3 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू दिए, और ये वाला एक JPSC है 14 वाला, इसका तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सब देख रहे हैं कि अभी तो कट ऑफ भी नहीं पता, रिजल्ट निकाल दिया है।
2: कट ऑफ जारी नहीं।
1: ऐसा नहीं है कि यह हाल किसी एक एग्जाम का हो। एक और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मिले, विक्रम। झारखंड सरकार ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए पिछले 7 साल से भर्ती ही नहीं निकाली है। जब से झारखंड बना है तब से सिर्फ 3 बार भर्ती निकली है, अभी तो जद्दोजहद भर्ती निकालने की।
6: बात ऐसा है कि हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतने अभागे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता एग्जाम देने को। पिछले 26 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ सिर्फ 3 बार एग्जाम हुई, 2007, 2013 और 2019 में। 2019 के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई है। तो हमने RTI के जरिए आंकड़ा निकाला था, वो आंकड़ा निकल के आया है हमारा 539 सीट खाली है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का लगभग आधा से ज्यादा सीट खाली होता है। इसके बाद हमने मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से जितने भी टेबल्स होते हैं वहां पे जाके अर्जी लगाई है कि हमारा वैकेंसी आ जाए, लेकिन वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। ये जो लेटर आप देख सकते हैं, मतलब विभाग में जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो DOPT में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहां से वैकेंसी जारी होती है। यहां जाते हैं तो यहां बताया जाता है, यहां जाते हैं तो यहां बताया जाता है, और इसी तरह से हमें घुमाया जा रहा है।
1: प्रीति चौधरी, रांची, आज तक।
7: समाजवादी पार्टी की सियासत में PDA की परिभाषा अखिलेश यादव नए सिरे से समझा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2024 में PDA का गठन किया, तब कहा था कि PDA मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन अब जैसा वोट वैसा जोड़ चलने लगा है। जहां पी से कभी पिछड़ा कहते हैं, आज PDA में पी का मतलब पंडित बताने लगे थे।
8: PDA में PD पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
9: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया।
8: जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही PDA और मजबूत दिखाई देगा।
9: जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
10: प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है।
9: जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
11: दिन भर राम राम राम राम राम।

0: सामको चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार।
1: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100-100 चूहे खा के बिल्ली हज को चले।
2: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार को।
3: संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है।
4: उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीट पर असर डालने वाले ब्राह्मण वोट में बंटवारा क्या समाजवादी पार्टी करा सकती है? ये सवाल आते ही बहुत से लोग कहते ना, एकदम नहीं। जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां संत समाज कहता है वो बीजेपी के साथ है, जहां सनातन की बात करती बीजेपी है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में 2 से ज्यादा बार बीजेपी नेताओं के मुंह पर आता है, जहां 10 ब्राह्मण वोट में 8 ब्राह्मण वोट बीजेपी 5 चुनावों से हासिल करती आई है, वहां समाजवादी पार्टी क्या ब्राह्मण वोट की आहुति से सत्ता का हवन कर सकती? जब आप जानने के लिए इस वीडियो पर गौर करना जरूरी है। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडे, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी जैसे तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। छोटे लोहिया कहे गए पुराने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, डमरू बजता है, जिस मंत्र को पढ़कर शिव को प्रसन्न किया गया वो शिव तांडव स्त्रोत होता है। इन सब के बीच अखिलेश यादव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के रूप में गढ़े गए पीडीए के पी का नया रूप बताते हैं।
2: लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा।
4: जिस ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुट रही है, उससे जुड़े कुछ तथ्य नोट कर लीजिए। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य ये है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन तक ब्राह्मण ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे। यूपी में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का दूसरा तथ्य यह है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट बटा। 2007 में कई वर्षों के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी, तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। तीसरा तथ्य यह है कि 2007 से अब तक जिसके ब्राह्मण विधायक ज्यादा, उसकी सत्ता आई। 2007 में मायावती के बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते। 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। इन्हीं सब तथ्यों के बीच अखिलेश यादव, मुस्लिम यादव और फिर पिछड़े वोट के कुछ हिस्से के साथ अब सवर्णों में सबसे बड़े वर्ग ब्राह्मण वोट को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तक याद कराते हैं।
5: भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती? कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है? और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक कहा पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
6: समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और इनका ब्राह्मण समाज से सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कन्फ्यूज है, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं, केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं, जनता इन्हें नकार चुकी है।
7: यूपी में ब्राह्मण वोटों को लेकर सियासत जोरों पर है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव कुछ घटनाएं याद दिलाकर ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप लगाते हैं, जिसमें आस्था के नाम पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर तक को वो जोड़ देते हैं।

0: पहली तस्वीर हाथ में त्रिशूल और डमरू, दूसरी तस्वीर काशी के ब्राह्मण बोले आज समाजवादी ही आवाज। प्रतीक चिन्ह के तौर पर इसी नारे वाली तस्वीर अखिलेश यादव लेते हैं। तीसरी तस्वीर नारा इस पर पढ़िए, ब्राह्मण की मति पीडीए की शक्ति, अखिलेश बदलेंगे यूपी की नियत। चौथी तस्वीर बीजेपी अपमान करती है समाजवादी सम्मान, जिसमें हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार सम्मान के साथ मंच पर बैठाया जाता है। इन प्रतीकों के साथ उत्तर प्रदेश पंडित जी सम्मान से कहे जाने वाले ब्राह्मण वोटर को अपने साथ समाजवादी पार्टी लाना चाहती है।
1: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं।
0: इसके बाद एक एक करके अखिलेश यादव याद दिलाते हैं कि वो हर विवाद जिससे ब्राह्मण वोट को उनकी पार्टी में शिफ्ट कराया जाए। और तब अखिलेश ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर चले बुलडोजर, प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े बटकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों के प्रीति भोज को बीजेपी के संगठन की तरफ से दिए गए नोटिस तक का जिक्र कर डाला।
1: याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है, सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था, और वो जो कहावत है गोरखपुर में हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है कोने हाथा नहीं भाता। बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें।
2: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में गांव में कहावत है बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कालर थी वो लटक गई, तो लोगों ने पूछा कहां से बिल्ली मौसी आ रही है, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजिम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृत को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं।
3: भारत की धरती पर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा, उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है।
4: ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से जूतों से मारा गया, क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे?
5: बड़ा असमंजस में है लोग। असमंजस में ये है कि पहले आप तय कर लीजिए कि आपकी भावना और मंशा क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं। पी की 29 परिभाषाएं समाजवादी पार्टी ने आपके सामने पहले दे रखी है। आपकी दुकान है, आप उसके मालिक हैं, आपका अपना स्कूल है, आप उसके प्रिंसिपल भी हैं, आप प्रबंधक भी हैं, तो व्याख्याएं आपको जो करनी हो वो आप करते रहिए।
6: उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को 4,200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI की निगरानी में बनाया गया। 13 जुलाई को देश के रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, आपको याद होगा। आज एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं और या फिर गड्ढों में एक्सप्रेसवे है, इसे लेकर जनता बुरी तरह से कंफ्यूज्ड है। जनता अब सरकार से सीधा सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी।
7: टैक्स पेयर्स के 4200 करोड़ रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ। दावा यही है कि कानपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे का तोहफा जनता को मिला है, लेकिन चंद दिनों में धूल फाकते वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की सच्चाई सामने आ गई। आज नए नवेले एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेसवे है, फर्क करना मुश्किल नहीं। सोचिए, नए एक्सप्रेसवे को चंद दिनों में मरम्मत की जरूरत पड़ गई तो आने वाले दिनों में क्या होगा। अब सवाल 4200 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता का है, क्योंकि पहली बरसात में एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई।
8: इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पर जहां पर उद्घाटन के बाद एक बार नहीं बल्कि दो बार सड़क खिसकने की शिकायत आई, जिसके बाद अब यहां पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि सबसे पहले 26 जुलाई को यानी उद्घाटन के 12 दिन बाद यहां पर सड़क खिसकने की शिकायत मिली, जिसके बाद NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर मरम्मत का काम कराया गया। एक बार फिर से 8 दिन बाद ये पूरी सड़क खिसक गई, जिसके बाद इस पूरे 200 से 300 मीटर के पूरे स्ट्रेच को काट कर फिर से बनाया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पर लगी हैं, JCB मशीन से एक तरफ खुदाई कर रही हैं और दूसरी तरफ मटेरियल डाल के यहाँ पर जो रोलर मशीन्स हैं उसको इस पूरे पैच वर्क की मरम्मत की जा रही है।
7: हालात ये है कि 5 जगहों पर एक्सप्रेसवे धस गया है। एक जगह मरम्मत का काम पूरा होता है तो दूसरा गड्ढा नजर आ जाता है, मतलब एक्सप्रेसवे बना है या गड्ढा वे।
8: कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में मरम्मत के चलते जिस दूसरी रोड को आने और जाने के लिए रखा गया था, यानी एक ही रोड जहां पर गाड़ियां आ भी रही थी या जहां गाड़ियां जा भी रही थी, अब वहां पर एक बैरिकेडिंग और लगा दी गई है। वजह यह है कि अब उस रोड पर भी शिकायतें सामने आने लगी है, वहां भी रोड धंसने लगी है और वहां भी रोड खिसकने लगी है। ये लाइव एग्जांपल है, हम मौजूद हैं उस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में। पीछे अगर आप देखेंगे बाएं तरफ पहले से ही काम चल रहा है मरम्मत का, वो 300 मीटर का स्ट्रेच पहले से ही काट कर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पर गाड़ियां आ भी रही हैं जा भी रही हैं, वहां पर एक और बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहां पे आप देखेंगे तो ये सड़क भी फिलहाल कल की बारिश के बाद धस गई है।
7: लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का स्याह सच यही है, लेकिन इसी सच्चाई की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। वादा 120 की रफ्तार का था, लेकिन आज आम जनता सरकारी सिस्टम और ठेकेदारों के खेल की वजह से बीच में पिसने को मजबूर है।
9: मैं उन्नाव से आ रहा हूँ।
8: उन्नाव से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप आए तो
9: रास्ता बंद हुआ है,
8: तो आप लोग अब कहाँ पे, क्या बताया उन्होंने कि कैसे?
9: वो टोल टैक्स पे बोल रहा था कि इधर से रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा आपको काफी दूर तक। अच्छा। वहाँ से उस लेन में जाके रॉन्ग साइड से तब आप जा सकते हो लखनऊ।
8: तो उन्होंने पहले नहीं कहीं लिख के रखा था कि रॉन्ग साइड है ऐसा?
9: वो उन्होंने फास्ट टैग काट दिया ना मेरा, जब कट गया तब बोला कि भैया आप आगे से जाके यू टर्न लेना, रॉन्ग साइड से घूम के लखनऊ जाना।
8: तो कितने किलोमीटर आप यहाँ से रॉन्ग साइड?
9: बताया नहीं उन्होंने कितना, उन्होंने बोला काफी आपको कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद रॉन्ग साइड उधर से होके तब आपको जाना पड़ेगा।
8: सुविधा आप लोग को हो रही है?
9: भाई दिक्कत तो है, पता नहीं हो सकता चालान भी काट दे, मेरा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा उधर से घूम के, इधर रास्ता पता नहीं कैसे क्या है।
7: ये अंधेर गर्दी के गड्ढे नहीं तो क्या है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की कलई खुलने के बावजूद NHAI के अफसर यही दावा कर रहे हैं कि कसूर तो बारिश का है, एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी और NHAI का नहीं।
10: ऐसा नहीं कि NHAI का रोड खराब होता, आप दूसरे रोड से भी देखें तो ऐसा नहीं कि बारिश के कारण रोड खराब होते हैं, ये बारिश में फ्लेक्सिबल पेमेंट जहाँ रहते हैं वहाँ पे टूटी आते हैं।
7: इनका नाम है गौतम विशाल, NHAI के रीजनल अफसर हैं। सवाल जवाबदेही तय करने का है, लेकिन जिम्मेदारों ने बिना जांच पूरी हुए फैसला सुना दिया, मतलब जो अब तक होता आया है वही इस मामले में होगा। जांच और एक्शन की दुहाई देकर एक्सप्रेसवे के गड्ढों को NHAI के अफसर गटक जाएंगे, क्योंकि कसूर बरसात का है, क्वालिटी तो 100 आने खरी है।
10: AI तकनीक के हिसाब से बनाया गया और रोड क्रश मेरा एक्सप्रेसवे बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई क्वालिटी की कोई क्वालिटी बीच बीच में चेक होते गए हैं।
7: एक्सप्रेसवे को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं हुआ, सब कुछ मानकों के हिसाब से हुआ, तो NHAI को पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर और मौजूदा प्रोजेक्ट मैनेजर पर कार्रवाई का हंटर क्यों चलाना पड़ा? धसा हुआ एक्सप्रेसवे गवाही दे रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन एक्सप्रेसवे के निर्माण में हुई खामियों के बावजूद NHAI के अफसर बड़ी बेशर्मी से एक्सप्रेसवे की खूबियां गिना रहे हैं।
10: टोटल 63 किलोमीटर का लेंथ है और 126 किलोमीटर दोनों साइड मिला करके होते हैं। 126 किलोमीटर में आप मेरे 5 लोकेशंस हैं, 5 लोकेशन मिला करके 1 किलोमीटर भी लेंथ नहीं आता, और यानी कि मेरा मोर देन 98% स्ट्रेच में बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से आज भी चल रहा है।
7: सवाल यही है कि 4200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद एक्सप्रेसवे का एक भी हिस्सा घटिया क्यों निकला। सवाल NHAI के कर्मचारियों और एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के गड़बड़ झाले का है। क्या टैक्स पेयर्स के पैसों से बने एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण के बाद PNC पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ नोटिस भेजना नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी काफी है? क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में देश की जनता से वादा किया था कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन NHAI के अफसरों और ठेकेदारों पर गडकरी की चेतावनी जमीन पर नजर नहीं आई। यानी अभी बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
11: ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसे कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा, ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है। और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में किसी की मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50,00,000 करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी मैं लाकाम लेके आया हूँ। और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर दो, हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज देखें।
6: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर न करें राजनीति। पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते नेता, विपक्ष ने पहले अमित शाह पर साधा था निशाना। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने माफी मांगी, मानी अपनी गलती। केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को आज फिर से पेश होने का दिया है समन। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड, कहा पवन पांडे होंगे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जीत का दावा किया। दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना, ऑडियो संदेश में कहा मुझे बेदखल करने के लिए छात्र आंदोलन को बनाया गया हथियार। कार्यक्रम में शामिल होने पर पूर्व क्रिकेटर शाकिब उल हसन के घर पर आगजनी की कोशिश। और आज तक की खबर का डबल असर, पीएमओ के दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों के लिए खत्म होगा इंटरव्यू। उत्तराखंड परिवहन विभाग के रोडवेज कर्मचारियों को भी जल्द वेतन भुगतान के आदेश। रांची में 13 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है और छात्र आंदोलन का मुद्दा अब राजनीतिक हो चुका है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी रांची के इन छात्रों के प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं? कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं, आंदोलन बढ़ता जा रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें।
1: वहां पर देवेंद्रनाथ महातो हैं जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से बात कर अपना पानी का अनशन छोड़ा।
2: लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी।
3: क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की यह स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव भूल जाता है मार्केट।
4: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है।
5: दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे प्रदर्शन की गूंज भी अब पूरे देश में हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार दबाव के बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि आज झारखंड सरकार के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
6: सर आप बताएंगे, अभी पहले एसडीओ आए थे, क्या कह के गए हैं आप?
4: वो ये करके गए कि मुख्यमंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है, और जिनका बात रखा जाए और मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के बाद फिर ये मुद्दा पे डिस्कस करके अपने में एक सुझाव देंगे।
5: ये प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहा है। इसमें करीब 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ा हुआ था। बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा।
7: ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं नींद में हुई थी। 26 सालों से कई लगातार कल डॉक्टर हमको हिदायत दे दिए थे कि अगर आप जब नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
5: जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और ओएमआर शीट में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। वहीं जेएसएससी सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए।
6: अगर सरकार सारी मांगे मान ले पर सीबीआई को जांच ना दे, क्योंकि सुनने में आया है उसी पर सरकार अड़ी हुई है कि सीबीआई को नहीं सीआईडी को दे दिया जाए।
8: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जो बात किया गया, जो बड़े ऑफिसर आए, एसडीओ आए, एसडीएम आए, जो भी आए, पांच लोग के, ठीक है। अब मेरा कहना है कि पांच लोग से ही अगर पर्सनल में बात करना है तो पांच लोग में ही आप अपने फैमिली में ही इलेक्शन लड़के।
5: ये प्रदर्शन राजनीतिक भी हो चुका है। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर सवाल उठा रही बीजेपी रांची के प्रदर्शन को पूरा समर्थन दे रही है। झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी प्रदर्शनकारियों से मिलने गए थे, लेकिन इधर जंतर मंतर के छात्रों के समर्थन में दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास घेरने वाले राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ सरकार में शामिल है। अब छात्र भी इस पर सवाल उठा रहे हैं।
6: एक सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें शामिल है कांग्रेस। कांग्रेस जो छात्रों की गूंज प्रयागराज तक लेके गई है, कांग्रेस जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए थे, आपके साथ उन्होंने आकर खड़े नहीं हुए हैं जैसा उनको उतरना चाहिए था। डिसअपॉइंटेड है उनसे?
2: ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची।
6: कुछ नहीं,
2: लड़की नहीं है मैम, मेरे लिए यही वर्ड सही है, हबीबी कम टू रांची।
6: पर डिसअपॉइंटेड है?
2: बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैम, मन खराब हो गया है। आप नीट के लिए इतना हावी प्रदर्शन कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेर रहे थे, और वहाँ तो एक एग्जाम का बात था मैम, वो भी एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ तो हमारे नौकरी का सवाल है।
5: प्रदर्शन में शामिल जिस भी छात्र को देखो उसकी अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची के ही छात्र यहाँ आए हैं, पूरे झारखंड से छात्र यहाँ आए। 19 साल का ये लड़का चतरा से यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आया है। जब ये 10वीं कक्षा में था तब इसका भाई जेपीएससी की तैयारी कर रहा था, अब ये ग्रेजुएट हो गया है और भाई अभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाया। अब दोनों भाई साथ में तैयारी करते हैं।
6: जब आप
9: 10th में थे,
6: आप 10th
9: का तैयारी करने आया था मैं रांची, वो लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो भैया हैं ये जेएसएससी का तैयारी करते थे 2022 में, मैं आज 2026 में मैं भी जेएसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, जेपीएससी, ये भी वही चीज का करने लगे, इनका ये 30+ हो गया। बताइए,
6: आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कितने साल के हैं सर?
10: मेरा 30 साल हो गया, 30 ईयर।
6: और ये 19 साल के हैं, कब से एक ही एग्जाम दे जा रहे हैं?
10: की एग्जाम
6: कब से?
10: 8 साल से।
6: 8 साल से एक एग्जाम दे रहे हैं?
10: जी जी जी, क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की ये स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट में, जिसके पास जितना पैसा रहता है सब देखकर ज्वाइन कर लेता है। अभी जैसे जेपीएससी का आया तो डीएसपी का 1,30,00,000 रुपया रेट था, वीडियो सीओ 1,20,00,000 रुपया रेट था। जैसे तो सरकार से हमको कहना है कि अगर इसी तरह करना है तो कॉलम आता है ईडब्ल्यूएस का, जनरल का, तो रेट का भी कॉलम खोल दे।
5: ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं, जिससे मिलो उसकी अपनी अलग कहानी है। एक और अभ्यर्थी मिला जो अब 35 साल के हो गए, 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं अनियमितताओं की वजह से एग्जाम निकल ही नहीं रहा।
6: आप कितने एग्जाम दे चुके हैं?
11: मैंने 3 जेपीएससी दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस लिखे हैं जेपीएससी का।
6: सारे रद्द हुए हैं?
11: सारे रद्द नहीं हुए हैं, अभी तो इसके लिए हम लोग आए 14 के लिए, ये रद्द हुए।
6: पेपर लीक हुआ है सर?
11: हाँ, पेपर लीक हुआ इसके लिए।
6: कितने साल दे चुके हैं आप इन एग्जाम्स में?
11: मैंने तो मेरा ये 35 इयर्स हो रहा है, ये एज 35 इयर्स है।
6: कब से दे रहे हैं एग्जाम?
11: 2016 से दे रहे हैं, 2016 से।
6: पिछले 10 साल से आप एग्जाम दे रहे हैं?
11: 3 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू दिए, और ये वाला एक जेपीएससी है 14 वाला, इसका तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सब देख रहे हैं कि अभी तो कट ऑफ भी नहीं पता, रिजल्ट निकाल दिया है,
6: कट ऑफ जारी।
5: ऐसा नहीं है कि यह हाल किसी एक एग्जाम का हो। एक और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मिले, विक्रम। झारखंड सरकार ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए पिछले 7 साल से भर्ती ही नहीं निकाली है। जब से झारखंड बना है तब से सिर्फ 3 बार भर्ती निकली है, अभी तो जद्दोजहद भर्ती निकालने की।
12: बात ऐसा है कि हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतने अभागे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता एग्जाम देने को। पिछले 26 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ है सिर्फ 3 बार एग्जाम हुई, 2007, 2013 और 2019 में। 2019 के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई है। तो हमने RTI के जरिए आंकड़ा निकाला था, वो आंकड़ा निकल के आया है हमारा 539 सीट खाली है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का लगभग आधा से ज़्यादा सीट खाली होता है। इसके बाद हमने मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से जितने भी टेबल्स होते हैं वहाँ पे जाके अर्जी लगाई है कि हमारा वैकेंसी आ जाए, लेकिन वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। ये जो लेटर आप देख सकते हैं, मतलब विभाग में जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो DOPT में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ से वैकेंसी जारी होती है। यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, और इसी तरह से हमें घुमाया जा रहा है।
5: प्रीति चौधरी, रांची आज तक।
0: समाजवादी पार्टी की सियासत में PDA की परिभाषा अखिलेश यादव नए सिरे से समझा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2024 में PDA का गठन किया, तब कहा था कि PDA मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन अब जैसा वोट वैसा जोड़ चलने लगा है। जहां P से कभी पिछड़ा कहते हैं, आज PDA में P का मतलब पंडित बताने लगे थे।
13: PDA में PD पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
14: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया।
13: जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही PDA और मजबूत दिखाई देगा।
14: जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
15: प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है।
14: जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
16: दिन भर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार।
17: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चले।
13: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग।
14: संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है।
18: उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीट पर असर डालने वाले ब्राह्मण वोट में बंटवारा क्या समाजवादी पार्टी करा सकती है? ये सवाल आते ही बहुत से लोग कहते ना, एकदम नहीं। जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां संत समाज कहता है वो BJP के साथ है, जहां सनातन की बात करती BJP है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में 2 से ज्यादा बार BJP नेताओं के मुंह पर आता है, जहां 10 ब्राह्मण वोट में 8 ब्राह्मण वोट BJP 5 चुनावों से हासिल करती आई है, वहां समाजवादी पार्टी क्या ब्राह्मण वोट की आहुति से सत्ता का हवन कर सकती? जब आप जानने के लिए इस वीडियो पर गौर करना जरूरी है। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडे, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी जैसे तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। छोटे लोहिया कहे गए पुराने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, डमरू बजता है, जिस मंत्र को पढ़कर शिव को प्रसन्न किया गया वो शिव तांडव स्तोत्र होता है। इन सब के बीच अखिलेश यादव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के रूप में गढ़े गए PDA के P का नया रूप बताते हैं।
13: लोग PDA की बात करते हैं और PDA की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से PDA से वो लोग हारे हैं, तब से PDA की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं PDA में PD पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग PDA की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि PDA में PD जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही PDA और मजबूत दिखाई देगा।
18: जिस ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुट रही है उससे जुड़े कुछ तथ्य नोट कर लीजिए। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य ये है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन तक ब्राह्मण ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे। यूपी में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का दूसरा तथ्य यह है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट बटा। 2007 में कई वर्षों के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। तीसरा तथ्य यह है कि 2007 से अब तक जिसके ब्राह्मण विधायक ज्यादा उसकी सत्ता आई। 2007 में मायावती के बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते। 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। इन्हीं सब तथ्यों के बीच अखिलेश यादव, मुस्लिम यादव और फिर पिछड़े वोट के कुछ हिस्से के साथ अब सवर्णों में सबसे बड़े वर्ग ब्राह्मण वोट को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तक याद कराते हैं।
15: भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे आप हमारी पौराणिक कहा पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
19: समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इनका ब्राह्मण समाज से सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं, ये खुद कन्फ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं, जनता इन्हें नकार चुकी है।
0: यूपी में ब्राह्मण वोटों को लेकर सियासत जोरों पर है और यही वजह है कि अखिलेश यादव कुछ घटनाएं याद दिलाकर ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप लगाते हैं, जिसमें आस्था के नाम पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर तक को वो जोड़ देते हैं।

0: पहली तस्वीर हाथ में त्रिशूल और डमरू, दूसरी तस्वीर काशी के ब्राह्मण बोले आज समाजवादी ही आवाज। प्रतीक चिन्ह के तौर पर इसी नारे वाली तस्वीर अखिलेश यादव लेते हैं। तीसरी तस्वीर नारा स्मर पढ़िए, ब्राह्मण की मति पीडीए की शक्ति, अखिलेश बदलेंगे यूपी की नियत। चौथी तस्वीर बीजेपी अपमान करती है समाजवादी सम्मान, जिसमें हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार सम्मान के साथ मंच पर बैठाया जाता है। इन प्रतीकों के साथ उत्तर प्रदेश पंडित जी सम्मान से कहे जाने वाले ब्राह्मण वोटर को अपने साथ समाजवादी पार्टी लाना चाहती है।
1: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं।
0: इसके बाद एक एक करके अखिलेश यादव याद दिलाते हैं कि वो हर विवाद जिससे ब्राह्मण वोट को उनकी पार्टी में शिफ्ट कराया जाए। और तब अखिलेश ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर चले बुलडोजर, प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े बटकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों के प्रीति भोज को बीजेपी के संगठन की तरफ से दिए गए नोटिस तक का जिक्र कर डाला।
1: याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है, सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था, और वो जो कहावत है गोरखपुर में हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है कोने हाथा नहीं भाता। बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें।
2: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में गांव में कहावत है बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कालर थी वो लटक गई। तो लोगों ने पूछा कहां से बिल्ली मौसी आ रही है, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजिम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृत को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं।
3: भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा, उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है।
4: ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से जूतों से मारा गया, क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे?
5: बड़ा असमंजस में है लोग। असमंजस में ये है कि पहले आप तय कर लीजिए कि आपकी भावना और मंशा क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं। पी की 29 परिभाषाएं समाजवादी पार्टी ने आपके सामने पहले दे रखी है। आपकी दुकान है, आप उसके मालिक हैं, आपका अपना स्कूल है, आप उसके प्रिंसिपल भी हैं, आप प्रबंधक भी हैं, तो व्याख्याएं आपको जो करनी हो वो आप करते रहिए।
6: उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को 4,200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI की निगरानी में बनाया गया। 13 जुलाई को देश के रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, आपको याद होगा। आज एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं और या फिर गड्ढों में एक्सप्रेसवे है, इसे लेकर जनता बुरी तरह से कंफ्यूज्ड है। जनता अब सरकार से सीधा सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी।
7: टैक्स पेयर्स के 4200 करोड़ रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ। दावा यही है कि कानपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे का तोहफा जनता को मिला है, लेकिन चंद दिनों में धूल फांकते वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की सच्चाई सामने आ गई। आज नए नवेले एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेसवे है, फर्क करना मुश्किल नहीं। सोचिए, नए एक्सप्रेसवे को चंद दिनों में मरम्मत की जरूरत पड़ गई तो आने वाले दिनों में क्या होगा। अब सवाल 4200 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता का है, क्योंकि पहली बरसात में एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई।
8: इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पर जहां पर उद्घाटन के बाद एक बार नहीं बल्कि दो बार सड़क खिसकने की शिकायत आई, जिसके बाद अब यहां पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि सबसे पहले 26 जुलाई को यानी उद्घाटन के 12 दिन बाद यहां पर सड़क खिसकने की शिकायत मिली, जिसके बाद NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर मरम्मत का काम कराया गया। एक बार फिर से 8 दिन बाद ये पूरी सड़क खिसक गई, जिसके बाद इस पूरे 200 से 300 मीटर के पूरे स्ट्रेच को काट कर फिर से बनाया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पर लगी हैं, JCB मशीन से एक तरफ खुदाई कर रही हैं और दूसरी तरफ मटेरियल डाल के यहाँ पर जो रोलर मशीन्स हैं उसको इस पूरे पैच वर्क की मरम्मत की जा रही है।
7: हालात ये है कि 5 जगहों पर एक्सप्रेसवे धस गया है। एक जगह मरम्मत का काम पूरा होता है तो दूसरा गड्ढा नजर आ जाता है, मतलब एक्सप्रेसवे बना है या गड्ढा वे।
8: कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में मरम्मत के चलते जिस दूसरी रोड को आने और जाने के लिए रखा गया था, यानी एक ही रोड जहां पर गाड़ियां आ भी रही थी या जहां गाड़ियां जा भी रही थी, अब वहां पर एक बैरिकेडिंग और लगा दी गई है। वजह यह है कि अब उस रोड पर भी शिकायतें सामने आने लगी है, वहां भी रोड धंसने लगी है और वहां भी रोड खिसकने लगी है। ये लाइव एग्जांपल है, हम मौजूद हैं उस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में। पीछे अगर आप देखेंगे बाएं तरफ पहले से ही काम चल रहा है मरम्मत का, वो 300 मीटर का स्ट्रेच पहले से ही काट कर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पर गाड़ियां आ भी रही हैं जा भी रही हैं, वहां पर एक और बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहां पर आप देखेंगे तो ये सड़क भी फिलहाल कल की बारिश के बाद धस गई है।
7: लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का स्या सच यही है, लेकिन इसी सच्चाई की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। वादा 120 की रफ्तार का था, लेकिन आज आम जनता सरकारी सिस्टम और ठेकेदारों के खेल की वजह से बीच में पिसने को मजबूर है।
9: मैं उन्नाव से आ रहा हूँ।
8: उन्नाव से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप आए तो
9: रास्ता बंद हुआ है,
8: तो आप लोग अब क्या पे क्या बताया उन्होंने कि कैसे?
9: वो टोल टैक्स पे बोल रहा था कि इधर से रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा आपको काफी दूर तक। अच्छा। वहाँ से उस लेन में जाके रॉन्ग साइड से तब आप जा सकते हो लखनऊ।
8: तो उन्होंने पहले नहीं कहीं लिख के रखा था कि रॉन्ग साइड है ऐसा?
9: वो उन्होंने फास्ट टैग काट दिया ना मेरा, जब कट गया तब बोला कि भैया आप आगे से जाके यू टर्न लेना, रॉन्ग साइड से घूम के लखनऊ जाना।
8: तो कितने किलोमीटर आप यहाँ से रॉन्ग साइड से?
9: बताया नहीं उन्होंने कितना, उन्होंने बोला काफी आपको कम से कम आधा किलोमीटर एक किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद रॉन्ग साइड उधर से होके तब आपको जाना पड़ेगा।
8: सुविधा आप लोग को हो रही है?
9: भाई दिक्कत तो है, ये पता नहीं हो सकता चलान भी काट दे, मेरा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा उधर से घूम के, इधर रास्ता पता नहीं कैसे क्या है।
7: ये अंधेर गर्दी के गड्ढे नहीं तो क्या है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे की कलई खुलने के बावजूद NHAI के अफसर यही दावा कर रहे हैं कि कसूर तो बारिश का है, एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी और NHAI का नहीं।
10: ऐसा नहीं कि NHAI का रोड खराब होता, आप दूसरे रोड्स भी देखें तो ऐसा नहीं कि बारिश के कारण रोड खराब होते हैं, ये बारिश में फ्लेक्सिबल पेमेंट जहां रहते हैं वहां पे टूटी आते हैं।
7: इनका नाम है गौतम विशाल, NHAI के रीजनल अफसर हैं। सवाल जवाबदेही तय करने का है, लेकिन जिम्मेदारों ने बिना जांच पूरी हुए फैसला सुना दिया, मतलब जो अब तक होता आया है वही इस मामले में होगा। जांच और एक्शन की दुहाई देकर एक्सप्रेसवे के गड्ढों को NHAI के अफसर गटक जाएंगे, क्योंकि कसूर बरसात का है, क्वालिटी तो 100 आने खरी है।
10: AI तकनीक के हिसाब से बनाया गया और रोड्स क्रश्ड, मेरा एक्सप्रेसवे बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई क्वालिटी की कोई क्वालिटी बीच बीच में चेक होते गए हैं।
7: एक्सप्रेसवे को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं हुआ, सब कुछ मानकों के हिसाब से हुआ, तो NHAI को पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर और मौजूदा प्रोजेक्ट मैनेजर पर कार्रवाई का हंटर क्यों चलाना पड़ा? धसा हुआ एक्सप्रेसवे गवाही दे रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन एक्सप्रेसवे के निर्माण में हुई खामियों के बावजूद NHAI के अफसर बड़ी बेशर्मी से एक्सप्रेसवे की खूबियां गिना रहे हैं।
10: टोटल 63 किलोमीटर का लेंथ है और 126 किलोमीटर दोनों साइड मिला करके होते हैं। 126 किलोमीटर में आप मेरे पांच लोकेशन हैं, पांचों लोकेशन मिला करके एक किलोमीटर भी लेंथ नहीं आता, और यानी कि मेरा मोर देन 98% स्ट्रेस में बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से आज भी चल रहा है।
7: सवाल यही है कि 4200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद एक्सप्रेसवे का एक भी हिस्सा घटिया क्यों निकला। सवाल एनएचएआई के कर्मचारियों और एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के गड़बड़ छाले का है। क्या टैक्स पेयर्स के पैसों से बने एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण के बाद पीएनसी पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ नोटिस भेजना नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी काफी है? क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में देश की जनता से वादा किया था कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन एनएचएआई के अफसरों और ठेकेदारों पर गडकरी की चेतावनी जमीन पर नजर नहीं आई। यानी अभी बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
11: ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसे कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा। ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में किसी की मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50,00,000 करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी मैं लाकाम लेके आया हूँ और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैकलिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोकपीट करके सीधा कर दो, हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
6: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर न करें राजनीति। पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते नेता, विपक्ष ने पहले अमित शाह पर साधा था निशाना। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने माफी मांगी, मानी अपनी गलती। केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को आज फिर से पेश होने का दिया है समन। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड, कहा पवन पांडे होंगे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जीत का दावा किया। दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना, ऑडियो संदेश में कहा मुझे बेदखल करने के लिए छात्र आंदोलन को बनाया गया हथियार। कार्यक्रम में शामिल होने पर पूर्व क्रिकेटर शाकिब उल हसन के घर पर आगजनी की कोशिश। और आज तक की खबर का डबल असर, पीएमओ के दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों के लिए खत्म हो गए इंटरव्यू। उत्तराखंड परिवहन विभाग के रोडवेज कर्मचारियों को भी जल्द वेतन भुगतान के आदेश। रांची में 13 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है और छात्र आंदोलन का मुद्दा अब राजनीतिक हो चुका है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी रांची के इन छात्रों के प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं? कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं, आंदोलन बढ़ता जा रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें।
1: देवेंद्रनाथ महातो हैं जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से बात कर अपना पानी का अनशन तोड़ा है।
2: लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी।
3: पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की यह स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट।
4: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है।
5: दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे प्रदर्शन की गूंज भी अब पूरे देश में हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार दबाव के बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि आज झारखंड सरकार के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
1: सर आप बताएंगे, अभी पहले एसडीओ आए थे, क्या कह के गए हैं आप?
4: वो ये कर करके गए कि मुख्यमंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और जिनका बात रखा जाए और मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के बाद फिर ये मुद्दा पे डिस्कस करके अपने में एक सुझाव देंगे।
5: ये प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहा है। इसमें करीब 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ा हुआ था। बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा।
6: ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं लीड में हुई थी। मैं 26 सालों से कई लगातार कल डॉक्टर हमको हिदायत दे दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
7: अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी, आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी।
5: जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और ओएमआर शीट में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। वहीं जेएसएससी सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी

0: पड़ी हुई है कि सीबीआई को नहीं सीआईडी को दे दिया जाए।
1: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जो बात किया गया, जो बड़े ऑफिसर आए, एसडीओ आए, एसडीएम आए, जो भी आए, पांच लोग के, ठीक है। अब मेरा कहना है कि पांच लोग से ही अगर पर्सनल में बात करना है तो पांच लोग में ही आप अपने फैमिली में ही इलेक्शन लड़के।
2: ये प्रदर्शन राजनीतिक भी हो चुका है। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर सवाल उठा रही बीजेपी रांची के प्रदर्शन को पूरा समर्थन दे रही है। झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी प्रदर्शनकारियों से मिलने गए थे, लेकिन इधर जंतर मंतर के छात्रों के समर्थन में दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवाज घेरने वाले राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ सरकार में शामिल है। अब छात्र भी इस पर सवाल उठा रहे हैं।
0: एक सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें शामिल है कांग्रेस। कांग्रेस जो छात्रों की गूंज प्रयागराज तक लेके गई है, कांग्रेस जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए थे, आपके साथ उन्होंने आकर खड़े नहीं हुए हैं जैसा उनको उतरना चाहिए था। डिसअपॉइंटेड है उनसे?
3: ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
0: हबीबी
3: कम टू रांची।
0: कुछु कुछु नहीं,
3: लड़की नहीं है मैम, मेरे लिए यही वर्ड सही है, हबीबी कम टू रांची,
0: हबीबी कम टू रांची। पर डिसअपॉइंटेड है?
3: बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैम, मन खराब हो गया है। आप नीट के लिए इतना हावी प्रदर्शन कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेर रहे थे, और वहाँ तो एक एग्जाम का बात था मैम, वो भी एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ तो हमारे नौकरी का सवाल है।
2: प्रदर्शन में शामिल जिस भी छात्र को देखो उसकी अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची के ही छात्र यहाँ आए हैं, पूरे झारखंड से छात्र यहाँ आए हैं। 19 साल का ये लड़का चतरा से यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आया है। जब ये 10वीं कक्षा में था तब इसका भाई जेपीएससी की तैयारी कर रहा था, अब ये ग्रेजुएट हो गया है और भाई अभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाया। अब दोनों भाई साथ में तैयारी करते हैं।
0: जब आप
4: 10th में थे,
0: आप 10th
4: का तैयारी करने आया था मैं रांची, वो लाइब्रेरी में पढ़ता था, भैया हैं ये जेएसएससी का तैयारी करते थे 2022 में, मैं आज 2026 में मैं भी जेएसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, जेपीएससी, ये भी वही चीज का करने लगे, इनका ये 30+ हो गया। बताइए,
0: आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कितने साल के हैं सर?
5: मेरा 30 साल हो गए, 30 ईयर।
0: और ये 19 साल के हैं, कब से एक ही एग्जाम दे जा रहे हैं?
5: की एग्जाम
0: कब से?
5: 8 साल से।
0: 8 साल से एक एग्जाम दे रहे हैं?
5: जी जी जी, क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की ये स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट में, जिसके पास जितना पैसा रहता है सब देखकर ज्वाइन कर लेता है। अभी जैसे जेपीएससी का आया तो डीएसपी का 1,30,00,000 रुपया रेट था, बीडीओ सीओ 1,20,00,000 रुपया रेट था। जैसे तो सरकार से हमको कहना है कि अगर इसी तरह करना है तो कॉलम आता है ईडब्ल्यूएस का, जनरल का, तो रेट का भी कॉलम खोल दे।
2: ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं, जिससे मिलो उसकी अपनी अलग कहानी है। एक और अभ्यर्थी मिला जो अब 35 साल के हो गए, 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं अनियमितताओं की वजह से एग्जाम निकल ही नहीं रहा।
0: आप कितने एग्जाम दे चुके हैं?
6: मैंने 3 जेपीएससी दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस लिखे हैं जेपीएससी का।
0: सारे रद्द हुए हैं?
6: सारे रद्द नहीं हुए हैं, अभी तो इसके लिए हम लोग आए 14 के लिए, ये रद्द हुए।
0: पेपर लीक हुआ है सर?
6: हाँ, पेपर लीक हुआ इसके लिए।
0: कितने साल दे चुके हैं आप इन एग्जाम्स में?
6: मैंने तो मेरा ये 35 इयर्स हो रहा है, ये एज 35 इयर्स है।
0: कब से दे रहे हैं एग्जाम?
6: 2016 से दे रहे हैं, 2016 से।
0: पिछले 10 साल से आप एग्जाम दे रहे हैं?
6: 3 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू दिए, और ये वाला एक जेपीएससी है 14 वाला, इसका तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सब देख रहे हैं कि अभी तक कट ऑफ भी नहीं पता, रिजल्ट निकाल दिया है,
0: कट ऑफ जारी नहीं।
2: ऐसा नहीं है कि यह हाल किसी एक एग्जाम का हो। एक और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मिले, विक्रम। झारखंड सरकार ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए पिछले 7 साल से भर्ती ही नहीं निकाली है। जब से झारखंड बना है तब से सिर्फ 3 बार भर्ती निकली है, अभी तो जद्दोजहद भर्ती निकालने की।
7: बात ऐसा है कि हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतने अभागे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता एग्जाम देने को। पिछले 26 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ सिर्फ 3 बार एग्जाम हुई, 2007, 2013 और 2019 में। 2019 के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई है। तो हमने आरटीआई के जरिए आंकड़ा निकाला था, वो आंकड़ा निकल के आया है हमारा 539 सीट खाली है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का लगभग आधा से ज्यादा सीट खाली होता है। इसके बाद हमने मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से जितने भी

0: बल्स होते हैं वहाँ पे जाके अर्जी लगाई है कि हमारा वैकेंसी आ जाए, लेकिन वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। ये जो लेटर आप देख सकते हैं, मतलब विभाग में जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो DOPT में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ से वैकेंसी जारी होती है। यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, पर इसी तरह से हमें घुमाया जा रहा है।
1: प्रीति चौधरी, रांची आज तक।
2: समाजवादी पार्टी की सियासत में पीडीए की परिभाषा अखिलेश यादव नए सिरे से समझा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2024 में पीडीए का गठन किया, तब कहा था कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन अब जैसा वोट वैसा जोड़ चलने लगा है। जहां पी से कभी पिछड़ा कहते हैं, आज पीडीए में पी का मतलब पंडित बताने लगे थे।
3: पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
4: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया।
3: जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा।
4: जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
5: प्रभु श्रीराम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है।
4: जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
6: दिन भर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार।
7: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चले।
3: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग।
4: संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है।
8: उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीट पर असर डालने वाले ब्राह्मण वोट में बंटवारा क्या समाजवादी पार्टी करा सकती है? ये सवाल आते ही बहुत से लोग कहते ना, एकदम नहीं। जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां संत समाज कहता है वो बीजेपी के साथ है, जहां सनातन की बात करती बीजेपी है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में 2 से ज्यादा बार बीजेपी नेताओं के मुंह पर आता है, जहां 10 ब्राह्मण वोट में 8 ब्राह्मण वोट बीजेपी 5 चुनावों से हासिल करती आई है, वहां समाजवादी पार्टी क्या ब्राह्मण वोट की आहुति से सत्ता का हवन कर सकती है? जवाब जानने के लिए इस वीडियो पर गौर करना जरूरी है। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडे, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी जैसे तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। छोटे लोहिया कहे गए पुराने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, डमरू बजता है, जिस मंत्र को पढ़कर शिव को प्रसन्न किया गया वो शिव तांडव स्त्रोत होता है। इन सब के बीच अखिलेश यादव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के रूप में गढ़े गए पीडीए के पी का नया रूप बताते हैं।
3: लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा।
8: जिस ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुट रही है, उससे जुड़े कुछ तथ्य नोट कर लीजिए। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य ये है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन तक ब्राह्मण ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे। यूपी में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का दूसरा तथ्य यह है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट बटा। 2007 में कई वर्षों के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। तीसरा तथ्य यह है कि 2007 से अब तक जिसके ब्राह्मण विधायक ज्यादा उसकी सत्ता आई। 2007 में मायावती के बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते। 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। इन्हीं सब तथ्यों के बीच अखिलेश यादव, मुस्लिम यादव और फिर पिछड़े वोट के कुछ हिस्से के साथ अब सवर्णों में सबसे बड़े वर्ग ब्राह्मण वोट को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तक याद कराते हैं।
5: भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे आप हमारी पौराणिक कहा पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
9: समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इनका ब्राह्मण समाज से सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं, ये खुद कन्फ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त हैं, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं, जनता इन्हें नकार चुकी है।
2: यूपी में ब्राह्मण वोटों को लेकर सियासत जोरों पर है और यही वजह है कि अखिलेश यादव कुछ घटनाएं याद दिलाकर ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप लगाते हैं, जिसमें आस्था के नाम पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर तक को वो जोड़ देते हैं।

0: पहली तस्वीर हाथ में त्रिशूल और डमरू, दूसरी तस्वीर काशी के ब्राह्मण बोले आज समाजवादी ही आवाज। प्रतीक चिन्ह के तौर पर इसी नारे वाली तस्वीर अखिलेश यादव लेते हैं। तीसरी तस्वीर नारा इस पर पढ़िए, ब्राह्मण की मति पीडीए की शक्ति, अखिलेश बदलेंगे यूपी की नियत। चौथी तस्वीर बीजेपी अपमान करती है समाजवादी सम्मान, जिसमें हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार सम्मान के साथ मंच पर बैठाया जाता है। इन प्रतीकों के साथ उत्तर प्रदेश पंडित जी सम्मान से कहे जाने वाले ब्राह्मण वोटर को अपने साथ समाजवादी पार्टी लाना चाहती है।
1: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं।
0: इसके बाद एक एक करके अखिलेश यादव याद दिलाते हैं कि वो हर विवाद जिससे ब्राह्मण वोट को उनकी पार्टी में शिफ्ट कराया जाए। और तब अखिलेश ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर चले बुलडोजर, प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े बटकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों के प्रीति भोज को बीजेपी के संगठन की तरफ से दिए गए नोटिस तक का जिक्र कर डाला।
1: याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है, सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था, और वो जो कहावत है गोरखपुर में हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है कोने हाथा नहीं भाता। बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें।
2: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में गांव में कहावत है बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कालर थी वो लटक गई। तो लोगों ने पूछा कहां से बिल्ली मौसी आ रहे हैं, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजिम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृति को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं
3: भारत की धरती पर।
4: उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को 4,200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई की निगरानी में बनाया गया। 13 जुलाई को देश के रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, आपको याद होगा। आज एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं और या फिर गड्ढों में एक्सप्रेसवे है, इसे लेकर जनता बुरी तरह से कंफ्यूज्ड है। जनता अब सरकार से सीधा सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी।
5: टैक्स पेयर्स के 4200 करोड़ रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ। दावा यही है कि कानपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे का तोहफा जनता को मिला है, लेकिन चंद दिनों में धूल फांकते वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की सच्चाई सामने आ गई। आज नए नवेले एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेसवे है, फर्क करना मुश्किल नहीं। सोचिए नए एक्सप्रेसवे को चंद दिनों में मरम्मत की जरूरत पड़ गई तो आने वाले दिनों में क्या होगा। अब सवाल 4200 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता का है, क्योंकि पहली बरसात में एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई।
6: इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पर जहां पर उद्घाटन के बाद एक बार नहीं बल्कि दो बार सड़क खिसकने की शिकायत आई, जिसके बाद अब यहां पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि सबसे पहले 26 जुलाई को यानी उद्घाटन के 12 दिन बाद यहां पर सड़क खिसकने की शिकायत मिली, जिसके बाद एनएचआई के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर मरम्मत का काम कराया गया। एक बार फिर से 8 दिन बाद ये पूरी सड़क खिसक गई, जिसके बाद इस पूरे 200 से 300 मीटर के पूरे स्ट्रेच को काट कर फिर से बनाया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मशीन्स यहां पर लगी हैं, जेसीबी मशीन्स एक तरफ खुदाई कर रही हैं और दूसरी तरफ मटेरियल डाल के यहाँ पर जो रोलर मशीन्स हैं उसको इस पूरे पैच वर्क की मरम्मत की जा रही है।
5: हालात ये है कि 5 जगहों पर एक्सप्रेसवे धस गया है। एक जगह मरम्मत का काम पूरा होता है तो दूसरा गड्ढा नजर आ जाता है, मतलब एक्सप्रेसवे बना है या गड्ढा वे।
6: कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में मरम्मत के चलते जिस दूसरी रोड को आने और जाने के लिए रखा गया था, यानी एक ही रोड जहां पर गाड़ियां आ भी रही थी या जहां गाड़ियां जा भी रही थी, अब वहां पर एक बैरिकेडिंग और लगा दी गई है। वजह यह है कि अब उस रोड पर भी शिकायतें सामने आने लगी है, वहां भी रोड धंसने लगी है और वहां भी रोड खिसकने लगी है। ये लाइव एग्जांपल है, हम मौजूद हैं उस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में। पीछे अगर आप देखेंगे बाएं तरफ पहले से ही काम चल रहा है मरम्मत का, वो 300 मीटर का स्ट्रेच पहले से ही काट कर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पर गाड़ियां आ भी रही हैं जा भी रही हैं, वहां पर एक और बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहां पर आप देखेंगे तो ये सड़क भी फिलहाल कल की बारिश के बाद धस गई है।
5: लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का स्या सच यही है, लेकिन इसी सच्चाई की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। वादा 120 की रफ्तार का था, लेकिन आज आम जनता सरकारी सिस्टम और ठेकेदारों के खेल की वजह से बीच में पिसने को मजबूर है।
3: मैं उन्नाव से आ रहा हूँ।
6: उन्नाव से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप आए तो
3: रास्ता बंद हुआ है,
6: तो आप लोग अब यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि कैसे?
3: वो टोल टैक्स पे बोल रहा था कि इधर से रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा आपको काफी दूर तक। अच्छा। वहाँ से उस लेन में जाके रॉन्ग साइड से तब आप जा सकते हो लखनऊ।
6: तो उन्होंने पहले नहीं कहीं लिख के रखा था कि रॉन्ग साइड है ऐसा?
3: वो उन्होंने फास्ट टैग काट दिया ना मेरा, जब कट गया तब बोला कि भैया आप आगे से जाके यू टर्न लेना रॉन्ग साइड से, उस घूम के लखनऊ जाना आप।
6: तो कितने किलोमीटर आप यहाँ से रॉन्ग साइड चले?
3: बताया नहीं उन्होंने कितना, उन्होंने बोला काफी आपको कम से कम आधा किलोमीटर एक किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद रॉन्ग साइड उधर से होके तब आपको जाना पड़ेगा।
6: सुविधा आप लोग को हो रही है?
3: भाई दिक्कत तो है, ये पता नहीं हो सकता चलान भी काट दे, मेरा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा उधर से घूम के, इधर रास्ता पता नहीं कैसे क्या है।
5: ये अंधेर गर्दी के गड्ढे नहीं तो क्या है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे की कलई खुलने के बावजूद NHAI के अफसर यही दावा कर रहे हैं कि कसूर तो बारिश का है, एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी और NHAI का नहीं।
7: ऐसा नहीं कि NHAI का रोड खराब होता, आप दूसरे रोड्स भी देखें तो ऐसा नहीं कि बारिश के कारण रोड खराब होते हैं, ये बारिश में फ्लेक्सिबल पेमेंट जहां रहते हैं वहां पे टूटी आते हैं।
5: इनका नाम है गौतम विशाल, NHAI के रीजनल अफसर हैं। सवाल जवाबदेही तय करने का है, लेकिन जिम्मेदारों ने बिना जांच पूरी हुए फैसला सुना दिया, मतलब जो अब तक होता आया है वही इस मामले में होगा। जांच और एक्शन की दुहाई देकर एक्सप्रेसवे के गड्ढों को NHAI के अफसर गटक जाएंगे, क्योंकि कसूर बरसात का है, क्वालिटी तो 100 आने खरी है।
7: AI तकनीक के हिसाब से बनाया गया और रोड्स क्रश, मेरा एक्सप्रेसवे बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई क्वालिटी की कोई क्वालिटी भी बीच बीच में चेक होते गए हैं।
5: एक्सप्रेसवे को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं हुआ, सब कुछ मानकों के हिसाब से हुआ, तो NHAI को पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर और मौजूदा प्रोजेक्ट मैनेजर पर कार्रवाई का हंटर क्यों चलाना पड़ा? धसा हुआ एक्सप्रेसवे गवाही दे रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन एक्सप्रेसवे के निर्माण में हुई खामियों के बावजूद NHAI के अफसर बड़ी बेशर्मी से एक्सप्रेसवे की खूबियां गिना रहे हैं।
7: टोटल 63 किलोमीटर का लेंथ है और 126 किलोमीटर दोनों साइड मिला करके होते हैं। 126 किलोमीटर में आप मेरे 5 लोकेशंस हैं, 5 लोकेशन मिला करके 1 किलोमीटर भी लेंथ नहीं आता, और यानी कि मेरा मोर देन 98% स्ट्रेच में बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से आज भी चल रहा है।
5: सवाल यही है कि 4200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद एक्सप्रेसवे का एक भी हिस्सा घटिया क्यों निकला? सवाल NHAI के कर्मचारियों और एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के गड़बड़ छाले का है। क्या टैक्स पेयर्स के पैसों से बने एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण के बाद PNC पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ नोटिस भेजना नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी काफी है? क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में देश की जनता से वादा किया था कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन NHAI के अफसरों और ठेकेदारों पर गडकरी की चेतावनी जमीन पर नजर नहीं आई, यानी अभी बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
8: ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसे कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा, ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है, और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में किसी की मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपये के काम किए। बेनीवाल जी आपके भी मैं लाकाम लेके आया हूँ, और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैकलिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर दो, हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
4: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर न करें राजनीति। पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते नेता, विपक्ष ने पहले अमित शाह पर साधा था निशाना। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने माफी मांगी, मानी अपनी गलती। केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को आज फिर से पेश होने का दिया है समन। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड, कहा पवन पांडे होंगे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जीत का दावा किया। दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना, ऑडियो संदेश में कहा मुझे बेदखल करने के लिए छात्र आंदोलन को बनाया गया हथियार। कार्यक्रम में शामिल होने पर पूर्व क्रिकेटर शाकिब उल हसन के घर पर आगजनी की कोशिश। और आज तक की खबर का डबल असर, पीएमओ के दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों के लिए खत्म होगा इंटरव्यू। उत्तराखंड परिवहन विभाग के रोडवेज कर्मचारियों को भी जल्द वेतन भुगतान के आदेश। रांची में 13 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है और छात्र आंदोलन का मुद्दा अब राजनीतिक हो चुका है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी रांची के इन छात्रों के प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं? कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं, आंदोलन बढ़ता जा रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें।
1: वहां पर देवेंद्रनाथ महातो हैं जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से बात कर अपना पानी का अनशन तोड़ा।
2: लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी।
3: क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की यह स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव भूल जाता है मार्केट।
4: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है।
5: दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे प्रदर्शन की गूंज भी अब पूरे देश में हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार दबाव के बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि आज झारखंड सरकार के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
1: सर आप बताएंगे, अभी पहले एसडीओ आए थे, क्या कह के गए हैं आप?
4: वो ये कर करके गए कि मुख्यमंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और जिनका बात रखा जाए और मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के बाद फिर ये मुद्दा पे डिस्कस करके अपने में एक सुझाव देंगे।
5: ये प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहा है। इसमें करीब 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ा हुआ था। बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा।
6: ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं लीड में हुई थी। मैं 26 सालों से कई लगातार कल डॉक्टर हमको हिदायत दे दिए थे कि अगर आप जब नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
5: जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और ओएमआर शीट में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। वहीं जेएसएससी सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए।
1: अगर सरकार सारी मांगे मान ले पर सीबीआई को जांच ना दे, क्योंकि सुनने में आया है उसी पर सरकार अड़ी हुई है कि सीबीआई को नहीं सीआईडी को दे दिया जाए।
4: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जो बात किया गया, जो बड़े ऑफिसर आए, एसडीओ आए, एसडीएम आए, जो भी आए, पांच लोग के, ठीक है। अब मेरा कहना है कि पांच लोग से ही अगर पर्सनल में बात करना है तो पांच लोग में ही आप अपने फैमिली में ही इलेक्शन लड़के।
5: ये प्रदर्शन राजनीतिक भी हो चुका है। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर सवाल उठा रही बीजेपी रांची के प्रदर्शन को पूरा समर्थन दे रही है। झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी प्रदर्शनकारियों से मिलने गए थे, लेकिन इधर जंतर मंतर के छात्रों के समर्थन में दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास घेरने वाले राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ सरकार में शामिल है। अब छात्र भी इस पर सवाल उठा रहे हैं।
1: एक सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें शामिल है कांग्रेस। कांग्रेस जो छात्रों की गूंज प्रयागराज तक लेके गई है, कांग्रेस जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए थे, आपके साथ उन्होंने आकर खड़े नहीं हुए हैं जैसा उनको उतरना चाहिए था, डिसअपॉइंटेड है उनसे।
2: ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची।
1: कुछ नहीं,
2: लड़की नहीं है मैम, मेरे लिए यही वर्ड सही है, हबीबी कम टू रांची।
1: पर डिसअपॉइंटेड है,
2: बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैम, मन खराब हो गया है। आप नीट के लिए इतना हावी प्रदर्शन कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेर रहे थे, और वहाँ तो एक एग्जाम का बात था मैम, वो भी एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ तो हमारे नौकरी का सवाल है।
5: प्रदर्शन में शामिल जिस भी छात्र को देखो उसकी अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची के ही छात्र यहाँ आए हैं, पूरे झारखंड से छात्र यहाँ हैं। 19 साल का ये लड़का चतरा से यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आया है। जब ये 10वीं कक्षा में था तब इसका भाई जेपीएससी की तैयारी कर रहा था, अब ये ग्रेजुएट हो गया है और भाई अभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाया। अब दोनों भाई साथ में तैयारी करते हैं।
1: जब आप
2: 10th में थे,
1: आप 10th
2: का तैयारी करने आया था मैं रांची, वो लाइब्रेरी में पढ़ता था, भैया हैं ये जेएसएससी का तैयारी करते थे 2022 में, मैं आज 2026 में मैं भी जेएसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, जेपीएससी, ये भी वही चीज का करने लगे, इनका ये 30+ हो गया, बताइए।
1: आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कितने साल के हैं सर?
3: मेरा 30 साल हो गया, 30 ईयर।
1: और ये 19 साल के हैं, कब से एक ही एग्जाम दे जा रहे हैं?
3: की एग्जाम
1: कब से?
3: 8 साल से।
1: 8 साल से एक एग्जाम दे रहे हैं?
3: जी जी जी, क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की ये स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट में, जिसके पास जितना पैसा रहता है सब देखकर ज्वाइन कर लेता है। अभी जैसे जेपीएससी का आया तो डीएसपी का 1,30,00,000 रुपया रेट था, वीडियो सीओ 1,20,00,000 रुपया रेट था, जैसे तो सरकार से हमको कहना है कि अगर इसी तरह करना है तो कॉलम आता है ईडब्ल्यूएस का, जनरल का, तो रेट का भी कॉलम खोल दे।
5: ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं, जिससे मिलो उसकी अपनी अलग कहानी है। एक और अभ्यर्थी मिला जो अब 35 साल के हो गए, 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं अनियमितताओं की वजह से एग्जाम निकल ही नहीं रहा।
1: आप कितने एग्जाम दे चुके हैं?
7: मैंने 3 जेपीएससी दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस लिखे हैं जेपीएससी का।
1: सारे रद्द हुए हैं?
7: सारे रद्द नहीं हुए हैं, अभी तो इसके लिए हम लोग आए 14 के लिए, ये रद्द हुए।
1: पेपर लीक हुआ है सर?
7: हाँ, पेपर लीक हुआ इसके लिए।
1: कितने साल दे चुके हैं आप इन एग्जाम्स में?
7: मैंने तो मेरा ये 35 इयर्स हो रहा है, ये एज 35 इयर्स है।
1: कब से दे रहे हैं एग्जाम?
7: 2016 से दे रहे हैं, 2016 से।
1: पिछले 10 साल से आप एग्जाम दे रहे हैं?
7: 3 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू दिए, और ये वाला एक जेपीएससी है 14 वाला, इसका तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सब देख रहे हैं कि अभी तो कट ऑफ भी नहीं पता, रिजल्ट निकाल दिया है,
1: कट ऑफ जारी।
5: ऐसा नहीं है कि यह हाल किसी एक एग्जाम का हो। एक और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मिले विक्रम, झारखंड सरकार ने इंजीनियरिंग।
0: समाजवादी पार्टी की सियासत में पीडीए की परिभाषा अखिलेश यादव नए सिरे से समझा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2024 में पीडीए का गठन किया, तब कहा था कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन अब जैसा वोट वैसा जोड़, चलने लगा है। जहां पी से कभी पिछड़ा कहते हैं, आज पीडीए में पी का मतलब पंडित बताने लगे थे।
8: पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
9: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया।
8: जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा।
9: जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
10: प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है।
9: जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
11: दिन भर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार।
12: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चले।
8: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग।
9: संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, इस सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है।
5: उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीट पर असर डालने वाले ब्राह्मण वोट में बंटवारा क्या समाजवादी पार्टी करा सकती है? ये सवाल आते ही बहुत से लोग कहते ना, एकदम नहीं। जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां संत समाज कहता है वो बीजेपी के साथ है, जहां सनातन की बात करती बीजेपी है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में 2 से ज्यादा बार बीजेपी नेताओं के मुंह पर आता है, जहां 10 ब्राह्मण वोट में 8 ब्राह्मण वोट बीजेपी 5 चुनावों से हासिल करती आई है, वहां समाजवादी पार्टी क्या ब्राह्मण वोट की आहुति से सत्ता का हवन कर सकती? जब आप जानने के लिए इस वीडियो पर गौर करना जरूरी है। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडे, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी जैसे तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। छोटे लोहिया कहे गए पुराने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, डमरू बजता है, जिस मंत्र को पढ़कर शिव को प्रसन्न किया गया वो शिव तांडव स्त्रोत होता है। इन सब के बीच अखिलेश यादव पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के रूप में गढ़े गए पीडीए के पी का नया रूप बताते हैं।
8: लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा।
5: जिस ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुट रही है, उससे जुड़े कुछ तथ्य नोट कर लीजिए। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य ये है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन तक ब्राह्मण ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे। यूपी में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का दूसरा तथ्य यह है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट बटा। 2007 में कई वर्षों के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी, तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। तीसरा तथ्य यह है कि 2007 से अब तक जिसके ब्राह्मण विधायक ज्यादा, उसकी सत्ता आई। 2007 में मायावती के बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में
13: बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते, 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। इन्हीं सब तथ्यों के बीच अखिलेश यादव, मुस्लिम यादव और फिर पिछड़े वोट के कुछ हिस्से के साथ अब सवर्णों में सबसे बड़े वर्ग ब्राह्मण वोट को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तक याद कराते हैं।
10: भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे आप हमारी पौराणिक कहा पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
14: समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और इनका ब्राह्मण समाज से सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कंफ्यूज है, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं, जनता इन्हें नकार चुकी है।
0: यूपी में ब्राह्मण वोटों को लेकर सियासत जोरों पर है और यही वजह है कि अखिलेश यादव कुछ घटनाएं याद दिलाकर ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप लगाते हैं, जिसमें आस्था के नाम पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर तक को वो जोड़ देते हैं।

0: पहली तस्वीर हाथ में त्रिशूल और डमरू, दूसरी तस्वीर काशी के ब्राह्मण बोले आज समाजवादी ही आवाज, प्रतीक चिन्ह के तौर पर इसी नारे वाली तस्वीर अखिलेश यादव लेते हैं, तीसरी तस्वीर नारा इस पर पढ़िए ब्राह्मण की मति पीडीए की शक्ति, अखिलेश बदलेंगे यूपी की नियत, चौथी तस्वीर बीजेपी अपमान करती है समाजवादी सम्मान, जिसमें हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार सम्मान के साथ मंच पर बैठाया जाता है। इन प्रतीकों के साथ उत्तर प्रदेश पंडित जी सम्मान से कहे जाने वाले ब्राह्मण वोटर को अपने साथ समाजवादी पार्टी लाना चाहती है।
1: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं।
0: इसके बाद एक एक करके अखिलेश यादव याद दिलाते हैं कि वो हर विवाद जिससे ब्राह्मण वोट को उनकी पार्टी में शिफ्ट कराया जाए, और तब अखिलेश ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर चले बुलडोजर, प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े बटकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों के प्रीति भोज को बीजेपी के संगठन की तरफ से दिए गए नोटिस तक का जिक्र कर डाला।
1: याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है, सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था, और वो जो कहावत है गोरखपुर में हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है कोने हाथा नहीं भाता। बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें।
2: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका। गले में गांव में कहावत है बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कालर थी वो लटक गई, तो लोगों ने पूछा कहां से बिल्ली मौसी आ रही है, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजिम में ही हमेशा गुंडई अराजकता दंगे फसाद सर्व समाज का अपमान सनातन संस्कृत को ध्वस्त करना ये वही लोग हैं।
3: भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा, उन्होंने अपनी मांग रखी थी मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है।
4: ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से जूतों से मारा गया, क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे?
5: बड़ा असमंजस में है लोग, असमंजस में ये है कि पहले आप तय कर लीजिए कि आपकी भावना और मंशा क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं। पी की 29 परिभाषाएं समाजवादी पार्टी ने आपके सामने पहले दे रखी है। आपकी दुकान है, आप उसके मालिक हैं, आपका अपना स्कूल है, आप उसके प्रिंसिपल भी हैं, आप प्रबंधक भी हैं, तो व्याख्याएं आपको जो करनी हो वो आप करते रहिए।
6: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि कुंडली की अशुभता को दूर कर देती है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य और क्या है बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर न करें राजनीति। पूछा झारखंड क्यों नहीं जाते नेता, विपक्ष ने पहले अमित शाह पर साधा था निशाना। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने माफी मांगी, मानी अपनी गलती। केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों को आज फिर से पेश होने का दिया है समन। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड, कहा पवन पांडे होंगे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जीत का दावा किया। दिसंबर में ढाका लौटेंगी शेख हसीना, ऑडियो संदेश में कहा मुझे बेदखल करने के लिए छात्र आंदोलन को बनाया गया हथियार। कार्यक्रम में शामिल होने पर पूर्व क्रिकेटर शाकिब उल हसन के घर पर आगजनी की कोशिश। और आज तक की खबर का डबल असर, पीएमओ के दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों के लिए खत्म हो गए इंटरव्यू। उत्तराखंड परिवहन विभाग के रोडवेज कर्मचारियों को भी जल्द वेतन भुगतान के आदेश। रांची में 13 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है और छात्र आंदोलन का मुद्दा अब राजनीतिक हो चुका है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी रांची के इन छात्रों के प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं? कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं, आंदोलन बढ़ता जा रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें।
1: देवेंद्रनाथ महातो हैं जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से बात कर अपना पानी का अनशन छोड़ा है।
2: लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी।
3: हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की यह स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव भूल जाता है मार्केट।
4: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है।
5: दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे प्रदर्शन की गूंज भी अब पूरे देश में हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार दबाव के बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि आज झारखंड सरकार के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
1: सर आप बताएंगे, अभी पहले एसडीओ आए थे, क्या कह के गए हैं आप?
4: वो ये कर करके गए कि मुख्यमंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं, अभी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और जिनका बात रखा जाए और मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के बाद फिर ये मुद्दा पे डिस्कस करके अपने में एक सुझाव देंगे।
5: ये प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहा है। इसमें करीब 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ा हुआ था। बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा।
6: ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं नींद में रही थी। मैं 26 सालों से कई लगातार कल डॉक्टर हमको हिदायत दे दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
7: अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी, आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी।
5: जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और ओएमआर शीट में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। वहीं जेएसएससी सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए। अगर